0: दावेदार होने वाला है, इसकी एक झलक सर्वदलीय बैठक में दिख गई, जिसका कई विरोधी दलों के सांसदों ने सांकेतिक रूप से बॉयकॉट किया।
1: संसद का मॉनसून सत्र शांति से बीते, इस बात के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। विपक्षी सांसदों के साथ केंद्रीय मंत्रियों की बैठक चल ही रही थी कि मीटिंग के बीच से टीएमसी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद गुस्से में बाहर निकल आए। विपक्षी सांसदों ने सांकेतिक रूप से मीटिंग का बायकॉट किया। हालांकि सभी नाराज सांसद कुछ ही मिनट के अंदर दोबारा मीटिंग में पहुंच भी गए। टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों की नाराजगी साफ थी। सवाल था कि टीएमसी के जिन 20 सांसदों ने बगावत कर पार्टी छोड़ी है, उन्हें इस बैठक में क्यों बुलाया गया।
2: The strength of the All India Trinamool Congress in the list provided by the table office is shown to be 28 members. These so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the speaker.
1: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर टीएमसी के साथ अपनी एकजुटता दिखाई।
3: जिस तरह संविधान को अवहेलना करके टीएमसी के साथ यो कुछ हुआ है, आम आदमी पार्टी के साथ और शिवसेना के साथ उनके समर्थन में संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया।
1: विपक्ष का सवाल साफ है। उनका आरोप है कि किरेन रिजिजू ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल होने का न्योता दिया। रिजिजू का यही न्योता विपक्ष की नाराजगी की वजह है। वैसे टीएमसी का बागी खेमा सर्वदलीय बैठक में बुलाए जाने से खुश दिखा।
4: आज ऑल पार्टी मीटिंग में हमें बुलाया गया, इसीलिए हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमारा जो अलग से हम जुट बने हैं 20 एमपी को, उन्हें सम्मान दिया गया।
1: हालांकि सरकार अब विपक्ष से अपील कर रही है कि वो सदन को ढंग से चलाने में मदद करें,
5: सहयोग करें। अगर विरोध भी करना है तो बातों के जरिए ही विरोध करें, हंगामा ना करें, और हम अपने तरफ से पूरा योगदान देंगे, सहयोग करेंगे।
1: सर्वदलीय बैठक के बीच नाराजगी और विरोध से एक बात तो साफ है कि मॉनसून सत्र के दौरान सदन में शोर शराबा थमने वाला नहीं है। राहुल गौतम के साथ मानशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: अगली खबर शिवसेना से जुड़ी हुई है। स्पीकर ओम बिरला ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसदों के एकनाथ शिंदे के शिवसेना में विलय को मान्यता दे दी है। 22 जून को शिंदे गुट में शामिल होने का ऐलान करने वाले 6 सांसदों के आवेदन को लोकसभा सचिवालय ने मंजूरी दे दी है, और इस फैसले के बाद से लोकसभा में उद्धव ठाकरे के शिवसेना यूबीटी के सांसदों की संख्या घटकर सिर्फ 3 रह गई है, जबकि शिंदे गुट के सांसदों की संख्या बढ़कर अब 13 हो गए है। और इसके साथ ही लोकसभा में एनडीए के कुनबे में बढ़ोतरी हुई है, जबकि इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा है।
6: बीट टर्मिनोलॉजी कौन सी यूज करनी है, ये 6 एमपी यूबीटी को छोड़ शिवसेना में आ गए हैं। शिवसेना की ताकत जो है 7 से 13 हो चुकी है, और ये सब जो टेक्निकल चीजें हैं वो माननीय स्पीकर महोदय उसके बारे में देखेंगे और उसके ऊपर काम जो है जारी है। लेकिन आज शिवसेना की ताकत पूरी तरीके से बढ़ी है, एनडीए की ताकत बढ़ी है, और ये 13 खास जो एमपीज है वो पूरी तरीके से उनके चुनाव क्षेत्र का हो या महाराष्ट्र के सवाल यहाँ पर उपस्थित करेंगे।
7: जो अभी सांसद वाली बात हो, अभी ये सब ऑपरेशन टाइगर वगैरह आप ही लोगों ने नाम दिया है, और मैं तो यही कहूंगा कि जो लोग जुड़ रहे साथ में वो एक विश्वास के साथ जुड़ रहे, और जो सांसदों की बात है या पिछले 3-4 सालों में जितने लोग जुड़ रहे साथ में, एक उनको शिवसेना के ऊपर या मुझ पर, हमारी टीम पर पूरा भरोसा है कि ये कमिटमेंट को पूरा करते हैं, विश्वास जो देते हैं विश्वास पूरा करते हैं।
0: तो लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार पर सवाल उठाए गए। मांग की गई है कि मामले की तुरंत जांच करवाई जाए, दोषियों पर एक्शन हो। संयुक्त रूप से लिखी गई इस चिट्ठी में राहुल गांधी और खड़गे ने कहा है कि चढ़ावा चोरी की वारदात से मेहनत की कमाई कर दान देने वाला ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उन्होंने ये जिक्र किया कि राम मंदिर ट्रस्ट के सभी सदस्यों की नियुक्ति सरकार ने की थी, तो ऐसे में ट्रस्ट के सदस्य आरएसएस वीएचपी से जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी पर सवाल उठाते हुए राहुल और खड़गे ने कहा कि इस मामले

0: पर चुप्पी भी स्वीकार्य नहीं है। दोनों ने मांग की है कि जवाबदेही तय करनी होगी।
1: दोनों ने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से राम मंदिर बनाने का फैसला हुआ था और ये जो राम मंदिर बनाने का फैसला हुआ था सरकार को आदेश दिया गया था, बनाया ट्रस्ट भी उन्होंने बना लिया, लेकिन जिस तरह 40 दिन में 70 बार भगवान को चढ़ाए गए दान पर श्रद्धा को लूटा गया भाजपा सरकार मोदी सरकार के बनाए हुए ट्रस्ट द्वारा लूटा गया। शुरुआत तभी हो गई थी जब 2 करोड़ की जमीन 2 घंटे बाद 24 करोड़ में खरीदी गई।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी मनीष यादव ने स्वीकार किया कि नौकरी लगने के बाद से ही उसने चढ़ावा चोरी करनी शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं, खुलासा यह भी हुआ है कि चढ़ावा चोरी की जानकारी टिन्नू यादव को थी।
2: राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बड़े खुलासे हो रहे हैं। एसआईटी की जांच के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी मनीष यादव ने बताया कि नौकरी लगने के कुछ समय बाद ही उसने चढ़ावे की चोरी शुरू कर दी थी। मनीष यादव ने पूछताछ में टिन्नू यादव की भूमिका का भी खुलासा किया है। उसने बताया कि चढ़ावा चोरी की जानकारी टिन्नू यादव को दी जाती थी। इसके साथ ही चोरी के पैसों से महंगे उपहार और जमीन खरीदने की भी बात सामने आई है। इस बीच सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर ये है कि पूछताछ में टिन्नू यादव ने स्वीकार किया है कि उसी ने मनीष को नौकरी लगवाई थी और उसे चोरी की पूरी जानकारी उसे रहती थी। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में 2-3 अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं जिनकी भूमिका की जांच की जा रही है। इसके साथ ही टिन्नू यादव ने चंपत राय की आईडी के एक्सेस का इस्तेमाल कर वीआईपी पास बनवाने और लोगों को दर्शन कराने की बात भी कबूल की है। एक तरफ जांच चल रही है, दूसरी तरफ सियासत गरमाई हुई है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि राम मंदिर तो बन चुका है लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए हमें नया आंदोलन शुरू करना होगा।
3: तरी राम रक्षा करना है आमचा राम भक्तांचा काम है। आम्ही राम रक्षक आहोत, मनामध्ये भाव नाही आणि राम रक्षा म्हणताय म्हणजे मनी नाही भाव आणि देवा मला पाव हे आमचं हिंदुत्व नाहीये।
2: उद्धव को जवाब देते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कम से कम उद्धव ठाकरे को राम की याद तो आई, अब मामला गरमाया हुआ है। आज तक ब्यूरो।
0: अब एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। मोहन यादव कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान इसे पेश किए जाने का रास्ता साफ हुआ है। कैबिनेट की बैठक के बाद मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश कैबिनेट ने यूसीसी बिल 2026 को मंजूरी दी है।
4: आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को सहर्ष सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान की है। मैं हमारे सभी माननीय मंत्रिमंडल के साथियों के साथ आप सबको भी बधाई देना चाहूँगा। इस विधेयक को 20 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के सत्र में रखने के लिए हमारी कैबिनेट की अनिवार्यता की बाधा या उसकी मदद से हमने इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया है। ये बात सही है कि भारतीय संस्कृति में समानता का भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये वेद वाक्य के उद्घोष के साथ होता आया है। हमारे लिए समानता भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कारों का सदैव अभिन्न अंग रहा है।
0: सोनम वांगचुक को हाईकोर्ट से झटका लगा। कोर्ट ने वांगचुक को किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने से मना कर दिया है। अलबत्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग मुख्य अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।
2: वांगचुक का इलाज सफदरजंग अस्पताल में ही चलेगा। हाईकोर्ट ने फिलहाल वांगचुक को कोई राहत नहीं दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मेडिकल स्थिति को देखते हुए उन्हें अस्पताल शिफ्ट करने का सरकार का फैसला सही है, उन्हें मेदांता शिफ्ट करने की इजाजत नहीं है। डॉक्टर सोनम की सहमति से ही मेडिकल फैसले लेंगे।
5: अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए? आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे।
6: और आप कैसे फोर्स कर सकते हो कि मैं आपके कहे अनुसार डॉक्टर्स के पास रहूं? आपके अस्पताल में रहूं, आप क्या इंट्रीवीनियस वो दे रहे हैं मुझे नहीं मालूम।
2: सोनम वांगचुंग की पत्नी गीतांजलि आंगो ने उन्हें सफदरजंग अस्पताल से किसी प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने याचिका में आरोप लगाया था कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण भूख हड़ताल के 21वें दिन वांगचुंग को मेडिकल ट्रीटमेंट के बहाने गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है। याचिका में वांगचुंग की तुरंत रिहाई या डिस्चार्ज की भी मांग की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है और उन्हें ना तो अपने वकील से मिलने दिया जा रहा है और ना ही उन डॉक्टरों से जो पिछले 20 दिनों से उनकी जांच कर रहे थे। लेकिन कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में साफ कह दिया कि फिलहाल वांगचुक का इलाज सफदरजंग में ही चलेगा। दिल्ली से अनिशा माथुर और सृष्टि ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: मध्य प्रदेश के छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ चल रहा चेता और जल सत्याग्रह खत्म कर दिया गया है और इसे खत्म करवाया गया। तड़के भारी पुलिस बल ने धरनास्थल पर पहुंचकर इसे खाली करवाया। 14 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता अमित भटनागर को अस्पताल में भेजा गया। प्रदर्शनकारी इसे कार्रवाई नहीं बल्कि गिरफ्तारी बता रहे हैं, तो पुलिस का कहना है कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।
7: जी ये जो व्यवस्था आपने यहाँ लगाई है, ये लगाने की नौबत क्यों पड़ रही है?
8: क्योंकि हम लोग पिछले 5 साल से सरकार से अपनी मांगे रख रहे हैं और हमने सब कुछ हंगर स्ट्राइक से लेके जल सत्याग्रह, खून से पत्र लिखना, सैकड़ों बार आवेदन निवेदन सारा सब कुछ करके देख लिया। इसके बाद हमने चिता आंदोलन भी किया था अप्रैल में, जिसे 6 तारीख से 15 अप्रैल तक चला और झूठे आश्वासन के बाद तोड़ दिया गया। लेकिन उसके बाद इन्होंने हमको जो है 250 से ज्यादा केसेस लगा दिए। मेरे ऊपर भी 1 दर्जन से ज्यादा केसेस हैं। हमारे साथ रहने वाली महिलाएं लड़कियां जो दिव्या अहरवार है उसके ऊपर भी 8 से ज्यादा केस हैं। सावी राजपूत और सारे साथियों पे केसेस हैं। इससे आप गंभीर धाराओं में हम लोग कहीं थे भी नहीं। झूठी झूठी धाराएं, धमकी देना, डराना, मारना, पुलिस के ऊपर मारना, हम लोगों को हिंसा के लिए भड़का रहे, ऐसा कर रहे हैं, जबकि हम तो गांधी को मानते हैं।
7: भारत का पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट यहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना में केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट एनविजन किया गया। अब जब उसके लिए भूमि अधिग्रहण हो रहा है तो पन्ना और छतरपुर जिले के गांवों के आदिवासी और पिछड़े समुदाय के ज्यादातर लोगों में से वैसे लोग हैं जो चिता आंदोलन कर रहे हैं, जो फांसी आंदोलन कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि या तो न्याय दो या फिर हमें मार दो। इसी तरह की तस्वीरें हर दिन छतरपुर के इस नदी में आपको देखने को मिलता है, जहां पर डौढ़न डैम बनकर आएगा और ये सारा इलाका डूब जाएगा। इन ग्रामीणों का दावा है और आरोप है कि सरकार ने इनके साथ न्याय नहीं किया है, कॉम्पनसेशन कम मिला है। आज तक इकलौता मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल है जो इस वक्त ग्राउंड से आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा है, ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है, ताकि एक और आमरण अनशन देश में हो रहा है। आपने सोनम वांगचुक की कहानी तो दिल्ली में सुनी, लेकिन यहाँ अमित भटनागर है जो हर दिन इसी तरह से केन नदी की ट्रिब्यूटरी में छतरपुर जिले में लेट जाते हैं चिता पर प्रदर्शन करते हुए, ताकि सत्ता में बैठे हुए लोग इन आदिवासी ग्रामीणों की आवाज को सुने, जो कभी सूली पर लटक कर अपनी आवाज पहुंचाते हैं, कभी चेहरे पर मिट्टी लगाकर आवाज पहुंचा रहे हैं। तो महिलाएं चिताओं पर लेट के यहाँ का जो स्थानीय पेड़ है उसके पत्तों को लेकर लेट कर प्रदर्शन कर रही हैं, मांग कर रही हैं कि उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए, फेयर कॉम्पनसेशन दिया जाए।
0: अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि चंद रुपयों के मोबाइल फोन के लिए कैसे एक शख्स की जान खतरे में डाल दी गई। खबर रायपुर की है, जहां पर मोबाइल चोरी के एक आरोपी को चलती ट्रेन से लात मारकर बाहर फेंक दिया गया।
2: पहली नजर में यह तस्वीर हैरान करती है। लाल टी शर्ट पहने यह शख्स ट्रेन में लटका हुआ है, ये कभी भी नीचे गिर सकता है, इसके साथ कभी भी जानलेवा हादसा हो सकता है। रायपुर में उरकुरा मांडर रेलवे सेक्शन के बीच आजाद हिंद एक्सप्रेस में लटके हुए इस आदमी को देखिए। अब दूसरी तस्वीर देखिए, बोगी के भीतर से ये आदमी इसे पकड़ने की कोशिश करता है, जब पकड़ नहीं पाता तो ट्रेन में लटके इस आदमी को लात मारता है। लात मारने के बाद इस आदमी ने ट्रेन का जो हिस्सा पकड़ रखा है, ये आदमी उस पर प्रहार करता है। हाथ पर जब लात चला तो ट्रेन से इसका हाथ छूट गया और ये नीचे गिर गया। आरोप है कि ट्रेन में लटके हुए इस आदमी ने लात मारने वाले इस आदमी का मोबाइल चुरा लिया था, लेकिन चोरी करके वो ट्रेन से बाहर जाता तब तक लोग जान गए। बचने के खातिर ये ट्रेन से लटक गया और अपना मोबाइल पाने के लिए इस आदमी ने इसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। इस तमाशे का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने संज्ञान लिया। लात मारने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और घायल आदमी की तलाश जारी है। महेंद्र नामदेव, रायपुर आज तक।
0: अब आपको लखनऊ की खबर बताते हैं, जहां पर दबंगों ने एक शख्स को बेरहमी से पीटा। आरोप यह है कि रंगदारी न देने के चलते उसकी पिटाई की गई।
2: एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ है, तीन लोग उसे लाठी डंडे और रॉड से मार रहे हैं। ये इस शख्स को बेतहाशा पीट रहे हैं। इस आदमी को इतना पीटा गया कि ये अचेत हो गया और पीटने वाले दबंग इसे मरा समझकर भाग गए। तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र में पड़ने वाले बजरंग चौराहा की है। जिनके पिटाई की जा रही है उनका नाम अखिलेश कुमार है। अखिलेश शाम को अपने घर आ रहे थे, तभी कुछ लोगों ने इन्हें घेर लिया और पीटना शुरू कर दिया। कौन थे वो लोग जिन्होंने इन्हें जान से मार डालने की कोशिश की, सुनिए।
9: एक का चेतराम नाम है, एक का विपिन रावत और एक का सूरज रावत।
2: मगर सवाल है क्यों? आरोपियों ने इस कदर इन्हें क्यों पीटा? तो जवाब है कि पीटने वाले ये दबंग अखिलेश कुमार से हर महीने 10,000 रुपए की रंगदारी मांग रहे थे। रंगदारी नहीं दी, इसीलिए इन पर जानलेवा हमला हो गया।
9: दबंग टाइप के, गुंडे टाइप के व्यक्ति है वो, अब उनके अंदर क्या मंशा रही होगी हमसे। चेतराम तो वो 10,000 की रंगदारी महीने मांग रहा था।
2: अखिलेश की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एक आरोपी को हिरासत में भी ले लिया गया है, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। आशीष के साथ अंकित मिश्रा, लखनऊ आज तक।
0: अब आपको जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले का हाल दिखाते हैं, जहां पर बादल फटा उससे तबाही मची है। राजौरी में तमाम नदी नाले उफान पर है, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। लगातार बारिश के चलते संकट बढ़ता जा रहा है।
10: मूसलाधार बारिश के बाद नदी में ऐसा सैलाब उठा कि हाहाकार मच गया। शोर मचाते हुए लहरें तेजी से बढ़ीं और फिर रास्ते में ऐसी तबाही मचाई कि हर ओर बर्बादी का मंजर बिखर गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश ने कैसी तबाही मचाई है वो इन तस्वीरों से साफ नजर आ रही है। गाड़ियां एक के ऊपर एक चढ़ी हुई हैं। हालात ऐसे हैं कि मानो हर गाड़ी कबाड़ बन गई है। तस्वीरों से साफ समझा जा सकता है कि आखिर अचानक आई बाढ़ राजौरी में कैसी आफत लेकर आई है। बताया जा रहा है कि राजौरी में रात करीब 1 बजे जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद यहां अचानक बाढ़ आ गई। बेला इलाके में बस स्टैंड पूरी तरह बर्बाद हो गया।
11: यहां पर बस स्टैंड हुआ करता था, लेकिन नदी का ऐसा पानी जो है वो तूफान लेकर यहाँ पर पहुंचा, जिस कारण तबाह बर्बाद हो चुका है ये पूरा राजौरी का बस अड्डा, न्यू बस स्टैंड।
10: बेला इलाके में चारों ओर मलबा है, लोग डरे हुए हैं, नदी के उफान को देखकर खौफ जदा हैं। मानसून वाले संकट के बीच फिर से तबाही का डर सता रहा है।
12: खौफ बहुत ज्यादा था, हमने सोचा पत्नी कौन से राजौरी बह गया सारा, लेकिन अल्लाह का बड़ा कर्म है कि हमने घूमा हूँ सारा तरफ, मैं देख के आया हूँ, मैं भी इधर जा रहा था तो ये मैंने देखा कि ये हालात बड़े कोई कंट्रोल कर लिया, फिर भी पुलिस आगे पीछे घूम रही है। बड़े लोग जो बड़े संजीदा लोग हैं वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आगे पीछे जाने की कोशिश मत करो।
10: बेला इलाके में कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है, सड़कें भी बह गई हैं। भारी बारिश के बीच बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं।
11: आपको हम दिखा रहे हैं, यही वो नदी है सतलुज नदी जो उफान पर थी रात को। इस नदी के उफान पर आने के बाद कई गाड़ियां इसकी जद में आ गई। मैं जूम करके दिखाऊंगा, वो सामने आप देख सकते हैं वो ट्रक है, गाड़ी है, किस तरह से फंसी हुई है नदी के बीच में।
10: मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिन राजौरी में मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है, लिहाजा प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी गई है, ताकि ये आसमानी आफत लोगों की जिंदगी पर संकट ना बन सके। राजौरी से शक्ति शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश ने बरपाया कहर। जम्मू कश्मीर में हुई भारी बारिश के चलते 11 लोगों की मौत हो चुकी है। पुंछ में 10 लोगों की जान गई है, जबकि एक मौत राजौरी में हुई है। जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं।
13: लहरों का ये शोर डरा रहा है, साथ ही उस खतरे का भी साफ इशारा कर रहा है जो इन लहरों के साथ पुंछ के तमाम इलाकों में बढ़ता जा रहा है। देर रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश पुंछ के लोगों के लिए आफत लेकर आई है। कहीं पुल तबाह हो गए हैं, कहीं घरों को नुकसान पहुंचा है। मानसूनी प्रहार से पूरे पुंछ जिले का हाल बेहद बुरा है। इन तस्वीरों को देखिए, बारिश के मौसम में जो दीवार पुल की हिफाजत के लिए बनाई थी वो देर रात आए उफान के साथ बहती चली गई, जिसके बाद इस पुल पर भी खतरा मंडरा रहा है। पुंछ में तेज बारिश के बीच नदी का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंचा, लोगों को भारी नुकसान हुआ। अब वहां से बर्बादी की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं
14: और आप देख सकते हो कि कितना लॉस हो गया। अब हम इसी से हमारा घर चलता है, यही सारा लॉस हो गया तो हम कैसे करेंगे।
13: सिर्फ पुंछ और राजौरी पर ही मानसून की मार नहीं पड़ी है, बल्कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। किश्तवाड़ की इन तस्वीरों को देखिए, नदी का उफान साफ बता रहा है कि यहाँ संकट का दायरा किस तरह बढ़ता जा रहा है। जो इलाके नदी के किनारे बसे हैं वो खतरे से सबसे ज्यादा घिरे हैं। बारिश के बीच जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर लैंडस्लाइड ने भी मुसीबत बढ़ा दी है। रास्ते बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिन जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में बारिश का हाल कुछ ऐसा ही रहने वाला है जो लोगों का संकट और ज्यादा बढ़ा सकता है। आज तक ब्यूरो।
0: अमेरिका और ईरान में युद्ध अब महायुद्ध में तब्दील होता जा रहा है। रविवार को सूरज निकलने से पहले ही अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर बमबारी शुरू की, मिसाइलें ताकी, जिसके बाद ईरान ने भी खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया।
2: अमेरिका ने ईरान में फिर से तबाही मचा दी है, फिर से दागी जा रही है मिसाइलें। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर ये हमले किए गए। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में सेंट्रल कमांड ने कहा, लगातार आठवीं रात किए गए इन हमलों का मकसद होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल शिपिंग के लिए खतरा पैदा करने की ईरान की क्षमता को और कम करना है। साथ ही इन हमलों का मकसद इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की उन ताकतों को तुरंत सजा देना है जिन्होंने कल रात जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर हमले किए थे। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम ने जानकारी दी है कि अमेरिकी सेना ने शादेगन के पास जबरदस्त बमबारी की। ईरान के बंदर अब्बास और केशम में कई धमाकों की आवाज सुनी गई। ईरानी मीडिया का दावा है कि अमेरिकी सेना ने हाजियाबाद शहर के पास के इलाके को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना ने सिरिक के पास भी मिसाइलें दागी हैं। दरअसल ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश में दो अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है, जबकि एक अभी भी लापता है। चार अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए हैं। ये तय है कि फिलहाल युद्ध रुकने वाला नहीं है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात रूस यूक्रेन युद्ध की, जहां रूसी हमलों का यूक्रेन भी लगातार जवाब दे रहा है। ताजा हमला रूसी राजधानी मॉस्को में हुआ, जहां पर यूक्रेन ने रूस के दो लॉजिस्टिक केंद्रों, तेल भंडार और रूसी जहाजों को निशाना बनाया, जिसमें जान माल का नुकसान भी हुआ है।

0: दुनिया में युद्ध के इस चार साल से भी पुराने मोर्चे का कोई अंत नहीं दिख रहा है। शनिवार देर रात और रविवार सुबह रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके आसपास के इलाकों पर भीषण हमले किए, जिससे पूरा शहर थर्रा उठा। मिसाइल हमलों के बाद राजधानी कीव में कई जबरदस्त धमाकों की आवाजें सुनाई दी और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। कीव के मेयर विटाली क्लिट्सको ने सोशल मीडिया पर बताया कि एक डॉर्मेट्री, एक रिहायशी इमारत और एक सुपरमार्केट में आग लग गई। क्लिट्सको ने कहा कि हमले में कई गैर रिहायशी इमारतों और गोदामों को भी नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में खड़ी कारें और ऑफिस की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई। रूस के ताजा हमले में अभी तक एक व्यक्ति की मौत और 9 अन्य लोगों के घायल होने की खबर है। इससे पहले यूक्रेनी सेना ने शनिवार को रूस पर दोहरे हमले किए थे। एक तरफ राजधानी मॉस्को में एक लॉजिस्टिक केंद्र को निशाना बनाया गया तो वहीं दूसरी तरफ रूसी जहाजों पर भीषण हमला हुआ। इन हमलों में रूस में जान माल का भारी नुकसान हुआ। शनिवार को मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टाल शहर में रूस की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी वाइल्डबेरीज के गोदाम पर भीषण ड्रोन हमला हुआ। इन हमलों में 7 लोगों की मौत हुई और 24 लोग घायल हुए। मॉस्को में एक तेल डिपो को भी निशाना बनाया गया, जहां हमले के बाद भीषण आग लग गई। इस घटना में 2 लोग घायल हुए और पास के एक अस्पताल को एहतियातन खाली कराया गया। यूक्रेन ने रूसी जहाजों पर ड्रोन हमले का एक बार फिर वीडियो जारी किया, जिसमें रूसी जहाज पर ड्रोन हमले की लाइव तस्वीरें देखी जा सकती थी। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने भी इन हमलों की पुष्टि की। यूक्रेन ने रूस के 2 ऐसे लॉजिस्टिक केंद्रों पर हमला किया जहां ड्रोन निर्माण के लिए जरूरी पुर्जों और नेविगेशन उपकरणों की आपूर्ति की जाती थी। एक तेल भंडारण केंद्र को भी निशाना बनाया गया। एक तरफ यूक्रेन रूस पर लगातार जबरदस्त पलटवार कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रूस पर कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। यूरोपीय यूनियन रूस पर 21वें प्रतिबंध की तैयारी में जुटा है, लेकिन ग्रीस की एक मांग की वजह से फिलहाल सहमति नहीं बन पाई है। ग्रीस ने रूसी तरलीकृत प्राकृतिक गैस पर पहले से तय प्रतिबंधों में बदलाव की मांग की है। यूक्रेन के हमलों से बौखलाकर आज रूस ने कीव में कोहराम मचा दिया है। पुतिन पहले भी कह चुके हैं कि वे रुकने वाले नहीं। खबर यह भी आ रही है कि रूस यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जे की योजना बना चुका है। मतलब साफ है कि अब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और भीषण होने वाला है। आज तक ब्यूरो।
1: भारत के साथ बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया है। यह टूर्नामेंट जीतने वाली वो पहली भारतीय बनी है।
2: देश की बेटी ने लहराया तिरंगा, देश की आन बान शान बनी पीवी सिंधु। जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनी पीवी सिंधु। जी हां, कमाल हो गया, धमाल हो गया। जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीयों को गर्व करने का मौका मिला है। 31 साल की सिंधु ने रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में जापान की अकाने यामागुची को 21-17 से हराया। ये मैच 50 मिनट तक चला। सिंधु 4 साल बाद यामागुची को किसी फुल मैच में हरा सकी हैं। उन्हें पिछली जीत थाईलैंड ओपन में 2022 में मिली थी। पिछले साल मलेशिया ओपन में यामागुची रिटायर्ड हर्ट हो गई थी। सिंधु ने 2 साल बाद कोई खिताब जीता है। उन्होंने 2024 में सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता था। वो 2022 में सिंगापुर ओपन सुपर 500 में चैंपियन बनी थी। ये सिंधु के करियर का पहला सुपर 750 खिताब है। 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद ये उनका सबसे बड़ा इंटरनेशनल खिताब है। आज तक ब्यूरो।
1: वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
3: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

फुटबॉल का बादशाह फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में गोल दागा। फ्रांस के एम्बाम्पे ने मेसी को पछाड़कर जीता गोल्डन बूट। टी20 के बाद इंग्लैंड के हाथों टीम इंडिया ने गंवाई वनडे सीरीज। लॉर्ड्स में 27 रनों से मिली हार। काम नहीं आई रोहित शर्मा की शतकीय पारी। आज से संसद का मानसून सत्र। एफसीआरए विधेयक समेत 7 बिल पेश करेगी सरकार। सुबह प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। चढ़ावा चोरी, पेपर लीक जैसे कई मुद्दों पर विपक्ष घेरने की तैयारी में जुटा। मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में आज गृहमंत्री अमित शाह करेंगे वंदे मातरम बिल विधेयक पेश। वंदे मातरम के अपमान पर होगी 3 साल तक की जेल। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई।

देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 6 बज चुके हैं और सबसे पहले बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे 6 बजे 6 ताजा खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे स्पेन की, जिसने 16 साल बाद अर्जेंटीना को हराकर फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया। फिर आपको बताएंगे रोहित शर्मा की शतकीय पारी के बावजूद टीम इंडिया की इंग्लैंड के हाथों कैसे हार हो गई। सियासत से जुड़ी बातें भी करेंगे। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जिसको लेकर विपक्ष ने और सत्ता पक्ष ने क्या क्या रणनीति बनाई है वो भी आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में आज गृहमंत्री अमित शाह पेश करेंगे वंदे मातरम बिल। क्या है ये कानून और क्या होगा इसका असर, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर बात करेंगे चढ़ावा चोरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली आज सुनवाई की, जहां SIT ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। और फिर आखिर में बताएंगे पहाड़ों में कहां मानसून आफत बनकर बरस रहे हैं बादल। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप की। स्पेन ने 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया। टीम ने न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में 2022 की चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। 1-0 स्पेन के लिए एक्स्ट्रा टाइम में फेरन टोरेस ने गोल किया। 106वें मिनट में सब्स्टिट्यूट प्लेयर फेरन टोरेस ने स्पेन के लिए गोल दागा। टोरेस को एक अन्य सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी निको विलियम्स ने पास दिया, जिस पर वो गोल करने में कामयाब रहे। स्पेन ने दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप जीता। इससे पहले 2010 में ये टीम चैंपियन बनी थी। वहीं अर्जेंटीना की टीम चौथी बार वर्ल्ड कप खिताब नहीं जीत सके। अर्जेंटीना की टीम इटली और ब्राजील जैसा कारनामा नहीं कर पाई, जिसने बैक टू बैक टाइटल जीते थे।

0: मेसी की टीम से छिन गया फुटबॉल का ताज। फाइनल जीत कर स्पेन ने जमाई धाक। ये जीत और जश्न के लम्हे, ये दुनिया जीत लेने के बाद जज्बातों के बह जाने के लम्हे थे। ये इस चमचमाती ट्रॉफी को चूमते रहने के लम्हे थे जिसका मौका स्पेन को 16 साल बाद नसीब हो रहा था। पूरे वर्ल्ड कप में स्पेन शान के साथ खेला। पूरे टूर्नामेंट में स्पेन ने सिर्फ एक गोल खाया और फिर फाइनल में भी उसकी किलाबंदी इतनी ताकतवर साबित हुई कि मेसी समेत अर्जेंटीना के तमाम सितारे गोल करना तो दूर, अटैक तक करने को तरस गए। उधर स्पेन लगातार आक्रामक होता जा रहा था। पहले और दूसरे हाफ में उसने कई शानदार अटैक भी किए, लेकिन हर बार अर्जेंटीना के गोलकीपर मार्टिनेज ने कई शानदार बचाव करते हुए नतीजे को एक्स्ट्रा टाइम तक धकेल दिया। आखिरकार 106वें मिनट में टोरेस ने इस पावरफुल लेफ्ट फुटर के जरिए गोल कर सनसनी मचा दी। अर्जेंटीना के पास वापसी का न तो वक्त बचा था न ही हौसला, क्योंकि फाइनल मुकाबले में उसके खिलाड़ी चैंपियंस की तरह खेलने में पूरी तरह नाकाम दिख रहे थे। स्पेन ने इस बार अपने अभियान का आगाज केप वर्डे के खिलाफ 0-0 के ड्रॉ से किया था। इसके बाद स्पेन ने लगातार 6 मुकाबले जीतकर फाइनल में जगह बनाई। टीम ने ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, बेल्जियम और सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से हराया, फिर फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हरा दिया। स्पेन की जीत के बाद अलग अलग शहरों में फैंस ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। लोग हाथों में स्पेन के झंडे लेकर सड़कों पर उतर रहे थे, नाच रहे थे और वर्ल्ड कप जीत का जश्न मना रहे थे। आज तक ब्यूरो।
1: तो स्पेन के फैंस के लिए, स्पेन के लोगों के लिए ढेर सारी उन्हें बधाई क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया। लेकिन भारत ने इंग्लैंड में तीसरा वनडे, उसे हार मिली। 27 रन से 3 मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम इंग्लैंड ने कर ली है। लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने पहले बाजी की, 50 ओवर में 387 रन बनाए 3 विकेट खोकर। जवाब में भारतीय टीम 50 ओवर में 360 रन ही बना सकी। रोहित शर्मा ने 138 रन की पारी खेली, लेकिन ये शतकीय पारी भी भारत को जीत नहीं दिला पाए। इंग्लैंड के जीत के लिए हीरो जैकब बथेल रहे, 91 रन बनाए, 1 विकेट लिया। प्लेयर ऑफ द मैच भी उन्हें चुना गया, जबकि भारत ने पहला मैच 6 विकेट से जीता था। दूसरा मुकाबला इंग्लैंड ने 4 विकेट से अपने नाम किया था। इससे पहले इंग्लैंड ने टी20 सीरीज में भी भारत को 4-0 से हराया था। इंग्लैंड दौरे से पहले आयरलैंड ने भी भारत को टी20 सीरीज में 2-0 से हराया था।

0: लॉर्ड्स वनडे में 27 रन से मिली हार। बेकार गया रोहित शर्मा का शतकीय प्रहार। इंग्लैंड के हाथों भारतीय गेंदबाजी तार तार। T20 के बाद वनडे सीरीज भी गवाई टीम इंडिया ने। संन्यास की सलाह देने वालों को रोहित शर्मा का ये जवाब हमेशा याद रहेगा और खुद रोहित के लिए तो यादगार रहेगा ही। ढेरों सवालों का बोझ लेकर वो मैदान पर उतरे थे, लेकिन हर एक शॉट के साथ साथ ये बोझ भी हल्का होता चला गया। मैदान का कोई कोना नहीं था जो रोहित शर्मा के शॉट से गुलजार न हुआ हो। 84 गेंद पर ही उन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया। इस शतक के साथ ही रोहित ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। वो लॉर्ड्स में वनडे शतक जमाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही वो लॉर्ड्स में 39 साल 80 दिन में शतक जमाने वाले सबसे उम्र दराज बल्लेबाज भी हो गए। रोहित का वनडे करियर का ये 34वां शतक था। रोहित अब किसी भी देश में सबसे ज्यादा शतक जमाने वाले विदेशी बल्लेबाज बन गए हैं। इंग्लैंड में रोहित शर्मा का ये 8वां शतक था और वो अब सबसे ज्यादा उम्र में वनडे शतक जमाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। लॉर्ड्स में 110 गेंद पर उन्होंने 138 रन की पारी खेली। जब तक रोहित क्रीज पर थे, टीम इंडिया से भी इतिहास रचने की उम्मीद थी कि वो 388 रन का लक्ष्य हासिल कर लेगी। रोहित के बाद विराट कोहली ने अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन उनके जाने के बाद बची खुची उम्मीद भी खत्म हो गई और टीम इंडिया 1-2 से वनडे सीरीज हार गई। वैसे जो हाल गेंदबाजी का था, भारतीय ड्रेसिंग रूम की मुश्किलें तो वो पहले ही बढ़ा चुका था। 192 रन तक इंग्लैंड का एक भी विकेट उसके हाथ नहीं लगा था। बेन डकेट ने 141 रन की पारी खेल डाली। तो जैकब बेथल ने बनाए 91 रन। इंग्लैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 387 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया था और सीरीज जीत की नींव पहले ही रख दी थी। आज तक ब्यूरो।
1: और अब बात करेंगे देश की राजनीति से जुड़ी खबरों की। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इसके हंगामेदार होने के आसार हैं। सरकार जहां FCRA संशोधन, आयकर संशोधन समेत कुल 7 कानून लेकर आ सकती है, वहीं नीट पेपर लीक, सोनम वांगचुक के प्रदर्शन, राम मंदिर में चंदा चोरी और एथेनॉल 20 पेट्रोल के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी का संसद भवन के हंस द्वार पर संबोधन होगा। मानसून सत्र 20 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के सत्र के दौरान लोकसभा राज्यसभा में कुल 19 बैठकें होंगी, लेकिन सभी बैठकें हंगामेदार होने के आसार हैं। विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में, सरकार कानून को लेकर के और उसी के साथ साथ विपक्ष को जवाब देने की तैयारी में। तो आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और वो तमाम मुद्दे जो बीते कुछ दिनों में सुर्खियों में रहे हैं, उनको लेकर के विपक्ष सरकार पर हमलावर होगा। तो अगस्त तक चलने वाले इस मानसून सत्र में FCRA समेत कुल ऐसे 7 कानून हैं जो सरकार लेकर के आने वाली है। 7 में से 5 नए ऐसे कानून होंगे जो सरकार लेकर के आएगी, लेकिन कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर सबकी नजर बनी रहेगी, आखिर क्या क्या होने वाला, आपको एक बार ये भी डिटेल में बता देते हैं। विदेशी योगदान विधिनियम संशोधन बिल FCRA, इसी के साथ साथ आयकर संशोधन बिल 2026, ये भी एक नया कानून आने वाला। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन बिल 2026, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर के भी संसद में कानून लाया जाएगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल 2026, जो मौजूदा कानून है उसमें संशोधन किया जा रहा है। राष्ट्रीय सम्मान अपमान की रोकथाम संशोधन बिल, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विकास संशोधन बिल 2026, ये वो बिल है जिसमें संशोधन किया जा रहा है। उसी के साथ एक नया कानून क्या आएगा, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025, तो ये वो कानून है। तो विदेशी योगदान FCRA को लेकर के बहुत सारे नियम होंगे और वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण दिया जाएगा। जैसे राष्ट्रगान है जनगणमन, उसी तरह वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण मिलेगा। यानी अगर कहीं पर कोई इसमें खलल डालता है, वंदे मातरम जहां पढ़ा जाए उससे उसे अपमान माना जाएगा। अगर अनादर होता है, गायन में बाधा डाली जाती है, तो उस पर 3 साल तक की सजा होगी, जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। इसको लेकर के हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो कई सारे मुस्लिम सांसद जो होंगे दूसरी विपक्षी पार्टियों के, वो सवाल उठाएंगे। मुस्लिम संगठन कह चुके हैं कि वंदे मातरम को वो नहीं मानते जो कि उनके कानून उनकी परंपराओं के विपरीत है। वो जनगणमन का सम्मान करते हैं, वो जनगणमन गाते हैं, लेकिन वंदे मातरम को लेकर के वहां हमेशा से ऐतराज रहा है। और इसी ऐतराज के बाद, इस कानून के बाद, याद हो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, इसके वजह से ये एक बड़ा सियासी बखेड़ा खड़ा हो सकता है। तो आज गृहमंत्री अमित शाह वंदे मातरम से जुड़ा बिल पेश करेंगे। मॉनसून सत्र का पहला दिन राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून का मकसद है राष्ट्रगीत वंदे मातरम को वही कानूनी और सुरक्षा देना जो अभी राष्ट्रगान जनगणमन को मिली हुई है। अगर यह कानून लागू होता है तो राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम एक्ट में बदलाव होगा ताकि वंदे मातरम का अपमान करना एक सजा बन जाए, एक अपराध बन जाए जिसके लिए कानूनी सजा होगी और इसे राष्ट्रगान के बराबर लाया जा सके। प्रस्तावित कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगीत का अपमान करता है, गाने में रुकावट डालता है, उसे 3 साल तक की जेल, जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। तो आज से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र कितना हंगामेदार होने वाला है इसकी झलक सरदली बैठक में दिख गई, जिसका कई विरोधी दलों के सांसदों ने सांकेतिक रूप से पहले बहिष्कार किया, फिर सरकार को बता दिया कि आगे की लड़ाई और तेज होने वाली है। बवाल 20 बागी तृणमूल कांग्रेस सांसदों को मीटिंग में बुलाने पर मचा।
2: संसद का मॉनसून सत्र शांति से बीते इस बात के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। विपक्षी सांसदों के साथ केंद्रीय मंत्रियों की बैठक चल ही रही थी कि मीटिंग के बीच से टीएमसी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद गुस्से में बाहर निकल आए। विपक्षी सांसदों ने सांकेतिक रूप से मीटिंग का बायकॉट किया। हालांकि सभी नाराज सांसद कुछ ही मिनट के अंदर दोबारा मीटिंग में पहुंच भी गए। टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों की नाराजगी साफ थी। सवाल था कि टीएमसी के जिन 20 सांसदों ने बगावत कर पार्टी छोड़ी है उन्हें इस बैठक में क्यों बुलाया गया।
3: द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इन द लिस्ट प्रोवाइडेड बाई द टेबल ऑफिस इज शोन टू बी 28 मेंबर्स। दीज सो कॉल्ड रेबल 20 MPs, देयर मर्जर हैज नॉट बीन अप्रूव्ड बाई द स्पीकर।
2: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर टीएमसी के साथ अपनी एकजुटता दिखाई।
4: जिस तरह संविधान को अवहेलना करके टीएमसी के साथ यो कुछ हुआ है, आम आदमी पार्टी के साथ और शिवसेना के साथ उनके समर्थन में संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया।
2: विपक्ष का सवाल साफ है। उनका आरोप है कि किरेन रिजिजू ने NCPI को बैठक में शामिल होने का न्योता दिया। रिजिजू का यही न्योता विपक्ष की नाराजगी की वजह है। वैसे टीएमसी का बागी खेमा सर्वदलीय बैठक में बुलाए जाने से खुश दिखा।
5: आज ऑल पार्टी मीटिंग में हमें बुलाया गया, इसीलिए हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमारा जो अलग से हम जुट बने हैं 20 MP को उन्हें सम्मान दिया गया।
2: हालांकि सरकार अब विपक्ष से अपील कर रही है कि वो सदन को ढंग से चलाने में मदद करें,
6: सहयोग करें। अगर विरोध भी करना है तो बातों के जरिए ही विरोध करें, हंगामा ना करें, और हम अपने तरफ से पूरा योगदान देंगे, सहयोग करेंगे।
2: सर्वदलीय बैठक के बीच नाराजगी और विरोध से एक बात तो साफ है कि मॉनसून सत्र के दौरान सदन में शोर शराबा थमने वाला नहीं है। राहुल गौतम के साथ मानशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
1: तो उधर जो हंगामा हुआ वो तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों को बुलाने पर हुआ, और अब बात शिवसेना से जुड़ी खबर ये कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना UBT के 6 बागी सांसदों के एकनाथ शिंदे की शिवसेना में विलय को मान्यता दे दी है। समझिए हंगामा इस पर भी हो सकता है। 22 जून को शिंदे गुट में शामिल होने का ऐलान करने वाले 6 सांसदों के आवेदन को लोकसभा सचिवालय ने मंजूरी दे दी है। जाहिर है इससे सदन में उनके बैठने की जगह भी बदल जाएगी। इस फैसले के बाद लोकसभा में उद्धव ठाकरे की शिवसेना UBT के सांसदों की संख्या घटकर अब सिर्फ 3 रह गई है, जबकि एकनाथ शिंदे गुट के सांसदों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। इसके साथ ही लोकसभा में NDA के कुनबे में भी बढ़ोतरी हो गई है। देखिए ये जितने भी अब दाएं बाएं से सांसदों की संख्या यहां बढ़ी है, उसके बाद फायदा किसको हुआ है? NDA को हुआ है। NDA की संख्या सांसदों के बढ़ गई है, जबकि इंडिया गठबंधन को संख्या बल में सदन में भारी नुकसान हुआ है।
7: ये देखिए अभी टर्मिनोलॉजी कौन सी यूज करनी है। ये 6 MPs UBT को छोड़ शिवसेना में आ गए हैं। शिवसेना की ताकत जो है 7 से 13 हो चुकी है, और ये सब जो टेक्निकल चीजें हैं वो माननीय स्पीकर महोदय उसके बारे में देखेंगे और उसके ऊपर काम जो है जारी है। लेकिन आज शिवसेना की ताकत पूरी तरीके से बढ़ी है, NDA की ताकत बढ़ी है, और ये 13 खास जो MPs है वो पूरी तरीके से उनके चुनाव क्षेत्र का हो या महाराष्ट्र के सवाल यहाँ पर उपस्थित करेंगे।
8: जो अभी सांसद वाली बात हो, अभी ये सब ऑपरेशन टाइगर वगैरह आप ही लोगों ने नाम दिया है। और मैं तो यही कहूंगा कि जो लोग जुड़ रहे साथ में वो एक विश्वास के साथ जुड़ रहे, और जो सांसदों की बात है या पिछले 3-4 सालों में जितने लोग जुड़ रहे साथ में, एक उनको शिवसेना के ऊपर या मुझ पर, हमारी टीम पर पूरा भरोसा है कि ये कमिटमेंट को पूरा करते हैं, विश्वास जो देते हैं विश्वास पूरा करते हैं।
1: चुनाव के बाद भी सदन में सांसदों की संख्या घट बढ़ सकती है, ऑपरेशन टाइगर। खैर, अब बात करेंगे राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के बड़ी खबर की। चढ़ावा चोरी मामले में यूपी सरकार की एसआईटी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। चढ़ावा चोरी से जुड़ी 4 अलग अलग याचिकाएं कोर्ट में दाखिल की गई है, इनको लेकर आज सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जुलाई को इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति जताई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी को अदालत के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी मनीष यादव ने यह स्वीकार किया है कि नौकरी लगने के बाद से उसने चढ़ावा चोरी शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं, यह भी खुलासा हुआ है कि चढ़ावा चोरी की जानकारी टिन्नू यादव को भी थी।
2: राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बड़े खुलासे हो रहे हैं। एसआईटी की जांच के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी मनीष यादव ने बताया कि नौकरी लगने के कुछ समय बाद ही उसने चढ़ावे की चोरी शुरू कर दी थी। मनीष यादव ने पूछताछ में टिन्नू यादव की भूमिका का भी खुलासा किया है। उसने बताया कि चढ़ावा चोरी की जानकारी टिन्नू यादव को दी जाती थी। इसके साथ ही चोरी के पैसों से महंगे उपहार और जमीन खरीदने की भी बात सामने आई है। इस बीच सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर ये है कि पूछताछ में टिन्नू यादव ने स्वीकार किया है कि उसी ने मनीष को नौकरी लगवाई थी और उसे चोरी की पूरी जानकारी उसे रहती थी। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में 2-3 अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं जिनकी भूमिका की जांच की जा रही है। इसके साथ ही टिन्नू यादव ने चंपत राय की आईडी के एक्सेस का इस्तेमाल कर वीआईपी पास बनवाने और लोगों को दर्शन कराने की बात भी कबूल की है। एक तरफ जांच चल रही है, दूसरी तरफ सियासत गरमाई हुई है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि राम मंदिर तो बन चुका है, लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए हमें नया आंदोलन शुरू करना होगा।
9: तरी राम रक्षा करना है आमचा राम भक्तांचा काम है। आम्ही राम रक्षक आहोत, मनामध्ये भाव नाही आणि राम रक्षा म्हणताय म्हणजे मनी नाही भाव आणि देवा मला पाव, हे आमचं हिंदुत्व नाहीये।
2: उद्धव को जवाब देते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कम से कम उद्धव ठाकरे को राम की याद तो आई, अब मामला गरमाया हुआ है। आज तक ब्यूरो।
1: आमतौर पर जांच होती है तो छोटी जांच बड़ी मछलियों तक ले जाती है। इस मामले में बड़ा दिलचस्प हो रहा है ना, अब तक सब कुछ छोटी मछलियों तक सीमित है। बहरहाल, बात करेंगे बड़ी खबर जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है। मोहन यादव कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सोमवार से शुरू हो रहे मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र के दौरान इसे पेश किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट की बैठक के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड 2026 को मंजूरी दे दी है और इसी के साथ साथ असम और उत्तराखंड के बाद अब मध्य प्रदेश वो राज्य बन जाएगा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है, यानी कैबिनेट ने विधेयक को मंजूरी दे दी है जिसे अब सदन में लाया जाएगा।
10: आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को सहर्ष सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान की है। मैं हमारे सभी माननीय मंत्रिमंडल के साथियों के साथ आप सबको भी बधाई देना चाहूँगा। इस विधेयक को 20 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के सत्र में रखने के लिए हमारी कैबिनेट की अनिवार्यता की बाधा या उसकी मदद से हमने इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया है। ये बात सही है कि भारतीय संस्कृति में समानता का भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, ये वेद वाक्य के उद्घोष के साथ होता आया है। हमारे लिए समानता भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कारों का सदैव अभिन्न अंग रहा है।
1: तो भोपाल में मध्य प्रदेश की सरकार को संस्कृति का ध्यान रहा, लेकिन उसी भोपाल से 330 किलोमीटर की दूरी पर छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ चल रहा चिता और जल सत्याग्रह खत्म करा दिया गया। सरकार ने पहले वहां उनकी मांगे नहीं सुनी, तड़के भारी पुलिस बल ने धरना स्थल खाली कराया, 14 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता अमित भटनागर को अस्पताल भेज दिया गया। प्रदर्शनकारी से कार्यवाही नहीं बल्कि गिरफ्तारी बता रहे हैं। छतरपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदित्य पटेल ने गिरफ्तारी से इनकार किया, कह रहे हैं कि किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया और न ही हिरासत में लिया गया है। पन्ना जिले से आए लोगों को बसों से वापस भेज दिया गया। 14 दिनों से अनशन पर बैठे अमित भटनागर की तबीयत को देखते हुए उन्हें मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया। अब पुलिस कह रही है कि जिस अंडरब्रिज के नीचे आंदोलन चल रहा था वहां निर्माण कार्य जारी है, सुरक्षा कारणों से प्रदर्शनकारियों को हटाया गया। केन बेतवा लिंक परियोजना देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। करीब 44,000 करोड़ रुपए की इस योजना से बुंदेलखंड के लाखों लोगों को सिंचाई और पीने का पानी मिलेगा। सरकार का दावा है कि इससे 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि सिंचित होगी, लाखों लोगों को पेयजल मिलेगा। लेकिन परियोजना के लिए छतरपुर और पन्ना के कई गांवों का विस्थापन तय है और इसीलिए मुआवजे की मांग को लेकर कि ये लोग छतरपुर में उसी पानी में न्याय की मांग करने बैठे हैं।
11: भटनागर जी, ये जो व्यवस्था आपने यहाँ लगाई है, ये लगाने की नौबत क्यों पड़ रही है?
12: क्योंकि हम लोग पिछले 5 साल से सरकार से अपनी मांगे रख रहे हैं और हमने सब कुछ हंगर स्ट्राइक से लेके जल सत्याग्रह, खून से पत्र लिखना, सैकड़ों बार आवेदन निवेदन, सारा सब कुछ करके देख लिया। इसके बाद हमने चिता आंदोलन भी किया था अप्रैल में, जिसे 6 तारीख से 15 अप्रैल तक चला और झूठे आश्वासन के बाद तोड़ दिया गया। लेकिन उसके बाद इन्होंने हमको जो है 250 से ज्यादा केसेस लगा दिए। मेरे ऊपर भी एक दर्जन से ज्यादा केसेस हैं। हमारे साथ रहने वाली महिलाएं लड़कियां जो दिव्या अहरवार है उसके ऊपर भी 8 से ज्यादा केस हैं। साबी राजपूत और सारे साथियों पे केसेस हैं। इससे आप गंभीर धाराओं में हम लोग कहीं थे भी नहीं। झूठी झूठी धाराएं, धमकी देना, डराना, मारना, पुलिस के ऊपर मारना, हम लोगों को हिंसा के लिए भड़का रहे, ऐसा कर रहे, जबकि हम तो गांधी को मानते हैं।
13: भारत का पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट यही मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना में केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट एनविजन किया गया। अब जब उसके लिए भूमि अधिग्रहण हो रहा है तो पन्ना और छतरपुर जिले के गांवों के आदिवासी और पिछड़े समुदाय के ज्यादातर लोगों में से वैसे लोग हैं जो चिता आंदोलन कर रहे हैं, जो फांसी आंदोलन कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि या तो न्याय दो या फिर हमें मार दो। इसी तरह की तस्वीरें हर दिन छतरपुर के इस नदी में आपको देखने को मिलता है, जहां पर डौढ़न डैम बनकर आएगा और ये सारा इलाका डूब जाएगा। इन ग्रामीणों का दावा है और आरोप है कि सरकार ने इनके साथ न्याय नहीं किया है, कॉम्पनसेशन कम मिला है। आज तक इकलौता मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल है जो इस वक्त ग्राउंड से आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा है, ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है, ताकि एक और आमरण अनशन देश में हो रहा है। आपने सोनम वांगचुक की कहानी तो दिल्ली में सुनी, लेकिन यहाँ अमित भटनागर है जो हर दिन इसी तरह से केन नदी की ट्रिब्यूटरी में छतरपुर जिले में लेट जाते हैं चिता पर प्रदर्शन करते हुए, ताकि सत्ता में बैठे हुए लोग इन आदिवासी ग्रामीणों की आवाज को सुने, जो कभी सूली पर लटक कर अपनी आवाज पहुंचाते हैं, कभी चेहरे पर मिट्टी लगाकर आवाज पहुंचा रहे हैं। तो महिलाएं चिताओं पर लेट के यहां का जो स्थानीय पेड़ है उसके पत्तों को लेकर लेट कर प्रदर्शन कर रही हैं, मांग कर रही हैं कि उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए, फेयर कॉम्पनसेशन दिया जाए।
1: इसी के साथ रुक रहे ब्रेक के लिए, खबरें जारी, आप देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
15: TuneIn has got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
16: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president. It was
15: to live sports action.
17: To the near side corner, to wrap around, he scores!
15: And your favorite music.
18: You and I stargazing.
15: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
19: YouTube पे आप देखिए आज तक वर्टिकल, अरे भाई फिर घुमा क्यों रहे हो, छोड़ दीजिए घुमाने की आदत। अब देखिए आज तक वर्टिकल।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: क्या है आपके घर की सीढ़ियों का वास्तु शास्त्र से संबंध? आपके घर की सीढ़ियां किस ग्रह से जुड़ी हुई होती हैं? सीढ़ियों के बनाने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपके घर की सीढ़ियों का आपके भाग्य पर क्या है असर? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

विधेयक पेश, वंदे मातरम के अपमान पर होगी 3 साल तक की जेल। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट, आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई।

स्पेन ने 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता, फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। स्पेन के लिए एक्स्ट्रा टाइम में फेरन टोरेस ने गोल किया, इसी के साथ खिताब अपने नाम किया। मैड्रिड में फुटबॉल फैंस ने स्पेन की जीत का जोरदार जश्न मनाया, सड़कों पर लोग उतरे। लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने भारत को 27 रन से हराया, इंग्लैंड ने सीरीज 2-1 से जीत ली। पीवी सिंधु ने इतिहास रच दिया, जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी सिंधु। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, एफसीआरए विधेयक समेत 7 बिल पेश करेगी सरकार। सत्र की शुरुआत सुबह प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से होगी, चढ़ावा चोरी पेपर लीक जैसे कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में जुटा है। आज राज्यसभा में अमित शाह सबसे पहले पेश करेंगे वंदे मातरम बिल, चढ़ावा चोरी पर शोर होना तय है, 13 अगस्त तक ये सत्र चलेगा। मुख्य उद्देश्य ये है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगणमन के सम्मान ही कानूनी सुरक्षा और दर्जा मिले। सत्र से एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक हुई, बैठक में 40 पार्टियों के 58 नेता शामिल हुए। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर में सर्वदलीय बैठक हुई। स्पीकर ओम बिरला सत्र शुरू होने से पहले टीएमसी के 20 सांसदों के एनसीपीआई में विलय पर अंतिम फैसला ले सकते हैं। फिलहाल लोकसभा में 540 सीटें हैं जबकि 3 सीटें खाली हैं, बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास अभी 298 सीटें हैं। टीएमसी के बागी सांसदों के एनसीपीआई में विलय की मंजूरी पर एनडीए की ताकत कुल मिलाकर 318 हो जाएगी, अगर ऐसा हुआ तो एनडीए 2/3 बहुमत यानी 360 सीटों के करीब पहुंच जाएगा। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। 22 जुलाई को अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ट्रस्ट की अहम बैठक होने वाली है, ट्रस्ट की समितियों के पुनर्गठन और एसआईटी की रिपोर्ट पर इसमें चर्चा की जाएगी। सोना वांगचुक मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, वांगचुक की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सोना वांगचुक को दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वांगचुक को अस्पताल ले जाने का सरकार का फैसला सही था। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि डॉक्टर सोनम की सहमति से ही मेडिकल फैसले लेंगे, फिलहाल सोनम वांगचुक सफदरजंग और एम्स के डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। कानपुर की छात्रा ने एनटीए पर सवाल उठाए, कहा ओएमआर के हिसाब से 609 अंक है लेकिन रिजल्ट में उन्हें सिर्फ 167 अंक मिले हैं। लखनऊ में नकली और अवैध दवाओं के अंतर्राज्यीय नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है, अमीनाबाद के गोदाम से करीब 21 लाख रुपए की संदिग्ध दवाएं सीज कर ली गई हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जोरदार बारिश के चलते हालात खराब, उफान पर नदियों का पानी। राजौरी के निचले इलाकों में बारिश और नदी का पानी बढ़ गया, बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। राहत और बचाव दल को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है, संवेदनशील इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है। बाढ़ के चलते भारतीय सेना ने राजौरी में तेजी से अभियान चलाया, 11 नागरिकों को बाढ़ से सुरक्षित बाहर निकाला। राजौरी में प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जरूरत हो तभी घरों से बाहर निकलें। तो चलिए विस्तार से खबरों की चर्चा करेंगे और शुरुआत करेंगे राजनीति से जुड़ी खबरों की, क्योंकि संसद का आज मानसून सत्र शुरू हो रहा है जिसके पूरी तरह हंगामेदार होने के आसार हैं। सरकार एफसीआरए संशोधन, आयकर संशोधन समेत कुल 7 कानून पेश कर सकती है, जबकि नीट पेपर लीक, सोनम वांगचुक का प्रदर्शन, राम मंदिर चंदा चोरी और इथेनॉल मिले पेट्रोल के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। इसकी वानगी एक दिन पहले ऑल पार्टी मीटिंग में दिख चुकी है, तो सरकार जहां 7 कानून लाएगी, विपक्ष ताजा मुद्दों पर, उन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा जिसको लेकर के इस समय सबसे ज्यादा शोर है, सबसे ज्यादा चर्चा है। तो आखिर संसद का मानसून सत्र है, सरकार कौन से कानून लाएगी हम आपको ये भी बता देते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि हंगामा पूरा होना वाला

0: संसद का मानसून सत्र में जो पहला कानून पहला बिल सरकार लाएगी उसके बाद एक विदेशी योगदान विधिनियम जिसको कहते हैं एफसीआरए अमेंडमेंट बिल जो है 2026 ये वो बिल है जो सरकार लेकर के आएगी। आयकर संशोधन बिल जो नियमों में बदलाव होने वाले 2026 ये भी एक संशोधन बिल है यानी 7 में से 5 कानून नए होंगे। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन बिल ताकि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाई जा सके वो एक अमेंडमेंट आएगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल 2026 ये सरकार लाने की तैयारी में है। राष्ट्रीय सम्मान अपमान की रोकथाम संशोधन बिल 2026 ये भी सरकार जो है इसी सत्र में लाना चाहती है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विकास संशोधन बिल जो है ये भी लाएगी और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 ये जो है इसमें भी संशोधन होना। तो सरकार ये वो तमाम बिल है जो इस सत्र में लाने की तैयारी कर रही है। लेकिन अब बात संसद में पेश होने वाले अहम बिल की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सत्र के दौरान राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पेश करेंगे। इस प्रस्तावित कानून का मकसद क्या है? इसका मकसद है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को वो कानूनी दर्जा और सुरक्षा मिले जो फिलहाल अभी राष्ट्रगान जो कि जनगण मन को मिली हुई है। राष्ट्रगान को एक अलग सुरक्षा दर्जा है और अब अगर ये बिल जब अधिनियम बन जाएगा कानून बन जाएगा तो इसे राष्ट्रीय सम्मान अपमान की रोकथाम एक्ट में बदलाव करेगा यानी वंदे मातरम का दर्जा जनगण मन के बराबर होगा। इसका मकसद सरकार का कहना यह है कि वंदे मातरम का अपमान करना एक सजा वाला अपराध बन जाए, कानूनी सुरक्षा के मामले में इसे राष्ट्रगान के बराबर लाया जा सके। तो प्रस्तावित कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगीत का अपमान करता है, गाने में रुकावट डालता है तो उसे 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो आपको बता देते हैं आखिर कानून में है क्या। वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण मिले जैसे कि जनगण मन होता है उसके सम्मान में खड़े होते हैं, आप उसमें बाधा नहीं डाल सकते, अगर ऐसा होता है तो सजा हो सकती है। अब वही दर्जा वंदे मातरम को मिलेगा जो अभी राष्ट्रीय गीत है। उधर अपमान अनादर पर गायन में बाधा डालना तो इसमें मानसून सत्र कितना हंगामेदार होने वाला है इसकी झलक हम देख चुके हैं। यानी एक दिन पहले कल ही जब सर्वदलीय बैठक हुई उधर वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण मिलने की तैयारी सरकार कर रही है, कानून ला रही है, लेकिन इसी के बीच ज्वलंत मुद्दों पर विपक्ष हंगामा करेगा। दरअसल हुआ क्या, ऑल पार्टी मीटिंग में कई विरोधी दल के सांसदों ने सांकेतिक रूप से बायकॉट कर दिया था। सरकार को यह बता दिया कि आगे लड़ाई और तेज होने वाली है, बेहद हंगामेदार रहने वाला सत्र। कल बवाल क्यों हुआ? 20 बागी तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को मीटिंग में बुलाया गया। जब उन्हें बुलाया गया तो उस पर बवाल मचा, विपक्ष ने सबसे पहले ऑल पार्टी मीटिंग से बायकॉट कर दिया।
1: संसद का मानसून सत्र शांति से बीते इस बात के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। विपक्षी सांसदों के साथ केंद्रीय मंत्रियों की बैठक चल ही रही थी कि मीटिंग के बीच से टीएमसी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद गुस्से में बाहर निकल आए। विपक्षी सांसदों ने सांकेतिक रूप से मीटिंग का बायकॉट किया। हालांकि सभी नाराज सांसद कुछ ही मिनट के अंदर दोबारा मीटिंग में पहुंच भी गए। टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों की नाराजगी साफ थी। सवाल था कि टीएमसी के जिन 20 सांसदों ने बगावत कर पार्टी छोड़ी है उन्हें इस बैठक में क्यों बुलाया गया।
2: द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इन द लिस्ट प्रोवाइडेड बाय द टेबल ऑफिस इज शोन टू बी 28 मेंबर्स। दीज सो कॉल्ड रेबल 20 एमपीस, देयर मर्जर हैज नॉट बीन अप्रूव्ड बाय द स्पीकर।
1: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर टीएमसी के साथ अपनी एकजुटता दिखाई।
3: जिस तरह संविधान को अवहेलना करके टीएमसी के साथ यो कुछ हुआ है, आम आदमी पार्टी के साथ और शिवसेना के साथ उनके समर्थन में संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया।
1: विपक्ष का सवाल साफ है, उनका आरोप है कि किरेन रिजिजू ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल होने का न्योता दिया। रिजिजू का यही न्योता विपक्ष की नाराजगी की वजह है। वैसे टीएमसी का बागी खेमा सर्वदलीय बैठक में बुलाए जाने से खुश दिखा।
4: आज ऑल पार्टी मीटिंग में हमें बुलाया गया, इसीलिए हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमारा जो अलग से हम जुट बने हैं 20 एमपी को उन्हें सम्मान दिया गया।
1: हालांकि सरकार अब विपक्ष से अपील कर रही है कि वो सदन को ढंग से चलाने में मदद करे,
5: सहयोग करें। अगर विरोध भी करना है तो बातों के जरिए ही विरोध करें, हंगामा ना करें, और हम अपने तरफ से पूरा योगदान देंगे, सहयोग करेंगे।
1: सर्वदलीय बैठक के बीच नाराजगी और विरोध से एक बात तो साफ है कि मानसून सत्र के दौरान सदन में शोर शराबा थमने वाला नहीं है। राहुल गौतम के साथ मांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: हंगामा एक और मुद्दे पर हो सकता है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसदों के एकनाथ शिंदे की शिवसेना में विलय को मान्यता दे दी है। 22 जून को शिंदे गुट में शामिल होने का ऐलान करने वाले 6 सांसदों के आवेदन को लोकसभा सचिवालय ने मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद लोकसभा में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के सांसदों की संख्या अब घटकर सिर्फ 3 रह गई है। शिंदे गुट के सांसदों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। इसी के साथ लोकसभा में एनडीए के कुनबे में बढ़ोतरी हो गई है, जबकि इंडिया गठबंधन को भारी नुकसान हुआ है।

0: देखिए अभी टर्मिनोलॉजी कौन सी यूज करनी है, ये 6 MPs UBT को छोड़ शिवसेना में आ गए हैं। शिवसेना की ताकत जो है 7 से 13 हो चुकी है और ये सब जो टेक्निकल चीजें हैं वो माननीय स्पीकर महोदय उसके बारे में देखेंगे और उसके ऊपर काम जो है जारी है। लेकिन आज शिवसेना की ताकत पूरी तरीके से बड़ी है, NDA की ताकत बड़ी है और ये 13 खास जो MPs है वो पूरी तरीके से उनके चुनाव क्षेत्र का हो या महाराष्ट्र के सवाल यहाँ पर उपस्थित करेंगे।
1: जो अभी सांसद वाली बात हो, अभी ये सब ऑपरेशन टाइगर वगैरह आप ही लोगों ने नाम दिया है और मैं तो यही कहूंगा कि जो लोग जुड़ रहे हैं साथ में वो एक विश्वास के साथ जुड़ रहे हैं और जो सांसदों की बात है या पिछले 3-4 सालों में जितने लोग जुड़ रहे हैं साथ में, एक उनको शिवसेना के ऊपर या मुझ पर हमारी टीम पर पूरा भरोसा है कि ये कमिटमेंट को पूरा करते हैं, विश्वास जो देते हैं विश्वास पूरा करते हैं।
2: और अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या चंद रुपए के मोबाइल फोन के लिए कैसे एक शख्स की जान को खतरे में डाल दिया गया। खबर रायपुर से है जहां मोबाइल चोरी के एक आरोपी को चलती ट्रेन से लात मारकर बाहर फेंक दिया गया।
3: पहली नजर में यह तस्वीर हैरान करती है। लाल टी शर्ट पहने यह शख्स ट्रेन में लटका हुआ है, ये कभी भी नीचे गिर सकता है, इसके साथ कभी भी जानलेवा हादसा हो सकता है। रायपुर में उरकुरा मांडर रेलवे सेक्शन के बीच आजाद हिंद एक्सप्रेस में लटके हुए इस आदमी को देखिए। अब दूसरी तस्वीर देखिए, बोगी के भीतर से ये आदमी इसे पकड़ने की कोशिश करता है, जब पकड़ नहीं पाता तो ट्रेन में लटके इस आदमी को लात मारता है। लात मारने के बाद इस आदमी ने ट्रेन का जो हिस्सा पकड़ रखा है ये आदमी उस पर प्रहार करता है। हाथ पर जब लात चला तो ट्रेन से इसका हाथ छूट गया और ये नीचे गिर गया। आरोप है कि ट्रेन में लटके हुए इस आदमी ने लात मारने वाले इस आदमी का मोबाइल चुरा लिया था, लेकिन चोरी करके वो ट्रेन से बाहर जाता तब तक लोग जान गए। बचने के खातिर ये ट्रेन से लटक गया और अपना मोबाइल पाने के लिए इस आदमी ने इसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। इस तमाशे का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने संज्ञान लिया, लात मारने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और घायल आदमी की तलाश जारी है। महेंद्र नामदेव, रायपुर आज तक।
2: उत्तर प्रदेश में सरकार कानून व्यवस्था को माफिया के खिलाफ कार्रवाई को सबसे बड़ी उपलब्धि बताती है, लेकिन अब आपको लखनऊ की ऐसी खबर बताते हैं जहां दबंगों ने एक शख्स को बेरहमी से पीटा। आरोप यह है कि रंगदारी न देने के चलते ये पिटाई की गई।
3: एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ है, 3 लोग उसे लाठी डंडे और रॉड से मार रहे हैं, ये इस शख्स को बेतहाशा पीट रहे हैं। इस आदमी को इतना पीटा गया कि अचेत हो गया और पीटने वाले दबंग इसे मरा समझकर भाग गए। तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र में पड़ने वाले बजरंग चौराहा की हैं। जिनके पिटाई की जा रही है उनका नाम अखिलेश कुमार है। अखिलेश शाम को अपने घर आ रहे थे तभी कुछ लोगों ने इन्हें घेर लिया और पीटना शुरू कर दिया। कौन थे वो लोग जिन्होंने इन्हें जान से मार डालने की कोशिश की, सुनिए।
4: एक का चेतराम नाम है, एक का विपिन रावत और एक का सूरज रावत।
3: मगर सवाल है क्यों? आरोपियों ने इस कदर इन्हें क्यों पीटा? तो जवाब है कि पीटने वाले ये दबंग अखिलेश कुमार से हर महीने 10,000 रुपए की रंगदारी मांग रहे थे, रंगदारी नहीं दी इसीलिए इन पर जानलेवा हमला हो गया।
4: दबंग टाइप के, गुंडे टाइप के व्यक्ति है वो, अब उनके अंदर क्या मंशा रही होगी हमसे, चेतराम तो वो 10,000 की रंगदारी महीने मांग रहा था।
3: अखिलेश की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, एक आरोपी को हिरासत में भी ले लिया गया है, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। आशीष के साथ अंकित मिश्रा, लखनऊ आज तक।
2: और अब बात करेंगे पहाड़ों पर मानसूनी आफत की। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, टिहरी में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बारिश को देखते हुए टिहरी और चंपावत में आज स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश के लिए रेड वार्निंग दी गई है। भारी बारिश को अलर्ट को देखते हुए कांगड़ा जिला प्रशासन ने 20 और 21 जुलाई को सभी सरकारी और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। दरअसल हिमालय के ज्यादातर इलाकों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन तीनों राज्यों में पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है और ये भी लोगों से कहा है कि वो ऐसी जगहों पर न जाएं जहां लैंडस्लाइड का खतरा हो या फिर बरसाती नाले, उफनती नदियों के आसपास किनारों पर न जाएं, क्योंकि तेज बारिश के चलते फ्लैश फ्लड भी आ सकता है और इसी के साथ साथ लैंडस्लाइड की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। यानी आज 21 जुलाई, 20 जुलाई और कल यानी सोमवार और मंगलवार की ये दो दिन चेतावनी भरे हैं और ऐसे में इन इलाकों में जाने से लोगों को परहेज करना होगा।

0: पहाड़ों पर जमकर कर बरस रहे हैं मानसूनी बादल। उत्तराखंड में लगातार बारिश से बिगड़ रहे हालात। लैंडस्लाइड के चलते उत्तराखंड की कई सड़कों पर मलबा। मैदानों में जहां बारिश का सूखा पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों पर मानसून का प्रचंड रूप देखा जा रहा है। उत्तराखंड के 6 जिलों में कल जमकर बादल बरसे। ये तस्वीर देहरादून के संतला देवी मंदिर के पास की है, जहां बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ जाने के बाद 7 लोगों की जान पर बनाई। नदी के बीच बने टापू पर लोगों को बचाने के लिए SCDRF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और उन्हें बचा लिया। देहरादून का IT पार्क भी बारिश के प्रचंड रूप से अछूता नहीं रहा। भारी बारिश के बाद पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। लोगों को गाड़ियां चलाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड के दूसरे इलाकों में भी भारी बारिश का दौर जारी है। टिहरी में हो बारिश के चलते इलाकों में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं बारिश के साथ साथ पहाड़ों से हो रही लैंडस्लाइड के चलते उत्तराखंड के लोगों में दहशत का माहौल है। मालदेवता इलाके के सिल्ला मोटर मार्ग पर लैंडस्लाइड होने से आवाजाही प्रभावित हुई है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
1: आफत की बारिश जम्मू कश्मीर में भी हुई। राजौरी जिले का हाल आपको दिखाते हैं, जहां देर रात बादल फटने से भारी तबाही मची। नदी नाले उफान पर कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। लगातार हो रही बारिश के बीच ये संकट भी बढ़ता जा रहा है।
2: मूसलाधार बारिश के बाद नदी में ऐसा सैलाब उठा कि हाहाकार मच गया। शोर मचाते हुए लहरें तेजी से बढ़ी और फिर रास्ते में ऐसी तबाही मचाई कि हर ओर बर्बादी का मंजर बिखर गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश ने कैसी तबाही मचाई है, वो इन तस्वीरों से साफ नजर आ रही है। गाड़ियां एक के ऊपर एक चढ़ी हुई हैं। हालात ऐसे हैं कि मानो हर गाड़ी कबाड़ बन गई है। तस्वीरों से साफ समझा जा सकता है कि आखिर अचानक आई बाढ़ राजौरी में कैसी आफत लेकर आई है। बताया जा रहा है कि राजौरी में रात करीब 1 बजे जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद यहां अचानक बाढ़ आ गई। बेला इलाके में बस स्टैंड पूरी तरह बर्बाद हो गया।
3: यहां पर बस स्टैंड हुआ करता था, लेकिन नदी का ऐसा पानी जो है वो तूफान लेकर यहाँ पर पहुंचा, जिस कारण तबाह बर्बाद हो चुका है ये पूरा राजौरी का बस अड्डा, न्यू बस स्टैंड।
2: बेला इलाके में चारों ओर मलबा है। लोग डरे हुए हैं, नदी के उफान को देखकर खौफजदा हैं। मॉनसून वाले संकट के बीच फिर से तबाही का डर सता रहा है।
4: खौफ बहुत ज्यादा था, हमने सोचा पत्नी कौन से राजौरी बह गया सारा, लेकिन अल्लाह का बड़ा कर्म है कि हमने घुमा हूँ सारा तरफ, मैं देख के आया हूँ। मैं भी इधर जा रहा था तो ये मैंने देखा कि हालात बड़े कोई कंट्रोल कर लिया, फिर भी पुलिस आगे पीछे घूम रही है। बड़े लोग जो बड़े संजीदा लोग हैं वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आगे पीछे जाने की कोशिश मत करो।
2: बेला इलाके में कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है, सड़कें भी बह गई हैं। भारी बारिश के बीच बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं।
3: आपको हम दिखा रहे हैं, यही वो नदी है सतलुज नदी जो उफान पर थी रात को, और इस नदी के उफान पर आने के बाद कई गाड़ियां इसकी जद में आ गई। मैं जूम करके दिखाऊंगा, वो सामने आप देख सकते हैं वो ट्रक है, गाड़ी है, किस तरह से फंसी हुई है नदी के बीच में।
2: मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिन राजौरी में मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है, लिहाजा प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी गई है, ताकि ये आसमानी आफत लोगों की जिंदगी पर संकट ना बन सके। राजौरी से शक्ति शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
1: तो आपको ये भी बता दें कि आज भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। उधर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश ने कहर बरपाया। बारिश में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। पुंछ में 10 लोगों की जान गई, जबकि एक मौत राजौरी में हुई है। जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं।
0: लहरों का ये शोर डरा रहा है, साथ ही उस खतरे का भी साफ इशारा कर रहा है जो इन लहरों के साथ पुंछ के तमाम इलाकों में बढ़ता जा रहा है। देर रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश पुंछ के लोगों के लिए आफत लेकर आई है। कहीं पुल तबाह हो गए हैं, कहीं घरों को नुकसान पहुंचा है। मानसूनी प्रहार से पूरे पुंछ जिले का हाल बेहद बुरा है। इन तस्वीरों को देखिए, बारिश के मौसम में जो दीवार पुल की हिफाजत के लिए बनाई थी, वो देर रात आए उफान के साथ बहती चली गई, जिसके बाद इस पुल पर भी खतरा मंडरा रहा है। पुंछ में तेज बारिश के बीच नदी का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंचा, लोगों को भारी नुकसान हुआ। अब वहां से बर्बादी की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं।
5: और आप देख सकते हो कि कितना लॉस हो गया। अब हम इसी से हमारा घर चलता है, यही सारा लॉस हो गया तो हम कैसे करेंगे।
0: सिर्फ पुंछ और राजौरी पर ही मानसून की मार नहीं पड़ी है, बल्कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। किश्तवाड़ की इन तस्वीरों को देखिए, नदी का उफान साफ बता रहा है कि यहाँ संकट का दायरा किस तरह बढ़ता जा रहा है। जो इलाके नदी के किनारे बसे हैं, वो खतरे से सबसे ज्यादा घिरे हैं। बारिश के बीच जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर लैंडस्लाइड ने भी मुसीबत बढ़ा दी है। रास्ते बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिन जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में बारिश का हाल कुछ ऐसा ही रहने वाला है, जो लोगों का संकट और ज्यादा बढ़ा सकता है। आज तक ब्यूरो।
1: तो अगर आप भी पहाड़ी इलाकों की ओर यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो सतर्क रहें, मौसम से जानकारी ले लें और कम से कम दो दिनों के लिए यात्रा जहां तक हो सके स्थगित करें। रुक रहे ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: घर की सीढ़ियों का वास्तु शास्त्र से संबंध, आपके घर की सीढ़ियां किस ग्रह से जुड़ी हुई होती हैं, सीढ़ियों के बनाने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपके घर की सीढ़ियों का आपके भाग्य पर क्या है असर, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।
2: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

ने गंवाई वनडे सीरीज, लॉर्ड्स में 27 रनों से मिली हार, काम नहीं आई रोहित शर्मा की शतकीय पारी। आज से संसद का मानसून सत्र, एफसीआरए विधेयक समेत 7 बिल पेश करेगी सरकार, सुबह प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, चढ़ावा चोरी पेपर लीक जैसे कई मुद्दों पर विपक्ष घेरने की तैयारी में जुटा। मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में आज गृहमंत्री अमित शाह करेंगे वंदे मातरम बिल विधेयक पेश, वंदे मातरम के अपमान पर होगी 3 साल तक की जेल। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट, आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई।

आपका आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे आपके घर आपके ऑफिस की सीढ़ियों के बारे में। सीढ़ियों के बारे में ज्योतिष क्या कहता है, वास्तुशास्त्र में सीढ़ियों का महत्व क्या है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

26 दिन सोमवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, शाम के 7:09 तक चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं सीढ़ियों की। वास्तु शास्त्र में और आपके जीवन में सीढ़ियों का क्या महत्व है? देखिए, सीढ़ियां किसी भी घर की उन्नति से संबंध रखती हैं, आपके घर की ऊंचाइयों से इसका संबंध होता है। जो सीढ़ियां ऊपर जाती हैं वही सीढ़ियां नीचे भी आती हैं। तो ये जो सीढ़ियां हैं ये जीवन के उतार चढ़ाव से भी संबंध रखती हैं। अगर सीढ़ियां घर के बाहर बनी हुई हैं तो ये शुक्र से संबंध रखती हैं, और अगर सीढ़ियां घर के अंदर बनी हुई हैं तो ये मंगल से संबंध रखती हैं। देखिए, सीढ़ियों में उतार चढ़ाव होता है, इसलिए कुल मिलाकर सीढ़ियों का संबंध राहु और केतु से होता है। अगर आपके घर में गलत सीढ़ियां गलत तरीके से बनी हुई हैं तो ये आपके जीवन में आकस्मिक समस्याएं पैदा कर देती हैं, आकस्मिक दिक्कतें ले आती हैं। सीढ़ियां अगर गलत बनी हों या सीढ़ियों पर ध्यान न दिया जाए तो इसकी वजह से बिना कारण के आपकी कुंडली के राहु और केतु प्रभावित हो जाते हैं। सीढ़ियों पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वृषभ राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।
मिथुन राशि, व्यर्थ के विवादों से बचें, धन के खर्चों पर ध्यान दें, परिवार में शांति बनाए रखें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके

डॉक्टर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब अगर आप सीढ़ियां बनवाने जा रहे हैं तो सीढ़ियों के निर्माण में किन बातों का ध्यान आपको सबसे ज्यादा रखना चाहिए? देखिए, नैऋत्य कोण में यानी दक्षिण पश्चिम के कोण में साउथ वेस्ट के एंगल में सीढ़ियां सबसे ज्यादा उत्तम मानी जाती हैं। सीढ़ियों का निर्माण उत्तर की तरफ से सीढ़ियां शुरू हों और दक्षिण की तरफ जाएं तो बेहतर होगा, या पूरब की तरफ से सीढ़ियां शुरू हों और पश्चिम की तरफ जाएं तो बेहतर होगा। मुख्य द्वार के सामने ईशान कोण यानी पूरब उत्तर या आग्नेय कोण दक्षिण पूर्व, इन दिशाओं में सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियां जितनी कम घुमावदार होंगी उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। सीढ़ियों का बहुत घुमावदार होना अच्छा नहीं होता, ये जीवन में उतार चढ़ाव बढ़ा देती हैं। और सीढ़ियों के जो फुट स्टेप हैं वो हमेशा चौड़े होने चाहिए, सीढ़ियां चौड़ी होनी चाहिए और सीढ़ियों पर प्रकाश की उत्तम व्यवस्था भी होनी चाहिए। सीढ़ियों के नीचे बाथरूम, स्टोर या जल वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। और सीढ़ियों के नीचे बाथरूम बनाने का मतलब है कि आप अपने घर की महिलाओं को बीमार करेंगे। तो सीढ़ियों के नीचे बाथरूम, स्टोर या जल वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। और भूल कर भी सीढ़ियों के नीचे मंदिर ना बनाएं। वैसे तो सबसे बुरा यही है कि सीढ़ियों के नीचे आप टॉयलेट या बाथरूम बना लें, इसके प्रभाव सबसे ज्यादा निगेटिव होते हैं। सीढ़ियों पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर की स्थितियां बेहतर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बनेंगे, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं

वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कन्या राशि, धन की दशा में सुधार होगा, नौकरी की समस्याएं दूर होंगी, किसी मनोरंजक कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अंजनी कुमार मिश्र ने हमें लिखा है, लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 जुलाई 1980। जन्म का समय रात में 9:35। जन्म का स्थान है प्रयागराज। अंजनी कह रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी में हूं, अभी गवर्नमेंट जॉब करता हूं और नौकरी में मेरे बहुत दिक्कतें आ रही हैं। हमेशा उच्चाधिकारी के साथ तालमेल की दिक्कतें पैदा होती हैं जिस वजह से नौकरी में दिक्कतें बनी रहती हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरी नौकरी की समस्या हल हो जाए। अंजनी जी, आपकी कुंडली में सूर्य की नकारात्मक स्थिति आपकी समस्या के लिए जिम्मेदार है। हालांकि देखो, नौकरी आपकी चलती रहेगी थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ। आप ऐसा करिए, एक एडजस्टमेंट के लिए अपने स्वभाव के लिए एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा के प्रार्थना करें कि मेरा करियर, ऑफिस में मेरे संबंध बेहतर हो, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपको पहले से जानकारी ना रही हो, सीढ़ियां गलत बन गई हैं, तो क्या उपाय करेंगे? सीढ़ियों का रंग, उसके फुट स्टेप का रंग अगर आप सफेद रखें, अगर आप व्हाइट रखें तो बहुत अच्छा होगा। और सीढ़ियों के साथ वाली जो दीवार है, सीढ़ियों के साथ जो दीवार ऊपर जा रही है, उस पर एक लाल रंग का स्वस्तिक लगाइए। अगर सीढ़ियों के नीचे कुछ गलत बना लिया है, कुछ गलत निर्माण करा लिया है, तो वहां पर एक तुलसी का पौधा लगाएं। टॉयलेट अगर है, बाथरूम अगर है, तो उसका प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दें। और सीढ़ियों के नीचे अंधेरा नहीं होना चाहिए, सीढ़ियों के नीचे प्रकाश की उचित व्यवस्था करिएगा। सीढ़ियों की जिस स्टेप पर शुरुआत हो रही है और जिस स्टेप पर सीढ़ियां खत्म हो रही हैं, उस पर एक हरे रंग का डोरमैट रख दीजिएगा। सीढ़ियों के नीचे पढ़ने लिखने की वस्तुएं रख सकते हैं, किताब रखने की व्यवस्था कर सकते हैं, और अगर भारी चीज न रखें तो सामान्य स्टोर भी बना सकते हैं, लेकिन स्टोर में बहुत ज्यादा लोहा या बहुत ज्यादा भारी चीजें आपको नहीं रखनी चाहिए। सीढ़ियों पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है
और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, खान पान का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम बन जाएंगे। शिव जी को अगर एक लोटा जल चढ़ा दें आज तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, उपहार सम्मान की प्राप्ति होगी, करियर में कुछ बदलाव होगा। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब ऐसा हो सकता है कि सीढ़ियों के नीचे आपने कुछ बना रखा हो, टॉयलेट बना लिया हो, मंदिर बना लिया हो, पानी की कोई जगह बना ली हो, कुछ गलती बड़ी कर दी हो सीढ़ियों के नीचे कंस्ट्रक्शन करने में, तो क्या उपाय करेंगे? अगर सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बन गया है तो उसका प्रयोग करना पूरी तरह से बंद कर दें। अगर उसको पूरी तरह से हटा सकें तो ज्यादा बेहतर होगा। और जब तक ना हटाएं तब तक टॉयलेट में एक नीले रंग का 0 वॉट का बल्ब लगा दें जो लगातार जलता रहे, ताकि उसका बुरा प्रभाव आपके घर की महिलाओं के ऊपर ना पड़े। अगर सीढ़ियों के नीचे कोई भारी चीज है, आपने भारी लोहे की वस्तु रखी है या बिजली का सामान रखा है तो कृपा करके उसको हटा दीजिएगा। सीढ़ियों के नीचे के स्थान को अगर आप खाली रखें, अगर आप एम्प्टी रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, यहां पर किताबें रख सकते हैं, पढ़ने लिखने की जगह बना सकते हैं, टेबल लगा सकते हैं। और इस स्थान पर प्रकाश की व्यवस्था आपको जरूर करनी चाहिए। सीढ़ियों के नीचे का स्थान अंधेरा नहीं होना चाहिए। देखिए, सीढ़ियों में गड़बड़ी को ठीक किया जा सकता है, लेकिन सीढ़ियों के नीचे अगर आप गड़बड़ी करते हैं तो उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन अगर उसको ठीक नहीं करेंगे तो घर में बीमारियां आएंगी, और खास तौर से जो घर से जुड़ी हुई महिलाएं हैं वो लगातार बीमार होती चली जाएंगी।
कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी, परिवार में व्यस्तता बढ़ी रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम।

ध्यान बनाए रखें। परिवार को लेकर चिंता हो सकती है, दूसरों के चक्कर में ना पड़ें। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाब।

अच्छी पारिवारिक समस्या हल होगी, नौकरी में अनुकूलता आएगी, रिश्तों की स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि जो लकड़ी की सीढ़ी होती है या मेटल की सीढ़ी दीवार से टिकाकर अगर खड़ी हो तो उसके नीचे से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दुर्भाग्य आपको पकड़ लेता है। क्या ऐसा है? देखिए, पाश्चात्य देशों में, विदेश में ऐसी मान्यता है कि अगर सीढ़ी दीवार से टिकाकर खड़ी हो तो उसके नीचे से जाने पर दुर्भाग्य पकड़ लेता है। भारत में ऐसी कोई मान्यता नहीं है और अनुभव में भी ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया है। ये एक बिना वजह का अंधविश्वास है जिसको मानने की जरूरत नहीं है। अगर आप दीवार पर टिकाकर खड़ी गई सीढ़ी के नीचे से निकलते हैं तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कोई दुर्भाग्य आपका साथ नहीं पकड़ेगा। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 3, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 4, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 5, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 8, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 9, यात्रा के योग बन रहे हैं।

क्या है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात को 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में शिव जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके ऊपर आया हुआ संकट टल जाएगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न छाया जी ने हमें लिखा है और छाया जी हमें बेंगलोर से मेल लिख रही हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 जून 1990। जन्म का समय सुबह के 9:35। जन्म का स्थान है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। छाया कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। छाया, अभी आपके विवाह के योग आने में समय है। फरवरी 2027 के बाद आपके विवाह का योग शुरू होगा और साल 2027 के अंत में आपकी शादी होगी, ये संभावना बनती है। और आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने बालक के साथ होना चाहिए। विवाह करने के पहले एक बार कुंडली मिला लीजिएगा ताकि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें ना आएं। एक पीला पुखराज, लगभग 6-8 रत्ती, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पति वार की प्रातः धारण करें, आपको लाभ होगा। और हर रविवार को दिन के समय में एक बार पार्वती मंगल का पाठ करें या सुनें। ये दो उपाय करें, आपका विवाह जल्दी और बेहतर अवश्य होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, दर्पण में, शीशे में अपना चेहरा देखकर जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज के लिए या चिकित्सा के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो सफेद रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान।

वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा धनु राशि वालों के लिए, करियर में लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे।

आज सावधान रहना होगा, मिथुन राशि वालों को सेहत बिगड़ सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना विशेष है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें।

क्या ना करें। आज सप्तमी तिथि है। आज काले रंग के चीजों के कपड़ों के प्रयोग से बचिएगा और आज जिस भी देवी देवता की पूजा आप करते हैं उनकी पूजा सफेद फूलों से करिएगा, आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन के सिरसजा विश्व विजेता का ताज, न्यूजर्सी में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फुटबॉल की दुनिया का बादशाह बना स्पेन। फेरोन टोरेस बने स्पेन की जीत के हीरो, 106वें मिनट में ऐतिहासिक गोल दागकर अपनी टीम को जीत दिलाई। स्पेन के लिए दूसरा वर्ल्ड खिताब है, 16 साल पहले 2010 में नीदरलैंड को हराकर स्पेन वर्ल्ड चैंपियन बना था। मैड्रिड में फुटबॉल फैंस ने स्पेन की जीत का जोरदार जश्न मनाया, सड़कों पर उतरे। गोल्डन बूट की रेस में भी पिछड़ गए मेसी, 10 गोल के साथ फ्रांस के किलियन एम्बापे ने जीता गोल्डन बूट, मेसी के खाते में सिर्फ गोल। भारत में भी फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन की जीत का जश्न देखने को मिला, हैदराबाद की सड़कों पर उतरे फैंस, जीत की खुशी में जमकर जश्न मनाया। कोलकाता में स्पेन के विश्व विजेता बनने पर फैंस के चेहरे खिले, अर्जेंटीना की हार पर फैंस की आंखें नम हुईं। स्पेन की फतह पर गोवा के पंजीव में फैंस उत्साहित रहे, देर रात तक कैफे में जीत का जश्न मनाते नजर आए प्रशंसक। मुंबई में भी स्पेन की जीत का जश्न देखने को मिला, खुशी में झूमे फैंस, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी सेलिब्रेशन का हिस्सा बने। आईटी कैपिटल बेंगलुरु में भी स्पेन की जीत से गूंजा पूरा इलाका, फैंस ने नाच गाकर अपनी पसंदीदा टीम की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया। लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने भारत को 27 रन से हराया, इंग्लैंड ने सीरीज 2-1 से जीत ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने बेन डिकेट 141 रन की शानदार पारी खेली, जैकब बथेल की मदद से 387 रनों का स्कोर बनाया। इंग्लैंड के जवाब में रोहित शर्मा ने 138 रन की बेहतरीन शतकीय पारी खेली, शुभमन गिल 77 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली ने 50 रन बनाए, 50 लगाई, कोहली 60 पर 74 रन बनाकर आउट हो गए। भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए, जबकि प्रिंस यादव को सफलता 1 विकेट पर मिली। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, एफसीआरए विधेयक समेत 7 बिल पेश करने की तैयारी में है सरकार। सत्र की शुरुआत सुबह प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से होगी, चढ़ावा चोरी पेपर लीक जैसे कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। आज राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह सबसे पहले वंदे मातरम बिल पर विधेयक पेश करेंगे, वहीं चढ़ावा चोरी पर शोर होना तय है, 13 अगस्त तक चलेगा संसद का यह सत्र। वंदे मातरम विधेयक का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन के समान कानूनी सुरक्षा और दर्जा देना। विधेयक के मुताबिक वंदे मातरम के अपमान पर 3 साल की जेल का प्रावधान भी किया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज सत्र शुरू होने से पहले तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों के एनसीपीआई में विलय पर अंतिम फैसला ले सकते हैं।

0: फिलहाल लोकसभा में 540 सीटें हैं, 3 सीटें इसमें खाली हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास अभी 298 सीटें हैं। तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों के एनसीपीआई में विलय की मंजूरी पर एनडीए की ताकत 318 हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो एनडीए 2/3 बहुमत का आंकड़ा पार कर जाएगी। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। वहीं 22 जुलाई को अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की अहम बैठक होने वाली है। ट्रस्ट की समितियों के पुनर्गठन, एसआईटी की रिपोर्ट पर चर्चा भी इस बैठक में की जाएगी। सत्र से एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में 40 पार्टियों के 58 नेता शामिल हुए। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर में यह सर्वदलीय बैठक की गई। इस ऑल पार्टी मीटिंग में टीएमसी के बागियों को बुलाए जाने से विपक्ष भड़क गया, सांकेतिक वॉकआउट भी किया। सूत्रों के मुताबिक संजय झा के बयान पर सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि संकट के पीछे प्रधानमंत्री के दोस्त जिम्मेदार हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि ऑल पार्टी मीटिंग में उत्तर बिहार की बाढ़ का मुद्दा भी गूंजा। संजय झा ने नेपाल से आने वाले पानी पर चिंता जताते हुए हाई डैम को समाधान बताया। सूत्रों से यह भी जानकारी मिली कि बाढ़ पर बिहार के नेताओं की एकजुट मांग की गई है कि उत्तर बिहार के हालात पर अलग से चर्चा की जाए। आरजेडी के अभय कुशवाहा और एलजेपी के अरुण भारती ने इस मुद्दे पर अपना समर्थन दिया। दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। नई दिल्ली में सुरक्षा के मद्देनजर बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, उत्तरी दिल्ली के कई एंट्री पॉइंट्स को हाई सिक्योरिटी जोन में बदला गया है। जंतर मंतर, पार्लियामेंट स्ट्रीट, सेंट्रल विस्टा के करीब अतिरिक्त सुरक्षा बल और रैपिड रिस्पांस टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। सोनम वांगचुक मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। वांगचुक की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सोनम वांगचुक को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वांगचुक को अस्पताल ले जाने का सरकार का फैसला सही था। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि डॉक्टर सोनम की सहमति से ही मेडिकल फैसले लेंगे। फिलहाल सोनम वांगचुक सफदरजंग और एम्स के डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। दतिया में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी का आमना सामना। जीतू पटवारी ने बीजेपी प्रत्याशी पर कसा तंज। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जालंधर के डेरा सचखंड बल्ला में नतमस्तक हुए। संत निरंजन दास महाराज से उन्होंने मुलाकात की। कानपुर की छात्रा ने एनटीए पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ओमार के हिसाब से 609 अंक बनते हैं लेकिन रिजल्ट में 167 अंक ही मिले हैं। लखनऊ में नकली और अवैध दवाओं के अंतर्राज्यीय नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है। अमीनाबाद के गोदाम से करीब 21 लाख रुपए की संदिग्ध दवाएं सीज कर दी गई हैं। पंजाब के मोगा सदर थाने पर ग्रेनेड हमले के मामले में मुख्य आरोपी समेत 13 गिरफ्तार किए गए हैं। 4 महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जोरदार बारिश से हालात उफान पर हैं। नदी नालों का पानी जो है अपने स्तर को पार कर गया है। राजौरी के निचले इलाकों में बारिश और नदी का पानी भरा, बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए जिसके बाद राहत और बचाव दल पूरी तरह से अलर्ट पर है। संवेदनशील इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है। भारतीय सेना ने राजौरी में तेजी से बाढ़ राहत अभियान चलाया। 11 नागरिकों को बाढ़ से सुरक्षित बाहर निकाला। राजौरी प्रशासन ने लोगों से अपील की है, जरूरत होने पर ही घरों से बाहर निकलें। देवभूमि उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। देहरादून में लोगों से गर्मी से राहत तो मिली लेकिन अगले 2 दिन भारी बारिश की संभावना जताई गई है। देहरादून में शानदार मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं लोग। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर टिहरी में आज स्कूल बंद रहेंगे। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन का फैसला। भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव देखने को मिला। ट्रैफिक की रफ्तार भी देहरादून में धीमी हुई। उत्तराखंड के कई इलाकों में जारी रहेगा बारिश का दौर। हरिद्वार, टिहरी में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी आज से मौसम का मिजाज बदलेगा। आईएमडी ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। चंबा में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। भारी बारिश को देखते हुए चंबा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, कुल्लू में चेतावनी जारी की गई है। हाई अलर्ट पर प्रशासन को रखा गया है। लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड का खतरा भी बरकरार है, जिसको लेकर के प्रशासन अलर्ट है। संवेदनशील इलाकों में बचाव दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। राहत बचाव के लिए SDRF NDRF समेत तमाम राहत एजेंसियों को तैयार रखा गया है। अलर्ट मोड पर है पुलिस, फायर सर्विसेज और एम्बुलेंस सेवाएं। हिमाचल प्रदेश में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। प्रशासन ने लोगों से बेवजह यात्रा से बचने, नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। बिहार के मोतिहारी के सुगौली में बाढ़ का खतरा मंडराया है। नेपाल की बारिश से नदियां उफान पर हैं। सड़क पर 1 से 1.5 फीट तक पानी बह रहा है। सूरत में 2 इंच की बारिश में सड़कों पर जलभराव हो गया। पानी भरने से जनता में आक्रोश, जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर में एक कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया, 5 लोगों की जान गई, रेस्क्यू जारी है। इंदौर में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। सड़क किनारे खड़े कई ठेलों को टक्कर मारी। चालक ने भागने के दौरान कई वाहनों को क्षतिग्रस्त किया। गाजियाबाद में स्कूटी की टक्कर को लेकर के 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, पथराव हुआ। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। लखनऊ के इंदिरानगर थाना क्षेत्र में दबंगों ने लाठी डंडों से एक युवक को पीटा, मरा हुआ समझकर मौके से दबंग फरार हो गए। लखनऊ के तालकटोरा थाना इलाके में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश, आरोपी स्कूल वैन चालक को गिरफ्तार किया गया। अलीगढ़ में दूसरी शादी और मकान के नाम पर विवाद, बेटे ने दोस्त के साथ मिलकर पिता को मौत के घाट उतारा। मसूरी में 2 जगह पर्यटकों और स्थानीय लोगों में मारपीट हुई, 7 लोगों पर एक्शन है, पुलिस की जांच जारी है। देहरादून के दून अस्पताल में भारी हंगामा हुआ, इलाज को लेकर तीमारदार और सुरक्षाकर्मी आपस में ही भिड़ गए। गुजरात के अंकलेश्वर में स्कूली रंजिश में छात्रा के परिजन हैवान बन गए, 2 सगी बहनों पर जानलेवा हमला किया, CCTV वायरल, पुलिस जांच में जुटी। राजस्थान के नवविवाहित जोड़े का शव यूपी के बिजनौर के जंगल में पेड़ से लटका पाया गया, 3 महीने की गर्भवती थी महिला। जयपुर में दिन दहाड़े मंदिर जा रही एक महिला के साथ लूटपाट की घटना, चाकू की नोक पर वारदात को अंजाम दिया गया। नागपुर में तेज रफ्तार बाइक सवार ने साइकिल सवार को टक्कर मारी, मौके पर ही उसकी मौत हुई, CCTV वीडियो सामने आया। पटना के मनेर में 2 गुटों में गोलीबारी हुई, 2 लोगों को गोली लगी, कई गिरफ्तार किए गए। भोपाल में दुकान से लौट रही 4 साल की मासूम को स्कॉर्पियो ने रौंद दिया, CCTV में पूरा हादसा कैद हुआ। रायपुर में आजाद हिंद एक्सप्रेस में चोरी के बाद हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, चलती ट्रेन से कूदा संदिग्ध यात्री को भी गिरफ्तार किया गया। रायपुर में एक परिवार के 5 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया, कारोबारी ने पत्नी और 3 बच्चों को जहर देकर खुद को फांसी लगा ली। राजस्थान के डूंगरपुर में चांदीपुरा वायरस की दस्तक, 6 साल की बच्ची की मौत, गांव में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया गया। पूर्वी चंपारण में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ, 500 से अधिक कारतूस बरामद किए गए। सोनीपत के मलिकपुर गांव में मिट्टी में दबा मिला एक नाबालिग लड़की का शव, FSL की टीम जांच में जुटी है। उड़ीसा के संबलपुर में ब्यूटिशियन की किडनैपिंग हत्या की गई, मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में बैटरी चोरी का आतंक देखने को मिला, 1 घंटे में चोरों ने 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों की बैटरियां ले उड़े। नागपुर के कामठी रेलवे स्टेशन के पास दर्दनाक हादसा हुआ, मालगाड़ी की चपेट में आने से 6 हिरणों की मौत हो गई। जयपुर के झालान लेपर्ड रिजर्व में नीलगाय के दमदार तेवर देखकर भागा लेपर्ड, दोनों का आमना सामना देखकर पर्यटक भी दंग रह गए। करनाल का बेटा गंगा बना चैंपियन, अंडर 23 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जकार्ता में जीता गोल्ड मेडल। गंगा ने 55 किलोग्राम वजन कैटेगरी में गोल्ड जीता, 2-2 यूथ चैंपियंस को मात दी। दिल्ली में होने वाले BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने मैस्कॉट और एंथम का अनावरण किया। 17 से 23 अगस्त के बीच इंदिरा गांधी स्टेडियम में BWF चैंपियनशिप होगी, 50 से ज्यादा देशों के 400 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। पूरी रथ यात्रा में अडापा विजय की पवित्र रस्म पूरी की गई, भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा ने गुंडीचा मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर दिया है। प्रयागराज में गूंजा जय जगन्नाथ, इस्कॉन मंदिर ने भव्य रथ यात्रा निकाली। महाराष्ट्र के अकोला में पहली बार भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकली, सड़क पर आस्था का मेला देखने को मिला। जय जगन्नाथ के जय घोष से अकोला गूंज उठा, 31 फीट ऊंचे और 5 टन वजनी रथ को खींचने के लिए हजारों श्रद्धालु सड़क पर उमड़े। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए बड़ी खबर है, खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा पर लगाई गई है अस्थायी रोक। चारधाम यात्रा को रफ्तार मिलेगी, रुद्रप्रयाग में 900 मीटर लंबी टनल बनकर तैयार हो चुकी है। रुद्रप्रयाग में ट्रैफिक जाम से तीर्थयात्रियों को निजात मिलेगी। अलकनंदा नदी पर बन रहे 200 मीटर लंबे डबल लेन पुल से अब इसका काम भी लगभग पूरा हो चुका है। 31 अगस्त तक निर्माण पूरा होने की उम्मीद जताई गई, जिसके बाद इस पर वाहनों का ट्रायल किया जाएगा। जूनागढ़ जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है। गिरनार यात्रा के लिए अब यात्रियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। 18 जुलाई से ट्रायल के तौर पर शुरू हुई नई व्यवस्था, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी रहेगी। दिल्ली के भारत मंडपम में रामायण का रेड कार्पेट इवेंट हुआ, कई सितारों ने इसमें शिरकत की। समारोह में रणबीर कपूर और साई पल्लवी ने शिरकत की। फिल्म रामायण में प्रभु राम और मां सीता का किरदार निभा रहे दोनों। रेड कार्पेट इवेंट में रणबीर कपूर ने लेखक कुमार विश्वास के पैर छुए। इवेंट में फिल्म के ट्रेलर की झलक दिखाई गई। फिल्म रामायण के ट्रेलर इवेंट में पहुंचे एक्टर अरुण गोविल, फिल्म में निभा रहे हैं राजा दशरथ का किरदार। रेड कार्पेट इवेंट में करण जौहर, विवेक ओबेरॉय भी पहुंचे, एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह, अक्षरा सिंह भी मौजूद रहे।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
4: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
5: I have no idea how this election is going to play out,
4: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
6: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
8: सोच बदलो और बैंक भी।
9: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
2: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
3: In association with Hind, बड़े आराम से
4: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
5: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
3: विमल, बोलो जुबा केसरी।
6: उत्तर प्रदेश चुनाव का शंखनाद और इसकी पहली गूंज पंचायत आज तक के मंच पर।
7: इस बार एक नया रिकॉर्ड टूटने वाला है और
6: हैट्रिक का दावा।
7: पहली बार कोई सरकार तीसरी बार लगातार रिपीट करेगी।
6: विश्वास पूरा।
7: प्रतिष्ठित चैनल आज तक के माध्यम से बड़ी बेबाकी से कह सकता हूँ, विकसित उत्तर प्रदेश की संकल्पना को केवल डबल इंजन के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पूरा कर सकती है।
6: चुनाव से पहले सबसे बड़ा राजनीतिक मंच पंचायत आज तक, जहां गूंजती है उत्तर प्रदेश चुनाव की पहली हुंकार।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: जंतर मंतर में जारी प्रदर्शन के बीच अचानक हंगामे की ये तस्वीरें सामने आई। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिप्ते पर एक महिला ने स्याही फेंक दी।
2: जैसे पिछले एक महीने से चला आ रहा है कि स्कूली वसंत उतार होगा, गांधी जी और अम्बेडकर की फोटो के साथ चलेगा, संविधान के रास्ते पर चलेगा।
1: सोनम वांगचुक के जंतर मंतर से हटने के बाद दिपके ने अब भूख हड़ताल का ऐलान किया है। वहीं सोनम वांगचुक की पत्नी का आरोप है कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी जा रही है, डॉक्टरों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। किसी के लिए ये एक जान बचाने की कार्रवाई है, किसी के लिए लोकतंत्र की आवाज को उठाकर ले जाने की तस्वीर। इस तस्वीर ने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया है।
3: ऐसा लगता है कि ये सरकार कितनी निर्दयी है। इस सरकार के पास न तो दिल है, न लोकतंत्र में इस सरकार को भरोसा है। बच्चे मर गए, आत्महत्याएं कर ली बच्चों ने, कोई फर्क नहीं पड़ता।
4: सत्ता का इतना अहंकार, हर व्यक्ति पे लाठी चलाओ, हर व्यक्ति पे गोली चलाओ, हर व्यक्ति पे आंसू गैस के गोले छोड़ो, कभी किसान आंदोलन को कुचलो।
5: अगर इतनी उनके प्राण की आपको अहमियत थी तो आप बात करनी चाहिए थी, कुछ बातें माननी चाहिए थी, कोई डेलीगेशन आना चाहिए था।
6: जिस तरह से दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पे जाके सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गई है, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है।
1: उधर बीजेपी का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया गया है। वहीं राहुल गांधी के ना जाने पर भी बीजेपी सवाल खड़े कर रही है।
7: इस तरीके का प्रदर्शन करने से, एक व्यक्ति को भूख हड़ताल पे बैठा देने से क्या ये चीजें बदल जाएंगी? आप सुझाव दीजिए ना, चर्चा कीजिए, संवाद कीजिए। आपने सीधा एक तथा कथित एक पार्टी का आपने निर्माण किया, क्या है पार्टी का एजेंडा?
1: शुरुआत हुई थी पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कॉकरोच पार्टी के मंच पर राजनीति का रंग भी गहराता गया। कई विपक्षी नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन में सोनम वांगचुक से मिलने आए और सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया। उन नेताओं में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, नगीना की लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद, सीपीएम नेता वृंदा करात भी शामिल हैं।
8: सोनम वांगचुक
9: वीस दिवस
8: होते। आता सरकार ने आदित्य त्यांचा अंत पाहू नये हो ना काय म्हणायचं म्हणा, पण चर्चा करायला काय हरकत।
1: समर्थकों ने इसे लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी बताया। तो क्या छात्रों के भविष्य की लड़ाई का मंच धीरे धीरे राजनीतिक और वैचारिक अखाड़ा बन गया? सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके और उनके साथियों ने अनशन शुरू कर दिया है। अब ऐसे में सवाल कि इस आंदोलन का अंजाम क्या होगा? क्या ये राजनीति के ब्लैक होल में समा जाएगा या फिर इसका कोई ठोस निष्कर्ष निकलेगा? आज तक ब्यूरो।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

फिर से बना फुटबॉल का बादशाह। फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में गोल दागा। फ्रांस के एम्बापे ने मेसी को पछाड़ कर जीता गोल्डन बूट। आज से संसद का मॉनसून सत्र। एफसीआरए विधेयक समेत 7 बिल पेश करेगी सरकार। सुबह पीएम मोदी का संबोधन। चढ़ावा चोरी, पेपर लीक जैसे कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में विपक्ष। मॉनसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में आज गृहमंत्री अमित शाह पेश करेंगे वंदे मातरम बिल। वंदे मातरम के अपमान पर होगी 3 साल तक की जेल। बढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई।

0: निशाना बना रहे हैं तेहरान के ड्रोन, अमेरिका ने किया रात भर हमले का दावा, कहा ईरान को तबाह कर दिया।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बड़े खुलासे हो रहे हैं। एसआईटी की जांच के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी मनीष यादव ने बताया कि नौकरी लगने के कुछ समय बाद ही उसने चढ़ावे की चोरी शुरू कर दी थी। मनीष यादव ने पूछताछ में टिन्नू यादव की भूमिका का भी खुलासा किया है। उसने बताया कि चढ़ावा चोरी की जानकारी टिन्नू यादव को दी जाती थी। इसके साथ ही चोरी के पैसों से महंगे उपहार और जमीन खरीदने की भी बात सामने आई है। इस बीच सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर ये है कि पूछताछ में टिन्नू यादव ने स्वीकार किया है कि उसी ने मनीष को नौकरी लगवाई थी और उसे चोरी की पूरी जानकारी उसे रहती थी। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में दो तीन अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं जिनकी भूमिका की जांच की जा रही है। इसके साथ ही टिन्नू यादव ने चंपत राय की आईडी के एक्सेस का इस्तेमाल कर वीआईपी पास बनवाने और लोगों को दर्शन कराने की बात भी कबूल की है। एक तरफ जांच चल रही है, दूसरी तरफ सियासत गरमाई हुई है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि राम मंदिर तो बन चुका है लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए हमें नया आंदोलन शुरू करना होगा।
1: तरी राम रक्षा करना है आमचा राम भक्तांचा काम है। आम्ही राम रक्षक आहोत। मनामध्ये भाव नाही आणि राम रक्षा म्हणताय म्हणजे मनी नाही भाव आणि देवा मला पाव हे आमचं हिंदुत्व नाहीये।
0: उद्धव को जवाब देते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कम से कम उद्धव ठाकरे को राम की याद तो आई, अब मामला गरमाया हुआ है। आज तक ब्यूरो।

0: संसद का मॉनसून सत्र शांति से बीते इस बात के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। विपक्षी सांसदों के साथ केंद्रीय मंत्रियों की बैठक चल ही रही थी कि मीटिंग के बीच से टीएमसी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद गुस्से में बाहर निकल आए। विपक्षी सांसदों ने सांकेतिक रूप से मीटिंग का बायकॉट किया। हालांकि सभी नाराज सांसद कुछ ही मिनट के अंदर दोबारा मीटिंग में पहुंच भी गए। टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों की नाराजगी साफ थी। सवाल था कि टीएमसी के जिन 20 सांसदों ने बगावत कर पार्टी छोड़ी है, उन्हें इस बैठक में क्यों बुलाया गया।
1: द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इन द लिस्ट प्रोवाइडेड बाय द टेबल ऑफिस इज शोन टू बी 28 मेंबर्स। दीज सो कॉल्ड रेबल 20 एमपीस, देयर मर्जर हैज नॉट बीन अप्रूव्ड बाय द स्पीकर।
0: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर टीएमसी के साथ अपनी एकजुटता दिखाई।
2: जिस तरह संविधान को अवहेलना करके टीएमसी के साथ यो कुछ हुआ है, आम आदमी पार्टी के साथ और शिवसेना के साथ उनके समर्थन में संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया।
0: विपक्ष का सवाल साफ है। उनका आरोप है कि किरेन रिजिजू ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल होने का न्योता दिया। रिजिजू का यही न्योता विपक्ष की नाराजगी की वजह है। वैसे टीएमसी का बागी खेमा सर्वदलीय बैठक में बुलाए जाने से खुश दिखा।
3: आज ऑल पार्टी मीटिंग में हमें बुलाया गया, इसीलिए हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमारा जो अलग से हम जुट बने हैं 20 एमपी को, उन्हें सम्मान दिया गया।
0: हालांकि सरकार अब विपक्ष से अपील कर रही है कि वो सदन को ढंग से चलाने में मदद करें,
4: सहयोग करें। अगर विरोध भी करना है तो बातों के जरिए ही विरोध करें, हंगामा ना करें, और हम अपने तरफ से पूरा योगदान देंगे, सहयोग करेंगे।
0: सर्वदलीय बैठक के बीच नाराजगी और विरोध से एक बात तो साफ है कि मॉनसून सत्र के दौरान सदन में शोर शराबा थमने वाला नहीं है। राहुल गौतम के साथ मानशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
5: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर, सुबह के 8 बजे। और अब वक्त है खास बुलेटिन सुपर 8 का। इस बुलेटिन में तमाम अहम खबरें आपको बताएंगे। इसमें बताएंगे कि संसद के मॉनसून सत्र के हंगामेदार होने के कैसे पूरे आसार नजर आ रहे हैं। आपको ये भी बताएंगे कि क्या है विपक्षी एक्शन प्लान। साथ ही एक खबर उद्धव को लगे झटके की भी होगी, पूरी डिटेल आपको आगे देंगे। साथ ही अपडेट देंगे कि सोनम वांगचू की तबीयत अभी फिलहाल कैसी है। वही खबर मॉनसून वाली मुसीबत की भी आपको दिखाएंगे, कहां पर सैलाब में जिंदगी फंस चुकी है। और ईरान पर अमेरिका के ताजा हमले की भी बड़ी अपडेट आपको देंगे। साथ ही अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी पलटवार की खबर भी आगे दिखाएंगे। और आखिर में बात फुटबॉल की भी होगी, नए बादशाह स्पेन की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं देश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर। दरअसल संसद का आज से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, ऐसे में इसके हंगामेदार होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। सरकार जहां पर एफसीआरए संशोधन, आयकर संशोधन समेत कुल 7 बिल पेश करने की तैयारी में है, तो वहीं नीट पेपर लीक, सोनम वांगचुक के प्रदर्शन और राम मंदिर चढ़ावा चोरी और साथ ही पेट्रोल जैसे कई मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी संसद भवन के द्वारा मीडिया को संबोधित भी करेंगे और मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। साथ ही 25 दिन के सेशन के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में कुल 19 बैठकें भी होंगी। तो आज मॉनसून सत्र का पहला दिन होगा जो कि उम्मीद की जा रही है काफी हंगामेदार रह सकता है यह सत्र, क्योंकि इससे पहले कई बैठकें विपक्ष द्वारा की गई और रणनीति बनाई गई है कि सरकार को किस तरीके से मॉनसून सत्र के दौरान घेरा जाए। तो आज से शुरू हो रहा है संसद का मॉनसून सत्र, एफसीआरए समेत 7 बिल आज सरकार पेश कर सकती है और वही इसको लेकर विपक्ष भी तमाम मुद्दे आज सत्र के दौरान उठा सकता है। 7 बिल में से 5 नए बिल सरकार पेश करेगी। तो हंगामेदार होने के पूरे आसार इस सत्र के नजर आ रहे हैं। एफसीआरए संशोधन, आयकर संशोधन समेत कुल 7 बिल पेश करने की तैयारी में है सरकार।
6: आज से संसद का मॉनसून सत्र, आयकर संशोधन समेत 7 बिल पेश करेगी सरकार। नीट पेपर लीक से चढ़ावा चोरी तक तकरार के आसार। आज से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलने वाला मानसून सत्र सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों के लिए कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। एक तरफ लोकसभा में बदले राजनीतिक समीकरण से सरकार को बड़े विधेयकों को आगे ले जाने का मौका दे सकता है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के पास सरकार को घेरने के कई मुद्दे हैं। मानसून सत्र में FCRA संशोधन, आयकर संशोधन समेत कुल 7 बिल पेश किए जाएंगे। 7 में से 5 नए बिल हैं। FCRA पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच सबसे ज्यादा टकराव होने की संभावना है। इसके अलावा सरकार इस सत्र में वंदे मातरम बिल, सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 भी पेश करेगी। बजट सत्र के बाद मानसून सत्र में राजनीतिक तस्वीर काफी बदल गई है। विपक्ष की चुनावी हार, दल बदल और इंडिया गठबंधन टूट से कमजोर दिख रहा है। वहीं NDA का संख्याबल बढ़ चुका है। 540 सीट वाले लोकसभा में बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA के पास अभी 298 सीटें हैं। वहीं TMC के बागी सांसदों के NCPI में विलय की मंजूरी पर NDA की ताकत 318 हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो NDA 2/3 बहुमत यानी 360 सीटों के करीब पहुंच जाएगा, जिसके चलते उसकी ताकत सदन में मजबूत हो जाएगी। आज तक ब्यूरो।
5: तो संसद के मानसून सत्र को लेकर एक और बड़ी खबर। दरअसल संसद सत्र के शुरू होने से पहले इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक होने वाली है। सुबह 10 बजे संसद भवन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में ये मीटिंग होगी और सूत्रों के माने तो मानसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तो सत्र शुरू होने से कुछ ही देर पहले 10 बजे बैठक होने वाली है संसद भवन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में ये मीटिंग होगी। वहीं सूत्रों की माने तो मानसून सत्र में सरकार को घेरने की पूरी रणनीति तय इस बैठक में की जाएगी। मल्लिकार्जुन और साथ ही 10 बजे इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में ये मीटिंग होगी। तो संसद सत्र के शुरू होने से पहले इस बैठक के कई मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। सरकार को घेरने की पूरी रणनीति इस बैठक में तैयार की जाएगी और कई मुद्दों पर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। इससे पहले भी कई बैठक हुई है। मानसून सत्र शुरू होने से पहले दिल्ली में भी बैठक हुई थी और आज 10 बजे तकरीबन मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में ये मीटिंग होने वाली है, जहां पर कई मुद्दों पर चर्चा होगी और सरकार को कैसे आज सत्र के दौरान घेरा जाए उसकी तैयारी भी।

0: चलिए अब आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से अहम बिल हैं जिन्हें सरकार इस सत्र में पेश करने की तैयारी में है। दरअसल विदेशी योगदान संशोधन बिल 2026 आज सरकार पेश करेगी, साथ ही आयकर बिल 2026 को भी पेश किया जाएगा। और इस सत्र में 7 बिल पेश किए जाएंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट संशोधन बिल यानी न्यायाधीशों की संख्या को लेकर भी ये बिल पेश किया जाएगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण बिल 2026 पेश होगा, तो आज ये बिल पेश हो सकते हैं ऐसा माना जा रहा है। राष्ट्रीय सम्मान अपमान की रोकथाम संशोधन बिल 2026 भी पेश किया जा सकता है। तो संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो जाएगा जिसमें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन बिल 2026 आज पेश किया जा सकता है। वहीं विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 को लेकर भी आज चर्चा की जा सकती है। जिन बिल को सरकार पेश करने की तैयारी में है उनमें से एक है वंदे मातरम बिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में वंदे मातरम से जुड़ा बिल पेश करने वाले हैं। प्रस्तावित कानून का मकसद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को वही कानूनी और कानूनी सुरक्षा देना है जो अभी राष्ट्रगान जनगण मन को मिली हुई है। अगर ये बिल लागू होता है तो ये राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम एक्ट के में बदलाव करेगा ताकि वंदे मातरम का अपमान करना एक सजा वाला अपराध बन जाए और कानूनी सुरक्षा के मामले में इसे राष्ट्रीय गान के बराबर ही लाया जा सके। तो प्रस्तावित कानून के तहत अगर कोई भी व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रीय गीत का अपमान करता है या गाने में रुकावट डालता है तो उसे 3 साल तक की जेल भी हो सकती है, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। राज्यसभा में यह बिल पेश किया जाएगा, आज पेश होगा वंदे मातरम से जुड़ा एक बिल। तो उधर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज सत्र शुरू होने से पहले टीएमसी के 20 सांसदों के एनसीपीआई में विलय पर अंतिम फैसला ले सकते हैं। दरअसल एनसीपीआई के 20 सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने का फैसला लिया है और स्पीकर ओम बिरला ने टीएमसी छोड़ने वाले 20 बाकी सांसदों के लिए अलग सीटों का इंतजाम भी किया है। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक 20 बागी टीएमसी सांसदों को अलग बैठाने के लिए सिटिंग प्लान में बदलाव किया गया है ताकि इस फैसले के बाद कुल 39 सांसदों की सीटें बदली गई हैं। वहीं अधिकारियों का यह भी कहना है कि बागी सांसदों को एक साथ अलग जगह देने के लिए दूसरे सांसदों की सीटें भी बदलनी पड़ी। इस बदलाव का असर कई नेताओं पर भी पड़ा है। लोकसभा में टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी की सीट भी बदल गई है। अब बात कर लेते हैं शिवसेना से जुड़ी एक बड़ी खबर की। दरअसल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसदों के एकनाथ शिंदे की शिवसेना में विलय को मान्यता दे दी है और 22 जून को शिंदे गुट में शामिल होने का ऐलान करने वाले 6 सांसदों के आवेदन को लोकसभा सचिवालय ने मंजूरी भी दे डाली है। इस फैसले के बाद लोकसभा में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के सांसदों की संख्या घटकर अब सिर्फ 3 रह गई है जबकि शिंदे गुट के सांसदों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। इसके साथ ही लोकसभा में एनडीए के कुनबे में बढ़ोतरी भी हुई है जबकि इंडिया गठबंधन को भारी नुकसान पहुंचा है। 6 बागी सांसदों के शिंदे गुट में विलय को मान्यता मिली है।
1: जो अभी सांसद वाली बात हो, अभी ये सब ऑपरेशन टाइगर वगैरह आप ही लोगों ने नाम दिया है और मैं तो यही कहूंगा कि जो लोग जुड़ रहे साथ में वो एक विश्वास के साथ जुड़ रहे और जो सांसदों की बात है या पिछले 3-4 सालों में जितने लोग जुड़ रहे साथ में, एक उनको शिवसेना के ऊपर या मुझ पर हमारी टीम पर पूरा भरोसा है कि ये कमिटमेंट को पूरा करते हैं, विश्वास जो देते हैं विश्वास पूरा करते हैं।
0: और अब बात कर लेते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च को लेकर एक बड़ी खबर। दरअसल सीजेपी के संसद मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है और सुबह 9 बजे से जंतर मंतर से ये मार्च शुरू होने वाला है। हालांकि ताजा जानकारी के मुताबिक अब तक दिल्ली पुलिस की ओर से संसद मार्च की कोई भी इजाजत नहीं मिली है। फिलहाल धरना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस वाले तैनात कर दिए गए हैं। नई दिल्ली में सुरक्षा के मद्देनजर बीएनएसएस की धारा 163 भी लागू कर दी गई है। साथ ही नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, उत्तरी दिल्ली के कई एंट्री पॉइंट्स को भी हाई सिक्योरिटी जोन में बदल दिया गया है। जंतर मंतर, पार्लियामेंट स्ट्रीट, सेंट्रल विस्टा के करीब अतिरिक्त सुरक्षा बल और साथ ही रैपिड रिस्पांस टीमें भी तैनात की गई हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से नई दिल्ली को 15 जोन में बांटा गया है, जहां पर सीपीएफ की 25 बटालियन सहित 5000 से अधिक जवान भी तैनात रहेंगे। संवेदनशील इलाकों और मेट्रो स्टेशन की बात करें तो वहां पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अंशुल जुड़ गए हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। अंशुल, इजाजत तो अभी भी नहीं दी गई है पुलिस की ओर से संसद मार्च के लिए, लेकिन माना जा रहा है कि 9 बजे से मार्च शुरू हो जाएगा।
2: जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि 9 बजे से मार्च जो है शुरू हो जाएगा। हालांकि दिल्ली पुलिस ने ये कहा है कि अभी तक ना ही उनसे इजाजत मांगी गई है और ना ही उन्होंने इजाजत दी है, लेकिन कल देर शाम से ही जो यहाँ जंतर मंतर पे जो धरना स्थल है वहाँ पे लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। अगर मैं आपको यहाँ तस्वीरों में दिखाऊँ तो कल देर शाम से ही, जब से सोनम वांगचुक को यहाँ से हटा करके अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तब से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है भीड़ की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि इन्हें यहाँ से ज्यादा करीब 200 से 300 मीटर दूर केरला भवन है वहां तक जाने तक की इजाजत दी जा सकती है, जहां पर बैरिकेड, बड़े बड़े बैरिकेड लगा दिए गए हैं और उसके आगे इन्हें जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हालांकि जो कांग्रेस जनता पार्टी जो है वो अभी तक उनका यही कहना है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें जो पार्लियामेंट तक प्रोटेस्ट मार्च निकालना है वो निकालने की उन्हें अनुमति दी जाए। जिसके बाद आज सुबह सोनम वांगचुक का भी एक बयान आया है, ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर ये मार्च होने दिया और उनसे नेता मिलने आ गए तो वो अपना अनशन भी तोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से नहीं, दिल्ली पुलिस की तरफ से किसी भी तरह का बयान इसको लेकर के सामने आया है।
0: बनाए रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब बात कर लेते हैं सोनम वांगचुक को लेकर। दरअसल इस पूरे मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई भी होने जा रही है। सोनम वांगचुक की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली हाईकोर्ट से कोई भी राहत नहीं मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि वांगचुक को अस्पताल ले जाने का सरकार का फैसला सही था और सोनम की सहमति से ही मेडिकल फैसले लेंगे डॉक्टर्स। फिलहाल सोनम वांगचुक सफदरजंग और एम्स के डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं पहाड़ों पर मानसूनी आफत की। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और टिहरी में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश को देखते हुए टिहरी और चंपावत में आज स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।
3: पहाड़ों पर जमकर कर बरस रहे हैं मानसूनी बादल। उत्तराखंड में लगातार बारिश से बिगड़ रहे हालात। लैंडस्लाइड के चलते उत्तराखंड की कई सड़कों पर मलबा। मैदानों में जहां बारिश का सूखा पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों पर मानसून का प्रचंड रूप देखा जा रहा है। उत्तराखंड के 6 जिलों में कल जमकर बादल बरसे। ये तस्वीर देहरादून के संतला देवी मंदिर के पास की है, जहां बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ जाने के बाद 7 लोगों की जान पर बनाई। नदी के बीच बने टापू पर लोगों को बचाने के लिए SDRF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और उन्हें बचा लिया। देहरादून का IT पार्क भी बारिश के प्रचंड रूप से अछूता नहीं रहा। भारी बारिश के बाद पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई, लोगों को गाड़ियां चलाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड के दूसरे इलाकों में भी भारी बारिश का दौर जारी है। टिहरी में हो बारिश के चलते इलाकों में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं बारिश के साथ साथ पहाड़ों से हो रही लैंडस्लाइड के चलते उत्तराखंड के लोगों में दहशत का माहौल है। मालदेवता इलाके के सिल्ला मोटर मार्ग पर लैंडस्लाइड होने से आवाजाही प्रभावित हुई है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर में आई भारी तबाही की। पुंछ और राजौरी बेल्ट में अचानक से आई बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लापता बताए जा रहे हैं। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए अमरनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से रोक भी दिया गया है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के CM और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात कर हालात का जायजा भी लिया है।

0: वहीं एक बार फिर से अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर भारी बमबारी की है। लगातार नौवीं रात अमेरिकी सेना ने ईरान को निशाना बनाया। ताजा जानकारी के मुताबिक ईरान के तबरीज में 3 धमाके सुने गए। फार्स न्यूज के हवाले से खबर है कि दक्षिणी ईरान के होर्मुज़गंज में और साथ ही बुशहर में भी धमाके की आवाज सुनाई दी गई है। वहां पर धमाके हुए। अमेरिका का कहना है कि कम से कम 3 सैन्यकर्मी मारे गए और 1 लापता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की माने तो जान गंवाने वाले उन्हीं 3 अमेरिकी सर्विस मेंबर्स के सम्मान में बीती रात ईरान पर हमला भी किया गया है। तबरीज में 3 धमाके की आवाज सुनी गई है। होर्मुज़गंज बुशहर में भी कई धमाके सुने गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि बीती रात भी ईरान पर अमेरिकी सेना ने कई बड़े हमले किए हैं।
1: What we're doing now is we're ending any chance where they could have a nuclear missile. If you look at it, after a week and a half, not 4 weeks, a week and a half, 2 weeks, we stopped them from probably, but I don't want to have the word probably.
0: उधर IRGC ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन के अकाबा एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर अमेरिकी विमान को निशाना बनाया। दावे के मुताबिक ऑपरेशन नसर 2 में P-17 ट्रांसपोर्ट विमान और P-8 कमांड एंड कंट्रोल विमान क्षतिग्रस्त हुए। IRGC की माने तो यह हमला ऑपरेशन नसर 2 के 21वें चरण के दौरान किया गया। इस पूरे हमले में P-17 ट्रांसपोर्ट विमान और P-8 कमांड एंड कंट्रोल विमान को काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा। अब बात कर लेते फीफा वर्ल्ड कप की। दरअसल स्पेन ने 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है और टीम ने न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में 2022 की चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हरा दिया है। स्पेन के लिए एक्स्ट्रा टाइम में फेरन टोरेस ने गोल किया और 106वें मिनट में सब्स्टिट्यूट प्लेयर फेरन टोरेस ने स्पेन के लिए गोल दागा। टोरेस को एक अन्य सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी भी निको विलियम ने पास दिया था।
2: मेसी की टीम से छिन गया फुटबॉल का ताज। फाइनल जीतकर स्पेन ने जमाई धाक। ये जीत और जश्न के लम्हे थे। ये दुनिया जीत लेने के बाद जज्बातों के बह जाने के लम्हे थे। ये इस चमचमाती ट्रॉफी को चूमते रहने के लम्हे थे जिसका मौका स्पेन को 16 साल बाद नसीब हो रहा था। पूरे वर्ल्ड कप में स्पेन शान के साथ खेला। पूरे टूर्नामेंट में स्पेन ने सिर्फ 1 गोल खाया और फिर फाइनल में भी उसकी किलाबंदी इतनी ताकतवर साबित हुई कि मेसी समेत अर्जेंटीना के तमाम सितारे गोल करना तो दूर अटैक करने तक को तरस गए। उधर स्पेन लगातार आक्रामक होता जा रहा था। पहले और दूसरे हाफ में उसने कई शानदार अटैक भी किए लेकिन हर बार अर्जेंटीना के गोलकीपर मार्टिनेज ने कई शानदार बचाव करते हुए नतीजों को एक्स्ट्रा टाइम तक धकेल दिया। आखिरकार 106वें मिनट में टोरेस ने इस पावरफुल लेफ्ट फुटर के जरिए गोल कर सनसनी मचा दी। अर्जेंटीना के पास वापसी का न तो वक्त बचा था और न ही हौसला, क्योंकि फाइनल मुकाबले में उसके खिलाड़ी चैंपियंस की तरह खेलने में पूरी तरह नाकाम दिख रहे थे। स्पेन ने इस बार अपने अभियान का आगाज केप वर्डे के खिलाफ 0-0 के ड्रॉ से किया था। इसके बाद स्पेन ने लगातार 6 मुकाबले जीतकर फाइनल में जगह बनाई। टीम ने ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, बेल्जियम और सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से हराया, फिर फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हरा दिया। स्पेन की जीत के बाद अलग अलग शहरों में फैंस ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। लोग हाथों में स्पेन के झंडे लेकर सड़कों पर उतर रहे थे, नाच रहे थे और वर्ल्ड कप की जीत का जश्न मना रहे थे। आज तक ब्यूरो
0: सुपर एट में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
4: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world, all in one place. From what's happening now to what you want to hear next, enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
1: देख, इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
2: अच्छा, सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
1: अर्ज किया है, दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह,
3: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
4: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
7: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
8: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी जॉइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
2: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
3: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
1: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
4: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: YouTube पे अब देखिए आज तक वर्टिकल। अरे भाई फिर घुमा रहे हैं, छोड़ दीजिए, घुमाने की आदत छोड़ दीजिएगा। अब देखिए आज तक वर्टिकल।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

आज से संसद का मानसून सत्र, 7 अहम बिल पेश करेगी सरकार। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह आज रखेंगे वंदे मातरम बिल। चढ़ावा चोरी पेपर लीक पर घेरने के लिए सुबह 10 बजे विपक्ष की बैठक। दिल्ली में आंदोलनकारियों के मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस की घेराबंदी। संसद जाने वाले कई रास्तों पर भारी सुरक्षा बंदोबस्त। धारा 163 के साथ जारी हुई ट्रैफिक एडवाइजरी।

विमान पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। कई अमेरिकी विमान क्षतिग्रस्त हुए। आईआरजीसी ने यह भी दावा किया है कि जॉर्डन से ही मिली थी खुफिया जानकारी, जिसके बाद ईरान ने जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर अमेरिकी सेना के 20 हैंगर को भी नष्ट कर दिया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी कहा है कि अमेरिका की मौजूदा कार्रवाई का उद्देश्य ईरान की परमाणु मिसाइल बनाने की हर संभावना को खत्म करना। सेंटकॉम के मुताबिक उत्तरी इराक में ईरानी ड्रोन को नष्ट करने के दौरान एक अमेरिकी सैनिक की मौत भी हुई। इसके साथ ही जंग में मरने वाले अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़कर 17 हुई। बहरीन में अमेरिकी दूतावास ने सुरक्षा अलर्ट जारी किया। मनामा में कुछ इलाके में ईरान के हमले की आशंका जताते हुए अमेरिकी नागरिकों के सतर्क रहने की अपील की। अमेरिका ईरान युद्ध से कच्चे तेल के दाम में लगी आग, $90 के पार पहुंचा ब्रेंट क्रूड, तेल की सप्लाई रुकने की चिंता बढ़ी। वेनेजुएला के बाद पेरू में भूकंप का कहर, दो बार दहली धरती और अब तक 6 लोगों की मौत हुई, कई घर हुए जमींदोज। पेरू में पहले भूकंप की तीव्रता 5.1 और दूसरे भूकंप की तीव्रता 3.7 रही। आपदा से प्रभावित लोगों के लिए प्रशासन ने टेंट और अन्य जरूरी राहत सामग्री की व्यवस्था की। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन के सिर सजा विश्व विजेता का ताज, न्यूजर्सी में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फुटबॉल की दुनिया का नया बादशाह बना स्पेन। फेरान टोरेस बने स्पेन की जीत के हीरो, 106वें मिनट में ऐतिहासिक गोल दागकर अपनी टीम को दिलाई जीत। स्पेन के लिए यह दूसरा वर्ल्ड कप खिताब है। 16 साल 2010 में नीदरलैंड को हराकर स्पेन बना था वर्ल्ड चैंपियन। मैड्रिड में फुटबॉल फैंस ने मनाया स्पेन की जीत का जोरदार जश्न, सड़कों पर उतरे लोग। गोल्डन बूट की रेस में भी पिछड़ गए मेसी, 10 गोल के साथ फ्रांस के किलियन एम्बापे ने जीता गोल्डन बूट, मेसी के खाते में सिर्फ 8 गोल। फुटबॉल की बादशाहत का खिताब जीतने पर स्पेन की गलियों में विजय उत्सव, सड़कों पर जीत का जश्न मनाते नजर आए फैंस। स्पेन टीम की जर्सी पहनकर और हाथों में झंडे लिए सड़कों पर उतरे फैंस, जीत की खुशी में झूमे समर्थक, फैंस की गूंज से गूंज उठा पूरा इलाका। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अर्जेंटीना को हराकर स्पेन के चैंपियन बनने का फैंस का जश्न, दरअसल न्यूयॉर्क में जीत पर उत्साहित नजर आए हैं समर्थक। न्यूयॉर्क की सड़कों पर उमड़ा फैंस का हुजूम अर्जेंटीना पर, स्पेन की जीत के बाद समर्थकों में दिखा खुशी और उत्साह का माहौल। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब स्पेन के नाम होने पर लंदन में उत्सव का माहौल, फैंस ने एक दूसरे को गले लगाकर दी जीत की बधाई। भारत में भी फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन की जीत का जश्न मना, हैदराबाद के सड़कों पर उतरे फैंस, जीत की खुशी में जमकर मनाया जश्न। कोलकाता में स्पेन के विश्व विजेता बनने पर फैंस के खिले चेहरे, अर्जेंटीना की हार पर फैंस की आंखें हुई नम। स्पेन की फतह पर गोवा के पणजी में फैंस उत्साहित, देर रात तक कैफे में जीत का जश्न मनाते नजर आए प्रशंसक। मुंबई में भी स्पेन की जीत का मना जश्न, खुशी में झूमे लोग, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बने सेलिब्रेशन का हिस्सा। बेंगलुरु में स्पेन की जीत से गूंजा पूरा इलाका, फैंस ने नाच गाकर अपनी पसंदीदा टीम की ऐतिहासिक जीत का मनाया जश्न। लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने भारत को 27 रन से हराया, इंग्लैंड ने सीरीज 2-1 से जीती। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने बेन डकेट 141 की शानदार पारी खेली, वहीं जैकब बेथिल की मदद से 387 का स्कोर बनाया। जवाब में रोहित शर्मा ने 138 रन की बेहतरीन शतकीय पारी खेली, शुभमन गिल 77 रन बनाकर आउट हुए। विराट कोहली ने 50 लगाए, कोहली 60 बॉल पर 74 रन बनाकर आउट हुए। भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए, जबकि प्रिंस या 7 बिल पेश करेगी सरकार। सुबह पीएम मोदी का संबोधन, चढ़ावा चोरी, पेपर लीक जैसे कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में विपक्ष। राज्यसभा में अमित शाह सबसे पहले पेश करेंगे वंदे मातरम बिल, चढ़ावा चोरी पर शोर होना तय, 13 अगस्त तक चलेगा सेशन। मुख्य उद्देश्य यह है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान जन गण मन के समान ही कानूनी सुरक्षा और दर्जा देना चाहिए। वंदे मातरम के अपमान पर 3 साल की जेल का प्रावधान। दरअसल आज ओम बिरला सत्र शुरू होने से पहले टीएमसी के 20 सांसदों के एनसीपीआई में विलय पर अंतिम फैसला भी ले सकते हैं। फिलहाल लोकसभा में 540 सीट है, जबकि 3 सीटें खाली, बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास अभी 298 सीटें। टीएमसी के बागी सांसदों के एनसीपीआई में विलय की मंजूरी पर एनडीए की ताकत 318 हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो एनडीए 2/3 बहुमत यानी कि 360 सीटें करीब पहुंच जाएगा। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट, आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। 22 जुलाई को अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक अहम बैठक होगी, ट्रस्ट की समितियों के पुनर्गठन और एसआईटी की रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली में सुरक्षा कड़ी, नई दिल्ली में सुरक्षा के मद्देनजर बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी गई। नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, उत्तरी दिल्ली के कई एंट्री पॉइंट्स को हाई सिक्योरिटी जोन में बदला गया है। जंतर

मंत्र पार्लियामेंट स्ट्रीट सेंट्रल विस्टा के करीब अतिरिक्त सुरक्षा बल और रैपिड रिस्पांस टीमें तैनात। सोनम वांगचुक मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। वांगचुक की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सोनम वांगचुक को दिल्ली हाईकोर्ट से कोई भी राहत नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा वांगचुक को अस्पताल ले जाने का सरकार का फैसला सही था। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा डॉक्टर सोनम की सहमति से ही मेडिकल फैसला लेंगे। फिलहाल सोनम वांगचुक सफदरजंग और एम्स के डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज। आईएमडी ने जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। चंबा में बंद रहेंगे स्कूल। चंबा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और साथ ही कुल्लू जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी। हाई अलर्ट पर रखा गया प्रशासन। लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड से खतरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में बचाव दलों को तैयार रहने के दिए गए निर्देश। राहत बचाव के लिए एसडीआरएफ एनडीआरएफ समेत सभी राहत एजेंसियां तैयार। अलर्ट मोड में पुलिस, फायर सर्विस और एम्बुलेंस सेवा। हिमाचल में लोगों से सावधानी बरतने की जा रही है अपील। अब प्रशासन ने लोगों से बेवजह यात्रा से बचने और नदियों नालों से दूर रहने की अपील की। मोतिहारी के सुगौली में मंडराया बाढ़ का खतरा। नेपाल की बारिश से उफान पर नदी, सड़क पर बह रहा है 1 से 1.5 फीट तक पानी। सूरत में हुई 2 इंच बारिश में सड़कों पर जल भराव। पानी भरने के कारण जनता में आक्रोश, किया जमकर विरोध प्रदर्शन। मुजफ्फरनगर में एक कच्चा मकान भरभरा कर गिरा, 5 लोगों की गई जान, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इंदौर में तेज रफ्तार कार का कहर, सड़क किनारे खड़े कई ठेलों में मारी टक्कर। चालक ने भागने के दौरान कई वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया। गाजियाबाद में स्कूटी की टक्कर को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और पथराव हुआ। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू की। लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र में दबंगों ने युवक को लाठी से मारा, डंडों से पीटा, मरा हुआ समझकर मौके से दबंग फरार हो गए। लखनऊ के तालकटोरा थाना क्षेत्र में 4 साल के बच्चे से दुष्कर्म की कोशिश, आरोपी स्कूली वैन चालक गिरफ्तार। अलीगढ़ में दूसरी शादी और मकान के नाम पर विवाद, बेटे ने दोस्त के साथ मिलकर पिता को उतारा मौत के घाट। मसूरी में 2 जगह पर्यटकों और स्थानीय लोगों में मारपीट हुई, 7 पर पुलिस एक्शन जारी, जांच शुरू। देहरादून के दून अस्पताल में भारी हंगामा, इलाज को लेकर सुरक्षाकर्मी आपस में भिड़े। गुजरात के अंकलेश्वर में स्कूली रंजिश में छात्रा के परिजन बने हैवान, 2 सगी बहनों पर किया जानलेवा हमला, सीसीटीवी हुआ वायरल। राजस्थान के नवविवाहित जोड़े का शव यूपी के बिजनौर के जंगल में पेड़ से लटका हुआ मिला, 3 महीने की गर्भवती थी महिला। जयपुर में दिन दहाड़े मंदिर जा रही एक महिला के साथ लूटपाट, चाकू की नोक पर वारदात को दिया गया अंजाम। नागपुर में तेज रफ्तार बाइक सवार ने मारी साइकिल सवार को टक्कर, मौके पर हुई मौत, सीसीटीवी वीडियो आया सामने। पटना के मनेर में 2 गुटों में गोलीबारी हुई, 2 लोगों को गोली लगी, कई गिरफ्तार। भोपाल में दुकान से लौट रही 4 साल की मासूम को स्कॉर्पियो ने रौंदा, सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा हादसा। रायपुर में आजाद हिंद एक्सप्रेस में चोरी के बाद हाई वोल्टेज ड्रामा, चलती ट्रेन से कूदा संदिग्ध यात्री भी गिरफ्तार। रायपुर में परिवार के 5 लोगों की मौत से हड़कंप मचा, कारोबारी ने पत्नी और 3 बच्चों को जहर देकर लगाई फांसी। राजस्थान के डूंगरपुर में फिर से चांदीपुरा वायरस की दस्तक, 6 साल की बच्ची की मौत हुई, गांव में स्वस्थ हालात। वहीं पूर्वी चंपारण में मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़, 500 से अधिक कारतूस बरामद हुए। सोनीपत के मलिकपुर गांव में मिट्टी में दबा मिला नाबालिग लड़की का शव, एफएसएल की टीम जांच में जुटी। ओडिशा के संबलपुर में ब्यूटिशियन की किडनैपिंग पर हत्या, वही मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। ग्रेटर नोएडा में बैटरी चोरों का आतंक, 1 घंटे में चोरों ने 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों की बैटरी लेकर भागे। नागपुर के कामठी रेलवे स्टेशन के पास दर्दनाक हादसा हुआ, मालगाड़ी की चपेट में आने की वजह से 6 हिरण की मौत। जयपुर के झालान लेपर्ड रिजर्व में नीलगाय के दमदार तेवर देखे गए, और ऐसे में लेपर्ड भागता नजर आया, दोनों का आमना सामना देखकर पर्यटक भी दंग रह गए। पूरी रथ यात्रा में अडापा विजय की पवित्र रस्म की गई है पूरी। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा ने गुंडीचा मंदिर के गर्भगृह में किया प्रवेश। प्रयागराज में गूंजा जय जगन्नाथ, इस्कॉन मंदिर ने निकाली भव्य रथ यात्रा। महाराष्ट्र के अकोला में पहली बार निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, सड़क पर उमड़ा आस्था का मेला। जय जगन्नाथ के जयघोष से गूंजा अकोला, 31 फीट ऊंचे और 5 टन वजनी रथ को खींचने के लिए हजारों श्रद्धालु उमड़े। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए एक बड़ी खबर, खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा पर लगाई गई है अस्थायी रोक। चारधाम यात्रा को मिलेगी रफ्तार, रुद्रप्रयाग में 900 मीटर लंबी टनल तैयार हुई। रुद्रप्रयाग में ट्रैफिक जाम से मिलेगी तीर्थयात्रियों को राहत, अलकनंदा नदी पर बन रहे 200 मीटर लंबे डबल लेन पुल का काम भी लगभग पूरा। पुल का निर्माण 31 अगस्त तक पूरा होने की उम्मीद, इसके बाद किया जाएगा वाहनों का ट्रायल। जूनागढ़ जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए किया एक बड़ा फैसला, गिरनार यात्रा के लिए अनिवार्य होगा यात्रियों का रजिस्ट्रेशन। 18 जुलाई से ट्रायल के तौर पर शुरू हुई नई व्यवस्था, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा रहेगी।
दिल्ली के भारत मंडपम में फिल्म रामायण का रेड कार्पेट इवेंट, कई सितारों ने की शिरकत। समारोह में रणबीर कपूर और साई पल्लवी ने की शिरकत। फिल्म रामायण में निभा रहे हैं प्रभु राम और मां सीता का किरदार। रेड कार्पेट इवेंट में रणबीर कपूर ने लेखक कुमार विश्वास के पैर छुए। इवेंट में फिल्म के ट्रेलर की भी झलक दिखाई गई। फिल्म रामायण के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में पहुंचे एक्टर अरुण गोविल, फिल्म में निभा रहे हैं राजा दशरथ का किरदार। फिल्म रामायण का रेड कार्पेट इवेंट में करण जौहर, विवेक ओबेरॉय भी पहुंचे। एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह और अक्षरा सिंह भी मौजूद रहीं।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

2026 दिन सोमवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, शाम के 7:09 तक चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वृषभ राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मिथुन राशि, व्यर्थ के विवादों से बचें, धन के खर्चों पर ध्यान दें, परिवार में शांति बनाए रखें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।

स्थितियां बेहतर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बनेंगे, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कन्या राशि, धन की दशा में सुधार होगा, नौकरी की समस्याएं दूर होंगी, किसी मनोरंजक कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी।

से बचाव करें, खान पान का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम बन जाएंगे। शिव जी को अगर एक लोटा जल चढ़ा दें आज तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, उपहार सम्मान की प्राप्ति होगी, करियर में कुछ बदलाव होगा। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी, परिवार में व्यस्तता बढ़ी रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम।

रखें, परिवार को लेकर चिंता हो सकती है, दूसरों के चक्कर में ना पड़ें। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मीन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, नौकरी में अनुकूलता आएगी, रिश्तों की स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: यूपी चुनाव से पहले योगी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं, जहां मुद्दा अपराध और विकास का है और निशाने पर अखिलेश यादव हैं।
2: 2017 के पहले कौन जिला बचा था जहां दंगे न हुए हो, जहां कर्फ्यू न लगा हो? मुजफ्फरनगर का दंगा हो, सहारनपुर का दंगा हो, मेरठ का दंगा हो, बुलंदशहर का दंगा हो, अलीगढ़ के दंगे हो, कौन जिला ऐसा बचा था जहां दंगे न हो? और कौन जनपद ऐसा बचा था जहां बेटी और व्यापारी सुरक्षित रही हो?
1: योगी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की खामियां बता रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं।
2: यात्रा के पहले तो बबुआ 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 5 उसके बाद जिम से फुर्सत मिली तो फिर उनकी अपनी महफिल बैठ जाती थी।
1: वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने ललिता गौतम के परिवार वालों से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही सीएम योगी ने जांच में लापरवाही बरतने वालों पर भी सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललिता गौतम के परिवार वालों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का निर्देश दिया। साथ ही मृतका के पिता और चाचा को एक एक मुख्यमंत्री आवास उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। मई महीने में हुई ललिता गौतम की मौत को लेकर विपक्ष लगातार योगी सरकार को घेर रहा था, जिसके बीच आज योगी आदित्यनाथ ने पीड़ितों से मुलाकात की। आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
4: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

संसद में 7 अहम बिल पेश करेगी सरकार। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह आज रखेंगे वंदे मातरम बिल। चढ़ावा चोरी पेपर लीक पर घेरने के लिए सुबह 10 बजे विपक्ष की बैठक। दिल्ली में आंदोलनकारियों के मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस की घेराबंदी। संसद जाने वाले कई रास्तों पर भारी सुरक्षा की बंदोबस्त। धारा 163 के साथ जारी हुई ट्रैफिक एडवाइजरी। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो का गेट बंद। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। आज चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजेस की बेंच करेगी सुनवाई। साल बाद स्पेन फिर बना फुटबॉल का बादशाह। फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। फेरिन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में गोल दागा। फ्रांस के एम्बापे ने मेसी को पछाड़ कर जीता गोल्डन बूट। जॉर्डन बना ईरान अमेरिका जंग का नया एपी सेंटर। लगातार निशाना बना रहे तेहरान के ड्रोन। अमेरिका ने किया रात भर हमले का दावा। कायरान को तबाह कर दिया।

नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नया हफ्ता, नया दिन, नई शुरुआत, बिना ब्रेक के आपके पसंदीदा ब्रेकफास्ट न्यूज शो के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं खबरें रफ्तार से और विस्तार से। लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है, सरकार और विपक्ष की क्या है तैयारी, विस्तार से आपको दिखाएंगे इसी बुलेटिन में। दिल्ली में बारिश का इंतजार, लेकिन देहरादून में कल बारिश ने मचाया वहां कहर, इस पर भी बुलेटिन में चर्चा होगी। फुटबॉल को मिला नया बादशाह, अर्जेंटीना को राखा स्पेन बना नया चैंपियन, पूरी खबर विस्तार से इसी बुलेटिन में। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर के साथ, जो कि संसद के मानसून सत्र से जुड़ी हुई है। 13 अगस्त तक चलने वाले सत्र में हंगामे के पूरे आसार जताए जा रहे हैं। विपक्ष ने भी साफ कर दिया है कि वो चढ़ावा चोरी, पेपर लीक, सोनम वांगचुक का अनशन और उस पर पुलिस एक्शन जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरेगा। उधर सरकार ने भी विपक्ष से शोर शराबे की जगह सकारात्मक चर्चा में शिरकत करने की अपील की है। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले संसद के बाहर संग्राम भी छिड़ा हुआ है। सीजेपी के मार्च के ऐलान की वजह से संसद भवन के आसपास के इलाके को किले की तरह तब्दील कर दिया गया है। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट।

0: संसद का मानसून सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले की ये तस्वीर है। एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आशीर्वाद ले रही हैं। शरद पवार की पार्टी के एनडीए में जाने की अटकलों के बीच आई इस तस्वीर ने अटकलों को और गर्म कर दिया है कि क्या मानसून सत्र के दौरान विपक्षी खेमे में और टूट देखने को मिलेगा, क्योंकि आज पहली बार होगा जब तृणमूल से अलग होकर नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में जाने वाले 20 सांसद सदन में अलग से बैठे नजर आएंगे। यही नहीं, पिछले सत्र में विपक्ष के साथ बैठने वाले शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद इस बार सत्ता पक्ष में नजर आएंगे, क्योंकि स्पीकर ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में इनके विलय को मंजूरी दे दी है। टीएमसी और शिवसेना यूबीटी में टूट से मानसून सत्र में विपक्ष की ताकत पहले से कमजोर हुई है, लेकिन विपक्ष के तेवर में कोई कमी नहीं है। विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी, नीट पेपर लीक, सोनम वांगचुक का अनशन और उन पर पुलिस कार्रवाई, पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट, विपक्षी दलों में तोड़फोड़, विदेश नीति के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए तैयार है। और सरकार विपक्ष से अपील कर रही है कि मुद्दों पर चर्चा कीजिए, लेकिन हंगामा मत कीजिए।
1: पॉलिटिकल पार्टीज, कोई भी राजनीतिक दल अगर विषय पे चर्चा नहीं करते हैं, सिर्फ नारेबाजी करते हैं, तो राजनीतिक नुकसान होता है, ये सब ने देखा है। ये एक पार्टी का सवाल नहीं है, कोई भी राजनीतिक दल अगर चर्चा से दूर रह करके हंगामा करता है, उससे राजनीतिक लाभ नहीं मिलता है, ये प्रूफ हो चुका है। इसलिए सब पार्टिसिपेट करें, चर्चा में सब भाग ले।
0: उधर विपक्ष का कहना है कि सरकार हर बार की तरह इस बार भी रटी रटाई बात कर रही है, अब तक ये साफ नहीं किया कि चर्चा किन मुद्दों पर होगी।
2: आज भी देश के लोग नहीं जानते कि सरकार क्या राम मंदिर पर चर्चा के लिए तैयार है, क्या सरकार नीट पर चर्चा के लिए तैयार है, क्या सरकार एथेनॉल की नीति पर तैयार है, क्या सरकार मणिपुर को लेकर तैयार है, क्या सरकार किसानों में जो आज कृषि क्षेत्र में जो मुश्किलें हैं क्या उसको लेकर तैयार है। तो आज भी सरकार से इन विशेष मुद्दों पर किसी भी प्रकार की स्पष्ट बातें उनसे उजागर नहीं हुई है, तो साफ साफ यही लगता है कि सरकार पूरी तरीके से इन विषयों से भागने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रही है।
0: विपक्ष के तेवर से साफ है कि संसद में हंगामे के पूरे आसार हैं। 25 दिन चलने वाला संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कुल 19 सत्र होंगे। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
3: तो संसद में हंगामे के आसार हैं, लेकिन मानसून सत्र शुरू होने से पहले संसद के बाहर भी हंगामे के आसार पैदा हो चुके हैं। जंतर मंतर समेत संसद भवन के आसपास का इलाका इस वक्त भारी सुरक्षा के बीच घिरा हुआ है। पेपर लीक के मुद्दे पर सीजेपी ने मार्च का ऐलान करते हुए अब दिल्ली में इसकी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, जिस तरीके से विपक्ष के हंगामे के आसार हैं, जाहिर तौर पर अब यह भी कहा जा रहा है कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, एक सकारात्मक चर्चा का यहां पर माहौल बनना चाहिए ताकि बिल पास हो सके, और इसकी एक वानगी हमने पिछले सत्र में भी देखी थी।
4: देखिए, सरकार की तरफ से निश्चित तौर पर यह कहा जा रहा है कि सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। कल सर्वदलीय बैठक में सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि उसको इस 19 दिन में जो पूरा संसद का सत्र ये चलेगा, जिसमें 19 बैठकें होंगी, उसमें 7 महत्वपूर्ण बिल पास कराने हैं। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, खासतौर पर जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला है, उस मुद्दे को लेकर के काफी मुखर नजर आ रही। इसके साथ ही जो नीट यूजी का मामला है उसको लेकर के विपक्षी पार्टियां अलग अलग जगहों से सवाल खड़े कर रहे हैं, और E20 का जो मुद्दा है उसको लेकर के भी विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि वो संसद से लेकर के सड़क तक इस पूरे मुद्दे को लेकर के जाएंगी। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि आज विपक्ष की 10 बजे के आसपास बैठक है, वो बैठक जो है मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में किया जाएगा, जिसमें इंडिया ब्लॉक के जो नेता हैं वो तमाम लोग 10 बजे आसपास संसद भवन के अंदर उनकी बैठक होगी। उसके बाद ये तय किया जाएगा कि किस तरीके की रणनीति के साथ सभी विपक्षी पार्टियां जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। विपक्षी पार्टियां लगातार ये कह रही हैं, जिस तरीके से हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने मिला करके एक संयुक्त पत्र लिखा है राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के सरकार को, और उसमें उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि एक अलग एजेंसी से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। तो इस तरीके के तेवर जो हैं वो लगातार संसद के अंदर आज दिखाई पड़ेंगे जब संसद सत्र की शुरुआत होगी। तो वहीं सड़कों की अगर बात करें तो सड़कों पर भी कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से संसद की तरफ मार्च करने का जो उनका पूरा प्लान है, पुलिस ने पूरी उसकी व्यवस्था की है। तो ये तमाम चीजें संसद से लेकर के सड़क तक दिखाई पड़ रही हैं। सरकार का ये कहना है कि वो जो भी मुद्दे विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठाए जाएंगे उसको चर्चा के लिए तैयार है और जो नियम है उसके आधार पर ही।
3: बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के 3 सांसदों ने स्थगन नोटिस दिया है। राज्यसभा में रणदीप सुरजेवाला ने स्थगन नोटिस दिया है और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग की है। तो वहीं कांग्रेस को लोकसभा सांसद मनीष तिवारी, मणिकम टैगोर ने भी नोटिस दिया है। मणिकम ने नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग की है। तो वहीं मनीष तिवारी नोटिस में कहा है कि सब रोक कर दल बदल पर चर्चा होनी चाहिए। बड़े स्तर पर बंगाल से महाराष्ट्र तक सांसदों ने पाला बदला है। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, इन 3 अलग अलग नोटिस का मजमून क्या है, क्या कुछ लिखा हुआ है इसमें?
5: देखिये, तीनों अलग अलग नोटिस हैं, अलग अलग चीजों को लेकर है। मनीष तिवारी चाहते हैं दल बदल पर जो है वो चर्चा हो जाए, लेकिन तीनों नोटिस जो है ये राज्यसभा के अंदर जो रणदीप सुरजेवाला ने नोटिस दिया है उसको विवेक है राज्यसभा के चेयरमैन के ऊपर कि वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, लोकसभा में स्पीकर इसके लिए एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, क्योंकि जब इस तरीके के नोटिस दिए जाते हैं तो राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर के विवेक पर जो है निर्भर करता है कि इन को लिया जाए या ना लिया जाए। इसके लिए पहले से जो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चर्चा की जाती है कि हम इस ये नोटिस देंगे, इस पर सरकार विपक्ष जो है चर्चा के लिए मांग करेगा। सरकार और विपक्ष साथ बैठकर ये तय करते हैं किस नियम के तहत जो है ये चर्चा हो, क्या 193 पे होनी चाहिए या 184 पर चर्चा होनी चाहिए। 193 पर जब चर्चा होती है तो उस पर वोटिंग नहीं होती है, लेकिन मंत्री का जो है वो जवाब होता है कंसर्न मंत्री का, लेकिन 184 पे जब चर्चा होती है तो वो उस पर वोटिंग का प्रोविजन होता है, और वो वोटिंग के प्रोविजन के अंदर अगर सरकार को बहुमत नहीं मिलता तो वो एक तरीके से सरकार के लिए एम्बेरसमेंट होती है। तो इस तरीके के जो चर्चा के नोटिस दिए जाते हैं वो विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैयार करता है या मैसेज देना चाहता है जिन जो उस वक्त के करंट अफेयर के इश्यूज हैं उनको लेकर। अब देखना यह है कि आज, क्योंकि सरकार की तरफ से कल ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर यह साफ कर दिया गया था कि वो हर मुद्दे के ऊपर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए आपको नियमों के तहत नोटिस देना होगा और सरकार के साथ मिलकर ये स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन के साथ मिलकर ये तय करना पड़ेगा कि किस नोटिस पे किस चर्चा होनी चाहिए, उसके लिए कितना समय एलोकेट होना चाहिए। तो ये तमाम इश्यूज जरूर रहेंगे, लेकिन इतना जरूर है संसद का सत्र हंगामे वाला रहेगा। विपक्ष चाहेगा उन सब मुद्दों पे चर्चा हो जिसपे सरकार को घेरा जा सकता है, नीट पेपर लीक का मामला हो, इथनॉल का मामला हो,
3: तमाम मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष इस मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। वहीं केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन का गेट बंद कर दिया गया है। संसद मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय सचिवालय स्टेशन को बंद किया है। जंतर मंतर प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए हैं और संसद तक मार्च करने की बात उन्होंने कही है। भारी सुरक्षा बल की तैनाती वहां कर दी गई है। सीजेपी के मार्च को लेकर केंद्र सचिवालय मेट्रो स्टेशन के गेट को बंद कर दिया गया है। सुरक्षा चाक चौबंद है, बड़ी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती की गई है ताकि कोई अप्रिय घटना वहां पर ना हो। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है इस पूरे इलाके में जो कि सेंट्रल दिल्ली का इलाका है। शिवानी शर्मा मेरी सहयोगी जुड़ गई है। शिवानी, क्या तैयारी है सुरक्षा बलों की, क्योंकि ये मार्च बेहद अहम बताया जा रहा है। एक ही पॉइंट पर रोक दिया जाएगा या फिर कुछ रूट डिसाइड किया गया है इसका?
6: नेहा, मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं। तो तैयारी की जहां तक बात है तो तैयारी सीजेपी की भी पूरी नजर आ रही है, क्योंकि आप देखिए सैकड़ों की तादाद में यहां पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जनपद वाला जो साइड है जंतर मंतर में जाने का, वो यहां का सीन है ये। और यहां पर मल्टीपल बैरिकेड्स लेयर लगाए गए हैं, यानी कि पुलिस की बात सीआरपीएफ सब यहां पर मुस्तैद है, रिक्वायरमेंट्स बढ़ाए गए हैं, क्योंकि आज के दिन ये प्रोटेस्ट मार्च कॉल किया गया है और मार्च आगे संसद तक बढ़ाने की बात यहां पर की जा रही है। लिहाजा पुलिस व्यवस्था में शाम शुरू हो गई है। बहुत सारे छात्र प्रोटेस्टर्स यहाँ आ रहे हैं, उनकी नाराजगी सामने आ रही है।
3: ठीक है, शिवानी की आवाज नहीं आ रही है। अंशुल मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए तमाम जानकारी के साथ। अंशुल, जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां पर सुरक्षा के क्या इंतजाम है, दिखाइए तस्वीरों के जरिए।
7: जी, काफी भारी संख्या में जो है सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। अगर मैं आपको यहाँ तस्वीरों में दिखाऊं तो आपको एक समझ में आ जाएगा कि कितनी जगह दी गई है प्रोटेस्ट निकालने के लिए। अगर आप सामने की तरफ देखें, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट रितेश मिश्रा से दरखास्त करूंगा कि आगे जूम करके दिखाएं, जो आगे टेंट लगा है वहां पर जो है प्रदर्शनकारी बैठे हैं, और वहां से लेकर के दूसरी तरफ अगर आप देखें तो दूसरी तरफ जहां तक बैरिकेड लगा है यहां तक इनको फ्रीली घूमने की इजाजत दे दी गई है। अगर इनको मार्च करना है तो वहां से निकल के यहां जो बड़े बैरिकेड लगे हैं यहां तक आ सकते हैं, लेकिन इसके आगे इन्हें जाने की जो अनुमति है वो किसी भी हालत में नहीं दी जाएगी, जिसके वजह से यहां पे रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस के हर डिस्ट्रिक्ट से, हर थाने से लोगों को यहां पर बुलाया गया है, आज स्पेशल ड्यूटी पर लगाया गया है, और उसके अलावा सेंट्रल आर्म फोर्सेस के भी जो जवान हैं उनको भी यहां पे तैनात कर दिया गया है। मैं आपको दिखाऊं तस्वीरों में तो आप देखिए कितनी भारी संख्या में जो है लोग अभी भी आ रहे हैं, प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं, और कल देर शाम से ही यहां पर जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, प्रोटेस्टर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी दिल्ली पुलिस का भी ये कहना था कि जो भी यहाँ प्रोटेस्ट करने आ रहा है वो सीधा जंतर मंतर आए, जंतर मंतर के अलावा कहीं भी ना जाए। हालांकि जंतर मंतर पे भी प्रोटेस्ट करने के जो परमिशन है वो इनके पास नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि अगर आपको धरना देना है तो आप जंतर मंतर पर आकर धरना दीजिए, लेकिन अगर आपने यहाँ से बाहर कहीं भी धरना देने की कोशिश की तो काफी ज्यादा जो स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन है वो दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ ले सकती है।
3: ठीक है, संसद के भीतर और बाहर दोनों ओर संग्राम देखने को मिल रहा है। सरकार विपक्ष के बीच घमासान के पूरे आसार है, और कल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें विपक्ष ने अपने मुद्दों की फेहरिस्त बता दी। सरकार की तरफ से बार बार अपील की जा रही कि विपक्ष बेशक अपने मुद्दे उठाए लेकिन हंगामा ना करे।
8: पेपर लीक एक बहुत बड़ा इश्यू है, नीट के पेपर और तमाम पेपर जो लीक हुए हैं उससे नौजवानों के अंदर भय पैदा हो गया। ये नौजवान इस भय के साथ देश सेवा में कैसे अपना योगदान देगा, इस बात का जवाब आपको देना है। दूसरा, उत्तर प्रदेश के अंदर और देश भर में दलितों पे अत्याचार की बाढ़ आ गई है, और ये तब है जब चुनी हुई सरकारें संविधान की शपथ लेकर बैठी है कि हम अन्याय नहीं होने देंगे। महिलाओं पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, अति पिछड़ों पे, आदिवासियों पे, मुसलमानों पे अन्याय की बाढ़ आ गई है।
9: एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट विधेयक सरकार लाना चाहती है, और एक डिस्कशन होनी चाहिए, सकारात्मक रूप से होनी चाहिए। लोगों को यदि आलोचना भी करना है तो उनका अधिकार है, लेकिन आलोचना भी सकारात्मक होनी चाहिए।
10: हम लोग लगातार इस पर विरोध में हैं, हम लोग चाहते हैं कि जो 100 करोड़ से ज्यादा सनातनियों की भावनाओं पर ठेस पहुंची है उस पर सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए, सारे तथ्य देश के जनमानस के सामने आने चाहिए। आखिर कौन कौन दोषी हैं? 90 के दशक में किसने लूटा, उस समय जो चंदा आया था वो कहाँ चला गया?
11: जैसे राम मंदिर का मुद्दा है, अभी ये जो छात्रों का जो आंदोलन हो रहा है जंतर मंतर पर है वो लोग, उस पर बात होगी, सोनम वांगचू पर बात होगी, फिर पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिला के जिस तरह से माइलेज कम किया जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उसको लेकर बात होगी। ये 3 राष्ट्रीय मुद्दे भी होंगे और उसके साथ साथ स्टेट के अपने अपने मुद्दे होंगे। नीट के पेपर लीक को लेकर जो छात्रों का मुद्दा है और छात्र हताश हैं, निराश हैं, उनसे बात नहीं हो रही है, इसको लेकर पूरा देश एकमत है, मुझे ऐसा लगता है। जो सत्ता पक्ष में भी है ना, वो भी अंदर ही अंदर उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं होंगे।
3: संसद के मॉनसून सत्र में आज सिटिंग अरेंजमेंट बदला दिखाई देगा। तृणमूल से अलग हुए 20 सांसदों के अलग से बैठने की व्यवस्था की गई है। कल तृणमूल के बागी सांसदों के प्रतिनिधि को सर्वदलीय बैठक में बुलाया गया, जिस पर सरकार और विपक्ष में तनातनी की स्थिति पैदा हो गई।
0: संसद का मानसून सत्र कैसा रहेगा, इसकी झलक कल सर्वदलीय बैठक में नजर आ गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक चल रही थी। अचानक मीटिंग के बीच से टीएमसी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद गुस्से में बाहर निकल आए। विपक्षी सांसदों ने सांकेतिक रूप से बैठक का बायकॉट किया। हालांकि सभी नाराज सांसद कुछ ही मिनट के अंदर दोबारा मीटिंग में पहुंच भी गए। टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों की नाराजगी साफ थी। सवाल था कि टीएमसी के जिन 20 सांसदों ने बगावत कर पार्टी छोड़ी है उन्हें इस बैठक में क्यों बुलाया गया।
12: द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इन द लिस्ट प्रोवाइडेड बाय द टेबल ऑफिस इज शोन टू बी 28 मेंबर्स। दीज सो कॉल्ड रेबल 20 एमपीस, देयर मर्जर हैज नॉट बीन अप्रूव्ड बाय द स्पीकर।
0: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर टीएमसी के साथ अपनी एकजुटता दिखाई।
13: जिस तरह संविधान को अवहेलना करके टीएमसी के साथ यो कुछ हुआ है, आम आदमी पार्टी के साथ और शिवसेना के साथ उनके समर्थन में संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया।
0: विपक्ष का सवाल साफ है। उनका आरोप है कि किरण रिजिजू ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल होने का न्योता दिया। रिजिजू का यही न्योता अब विपक्ष की नाराजगी की वजह है। वैसे टीएमसी का बागी खेमा सर्वदलीय बैठक में बुलाए जाने से खुश दिखा।
14: आज ऑल पार्टी मीटिंग में हमें बुलाया गया, इसीलिए हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमारा जो अलग से हम जुट बने हैं 20 MP को, उन्हें सम्मान दिया गया।
0: इस मुद्दे पर रिजिजू की सफाई भी सामने आई।
1: एनसीपीआई 20 लोकसभा सांसदों ने हस्ताक्षर करके लोकसभा स्पीकर के पास नए पार्टी में ज्वाइन करने का और संसद में अलग से बैठने का व्यवस्था के लिए मांग किया हुआ है, और ये नियम के तहत है और ये स्पीकर साहब का कंसिडरेशन में है। जब ये स्पीकर साहब का कंसिडरेशन में है और 20 सांसद है, उसको हम वंचित कैसे कर सकते हैं? लोकसभा सबका है।
0: सर्वदलीय बैठक के बीच नाराजगी और विरोध से एक बात तो साफ है कि मानसून सत्र के दौरान सदन में शोर शराबा थमने वाला नहीं है। राहुल गौतम के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
3: और सीजेपी के मार्च के मद्देनजर इस वक्त सेंट्रल दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पूरे सेंट्रल दिल्ली में करे गए। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कैसे इस मार्च को लेकर बड़ी संख्या में वहां पर युवा एकत्रित हो रहे हैं। अंशुल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अंशुल, क्या तैयारी है दिल्ली पुलिस की, कौन कौन से मेट्रो स्टेशन बंद है?
7: सर जी नेहा, यहाँ जो आसपास जो यहाँ पहुंचने वाले मेट्रो स्टेशन है, उन मेट्रो स्टेशन का एग्जिट अभी बंद कर दिया गया है, क्योंकि कल रात से ही यहाँ जंतर मंतर पे काफी ज्यादा पैमाने में लोग मौजूद होने लगे हैं, आने लगे हैं, एक के बाद एक लोग यहाँ आने लगे हैं, जिसके वजह से 5 रेलवे मेट्रो स्टेशन जो यहाँ आसपास के इलाके में हैं, जैसे राजीव चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, सेवा तीर्थ जनपद और पटेल चौक, ये 5 मेट्रो स्टेशन जो जंतर मंतर के बिल्कुल रेडियस में है, 2 किलोमीटर के रेडियस में है, इन 5ों में जो है एग्जिट इस वक्त दिल्ली पुलिस ने बंद करवा दी है और किसी को भी इन मेट्रो स्टेशन से निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हालांकि उसके बाद भी यहाँ जंतर मंतर पे काफी ज्यादा मात्रा में पैमाने में लोग यहाँ एक के बाद एक आ रहे हैं और लगातार नारे लगा रहे हैं। अगले कुछ मिनटों में ही यहाँ से ये प्रोटेस्ट मार्च शुरू हो सकता है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ये कोशिश करेगी कि उन्हें यहीं पर रोक दिया जाए और यहाँ से आगे पार्लियामेंट की तरफ जाने ना दिया जाए।
3: ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच राम मंदिर मुद्दे की बात कर लेते हैं, जहां पर चढ़ावा चोरी को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। इस पूरे मामले पर 4 अलग अलग याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजेस की बेंच है जो इस मामले की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जुलाई को इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति जताई थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मामले की जांच के लिए गठित SIT को अदालत के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। कल यूपी सरकार ने SIT की स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, स्टेटस रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा गया है SIT द्वारा, जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कही है सभी का पालन इस SIT रिपोर्ट में है?
15: SIT रिपोर्ट सील बंद है, लिहाजा अभी सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, ठोस तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अब तक जो सूत्रों ने बताया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, जिसमें अब तक क्या जांच की प्रगति क्या हुई है इसका जिक्र किया गया है, और ये कहा गया है कि आगे फ्यूचर में क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन है जो लेने की तैयारी चल रही है, उन सारी चीजों का जिक्र विस्तार से किया गया है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो स्टेटस रिपोर्ट है वो स्टेटस रिपोर्ट क्या सार्वजनिक की जाती है या कोर्ट इसे सीलबंद ही रखता है। हालांकि स्टेटस रिपोर्ट की कॉपी कोर्ट ने कहा था, जिस समय सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट की कॉपी बाकी पक्षकारों को मुहैया ना कराई जाए, तो कोर्ट ने कहा था कि मिस्टर सॉलिसिटर, आप भी कानून जानते हैं, तो इन लोगों के पास अख्तियार है कि उनको एक कॉपी रिपोर्ट की मिले और फिर हम ये तय करेंगे कि रिपोर्ट की कॉपी सार्वजनिक की जाए या नहीं।
3: बने रहे हमारे साथ। इस बीच आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर SIT ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है, लेकिन विपक्ष SIT पर ही सवाल खड़े कर रहा है।
10: कौन जांच किया SIT? कौन है SIT? कौन है SIT? एसआईटी के सदस्य खुद फंसे हुए हैं, सरकार के रहमो करम पे खुद हैं, वो क्या निष्पक्ष जांच करेंगे?
16: देखिए, चंदा चोरी का मामला तो 2021 में सबसे पहले मैंने उठाया था, अभी भी मैंने 13 दस्तावेज एसआईटी को दिया है। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में, नजूल की जमीन 24 करोड़ में, 1 करोड़ 73 लाख की जमीन 29 करोड़ में, 9 करोड़ की जमीन 54 करोड़ में ये खरीदने का काम किया इन्होंने। तो मुझे लगता है कि अभी इंतजार करता हूं मैं, एसआईटी तो जांच नहीं कर रही है, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो कोर्ट जाएंगे, लेकिन चंदा चोरी में इनको छोड़ना नहीं।
3: इस बात और अब बात अमेरिका ईरान युद्ध की करेंगे। एक बात फिर से, अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर भारी बमबारी की है, लगातार 9वीं रात अमेरिकी सेना ने ईरान को निशाना बनाया है। ताजा जानकारी के मुताबिक ईरान के तबरीज में 3 धमाके सुने गए हैं। फार्स न्यूज के हवाले से खबर आ रही है कि दक्षिणी ईरान और हॉर्मुज़गान और बुशहर में भी धमाके सुने गए हैं। अमेरिका का ये कहना है कि कम से कम 3 सैन्यकर्मी मारे गए हैं, 1 लापता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की माने तो जान गंवाने वाले उन्हीं 3 अमेरिकी सर्विस मेंबर्स के सम्मान में बीती रात ईरान पर हमला किया गया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि बीती रात ईरान पर अमेरिकी सेना ने बड़े हमले किए।
17: What we're doing now is we're ending any chance where they could have a nuclear missile. If you look at it, after a week and a half, not 4 weeks, a week and a half, 2 weeks, we stopped them from probably, but I don't want to have the word probably.
3: उधर आईजीसी ने दावा किया कि उसने जॉर्डन के अकाबा एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर अमेरिकी विमान को निशाना बनाया। दावे के मुताबिक ऑपरेशन नसर 2 में C-17 ट्रांसपोर्ट विमान और P-8 कमांड एंड कंट्रोल विमान क्षतिग्रस्त हुए हैं। आईजीसी की माने तो यह हमला ऑपरेशन नसर 2 के 21वें चरण के दौरान किया गया। हमले में C-17 ट्रांसपोर्ट विमान और P-8 कमांड एंड कंट्रोल विमान को भारी नुकसान पहुंचा है। और अब बात पहाड़ों पर आई मानसूनी आफत की करेंगे। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, टिहरी में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस अलर्ट के चलते टिहरी और चंपावत में आज स्कूल बंद कर दिए गए हैं।

0: पहाड़ों पर जमकर कर बरस रहे हैं मानसूनी बादल। उत्तराखंड में लगातार बारिश से बिगड़ रहे हालात। लैंडस्लाइड के चलते उत्तराखंड की कई सड़कों पर मलबा। मैदानों में जहां बारिश का सूखा पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों पर मानसून का प्रचंड रूप देखा जा रहा है। उत्तराखंड के 6 जिलों में कल जमकर बादल बरसे। ये तस्वीर देहरादून के संतला देवी मंदिर के पास की है, जहां बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ जाने के बाद 7 लोगों की जान पर बनाई। नदी के बीच बने टापू पर लोगों को बचाने के लिए SCDRF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और उन्हें बचा लिया। देहरादून का IT पार्क भी बारिश के प्रचंड रूप से अछूता नहीं रहा। भारी बारिश के बाद पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। लोगों को गाड़ियां चलाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड के दूसरे इलाकों में भी भारी बारिश का दौर जारी है। टिहरी में हो बारिश के चलते इलाकों में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं बारिश के साथ साथ पहाड़ों से हो रही लैंडस्लाइड के चलते उत्तराखंड के लोगों में दहशत का माहौल है। मालदेवता इलाके के सिल्ला मोटर मार्ग पर लैंडस्लाइड होने से आवाजाही प्रभावित हुई है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
1: और अब फीफा वर्ल्ड कप की स्पेन ने 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। टीम न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में 2022 के चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से मात दे दी।
2: मेसी की टीम से छिन गया फुटबॉल का ताज। फाइनल जीत कर स्पेन ने जमाई धाक। ये जीत और जश्न के लम्हे थे। ये दुनिया जीत लेने के बाद जज्बातों के बह जाने के लम्हे थे। ये इस चमचमाती ट्रॉफी को चूमते रहने के लम्हे थे जिसका मौका स्पेन को 16 साल बाद नसीब हो रहा था। पूरे वर्ल्ड कप में स्पेन शान के साथ खेला। पूरे टूर्नामेंट में स्पेन ने सिर्फ एक गोल खाया और फिर फाइनल में भी उसकी किलाबंदी इतनी ताकतवर साबित हुई कि मेसी समेत अर्जेंटीना के तमाम सितारे गोल करना तो दूर अटैक करने तक को तरस गए। उधर स्पेन लगातार आक्रामक होता जा रहा था। पहले और दूसरे हाफ में उसने कई शानदार अटैक भी किए, लेकिन हर बार अर्जेंटीना के गोलकीपर मार्टिनेज ने कई शानदार बचाव करते हुए नतीजों को एक्स्ट्रा टाइम तक धकेल दिया। आखिरकार 106वें मिनट में टोरेस ने इस पावरफुल लेफ्ट फुटर के जरिए गोल कर सनसनी मचा दी। अर्जेंटीना के पास वापसी का न तो वक्त बचा था और न ही हौसला, क्योंकि फाइनल मुकाबले में उसके खिलाड़ी चैंपियंस की तरह खेलने में पूरी तरह नाकाम दिख रहे थे। स्पेन ने इस बार अपने अभियान का आगाज केप वर्डे के खिलाफ 0-0 के ड्रॉ से किया था। इसके बाद स्पेन ने लगातार 6 मुकाबले जीतकर फाइनल में जगह बनाई। टीम ने ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, बेल्जियम और सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से हराया, फिर फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हरा दिया। स्पेन की जीत के बाद अलग अलग शहरों में फैंस ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। लोग हाथों में स्पेन के झंडे लेकर सड़कों पर उतर रहे थे, नाच रहे थे और वर्ल्ड कप की जीत का जश्न मना रहे थे। आज तक ब्यूरो।
1: और बात क्रिकेट की करेंगे। T20 के बाद वनडे सीरीज भी टीम इंडिया हार गई है। कल लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने भारत को 27 रन से हराकर 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली।
3: So England clinched the series after winning this one at the Mecca of Cricket by 27 runs, and that means
2: Lords One में 27 रन से मिली हार। बेकार गया रोहित शर्मा का शतकीय प्रहार। इंग्लैंड के हाथों भारतीय गेंदबाजी तार तार। T20 के बाद वनडे सीरीज भी गंवाई टीम इंडिया ने।
4: Sweet again.
2: संन्यास की सलाह देने वालों को रोहित शर्मा का ये जवाब हमेशा याद रहेगा और खुद रोहित के लिए तो यादगार रहेगा ही। ढेरों सवालों का बोझ लेकर वो मैदान पर उतरे थे, लेकिन हर एक शॉट के साथ साथ ये बोझ भी हल्का होता चला गया। मैदान का कोई कोना नहीं था जो रोहित शर्मा के शॉट से गुलजार ना हुआ हो। 84 गेंद पर ही उन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया। इस शतक के साथ ही रोहित ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। वो लॉर्ड्स में वनडे शतक जमाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही वो लॉर्ड्स में 39 साल 80 दिन में शतक जमाने वाले सबसे उम्र दराज बल्लेबाज भी हो गए। रोहित का वनडे करियर का ये 34वां शतक था। रोहित अब किसी भी देश में सबसे ज्यादा शतक जमाने वाले विदेशी बल्लेबाज बन गए हैं। इंग्लैंड में रोहित शर्मा का ये 8वां वनडे शतक था और वो अब सबसे ज्यादा उम्र में वनडे शतक जमाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। लॉर्ड्स में 110 गेंद पर उन्होंने 138 रन की पारी खेली। जब तक रोहित क्रीज पर थे, टीम इंडिया से भी इतिहास रचने की उम्मीद थी कि वो 388 रन का लक्ष्य हासिल कर लेगी। रोहित के बाद विराट कोहली ने अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन उनके जाने के बाद बची खुची उम्मीद भी खत्म हो गई और टीम इंडिया 1-2 से वनडे सीरीज हार गई। वैसे जो हाल गेंदबाजी का था, भारतीय ड्रेसिंग रूम की मुश्किलें तो वो पहले ही बढ़ा चुका था। 192 रन तक इंग्लैंड का एक भी विकेट उसके हाथ नहीं लगा था। बेन डकेट ने 141 रन की पारी खेल डाली। तो जैकब बेथल ने 91 रन बनाए। इंग्लैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 387 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया था और सीरीज जीत की नींव पहले ही रख दी थी। आज तक ब्यूरो
1: फैंटास्टिक। तो बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा। वक्त हो गया है हेडलाइंस का।

फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में गोल दागा। फ्रांस के एम्बापे ने मेसी को पछाड़ कर जीता गोल्डन बूट। जॉर्डन बनाए ईरान अमेरिका जंग का नया एपिसेंटर, लगातार निशाना बना रहे तेहरान के ड्रोन। अमेरिका ने किया रात भर हमले का दावा, कहा ईरान को तबाह कर दिया।

फुटबॉल की बार चार का खिताब जीतने पर स्पेन की गलियों में विजय उत्सव, सड़क पर जीत का जश्न मनाते नजर आए फैंस। स्पेन की टीम की जर्सी पहनकर और हाथों में झंडे लिए सड़कों पर उतरे फैंस, जीत की खुशी में झूमे समर्थक, फैंस की शोर से गूंज उठा पूरा इलाका। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अर्जेंटीना को राके स्पेन ने चैंपियन बनने पर फैंस का जश्न, न्यूयॉर्क में जीत पर उत्साहित नजर आए समर्थक। न्यूयॉर्क की सड़कों पर उमड़ा फैंस का हुजूम, अर्जेंटीना पर स्पेन की जीत के बाद समर्थकों में दिखा उत्साह। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब स्पेन के नाम होने पर लंदन में उत्सव, फैंस ने एक दूसरे को गले लगाकर दी जीत की बधाई। भारत में भी फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन की जीत का दिखा क्रेज, हैदराबाद की सड़क पर उतरे फैंस, जीत की खुशी में जमकर मनाया जश्न। कोलकाता में स्पेन के विश्व विजेता बनने पर फैंस के खिले चेहरे, अर्जेंटीना की हार पर फैंस की आंखें नम। स्पेन की फतेह पर गोवा के पैंजिम में फैंस उत्साहित, देर रात तक कैफे में जीत का जश्न मनाते नजर आए प्रशंसक। मुंबई में भी स्पेन की जीत का जश्न, खुशी में झूमे फैंस, बच्चों से लेकर बड़ों तक सपने सेलिब्रेशन का हिस्सा। बेंगलुरु में स्पेन की जीत से गूंजा पूरा इलाका, फैंस ने नाच गाकर अपनी पसंदीदा टीम की ऐतिहासिक जीत का मनाया जश्न। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन के सिर सजा विश्व विजेता का ताज, न्यूजर्सी में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। फेरान टोरेस बने स्पेन की जीत के हीरो, 106वें मिनट पर ऐतिहासिक गोल दागकर अपनी टीम को दिलाई जीत। स्पेन के लिए दूसरा वर्ल्ड कप खिताब है, 16 साल बाद जीता है खिताब। मैड्रिड में फुटबॉल फैंस ने स्पेन की जीत का जश्न, सड़क पर उतरे लोग। गोल्डन बूट की रेस में पिछड़ गए मेसी, 10 गोल के साथ फ्रांस के किलियन एम्बापे ने जीता गोल्डन बूट। लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने भारत को 27 रन से हराया, इंग्लैंड ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 387 रन का लक्ष्य दिया, डकेट 141 रन की शानदार पारी खेले, जेकब बेथल ने भी बड़ा स्कोर बनाया। जवाब में रोहित शर्मा ने 138 रन की शतकीय पारी खेली, शुभमन गिल ने 77 रन बनाकर लौटे पवेलियन। विराट कोहली ने 50 लगाए, कोहली 7 बॉल पर 74 रन बनाकर हुए आउट। भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए, जबकि प्रिंस यादव को 1 सफलता मिली। जंतर मंतर पर सीजेपी प्रदर्शन के चलते चाक चौबंद हुई सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा कारणों से सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन का गेट बंद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट कर सांसदों का किया स्वागत, लिखा लोकतंत्र की गरिमा के साथ जनहित और राष्ट्र में हो सार्थक संवाद। आज 18वीं लोकसभा के 8वें सत्र की होगी शुरुआत, ओम बिरला ने कहा जनहित के मुद्दों पर हो चर्चा, सभी सांसद सहयोग के साथ जिम्मेदारी निभाएं। सियासी सरगर्मी के बीच मॉनसून सत्र की होगी शुरुआत, नीट यूजी पेपर लीक परीक्षा मामले में विपक्ष हमलावर। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का दिया नोटिस, लोकसभा में चर्चा की उठाई मांग। आज से संसद का मॉनसून सत्र, एफसीआरए विधेयक समेत 7 बिल पेश करेगी सरकार। सुबह पीएम मोदी का संबोधन, चढ़ावा चोरी, पेपर लीक जैसे कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है विपक्ष। राज्यसभा में अमित शाह सबसे पहले पेश करेंगे वंदे मातरम बिल, चढ़ावा चोरी पर शोर होना तय, 13 अगस्त तक चलेगा सेशन। मुख्य देश है राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन से समान ही कानून सुरक्षा और दर्जा देना। वंदे मातरम के अपमान पर 3 साल की जेल का प्रावधान। आज ओम बिरला सत्र शुरू होने से पहले टीएमसी के बीच सांसदों के एनसीपीआई में विलय पर अंतिम फैसला ले सकते हैं। फिलहाल लोकसभा में 540

0: सीटें हैं, जबकि 3 सीटें खाली हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास 298 सीटें हैं। टीएमसी के बागी सांसदों ने एनसीपीआई में विलय की मंजूरी पर एनडीए की ताकत 318 हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो एनडीए दो तिहाई बहुमत यानी 360 सीट के करीब पहुंच जाएगा। शरावत चोरी मामले में एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की सीरीज रिपोर्ट। आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजेस की बेंच करेगी सुनवाई। 22 जुलाई को अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक। ट्रस्ट की समितियों के पुनर्गठन और एसआईटी की रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली में सुरक्षा कड़ी। नई दिल्ली में सुरक्षा के मद्देनजर बीएनएसएस की धारा 163 लागू। नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, उत्तरी दिल्ली के कई एंट्री पॉइंट्स को हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील किया गया। जंतर मंतर, पार्लियामेंट स्ट्रीट, सेंट्रल विस्टा के करीब अतिरिक्त सुरक्षा बल और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात। सोनम वांगचुक मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। वांगचुक की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सोनम वांगचुक को दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा वांगचुक को अस्पताल ले जाने का सरकार का फैसला सही था। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा डॉक्टर सोनम की सहमति से ही मेडिकल फैसले लेंगे। फिलहाल सोनम वांगचुक सफदरजंग और एम्स के डॉक्टर्स की निगरानी में है। हिमाचल प्रदेश में आज से बदलेगा मौसम। आईएमडी ने जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। चंबा में बंद रहेंगे स्कूल। चंबा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और कुल्लू जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। हाई अलर्ट पर प्रशासन। लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड के खतरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में बचाव दल को तैयार रहने के निर्देश। राहत बचाव के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत सभी राहत एजेंसियां तैयार। अलर्ट मोड में पुलिस, फायर सर्विस और एम्बुलेंस सेवा। हिमाचल में लोगों को सावधानी बरतने की अपील। प्रशासन लोगों से बेवजह यात्रा करने से बचने के लिए कहा। मोतिहारी के सुगौली, मंडराया बाढ़ का खतरा। नेपाल की बारिश से नदियां उफान पर। सड़क पर बह रहा है 1 से 1.5 फीट तक पानी। सूरत में हुई 2 इंच की बारिश से सड़कों पर जल जमाव। पानी भरने से जनता में आक्रोश किया जमकर विरोध। मुजफ्फरनगर में एक कच्चा मकान टूट कर गिरा। 5 लोगों की गई जान, रेस्क्यू जारी। इंदौर में तेज रफ्तार कार का कहर। सड़क किनारे खड़े कई ठेलों को मारी टक्कर। चालक ने भागने के दौरान कई वाहनों को किया क्षतिग्रस्त। गाजियाबाद में स्कूटी की टक्कर को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे और हुआ पथराव। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू की। लखनऊ के इंदिरानगर थाना क्षेत्र में दबंगों ने युवक को लाठी डंडों से पीटा। मरा हुआ समझकर मौके से दबंग फरार। लखनऊ ताल कटोरा थाने क्षेत्र में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश। आरोपी स्कूल वैन चालक गिरफ्तार। अलीगढ़ में दूसरी शादी और मकान के नाम पर विवाद। बेटे ने दोस्त के साथ मिलकर पिता को उतारा मौत के घाट। मसूरी में 2 जगह पर्यटक और स्थानीय लोगों में मारपीट। 7 पुलिस एक्शन जांच जारी। देहरादून के दून अस्पताल में भारी हंगामा। इलाज के दौरान तीमारदार और सुरक्षाकर्मी आपस में भिड़े। गुजरात के अंकलेश्वर में स्कूली रंजिश में छात्रा के परिजन बने हैवान। 2 सगी बहनों पर किया जानलेवा हमला, सीसीटीवी वायरल। राजस्थान के नवविवाहित जोड़े का शव यूपी के बिजनौर के जंगल में लटका हुआ मिला। 3 महिले, गर्भवती थी महिला। जयपुर में दिनदहाड़े मंदिर जा रही महिला के साथ लूटपाट। चाकू की नोक पर वारदात को दिया अंजाम। नागपुर में तेज रफ्तार बाइक सवार ने मारी साइकिल सवार को टक्कर। मौके पर हुई मौत, सीसीटीवी वीडियो आया सामने। पटना के मनेर में 2 गुटों में गोलीबारी। 2 लोगों को लगी गोली, कई गिरफ्तार। भोपाल में दुकान से लौट रही 4 साल की मासूम को स्कॉर्पियो ने रौंदा। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। रायपुर में आजाद हिंद एक्सप्रेस से चोरी के बाद हाई वोल्टेज ड्रामा। चलती ट्रेन से कूदा संदिग्ध यात्री ने किया गिरफ्तार। रायपुर में परिवार के 5 लोगों की मौत से हड़कंप। कारोबारी पत्नी और 3 बच्चों को जहर देकर लगाई फांसी। राजस्थान के डूंगरपुर में फिर चांदीपुरा वायरस का दस्तक। 6 साल की बच्ची की मौत। गांव में स्वास्थ्य अलर्ट। पूर्वी चंपारण में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़। 500 से अधिक कारतूस बरामद। सोनीपत के मलिकपुर गांव में मिट्टी में दबा मिला नाबालिग लड़की का शव। एफएसएल की टीम जांच में जुटी। उड़ीसा के संबलपुर में ब्यूटिशियन की किडनैपिंग की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में बैटरी चोरों का आतंक। 1 घंटे में चोरों ने 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों की बैटरी उड़ाई। नागपुर के कामठी रेलवे स्टेशन के पास दर्दनाक हादसा। मालगाड़ी की चपेट में आने से 6 हिरणों की मौत। जयपुर के झालान लेपर्ड रिजर्व में नीलगाय के दमदार तेवर देखकर भागा लेपर्ड। दोनों का आमना सामना देख पर्यटक दंग। पूरी रथ यात्रा में अडापा विजय की पवित्र रस्म पूरी की गई। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा ने गुंडचा मंदिर में के गर्भगृह में किया प्रवेश। प्रयागराज में गुंजा जय जगन्नाथ इस्कॉन मंदिर से निकली भव्य रथ यात्रा। महाराष्ट्र के कोला में पहली बार निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। सड़क पर उमड़ा जनसैलाब। जय जगन्नाथ की जय घोष से गुंजा कोला। 31 फीट ऊंचे और 5 टन वजनी रथ को खींचने के लिए हजारों श्रद्धालु जुटे। बाबा बर्फान के भक्तों के लिए बड़ी खबर। खराब मौसम चलते अमरनाथ यात्रा पर लगाई गई अस्थायी रोक। 4 धाम यात्रा को मिलेगी रफ्तार। रुद्रप्रयाग में 900 मीटर लंबी टनल तैयार। रुद्रप्रयाग में ट्रैफिक जाम से मिलेगा तीर्थयात्रियों को निजात। अलकनंदा नदी पर बन रहे 200 मीटर लंबे डबल लेन पुल का काम लगभग पूरा। पुल का निर्माण 31 अगस्त तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद वाहनों की आवाजाही का ट्रायल किया जाएगा। जूनागढ़ जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है। गिरनार यात्रा के लिए अनिवार्य होगा यात्रियों का रजिस्ट्रेशन। 18 जुलाई से ट्रायल के तौर पर शुरू हुई नई व्यवस्था, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की रहेगी सुविधा। दिल्ली के भारत मंडपम में फिल्म रामायण का रेड कार्पेट इवेंट, कई सितारों ने की शिरकत। समारोह में रणबीर कपूर और साई पल्लवी ने की शिरकत। फिल्म रामायण में निभा रहे प्रभु राम और मां सीता का किरदार। रेड कार्पेट इवेंट में रणबीर कपूर ने छुए लेखक कुमार विश्वास के पैर। इवेंट में फिल्म के ट्रेलर की झलक दिखाई गई। फिल्म रामायण के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में पहुंचे एक्टर अरुण गोविल, फिल्म में निभा रहे हैं राजा दशरथ का किरदार। फिल्म रामायण का रेड कार्पेट इवेंट में करण जौहर, विवेक ओबरॉय पहुंचे, एक्ट्रेस राकुल प्रीत सिंह और अक्षरा सिंह रही मौजूद। अमेरिका लगातार 9वीं रात ईरान पर नए हवाई हमले किए। तबरीज, चाबहार, बुशेहर और हॉर्मुज़गान में सुनाई दी धमाकों की आवाज। कोणार्क में एयर डिफेंस सक्रिय, जबकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट में एक जहाज में आग लगने से बहरीन और अमेरिका सुरक्षा अलर्ट के बाद क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया है। ईरान की सेना आईजीसी ने दावा किया कि उनके जॉर्डन के अकाबा एयरपोर्ट पर मौजूद अमेरिकी सैन्य विमान पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। आईजीसी ने यह भी दावा किया कि जॉर्डन से मिली थी खुफिया जानकारी, जिसके बाद ईरान ने जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर अमेरिकी सेना के 20 हैंगर भी नष्ट कर दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कहा कि अमेरिका की मौजूदा कार्रवाई का उद्देश्य ईरान पर परमाणु मिसाइल बनाने की हर संभावना को खत्म करना है। सेटकॉम के मुताबिक उत्तरी ईरान में इराक में ईरानी ड्रोन को नष्ट करने के दौरान एक अमेरिकी सैनिक की मौत, इसके साथ जंग में मरने वाले अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़कर 17। बेरवेन में अमेरिकी दूतावास में सुरक्षा अलर्ट जारी। मनामा के कुछ इलाकों में ईरान के हमले की आशंका जताते हुए नागरिकों को सतर्क रहने की अपील। अमेरिका ईरान युद्ध से कच्चे तेल के दाम में लगी आग, $90 के पार पहुंचा ब्रेंट क्रूड, तेल की सप्लाई रुकने की चिंता बढ़ी। वेनेजुएला के बाद पेरू में भूकंप का कहर, 2 बार दैनिक घटी, अब तक 6 लोगों की मौत। पेरू में पहले भूकंप की तीव्रता 5.1, दूसरे भूकंप की तीव्रता 3.7। आपदा से प्रभावित लोगों को सुरक्षित इलाकों पर प्रशासन ने पहुंचाया। और अब बात पहाड़ों पर मानसूनी आफत की। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और टिहरी में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। इसको देखते हुए टिहरी और चंपावत में आज स्कूल बंद कर दिए गए। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी में ये अलर्ट जारी किया गया है। लैंडस्लाइड के मद्देनजर ये भी कहा गया है कि लोग अनावश्यक यात्रा से बचें, क्योंकि इस वक्त पहाड़ी रास्ते खतरे से भरे हुए हैं। लगातार बारिश इन इलाकों में हो सकती है, जिसमें हिमाचल के कई शहर और उत्तराखंड के कई शहर शामिल हैं। लैंडस्लाइड की तस्वीरें हम आपको देख रहे हैं। वहीं कई सड़कें इस वक्त दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। रुकेंगे एक्चुअली से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
3: लुकिंग फॉर एन ऐप टू हियर ऑल ऑफ योर फेवरेट म्यूजिक, न्यूज, स्पोर्ट्स एंड मोर? वी've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Buena, ESPN Radio.
4: How they looked after Game One.
5: I mean, they were frustrated.
3: The Daily.
6: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
3: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
2: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
3: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
4: एयू, सोच बदलो और बैंक भी।
5: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
7: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
8: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
9: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है।
11: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे।
12: वाह वाह वाह वाह।
11: सेबी और NSE का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरिफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
13: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
14: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बाय एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल, बोलो जुबां केसरी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई, हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं, 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
2: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
3: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
1: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
4: लहरों का ये शोर डरा रहा है, साथ ही उस खतरे का भी साफ इशारा कर रहा है जो इन लहरों के साथ पुंज के तमाम इलाकों में बढ़ता जा रहा है। देर रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश पुंज के लोगों के लिए आफत लेकर आई है। कहीं पुल तबाह हो गए हैं, कहीं घरों को नुकसान पहुंचा है। मानसूनी प्रहार से पूरे पुंज जिले का हाल बेहद बुरा है। इन तस्वीरों को देखिए, बारिश के मौसम में जो दीवार पुल की हिफाजत के लिए बनाई थी वो देर रात आए उफान के साथ बहती चली गई, जिसके बाद इस पुल पर भी खतरा मंडरा रहा है। पुंछ में तेज बारिश के बीच नदी का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंचा, लोगों को भारी नुकसान हुआ। अब वहां से बर्बादी की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं।
5: आप देख सकते हो रात की बारिश की वजह से हमारा बहुत सा नुकसान हो गया हुआ है, तो हमने पहले भी बहुत जगह अपील की कि हमें यहाँ पे क्रेट और डंगा वगैरह डाल के दो, हम अपना बिजनेस चलाएं, लेकिन हमारी किसी ने सुनी नहीं। और देख सकते हो आज हमारा 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया, और हमारी आटा चक्कीज है, फैक्ट्री है, पीछे वेल्डिंग की दुकान है, सारी बह गई है, और हमारी मस्जिद भी बह चुकी है। और हम यही अपील करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ मिले, मुजीफा वगैरह, कि हम अपना बिजनेस वापस स्टैंड करें, क्योंकि हम लोग लोन लेके बिजनेस खड़ा करते हैं। और आप देख सकते हो कि कितना लॉस हो गया, अब हम इसी से हमारा घर चलता है, यही सारा लॉस हो गया तो हम कैसे करेंगे।
4: सिर्फ पुंछ और राजौरी पर ही मानसून की मार नहीं पड़ी है, बल्कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। किश्तवाड़ की इन तस्वीरों को देखिए, नदी का उफान साफ बता रहा है कि यहाँ संकट का दायरा किस तरह बढ़ता जा रहा है। जो इलाके नदी के किनारे बसे हैं वो खतरे से सबसे ज्यादा घिरे हैं। बारिश के बीच जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर लैंडस्लाइड ने भी मुसीबत बढ़ा दी है, रास्ते बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिन जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में बारिश का हाल कुछ ऐसा ही रहने वाला है, जो लोगों का संकट और ज्यादा बढ़ा सकता है। आज तक ब्यूरो।
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
8: इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

आज से संसद का मॉनसून सत्र, 7 अहम बिल पेश करेगी सरकार। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह आज रखेंगे वंदे मातरम बिल। चढ़ावा चोरी पेपर लीक को घेरने के लिए सुबह 10 बजे विपक्ष की बैठक। जंतर मंतर पर जुटने लगे आंदोलनकारी। संसद मार्च के मद्देनजर पुलिस की घेराबंदी, कई रास्तों पर भारी सुरक्षा बंदोबस्त। धारा 163 के साथ जारी हुई ट्रैफिक एडवाइजरी, आसपास के मेट्रो स्टेशन बंद। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। आज चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। सोलह साल बाद स्पेन फिर बना फुटबॉल का बादशाह। फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। फेरन टोरेस के एक्स्ट्रा टाइम में गोल से ये जीत, और फ्रांस के एम्बापे ने मेसी को पछाड़कर जीता गोल्डन बूट। जॉर्डन बना ईरान अमेरिका जंग का नया एपिसेंटर। लगातार निशाना बना रहे हैं तेहरान के ड्रोन। अमेरिका ने किया रात भर हमले का दावा, कहा ईरान को तबाह कर दिया।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और आज सुबह लेकर फिर से हाजिर हूं आपके साथ। आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। सरकार की ओर से इस सत्र में कई अहम बिल पास कराने की तैयारी है। वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी, एथनॉल और नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। लिहाजा संसद के मॉनसून सत्र में हंगामे के जोरदार आसार हैं। उधर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही कांग्रेस जनता पार्टी ने आज संसद मार्च का ऐलान किया है। दिल्ली पुलिस ने मार्च को इजाजत नहीं दी है और मार्च को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। लेकिन शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। आज से, जैसा कि हमने आपको बताया, शुरू हो रहा है संसद का मॉनसून सत्र। बेहद अहम रहने वाला है यह सत्र, क्योंकि यही माना जा रहा है कि ये बेहद तूफानी भी रहेगा। तो 13 अगस्त तक जारी रहेगा संसद का मॉनसून सत्र। कई मुद्दे हैं जो इस वक्त स्पॉटलाइट पे रहेंगे, जिसमें राम मंदिर की चढ़ावा चोरी मौजूद है, नीट का पेपर लीक मौजूद है और विपक्ष पूरी तैयारी कर रही है सरकार को घेरने के लिए, और इसके लिए उनकी भी एक बैठक आज होने वाली है। और चलिए अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर का कि माफ कीजिएगा और सीजेपी यानी कि कांग्रेस जनता पार्टी के संसद मार्च की बात करते हैं, जिसे लेकर जनतर मंतर पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों का पहुंचना जारी है। मार्च को देखते हुए पुलिस ने नई सुरक्षा में दिल्ली में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी है। 5,000 पुलिस जवानों की तैनाती की गई है।
1: बात हो रही है,
2: हम लड़ते रहेंगे जब तक शरीर में आखिरी कतरा मेरे है। मैं लड़ते रहूंगी। धन्यवाद।
0: सीआरपीएफ की 25 बटालियन लगाई गई हैं। पूरी दिल्ली में धारा 163 लागू है, लेकिन इस सब के बावजूद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जंतर मंतर की ओर बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि आज सीजेपी का मार्च है और मंच पर कई दूसरी पार्टियों के नेता का भी आना शुरू हो गया है। आज सुबह से वहां पर भाषणबाजी भी जारी है और ये तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। पहली तस्वीर जंतर मंतर की, जहां पर प्रदर्शनकारी जुटना शुरू हो गए हैं। वहां पे आप सीजेपी के प्रमुख की तस्वीरें भी देख रहे हैं, वहां पर पहुंचे प्रदर्शनकारी भी आपको दिख रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच पुलिस का पूरा बंदोबस्त है, 5,000 जवान तैनात किए गए हैं। उधर 5 मेट्रो स्टेशन के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, तो दिल्ली वालों के लिए बड़ी तकलीफ का दिन। आज मॉनसून सत्र शुरू होता है, तो उसकी वजह से वैसे ही एहतियातन सुरक्षा और ट्रैफिक एडवाइजरी जारी रहती है, और ऐसे में 5 मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए, तो सोमवार का दिन आवाजाही में मुश्किलें और बाधा देखने को मिलेगी, क्योंकि इस तरफ के जो इलाके हैं उन पे भारी पुलिस बंदोबस्त भी रहेगा। संसद के आसपास के वीआईपी इलाकों में आज पुलिस की मौजूदगी रहेगी, लोगों का वहां आना जाना थोड़ा मुश्किल है। प्रदर्शनकारी पहुंच रहे हैं, मेट्रो स्टेशन के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। ये वो मेट्रो स्टेशन हैं जो संसद और उसके आसपास के इलाकों के हैं, इन मेट्रो स्टेशन के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। और ये तस्वीर हम आपको चंद्रशेखर आजाद के दिखा रहे हैं, जो वहां पर पहुंचे हैं समर्थन देने के लिए कांग्रेस जनता पार्टी को, और साथ में प्रकाश राज भी नजर आ रहे हैं। वो अभिनेता दक्षिण भारत के, जो अक्सर मुखर रहते हैं सरकार के खिलाफ। तो ये तस्वीरें जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कांग्रेस जनता पार्टी के मार्च से जुड़ी हुई है, जो उम्मीद की जा रही है जल्द ही शुरू होगा, लेकिन उसको इजाजत नहीं है, नहीं चाहती दिल्ली की पुलिस कि वो आगे बढ़े, क्योंकि संसद सत्र में आज से मॉनसून का सत्र शुरू हो गया और इसी वजह से आप देख सकते हैं किस तरह से तैनाती की गई है।
3: संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस जनता पार्टी और छात्रों के संसद मार्च की तस्वीरें सामने आने लगी है। सुबह सुबह सैकड़ों हजारों की संख्या में ये जो छात्र हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों से सीधे जंतर मंतर की ओर पहुंच रहे हैं। तमाम पाबंदियों के बावजूद भी ये छात्र जो हैं ज्यादातर, हालांकि इसमें कई उम्र के दूसरे लोग भी दिखाई दे रहे हैं। ये आप राजीव चौक और कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल की तस्वीरें देख रहे हैं, अलग अलग मेट्रो स्टेशन से निकल करके और ये तमाम सारे टॉलस्टॉय मार्ग से होते हुए जंतर मंतर की ओर जा रहे हैं। इधर का मार्ग देख लीजिए, यहां से भी छात्र निकल रहे हैं। ये देखिए पीछे एक और जो है हाथों में तिरंगा लिए हुए और हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के जो छात्र हैं नीट के मुद्दे पर जो मसला शुरू हुआ अब वो जंतर मंतर पर आज संसद मार्च, हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी है। और इधर से कनॉट प्लेस के रास्ते जो मेट्रो स्टेशन है राजीव चौक, हम यहां से देख रहे हैं और ये जो रास्ता आगे संसद मार्ग और पीछे दूसरे इलाकों से जुड़ रहा है, और इधर ये है वो रास्ता जो जंतर मंतर की ओर जा रहा है। और ये छात्रों का भारी जो इसमें यूथ है, यंगस्टर्स है, ये सब पूरा हुजूम जो है वंदे मातरम के नारे लगाते हुए जंतर मंतर की ओर बढ़ रहा है। पुलिस ने इस मार्च को अनुमति नहीं दी है और कहा गया कि इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये देखिए इधर से छात्रों का एक और ग्रुप, आप जिधर भी देखेंगे चारों दिशाओं की ओर हर जगह ये सीजेपी प्रोटेस्ट के नाम से बैनर पोस्टर नारे लेकर के चलो दिल्ली, और इसके साथ ये छात्र हैं ये तमाम जंतर मंतर की ओर रवाना हो रहे हैं। दिल्ली कनॉट प्लेस से पवन के साथ में आशुतोष मिश्रा आज तक।
0: तो कॉकरोच जनता पार्टी के मार्च को देखते हुए नई दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। इनमें जनपद, पटेल चौक, सेवा तीर्थ स्टेशन को शामिल किया गया है जिन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हालांकि राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय स्टेशन इंटरचेंज के लिए खुले हैं लेकिन बाहर से उनके अंदर कोई नहीं घुस सकता है। तो 5 ऐसे स्टेशन हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है। तो जो भी लोग आज दिल्ली की मेट्रो से सफर करना चाहते हैं उन्हें बेहद एहतियात के साथ खबर सुनने के बाद ही निकलना होगा।
4: तो आइए आपको दिखाते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो हम लोग रायसेना रोड पे हैं और रायसेना रोड में पीछे आप देखें तो संसद है। यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है ताकि इसके आगे किसी को अनुमति नहीं है। और पीछे जो है यहाँ पे आप देखिए लगातार ट्रैफिक जो है वो उसको डाइवर्ट किया गया है इस तरफ, और जितने लोग मेट्रो से आ रहे हैं उनको पैदल आने को कहा गया है। कोई भी यातायात उधर अनुमति नहीं है गाड़ियों की आवाजाही की। और पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे पूरी सुरक्षा का जो घेरा है वो बना रखा है। जिस तरीके से सीजेपी ने मार्च का आह्वान किया है 11 बजे ये शुरू होगा, तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी दिख रही है। जिस तरीके से बताया गया है कि पार्लियामेंट सेशन में है तो 3-4 लोगों से ज्यादा गैदरिंग अलाउड नहीं है, और उसको लेके पुलिस ने यहाँ पे तमाम बसें भी आई हुई है, भारी बंदोबस्त किया गया है। ज्यादा लोगों के यहाँ पे गाड़ियों से लेके आने की अनुमति नहीं है। मौसमी सिंह, दिल्ली।
0: और आइए जानते हैं कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कॉकरोच जनता पार्टी के इस मार्च के बारे में क्या कह रहे हैं।
5: देखिए इतिहास अगर हम पलटे हैं तो विदेशी लुटेरों ने मंदिर लूटे थे, विश्वविद्यालय तोड़े थे, आंदोलनकारियों को प्रताड़ित किया था, आज वही भाजपा कर रही है। भाजपा सरकार नहीं, अहंकार की तरह काम कर रही है, अहंकार है उनके अंदर। कम से कम बच्चों की बात तो सुननी चाहिए थी। नीट में इतना बड़ा घोटाला हुआ, घपला हुआ, आज भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, तो कैसी सरकार है, क्या यही अमृतकाल है।
0: और आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा का। आशुतोष, कई मेट्रो स्टेशन ऐसे हैं जो बंद कर दिए गए हैं, पुलिस की सख्त तैनाती है, क्या वहां पहुंच रहे प्रदर्शनकारियों का रास्ता बाधित हो रहा है या वो पहुंच रहे हैं?
6: ज्यादा दूर मत
0: आशुतोष। तो हम बात करने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगियों से जो इस वक्त दिल्ली में अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं और पूरी लाइव कवरेज आपके लिए लेकर आ रहे हैं कि आखिर ये सीजेपी का जो आज मार्च है वो किस तरफ जाता है और किस तरीके से आगे बढ़ता है। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं वहां मंच से।
7: तीन बातें बहुत अहम है आज, पहले प्रोटेस्ट पे हम फोकस करेंगे कि ये बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हम करें, हम मुद्दे पे फोकस रखें, एजुकेशन का मुद्दा जो इस देश की बहुत जरूरत है, और सतर्क रहें।
0: तो आइए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्र का और जानने की कोशिश करते हैं कैसी स्थिति है वहां पे। आशुतोष, इतनी नाकेबंदी है, घेराबंदी है और साथ में मेट्रो स्टेशन भी बंद है, क्या वहां प्रदर्शनकारी जंतर मंतर तक पहुंच पा रहे हैं?
3: अब जंतर मंतर पहुंचना बहुत मुश्किल होगा अंजलि। दरअसल मेट्रो स्टेशन इसलिए बंद किए गए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का जमावड़ा, जैसे केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन, आमतौर पर जब भी इस तरह विरोध प्रदर्शन के कॉल होते हैं तो बंद कर दिए जाते हैं। जंतर मंतर इसलिए नहीं पहुंच सकते क्योंकि यहां के पीछे मैं जहां खड़ा हुआ जनपद रोड है, यही रास्ता पूरा भर चुका है। आगे टोलस्टॉय मार्ग है, टोलस्टॉय मार्ग पूरी तरह भर गया है। यहां तक कि पुलिस ने बैरिकेड पे यहां जगह जगह पर जानकारी लगाई है कि जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल पर प्रवेश टोलस्टॉय क्रॉसिंग से है। तो आगे दरअसल क्या है कि यहां पर इतना ज्यादा जमावड़ा है कि यहां पर हाई बैंडविड्थ नेटवर्क भी नहीं है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा दूर आना पड़ा। तो जनपद रोड जहां से शुरू होता है ये पूरा इलाका आगे भरा हुआ है और बड़ी बहुत संभावना है कि ज्यादा से ज्यादा जो ये जो प्रदर्शनकारी स्टूडेंट हैं ये आगे जा भी नहीं पाएंगे। इसी के आगे जनपद मार्ग का आगे रास्ता जो रायसीना रोड से जुड़ता है वहां पर भी बैरिकेड लगा के इनको रोका गया है। तो बहुत कम संभावना है कि इनको मार्च करने के लिए आगे जाने दिया जाए। आमतौर पर क्या होता है कि जब भी कोई कहता है कि संसद मार्च होगा, कोई ग्रुप हो या पॉलिटिकल पार्टी, उन मार्च में बहुत कम लोग होते हैं, तो कई बार उन्हें पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन तक जाने दिया जाता है और वहां पर बैरिकेड पर उनको रोक दिया जाता है और वहीं खत्म हो जाता है। अब ऐसे में ये स्थिति बहुत मुश्किल है कि मार्च को लीड कौन करेगा। जंतर मंतर पूरी तरह से सील है। आगे यहां तक कि मैंने भी कोशिश की कि मैं आगे जा पाऊं, आगे टोलस्टॉय बार इस मार्ग पर भी जाना मुश्किल है। जनपद का जो रोड है ये पूरा भरा है और मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए ताकि ज्यादा जमावड़ा ना होने पाए। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे काफी सारे जो एक एक करके और जो हुजूम है, कई बार 10-20-50 ऐसे करके वो आगे आ रहे हैं। तो जो संवेदनशील इलाके जहां से सीधा जमावड़ा हो सकता है संसद भवन की ओर, उन मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है, बाकी जगहों से बच्चे आ रहे हैं।
0: जी जी बिल्कुल, हमारे साथ बने रहे। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सोनम वांगचुक से जुड़ी हुई। उनका मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है, वो अस्पताल में भर्ती हैं और इस मेडिकल बुलेटिन में क्या जानकारियां आई हैं आपको बता दें। पहली बात तो उनकी हालत स्थिर है। ये सफदरजंग अस्पताल जहां पर वो भर्ती है वहां से बताया गया है। एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम उनकी निगरानी कर रही है। ये मामला कोर्ट में भी पहुंचा था और कोर्ट की तरफ से साफ कहा गया था कि उनके हालत पर नजर रखी जाए और लगातार जो अस्पताल है वो कह रहा है कि चिकित्सा उन्हें दी जा रही है और इस वजह से उनकी हालत इस वक्त स्थिर है। अभी कुछ देर पहले हमने उनकी पत्नी की भी आपको उनका बयान सुनाया। उनकी पत्नी मार्च के लिए पहुंच रही है लेकिन सोनम वांगचुक का मेडिकल बुलेटिन कहता है कि उनकी हालत स्थिर है। तो सीजेपी का मार्क एक तरफ, दूसरी तरफ मॉनसून सत्र शुरू हो गया। बड़ी खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त संसद पहुंच चुके हैं। तो आज मॉनसून सत्र का पहला दिन प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं। तैयारी दोनों तरफ से है, सरकार की तरफ से भी जो 7 बिल लाना चाह रही है और दूसरी तरफ से विपक्ष की भी पूरी तैयारी है। आप देख सकते हैं कि मंत्री वहां पहुंचे हैं प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने के लिए और प्रधानमंत्री आज संसद सत्र के लिए, माफ कीजिएगा, मानसून सत्र के लिए संसद में पहुंच रहे हैं। तो संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाने की तैयारी है। बड़ी खबर आ रही है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान या उसे गाने में बाधा को अपमान मानने वाले बिल को राज्यसभा में पेश करने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को सदन के पटल पर रखेंगे। संसद के एजेंडे के मुताबिक इस विधेयक का नाम राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 है, जिसके जरिए सरकार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान जनगणमन की तरह ही समान कानूनी और वैधानिक संरक्षण देना चाहती है।
8: देखिए, मैं या हमारे देश के लोग वंदे मातरम का सब सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए। वंदे मातरम गीत जब गाया गया वो तब की बात है जब इस देश को आजादी की जरूरत थी और हमारे देश के तमाम नौजवानों ने अपनी जान की बाजी लगा के इस देश को आजाद कराया। फांसी के फंदे में भी गए तो उन्होंने वंदे मातरम गा के गए। तो वंदे मातरम का हम सब लोग सम्मान करते हैं और सबको सम्मान करना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय है नहीं।
9: निश्चित है कि वंदे मातरम का विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ एक कानून बनना चाहिए। तो माननीय गृह मंत्री जी जो काम कर रहे हैं, राज्यसभा में पेश कर रहे हैं, अच्छी पहल कर रहे हैं।
0: तो चलिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा का। संसद का सत्र शुरू हो रहा है हिमांशु, उम्मीद है, आशंका भी कह लीजिए कि हंगामेदार होने वाला है वंदे मातरम गीत को लेकर के तो आएगा ही विधेयक। इसके अलावा और कौन कौन से बड़े बिल हैं जो वहां आज पटल पे या इस सत्र में रखे जा सकते हैं?
10: जो राज्यसभा के अंदर लिस्ट ऑफ
0: हिमांशु, इस वक्त हम पहले जंतर मंतर की तस्वीर आपको दिखा दें, जहां इस वक्त आप देख सकते हैं सुरक्षा कर्मियों के सामने आ खड़े हुए हैं प्रदर्शनकारी। ये कॉकरोच जनता पार्टी का आज मार्च है और उसके लिए जुट रहे प्रदर्शनकारियों की तस्वीर है। और आज दिल्ली में 5,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात है। बड़ी चिंता उनकी यही है कि जब मार्च होता है तो उस वक्त कोई परेशानी दिक्कत ना हो। ये सामने तस्वीर है उन प्रदर्शनकारी युवाओं की जो आज जंतर मंतर में जुट रहे हैं, और ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपके लिए जंतर मंतर से ही लेकर आ रहे हैं, जहां भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। हमारे सहयोगियों ने हमें बताया है कि वहां तक पहुंचना अब थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि कई मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। 5 बड़े मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा हमारे साथ लगातार अपडेट देने के लिए जुड़े हुए हैं। आशुतोष, इस वक्त हमें तस्वीरें मिलने लगी हैं जंतर मंतर में जो जमावड़ा बन रहा है, जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, उसकी सुरक्षा कर्मी रास्ता रोकना शुरू कर रहे हैं अब जो प्रदर्शनकारी है उनका।
11: देखिए, लगभग 10 बजे का समय ही प्रस्तावित था कि लोग जंतर मंतर से निकल करके संसद भवन की ओर जाएंगे, लेकिन पुलिस की तैयारी थी कि इनको किसी भी हाल में जंतर मंतर से बाहर न निकलने दिया जाए। बीएनएस की धारा 163 लागू की गई थी और उसके पहले ही प्रदर्शनकारियों के लिए जंतर मंतर पूरी तरह किले में तब्दील था। हालांकि देर रात से जब सीजेपी प्रदर्शनकारी पहुंचने लगे तो उसके बाद ही जंतर मंतर के चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई थी, रास्ते को बंद कर दिया गया था। और ऐसा नहीं था कि सारे लोग पहले पहुंच चुके थे, यहां में अभी भी जहां पर उसके बाहरी इलाके में वहां पर भी लोग, तो उन्होंने कोशिश की कि आगे निकलने के लिए, और सुबह ही पुलिस ने चेतावनी दी थी कि अगर यहां से निकला जाएगा तो आवश्यक बल प्रयोग किया जाएगा। तो पुलिस पूरी तरह कोशिश कर रही
0: है। तस्वीरें भी आ रही है, उसमें हम देख सकते हैं कि चंद्रशेखर आगे बढ़े हैं बैरिकेड की तरफ। आप हमारे साथ बने रहे और सुरक्षा कर्मियों ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की है, लेकिन वो आगे बढ़ते रहे। तो जाहिर तौर पर कोशिश, और तस्वीरों में इस वक्त ये भी आने लग गया है कि वहां पर रास्ता रोकते हुए प्रदर्शनकारियों के ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई सुरक्षा कर्मियों की। ये सीधी तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जंतर मंतर की, और ये देखिए प्रदर्शनकारियों पर इस वक्त डंडे बरसाते हुए सुरक्षा कर्मी। ये वो युवा हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में जुटे जंतर मंतर पे। इन्होंने प्रस्थान करने की कोशिश की अपने मार्च के लिए, लेकिन इजाजत नहीं थी। ऐसे में अब आप देख सकते हैं कि उन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। और इस वक्त आपको बता दें कि ये तस्वीरें सीधी कॉकरोच जनता पार्टी की, जहां पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच तनातनी बढ़ गई है। एक शख्स को वहां महिला पुलिसकर्मी आके शांत करने की कोशिश कर रही है। कोशिश उनकी तरफ से ये की गई थी कि बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश करके आगे बढ़ा जाए, लेकिन उससे पहले ही वहां पर सुरक्षा कर्मियों ने जो घेराबंदी की हुई थी, आप देख सकते हैं, उन्होंने रोक दिया।
12: अभी वहाँ पूरी धक्का मुक्की की इन्होंने, सारे लोग जा रहे हैं, तो आप पूरी जान दे रहे हैं।
13: पुलिस रोक रही है जगह जगह पे, और इनकी कोशिश है कि बच्चों की आवाज उठे ना, लेकिन ये देश का आंदोलन बन चुका है। ये किसी एक आदमी का आंदोलन नहीं है, ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये देश के करोड़ों बच्चे जो एग्जाम देते हैं, जो पढ़ते हैं मेहनत करके, उनके साथ जो धर्मेंद्र प्रधान जी धोखा कर रहे हैं, पेपर माफिया के हाथों में मोदी सरकार चल रही है, ये उसके खिलाफ आंदोलन है।
12: अभी तो जंतर मंतर का मार्च भी शुरू नहीं हुआ, अभी तो मार्च भी शुरू नहीं हुआ, वहाँ जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? पूरी धक्का मुक्की कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं।
13: कोई किससे बात कर रहा है, क्या किसका दावा कर रहा है, हमें नहीं पता। हमको ये पता है कि ये जनता का आंदोलन है, जनता के बच्चों के लिए, देश के बच्चों के लिए आंदोलन है। पेपर चोरी हो रहे हैं, पेपर चोरी के खिलाफ आंदोलन है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, शिक्षा मंत्री हैं वो।
14: जितनी शिद्दत से आज यहाँ पे पुलिस लगाई हुई है, उतनी शिद्दत से पेपर लीक रोक देते तो बच्चों का भविष्य नहीं खराब होता, इतनी शिद्दत से देश चला देते तो बच्चों का भविष्य नहीं खराब होता, बच्चे बेरोजगार नहीं होते। इनको सिर्फ आंदोलन रोकने की पड़ी हुई है, देश के लिए ने कुछ नहीं करना।
0: सुन रहे थे आम आदमी पार्टी के नेता जो वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जंतर मंतर पे। उधर ये देखिए प्रदर्शनकारियों का सीधा जो इस वक्त तनातनी बन रही है वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ। हालांकि पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है उन्हें रोकने की, और कुछ पुलिस वाले बात को संभालने की भी कोशिश करते नजर आ रहे हैं, लेकिन डंडे बरसे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा जुड़ गए। आशुतोष, प्रदर्शनकारियों के बीच सुरक्षा कर्मियों के साथ यहां धक्का मुक्की हुई, मामूली तौर पर डंडे भी बरसाए गए हैं, लेकिन तनातनी हुई है और यह पता चल रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो पहुंचने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उन्हें रोक दिया गया है, जंतर मंतर नहीं जाने दिया गया है। तो स्थिति वहां पर कैसी है इस वक्त?
15: पार्टी भी जाने की कोशिश की होगी तो वहां पर पुलिस और उनके साथ जो दोस्त मिले थे उन्होंने आगे कोशिश की। दरअसल ये पहले सवाल था मन में कि छात्र आखिर उनका नेतृत्व कौन करेगा मार्च का, ऊपर से आगे बैरिकेडिंग लगाए हुए थे।
0: और चलिए अब सीधा रुक करते हैं संसद का, जहां पर आज मॉनसून सत्र है और प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं, जहां की तस्वीरें इस वक्त आपके लिए लेकर आ रहे हैं। वो मॉनसून सत्र का आज पहला दिन है, बेहद अहम है मॉनसून सत्र सरकार के लिए। क्यों? क्योंकि कुछ अहम बिल तो आएंगे ही, कुछ ऐसे बिल हैं जिन पर सरकार चाहती है कि रजामंदी हो और उसमें दो तिहाई की रजामंदी चाहिए। ऐसे में प्रधानमंत्री संबोधन के लिए पहुंच गए।
16: स्वागत है भैया आप सबका। मानसून का भी कुछ लाभ नजर आ रहा है और मानसून सत्र भी प्रारंभ हो रहा है। मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। और इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि मॉनसून भी प्रोएक्टिव रहे, मॉनसून सत्र भी प्रोडक्टिव रहे। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाए इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो। एक प्रकार से भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं। पिछले वर्ष मानसून सत्र के ठीक पहले भारतीय नागरिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचा था और परसों भारत का एक युवा स्टार्टअप, उसने बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। विश्व के कम ही देश हैं जहां इस प्रकार से प्राइवेट साहस हुए हैं और भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है, बहुत बड़ी सफलता है। और ये जो स्काईरूट स्टार्टअप है उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश के ये स्टार्टअप ने 28 के एवरेज वाले नौजवानों ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया है, उनको तो बधाई है ही है। लेकिन ऐसी बातें जो हैं, जो भारत को आत्मविश्वास से भर देती है, विश्व में भारत का प्रोफाइल सर्वमान्य सर्वस्वीकृत बनता जाता है। साथियों, ये संयोग नहीं, ये एक संदेश है और बड़ा मजबूत संदेश है कि हमारे देश के युवाओं की क्षमता और उनकी आकांक्षा अंतरिक्ष जितनी असीम है, इससे बड़ा संदेश देश के लिए कोई और प्रेरणा नहीं दे सकता है। साथियों, जो रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर के आज देश चल पड़ा है, उसी का नतीजा है कि भारत के नौजवान इतना बड़ा साहस कर पाते हैं और सफल भी हो रहे हैं। साथियों, पिछले दिनों राजस्थान में बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी देश को समर्पित की गई। पिछले कुछ सप्ताह पहले एक सेमीकंडक्टर प्लांट यानी तीसरा देश को समर्पित किया गया। अभी कुछ दिन पहले ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, और विश्व में बहुत कम देश ऐसे हैं कि जिनके पास ये सुविधा है, लेकिन भारत ने जो हाइड्रोजन ट्रेन देशवासियों को समर्पित की है, वो सबसे ताकतवर इंजन वाली है और सबसे लंबी है। ये अपने आप में भारत के वैज्ञानिक, भारत के इंजीनियर्स, भारत के इनोवेटर्स, भारत के उद्यमी, भारत के श्रमिक, ये जो एक लक्ष्य लेकर के देश के लिए जी रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, उसी का परिणाम है। साथियों, हम भले भांति जानते हैं और पूरी दुनिया चिंतित भी है, लगातार कहीं न कहीं युद्ध की स्थितियां बनती रही है। पश्चिम एशिया के युद्ध के कारण भारत जैसे देश जो एनर्जी के लिए औरों पर डिपेंडेंट है, उनके लिए ये पश्चिम एशिया का युद्ध एक बहुत ही बड़ा संकट का कारण रहा। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, यानी हर विषय में अनेक बाधाएं, अनेक संकट आए। उसके बावजूद भी भारत 7.7% के ग्रोथ से दुनिया की मेजर इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन के रहा। यह भारत के सामर्थ्य का परिचायक है। भारत किस प्रकार से उत्साह और उमंग के साथ नई ऊंचाइयों को पार करना चाहता है, उसके इसमें एक झलक है। और ऐसे में जब ये मानसून सत्र आरंभ हो रहा है, देश ने स्पीड पकड़ ली है और संसद का स्पिरिट उस स्पीड में नई ऊर्जा भर सकता है। सकारात्मक स्पिरिट राष्ट्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी है, दल उनका कोई भी हो, लेकिन उनके पास एक लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है। और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, मिलजुल करके देश को आगे ले जाने के संकल्प लेना, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही समय की मांग है। एस्पिरेशन से भरे हुए देश के युवाओं की मांग है कि हम आगे बढ़े, आज समय की मांग है कि राष्ट्र निष्ठा से भरे हुए, राष्ट्रभक्ति के लिए जी रहे आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे, वे अपनी आवाज को बुलंद करे, देश को दिशा दे। और इसलिए मैं आशा करता हूं और मुझे पक्का विश्वास है, जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं

0: तरीके की चीज नहीं है जो शांति से बात कही जा सकती है, उसको चीख चिल्लाहट के साथ नहीं कहना चाहिए। जो भी आप चर्चा की मांग करना चाहते हैं वो आप कीजिए, और नियमों के तहत अगर बनता है सरकार बीएसई में इसको चर्चा करेगी, और बीएसई में अगर चर्चा के दौरान सहमति बनती है, विपक्ष जिन मुद्दों पर चर्चा चाहता है तो चर्चा के लिए समय जो है वो संसद के दोनों सदनों में दिया जाएगा। दोनों सदनों की बीएसई हर हफ्ते होती है, तो एक तरीके से ये संदेश है, आपको अपनी बात रखनी है, कोई चीख चिल्लाहट मत कीजिए, हंगामा मत कीजिए, शांति से अपनी बात को तथ्यों के साथ रखिए, सारा देश उसको सुनना चाहेगा, हम भी सुनेंगे, हम भी जवाब देंगे।
1: जी बिल्कुल, और बीएसई यानी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जहां पे तय किया जाता है क्या क्या मुद्दे इस बार संसद में सेशन में लाए जाएंगे, तो क्या इस बार फोकस रहेगा सत्र का, इस बार की बीएसई में क्या तय हुआ?
0: देखिए बीएसई के अंदर जो है पांच जो नए बिल हैं उनको लेकर चर्चा हुई, दो जिनमें से जो है ऑर्डिनेंस थे यानी अध्यादेश थे जिनको कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी थी, एक सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो संख्या है उसको बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ जो है इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल जो है 2026 उसके लिए, एफसीआरए का बिल जो है पहले से ही इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो इस तरीके से तमाम बिल जो है उनको लेकर समय सीमा जो है तय की गई है बीएसई के अंदर। आज जो है लोकसभा के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए अमेंडमेंट बिल जो है उसको अर्जुन मेघवाल जो देश के कानून मंत्री हैं वो पेश करेंगे। उसके साथ साथ राज्यसभा के अंदर जो है वंदे भारत वंदे मातरम बिल जो है वो देश के गृह मंत्री जो है वो पेश करेंगे, और पास करने के लिए जो है वो सदन से अपील करेंगे। दोनों ही बिलों के लिए दोनों ही सदनों के अंदर जो है चार चार घंटे का समय जो है वो तय किया गया है।
1: जी बिल्कुल हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहे, बिकॉज इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि विपक्ष की एक अहम बैठक हो रही है। इस अहम बैठक के बारे में आपको बता दें कि विपक्ष अपनी रणनीति तैयार कर रहा है कि किस तरीके से मॉनसून सत्र में सरकार को घेरा जाए। इंडिया गठबंधन जो है वो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि उसके बीच टूट ना हो, एकजुट बने रहें, क्योंकि जिस तरह की खबरें आती रही हैं वो चिंताजनक रही है इंडिया गठबंधन की एकता को लेकर। तो इस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में एक बैठक हो रही है। हमारी सहयोगी मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ रही है। मौसमी, ये जो बैठक है इसमें क्या चर्चा होगी और चिंताएं बहुत हैं इंडिया गठबंधन की?
2: देखिए अंजलि, अभी ये बैठक संसद परिसर में चल रही है, खड़गे जी के ऑफिस में, जहां पे तमाम इंडिया ब्लॉक के मेंबर्स मौजूद हैं, और जाहिर तौर पे काफी निर्णायक बैठक होगी क्योंकि लगातार डीलिमिटेशन और दो तिहाई बहुमत को लेके जो चर्चा चल रही है उसमें इंडिया ब्लॉक में पिछले सेशन से लेकर अभी तक भारी अंतर आया है। 20 टीएमसी के सांसद चिटक गए हैं, डीएमके रूठी हुई है और डीएमके इंडिया ब्लॉक से बाहर चली गई है। ऐसे में जो आंकड़े हैं वो जो ट्रेजरी बेंचेस है या सत्ता पक्ष है उसके लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और पहले दिन सेशन में क्या होना है, किन मसलों पर चर्चा होना है, गतिरोध होना है, वाद विवाद होना है, इसको लेके अभी खड़गे जो है ये बैठक ले रहे हैं जिसमें धर्मेंद्र यादव समेत तमाम इंडिया ब्लॉक के मेंबर्स मौजूद है। जाहिर तौर पे ये वो वक्त है जब विपक्ष के सामने बड़ी चुनौती है, एक तरफ जंतर मंतर पे तमाम जो युवा है और सीजीटी जिस तरीके से आंदोलन कर रही है, तो नीट का मसला गरमाया हुआ है, राम मंदिर मसले को लेकर राहुल गांधी और खड़गे ने एक जॉइंट लेटर लिख दिया है, तो अपने आप में काफी संवेदनशील मसले हैं जिसको लेके विपक्ष लामबंद होना चाहता है मानसून सत्र में सत्ता पक्ष के खिलाफ।
1: बिल्कुल मौसमी, आप हमारे साथ बने रहे,
2: पूरी तैयारी है।
1: जी इस वक्त कुछ बयान आ रहे हैं विपक्षी नेताओं के, आइए सुन लेते हैं।
3: पेपर लीक एक बहुत बड़ा इश्यू है, नीट के पेपर और तमाम पेपर जो लीक हुए हैं उससे नौजवानों के अंदर भय पैदा हो गया। ये नौजवान इस भय के साथ देश सेवा में कैसे अपना योगदान देगा, इस बात का जवाब आपको देना है। दूसरा, उत्तर प्रदेश के अंदर और देश भर में दलितों पर अत्याचार की बाढ़ आ गई है, और ये तब है जब चुनी हुई सरकारें संविधान की शपथ लेकर बैठी है कि हम अन्याय नहीं होने देंगे, महिलाओं पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, अति पिछड़ों पे, आदिवासियों पे, मुसलमानों पे अन्याय की बाढ़ आ गई है।
4: एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट विधेयक सरकार लाना चाहती है, और एक डिस्कशन होनी चाहिए, सकारात्मक रूप से होनी चाहिए। लोगों को यदि आलोचना भी करना है तो उनका अधिकार है, लेकिन आलोचना भी सकारात्मक होनी चाहिए।
5: हम लोग लगातार इस पर विरोध में हैं, हम लोग चाहते हैं कि जो 100 करोड़ से ज्यादा सनातनियों की भावनाओं पर ठेस पहुंची है उस पर सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए, सारे तथ्य देश के जनमानस के सामने आने चाहिए, आखिर कौन कौन

0: दोषी हैं। 90 के दशक में किसने लूटा, उस समय जो चंदा आया था वो कहाँ चला गया।
1: जैसे राम मंदिर का मुद्दा है, अभी ये जो छात्रों का जो आंदोलन हो रहा है जंतर मंतर पर है, वो लोग उस पर बात होगी, सोनम वांगचू पर बात होगी, फिर पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिला के जिस तरह से माइलेज कम किया जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उसको लेकर बात होगी। ये तीन राष्ट्रीय मुद्दे भी होंगे, उसके साथ साथ स्टेट के अपने अपने मुद्दे होंगे। नीट के पेपर लीक को लेकर जो छात्रों का मुद्दा है और छात्र हताश हैं, निराश हैं, उनसे बात नहीं हो रही है, इसको लेकर पूरा देश एकमत है, मुझे ऐसा लगता है। जो सत्ता पक्ष में भी है ना, वो भी अंदर ही अंदर उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं होंगे।
2: आइए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। कांग्रेस के तीन सांसदों ने स्थगन का नोटिस दे दिया। आपको बता दें कि राज्यसभा में रणदीप सुरजेवाला ने स्थगन का नोटिस दिया है राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर। उन्होंने कहा है कि चर्चा होनी चाहिए। तो वही कांग्रेस के जो लोकसभा सांसद है मनीष तिवारी और मणिकर्ण टैगोर ने भी नोटिस दिया है। मणिकर्ण टैगोर ने नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग की है। वहीं मनीष तिवारी ने नोटिस में कहा कि सब रोक कर दल बदल पर चर्चा होनी चाहिए। बड़े स्तर पर बंगाल से महाराष्ट्र तक सांसदों ने पाला बदला है, वो चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो। तो तीन तीन कांग्रेस के नेताओं का, सांसदों का स्थगन का नोटिस आज दिया गया है।

0: तो मानसून सत्र शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के साथ हुई है, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों को उठाया है। सत्र के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने वहां मौजूद मीडिया को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि तर्क के साथ सदन में चर्चा होगी, शांति के साथ होगी, कोई तूफान नहीं पैदा किया जाएगा।
1: मानसून का भी कुछ लाभ नजर आ रहा है और मानसून सत्र भी प्रारंभ हो रहा है। मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। और इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि मानसून भी प्रोएक्टिव रहे, मानसून सत्र भी प्रोडक्टिव रहे। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है। चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, एक प्रकार से भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं। पिछले वर्ष मानसून सत्र के ठीक पहले भारतीय नागरिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचा था और परसों भारत का एक युवा स्टार्टअप, उसने बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। विश्व के कम ही देश हैं जहां इस प्रकार से प्राइवेट साहस हुए हैं और भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है, बहुत बड़ी सफलता है। और ये जो स्काईरूट स्टार्टअप है, उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश के ये स्टार्टअप ने 28 की एवरेज वाले नौजवानों ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया है, उनको तो बधाई है ही है। लेकिन ऐसी बातें जो हैं, जो भारत को आत्मविश्वास से भर देती है, विश्व में भारत का प्रोफाइल सर्वमान्य सर्वस्वीकृत बनता जाता है। साथियों, ये संयोग नहीं, ये एक संदेश है और बड़ा मजबूत संदेश है कि हमारे देश के युवाओं की क्षमता और उनकी आकांक्षा अंतरिक्ष जितनी असीम है, इससे बड़ा संदेश देश के लिए कोई और प्रेरणा नहीं दे सकता है। साथियों, जो रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर के आज देश चल पड़ा है, उसी का नतीजा है कि भारत के नौजवान इतना बड़ा साहस कर पाते हैं और सफल भी हो रहे हैं।
0: और आइए रुक करते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा का। हिमांशु, हालांकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि तूफान ना आए, लेकिन आज सड़कों पर तूफान है, संसद के तरफ जाने के लिए तैयार, उधर विपक्ष भी हमलावर है, उसके पास मुद्दे कई हैं सरकार को घेरने के लिए। ऐसे में सरकार की क्या तैयारी है ताकि वो अपने बिलों को ला सके और कुछ संयम बना सके इस सेशन में?
2: देखिए, बिल्कुल सरकार की तैयारी अगर कहें तो सरकार की जो रणनीति है वो बहुत साफ है कि वो अपने जो अहम बिल हैं उनको जो है वो संसद के दोनों सदनों से जो है वो पास करा सके। और इसी स्ट्रेटेजी के साथ, इसी रणनीति के तहत जो है आज लोकसभा में जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नंबर बढ़ाने का जो बिल है वो अर्जुन मेघवाल लेकर आ रहे हैं, जो देश के कानून मंत्री हैं, गृह मंत्री जो हैं वो वंदे मातरम बिल को लेकर आ रहे हैं। ये तो एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है, क्योंकि ये एक रूटीन तरीके से जो है सरकार जिन बिलों को लेकर आना चाहती है वो अध्यादेश से है, तो जब भी अध्यादेश लाया जाता है किसी बिल को लेकर, तो जब भी संसद का सत्र अगला शुरू होता है उसमें उस बिल को संसद के दोनों सदनों से पास कराना जरूरी होता है। लेकिन क्योंकि सरकार को यह मालूम है कि विपक्ष के पास कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो नीट का पेपर में नीट पेपर लीक का मामला हो या फिर राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला हो, एथनॉल का मामला हो, ये तमाम ऐसे इश्यूज हैं जिस पे वो सरकार को जो है वो घेरना चाहती है। और इसीलिए चर्चा के लिए जो है वो अडजमेंट मोशन नोटिस जो है वो दिया गया है विपक्षी सांसदों के द्वारा। उसके साथ साथ जो है सरकार को, विपक्ष ये भी चाहता है कि सरकार को जो है जिस तरीके से सोनम वागचू जो है वो धरने पर बैठे और उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया उनकी तबीयत को ध्यान में रखते हुए 21 दिन के उस इश्यू पर भी जो है वो
0: रहेगी हमारी नजर। शुक्रिया आपका वक्त। एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: हे गाइस, लेडी लक हियर। Are you going on any road trips this summer? I know I'm going to be going on a bunch of road trips. And being that I'm going to be passenger princess, I love playing on SpinQuest.com. SpinQuest has all of my favorite slot games, live blackjack, live craps. Head on over to SpinQuest right now and get yourself a $30 coin pack for just $10.
6: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
7: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
9: Sports fans, TuneIn Premium is the ultimate playbook. From live play-by-play of the biggest leagues all season long.
10: Lee looks for someone, finds the right someone. And Curry knocks it down. Tatum lines up the three and nails it.
9: To live sports talk radio to keep you in the game in between games.
11: Because people who all watch games, they hear the voice.
9: The sports action you crave comes alive with TuneIn Premium. Live games, fewer ads, endless action. Upgrade to Premium to get in the game.
12: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
13: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
12: छक्का?
13: सब कैशलेस हो गया
12: है। हाँ, ला भाई मेरा बैट।
13: वो अभी तो ठीक हुआ, तो
12: चार्ज हुआ यार।
14: बैट किसका है?
15: टाटा AIG है तो भरोसा है।
16: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
17: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना।
16: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना?
17: अर्ज किया है,
16: पहले गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं।
12: वाँ वाँ वाँ वाँ।
17: सेबी और NSE का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड एप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
18: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
19: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
5: सोच बदलो और बैंक भी।
6: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
7: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट।
11: Thumbtack presents Tile Trouble. Every single time I use my sink, I make eye contact with the uneven grout on my kitchen backsplash. The crooked corners eye me, and I'm haunted by more tiling questions than I thought possible. What kind of pro can fix a backsplash? Can I replace one cracked tile, or should I replace them all? What if I just use Thumbtack? I can hire top-rated pros, read reviews, and compare prices with a tap, all on the app. Thumbtack knows homes. Download the app today.
12: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
13: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
10: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
14: इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
16: रुक करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। संसद का मॉनसून सत्र शुरू ही होने वाला है चंद मिनटों में, और विपक्ष अपने मुद्दों के साथ तैयार है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला विपक्ष आज उठाएगा। खास तौर पे समाजवादी पार्टी इस मामले पर काफी आक्रामक नजर आ रही है। इस पूरे मुद्दे को लेकर कि कौन कौन से मुद्दे उठेंगे, एक बैठक भी हुई है आज मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में। विपक्ष आक्रामक है, लेकिन ये मुद्दा खास तौर पर समाजवादी पार्टी उठाना चाह रहा है। पता एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
12: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
13: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
17: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
18: Jack, you're killing me.
17: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
3: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
5: सोच बदलो और बैंक भी।
19: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी जॉइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान है। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
20: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
21: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
19: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम
14: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
22: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट?
0: तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
1: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
2: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
3: Step into timeless classical music. Works from the masters. Brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present. Every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Classical Hits and start listening now.
4: यूपी चुनाव से पहले योगी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं, जहां मुद्दा अपराध और विकास का है और निशाने पर अखिलेश यादव हैं।
5: 2017 के पहले कौन जिला बचा था जहां दंगे न हुए हो, जहां कर्फ्यू न लगा हो? मुजफ्फरनगर का दंगा हो, सहारनपुर का दंगा हो, मेरठ का दंगा हो, बुलंदसर का दंगा हो, अलीगढ़ के दंगे हो, कौन जिला ऐसा बचा था जहां दंगे न हो? और कौन जनपद ऐसा बचा था जहां बेटी और व्यापारी सुरक्षित रही हो?
4: योगी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की खामियां बता रहे हैं तो वहीं अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं।
5: यात्रा के पहले तो बबुआ 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 5 उसके बाद जिम से फुर्सत मिली तो फिर उनकी अपनी महफिल बैठ जाती थी।
4: वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने ललिता गौतम के परिवार वालों से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही सीएम योगी ने जांच में लापरवाही बरतने वालों पर भी सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललिता गौतम के परिवार वालों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का निर्देश दिया। साथ ही मृतका के पिता और चाचा को एक एक मुख्यमंत्री आवास उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। मई महीने में हुई ललिता गौतम की मौत को लेकर विपक्ष लगातार योगी सरकार को घेर रहा था, जिसके बीच आज योगी आदित्यनाथ ने पीड़ितों से मुलाकात की। आज तक ब्यूरो।
0: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health.
1: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
2: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
0: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कम।
1: संसद के मॉनसून सत्र से पहले पीएम मोदी का विपक्ष को जवाब, कहा जहां तर्क और तथ्य होते हैं वहां तूफान की जरूरत नहीं, देश के युवा कर रहे हैं कमाल, आज लोकसभा और राज्यसभा में अहम बिल।
2: संसद से सड़क तक विपक्ष की घेराबंदी, गठबंधन इंडिया के साथ खड़गे की बैठक, जंतर मंतर पर भारी जमावड़ा, संसद मार्च के मद्देनजर पुलिस की घेराबंदी के रास्ते बंद, भारी सुरक्षा बंदोबस्त।
1: चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट, आज चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई।
2: सोलह साल बाद स्पेन फिर बना फुटबॉल का बादशाह, फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया, फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में गोल दागा, फ्रांस के एम्बापे ने मेस्सी को पछाड़कर गोल्डन बूट जीता।
1: जॉर्डन बना ईरान अमेरिका जंग का नया एपी सेंटर, लगातार निशाना बना रहे तेहरान के ड्रोन, अमेरिका ने किया रात भर हमले का दावा, का ईरान को तबाह कर दिया।

0: अपने 6 पूर्व साथियों एवं कतर के पूर्व अमीर फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री नादेन दला भास्कर राव अविभाजित आंध्र प्रदेश के खम्मम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से, जो अभी तेलंगाना में है, 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य भी रहे। श्री राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और उन्होंने आंध्र प्रदेश के सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री नादेन दला भास्कर राव का निधन 90 वर्ष की आयु में 22 अप्रैल 2026 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। श्रीमती ओमवती देवी उत्तर प्रदेश के बिजनौर संसदीय क्षेत्र से 12वीं लोकसभा की सदस्य थी। वे श्रम कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सदस्य रही। इससे पूर्व वे 4 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्रीमती ओमवती देवी का निधन 77 वर्ष की आयु में 8 मई 2026 को बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री सुधांशु सील पश्चिम बंगाल के कोलकाता उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। वह शहरी विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य थे। इससे पूर्व पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री सुधांशु सील जी का निधन 81 वर्ष की आयु में 14 मई 2026 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी उत्तराखंड के गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं 12वीं 13वीं 14वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे रक्षा
1: Pavan Khera, having been elected a member of the Council of States, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter.
0: श्री केपी धन पालन केरल के चाला लोकसभा के सदस्य थे। वे वाणिज्य संबंधी संसदीय समिति के सदस्य तथा कंप्यूटर के प्रावधान संबंधी संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। श्री केपी धन पालन का निधन 76 वर्ष की आयु में 30 मई 2026 को एर्नाकुलम केरल में हुआ। श्री प्यारेलाल संगवार उत्तर प्रदेश के घाटमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। इससे पूर्व वे 2 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री प्यारेलाल संगवार का निधन 71 वर्ष की आयु में 8 जुलाई 2026 को दिल्ली में हुआ। सभा अपने 6 पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति।
2: जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा
0: और उसे विकास और समृद्धि की महान ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी का निधन 74 वर्ष की आयु में 12 जुलाई 2026 को निधन हो गया है। सभा महामहिम अमीर शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर कतर के लोगों और शाही परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी।
3: मेघालय श्री जेम्स पेंगसांग कोंखल सांगमा।
4: जेम्स पेंगसांग कोंखल सांगमा, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं
0: नहीं, सदन के अंदर ये अपेक्षा है कि कुछ मर्यादाएं सदन की हमेशा रही है, उन मर्यादाओं परंपराओं को पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं। नो, मेरी सदन में हमेशा ये अपेक्षा रहेगी सदन की परंपरा और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मैं सबको उचित समय देता हूँ, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है। आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। प्लीज, प्रश्नकाल प्रश्न नंबर 1, धवन लक्ष्मण भाई पटेल। धवन लक्ष्मण भाई पटेल,
5: प्रश्न नंबर 1। मेरा प्रश्न मंत्री जी से यह है कि भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण हेतु प्रारंभ की गई ज्ञान भारत का पहला उद्देश्य और उसके प्रमुख घटक क्या है, तथा दक्षिण गुजरात के वलसाड संसदीय क्षेत्र के गोड़िया, कोकड़ा और वाली जैसे जनजाति के मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं के दस्तावेजीकरण किया जा रहा है और इसमें AI का उपयोग किया जा रहा है।
6: माननीय अध्यक्ष महोदय, विरासत हमें दिशा भी देता है, विरासत हमें दर्शन भी देता है, और इसलिए मोदी जी ने विकसित भारत की जब कल्पना करी तब रेड फोर्ट से अपने उद्बोधन में कहा था कि हमें विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत बनाने के लिए हम प्रेरणा कहाँ से लेंगे। मोदी जी ने प्राण लेलवाते हुए देश को कहा था कि हम विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प करेंगे विकसित भारत बनाने का। दूसरा प्रण लेलवाते हुए गुलामी को मानसिकता को छोड़ने की बात कही थी, और तीसरा प्रण लेलवाते हुए मोदी जी ने कहा था कि विरासत से प्रेरणा लेकर हम विकसित भारत बनाएंगे। हमारे मैनुस्क्रिप्ट हमारी विरासत है, और आज मंदिर के रूप में, चौक संस्थान के रूप में, महाविद्यालयों में, मठों में, जयों में और निजी संग्रहालयों में हमारी मैनुस्क्रिप्ट है। ये मैनुस्क्रिप्ट को हम ज्ञान भारत मिशन के द्वारा उसको आरक्षित करने के लिए, डिजिटलीकृत करने के लिए, रिसर्च ड्रिवन बनाने के लिए, जन सुलभी बनाने के लिए मोदी जी ने ज्ञान भारत मिशन का लॉन्च करा, और ये ज्ञान भारत मिशन के द्वारा देश में आज 1 करोड़ से अधिक मैनुस्क्रिप्ट का सर्वे करा गया। उसमें से ये मैनुस्क्रिप्ट में से 8 करोड़ अब डिजिटलाइज हो चुके हैं, और उसमें से 3,70,000 मैनुस्क्रिप्ट आज ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। और उसमें माननीय सदस्य ने कहा है कि अपनी लोकल लैंग्वेज में भी कोई जो मैनुस्क्रिप्ट होगी तो उसको भी सर्वे में शामिल करके उसको भी उसके ऊपर भी संशोधन करा जाएगा और डिजिटलाइज करा जाएगा।
0: माननीय सदस्यगण, संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च संस्था है, मेरा आपसे आग्रह है आप सदन के अंदर सार्थक चर्चा करें, संवाद करें, लोगों की जन आकांक्षाओं अपेक्षाओं को रखें। मैं सभी माननीय सदस्यों को उचित नियमों के तहत पर्याप्त समय पर्याप्त मौका दूंगा। मेरा आपसे आग्रह कि तख्तियां और नारेबाजी से सदन की मर्यादा नहीं बनती है। मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। मैं आपको प्रयास में दूंगा, अभी प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के अंदर नारेबाजी करना तख्तियां लेराना उचित नहीं है। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज आपसे आग्रह है कि अपनी सीट पर बैठें, सदन चलाने में सहयोग करें। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
7: तो लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। भारी हंगामा हुआ जिसके बाद स्पीकर ने कार्यवाही स्थगित कर दी है। जैसा कि अपेक्षित था कि कई मुद्दों के चलते विपक्ष जबरदस्त हंगामा करेगा और वैसा ही देखने को मिला।
8: और राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर बहस की मांग करता हुआ विपक्ष अपनी कुर्सियों से उठा और सबकी जुबान से एक ही नारा था और हंगामा चल रहा था। इस बीच में प्रश्नकाल शुरू तो हुआ, सवाल भी पूछा गया, लेकिन वो हंगामे के चलते उसकी भी आवाज कम ही आई और इतना ज्यादा शोर इतना ज्यादा हंगामा कि दोपहर 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। हालांकि अभी राज्यसभा की कार्यवाही चल रही है लेकिन लोकसभा की कार्यवाही बाधित हो गई है। और कल जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी उस सर्वदलीय बैठक में इस बात का अंदाजा लग ही गया था कि मॉनसून सेशन की शुरुआत कैसे होगी। पिछले साल जब मॉनसून सेशन की बात करें तभी हंगामा हुआ था और इस साल भी शुरुआत है।
7: मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गई तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, ये स्थगन तो हालांकि 12 बजे तक हुआ है लेकिन इस बात की भी काफी संभावना है कि पूरे दिन सदन का सत्र ना चल पाए जैसा कि पिछले सेशन में हमने देखा था।
9: जी बिल्कुल, देखिए पहले ही जो विपक्ष की बैठक हुई है उसमें साफ हो गया है और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बैठक की थी और कहा था कि ये निर्णय हुआ कि चंदा चोरी और नीट के मसले को लेकर सबसे पहले संसद में चर्चा होनी चाहिए, उसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी। और इसी को लेकर लगातार हंगामा हमने देखा कि किस तरीके से लामबंदी हो रही है और पूरा विपक्ष जो है स्ट्रैटेजी के तौर पे अपने अपने अपनी सीटों पर खड़ा हुआ नजर आया और मांग करते हुए नजर आया।
8: बिल्कुल, और मौसम में अब क्या रणनीति रहने वाली है, अभी कुछ तो दिखा है उसकी झलक देखने को मिली है, आगे के लिए क्या प्लानिंग की गई है?
9: बिल्कुल, देखिए अब ऐसा लगता है कि जो मानसून सत्र है राजीव ये बहुत हंगामेदार रहने वाला है क्योंकि जो तमाम मुद्दे हैं सड़कों पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक मार्च का भी आह्वान किया है सीजेपी ने और सोनम बांसुक का जो मसला है पूरा नीट का मसला वो गरमाया हुआ है उसको लेके
10: सरकार के सामने काफी आक्रामक नजर आ रहा है। और किरण रिजिजू साहब भी जब निकल रहे थे तो मैंने कहा कि सर हंगामा हो रहा है तो उन्होंने कहा एक दो दिन तो ये चलेगा। हालांकि प्रधानमंत्री ने भी अपील की है कि सेशन को प्रोडक्टों
8: को आप रखिए।
10: कुल मिला के अगर आप देखें तो विपक्ष ने दो टूक कह दिया है, चंदा चोरी और नीट ये मसला इस पर पहले डिस्कशन हो। आप स्थगन प्रस्ताव भी देखें तो जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं इन दोनों मुद्दों पर फोकस करते हुए उन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। राहुल गांधी खुद चिट्ठी लिख चुके हैं खड़गे साहब के साथ कि चंदा चोरी पर एक निष्पक्ष जांच की मांग होनी चाहिए। तो कुल मिला के एक तरफ जहां पे सियासत नीट को लेके गरमाई हुई है वहीं चंदा चोरी को भी याद दिलाने में विपक्ष कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा।
8: बिल्कुल मौसमी, लेकिन दोनों में से प्राथमिकता क्या, नीट पर चर्चा पहले चाहते हैं या चंदा चोरी पर चर्चा पहले चाहते हैं?
10: जो मेरे मुझे पता चला है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बराबर चर्चा की मांग है। अब सरकार ये के साथ जो है ये तय हो दो पर क्या टाइम अलॉट हो। आज बिल जो है चर्चा में था वो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने को लेकर 4 घंटे का टाइम लोकसभा में आवंटित किया गया था, लेकिन राहुल गांधी से जो हमारी बात हुई, राहुल गांधी ने कहा कि हम ये होने नहीं देंगे कि किसी और बिल पर चर्चा हो, पहले इन दोनों मुद्दे पर सरकार खरी उतरे, इन दोनों मुद्दों पर बताए कि वो क्या कर रही है और उसके बाद ही हम संसद में और कोई बिल या बात करेंगे।
7: हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, हालांकि लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है, लेकिन चर्चा इस बात को लेकर भी होनी है कि किस तरीके से उन सदस्यों को मान्यता दी जाए जो दूसरी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। इस पर क्या किसी तरह की आज कार्रवाई संभव है, क्योंकि फैसला जल्द होना है?
11: देखिए, यूपीटी के जो 6 बागी सांसद थे उनको जो है स्पीकर ने उस पर फैसला दे दिया है। अब वो एकनाथ शिंदे ग्रुप के साथ हैं और उनको उनका जो विलय हुआ है उसमें उसके लिए स्पीकर का फैसला आ गया है, लेकिन टीएमसी को लेकर कुछ अभी भी प्रोसेस जो है जारी है। दोनों ही तरफ से कागजात मांगे गए हैं स्पीकर की तरफ से। हो सकता है आज या कल तक जो है टीएमसी के बागी सांसदों के ऊपर भी जो है वो स्पीकर का फैसला आ जाए, क्योंकि जो बागी सांसदों ने मर्जर की अपील की है वो एनसीपीआई के अंदर की है, वो किसी दूसरी पार्टी में संसद के अंदर जिस पार्टी के नंबर्स हैं, प्रतिनिधित्व है, उनका उनके साथ नहीं किया है। एनसीपीआई एक रीजनल पार्टी है, उसके अंदर विलय की प्रोसेस को पूरी तरीके से देख रहे हैं और दोनों ही तरफ से, चाहे वो बागी सांसदों का गुट हो या फिर जो है ममता बनर्जी वाला टीएमसी का गुट हो, दोनों से कागजात जो है वो मांगे गए हैं। अब सवाल ये है कि स्पीकर कब इस पे फैसला लेंगे, लेकिन इतना जरूर है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं स्पीकर जल्द ही इस पे फैसला ले लेंगे, क्योंकि जो टीएमसी के बागी सांसदों की अलग सिटिंग की मांग की गई थी लोकसभा में उसको स्पीकर ने मान्य कर दिया है। अगर स्पीकर ने इसको मान्य कर दिया तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जल्द ही जो है इस पर भी फैसला आ जाएगा।
8: इस पर निगाह रखिए, टीएमसी के बागी सांसद ऑपोजिशन के आज के स्ट्रेटजी पर देखते हैं कि वो बिल्कुल क्लियर है कि वो चंदा चोरी पर और वो नीट पर सबसे पहले अपनी जो है बात रखना चाहते हैं और सरकार से जवाब सुनना चाहते हैं। इस पर सरकार की क्या स्ट्रेटजी है, क्या वो चंदा चोरी पर बहस के लिए, नीट पर बहस के लिए तैयार हैं?
11: देखिए, चंदा चोरी का मामला हो या नीट पेपर लीक का मामला हो, ये तमाम मुद्दे जो है वो विपक्ष सरकार को घेरना चाहता है, लेकिन सरकार का ये साफ साफ कहना है कि अगर आपको इन सब पे चर्चा करनी है तो इसको पहले आपको बीएससी में लाना पड़ेगा। बीएससी में आप जब सहमति बन जाएगी तो आप लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जो है इस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन नियमों के तहत, किस नियम के तहत आप चर्चा करना चाहते हैं? अगर आप लोकसभा के अंदर इस पर 184 पे करते हैं या 193 पे करते हैं तो वो उसके लिए क्या है, और ये तमाम जो है नियमों के तहत चर्चा हो, इसलिए बीएससी के अंदर जो है इसको लेकर चर्चा होगी पहले, और उसके बाद ही जो है सरकार ये तय करेगी कि कब सदन के अंदर किस विषय पे जो है वो चर्चा हो।
7: मौसमी सिंह मेरे सहयोगी भी जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को लेकर एक बड़ा संदेश दिया, उन्होंने कहा कि युवा ही इस देश की ताकत है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है, क्या इस पर कांग्रेस आज कोई जवाब देगी?
10: देखिए, साफ है कि राहुल गांधी छात्रों की गूंज हो या इन सब प्रेस वार्ताएं हो, कांग्रेस इन सबके जरिए नीट और युवाओं के मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही है, तो जो सियासी तर्क और हो रहा है उसको लेकर भी मुझे लगता है कि कोई ना कोई जवाब संसद से भरा जाएगा। लेकिन कांग्रेस की ये रणनीति है कि जितने ज़्यादा विपक्षी दलों को हम इन मुद्दों पर एक साथ लेके सरकार को घेर सकें, ना सिर्फ बयानबाजियों पर जाएं, उनकी कोशिश यही होगी। क्योंकि मॉनसून सत्र में देखिए आप जिस तरीके से सरकार ने 8 बिल लगाए हुए हैं चर्चा के लिए, तो भारी कामकाज की फेरिस्त है और उसको लेकर सरकार और सत्ता पक्ष के बीच में क्या सहमति बनती है, ये बड़ा सवाल
8: है। इस पे निगाह रहेंगी। मौसमी, आपका, हिमांशु, आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज।
12: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। In association with
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
12: Chogan Perfumes.
13: What's up, baby? It's Bretzky, and I'm here to tell you that SpinQuest.com is giving out free sweeps coins. All you gotta do is purchase a $10 coin pack, and guess what? They're gonna give you the coins from a $30 coin pack. That lets you play all your favorite games like Blackjack, Wanted, Dead or Wild, and we're talking real cash prizes, baby. SpinQuest.com.
14: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
15: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
16: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
17: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
12: The French edition for him.
18: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
6: AU सोच बदलो और बैंक भी।
7: पापा
8: सॉरी यार गलती हो गई है। ये चोट खर्चा वर्चा।
9: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
8: छक्का
9: सब कैशलेस हो गया
8: है। ला भाई मेरा बैट।
9: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
10: चार्ज हुआ यार।
11: बैट किसका है?
12: टाटा AIG है तो भरोसा है।
13: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
14: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
15: In association with Hind, बड़े आराम से Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
16: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
15: विमल बोलो जुबां केसरी।
17: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। Chogan Perfumes.
18: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
19: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
20: Hey there, it's Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville.
21: Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had.
20: And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues, and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcast,
21: in the TuneIn app,
20: or at TuneIn.com.
17: French edition for him and her.
5: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
6: AU
3: सोच बदलो और बैंक भी।
15: In association with Hind, बड़े आराम से
6: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
16: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
15: विमल बोलो जुबां केसरी।
13: उत्तर प्रदेश चुनाव का शंखनाद और इसकी पहली गूंज पंचायत आज तक के मंच पर।
22: इस बार एक नया रिकॉर्ड टूटने वाला है और
13: हैट्रिक का दावा।
22: पहली बार कोई सरकार तीसरी बार लगातार रिपीट करेगी।
13: विश्वास पूरा।
22: प्रतिष्ठित चैनल आज तक के माध्यम से बड़ी बेबाकी से कह सकता हूँ, विकसित उत्तर प्रदेश इस संकल्पना को केवल डबल इंजन के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पूरा कर सकती है।
13: चुनाव से पहले सबसे बड़ा राजनीतिक मंच पंचायत आज तक, जहां गूंजती है उत्तर प्रदेश चुनाव की पहली हुंकार।

0: नॉर्वे के डॉर्मिल शहर के पास लगी भीषण आग में 100 से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए हैं। पहाड़ी के ऊपर बने घरों में लगी ये आग पास के जंगलों तक फैल गई है, जिसकी वजह से आग पर काबू पाना काफी मुश्किल हो गया है। इस आग पर काबू के लिए सैकड़ों दमकल कर्मियों के साथ साथ हेलीकॉप्टर को लगाया गया है, जो लगातार आग पर पानी डाल रहे हैं। बचाव कर्मियों का कहना है कि तेज हवाओं की वजह से आग फैलती ही जा रही है। घटना के इंचार्ज फ्रोड प्रेस्टस ने बताया कि आग पहले घरों में लगी और देखते ही देखते पास के जंगल में फैल गई। वहीं शहर के मेयर ने इस घटना को बहुत दुखद बताया है और कहा कि पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है।
1: Og da så jeg det brant bak huset og var der med vannflaska mi som jeg hadde, og da kom det et helikopter og slapp vann som jeg fikk i nakken. Så det var litt skremmende, men bra.
0: Norge ki rajdhani Oslo se lagbhag 50 kilometer paschim mein maujood is ilake mein aag lagne ki wajah se ghana kala dhuan chhaya hua hai, jisse kai logon ko saans lene mein bhi pareshani ho rahi hai. हालांकि राहत की बात यह है कि इस आग में अभी तक किसी के हताहत होने या लापता होने की कोई खबर नहीं है। ये आग टेरेस हाउसिंग वाले इलाके में लगी है। बता दें कि यूरोप में पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से हाल के दिनों में फ्रांस, इटली और स्पेन सहित कई देशों के जंगलों में आग लगने की घटना हुई है, जिससे बड़ा नुकसान हुआ है। आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: मानसून सत्र शुरू होते ही लोकसभा में हंगामा, नीट और चुनाव चोरी पर चर्चा की मांग, सदन 12 बजे तक स्थगित, विपक्ष को पीएम का जवाब, कहा जहां तर्क और तथ्य होते हैं वहां तूफान की जरूरत नहीं होती।
1: संसद से सड़क तक विपक्ष की घेराबंदी, गठबंधन इंडिया के साथ खड़गे की बैठक, जंतर मंतर पर जमावड़ा, संसद मार्च के मद्देनजर पुलिस की घेराबंदी, कई रास्ते बंद, भारी सुरक्षा बंदोबस्त।
0: चढ़ाव चोरी मामले में एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट, आज चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजेस की बेंच करेगी सुनवाई।
1: सोलह साल बाद स्पेन बना फुटबॉल का बादशाह, फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया, फेरन टोरोस ने एक्स्ट्रा टाइम में दागा गोल, फ्रांस के एम्बापे ने मेस्सी को पछाड़कर गोल्डन बूट जीता।
0: जॉर्डन बना ईरान, अमेरिका जंग का नया एपिसेंटर, लगातार निशाना बना रहे तेहरान के ड्रोन, अमेरिका ने किया रात भर हमले का दावा, कहा ईरान को तबाह कर दिया।

0: उसमें दूंगा। अभी प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के अंदर नारेबाजी करना, तख्तियां ले रहना उचित नहीं है। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज आपसे आग्रह है कि अपनी सीट पर बैठें, सदन चलाने में सहयोग करें। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते।
1: सीधे आपको राज्यसभा लिए चलेंगे, जहां पर इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं।
2: जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं, और उसके लिए आज यहां जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश।
1: क्या वो ऑडियो चला गया?
3: राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो गई है और मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे और उन्होंने नीट का विषय उठाया और जो जनता कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा था उसका भी उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वहां जनता मंत्र पर प्रदर्शन चल रहे, तो राज्यसभा में खड़गे ने अब पेपर लीक का मुद्दा उठाया।
1: ये वही पेपर लीक है जिसको लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही थी। बच्चों पर लाठीचार्ज किया गया, ये खड़गे मुद्दा उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरीके से लाठीचार्ज करना उचित नहीं है। पेपर लीक पर उन्होंने कहा कि उचित कार्रवाई नहीं की गई।
3: और हमारे सहयोगी मौसमी सिंह लगातार हमारे से जुड़े हुए। मौसमी, अब एक बड़ा सवाल जो सत्ता पक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है कि आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को कोई जानकारी देते नहीं हैं, आप बिना नियमों के तहत चर्चा करना चाहते हैं, मतलब आप चर्चा चाहते हैं संसद में, तो नियमों के तहत आइए, चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं।
4: देखिए, कुल मिला के राजीव मांग इस बात की हो रही है कि पहले आप बिलों पे चर्चा नहीं की करें, क्योंकि अभी लोकसभा में जो संख्या बढ़ाने को लेकर बिल पर चर्चा है, राज्यसभा में नेशनल ऑनर वाले बिल को लेकर चर्चा है, वंदे मातरम वाले, तो इन दोनों मुद्दों को लेके जो है विपक्ष चाह रहा है कि पहले आप नीट और जो हो रहा है, घट रहा है सड़कों पर। आपने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वो मसला उठा दिया कि किस तरीके से लाठीचार्ज हो रहा है सड़कों पर, और आप इस मसले पर चर्चा कीजिए। तो बेहद आक्रामक तेवर यहाँ पे विपक्ष के हैं, और शायद सत्ता पक्ष भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने मांग की है कि सेशन को आप प्रोडक्टिव बनाइए, किरण रिजिजू ने भी कहा है कि हंगामे नहीं, डायलॉग से आप बातचीत से जो है मामले का समाधान ढूंढा जा सकता है। तो ये दोनों बात तो कही गई है, पर सत्ता पक्ष भी ये जान रहा है कि पहले एक दो दिन हंगामेदार रहने वाले हैं। जिस तरीके से विपक्ष जो है अपनी अपना एक कड़ा रुख इख्तियार किए हुए है, आप देखिए कि लोकसभा में भी पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा था, राहुल गांधी समेत तमाम नेता वहां पे मौजूद थे, और दोनों मसले ऐसे हैं जो जनता से सरोकार रखते हैं, युवाओं से सरोकार रखते हैं, और इसको लेकर दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं।
1: इस बीच राम मंदिर को लेकर लगातार मुद्दा गरमाता जा रहा है, चढ़ावा चोरी मामले पर संसद में भी तनातनी दिखना लगातार तय है, क्योंकि यूपी में चढ़ावा चोरी की एसआईटी जांच कर रही है और सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दे चुकी है। उधर संसद में विपक्ष चढ़ावा चोरी पर बीजेपी की घेराबंदी करने की तैयारी में है।
3: राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कामकाज स्थगित करने का प्रस्ताव दिया है, स्थगन प्रस्ताव दिया है। संसद पहुंचे अखिलेश यादव ने भी नया हमला किया है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार का इस पर रुख क्या होता है।
5: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर असली संग्राम तो अब शुरू हो रहा है। संसद के मॉनसून सत्र का आगाज हुआ है और इसी के साथ जंग लखनऊ और यूपी से निकलकर दिल्ली और संसद तक आ चुकी है। राज्यसभा में कांग्रेस ने कामकाज स्थगित करने का नोटिस दिया है, तो तमाम विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है।
6: इतिहास अगर हम पलटे हैं तो विदेशी लुटेरों ने मंदिर लूटे थे, विश्वविद्यालय तोड़े थे, आंदोलनकारियों को प्रताड़ित किया था, आज भाई भाजपा कर रही है। भाजपा सरकार नहीं, अहंकार की तरह काम कर रही है, अहंकार है उनके अंदर।
7: देखिए, सरकार काफ़ी दिनों से दिखाई दे रही है कि वो मूल मुद्दों पर किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार नहीं, और इसीलिए आज तक ये नहीं बता पा रही कि कि

0: सदन के अंदर क्या राम मंदिर पर चर्चा होगा, क्या नीट के विषय पर चर्चा होगा, और चर्चा होगा तो किस तारीख पर चर्चा होगा, आज तक सरकार नहीं बता पा रही।
1: अयोध्या पर मॉनसून सत्र में हमलों की बौछार इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है और इस चुनावी मुकाबले में राम मंदिर के सवाल पर मोर्चाबंदी तय है। जिस राम मंदिर आंदोलन के मुद्दे पर बीजेपी सत्ता में आई, उसी राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर बीजेपी को जवाब देना पड़ रहा है।
2: जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई, वे आज आस्था की बात करते हैं। देश के उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल कर रहे थे कि साहब राम और कृष्ण हुए ही नहीं, वे लोग आज आस्था की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने हर स्थिति में राम मंदिर का निर्माण न हो, उस मुद्दे पर हर प्रकार से बाधा और बैरियर लगाने के प्रयास की, अपने अधिवक्ता खड़े किए राम मंदिर के विरोध में, आज वे आस्था की बात कर रहे हैं।
1: चढ़ावा चोरी की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और हर खुलासा ये सबूत है कि कैसे खुल्लम खुल्ला रामधन की लूट हो रही थी। सूत्रों के मुताबिक आरोपी टिन्नू यादव की निशानदेही पर एसआईटी ने एक फाइल बरामद की है। फाइल से पुलिस ने जमीन की खरीद और मुआवजों से जुड़े दस्तावेज बरामद किए हैं। दस्तावेज से ये पता चला है कि टिन्नू यादव अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसले ले रहा था। टिन्नू के ठिकाने से पुलिस ने एक कार और महंगी बाइक बरामद की है। टिन्नू यादव की पत्नी के नाम से पंजीकृत एक फर्म का पूरा रिकॉर्ड पुलिस ने तलब किया है। स्टेट जीएसटी के अधिकारियों से पुलिस ने संपर्क किया है। फर्म के टर्नओवर, जीएसटी भुगतान, बैंक खातों, रिटर्न और अन्य वित्तीय दस्तावेजों का मिलान कर उसके कारोबार और धन के स्रोतों की पड़ताल की जाएगी। जेल में बंद रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू की पत्नी के नाम से सौंदर्य कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर नामक फर्म पंजीकृत है। आशंका है कि टिन्नू ने रकम को व्हाइट मनी में बदलने के लिए इस फर्म में निवेश किया होगा। तो अयोध्या पर दिल्ली से लखनऊ तक अभी कई एक्शन और रिएक्शन देखने को मिलेंगे। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
3: मेरे दो सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, मौसमी सिंह और समर श्रीवास्तव। मौसमी, अब तो स्टेटस रिपोर्ट भी एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में दे दी है, सुप्रीम कोर्ट के अधीन ये पूरा मामला चल रहा है। विपक्ष की एग्जैक्ट मांग क्या है इस पूरे मामले को लेकर? शायद मौसमी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। समर्थ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर्थ, अब तो मुख्यमंत्री भी इस पर जवाब दे चुके हैं, आज तक के मंच पर पूरा स्पष्टीकरण आ चुका है, कार्रवाई चल रही है, स्टेटस रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है, तो अब आगे की कार्रवाई क्या होगी इसमें? इंडिया
4: नहीं, देखिए कार्रवाई लगातार चल रही है, बात सही है, और इन्वेस्टिगेशन जो है वो अयोध्या की दिन पर दिन आगे बढ़ रही है। अभी लगभग समझ लीजिए 23 घंटे की जो रिमांड रही टिन्नू यादव की और मनीष यादव की, उसमें कई चीजें सामने आई हैं। टिन्नू यादव ने सूत्रों के मुताबिक ये एक्सेप्ट किया है कि ये जो भी चंदा चोरी हो रही थी वो उसके संज्ञान में थी। कुछ ऐसे दस्तावेज भी हैं जमीनी खरीद के जिनको बताया जा रहा है कि टिन्नू यादव ने चंदा चोरी के जो रुपए थे उनसे लिया है, उन जमीनों को उससे लिया है। तो अब पुलिस जो जांच पड़ताल जो है उन जमीनों पर भी करने वाली है जो टिन्नू यादव के नाम पर बताई जा रही जो उसने कबूली है। इतना ही नहीं, टिन्नू यादव ने यह भी कहा है कि उसने अपने भतीजे मनीष यादव को वहां गणना प्रक्रिया में इसलिए ही लगाया कि जिससे उसका शेयर जो है वो बढ़ जाए, यानी कि एक शेयर जो टिन्नू यादव को मिलता था चंदा चोरी का, इसके अलावा क्योंकि भतीजा घर का होगा तो वो शेयर भी कुल मिलाकर घर पर आएगा। इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि चंपत राय की वजह से ही उसकी वहां पर इतनी चलती थी जबकि वो ट्रस्ट का सदस्य नहीं था। तो टिन्नू यादव ने कई बड़े राज खोले। इसके अलावा पुलिस ने एक महंगी बाइक और एक कार बरामद
5: की, तमाम चीजें बरामद की गई है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। अब बात वंदे मातरम की करेंगे। वंदे मातरम पर केंद्र की मोदी सरकार एक बड़ा कदम आगे बढ़ाने की तैयारी में। इसी मौसम सत्र में मोदी सरकार एक संशोधित विधेयक लेकर आ रही है जिसमें वंदे मातरम के अपमान पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है।
3: गृहमंत्री अमित शाह संसद के उच्च सदन राज्यसभा में बिल पेश करेंगे, लेकिन इस बिल को लेकर विपक्ष की तरफ से हमले तय हैं। विपक्ष का आरोप है कि नए प्रावधानों का इस्तेमाल विरोधियों से राजनीतिक बदले के लिए किया जा सकता है।
6: जब लाखों लाख और करोड़ों लोग और करोड़ों परिवार इस आंदोलन से जुड़े हों, जिन बच्चों की जान गई उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार को। और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र नौजवान युवा जब यहाँ आए हैं, और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती है। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहें अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। सरकार ऐसी ही है, और सरकार के अगर पन्ने पलटे, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में थी, एक साल का मेडिकल का कोर्स जीरो हो गया था, सेशन जीरो हो गया था। ये बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ये कोशिश रहती है घोटाला करने, और पेपर लीक में जितने लोग शामिल होते हैं वो भाजपा ही हैं। यूपी में बाकायदा ऑडिट किया हम लोगों ने, और एक किताब जारी की, और जारी करके ये बताया कि कितने पेपर लीक हुए हैं। कोई दोषी नहीं पकड़ा गया आज तक, 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, लेकिन कोई भी दोषी नहीं पकड़ा गया। इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि बीजेपी के लोग उसमें शामिल रहे, और नौकरी न देना इसलिए भी सरकार करती क्योंकि आरक्षण देना पड़ेगा। अगर सरकारी नौकरी होगी तो आरक्षण देना पड़ेगा, ये भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे। आउटसोर्स से करेंगे तो भ्रष्टाचार कर पाएंगे। जब नौकरी सरकारी मिलेगी तो बजट से पैसा जाएगा। दुख है कि आज लाठी चली है। मैं अपने युवा सांसदों से कहूंगा कि जिन बच्चों पर लाठी पड़ी है और जंतर मंतर पर अगर वो मिलने जाना चाहते हैं तो जाए, मिल करके आए और पार्टी का संदेश दें कि हम उनके साथ हैं। नौकरी की चोरी नहीं है, बीजेपी CCCC है, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी। और सोचिए कहाँ पर चोरी हुई है,
7: भगवान राम के मंदिर में,
6: मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रभु राम जी के यहाँ पर चोरी हो गई। कौन नहीं जानता, आपके चैनल नहीं जानते क्या, आप सब जानते हो चोरी हुई है, और पकड़े गए हैं लोग। और कहीं तो ये लगता है कि दिल्ली वाले, लखनऊ वाले, लखनऊ वाले दिल्ली वालों को नीचा दिखाना चाहते हैं। क्या SIT का गठन दिल्ली वालों से पूछ के हुआ था क्या? कहीं ऐसा लगता है क्योंकि दिल्ली वालों ने उसका उद्घाटन किया था, इसे लखनऊ वालों ने SIT जांच करा करके अपने हाथ में चीजें रख ली।
7: बड़ी मछली को बचाना चाहते हैं।
6: और पैसा कहाँ कहाँ गया है, अवधेश जी से बेहतर कौन जानता होगा, वो सांसद है वहां के, और सुना है कि कर्नाटक महाराष्ट्र तक वहां से चीजें जाती थी।
7: गोबर में पैसा।
6: इसलिए मैं अपने सांसद कहूंगा कि उनसे मिलकर के आए, उनके हाल चाल लेकर के आए।
8: हम सभी लोग जा रहे हैं।
3: और इस बीच वंदे मातरम पर केंद्र की सरकार ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाने की तैयारी की है। मॉनसून सत्र में मोदी सरकार एक संशोधन विधेयक लाने जा रही है, जिसके तहत वंदे मातरम के अपमान पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। गृह मंत्री अमित शाह संसद के उच्च सदन राज्यसभा में बिल पेश करेंगे, लेकिन इस बिल को लेकर विपक्ष की तरफ से हमले तय है। विपक्ष का आरोप है कि नए प्रावधानों का इस्तेमाल विरोधियों से राजनीतिक बदले के लिए किया जा सकता है।
5: हमारे संवाददाता हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, क्या प्लानिंग है, चूंकि गृहमंत्री अमित शाह प्रस्ताव लेकर आएंगे, सत्ता पक्ष कितने बजे और ऑपोजिशन की क्या इस पर प्लानिंग है?
9: देखिए बिल्कुल, सत्ता पक्ष की तरफ से जो है वो पूरी प्लानिंग है कि इस बिल को जो है मेजोरिटी से पास करा दिया जाए, क्योंकि राज्यसभा में सरकार के पास जो है वो संख्या बल की कोई कमी नहीं है, और इसलिए आज गृहमंत्री अमित शाह जो है वो वंदे मातरम बिल को जो है 12:10 के करीब जो है वो राज्यसभा के अंदर पेश करेंगे और उसके बाद रखेंगे। विपक्ष का ये कहना है कि जो प्रावधान है 3 साल की सजा का, वो विपक्षियों के ऊपर जो है वो इसको लागू कर उनको नुकसान पहुंचाने का है, और इसीलिए वो इस बिल का विरोध करेंगे। तो देखना ये है कि सरकार की तरफ से क्या तर्क दिए जाएंगे। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वो इस बिल पे समर्थन नहीं करने वाले और इस बिल को पास नहीं होने देंगे, लेकिन राज्यसभा में सरकार के पास जो है वो नंबर्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राज्यसभा में इस बिल को पास कराना सरकार के लिए कोई अड़चन आएगी। लेकिन इतना जरूर है कि लोकसभा में भी सरकार के पास बहुमत है, और ऐसे में इस बिल को दोनों ही सदनों में जो है मंजूरी मिल सकती है, इसलिए कोई 2/3 मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, बल्कि सिंपल मेजोरिटी की जो है वो जरूरत होगी जो सरकार के पास दोनों ही सदनों में है। हाँ, हंगामा ना हो, आज पहला दिन है लोकसभा में, हमने देखा हंगामा हुआ राज्यसभा में, जो नए सांसद है उनकी शपथ ग्रहण के बाद जो है वो हंगामा हुआ है, तो ये जरूर है कि आज एक भी या दो दिन हंगामा जरूर हो सकता है, उसको लेकर सदन की कार्रवाई जो है थोड़ी बाधित हो सकती है, लेकिन इस बिल को पास कराना सरकार के लिए किसी भी तरीके से मुश्किल नहीं रहने वाला है।
5: लेकिन हिमांशु ऑपोजिशन आप बता रहे हैं कि वो अपनी प्लानिंग के साथ आया, ऑपोजिशन तो खूब हंगामा कर रहा है, मतलब क्या राज्यसभा में पटल पर रखने भी दिया जाएगा इस संशोधन को, क्योंकि वो तो चंदा चोरी और नीट के मामले पर चर्चा चाह रहे हैं।
9: देखिए इसीलिए सदन के अंदर हंगामा है, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, चंदा चोरी का मामला है या नीट पेपर लीक का मामला है जिसपे विपक्ष चाहता है कि जल्द से जल्द जो है वो चर्चा हो जाए। सरकार का ये कहना है कि आप इसको पूरे जो भी आप चर्चा चाहते हैं वो बीएससी के अंदर उसको डिस्कस किया जाए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर जब डिस्कस कर लेंगे उसके बाद जो है ये तय किया जाएगा कि किस दिन किस सदन में कितनी देर की चर्चा होगी।
3: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ यहाँ रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
12: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo, flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd. To the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
13: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
14: Stay in the game with TuneIn. Hear nonstop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.
15: Sokudo.

0: लहरों का ये शोर डरा रहा है, साथ ही उस खतरे का भी साफ इशारा कर रहा है जो इन लहरों के साथ पुंज के तमाम इलाकों में बढ़ता जा रहा है। देर रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश पुंज के लोगों के लिए आफत लेकर आई है। कहीं पुल तबाह हो गए हैं, कहीं घरों को नुकसान पहुंचा है। मानसूनी प्रहार से पूरे पुंज जिले का हाल बेहद बुरा है। इन तस्वीरों को देखिए, बारिश के मौसम में जो दीवार पुल की हिफाजत के लिए बनाई थी वो देर रात आए उफान के साथ बहती चली गई, जिसके बाद इस पुल पर भी खतरा मंडरा रहा है। पुंछ में तेज बारिश के बीच नदी का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंचा, लोगों को भारी नुकसान हुआ। अब वहां से बर्बादी की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं।
1: आप देख सकते हो रात की बारिश की वजह से हमारा बहुत सा नुकसान हो गया हुआ है, तो हमने पहले भी बहुत जगह अपील की कि हमें यहाँ पे क्रेट और डंगा वगैरह डाल के दो, हम अपना बिजनेस चलाएं, लेकिन हमारी किसी ने सुनी नहीं। और देख सकते हो आज हमारा 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया, और हमारी आटा चक्की है, फैक्ट्री है, पीछे वेल्डिंग की दुकान है, सारी बह गई है, और हमारी मस्जिद भी बह चुकी है। और हम यही अपील करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ मिले, मुजीफा वगैरह, कि हम अपना बिजनेस वापस स्टैंड करें, क्योंकि हम लोग लोन लेके बिजनेस खड़ा करते हैं। और आप देख सकते हो कि कितना लॉस हो गया, अब हम इसी से हमारा घर चलता है, यही सारा लॉस हो गया तो हम कैसे करेंगे।
0: सिर्फ पुंछ और राजौरी पर ही मानसून की मार नहीं पड़ी है, बल्कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। किश्तवाड़ की इन तस्वीरों को देखिए, नदी का उफान साफ बता रहा है कि यहाँ संकट का दायरा किस तरह बढ़ता जा रहा है। जो इलाके नदी के किनारे बसे हैं वो खतरे से सबसे ज्यादा घिरे हैं। बारिश के बीच जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर लैंडस्लाइड ने भी मुसीबत बढ़ा दी है। रास्ते बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिन जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में बारिश का हाल कुछ ऐसा ही रहने वाला है, जो लोगों का संकट और ज्यादा बढ़ा सकता है। आज तक ब्यूरो।

0: अक्सर देखा गया है कि घर मिलने के बाद सोसाइटी के मेंटेनेंस फंड को लेकर बिल्डर और रेजिडेंट्स के बीच खींचतान शुरू हो जाती है। होम बायर्स की इसी बड़ी टेंशन को दूर करने के लिए यूपी आरईआरए ने नए नियमों के जरिए बिल्डर्स की मनमानी पर पूरी तरह से लगाम लगा दी है। इस नए आदेश के मुताबिक बिल्डरों को खरीदारों से वसूली गई इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी यानी आईएफएमएस का पूरा पैसा आरडब्ल्यूए या एओए को सौंपना होगा। प्रोजेक्ट का हैंडओवर होते ही कॉमन एरिया की जिम्मेदारी के साथ ये पूरा फंड आरडब्ल्यूए के खाते में ट्रांसफर करना जरूरी कर दिया गया है। बिल्डर को पाई पाई का हिसाब देने के लिए एक डिटेल्ड ट्रांसफर स्टेटमेंट भी सौंपना होगा, जिसमें यूनिट के हिसाब से कलेक्शन और खर्च की पूरी जानकारी होगी। अथॉरिटी ने इस फंड की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई सख्त निर्देश जारी किए हैं। नियमों के मुताबिक बिल्डर्स को आईएफएमएस का पैसा अलग बैंक अकाउंट में रखना होगा। इस पैसे को प्रोजेक्ट के दूसरे फंड या सामान्य कामकाज के साथ मिक्स नहीं किया जाएगा। फंड की सेफ्टी और बेहतर रिटर्न के लिए इस रकम को सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली एफडी में इन्वेस्ट करना होगा। यूपी रेरा के इस कड़े कदम से होम बायर्स का करोड़ों रुपया सुरक्षित हो गया है, जो कि पहले अक्सर विवादों की भेंट चढ़ जाते थे।
1: एक सेपरेट बैंक अकाउंट में इस जो फंड्स को रखना और जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए और हैंडओवर हो एसोसिएशन को, ये एज सच पूरा का पूरा कॉर्पस जो है वो हैंडओवर हो जाए और कितना किस रेंज में किस इस अपार्टमेंट साइजेस के बेसिस पे ये चार्ज किया जाएगा और इस तरीके की चीजें जो प्रोविजंस इस रेगुलेशन के जरिए आई हैं वो काफी ट्रांसपेरेंट रहेंगी और काफी इश्यूज जो हम अक्सर कोर्ट्स में देखते रहे हैं, इवन हरियाणा में हम खुद कई ऑर्डर्स इस तरीके से आए कि फंड्स जो है कॉर्पस जो है वो हैंडओवर किया जाए, इसके अकाउंट्स प्रॉपर तरीके से मेंटेन किए जाए।
0: इस ऐतिहासिक सुधार को जमीन पर उतारने के लिए रेगुलेटर ने प्रॉपर्टी की कैटेगरी के हिसाब से इसके रेट भी तय कर दिए हैं, जिससे किसी भी स्तर पर कोई कंफ्यूजन ना रहे। मल्टी स्टोरी ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए आईएफएमएस की दरें 20 रुपए से लेकर 100 रुपए प्रति स्क्वायर फीट, नॉन सेंट्रल एसी वाले कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए 40 रुपए प्रति स्क्वायर फीट और सेंट्रली एयर कंडीशनर वाले बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए खरीदारों को 50 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से भुगतान करना होगा। अथॉरिटी ने आरडब्ल्यूए के लिए भी कड़े नियम बनाए हैं, जिससे जनता के पैसे का कोई गलत इस्तेमाल ना हो सके। इस रिजर्व फंड का इस्तेमाल लिफ्ट, लाइटिंग, पार्क और कॉमन एरिया के मेंटेनेंस या रिपेयरिंग जैसे खर्चों के लिए ही किया जा सकेगा। इस रकम को मंथली मेंटेनेंस के रेगुलर खर्चों से पूरी तरह अलग रखना होगा। आरडब्ल्यूए को इस फंड के खर्च का पूरा हिसाब रखना होगा और हर साल सीए से इसका ऑडिट कराना होगा। ऑडिट रिपोर्ट को फाइनल होने के 3 महीने के भीतर एजीएम में निवासियों के सामने रखना होगा। उम्मीद है कि रेगुलेटर के इन सख्त और पारदर्शी नियमों के बाद हाउसिंग सोसाइटियों में बरसों से चले आ रहे विवाद खत्म होंगे और होम बायर्स का अपने आशियाने को सवारने का सपना बिना किसी धोखाधड़ी के सच हो सकेगा। आज तक ब्यूरो।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

डिंपल यादव जंतर मंतर पहुंच रही हैं। संसद से सड़क तक सरकार की घेराबंदी, जंतर मंतर पर भारी जमावड़ा। संसद मार्च के मद्देनजर पुलिस की घेराबंदी, बंद मेट्रो स्टेशन को खोला गया, भारी सुरक्षा बंदोबस्त। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई।

0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढौंडियाल। सीधा सबसे पहले आपको संसद की कार्यवाही में ही लिए चल।
1: आइटम नंबर 5, श्री कीर्ति वर्धन सिंह जी। सर, विद योर परमिशन आई राइज टू ले ऑन द टेबल ऑफ द हाउस द पेपर्स पर्टेनिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एज मेंशन्ड अगेंस्ट माय नेम एट सीरियल नंबर 5 इन टुडेज लिस्ट ऑफ बिजनेस। आइटम नंबर 6, श्री सुरेश गोपी जी।
2: मेघवाल जी को बुला दो।
1: माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी, आइटम नंबर 6।
3: थैंक यू चेयरपर्सन सर, मैं आपकी अनुमति से लोकसभा की संशोधित कार्य सूची के क्रम संख्या 6 पर अंकित दस्तावेज जो श्री गोपी जी के नाम से अंकित है आपके अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। थैंक यू।
1: आइटम नंबर 7, श्री इतेला राजेंद्र जी।
4: थैंक यू चेयरमैन सर। सर, आई वेट टू नो दैट दिस हाउस डू रिकमेंडेड टू राज्यसभा दैट राज्यसभा इलेक्ट टू मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इन अकॉर्डिंग विद द सिस्टम ऑफ प्रपोजल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट टू द गेम कमिटी ऑन ऑफिसेस ऑफ ट्रैफिक इन द वैकेंसीज कॉज्ड बाय द रिटायरमेंट ऑफ श्री एन आर एलंगो एंड श्री दीपक प्रकाश फ्रॉम राज्यसभा and do communicate to this house the name of the two members who elected by Rajya Sabha to a joint committee. Thank you, sir.
1: कि श्री इताला राजेंद्र जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।
3: ऑनरेबल चेयरपर्सन सर, आई विश टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस ए बिल फर्दर टू अमेंड द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेज एक्ट 1956।
1: अनर्बल सदस्य डॉक्टर के काव्या जी। विधायक का प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पुनर्स्थापित करें।
3: ऑनरेबल चेयरपर्सन सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल। थैंक यू।
1: आइटम नंबर 9, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।
3: Honorable Chairperson sir, with your kind permission, I rise to lay on the table an explanatory statement, Hindi and English version, showing reasons for immediate legislation by promulgation of the Supreme Court number of judges amendment ordinance 2026, number 1 of 2026. Thank you, sir.
1: Mananya Sadasyagan, kripa karke aap sab log baith jaiye, sadan ka mahatvapurna samay hai। सभी विषय के ऊपर चर्चा होगा सदन में। आपका जो भी मुद्दे है इस मुद्दे के ऊपर भी चर्चा होगा सदन में। ये व्यवहार ठीक नहीं है, ये व्यवहार ठीक नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी ने बार बार इसको रिपीट किया है। ऐसे नारेबाजी करने से सदन नहीं चलेगा जी। कृपा करके आप सब लोग अपना आसन पे बैठ जाइए। आपका सभी विषय के ऊपर सदन में चर्चा होगा, सदन में चर्चा होगा सभी विषय। कृपा करके आप सब लोग बैठ जाइए, कृपा करके आप सब लोग बैठ जाइए। देश में कई सारे जगह पर, कई सारे प्रदेशों में बाढ़ का बड़ा समस्या है, उसके ऊपर चर्चा कीजिए। बाढ़ का समस्या है, लोग भुगत रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा कीजिए। प्लीज कृपा करके आप सब लोग बैठ जाइए। प्लीज, ऐसा नहीं है, आज पहला दिन है मानसून सेशन का। आज का दिन आप सब लोग सहयोग कीजिए। प्लीज आप सब लोग सहयोग कीजिए, पहला दिन है। देश के जनता को एक अच्छा मैसेज दीजिए। सदन सहमति से चलता है। सदन आपको भी सुनेगा, सबका सुनेगा। प्लीज आप अपने आसन पर जाके विराज की। प्लीज नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन
0: हमारे संवाददाता मौसमी सिंह भी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मौसमी, अब चैलेंजेस ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा हैं सरकार के सामने, क्योंकि ऑपोजिशन अब अड़ा हुआ है। इस बीच में अखिलेश, राहुल गांधी, इनकी क्या क्या प्लानिंग हुई है, कैसे ये लोग आगे बढ़ेंगे सदन में?
5: देखिए, बड़ी खबर जो राजीव है, अभी आपने देखा कि कितना हंगामा हो रहा है, उसमें जो बिल है जजेस की संख्या को बढ़ाने को लेकर 1956 का जो एक्ट है उसमें जो संशोधन है उस बिल को अर्जुन राम मेघवाल ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। दूसरी बड़ी खबर जो आ रही है, इसी पूरे हंगामे के बीच अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिले हैं, तो महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक तरफ चंदा चोरी जो है राम मंदिर में वो अहम मुद्दा बना हुआ है, तो जाहिर तौर पे किस तरीके से संतुलन बनाना है, किस तरीके से समन्वय दोनों बड़े विपक्षी दलों में बनाना है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और अपने कुनबे को कैसे बचाना है, जिस तरह से दोनों की संख्या अगर आप जोड़ लें तो 137 आती है, 137, और ऐसे में लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश हो रही है, कवायद हो रही है, तो दो बड़े विपक्ष के नेता संसद में इस पूरे बैकड्रॉप में मिल रहे हैं। अपने आप में ये वार्ता बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि संसद में किस तरीके से सरकार को घेरना है, इस पर डिटेल में चर्चा भी हुई होगी। आपने देखा कि अभी किस तरीके से तमाम विपक्ष के सांसद इस बात का विरोध कर रहे थे कि कोई काम नहीं होना चाहिए, और इस शोर शराबे में ही अर्जुन राम मेघवाल साहब ने
0: ये जो मुलाकात आप जिसकी बात कर रहे हैं, इसमें राहुल और अखिलेश क्यों, मतलब ऑपोजिशन में और भी लीडर्स हैं, और भी पॉलिटिकल पार्टी, या फिर यही दल जो निर्णय लेंगे वो बाकी सभी दलों को ऑपोजिशन के मान्य है, इसलिए दोनों मिल रहे हैं?
5: नहीं, देखिए राजीव, अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव भी आने वाले हैं, चंदा चोरी को लेकर भी ये पहली मुलाकात होगी। चंदा चोरी का पूरा मसला जो सामने आया है उसके बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी की मुलाकात नहीं हुई है। कल खड़गे और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, पहली बार राहुल गांधी चंदा चोरी वाले मसले पर बोल रहे हैं, तो उनको अखिलेश यादव को भी ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, क्योंकि चाहे कांग्रेस के नेता कुछ भी कह ले, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही सबसे बड़ी ताकत है विपक्ष की और सबसे बड़ी संख्या में है, और कांग्रेस जो जूनियर पार्टनर है, तो ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन दोनों दलों के जो नेता है वो एक राय रखे। ऊपर से दूसरी बात, बड़ी बात, जो नीट एग्जाम है वो एक राष्ट्र मुद्दा है, राहुल गांधी इस बात को उठा रहे हैं, तो राहुल गांधी चाहते होंगे कि अखिलेश यादव भी ऑन बोर्ड हो इस पूरे मसले को लेके, और जिस तरीके से बाकी विपक्षी दल टूटे हुए हैं, सुप्रिया सुले के आपने सुन लिया है किस तरह से शरद पवार का दल जो है वो डिलिमिटेशन बिल का समर्थन कर सकता है, तो डिलिमिटेशन बिल की तलवार भी लटक रही है विपक्ष के सामने, जो सबसे ज्यादा खामियाजा विपक्ष को लगता है कि कांग्रेस और सपा को उठाना पड़ेगा। तो ऐसे में, क्योंकि चुनाव सबसे पहले वहां पे होने और आगे भी लोकसभा के नतीजों पर ही असर डाल सकता
0: है। मौसम, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम लौटते हैं। हंगामा जबरदस्त देखने को मिल रहा है, सिर्फ चंदा चोरी नहीं बल्कि नीट का विषय भी, पेपर लीक का मुद्दा भी उठाया जा रहा है, और आज राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस विषय को उठाया। आपको सुनाते हैं क्या कहा।
6: टू पुट फोर्थ माय व्यूज अबाउट दिस पेपर लीक एंड नीट एग्जामिनेशन घोटाला एंड नो चंदा चोरी तो है ही है, सब उसके समर्थक उधर बैठे हैं, लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है।
0: वहीं से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के बाहर अपने संबोधन में कहा कि यह सत्र बहुत ऐतिहासिक है, इस सत्र में सरकार कई अहम बिल लाने वाली है, साथ ही पीएम ने विपक्षी दलों से सकारात्मक रवैया अपनाने और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने की अपील की थी।
7: संसद सत्र की शुरुआत के पहले संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया के सामने बात रखते हुए एक अलग अंदाज में पूरी बातें कही। प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया कि मानसून और मानसून सत्र दोनों प्रोएक्टिव होते हैं, और ज्यादा जो प्रोएक्टिव होते हैं वो प्रोडक्टिव होते हैं। प्रोडक्टिव चीजें देश के लिए काफी फायदेमंद होती हैं। इस तरीके की बात कह करके प्रधानमंत्री ने संसद के मानसून सत्र को लेकर के एक नई दिशा तय कर दी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले सत्र में हंगामा हो रहा था कई मुद्दों को लेकर के, और विपक्षी पार्टियां अभी भी इस सत्र में चाहे वो चढ़ावा चोरी हो या फिर इसके साथ साथ जो दूसरे मुद्दे हैं उन तमाम मुद्दों को लेकर के हंगामा करने की बात कर रही है, ऐसे में प्रधानमंत्री ने संसद सत्र को लेकर के ये कहा है कि अगर प्रोएक्टिव तरीके से काम किया जाएगा तो संसद का सत्र भी काफी प्रोडक्टिव होगा। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री के द्वारा युवाओं के द्वारा जो स्टार्टअप शुरू किए जा रहे हैं उसकी भी अपने बयान के दौरान सराहना की गई, और उन्होंने कहा कि युवा जो 28 साल के हैं वो अलग तरीके से स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं जो कि देश को आगे बढ़ा रहा है। एक तरीके से बिना नाम लिए हुए प्रधानमंत्री ने 56 साल के युवा को लेकर के भी उनके द्वारा तंज कसा गया, लेकिन इस पर उनके द्वारा किसी का भी नाम नहीं लिया गया।
0: अपने संबोधन में पीएम मोदी ने राहुल गांधी का भी नाम लिए बिना निशाना साधा। पीएम ने कहा कि 28 साल के नौजवानों ने अंतरिक्ष में देश का झंडा गाड़ दिया है, मैं 56 साल के युवा की बात नहीं कर रहा।
8: भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है, बहुत बड़ी सफलता है, और ये जो स्काईरूट स्टार्टअप है उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है, मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं।
0: कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने भी प्रधानमंत्री के बयान पर तीखा पलटवार किया। रेणुका ने कहा कि पीएम मोदी को किसी और की चिंता नहीं करनी चाहिए।
9: ना आप अपना छाती का चिंता रखिए, आपका 56 इंच का छाती है ना, आप उसका ख्याल रखिए। हवा उतर रही है, इतना पाप करने के बाद मानसून क्या भगवान भी बख्शेगा नहीं हमें? लूट मची है, चंदा चोरी हर मंदिर में, तो ये मानसून का ये बड़ा माहिर है वे, असली मुद्दों से हटकर ये नॉनसेंस बताते।
0: संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन जबरदस्त हंगामा भी देखने को मिला है और ऐतिहासिक कदम उठाने की भी तैयारियां। केंद्र सरकार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान या उसे गाने में बाधा पैदा करने वालों के खिलाफ एक बिल लेकर आ रही है और इस बिल को राज्यसभा में पेश भी किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को सदन के पटल पर रखेंगे और संसद के एजेंडे के मुताबिक इस विधेयक का नाम राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक है और इसके जरिए सरकार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन की बिल की तरह समान कानूनी और वैधानिक संरक्षण देना चाहती है। सत्र के दौरान और कौन कौन सा बिल पेश होने वाला है इस पर और जानकारी दे रहे हैं पीयूष मिश्रा।
10: संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और 13 अगस्त तक ये सत्र चलेगा। इस बार सत्र में सरकार कई बड़े विधेयक लाने की तैयारी कर रही है जिसमें FCRA बिल के साथ साथ वंदे मातरम को लेकर भी सरकार एक बिल लेकर आने वाली है जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी इंसान वंदे मातरम जो नेशनल सॉन्ग है उसकी इंसल्ट करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सरकार एजुकेशन बिल भी लेकर आ सकती है क्योंकि JPC को इस बिल को लेकर कहा गया था कि इस पर स्क्रूटनी करें और JPC इसको लेकर अब एक रिपोर्ट अपनी अडॉप्ट भी करने वाली है जिसके बाद ये बिल संसद में लाया जा सकता है। इसके अलावा और भी कई ऐसे बिल हैं। आज की अगर हम बात करें तो सरकार सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल लेकर आएगी और वंदे मातरम बिल राज्यसभा में सरकार लेकर आने वाली है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष सरकार पर काफी हमलावर है। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वो सरकार से एथेनॉल के मुद्दे पर, नीट के मुद्दे पर, राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ उसके मुद्दे पर जवाब चाहती है। अब देखना होगा कि किस तरह से सरकार इन सभी मुद्दों के ऊपर जवाब देगी। एक तरफ जहां विपक्ष सरकार पर हमला भर है वहीं सरकार ने कल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर विपक्ष को बताया था कि किस तरह के विधेयक सरकार लाने जा रही है और इसी के साथ साथ सरकार ने विपक्ष से यह भी कहा था कि वो संसद को सुचारू रूप से चलने दें। अब देखना ही होगा कि 20 जुलाई से शुरू होने वाला ये संसद सत्र जो 13 अगस्त तक चलेगा ये कैसा जाने वाला है, किन किन मुद्दों को सरकार उठाने वाली है और क्या क्या जवाब विपक्ष देगा और विपक्ष के मुद्दों को किस तरह से सरकार देखने जा रही है।
0: 12:12 रिपोर्टर में आप अगली रिपोर्ट पटना से आपको देते हैं। आज बिहार विधानसभा का भी मानसून सत्र शुरू हुआ है। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष ने आक्रामक तेवर दिखाए। सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले ही विधानमंडल के मुख्य द्वार पर विपक्षी विधायकों का प्रदर्शन देखने को मिला। आरजेडी और लेफ्ट के विधायकों ने नीट पेपर लीक को लेकर प्रोटेस्ट किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा।
11: बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र की आज शुरुआत हो रही है और आपको दिखाते हैं विधानमंडल का मुख्य गेट है और इसके ठीक बाहर ही आरजेडी माले तमाम विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो विधायक हैं वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और हाथों में स्लोगन्स हैं, बैनर हैं, पोस्टर हैं। आरजेडी के विधायक हैं रणविजय साहू जी। रणविजय जी, आज पहले ही दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले आप लोग तो आक्रामक तेवर
12: ये सड़क पर और सदन के अंदर भी सरकार के आंख खोलने का काम करेंगे। आज पूरे देश भर में छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, नीच छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, पेपर लीक हुआ है, लेकिन सरकार चुप है, मोदी सरकार खामोश है और केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। जब तक बर्खास्त नहीं करेंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
11: ये तमाम विधायक कतारबद्ध होकर के विधानमंडल के मुख्य गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी। अमूमन पहले दिन सदन में शोक प्रकाश होता है, जो जरूरी काम होते हैं, विधायी प्रस्ताव हैं वो लिए जाते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी के बावजूद जो विपक्षी विधायक हैं वो यहाँ प्रदर्शन पहले दिन नारेबाजी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, नीट पेपर लीक और जो सोनम वांगचुक के साथ घटना हुई जंतर मंतर में उसके विरोध में यहाँ आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं।
0: विधानसभा का मानसून सत्र आज मध्य प्रदेश में भी शुरू हुआ है और वहां भी शुरुआत बिल्कुल हंगामेदार रही। कांग्रेस ने पहले दिन खाद की किल्लत, मूंग खरीदी और कर्ज माफी को लेकर प्रदर्शन किया। सीएम मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और एमपी के कृषि मंत्री एडल सिंह कंसाना के मुखौटे पहनकर कांग्रेस के विधायक पहुंचे। विधानसभा में गांधी प्रतिमा के सामने नुक्कड़ नाटक के जरिए प्रदर्शन करके सरकार पर किसानों की अनदेखी का उन्होंने आरोप लगाया।
13: मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। ये सत्र 24 जुलाई तक यानी पूरे 5 दिन चलने वाला है। इस सत्र में वैसे तो सरकार कई सारे विधेयक लेकर के आने वाली है, लेकिन सबकी नजरें समान नागरिक संहिता 2026 अधिनियम यानी यूसीसी बिल पर टिकी है। दरअसल एक दिन पहले ही मोहन यादव कैबिनेट ने यूसीसी बिल को कैबिनेट से पारित कर लिया है। संख्या बल के लिहाज से भी देखा जाए तो मध्यप्रदेश विधानसभा में भाजपा का संख्या बल इतना ज्यादा है कि आसानी से यूसीसी बिल को वो यहाँ पारित करवा लेगी, लेकिन कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि वो इतनी आसानी से यूसीसी बिल पर चुप नहीं रहने वाली है और जो उसके मुद्दे हैं वो उन्हें लेकर के सरकार से विधानसभा के भीतर सवाल जवाब जरूर करेगी। इस बीच में किसानों से जुड़े हुए मसले हो, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट हो या फिर मध्य प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस इस पूरे सत्र में सरकार से जोरदार सवाल करने वाली है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश विधानसभा का यह सत्र इस बार काफी ज्यादा हंगामेदार रहने वाला है।
0: तो सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज दोपहर 2:30 बजे सुनवाई होगी। गीतांजलि अंगमो ने दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश को इसमें चुनौती दी है। कोर्ट ने कल यांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से निजी हॉस्पिटल में ट्रांसफर करने की उनकी इजाजत देने से इनकार कर दिया था, उनकी पसंद के हॉस्पिटल में भेजने से इनकार कर दिया था।
14: सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने एक बार फिर से दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गीतांजलि अंगमो ने दिल्ली हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच के सामने कल के सिंगल बेंच के ऑर्डर को चैलेंज किया है। दरअसल कल हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से अपनी पसंद के प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रांसफर होने से मना किया था। गीतांजलि अंगमो का कहना है कि सोनम वांगचुक को अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने का पूरा हक है, न सरकार न कोर्ट उन्हें किसी एक ही अस्पताल में इलाज कराने के लिए मजबूर कर सकती है। गीतांजलि अंगमो की तरफ से उनके वकील ने आज ये मामला हाईकोर्ट के सामने मेंशन किया और जल्द सुनवाई की मांग की। दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में आज सुनवाई 3 बजे करेगा।
0: अब बात करते हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर एक बड़ी खबर की। चढ़ावा चोरी मामले में 4 अलग अलग याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जुलाई को इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति जताते हुए यूपी सरकार द्वारा मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी को अदालत के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया था। कल यूपी सरकार ने एसआईटी के स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल भी कर दी है।
15: अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चढ़ावा चोरी के मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करने जा रहा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्य बागची और जस्टिस बी मोहना की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से रिपोर्ट मांगी थी, स्टेटस रिपोर्ट कि अब तक जांच कहां तक पहुंची है और जांच में आगे क्या करने वाले हैं, इन तमाम चीजों के तथ्य मांगे गए थे। वो रिपोर्ट सील बंद सुप्रीम कोर्ट को मुहैया करा दी गई है, सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट आज उसी रिपोर्ट के आधार पर सुनवाई आगे बढ़ाएगा और कोर्ट ये भी तय करेगा कि क्या उस रिपोर्ट को देखने के बाद कि क्या सीबीआई के जांच की जरूरत है या एसआई की रिपोर्ट अपने आप में सही है। एसआईटी की जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है उसे लेकर भी सुप्रीम कोर्ट अपने विचार जताएगा।
0: 12 बजे 12 रिपोर्ट में, अब अगली रिपोर्ट उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी अब अपने सबसे मजबूत चुनावी हथियार यानी कि बूथ मैनेजमेंट को धार देने में जुट गई है। क्या है पूरी रणनीति, इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता सिमर चावला।
16: उत्तर प्रदेश में चुनावी जीत का रास्ता अक्सर बूथ से होकर गुजरता है। अब 2027 चुनाव के पहले बीजेपी इसी बूथ मैनेजमेंट को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने में लग गई है। 22 जुलाई को प्रदेश भर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। पहली बार इतने बड़े स्तर पर हो रहे आयोजन में सभी विधानसभाओं के बूथ अध्यक्ष शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर में बूथ अध्यक्षों के साथ संवाद करेंगे। साथ ही साथ सभी संगठन के बड़े मंत्री और नेता प्रदेश भर में मोर्चा संभालेंगे। बूथ अध्यक्षों की उपस्थिति को भी अनिवार्य किया गया है और शामिल ना होने पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस संगठन को मजबूत करने पे है। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में बूथ की यह ताकत चुनाव में कितना असर डालेगी।
0: अब जम्मू कश्मीर में बारिश से तबाही के पुंछ और राजौरी इलाके में कल फ्लैश फ्लड आया और लैंडस्लाइड्स के चलते तबाही मची है। ताजा हालात क्या है बताने संवाददाता सुनील जी भट्ट।
17: बीते दो दिनों से जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा हो रही है जिसके कारण कई स्थानों पर बाढ़ आ गई है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाके जो हैं सबसे अधिक प्रभावित हैं। राजौरी और पुंछ जिलों में काफी तबाही हुई है, वहां पर जानो माल का नुकसान हुआ है, 12 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, वहीं अभी भी 6 लोग लापता है जिनकी तलाश लगातार जारी है। लोगों के मकान ढह गए हैं, बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में आ गया है और लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। फिलहाल अगर हम देखें तो प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में और वर्षा होने जा रही है, मौसम विभाग का यही अनुमान है। इसीलिए प्रशासन ने लोगों को भी सख्त हिदायत दी है कि वो नदी नालों से दूर रहे। लेकिन जम्मू कश्मीर में मॉनसून की मार इस समय पड़ रही है, जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर भूस्खलन भी हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि राजौरी और पुंछ जिले जो है वो सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, वहां पर कई मकान ढह गए हैं, लोगों की दुकानों में भी पानी आ गया है। और अगर हम देखें तो वहां जो राजौरी जिले में जो बस स्टैंड है वहां पर भी काफी तबाही हुई है, कई गाड़ियां जो है बाढ़ के पानी से बह गई है। फिलहाल प्रशासन जो है लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित इलाकों में सहायता भी पहुंचाई जा रही है।
0: अब रुकने छोड़े से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
19: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा इन एसोसिएशन विद
19: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
18: चोगन परफ्यूम्स प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: सुबह से दो बार स्थगित होने के बाद फिर शुरू हो रही संसद की कार्यवाही। थोड़ी देर में राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पेश करेंगे गृहमंत्री शाह। विपक्ष को पीएम का जवाब, जहां तथ्य तर्क है वहां तूफान की आवश्यकता नहीं। नीट पेपर लीक पर राज्यसभा में खड़गे का हमला, कहा छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों, आंदोलन और चढ़ावा चोरी पर अखिलेश का हल्ला बोल डिंपल यादव, जंतर मंतर जा रही। संसद से सड़क तक सरकार की घेराबंदी, जंतर मंतर पर भारी जमावड़ा। संसद मार्च के मद्देनजर पुलिस की घेराबंदी, बंद मेट्रो स्टेशन को खोला गया भारी सुरक्षा बंदोबस्त। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट, आज चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाले तीन जजों के बेंच करेगी सुनवाई। 16 साल बाद स्पेन फिर मना फुटबॉल का मैच, फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया, फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में गोल दागा। फ्रांस के एम्बाप्पे ने मेसी को पछाड़कर जीता गोल्डन बूट।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो चोगन पर।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। चढ़ावा चोरी केस में आरोपी टिन्नू यादव की फाइल से ट्रस्ट के कई गोपनीय दस्तावेज बरामद हुए। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपी टिन्नू यादव का बड़ा बयान, कहा कि गणना कर्मियों की ड्यूटी तय होने के साथ ही चढ़ावे की रकम में कथित हेरा फेरी होती थी। सूत्रों के मुताबिक आरोपी टिन्नू यादव की पत्नी की फर्म जांच के दायरे में है। पुलिस ने जीएसटी रिकॉर्ड, बैंक खातों और कारोबार से जुड़े दस्तावेज मांगे। राम मंदिर में दान पत्रों की गिनती फिर से 2 शिफ्ट में शुरू, ट्रस्ट ने बढ़ाई निगरानी। चढ़ावा चोरी मामले के बाद से नई व्यवस्था में पूर्व सैनिक बलों की तैनाती, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक 2 शिफ्ट में गिनती, प्रत्येक शिफ्ट में 10 से 12 लोग तैनात। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया, जो चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों के बेंच मामले पर करेगी सुनवाई। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर राजभर और दलित समाज के अपमान का आरोप लगाया है, बोले कि राजनीति में मतभेद स्वीकार्य लेकिन जातीय अपमान स्वीकार्य नहीं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने ओवैसी के सहारनपुर में हुए जनसभा को लेकर कसा तंज, बोले कि अगर बीजेपी से लड़ना है तो उनके इलाके में जाकर जनसभा करें। कांग्रेस प्रवक्ता ने भी ओवैसी के सहारनपुर की रैली पर बोला हमला, कहा कि लोगों को पता है ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, गठबंधन इंडिया में आकर एक जासूस की भूमिका निभाना चाहते हैं। निर्मोही अखाड़े ने दीनेन्द्र दास को महंत पद से हटाया, राम मंदिर ट्रस्ट से भी बाहर हो सकते हैं, राजा रामचंद्राचार्य दास नए महंत होंगे। लखनऊ में जवाहर भवन में लगी आग, आसमान में दूर तक धुएं का गुबार उठा, हादसे में कोई हताहत नहीं और कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया था। लखनऊ वालीगंज अग्निकांड वाली इमारत गिराने की प्रक्रिया शुरू, सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी तैनात। गाजियाबाद में स्कूटी की टक्कर को लेकर 2 पक्षों के बीच में जमकर लाठी डंडे चले, पथराव हुआ, पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया, जांच जारी। मुजफ्फरनगर में कच्चे मकान भरभराकर गिरा, 5 लोगों की जान गई, रेस्क्यू भी जारी। मुजफ्फरनगर हादसे पर मंत्री के बयान से विवाद, कपिल देव अग्रवाल बोले कि बढ़ती आबादी से सरकार की भी सीमा है। लखनऊ के इंदिरा नगर में दबंगों ने युवक को लाठी डंडों से पीट पीटा, मरा हुआ समझकर मौके से दबंग फरार। अलीगढ़ में दूसरी शादी और मकान के नाम पर विवाद, बेटे ने दोस्त के साथ मिलकर पिता को ही मार डाला। ग्रेटर नोएडा में बैटरी चोरी का आतंक और इन चोरों का आतंक है, 1 घंटे में चोरों ने 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों की बैटरियां चुरा ली। प्रयागराज में गूंजा जय जगन्नाथ, इस्कॉन मंदिर ने निकाली भव्य रथ यात्रा, भक्तों का हुजूम, पुष्प वर्षा की। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं।

0: और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। अयोध्या में चढ़ावा चोरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर में सुनवाई होने वाली है। इससे पहले चढ़ावा चोरी की जांच कर रही यूपी सरकार ने एसआईटी गठित की और एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में कल ही अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। अदालत ने पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार, यूपी सरकार और एसआईटी को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया था। इस मामले पर जल्द सुनवाई शुरू हो सकती है। उधर संसद में आज मानसून सत्र की शुरुआत हुई है। अयोध्या का मामला जोर शोर से यहां उठाया गया है। दोनों ही सदनों में विपक्ष के सांसदों ने अलग अलग मुद्दों पर आवाज उठाने की कोशिश की है और उनमें अयोध्या का मामला भी जोर शोर से सुनाई दिया है। शोर शराबे की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही दो बार अब तक स्थगित हो चुकी है।
1: पहला उद्देश्य और उसके प्रमुख घटक
0: संसद में हंगामे के बीच में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की एक अहम मुलाकात हुई है, जिसमें विपक्ष की साझा रणनीति पर बताया जा रहा है कि चर्चा हुई है। जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति पर बातचीत हुई है। अयोध्या को लेकर एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के दान पात्रों की धनराशि की गणना फिर से दो शिफ्ट में शुरू कर दी गई। एक हफ्ते के परीक्षण के बाद ट्रस्ट ने भारतीय स्टेट बैंक SBI

2 बजे से शाम 8 बजे तक संचालित किए जा रहे हैं। प्रत्येक शिफ्ट में 10 से 12 कर्मचारियों को उनका एक दल है जो दान राशि की गणना कर रहा है और गणना के पर्यवेक्षक के लिए ट्रस्ट के एक और पूर्व सैनिक को जोड़ते हुए कुल 4 कर्मचारियों को अब तैनात किया गया है। पूर्व गणना प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव के जेल जाने के बाद शोभनाथ मिश्रा को नया गणना प्रभारी बनाया गया है। ट्रस्ट ने सुरक्षा प्रभारी कैप्टन के तिवारी को प्रतिदिन की गणना रिपोर्टिंग का वरिष्ठ प्रभारी नियुक्त किया है। ट्रस्ट प्रतिनिधि के रूप में पूर्व सैनिक एसपी दुबे, शेषमणि तिवारी और शोभनाथ मिश्र की भी इसमें नियुक्ति की गई है। अयोध्या का चढ़ावा चोरी का मामला दिल्ली में संसद तक गूंज रहा है। दूसरी तरफ जांच एजेंसियां लगातार चोरी से अर्जित संपत्तियों को लेकर खुलासे कर रही है। एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है, उसका पूरा खुलासा अब तक नहीं हुआ है, लेकिन अब चोरी कांड में सूत्रों के हवाले से आरोपी टिन्नू यादव को लेकर तमाम खुलासे जरूर हो रहे हैं।

0: राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर ऐसी सियासत चोरी है कि एक तरफ जांच एजेंसियां चोरों का पूरा हिसाब पता नहीं लगा पाई है, दूसरी तरफ दिल्ली में चढ़ावा चोरी पर सियासत चोरी जबरदस्त है।
1: ये सरकार नहीं अहंकार है, बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ही कोशिश रहती है घोटाला करने।
2: राम मंदिर में चोरी क्यों हो रही है, तो क्या ये प्रधानमंत्री का जवाब है? शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री।
3: इतना पाप करने के बाद मानसून का भगवान भी बख्शेगा नहीं हमें, लूट मची है, चंदा चोरी।
4: सरकार इतनी कठोर, इतनी निष्ठुर सरकार है, ये अपने आगे किसी की चलने नहीं देती।
5: उन्होंने रखवाली नहीं, चोरी नहीं है, डकैती।
0: अयोध्या में हुई छड़ावा चोरी पर इस सियासी शोर के बीच जांच एजेंसियां तमाम खुलासे कर रही हैं, और ये खुलासे खुद आरोपियों से पूछताछ के बाद हुए। एक दिन पहले करीब 40 घंटे तक पुलिस रिमांड में रहे टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव से हुई पूछताछ में पुलिस को बड़े राज की बातें पता चली।
6: पुलिस रिमांड में हुई पूछताछ में आरोपी टिन्नू यादव ने ये कबूला है कि उसे इस बात की जानकारी थी कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक उसने ये भी कहा है कि उसने अपने भतीजे मनीष यादव को वहां पर अन्य आरोपियों के साथ इसीलिए लगाया जिससे चंदा चोरी में उसका शेयर बढ़ पाए और ज्यादा पैसा उस तक पहुंचे, पहला उसके जरिए और दूसरा काउंटिंग कर रहे भतीजे मनीष यादव के जरिए। इतना ही नहीं, चढ़ावा चोरी के पैसे से टिन्नू ने सूत्रों के मुताबिक कुछ संपत्तियां भी अर्जित की थी जिसके दस्तावेज पुलिस को मिल गए हैं, और अब चूंकि रिमांड खत्म हुई है पुलिस अब उन प्रॉपर्टीज पर जाकर जांच पड़ताल करेगी और दस्तावेज जो हैं उनसे मिलान करेगी, और अगर ये प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं तो शायद इसके भी जब्तीकरण की कार्रवाई पुलिस के द्वारा हो सकती है।
0: 39 घंटे की पूछताछ में ही पता चला है कि अप्रैल 2026 में टिन्नू यादव ने सिफारिश कर अपने भतीजे मनीष यादव को नौकरी दिलवाई थी, जिसके बाद 15 अप्रैल 2026 से मनीष यादव को चढ़ावे की गिनती के काम में लगाया गया था। महीना भर के अंदर मई के दूसरे हफ्ते में मनीष यादव ने अविनाश शुक्ला के साथ मिलकर पहली बार चोरी की। उससे पहले मनीष यादव अनुकल्प, लवकुश और अविनाश को चोरी में मदद कर रहा था। ये भी पता चला है कि नाइट शिफ्ट के दौरान मनीष यादव को चोरी की रकम के साथ बाइक पर बैठाकर टिन्नू यादव ही बिना चेकिंग मंदिर से बाहर ले जाया करता था। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर बुलेट गाड़ी और एक कार पुलिस ने बरामद भी की है।
7: ये एक अल्टिका कार है जो कि टिन्नू यादव की बताई जा रही है, जिसका नंबर UP 42 BN 8546 और कुछ कागजी दस्तावेज बरामद हुए हैं। साथ में जिस बुलेट से टिन्नू यादव चलता था वो बुलेट बरामद हुई है। ये दोनों राम जन्मभूमि थाने में खड़ी है और इसको लगातार पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, और पूछताछ के दौरान काफी अहम दस्तावेज भी टिन्नू यादव और मनीष यादव से बरामद किए गए।
0: पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में 3 कारों के साथ एक बुलेट की बरामदगी की गई है। उसके अलावा शेयर मार्केट में निवेश के दस्तावेजों से लेकर सोने की कुछ चीजें भी बरामद की गई। सूत्रों के मुताबिक टिन्नू ने बताया कि किस गणना कर्मी की ड्यूटी कब लगाई जाएगी, यह

0: वही तय करता था। उसी हिसाब से प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव ड्यूटी लगाता था। उसके बाद रमाशंकर, अनुकल्प, लवकुश, मनीष, करुणेश और अविनाश आसानी से रकम पार करते थे। पता चला है कि जब भी गणना कक्ष में कोई चेकिंग की सुगबुगाहट होती थी तो टिन्नू यादव ही इस चोर गैंग को अलर्ट कर दिया करता था। 4 जून को चोरी के शक में कर्मियों की तलाशी लेने की बात भी टिन्नू ने लीक की थी, जिसके बाद अनुकल्प मिश्रा ने बाथरूम में 2,25,000 रुपए छुपाए थे।
1: सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने टिन्नू यादव की पत्नी के नाम से पंजीकृत फर्म का रिकॉर्ड भी तलब किया है। इसके लिए पुलिस ने स्टेट जीएसटी ऑफिसर्स की सहायता ली है और ये मदद मांगी है कि फर्म का टर्नओवर, जो फाइनेंशियल सोर्स था, उसकी जानकारी, ट्रांसफर्स, उनके बारे में पड़ताल कर पुलिस को जानकारी दें। इतना ही नहीं, जो कंपनी पत्नी के नाम पर है वो सौंदर्य कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स के नाम पर है और सूत्र ये भी बताते हैं कि कुछ सरकार के विभागों में उस कंपनी को टेंडर्स भी मिले हैं। क्या टेंडर्स हैं, कहां से मिले हैं, इसकी जांच पड़ताल पुलिस आगे करने वाली है। बड़ी बात कहें तो ये है कि पुलिस ये पता लगाने में भी जुटी है कि टिन्नू यादव ने अपने काले धन को सफेद करने के लिए कहीं इस फर्म का सहायता तो नहीं लिया, या यूं कहें कि कहीं इस फर्म का जो ढांचा है, जो निर्माण है, वही चंदा चोरी की पैसे से तो नहीं हुआ है जिससे आसानी से काले धन को सफेद किया जा सके और टिन्नू यादव की काली कमाई किसी की नजर में भी ना आ सके। पुलिस अब इन मामलों की भी जांच में जुट गई है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
2: एक बड़ी खबर इससे मैं आपको देते हैं। अयोध्या के जन प्रतिनिधियों ने ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय से मुलाकात की है। एक दिन पहले जिले के 5 विधायक और महापौर ने चंपत राय से मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक इसमें नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, रुदौली विधायक रामचंद्र यादव, मिल्कीपुर विधायक चंद्र भानु पासवान, बीकापुर विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान, गोसाईगंज विधायक अभय सिंह, महापौर महंत गिरीश पतिव त्रिपाठी और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रोहित सिंह की मुलाकात चंपत राय से हुई है। चंपत राय से लगातार हो रही मुलाकातों को कई लोग एक स्पष्ट संदेश के रूप में देख रहे हैं। पहले अयोध्या के व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला, इसके बाद रामनगरी के अनेक साधु संतों ने भी उनसे मुलाकात की, सार्वजनिक रूप से उनका समर्थन किया, उन्हें पूरे प्रकरण में निर्दोष बताया। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उनसे लगातार मिलने के लिए पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में ये और मुलाकातें। तो अयोध्या में एक तरफ दान चोरी के बाद ट्रस्ट से लेकर चारों तरफ एक्शन देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ मंदिर में चोरी के महापाप से मुक्ति के लिए 9 प्रायश्चित अनुष्ठान भी चल रहा है, उसे लेकर साधु संतों से लेकर शंकराचार्य तक सवाल उठा रहे हैं।
0: अयोध्या के राम मंदिर की यज्ञशाला में दिनों आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का अनुष्ठान चल रहा है। ट्रस्ट कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने देशभर से बुलाए गए आचार्यों और बटुकों के साथ पूजा शुरू कराई है, जिसमें ट्रस्टी दीनेन्द्र दास भी पूजा कर रहे हैं। इस पारंपरिक पूजा के साथ 11 पुरोहित विधि विधान से इस अनुष्ठान का संपादन कर रहे हैं। दैनिक 251 बार विष्णु सहस्त्र नाम का जाप चल रहा है। देश भर से बुलाए गए 70 वैदिक आचार्य और गुरुकुल के बटुक वाल्मीकि रामायण से लेकर रामचरितमानस तक का पाठ कर रहे हैं। इस अनुष्ठान में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रुद्राभिषेक, विशेष हवन और शांति पाठ का भी आयोजन किया गया है। चढ़ावा चोरी के बाद किए जा रहे इस विशेष अनुष्ठान को प्रायश्चित पूजा बताकर साधु संत सन्यासी सवाल उठा रहे हैं।
3: जो राम मंदिर में महापाप हुआ है, उस पाप का चाहे जितना प्रायश्चित लोग कर ले, अनुष्ठान और पूजन से मां भगवान राम क्षमा नहीं करेंगे।
4: ऐसा है कि जो प्रायश्चित की बात आप लोग कर रहे हैं, प्रायश्चित के लिए जरूरी है कि पहले पाप घोषित किया जाए, क्या पाप हुआ है। अभी पाप ही पता नहीं है, फिर किसके द्वारा वो पाप हुआ है उसका नाम घोषित किया जाए।
5: किसी भी चीज के लिए प्रायश्चित पश्चाताप ही प्रक्षालन होता है।
6: बड़ा अनुष्ठान होना होता है तो उसके पहले भूत शुद्धि इत्यादि और आत्म शुद्धि के लिए प्रायश्चित पूजन किया जाता है। तो इस अनुष्ठान का उद्देश्य क्या है और किस लिए प्रायश्चित किया जा रहा है?
4: तुम कोष का माल हजम करके और उसी पैसे से अनुष्ठान करा करके पाप खत्म कर पाओ। अब जनता को बहुत बेवकूफ बना ले, कोई बेवकूफ बनने वाला नहीं है, इनका अनुष्ठान छल है।
0: दूसरी तरफ ट्रस्टी और अनुष्ठान के यजमान दीनेन्द्र दास का कहना है कि राम मंदिर परिसर की यज्ञशाला में यह अनुष्ठान 15 जुलाई 2026 को शुरू हुआ था और इसका समापन 24 जुलाई 2026 को होगा।
4: कौन सा पंडित है जो प्रायश्चित बता रहा है उसका नाम बताया जाए? हम लोग उससे पूछ जानना चाहेंगे कि किन किन ग्रंथों के आधार पर, किन किन पापों के लिए, कौन कौन सा प्रायश्चित वो बता रहा है।
0: इस बीच राम मंदिर में चोरी की घटना के बाद पहली बार खबर है कि 23 जुलाई को आरएसएस और वीएचपी ने अयोध्या में संतों की बैठक बुलाई है। ये बैठक अयोध्या की मणिराम छावनी में होने वाली है। इस सम्मेलन का मकसद चोरी की घटना को लेकर ट्रस्ट के खिलाफ चलाए जा रहे संगठित अभियान के खिलाफ जागरूकता फैलाना और रणनीति बनाना है। सूत्र बता रहे हैं कि इसी बैठक में ट्रस्ट के कार्यवाहक महासचिव कृष्ण मोहन को स्थायी महासचिव नियुक्त करने का भी फैसला मंजूर हो सकता है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
2: अयोध्या में चोरी की घटना का विवाद अभी चल ही रहा है कि एक नया विवाद भी शुरू हो गया है। राम मंदिर ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े के प्रतिनिधि दीनेन्द्र दास के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक मामला दायर किया गया है। अर्जी में दीनेन्द्र दास को ट्रस्ट से हटाने की मांग की गई है। दावा किया गया है कि 5 जुलाई की बैठक में ही अखाड़ा विरोधी काम करने के कारण उन्हें अखाड़े के महंत पद से हटाने का फैसला हो चुका है। अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट में अदालत के आदेश से जिस निर्मोही अखाड़े के प्रतिनिधि को ट्रस्टी बनाया गया था, उस ट्रस्टी दीनेन्द्र दास की सदस्यता को लेकर अब सवाल खड़े किए गए हैं, क्योंकि निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष राजा रामचंद्राचार्य ने दीनेन्द्र दास को अयोध्या शाखा के महंत पद से हटाने का दावा करते हुए सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी दे दी है। 5 जुलाई को लिए गए फैसले का हवाला देते हुए इस अर्जी में कहा गया है कि दीनेन्द्र दास को अयोध्या शाखा के महंत पद से हटाया जा चुका है, लेकिन दीनेन्द्र दास ने एक प्रेस ज्ञापन जारी करते हुए उनके इस फैसले को चुनौती दी है।
7: सब कम से कम आधा ज्यादा उसमें तो मान लिया जाएगा। अभी तो फर्जी चल रहा है, पूरा चल रहा है और कोई भी काम की हमसे कोई बात नहीं की है, फोन भी नहीं किए। जो पार्टी चोपड़ा है वो पहले मान में खारिज हो गया और राजा जनता जी बुजुर्ग है, 1-2 साल हो गए हैं।
2: दीनेन्द्र दास की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उन्हें हटाने का फैसला पंचों की ओर से नहीं बल्कि दिल्ली में आयोजित बैठक के हवाले से लिया गया, जो कि मान्य नहीं है। अखाड़े के अध्यक्ष की वयोवृद्ध अवस्था का हवाला देकर भी दीनेन्द्र दास इस फैसले को गलत ठहरा रहे हैं और अदालती मामले में मुख्तार बनाए गए कार्तिक चोपड़ा पर साजिश का सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यूपी में चल रहे चुनावी राजनीति की, जहां सांप्रदायिक रंग वाली सियासत चल रही है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल पहुंचे थे, वहां पर भगवान गणेश की 145 फीट ऊंची और 51 फीट ऊंची प्रतिमा के अनावरण को लेकर 68 तीर्थों के विकास और 19 कूपों के उद्धार तक मुख्यमंत्री योगी ने सनातन के तीर्थों को लेकर तमाम तरह के दावे किए। लेकिन संभल की जमीन से सीएम योगी ने तुर्कों का जो जिक्र किया है उस पर यूपी से लेकर हैदराबाद तक सियासत के कान लाल हो गए।
8: और लैंड रिकॉर्ड ऐसा कि कोई व्यक्ति अगर आज आपकी जमीन पर कब्जा करने का दुस्साहस कर रहा है तो उसके जिन को हम 100 साल के बाद भी उसकी कब्र से निकाल करके वापस करवाने के सामर्थ्य रखेंगे, नहीं कर पाएगा कोई। ये बड़े भवन इसीलिए अगर किसी ने दुस्साहस किया तो उसका काम तमाम करवा देंगे कुछ ही मिनटों में। तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी अब।
2: हालांकि सीएम योगी ने अपने भाषण में किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन दशकों से संभल के सियासत संभाल रहे समाजवादी परिवार के नेता सीएम योगी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हैं। तो उधर लखनवी सियासत में हैदराबादी जायका परोसने की कोशिश कर रहे ओवैसी भी जो है वो भी छूट पड़े।
9: तो तुर्कों से मुझे ऐसा लगता है मुख्यमंत्री होते हुए भयभीत हैं तुर्क वर्ड से, क्योंकि संभल आकर के भी तुर्क ही उन्हें याद आते हैं, मुरादाबाद जिले में आते हैं तो भी तुर्क याद आते हैं। तुर्क जबकि वर्ड के इतिहास को मुख्यमंत्री को पता होना चाहिए कि योगी शायद जानते नहीं है कि तुर्कों का इतिहास क्या रहा है। तुर्कों ने अगर इस देश के ऊपर हुकूमत की है तो इस देश के अंदर आजादी के लिए भी अपनी कुर्बानियां भी दी है। इस देश की आजादी में भी तुर्कों का खून पसीना शामिल है। तुर्कों के इतिहास की बात करते हो आप, तो तुर्कों का इतिहास आप देखो कि आज मुसलमानों का, तुर्कों का जो इतिहास है, आज ताजमहल है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, और क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं वो तुर्क जद्दोजहद के बाद में वो बनाई।
2: बहुत खुश है, छोटा सा ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
12: What's going on, everyone? It's Bluff here, and we're driving through the states in the Bluffmobile, and the best thing that we can do is play our favorite casino-style games on SpinQuest. They have over 1,000 games, including live dealer, blackjack, and craps, with tons of slots and unlimited options. You can get a $30 coin pack for just $10 for new users. Sign up today. Go to SpinQuest.com right now.
13: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
14: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
15: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
16: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, oh yeah, you make my dreams come, Steely Dan, back, Jack, do it again. Loggins and Messina, even though we ain't got money, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
10: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
17: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: यूपी चुनाव से पहले योगी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं, जहां मुद्दा अपराध और विकास का है और निशाने पर अखिलेश यादव हैं।
1: 2017 के पहले कौन जिला बचा था जहां दंगे न हुए हो, जहां कर्फ्यू न लगा हो? मुजफ्फरनगर का दंगा हो, सहारनपुर का दंगा हो, मेरठ का दंगा हो, बुलंदशहर का दंगा हो, अलीगढ़ के दंगे हो, कौन जिला ऐसा बचा था जहां दंगे न हो? और कौन जनपद ऐसा बचा था जहां बेटी और व्यापारी सुरक्षित रही हो?
0: योगी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की खामियां बता रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं।
1: यात्रा के पहले तो बबुआ 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 5 उसके बाद जिम से फुर्सत मिली तो फिर उनकी अपनी महफिल बैठ जाती थी।
0: वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने ललिता गौतम के परिवार वालों से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही सीएम योगी ने जांच में लापरवाही बरतने वालों पर भी सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललिता गौतम के परिवार वालों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का निर्देश दिया। साथ ही मृतका के पिता और चाचा को एक एक मुख्यमंत्री आवास उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। मई महीने में हुई ललिता गौतम की मौत को लेकर विपक्ष लगातार योगी सरकार को घेर रहा था, जिसके बीच आज योगी आदित्यनाथ ने पीड़ितों से मुलाकात की। आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

मॉनसून सत्र में संसद में जबरदस्त हंगामा, बार बार स्थगित हो रहा है सदन। अमित शाह पेश करने वाले हैं वंदे मातरम बिल। पीएम बोले, जहां तर्क और तथ्य है वहां तूफान की जरूरत नहीं। डीट पेपर लीक मामले पर राज्यसभा में खड़गे का हमला, कहा छात्र को क्यों रोका गया। आंदोलन और चढ़ावा चोरी पर अखिलेश का हल्ला बोल, डिंपल यादव जा रही है जंतर मंतर। जंतर मंतर पर सिसोदिया और चंद्रशेखर समेत कई नेताओं का जमावड़ा, उग्र भीड़ पर पुलिस का एक्शन। संसद मार्च के मद्देनजर घेराबंदी, चप्पे चप्पे पर भारी सुरक्षा बंदोबस्त। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट, आज चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजेस की बेंच कर रही है सुनवाई। साल बाद स्पेन फिर बना फुटबॉल का बादशाह, फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में गोल दागा। फ्रांस के एम्बापे ने मेसी को पछाड़ कर जीता गोल्डन बूट।

संसद की कार्यवाही की शुरुआत, विपक्ष ने लोकसभा में जमकर किया हंगामा। नीट पेपर लीक, राम मंदिर में चढ़ावा, चोरी पर विपक्ष ने चर्चा की मांग की। प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने सदस्य वेल में घुस गए और चंदा चोरी के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर जोरदार हंगामा शुरू हो गया। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला ने हंगामा कर रहे सदस्यों से सदन की परंपरा का पालन करने की अपील की। लोकसभा में जोरदार हंगामे के बीच प्रश्नकाल नहीं चल सका। विपक्षी सदस्यों की जोरदार नारेबाजी और हंगामे के बीच स्पीकर ओम बिरला ने कार्रवाई स्थगित की। राज्यसभा में खड़गे ने उठाया पेपर लीक का मुद्दा, बोले लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर है। सरकार बल प्रयोग कर आवाज दबाने और प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश कर रही है। लोकसभा विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के संबंधित संशोधन विधेयक पेश किया। कांग्रेस ने साफ किया कि चंदा चोरी और नीट पेपर लीक दोनों के मुद्दे पहले चर्चा कराई जाए, उसके बाद ही अन्य विधायी कामकाज हो। संसद में हंगामे के बीच राहुल अखिलेश की अहम मुलाकात, विपक्षी साझा रणनीति पर मंथन। सूत्रों के मुताबिक चंदा चोरी मुद्दों पर ये दोनों नेताओं पहले महत्वपूर्ण बैठक की कांग्रेस चाहती है, इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी भी खुलकर साथ दे। स्पीकर ने कुछ सांसदों के विलय पर फैसला दे दिया है। टीएमसी से जुड़े कुछ मामलों पर फैसला एक दो दिन में आने की संभावना है। शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी का देश को संबोधन, कहा मॉनसून हो या कोई और सत्र, दोनों देश के लिए कल्याणकारी होते हैं।

0: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश।
1: अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस प्रोग्राम का जिक्र करते हुए कहा, भारत के नौजवान ने अंतरिक्ष भारत का झंडा गाड़ा, ये बातें आत्मविश्वास से भर देती हैं। नीट मामले पर प्रदर्शन को देखते हुए संसद के बाहर सुरक्षा व्यवस्था सख्त, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। लोकसभा में टीएमसी के 20 बागी सांसदों की बदली सीटें, अलग बैठने के लिए किया गया नया आवंटन, सूत्रों के अनुसार 39 सांसदों को मिली नई सीट। जोरदार सियासी घमासान और हंगामे के बीच संसद का मॉनसून सत्र हुआ शुरू, 13 अगस्त तक चलने वाले सत्र में कुल 19 बैठकें होंगी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार नया संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में। सरकार ने मॉनसून सत्र में 8 विधेयक पेश करने की तैयारी की, इनमें विदेशी योगदान नियमन संशोधन विधेयक और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान से जुड़े विधेयक भी शामिल है। विपक्ष ने छात्रों से जुड़े मुद्दों और मणिपुर के हालात पर चर्चा की मांग की, समाजवादी पार्टी ने चढ़ावा चोरी मामले और परिसीमन और एक देश एक चुनाव का विरोध जारी रखने का ऐलान किया। लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जज की संख्या बढ़ाने को लेकर बिल पर चर्चा के लिए 4 घंटे का वक्त तय किया गया। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में नीट पेपर लीक मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव का दिया नोटिस, लोकसभा में चर्चा की मांग उठाई। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल बदल को रोकने के लिए एक नए दल विरोधी कानून की मांग करते हुए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। संसद की मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ ही दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, ट्रैफिक पुलिस ने सेंट्रल दिल्ली में कई प्रमुख मार्गों और चौराहों पर डायवर्जन लागू किया। अखिलेश यादव ने सत्र से पहले जमकर केंद्र सरकार पर सवाल निशाना, नीट और राम मंदिर को लेकर घेराव करते हुए कहा, छात्रों की बातें सुननी चाहिए। नीट मामले के विरोध में जंतर मंतर में संसद मार्च के दौरान हंगामा, पुलिस ने बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को रोका, सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में जवान तैनात। पुलिस ने मार्च की अनुमति नहीं दी थी और नई दिल्ली में धारा 163 लागू होने का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, पुलिस ने बैरिकेडिंग तोड़ने वालों को तितर बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया और हिरासत में लिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के 3 स्टूडेंट लीडर्स की भूख हड़ताल खत्म। सोनम वांगचुक की पत्नी पहुंची हाईकोर्ट, पिछले फैसले को चुनौती देते हुए कहा, मेरे पति को अधिकार है कि वो अपने पसंद के अस्पताल में अपना इलाज करवाएं। राम मंदिर जुड़ावा चोरी मामले में बड़े खुलासे, जुड़ावा चोरी केस में आरोपी टिन्नू यादव की फाइल में ट्रस्ट के कई गोपनीय दस्तावेज बरामद हुए। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ दौरान आरोपी टिन्नू यादव का बड़ा बयान, कहा गणना कर्मियों की ड्यूटी तय होने के साथ ही चढ़ावे की रकम में कथित हेराफेरी होती थी। सूत्रों के मुताबिक टिन्नू यादव की पत्नी की फर्म जांच के दायरे में पुलिस ने जीएसटी रिकॉर्ड, बैंक खातों और कारोबार से जुड़े दस्तावेज मांगे। राम मंदिर में दान पात्रों की गिनती फिर से 2 शिफ्टों में शुरू, ट्रस्ट ने बढ़ाई निगरानी। चढ़ावा चोरी मामले में नई व्यवस्था में पूर्व सैनिक बलों की तैनाती, सुबह 8 से रात 8 बजे तक 2 शिफ्ट में होगी गिनती। आई दिए धमाके की आवाज, कोणार्क में एयर डिफेंस सक्रिय कर दिए गए हैं, जबकि होम स्ट्रेट में एक जहाज में आग लगने और बहरीन में अमेरिकी सुरक्षा अलर्ट के बाद क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है। ईरान की सेना ने आईआरजीसी ने दावा किया कि उसने जॉर्डन के अकाबा एयरपोर्ट पर मौजूद अमेरिकी सैन्य विमान पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। आईजीसी ने भी दावा किया कि जॉर्डन से ही मिली थी खुफिया जानकारी, जिसके बाद ईरान ने जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर अमेरिकी सेना के 20 हैंगर नष्ट कर दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कहा कि अमेरिका की मौजूदा कार्रवाई का उद्देश्य ईरान की परमाणु मिसाइल बनाने की हर संभावना को खत्म करना है। सेंटकॉम के मुताबिक उत्तरी ईरान की ड्रोन को नष्ट करने के दौरान एक अमेरिकी सैनिक की मौत, इसके साथ ही जंग में मरने वाले अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़कर 17 हो गई। बहरीन में अमेरिकी दूतावास ने सुरक्षा अलर्ट जारी किया, मनामा के कुछ इलाकों में ईरान के हमले की आशंका जताते हुए अमेरिकी नागरिकों से सतर्क रहने की अपील। अमेरिका ईरान युद्ध में कच्चे तेल के दाम में लगी आग, $90 के पार पहुंचा ब्रेंट क्रूड ऑयल, तेल की सप्लाई रुकने की चिंता बढ़ी। वेनेजुएला के बाद पेरू में भूकंप का कहर, 2 बार दहली धरती, 6 लोगों की मौत, कई घर हुए जमींदोज। पेरू में पहले भूकंप की तीव्रता 5.1, दूसरे भूकंप की तीव्रता 3.7, आपदा से प्रभावित लोगों ने प्रशासन की मदद की गुहार लगाई। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन के सिर सजा, विश्व जेता कतार, न्यू जर्सी में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फुटबॉल की दुनिया में नया बादशाह बना स्पेन।

फेरान टोरेस बने स्पेन की जीत के हीरो। 106वें मिनट पे इतिहास से गोल दागकर अपनी टीम को दिलाई जीत। स्पेन के दूसरा वर्ल्ड कप खिताब है। 16 साल में 2010 में नेदरलैंड को हराकर स्पेन बना था वर्ल्ड चैंपियन। मैड्रिड में फुटबॉल फैंस ने मनाया स्पेन की जीत का जोरदार जश्न। सड़क पर उतरे लोग। गोल्डन बूट की रेस में पिछड़ गए मेसी। 10 गोल के साथ फ्रांस के किलियन एम्बापे ने जीता गोल्डन बूट। मेसी के खाते में सिर्फ 8 गोल। फुटबॉल की बादशाह का खिताब जीते पर स्पेन की गलियों में विजय उत्सव। सड़कों पर जीत मनाते नजर आए फैंस। स्पेन टीम की जर्सी पहनकर हाथ में झंडे लिए सड़क पर उतरे फैंस। जीत की खुशी में झूमे समर्थक। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अर्जेंटीना को हराकर स्पेन के चैंपियन बनने पर फैंस का जश्न। न्यूयॉर्क में जीत पर उत्साहित नजर आए समर्थक। न्यूयॉर्क की सड़क पर उमड़ा फैंस का हुजूम। अर्जेंटीना पर स्पेन की जीत के बाद समर्थकों में दिखा उत्साह का माहौल। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब स्पेन के नाम होने पर लंदन में उत्सव का माहौल। फैंस ने एक दूसरे के गले को गले लगाकर दी जीत की बधाई। भारत में फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन की जीत का जश्न। हैदराबाद की सड़क पर उतरे फैंस जीत की खुशी में जमकर नाचे। कोलकाता में स्पेन के विश्व विजेता बनने पर फैंस के खिले चेहरे। अर्जेंटीना की हार पर भी कुछ फैंस की आंखें नम। स्पेन की फतेह पर गोवा के पैंजे में फैंस उत्साहित। देर रात तक कैफे में जीत का जश्न मनाते नजर आए प्रशंसक। मुंबई में स्पेन की जीत का जश्न खुशी में झूमे फैंस। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बने सेलिब्रेशन का हिस्सा। बेंगलुरु में स्पेन की जीत से गूंजा पूरा इलाका। फैंस नाच गाकर अपनी पसंदीदा टीम की ऐतिहासिक जीत का मनाया जश्न। जम्मू कश्मीर के पुंछ रजौरी मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही। बाढ़ बारिश अब तक 12 की गई जान। सतर्कता बरतने की लोगों से अपील। भारी बारिश के कारण जम्मू श्रीनगर NH 44 पर यातायात बाधित। अधिकारियों ने यात्रियों से जोखिम भरे मार्गों से बचने की अपील की। जम्मू कश्मीर में कल रात से हो रही लगातार बारिश की वजह से चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा। लोगों से नदी से दूर रहने की सलाह दी गई है। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए चारधाम यात्रा पर अगले आदेश तक रोक। बारिश और भूस्खलन के चलते बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे जगह जगह बंद। असम के जोरहाट में बाढ़ बारिश का कहर। कई इलाके जलमग्न। लगातार हो रही बारिश के चलते नदियां उफान पर। आवाजाही प्रभावित।

0: तो आज सुबह से सीजेपी का मार्च जारी है। अब संसद भवन तक ये मार्च पहुंच चुका है। लगातार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए थे, लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती वहां पर कर दी गई है। कई ऐसे मेट्रो स्टेशन हैं सेंट्रल दिल्ली के जिन्हें बंद कर दिया गया है। इस प्रदर्शन के चलते सीजेपी प्रदर्शनकारी संसद भवन के करीब पहुंच गए हैं। विजय चौक तक भी कई प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको उसी प्रदर्शन की दिखा रहे हैं जिसमें बड़ी संख्या में युवा शामिल हो रहे हैं। सीजेपी का आज ये मार्च बुलाया गया था, जिसके चलते सेंट्रल दिल्ली में इस वक्त सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा और भी ज्यादा अब कड़ी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इस संख्या बल को ध्यान में रखते हुए अब पुलिस की अतिरिक्त तैनाती वहां कर दी गई है।
1: कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा अलग अलग जगहों पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आज तक की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और मैं संसद भवन के पास इस वक्त मौजूद हूं। यहां पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से संसद भवन के पास तक बहुत सारे जो कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि पुलिस की पूरी तरीके से यहां पर बंदोबस्त किया गया है और पुलिस ने बैरिकेडिंग यहां पर लगा रखा है और सारे लोगों को यहां पर रोका हुआ है। इसके उस पार जो सेंट्रल सेक्रेटरिएट मेट्रो स्टेशन है उसके आसपास तक तमाम लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं। आपको तस्वीरें जूम करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर पुलिस ने सबको रोका हुआ है। सुबह से ही ये लोग संसद मार्च करने के लिए यहां से निकल रहे थे, जंतर मंतर से संसद भवन तक ये लोग पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर तमाम लोग जो है, तमाम छात्रों को पुलिस ने यहाँ पर ह्यूमन चेन बना करके रोका हुआ है। और ये लोग यही लगातार मांग कर रहे हैं कि नीट को लेकर के जिस तरीके से सरकार ने कदम बढ़ाया है वो कदम ठीक नहीं है और इसको लेकर के इनके द्वारा यहाँ पर लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि तमाम जो युवा है वो लोग यहाँ पर तालियां बजा करके इस तरीके से प्रदर्शन इनके द्वारा किया जा रहा है। तो इस तरीके की स्थिति रेल भवन के पास इस वक्त बनी हुई है। आप दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए कि मार्च करते हुए तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं सड़क में और ये एक ऐसी जगह है जो कि रेल भवन और संसद भवन के एकदम नजदीक तक तमाम जो छात्र हैं वो पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भारी संख्या में छात्र पहुंचे हुए हैं और पुलिस के द्वारा यहां पर इनको रोका जा रहा है। पुलिस ने जो है इनको रोक लगाने के लिए पूरा कोशिश कर रही है। संसद भवन सामने की तरफ है और संसद से आगे की तरफ ये तमाम लोग जो है वो बढ़ रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान लगे हुए हैं, साथ ही पुलिस है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि गाड़ियां लगा करके इस वक्त रोका जा रहा है। जितेंद्र सिंह, दिल्ली आज तक।
0: संसद का मेन गेट बंद कर दिया गया है। परिसर के तमाम गेट्स पर इस वक्त सुरक्षा और बढ़ा दी गई है क्योंकि तमाम प्रोटेस्टर्स, प्रदर्शनकारी संसद परिसर की ओर बढ़ रहे थे। आपने तस्वीरें भी देखी, जितेंद्र बहादुर सिंह अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि कैसे गाड़ियों के जरिए इन प्रोटेस्टर्स को रोका जा रहा है, प्रदर्शन आगे न बढ़ सके। सुरक्षा के मद्देनजर अब और ज्यादा वहां पर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।
2: संसद भवन के परिसर के अंदर यहाँ पर पूरी तैयारियां आपको सीआईएसएफ द्वारा नजर आएंगी और पीछे जो है वो गेट है, ये वो गेट है जहां से एंट्री जितने भी सांसद होते हैं वो सब यहाँ से एंट्री करते हैं। जिस तरीके से तैयारी यहाँ पे आपको नजर आ रही है, सीआईएसएफ पूरी तरीके से तैनात है और आगे की तरफ आपको लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से जो गेट है उस समय उस गेट को यहाँ पे बंद कर दिया गया है। ये देखिए पीछे आपको जो गेट नजर आ रहा है ये गेट है जिसको इस समय पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और सीआईएसएफ यहाँ पीछे आपको मेरे नजर आएगी, ये पूरी तरीके से तैनाती यहाँ पे संसद परिसर के अंदर कर दी गई है। गेट को फिर से एक बार चेक किया जा रहा है, लॉक किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि किस तरीके से गेट को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बंद किया जा सके। संसद को हर तरफ से इस समय सुरक्षित कर दिया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ लोग जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो संसद तक पहुंच गए तो किस तरीके से इनको रोका जाएगा। संसद के अंदर जो है ये सीआईएसएफ पूरी तरीके से तैनात है, मौजूद है।
0: तो हमारे तमाम संवाददाता वहीं पर हैं और दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से ग्राउंड पर इस वक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। ऐसी एक रिपोर्ट मौसमी सिंह ने भेजी है, देखिए।
3: संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, हमारे पीछे आप देखें और वहीं रेल भवन जो कि संसद परिसर पर ही है, यहाँ से बाई तरफ आप देखें तो संसद है, और अगर हम आपको पीछे हमारे दिखाएं तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे तमाम प्रदर्शनकारियों का हुजूम यहाँ पे है जो नारेबाजी कर रहे हैं। सीजेपी ने जो मार्च का आह्वान किया था तो यहाँ पे जो पूरी सिक्योरिटी है वो एक तरफ नजर आ रही है। टीयर गैस को इस्तेमाल करने जा रही है और यहाँ पे टीयर गैस का इस्तेमाल पुलिस करते हुए नजर आ रही है। यहाँ पे जो आरएएफ है उसको तैनात किया गया है और यहाँ पे पूरी भीड़ जिस तरीके से आप पीछे देखें तो लोगों का हुजूम आपको नजर आएगा। एक तरीके से यहाँ पे टीयर गैस का इस्तेमाल करते हुए रेल भवन यहाँ पे है, पीछे संसद का पूरा मार्ग है और यहाँ पे प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस की तरफ से टीयर गैस का इस्तेमाल हो रहा है।
0: अब से कुछ देर पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। दरअसल नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और ये कहा जा रहा है कि संसद में भी वो इस पर चर्चा चाहता है। इसी को लेकर शायद ये मुलाकात शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की गृह मंत्री अमित शाह से। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, किस तरह से स्ट्रैटेजी रहेगी अब सरकार की नीट पेपर लीक मुद्दे को लेकर, इसी को लेकर ये मीटिंग हुई है?
4: नहीं देखिए, ये नहीं कहा जा सकता कि किस मुद्दे को लेकर मीटिंग चल रही है, लेकिन जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं और जब ये प्रोटेस्टर जो है संसद भवन के आसपास पहुंच गए हैं और दूसरी तरफ ये सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है कि जेपी नड्डा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो नीट पेपर एग्जाम मामला है वो बिल्कुल स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, उसको कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी जो है शिक्षा मंत्रालय के तहत एनटीए की है। तो ऐसे में जेपी नड्डा जो है वो सीजेपी के जो प्रोटेस्टर्स रहे हैं।
0: ठीक है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, दोबारा संपर्क करेंगे। इस बीच आपको सुना देते हैं कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर आज सुबह राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे नेता विपक्ष ने क्या कुछ कहा है।
5: टू पुट फोर्थ माय व्यूज अबाउट दिस पेपर लीक एंड नीट एग्जामिनेशन घोटाला एंड नो चंदा चोरी तो है ही है, सब उसके समर्थक उधर बैठे हैं, लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहाँ पर आए हैं, वहाँ लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है।
0: और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, आज प्रदर्शनकारियों के चलते संसद भवन परिसर का मेन गेट बंद कर दिया गया है क्योंकि वहां तक प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। या आप तस्वीरें देखिए वहां पर किस तरीके से रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है, आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए हैं। कुछ देर पहले हमने तस्वीरें देखी थी जिसमें प्रदर्शनकारियों को लाठी के जरिए खदेड़ने की भी कोशिश की गई, लेकिन सबके बीच अब वहां संसद परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये तमाम आप सुरक्षाकर्मी देख सकते हैं। दरअसल कोशिश इस बात की है कि कहीं भी नजदीक इस परिसर के प्रदर्शनकारी ना पहुंचने पाए। क्विक रिस्पांस टीम की ये गाड़ी और सुरक्षाकर्मी वहां पर तैनात, सभी दरवाजों को और मेन गेट को बंद कर दिया गया है, इस परिसर को पूरी तरीके से बंद किया गया। ने दावा किया है कि वहां पर प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और ये तस्वीरों में भी साफ दिख रहा है। इससे पहले हमने आपको रिपोर्ट्स भी दिखाई थी कैसे प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए तमाम इंतजाम वहां पर किए गए हैं ताकि ये एक तय सीमा के आगे ना पहुंचने पाए। बैरिकेडिंग तो की ही गई है, लेकिन बैरिकेडिंग के अलावा किस तरीके से इन्हें खदेड़ा जा रहा है आप देख सकते हैं। और उनका वहां पर अब टिकना मुश्किल होगा अगर इस तरह से आंसू गैस के गोले वहां पर दागे जाते रहे। क्या ताजा स्थिति है, क्या देख पा रहे हैं आप, तस्वीरें दिखाइए।
1: देखिए इस वक्त मैं रेल भवन के पास मौजूद हूँ जहाँ से संसद भवन कुछ ही दूरी पर मौजूद है। तो ये जो कांग्रेस जनता पार्टी इनका मार्च होना था, लोग यहाँ रेल भवन के पास सिक्योरिटी फोर्सेज ने इनको रोका हुआ है कि ये लोग आगे की तरफ ना जा पाए। जो कृषि भवन है इसके साथ साथ रेल भवन, इस बीच में जो सामने की तरफ रोड जाती है सीधा उद्योग भवन की तरफ, उस रोड पर तमाम लोग सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हैं अभी, और इनके द्वारा ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पुलिस ने हालांकि संयम बरतते हुए इनको रोका हुआ है और समझाने की कोशिश लगातार पुलिस के द्वारा किया जा रहा है कि तमाम लोग जो इकट्ठे हैं एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर संसद का सत्र चल रहा है, यहाँ पर एक जगह एक साथ चार लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। बीएनएस की धारा 163 लगी हुई है, इस वजह से सबको रोका जा रहा है और अब पुलिस जो है हल्का बल प्रयोग करके इन लोगों को यहां से हटाने की कोशिश लगातार कर रही है।
0: आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, आप किस एरिया में मौजूद हैं और इस वक्त क्या ताजा हालात है प्रदर्शन को लेकर, कहां तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं?
6: नेहा, दरअसल जंतर मंतर से होते हुए आगे जो जनपद का रास्ता है और जो बड़ी संख्या में है वही प्रदर्शनकारी अब कनॉट प्लेस की ओर बढ़ रहे हैं, और मैं यहां से जो देख पा रहा हूं कनॉट प्लेस का जो आउटर सर्कल है इसके पास अब उन्होंने गाड़ियों को रोक दिया है। तो दरअसल जो जमावड़ा था, क्योंकि अलग अलग गुट में पहुंचे, दरअसल ये कोशिश की गई कि ये लोग पार्लियामेंट के पास ना पहुंचे, तो ज्यादातर जो मेट्रो स्टेशन के गेट थे उनको बंद किए गए, लेकिन जो मेट्रो स्टेशन के गेट खुले थे ये सब वहां उतरे और वहां से इन इलाकों में पहुंचे। तो जंतर मंतर का इलाका पूरी तरह पैक है, उसके बाद जो टॉलस्टॉय मार्ग और आके जो जनपद का रोड है वो बंद है, अब उसके बाद जो भीड़ है वो कनॉट प्लेस की ओर आगे बढ़ी है काफी संख्या में, वो मुझे यहाँ कनॉट प्लेस के आसपास इन इलाकों में दिखाई दे रहे हैं। तो अलग अलग जो मेट्रो, अगर मान लीजिए रामाकृष्णा करोल बाग वहां खुला हुआ है, वो वहां से पैदल चलकर इन इलाकों में पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहां पर इंटरनेट काफी जगहों पर अभी शिकायत आ रही है कि इंटरनेट बंद है, मैसेजेस नहीं जा रहे हैं, तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट फोन कर, ये देखिए कनॉट प्लेस में आउटर सर्कल के पास एकदम आउटर सर्कल पे खड़े हो गए, उन्होंने ट्रैफिक को रोक दिया। मैं यहां देख पा रहा हूं जो है, क्योंकि पेड़ पौधे ज्यादा इन इलाकों में, चूंकि इंटरनेट की भी दिक्कत है, यहां पर वो आउटर सर्कल पर खड़े हो गए हैं। तो ये जो जमावड़ा है ये लगा था कि संभवतः सांकेतिक प्रदर्शन है, धीरे धीरे वो लौट जाए, वो लौटे नहीं है, उनकी भीड़ लगातार बढ़ रही है। तो जिन मेट्रो स्टेशन के दरवाजे खुले हैं वो वहां से निकल के पैदल यहां तक पहुंच रहे हैं, और अब वो कनॉट प्लेस के पास भी है जमावड़ा आउटर सर्कल, और इसी के साथ जनपद का जो इलाका है यानी संसद भवन से 300 मीटर 400 मीटर तक की पूरी रेडियस के इलाके में वो जमावड़ा है। शास्त्री भवन के पास गया, वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए उनको वहां से तितर बितर करने के लिए, क्योंकि वो जो संसद का एक दूसरा द्वार है वो बेहद नजदीक है, तो वहां संवेदनशील इलाका होने के नाते सत्र चल रहा है, तो वहां से दूर किया गया। पुलिस ने हालांकि जंतर मंतर पर भी रेस्ट्रेन करने की कोशिश की है, तो अगर ये आगे जाते हैं तो पुलिस की कोशिश दरअसल ये है कि इनको संसद भवन की पेरिफेरी से कम 400-500 मीटर की दूरी पर कम से कम वहां रखा जाए, लेकिन अब इसका क्या है कि दरअसल दूसरे पॉकेट में भी वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। नेहा,
0: और इस बीच आपने तस्वीरें देखी हैं कैसे संसद भवन परिसर को अब एक तरीके से सील बंद किया जा रहा है, तमाम सुरक्षाकर्मी अंदर की ओर जाते हुए आपको दिख रहे होंगे, और ये दरअसल वो जगह है जहां पर अब इस वक्त अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। मौसमी सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गई है, मौसमी क्या तैयारी वहां पर दिख रही है?
7: देखिए अभी हम लोग संसद परिसर पर ही खड़े हुए हैं नेहा, और यहाँ पे आपको बता दें कि जो साउथ गेट है वो फैसिलिटी बंद कर दी गई थी, पीछे हमें अभी भी लगातार अनाउंसमेंट्स की आवाजें आ रही हैं, जो कि बाई तरफ मेरे रेल भवन है वहां पे हो रहा है। ज्यादा सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ परिसर के भीतर की तस्वीर हम नहीं दिखा सकते, हम लोग संसद परिसर के बाहर है, लेकिन विजय चौक पर भी भारी तैनाती, जो कि मेरे दाहिने हाथ पड़ता है, भारी तैनाती है। और यहाँ पे पूरा हाई अलर्ट पे पूरी पार्लियामेंट की सुरक्षा को रखा गया है। तमाम पैरा मिलिट्री के जवान, जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी है जो कि अब CISF के पास है, वो पूरे एरिया को बिल्कुल एक तरीके से कह लीजिए किले में तब्दील कर दिया गया है। टियर गैस का इस्तेमाल हमारे सामने ही रेल भवन पे हुआ। रेल भवन की जो एंट्री है, रेल भवन के बिल्कुल पास पड़ता है ट्रांसपोर्ट भवन, जहां से एंट्री होती है वाली एंट्री भी रेल भवन चौक पे बंद है। तो पार्लियामेंट की दो एंट्रियां जो है वो व्हीकलर मूवमेंट के लिए बंद कर दी गई है। और एहतियात के तौर पे, पैनिक की बात नहीं है, एहतियात के तौर पर सुरक्षा के मद्देनजर ये कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि प्रोटेस्टर सड़कों पर है। और यूजुअली हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होता है वो रायसेना रोड तक ही सीमित रहता है, लेकिन यहाँ ये प्रोटेस्टर्स संसद के बेहद करीब रेल भवन तक पहुंच गए, जहां से मेन एंट्री होती है पार्लियामेंट की। और ऐसे में जो सुरक्षा के लिए काफी सुरक्षा कर्मी काफी सख्ते में नजर आ रहे थे, तमाम आला अधिकारी अभी भी हमारे सामने जो है मार्च कर रहे हैं, बार बार बैरिकेड्स देख रहे हैं। अभी स्थिति रेल भवन में थोड़ी जो प्रोटेस्टर्स है उनको डिस्पर्स किया गया।
0: मौसमी, लेकिन सवाल ये है कि जब मेन जो मेट्रो स्टेशन थे वो बंद कर दिए गए, सुबह से ही मालूम था कि प्रोटेस्टर्स कहां तक मार्च करने वाले हैं, किन एरियाज में जाने वाले हैं, बैरिकेडिंग और तमाम सुरक्षा बलों की तैनाती उसी हिसाब से की गई थी, तो ये यहां तक पहुंचे कैसे?
7: बिल्कुल, जैसे मैंने पॉइंट आउट किया था कि अगर कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होता है तो उनको बहुत पहले ही रोक दिया जाता है, और ये पहली बार मैं बहुत समय बाद देख रही हूँ कि रेल भवन तक की प्रोटेस्ट पहुंच गया है। जब हम सुबह आ रहे थे तो हमने देखा था कि मेट्रो स्टेशन से बहुत ज्यादा भीड़ बाहर निकल रही थी, तो क्योंकि प्रोटेस्ट 11 बजे का था तो 9 बजे 10 बजे मेट्रो स्टेशन से हमने बहुत सारे जो केंद्रीय सचिवालय है वहां से भीड़ निकलते हुए देखा, और वहां से बहुत एकदम से वहां से जंतर मंतर का फासला भी संसद से ज्यादा दूर नहीं है, तो जिस तरीके से जिस तादाद में प्रोटेस्टर्स आए वो भी काफी ज्यादा संख्या थी। और क्योंकि संसद का परिसर चारों तरफ आप देखिए, चाहे पीटीआई का चौक हो, चाहे रायसेना रोड हो, चाहे विजय चौक हो, या पीछे गुरुद्वारा रकाबगंज, तो काफी फैला हुआ है। तो एक तरीके से कुछ समय के लिए प्रोटेस्टर्स मात्र 100 से 200 मीटर की दूरी पर थे संसद के मेन गेट से, जो कि विजय चौक है, क्योंकि विजय चौक के रेल भवन का रास्ता बेहद करीब है। और वहां पे कम से कम 1-1.5 घंटे तक, मैं पिछले 1.5 घंटे से यहाँ पे खड़ी हूँ, पिछले 1-1.5 घंटे तक पुलिस को, एंटी राइड व्हीकल्स को, CISF को भारी मशक्कत करनी पड़ी, टियर गैस अनाउंसमेंट का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद ही आप देख रहे हैं जो तस्वीरें हैं वो किस तरीके से, वो यही रेल भवन की है जो लगातार टियर गैस का इस्तेमाल हुआ, उसी के चलते प्रोटेस्टर्स को डिस्पर्स कराया जा सका।
0: प्रोटेस्ट काफी दूर ही रुक जाती हैं, लेकिन आज जो ये प्रोटेस्ट हो रही है, प्रदर्शनकारी अब संसद भवन के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं, जैसा कि मौसमी जानकारी दे रही है, रेल भवन के काफी नजदीक। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें तितर बितर होते हुए प्रदर्शनकारी भागते हुए दिख रहे हैं। कई प्रदर्शनकारी ऐसे हैं जो वहां पर आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए, सफोकेशन से बचने के लिए नमक लेकर पहुंचे हैं। उनको ये हिदायत दी गई थी, उनको ये कहा गया था कि वहां पर नमक लेकर आप पहुंचिए, लेकिन उसके बावजूद इस आंसू गैस की तीव्रता के आगे बेबस दिखाई देते हुए और वहां से अलग हटते हुए प्रदर्शनकारी। तीन तस्वीरें आज की हम आपको दिखा रहे हैं, संसद के करीब प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं और ऐसे में वहां की सुरक्षा को और बढ़ाया गया है। जंतर मंतर पर सुबह ही लाठी चार्ज हुआ था प्रदर्शनकारी को तितर बितर करने के लिए। वहीं इस पूरे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, और अगर आप सेंट्रल दिल्ली से वाकिफ हैं, पूरा एरिया आज एक तरीके से चौक ब्लॉक हो रखा है। वहां पर कई जगहों पर ट्रैफिक की समस्या देखी जा रही है, क्योंकि कई मेट्रो स्टेशन भी बंद है और ऐसे में जो लोग सड़क से आवाजाही कर रहे हैं उनके लिए काफी दिक्कतें हैं, क्योंकि जगह जगह ब्लॉकेज है ट्रैफिक का। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या ताजा अपडेट है?
8: देखिए बिल्कुल, संसद भवन के चारों तरफ जो है प्रोटेस्टर आए हैं, उनको तितर बितर करने के लिए जो है ना टीयर गैस छोड़ा गया। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो संसद भवन में जो देश के शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, वो गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं। और कारण क्या है मिलने का ये तो नहीं साफ है, लेकिन इतना जरूर है कि ये मुलाकात बहुत अहम हो सकती है, क्योंकि कुछ देर पहले जेपी नड्डा ने जो है गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और उसके बाद वो जो है संसद भवन से बाहर गए। उसके बाद ही ये खबर आई कि सीजीपीआई के जो कुछ लीडर्स हैं उनसे जेपी नड्डा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो मुलाकात कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मुलाकात इसलिए कर सकेंगे क्योंकि नीट का पेपर लीक का जो मामला है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर आता है, और साथ ही साथ शिक्षा मंत्रालय के तहत जो है एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो इस पूरे एग्जाम को जो है कंडक्ट कराती है। इसीलिए स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इन प्रोटेस्टर्स के जो लीडर्स हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और इस तरीके भी खबर है कि वांगचुक से मुलाकात करने जो है सफदरजंग हॉस्पिटल जो है वो स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जा सकते हैं इन लीडर्स से मुलाकात करने के बाद। लेकिन जिस तरीके से ये अनशन खत्म हो रहा था उस बीच में ये जो तस्वीरें आई हैं, जो संसद भवन, रेल भवन, उसके साथ साथ कृषि मंत्रालय के आसपास जिस तरीके से प्रोटेस्टर आए हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है और दिल्ली पुलिस है इन प्रोटेस्टर को समझाने की कोशिश की कि ये यहाँ से जाए, क्योंकि मामला यहाँ तक नहीं है, यहाँ 144 लगी हुई है। धारा 144 में चार से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, और जब ये लोग नहीं माने तो उसके बाद जो है टीयर गैस का इस्तेमाल यानी आसुगैस का इस्तेमाल जो है वो किया गया।
0: और इस बीच हम तस्वीरें लगातार उसी एरिया की दिखा रहे हैं आपको। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जब भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस बल का प्रयोग किया गया। प्रदर्शनकारी वहां पर बड़ी संख्या में जुटे हैं और इन्हें अलग अलग ग्रुप्स के जरिए वहां पर मोबिलाइज किया गया। हालांकि बहुत सारे प्रदर्शनकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं, किसी के दबाव में वहां पर नहीं पहुंचे।
1: पार्टी के द्वारा अलग अलग जगहों पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आज तक की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और मैं संसद भवन के पास इस वक्त मौजूद हूं। यहां पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से संसद भवन के पास तक बहुत सारे जो कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि पुलिस की पूरी तरीके से यहाँ पर बंदोबस्त किया गया है और पुलिस ने बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा रखा है और सारे लोगों को यहाँ पर रोका हुआ है। इसके उस पार जो सेंट्रल सेक्रेटरिएट मेट्रो स्टेशन है उसके आसपास तक तमाम लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं। आपको तस्वीरें जूम करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस ने सबको रोका हुआ है। सुबह से ही ये लोग संसद मार्च करने के लिए यहाँ से निकल रहे थे, जंतर मंतर से संसद भवन तक ये लोग पहुंचना चाह रहे थे। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर तमाम लोग जो है, तमाम छात्रों को पुलिस ने यहाँ पर ह्यूमन चेन बना करके रोका हुआ है। और ये लोग यही लगातार मांग कर रहे हैं कि नीट को लेकर के जिस तरीके से सरकार ने कदम बढ़ाया है वो कदम ठीक नहीं है और इसको लेकर के इनके द्वारा यहाँ पर लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि तमाम जो युवा है वो लोग यहाँ पर तालियां बजा करके इस तरीके से प्रदर्शन इनके द्वारा किया जा रहा है। तो इस तरीके की स्थिति रेल भवन के पास इस वक्त बनी हुई है। आप दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए कि मार्च करते हुए तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं सड़क में, और ये एक ऐसी जगह है जो कि रेल भवन और संसद भवन

0: ये कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग जो प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आ रहे थे वो मेट्रो का फिर सहारा लिया, बाद में मेट्रो को हालांकि बंद किया गया। लेकिन अभी की जो सिचुएशन जो मैं सामने इस वक्त देख रहा हूँ रेल भवन के सामने, रेल भवन के सामने जो रफी मार्ग है, इस रफी मार्ग पर काफी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जो युवा है वो इकट्ठा होकर के यहाँ पर एक तरीके से प्रदर्शन वो लोग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने उन लोगों को समझाने की कोशिश की, पुलिस लगातार उनसे बातचीत कर रही है और एक अलग तरीके से बातचीत करके किसी के ऊपर उन्होंने कोई भी ज्यादा बल प्रयोग नहीं, हल्का बल बीच बीच में उनको प्रयोग करना पड़ा जिसके बाद पुलिस ने उनको आगे की तरफ बढ़ा दिया। तो सेंट्रल सेक्रेटरिएट मेट्रो स्टेशन का जो गेट नंबर 3 और 4 है उसके आगे की तरफ उन छात्रों को और ये जो युवा है ये कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में यहाँ पर पहुंचे थे उनको आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा है। उसके आगे उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन है, उससे आगे उनको क्रॉस कराया जा रहा है। तो ये हम तस्वीरें अपनी आंखों से इस वक्त देख रहे हैं क्योंकि इस इलाके में कई जगहों पर
1: आपको इस बीच आपको सीधे लिए चलेंगे प्रेस वार्ता।
2: तो क्या सदन सरकार के दस्तावेज के लिए ही है और इसीलिए हमने सुबह से ही आपत्ति हमने जताई कि आज के दिन के एजेंडे में डेली एजेंडा जो आता है, डेली बिजनेस जो आता है उसमें राम मंदिर क्यों उल्लेखित नहीं है, उसमें छात्रों का जो नीट इश्यू है क्यों उल्लेखित नहीं है। और जब तक डेली एजेंडा में नहीं आता या सरकार अपने तरफ से स्पष्ट तारीख नहीं बताती तब तक आप समझ लीजिए ये सरकार अपने जिम्मेवारी से भागना चाहती है।
3: धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की भी आप लोग मांग कर रहे हैं।
2: देखिए जब उस विषय में तो हम चाहते ही हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी नैतिक जिम्मेवारी ले, क्यों जब भाजपा निर्वाचन से पहले जब मुख्यमंत्री बदल सकती है तो शिक्षा मंत्री क्यों नहीं बदल सकते। जब गुजरात में निर्वाचन आता है, जब उत्तराखंड में निर्वाचन आता है तब तो मुख्यमंत्री बदल देते हैं, हरियाणा में मुख्यमंत्री बदल देते हैं। इतना अटूट विश्वास धर्मेंद्र प्रधान जी पर क्यों? क्या और कोई काबिल शिक्षा मंत्री नहीं है? तो इसीलिए सरकार उनकी है, मंत्री उनको ही बनाना है। तो वो आज उनकी विफलता के बारे में पूरे देश और दुनिया में चर्चा चल रही है लेकिन अहंकार।
1: तो लगातार विपक्ष लामबंद दिखाई दे रहा है कि नीट पेपर लीक का मुद्दा प्रमुख तौर पर इस मॉनसून सत्र में उठाया जाए। लेकिन इस बीच आपको तस्वीरें उस जगह पर की दिखा देते हैं जहां पर इस वक्त प्रदर्शनकारी जमा हुए हैं। संसद भवन का मेन गेट बंद कर दिया गया है, या देख सकते हैं वहां पर सुरक्षाकर्मी कैसे अंदर की ओर जा रहे हैं और गेट को लॉक कर रहे हैं। वे प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। योगेंद्र यादव ने वीडियो जारी करके क्लेम किया है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, इस वक्त स्थिति कंट्रोल में दिख रही है? तमाम जानकारी के साथ। आज तो जब से कुछ देर पहले की आप तस्वीरें दिखा रहे थे, अभी क्या वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है? क्या ताजा हालात हैं जो आप देख पा रहे हैं?
4: की जो पेरीफेरी है उस 1 किलोमीटर को सैनिटाइज करके रखा जाए। लेकिन आपके मन में, सबके मन में सवाल हो रहा होगा कि मेट्रो स्टेशन बंद थे, पहुंचे कहां से? मैं जहां पर देखिए, ये राजीव चौक का मेट्रो स्टेशन है, दूरी पर दरअसल इंटरनेट की वजह से हमें कुछ दूरी बनानी पड़ी है। मेट्रो स्टेशन का गेट बंद है लेकिन इसके पीछे 2 स्टेशन आर के आश्रम हो या करोल बाग हो, मेट्रो स्टेशन खुले हैं, वहां से वो पैदल चल के आ रही है। जो आपको जमावड़ा दिख रहा है ये तमाम सारे लोग आ रहे हैं। अब जरा मैं आपके पीछे लिए चलता हूं, कनॉट प्लेस का आउटर सर्कल है, यहीं से होते हुए सुबह अलग अलग रास्तों से, अगर यहां पर राजीव चौक बंद था तो मंडी उस बारखंबा जो खुला वो वहीं से आगे बढ़े और पैदल चलते हुए अब जैसे ये पूरा इलाका जो टोलस्टॉय मार्ग उसके साथ जनपद था वो बंद हो चुका है। तो अब वो कनॉट प्लेस के आउटर पर ये देखिए, आपको जो बसें वहां रुकी दिखाई पड़ रही हैं ये इसी वजह से हैं क्योंकि अब यहां ट्रैफिक बंद कर गया और अगर इसी के साथ ये जमावड़ा बढ़ता रहा तो ये भीड़ भले पार्लियामेंट के पास, अगर आपको वहां कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, वहां पुलिस नियंत्रण कर लेगी, पार्लियामेंट से दूर आकर के यानी 1.5 से 2 किलोमीटर के पेरीफेरी पर फिर ये जमावड़ा बढ़ रहा है और इसी के साथ साथ वो एक दूसरे से अगर संपर्क कर रहे हैं यानी बाहर बाहर पार्लियामेंट की जो पेरीफेरी है वहां वो शास्त्री भवन के पास आपने

0: देखा वहां उनको बल प्रयोग करना पड़ा है, तो यहां पर एहतियात के तौर पर पुलिस ने बैरिकेडिंग तो की थी, लेकिन उन बैरिकेड को प्रोटेस्टर्स ने हटा दिया। अब अंदर के इलाके में तो वो जो जमावड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि अभी तक ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, कोई शोर शराबा नहीं है, वो नारेबाजी कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, अपने मुद्दों पर अड़े हुए हैं। और इस बीच जब तक वो इसलिए कि क्या सरकार से कोई बातचीत होगी, किसी तरह का समाधान होगा, ये देखिए ये दूसरा रास्ता है। अब आगे जो करोलबाग या दूसरे जो इलाकों से हैं, यानी उन्हें ये पता है कि अगर यहां पहुंचना है तो उसके रास्ते क्या हो सकते हैं। 10 की झुंड में, 50 की झुंड में, 100 की झुंड में ये जो प्रदर्शनकारी हैं वो पहुंच रहे। देखिए वहां पर एक और बस उधर से आ रही है। ये रास्ता पूरी तरह कनॉट प्लेस के एंट्री एग्जिट पॉइंट पूरी तरह से सील हो चुके हैं। इक्का दुक्का दो पहिया को अगर छोड़ दें तो अब कोई चार पहिया वाहन यहां नहीं आ सकता। आउटर रिंग जो सबसे बड़ा मूवमेंट होता है आउटर रिंग रोड कनॉट प्लेस का, वो पूरी तरह से बंद है। यहां पर बसों को रोका गया है,
1: आउटर रिंग कनॉट प्लेस का बंद कर दिया गया है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, स्थिति नियंत्रण में है या आउट ऑफ कंट्रोल?
2: देखिए फिलहाल तो स्थिति नियंत्रण में कही जाएगी, लेकिन जो भीड़ है वो उसने एक दो बैरिकेड यहाँ पर जरूर तोड़े हैं। लेकिन अब भीड़ को समझाने के लिए जो मैं देख पा रहा हूँ, चंद्रशेखर रावण वो आए हैं सामने यहाँ पर। चूंकि मैं इस वक्त आपको बताऊं पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन पे हूँ, जंतर मंतर से बेहद करीब, पार्लियामेंट से बेहद करीब। यहाँ पर बैरिकेटिंग कुछ जो प्रोटेस्टर उन्होंने तोड़ी, लेकिन अब यहाँ पर इस वक्त भारी फोर्स दिल्ली पुलिस के तमाम जो सीनियर अधिकारी है वो मौजूद है। अभी अभी चंद्रशेखर रावण ने माइक थामा हुआ है और वो जो प्रोटेस्टर हैं उनको समझाने की कोशिश यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस अब चंद्रशेखर रावण के भरोसे भी है। भारी तादाद में जो यहाँ पर प्रोटेस्टर थे वो चारों तरफ और खासतौर से जो पार्लियामेंट थाना है वो मुख्य केंद्र है यहाँ का, क्योंकि यहीं से सारे जो डेवलपमेंट है, चाहे पुलिस की प्रोटेस्टर से बातचीत वो यहाँ पर चल रही थी। तो यहाँ पर भारी बैरिकेडिंग की गई थी, एक बैरिकेडिंग तोड़ी जिसके बाद तुरंत नियंत्रण में लाया गया प्रोटेस्टर को। और अब फिलहाल जो चंद्रशेखर रावण है उन्होंने माइक थामा हुआ है और अब ये देखना होगा कि वो प्रोटेस्टर से क्या कहते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है जब पुलिस यहाँ पर मौजूद है और तमाम फोर्सेस यहाँ मौजूद है, उन सबके बीच जो चंद्रशेखर रावण है वो माइक हम
1: ठीक है वो क्या कुछ बोल रहे हैं सुना देते हैं अपने दर्शकों को।
3: उसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्रेडिबिलिटी किसकी है, किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, दुनिया में आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे हैं और आपके यूपी के मुख्यमंत्री ने आपके दिल्ली के ऊपर आरोप लगा दिया। SIT बनाकर के क्या तक तैयारी कर दी कि मंदिर में चोरी हुई? भाई सच्चाई किसने खोली? SIT ने खोली कि SIT से चंदा चोरी हो गई? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नीट आप एग्जामिनेशन नहीं करा रहे हो, एग्जामिनेशन कराया उसके बाद भी शिकायतें हैं, तो आप क्या किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हो? नौकरी रोजगार दिए नहीं, अगर नौकरी रोजगार दिए होते इतने बच्चे क्या यहाँ सड़कों पे आते?
4: सर आज की मीटिंग को लेकर कुछ बोलेंगे सर? मीटिंग
3: हाउस एडजोन होता है तो एक दूसरे से लोग मिलते हैं, हाउस एडजोन के बाद मिलते हैं उसमें क्या है? लेकिन अभी अभी सबसे पहला सवाल ये है कि नीट के बच्चों को न्याय मिले और यहाँ के जो बच्चे जो आए आंदोलनकारी उनके साथ व्यवहार अच्छा हो। ये जो आंसू गैस, लाठी, करंट या पत्थरबाजी ये पुलिस कर रही है, ये व्यवहार करेगी पुलिस? सोचिए ये जो व्यवहार पुलिस का है ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। मंदिर को लूटना, विश्वविद्यालयों को बंद करना और छात्रों की ये प्रताड़ना, ये तो अंग्रेजों ने भी नहीं की हो। अंग्रेजों ने तो सुना है, अगर कोई धरना और प्रदर्शन पर बैठा है तो उसकी बात सुनी। इसीलिए गांधी आज दुनिया में पूजे जाते हैं, गांधी की तस्वीर प्रतिमा दुनिया में है, इसीलिए कि उन्होंने रास्ता दिखाया कि ये आंदोलन का रास्ता है। अगर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग को लेकर क्योंकि बैठे उनके साथ ऐसा व्यवहार आप करेंगे?
4: बात करनी चाहिए सर सरकार को इन प्रदर्शन,
3: सरकार को बात ही नहीं करनी चाहिए। और एक मंत्री को कितने दिन वहां रखोगे आप? क्यों एक जगह में बैठा के रखते हो? जब एक मंत्री एक जगह बैठता है तो अपने आदमियों को सेट कर लेता है और अपने आदमियों को सेट करने के बाद करप्शन बड़े पैमाने पे होता है। आप बदलते रहिए, लोहिया जी यही कहते थे ना, सरकार बदलनी चाहिए उसी तरह जैसे रोटी बदलती है। तो सरकार में बैठे हुए मंत्री तो बदलें, और अभी तो सरकार सम्मानजनक नहीं तो सम्मानजनक बदलाव सरकार का ना हो जाए कहीं। ये जो आंदोलनकारियों को हटा रहे हैं कहीं सम्मानजनक विदाई सरकार की ना हो जाए।
4: ठीक सर, थैंक यू,
3: धन्यवाद।
1: तो अब संसद परिसर के बेहद करीब जब प्रदर्शनकारी पहुंचने लगे तो वहां का मुख्य गेट बंद कर दिया गया है। हालांकि कई ऐसे प्रमुख मेट्रो स्टेशन थे जो आज सुबह से ही बंद थे, भीड़ के मद्देनजर वहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, कई जगहों पर इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। मैसेजेस का आदान प्रदान नहीं हो सके, इसी वजह से वहां पर धारा 163 भी लगाई गई है और कई मामलों में सुरक्षा भी पहले से ज्यादा अब कुछ देर पहले कर दी गई है। शिवानी मेरी सहयोगी जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। शिवानी, क्या पुलिस असेस नहीं कर पाई कि इतनी भीड़ थी तो इतने नजदीक वहां पर प्रदर्शनकारी पार्लियामेंट के पहुंच गए?
5: लेकिन यह एक बहुत ही सीरियस सिक्योरिटी ब्रीच इसे माना जा रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट के लगभग 200 मीटर की दूरी तक ये प्रदर्शनकारी पहुंच गए और ऐसा नहीं था कि पुलिस का डिप्लॉयमेंट दुरुस्त नहीं था। सुबह से जब हम रिपोर्ट कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि जगह जगह पर बहुत सारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे, पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान थे और मल्टीपल लेयर ऑफ बैरिकेड्स थे। लेकिन ये भीड़ एकदम से उग्र हुई और एक के बाद एक बैरिकेड्स को तोड़ते हुए ये आगे पहुंच गई। लगातार पुलिस के द्वारा वहां पर अनाउंसमेंट्स किए जा रहे थे, कोशिश ये की जा रही थी कि इनको कंटेन किया जाए और इन्हें ये बात बता दी जाए कि आप इस पूरे इलाके में नहीं आ सकते, क्योंकि 163 यहां पर लागू है। मॉनसून का सत्र चल रहा है, पहला दिन है, वैसे भी यहां पर एडवाइजरी जारी की गई थी कि इन जो इलाके हैं, जो सेंट्रल दिल्ली का जो इनर रिंग है, उन सड़कों को ना लें, दूसरी तरफ जो वैकल्पिक रास्ते हैं वहां जाएं। तो नॉर्मल डे कम्यूटर्स के लिए भी ये एडवाइजरी थी और प्रोटेस्ट मार्च के लिए कोई भी यहां पर परमिशन नहीं दी गई थी नेहा। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि सैकड़ों लोग लगातार संसद की तरफ बढ़े, कई बार इनको रोकने के लिए पुलिस ने हल्का बल वहां पर प्रयोग किया, यानी कि लाठीचार्ज किया गया 2 और 3 पॉइंट्स पर। हमने देखा बैरिकेड्स उन्होंने तोड़ दिए, बैरिकेड को तोड़कर वो आगे बढ़े और जो अंतिम बैरिकेड का एक लेयर जिसे कह सकते हैं नेहा, जो कि रेल भवन के पास और उसके बियॉन्ड था, जहां पर जहां से पार्लियामेंट बहुत ही नजदीक है, वहां तक ये लोग जा पहुंचे, जिसके बाद टीयर गैस चार्ज करना पड़ा और तमाम एक्सप्लोजन यहाँ पर टीयर गैस की, जो जब टीयर गैस छोड़ी जाती है तो वो जो गोले होते हैं उसका एक आवाज आती है, धमाके आते हैं, वो धमाके लगातार हमने सुने।
1: ठीक है, जितेंद्र बहादुर सिंह भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आप दिखा रहे थे कि किस तरीके से तमाम जगहों पर बैरिकेडिंग के बावजूद ये प्रोटेस्टर्स आगे बढ़ गए, रेल भवन तक पहुंच गए और संसद परिसर के बेहद नजदीक पहुंच गए, ऐसा संभव कैसे हुआ? ये बड़ा सिक्योरिटी लैब शिवानी बता रही थी।
6: और देखिए, जिस तरीके से सुरक्षा का इंतजाम था कि ये प्रोटेस्टर्स जो हैं वो संसद भवन तक ना पहुंचे, इसके लिए बाकायदे जंतर मंतर से लेकर के जो संसद मार्ग तक पूरा ये रास्ता था, यहाँ पर पूरी तरीके से सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। 5,000 के आसपास दिल्ली पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों को तैनात किया गया था। जब सुबह मैं इस एरिया में पहुंचा विजय चौक की तरफ, तो तमाम जो ये रास्ते हैं उन रास्तों को बैरिकेड किया गया था और बैरिकेड करने के साथ साथ हर एक व्यक्ति की चेकिंग की जा रही थी। लेकिन सुबह के वक्त इस तरीके की जानकारी मिली कि उस समय जो सेंट्रल सेक्रेटरिएट मेट्रो स्टेशन है वो उस वक्त चल रहा था, उसके बाद जब भीड़ वहां से या फिर जो प्रोटेस्ट करने वाले कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो जब निकले तो उसके बाद मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया। उस तब बहुत सारे लोग जो हैं इस एरिया में पहुंच चुके थे, धीरे धीरे करके लोग इकट्ठा हुए, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। और वो रेल भवन के पास जो गोल चक्कर पड़ता है रेल भवन के पास, उस गोल चक्कर तक पहुंच गए और वहां पर फिर उनको हटाना मुश्किल होने लगा, क्योंकि बैरिकेडिंग के पास पहुंच करके उनके द्वारा नारेबाजी जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके द्वारा लगाया गया। तो इस तरीके की सिचुएशन पैदा हुई। लेकिन अब रेल भवन के पास से उनको हटा करके आगे की तरफ जो उद्योग भवन है, इधर से रास्ता जाता है आगे की तरफ, उस पूरे रास्ते को जो है खाली करा लिया गया है और तमाम लोग जो इकट्ठा थे, सैकड़ों की संख्या में लोग थे, उनको जो है वहां से हटा करके आगे की तरफ भेज दिया गया। और पुलिस के द्वारा अब ये कोशिश की जा रही कि इनको तितर बितर किया जाए, हल्का बल जो है पुलिस प्रयोग कर रही है, जिससे कि जो लोग एक जगह इकट्ठे हो गए, क्योंकि पहले ही ये ताकीद कर दिया गया था कि यहाँ BNSS की धारा 163 लगाई गई है, 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, इसलिए उनको हिदायत दी गई थी कि इकट्ठा न हो और इस तरीके का अनाउंसमेंट भी लगातार जो है पुलिस के द्वारा किया जा रहा है।
1: मौसमी सिंह में सहयोगी भी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, क्योंकि आप कुछ देर पहले संसद परिसर के भीतर मौजूद थे, हालांकि तस्वीरें आप हम तक नहीं पहुंचा पाई, लेकिन वहां पर क्या ताजा स्थिति थी, किस तरीके से वहां पर सुरक्षा बल अचानक से एक्टिवेट हो गया, ये स्थिति भांप नहीं सकी वहां की सिक्योरिटी या फिर कहीं ना कहीं पहले ही लैप्स हो चुका था?
7: देखिए, इस वक्त हम लोग कर्तव्य पथ पर खड़े हुए हैं और ये तस्वीर शायद ही कर्तव्य पथ की आपको देखने को मिलेगी, जहां पे आप देखिए कि कितना ज्यादा सुरक्षा बल यहां पे तैनात है। लोकेंद्र आपको दिखाएंगे कि पूरा कर्तव्य पथ में लोगों की भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है, सारे जो लॉन्स हैं वो लोगों से भरे हुए हैं। यहां बीच में पुलिस की एक नीली बस बिल्कुल कर्तव्य पथ के चौक पर लगा दी गई है। एक जूता आपको यहाँ पे नजर आएगा। ये जाहिर तौर पे प्रदर्शनकारी जिनको बसों में भर भर के बैठाया गया है उनको ले जाया गया। पीछे आप हमारे देख सकते हैं कि ये राष्ट्रपति भवन है और उससे थोड़ी ही दूर पे विजय चौक से मात्र पहली रेड लाइट पर ये बैरिकेड और इस तरह से रायट व्हीकल जो टियर गैस से भी लोड कर दी गई है अभी हमारे सामने ही। इस तरफ आप देखें तो खाकी का समुंदर पीछे आपको नजर आएगा। उस तरफ उद्योग भवन की तरफ भी पूरा इलाका बैरिकेड कर दिया गया है। चारों तरफ इस चौराहे पर बैरिकेड्स ही बैरिकेड्स हैं। उस तरफ अभी भी कोशिश की जा रही है कि जो प्रदर्शनकारी है उनको

0: आवाजाही बंद कर दी गई है और सारी तरफ भी हमारे ही सामने यहाँ पे आप देखिए जिस तरह से हम आपको दिखा रहे थे कि प्रदर्शनकारियों के चप्पल जूते और तमाम युवा जो थे उनको उठाया गया और इसी तरह से बसों में भर भर कर ले जाया गया है। अभी भी इस तरफ आप देखिए रफी मार्ग के
1: ठीक है मौसमी आपके एक रिपोर्ट करते हुए पद से दिखा देते हैं अपने दर्शकों को, इससे समझ पाएंगे इस वक्त वहाँ पर हालात क्या है।
0: हम कर्तव्य पथ पे खड़े हुए हैं और लगातार 2 घंटे से भीड़ को हटाने की कोशिश यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी है यहाँ पे आप देखिए ये कर्तव्य पथ का चौराहा है जहाँ आपको सिर्फ पुलिस के साइरेंस सुनाई देंगे और ये तस्वीर है जहाँ प्रोटेस्टर्स

0: उनको जो जर्नलिस्ट है उनको भी इस तरीके से जो है धक्का दिया जा रहा है। ये तस्वीर यहाँ पे जो आप प्रदर्शनकारियों को तस्वीर कर्तव्य पद से हम दे रहे हैं। पीछे आप देखिए राष्ट्रपति भवन है और राष्ट्रपति भवन के बिल्कुल ठीक थोड़ी ही दूरी पर ये पूरा घटित हो रहा है, जहां प्रदर्शनकारी इतनी तादाद में है कि पूरा कर्तव्य पद कुछ इस तरह नजर आएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से रैपिड एक्शन फोर्स भी डिप्लॉयड है यहाँ पे और पुलिस इन बसों में भर के जा रही है। ये इन प्रदर्शनकारियों से पूछ लेते हैं कहाँ से वो कामयाबी है पुलिस वालों की जो मदद कर रहे हैं।
1: लड़कियों को मारा है इन्होंने, लड़कियों को मारा है,
0: स्टूडेंट्स को मारा है, आने वाले भविष्य को मारा है। यही है मोदी की जीत, मोदी आतंकवादी है।
2: पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं,
1: मोदी आतंकवादी, पुलिस आतंकवादी है, गुंडागर्दी है।
0: यहाँ पे ये देखे कि यहाँ पे प्रोफेसर जो है कह रहे हैं कि उनको जो है मारा जा रहा है, जिस तरीके से यहाँ से ले जाया गया है ये गुंडागर्दी है। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। हम कर्तव्य पथ पे खड़े हुए।
3: जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़े हुए तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, जो लोग बस में बैठाए गए हैं, जो प्रदर्शनकारी वहां पर मौजूद थे, वो ये बता रहे हैं कि मारपीट हुई है, ये कहां तक सत्य है?
4: देखिए, जो प्रदर्शनकारी हैं, बहुत सारे लोग जो बैरिकेडिंग को खींच रहे थे, तो पुलिस ने उस दौरान हल्का बल प्रयोग किया। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरीके से बैरिकेडिंग को खींच करके आगे की तरफ वो घसीटते हुए जो प्रदर्शनकारी हैं उसको ले जा रहे थे। उसके बाद पुलिस ने उनको कहा कि यहां से तितर बितर हो जाइए। पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट भी किया जा रहा था, बाकायदे लाउड स्पीकर के जरिए पुलिस ये बोल रही थी कि यहां पर इकट्ठे नहीं होना है, क्योंकि पहले से ही ये कहा गया था कि यहां धारा 163 BNSS की धारा लगी हुई है, 1-4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो इस तरीके की अनाउंसमेंट भी किया जा रहा था, लेकिन जब कुछ लोगों को वहां से पुलिस ने आगे की तरफ जाने के लिए कहा कि इस रास्ते को जो रफी मार्ग है वहां से कर्तव्य पथ होते हुए आगे जो उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन पड़ता है वहां तक जाने के लिए बोला, तो उसमें काफी लोग भागने लगे, जिसमें से बहुत सारे लोगों को यह ऐसा लग रहा है कि उनके पैर में चोट लग गई। तो इस तरीके का जो हमने देखा वहां पर, क्योंकि यहां से कुछ दूरी पर वो पूरा रास्ता मौजूद है, हालांकि अब उस एरिया को पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है।
3: बड़ी खबर आपको बता दें, संसद मार्ग पर लाठीचार्ज हुआ है, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया है, जैसा कि जितेंद्र भी जानकारी दे रहे थे। संसद मार्ग के पास ये लाठीचार्ज बताया जा रहा है, बड़ी संख्या में वहां पर प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी थी, और क्योंकि ये बेहद संवेदनशील इलाका है, यहां पर भीड़ हटाने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया है। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, संसद मार्ग से क्या अपडेट?
0: बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आप पहले जो है रेल भवन जो कि संसद के बिल्कुल बगल में था, वहां पे भीड़ को तिथर बितर करने के लिए लाठी चार्ज टियर गैस का प्रयोग किया गया। अब 200 मीटर आगे हम लोग यहां पे खड़े हुए हैं, बाईं तरफ पहले ये लॉन आपको दिखाया था, पूरा लोगों से भरा हुआ था, प्रदर्शनकारियों से भरा हुआ था, लेकिन आप भीड़ को इधर से भी जो पहला आप कह लीजिए सिक्योरिटी का घेरा है संसद परिसर के अलग विजय चौक से आगे, उसको क्लियर किया गया है। लेकिन अगर आप इंडिया गेट की तस्वीर देखें, अभी भी आपको पुलिस की गाड़ियां और साइरेंस वहां पे सुनाई देंगे, यानी कि भीड़ को इंडिया गेट की ओर जो है उधर की तरफ खदेड़ा गया है, ताकि यहां जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की प्रेमिसेस है, हाई सिक्योरिटी जोन है, यहाँ से हटाया गया है। लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि यहाँ पे अभी तक हमने दर्जनों एंटी राइट व्हीकल्स देखी है। आप देखिए दिल्ली पुलिस के कर्मी यहाँ पे मौजूद है, जो कि नर्व सेंटर है भारत का या दिल्ली का, इंडिया गेट, वहाँ पे ट्रैफिक यातायात बिल्कुल बंद कर दिया गया है और एक तरीके से पूरा जीरो बटा सन्नाटा अगर आप कहें, गाड़ियों का कोई आवाजाही नहीं हो रही है। यहाँ पे पुलिस रेल भवन से लेके रफी मार्ग तक और उद्योग भवन तक और राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक पुलिस का ही पहरा नजर आ रहा है। हम ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते क्योंकि इंटरनेट जो है उससे दिक्कत होगी टेलीकास्ट में, पर यहाँ पे आप देखें तो पुलिस जो है पूरी तरह से यहाँ पे किलेबंदी कर चुकी है यहाँ कर्तव्य पथ।
3: ठीक है, जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, ये कर्तव्य पथ की तस्वीरें मौसमी हम तक पहुंचा रही थी, जहां पर आप खड़े हैं वहां की तस्वीरें हम तक पहुंचाइए। और जो संसद मार्ग से अपडेट आ रहा है कि वहां पर पुलिस ने बल का प्रयोग किया, उनको ऐसे निर्देश दिए थे या फिर उसके अलावा उनके पास कोई चारा ही नहीं बचा था?
4: बिल्कुल, यहाँ पर मैं विजय चौक पर इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरा यहाँ पर सिक्योरिटी जोन में तब्दील है। यहाँ पर आप देखिए कि पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं कि इस तरफ भी किसी भी तरीके से जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं वो यहाँ तक ना पहुँचे। ये हाई सिक्योरिटी जोन सुबह से ही ये बना हुआ था, यहाँ जब भी कोई पहुँच रहा था तो उसके बाकायदे आइडेंटिटी कार्ड चेक करके ही इस एरिया में जाने दिया जा रहा था। संसद भवन के पास जो रेल भवन है, ये पूरा जो आगे की तरफ चौराहा है, उस चौराहे पर जो है काफी जब भीड़ इकट्ठा हो गई तो उस दौरान उनको तितर बितर करने के लिए, क्योंकि हमने कई प्रोटेस्टर्स को देखा कि वो लोग जो बैरिकेडिंग लगी हुई थी उसको घसीट रहे थे और घसीट करके आगे का रास्ता खोलने की कोशिश उनके द्वारा किया जा रहा था। तो पुलिस ने जो है उनके ऊपर हल्का बल प्रयोग किया और बल प्रयोग करते ही आंसू गैस के गोले भी कुछ जगहों पर छोड़े गए, जिससे कि तमाम जो प्रोटेस्टर्स थे वो आगे की तरफ बढ़ गए। ये भी जानकारी मिल रही है कि अब इंडिया गेट की तरफ उनको जो कर्तव्य पथ होते हुए आगे की तरफ जो लॉन है उस लॉन से हटा करके इंडिया गेट की तरफ उनको बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि जो लोग इकट्ठा हुए थे सैकड़ों की संख्या में हमने देखा कि वहां पर लोग मौजूद थे और उसके बाद जो है उनको हटाया गया। तो ग्राउंड पर जिस तरीके की सिचुएशन बनी थी, पुलिस ने पूरा टैकल करने की कोशिश की, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था और उन्होंने कहा था कि संसद तक मार्च करने की इजाजत नहीं दी गई है, इसलिए लोग जो है इसकी कोशिश ना करें। हालांकि जो अलग अलग जगहों से आकर के कुछ मेट्रो स्टेशन से पैदल आकर के और यहां तक वो लोग पहुंच गए, तो पुलिस ने उनको हटाया है। और
3: बने रहिए हमारे साथ, लगातार हम अपडेट इस प्रदर्शन का पहुंचा रहे हैं और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी सुमित।
5: बहुत बहुत शुक्रिया नेहा आपका। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इस समय की सबसे बड़ी खबर न्यूज रूम लाइव में, हमारे दर्शकों को बता दें कि संसद के आसपास के इलाकों में सीजेपी के जो प्रदर्शनकारी है वो वहां पर पहुंच चुके हैं। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए वहां से पल पल की जानकारियां दे रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट भेज रहे हैं। लेकिन अभी जो वहां पर क्या ताजा हालात हैं इसके लिए लगातार हम अपने संवाददाताओं का रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि संसद के सभी गेट्स को बंद कर दिया गया है। वहां पर प्रदर्शनकारियों के पहुंचने के बाद अब लगातार सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद कर दी गई है। वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैनाती, हम आपको अलग अलग तस्वीरें ये लगातार संसद के पास की दिखा रहे हैं। संसद के गेट को बंद कर दिया गया है, संसद के पास प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, लाठी चार्ज भी कई जगहों पे करना पड़ा, आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े और इसको लेकर विपक्षी पार्टियों की तरफ से विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। परिसर में सख्त सुरक्षा व्यवस्था इस समय की गई है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं जो हमारे संवाददाताओं ने लगातार संसद भवन के आसपास के इलाकों से भेजी है। वहां पर पूरे इलाके में इस समय आप कह सकते हैं कि सुरक्षा घेरे में तब्दील कर दिया गया है। भारी संख्या में सुरक्षा बल इस समय संसद और संसद के आसपास के इलाकों पे मौजूद हैं। कर्तव्य पथ हो, संसद मार्ग का इलाका हो या फिर विजय चौक के आसपास के इलाके, सभी पर भारी बल यानी पूरी पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती इस समय कर दी गई है। हमारे साथ हमारी संवाददाता मौसमी सिंह भी हमारे साथ जुड़े। मौसमी, लगातार हम आपकी रिपोर्ट दिखा रहे हैं कर्तव्य पथ पर, कितनी ज्यादा संख्या इस समय वहां पर प्रदर्शनकारियों की है और खासतौर पे सुरक्षा के क्या ताजा इंतजाम है, अगर आप हमारे दर्शकों को दिखा सके तो? और हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी भी जितेंद्र बहादुर सिंह भी हमारे साथ जुड़े। जितेंद्र, लगातार आप कहां पर मौजूद हैं और इस समय वहां के क्या हालात हैं, अगर आप तस्वीरें हमें दिखा सके तो?
4: देखिए सुमित, मैं इस वक्त विजय चौक पर मौजूद हूं और यहां की स्थिति आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि किस तरीके की सिचुएशन, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले विजय चौक के आसपास और जो आगे का रास्ता पड़ता है रेल भवन की तरफ, ये पूरा रास्ता जो सामने की तरफ आपको दिखा रहे हैं, यहां से करीब 100 से 200 मीटर की दूरी पर जो है रेल भवन का चौक है और यहां से तमाम जो प्रोटेस्टर्स को हटाया गया है अब से थोड़ी देर पहले। तस्वीरें ये बता रही हैं उस दौरान कि किस तरीके से तमाम लोग जो इकट्ठा होने के बाद उनको जो है हल्का बल प्रयोग पुलिस के द्वारा किया गया, क्योंकि कई प्रोटेस्टर्स जो हैं पूरी तरीके से उग्रता दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और उनको हटा दिया गया। अब स्थिति यहां की पूरी तरीके से शांत है। रेल भवन के पास मैं कुछ ही दूरी पर मौजूद हूं वहां से, यहां से जो रफी मार्ग होते हुए तमाम लोगों को हटा दिया गया और स्थिति अब ये बता रही है कि धीरे धीरे करके इंडिया गेट की तरफ कर्तव्य जो भवन है उसके रास्ते से होते हुए उस रास्ते को पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है। जो लॉन इंडिया गेट के दोनों तरफ कर्तव्य पथ पर हैं उनको भी खाली कराया गया है। तो अब इंडिया गेट के उस पार सभी प्रोटेस्टर्स को भेजा जा रहा है, क्योंकि इस पूरे इलाके में इजाजत नहीं थी किसी भी तरीके से घुसने के लिए, और ये तमाम लोग जो इकट्ठा हो गए उनको अब पुलिस पूरी तरीके से यहाँ से हटा रही है।
5: लेकिन जितेंद्र एक बात बताइए, क्योंकि हमको सबको पता है कि जब भी पार्लियामेंट चलती है इस पूरे इलाके को अति संवेदनशील घोषित करते हुए वहां पर एक धारा 144 लागू कर दी जाती है, कई जगहों पर ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाता, लेकिन अभी के मौजूदा हालात में चलिए
6: आप बैठ जाए, कृपया आप बैठ जाए, आप प्ले कार्ड, आप हुडा जी आप लोग प्ले कार्ड मत दिखाइए, नियमों में भी प्ले कार्ड आप नहीं ला सकते, और ये पीठ से भी निर्णय है समय समय पे कि आप जावेद साहब प्ले कार्ड नहीं, मैं आपको समय दूंगा, आप कृपया जाएं, आपको समय दूंगा, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू मेंबर्स, प्लीज आई विल अलाउ यू, मैं समय दूंगा। सभा की कार्रवाई 2:30 तक के लिए स्थगित की जाती है।
5: और चलिए आपको दिखा रहे हैं हम कि कैसे अब लोकसभा की कार्यवाही 2:30 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 2:00 एक बार फिर से कार्यवाही शुरू हुई थी, लेकिन कुछ ही सेकंडों के अंदर एक बार फिर से कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। 2:30 तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया।
7: या किसी भी तरह का कोई भी प्रोटेस्ट इस जगह पर।
5: और चलिए अब आपको बताएं, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर इस समय संसद मार्ग थाने में मौजूद है, लगातार वहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, वहां पर जिस तरीके से जो प्रदर्शनकारी इकट्ठे हो रहे हैं इसको लेकर एक रिव्यू भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर इस समय संसद मार्ग थाने पर मौजूद है और CJP के प्रदर्शन के दौरान संसद मार्ग थाने पहुंचे हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर। और देखिए आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो है वो खुद संसद मार्ग थाने पहुंचे हैं, और खास तौर पर वहां पर जिस तरीके से प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो रहे थे सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी इसको लेकर भी वो लगातार वहां की व्यवस्था को जांचने परखने के लिए वहां पहुंचे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर अब खुद संसद मार्ग थाने पहुंचे हैं। देखिए हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कैसे जो प्रदर्शनकारी है भारी संख्या में संसद और संसद के आसपास के इलाकों पे पहुंच गए थे, जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद ओझा भी हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, इस समय क्या ताजा हालात है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर इस समय क्या कोई मीटिंग ले रहे हैं, क्या यहाँ पर जो या फिर जो डिटेन किए गए हैं लोग उनको लेकर वहां पर पहुंचे?
8: देखिए, जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है अनुराग कुमार, वो फिलहाल जो पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन है वहीं बैठे हुए हैं और तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। और जो नई दिल्ली इलाके में इस वक्त हालात है, खासतौर से पार्लियामेंट के आसपास जहां इस वक्त मैं खुद मौजूद हूं, वहां के हालात के बारे में पूरी जानकारी ले रहे हैं। और आपको बताऊं, इस वक्त जो सारे प्रोटेस्टर हैं वो पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन के पास ही मौजूद हैं, क्योंकि बाकी जंतर मंतर के आसपास का एरिया है वहां पर बैरिकेडिंग है, यहां से निकलने की कोशिश जो प्रोटेस्टर है उनकी तरफ से की जा रही है। हालांकि जो चंद्रशेखर रावण है, जो सांसद है, उन्होंने प्रोटेस्टर को समझाने की कोशिश की, बातचीत करने की कोशिश की, ये जो आंदोलन है ये आंदोलन उग्र नहीं होना चाहिए, जो आप जिस बात को लेकर प्रोटेस्ट है उसी पर होनी चाहिए, उसको लेकर बातचीत करने की कोशिश की, बातचीत नहीं सुनी। लेकिन अब अलग अलग तरह से बातचीत की जा रही है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार फिलहाल खुद जो पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन है उसमें मौजूद है, जो DCP है नई दिल्ली इलाके के, जो इस पूरे प्रोटेस्ट को डील कर रहे हैं, जो प्रोटेस्टर के लीडर्स हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे कमिश्नर पूरी जानकारी ले रहे हैं और नई दिल्ली इलाके में जिस तरह के हालात हैं उन हालात के बारे में जानकारी ली जा रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं और आगे की रणनीति कैसी होगी, किस तरह की होगी उसके बाद। देखिए, अभी तक दिल्ली पुलिस पूरी तरह से संयमित है, अगर बात की जाए सुबह से पूरे प्रोटेस्ट को लेकर, तो
5: बिल्कुल बिल्कुल अरविंद, आप लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। अरविंद आपका रुख दोबारा से करेंगे। इस समय अरविंद ओझा हमारे संवाददाता संसद मार्ग थाने पर मौजूद थे, बता रहे थे कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद वहां पर मौजूद है। हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र एक बार फिर से मैं आपसे, आप अगर दोबारा से तस्वीरें दिखा सके इस समय जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर क्या आलम है, और खास तौर पर जो सवाल पहले भी मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जब अलर्ट पहले से था, ये व्यवस्था पहले से बना रखी थी, तो फिर आखिर इतनी भारी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा कैसे हो गए?
4: देखिए सुमित, मैं इस वक्त विजय चौक पर मौजूद हूं और इस पूरे एरिया में इंटरनेट कई जगहों पर नहीं चल रहा है। यहां ग्राउंड जीरो की सिचुएशन यह है कि जब अब से थोड़ी देर पहले जब प्रोटेस्टर्स रेल भवन के पास मौजूद थे उस दौरान मैं वहां पर मौजूद था और मैंने तमाम सिचुएशन देखी कि किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेज को बैरिकेड करके लगाया गया था जिससे कि संसद भवन तक नहीं पहुंच सके। अब विजय चौक पर सिचुएशन काफी नॉर्मल इस वक्त है और जो प्रोटेस्टर्स मौजूद थे उनको जो है रेल भवन चौराहे से हटा करके रफी मार्ग होते हुए उनको कर्तव्य पथ से सीधे इंडिया गेट की तरफ ले जाया गया और कुछ प्रोटेस्टर्स को डिटेन भी किया गया था बस के जरिए, और उनको ये बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना, इसके साथ साथ जो तुगलक रोड थाना है वहां पर बसों के जरिए ले जाया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है, इसके साथ साथ उनसे जानकारी ली जा रही है कि और कितने लोग उनके साथ हो सकते, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग जगहों से लोग आ करके यहां पर अचानक से इकट्ठे हो गए, हालांकि पुलिस के पास जानकारी थी कि भारी संख्या में लोग जंतर मंतर पर पहुंच सकते हैं और वहां से फिर मार्च कर सकते हैं। पुलिस ने जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक मार्च का इजाजत तो नहीं दिया था क्योंकि पार्लियामेंट सत्र चल रहा था और बीएनएस की धारा 163 तमाम इलाके में लगी हुई थी। पुलिस ने पहले ही कह दिया था कि किसी भी व्यक्ति को इकट्ठा होने नहीं दिया जाएगा और ये प्रोटेस्ट मार्च को निकालने की इजाजत नहीं है। इस वजह से पुलिस ने बड़े बंदोबस्त किए थे, करीब 5,000 के आसपास जवान जो दिल्ली पुलिस के, इसके साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं उनको तैनात किया गया था। पूरी जो लुटियन दिल्ली का ये पूरा इलाका है इसको पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया था जिससे कि कोई भी प्रोटेस्टर्स अंदर ना आ पाए। लेकिन सुबह की अगर सिचुएशन हम देखें तो कई मेट्रो स्टेशंस जो थे वो खुले हुए थे जिसके बाद थोड़ी थोड़ी संख्या में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे और उन लोगों ने आ करके यहाँ जहाँ तक बैरिकेडिंग थी रेल भवन के पास,
5: बिल्कुल वहां पर ऐसा लगता है कि जैसा आप भी बता रहे हैं कि सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई थी, अलर्ट भी था, सारे पुख्ता इंतजाम थे, लेकिन फिर भी प्रदर्शनकारी लगातार संसद भवन के आसपास के इलाकों में पहुंच गए। आप बने रहिए जितेंद्र हमारे साथ, हमारी दूसरी सहयोगी मौसमी सिंह भी हमारे साथ जुड़ हुई है, उनका भी एक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं जो उन्होंने कर्तव्य पथ से भेजी है।
9: हम कर्तव्य पथ पे खड़े हुए हैं, लगातार 2 घंटे से भीड़ को हटाने की कोशिश प्रदर्शनकारी है। यहाँ पे आप देखिए ये कर्तव्य पथ का चौराहा है जहाँ आपको सिर्फ पुलिस के साइरन सुनाई देंगे और ये तस्वीर है जहाँ प्रोटेस्टर्स

0: ये तस्वीर कर्तव्य पथ से हम दे रहे हैं। पीछे आप देखिए राष्ट्रपति भवन है और राष्ट्रपति भवन के बिल्कुल ठीक थोड़ी ही दूरी पर ये पूरा घटित हो रहा है, जहां प्रदर्शनकारी इतनी तादाद में कि पूरा कर्तव्य पथ कुछ इस तरह नजर आएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से रैपिड एक्शन फोर्स भी डिप्लॉयड है यहाँ पे और पुलिस इन बसों में भर के जा रही है। आइए इन प्रदर्शनकारियों से पूछ लेते हैं।
1: वो कामयाबी है पुलिस वालों की जो मदद कर रहे हैं। लड़कियों को मारा है इन्होंने, लड़कियों को मारा है,
0: स्टूडेंट्स को मारा है, आने वाले भविष्य को मारा है। यही है मोदी की जीत, मोदी आतंकवादी है,
2: पकड़ने कहां लेके जा रहे हैं।
1: मोदी है तुम्हें पुलिस आतंकवादी है, गुंडागर्दी है।
0: यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे प्रोटेस्टर्स जो है कह रहे हैं कि उनको जो है मारा जा रहा है, जिस तरीके से यहाँ से ले जाया गया है, ये गुंडागर्दी है। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।
3: और देखिए मौसमी सिंह की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, मौसमी की रिपोर्ट तो हमने दिखाई कर्तव्य पथ पर, विजय चौक पर आप खुद मौजूद हैं इस समय, बाकी और कौन कौन से इलाके थे खासतौर पर संसद के आसपास के जहां पर प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे, और अभी वहां के मौजूदा हालात कैसे हैं?
4: देखिए मौजूदा हालात जो सुमित हैं, यहाँ की सिचुएशन अभी नॉर्मल है। जो संसद के आसपास का पूरा इलाका है उसको पूरी तरीके से जो प्रदर्शनकारी थे उनसे खाली करा लिया गया है। जो रास्ता था रायसीना रोड, इसके साथ साथ जो शास्त्री भवन के पास का जो पूरा राजेंद्र प्रसाद रोड है, उस रोड पर भी काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे। इसके साथ ही जो यहाँ से रफी मार्ग का रास्ता रेल भवन से जाता है, उस रास्ते में भारी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो जब पहुँचे, तो उसके बाद पुलिस ने पूरी तरीके से इस पूरे इलाके को अब खाली करा लिया है। मैं इस वक्त विजय चौक पर मौजूद हूं, उस दौरान भी यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था, लेकिन अभी की सिचुएशन यह है विजय चौक में कि जो पुलिस बल यहां पर मौजूद थे, एक तरीके की आशंका थी कि कहीं इधर पुलिस बल न पहुंच जाए, उनको पूरी तरीके से हटा लिया गया। एक बार तस्वीरों में आपको दिखाते हैं।
3: बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिए, आपका दोबारा से रुख करेंगे, लेकिन आप जैसा बता रहे, देखिए प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने कई जगहों पर लाठीचार्ज भी किए, आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल किया। ऐसे में एक रिपोर्ट खासतौर पर रायसीना मार्ग पर भी, जब प्रदर्शनकारी वहां पहुंच रहे थे तब पुलिस बल ने वहां पर आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया है, और इसी को लेकर वहां पर प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस और लाठी चार्ज का प्रयोग भी करना पड़ा कई इलाकों में। जैसा जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि देखिए भीड़ एकदम से बहुत तेजी से बढ़ गई, इसलिए सुरक्षा बलों को वहां पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए इस तरीके के आंसू गैस और लाठी चार्ज या फिर उसका इस्तेमाल भी करना पड़ा। हमारे साथ मौसमी सिंह भी हमारे साथ जुड़े। मौसमी, जैसा जितेंद्र बता रहे थे कि देखिए ज्यादातर इलाकों से अब प्रदर्शनकारी हट चुके हैं, वहां पर स्थिति जो है सामान्य, आप जहां पर मौजूद है वहां पर क्या परिस्थिति इस समय है?
0: जी देखिए, अभी हम लोग खड़े हुए हैं फोर्स भवन पर, और यहाँ पे पीछे आप देखिए कि पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है। रेल भवन से लगातार हम लोग आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे थे, और एफओस भवन तक भीड़ को तितर बितर किया गया है। आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पे अभी देखिए कुछ जो लोग हैं, युवा हैं, उनको समझाने की कोशिश हो रही है, लगातार यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही है। और इस तरीके से पूरा जो स्ट्रेच है कर्तव्य पथ से भवन तक और रेल भवन तक, वहाँ पे लगातार इस तरीके से जो भी लोग खड़े हुए हैं उनको हटाने की कोशिश है लगातार पुलिस की तरफ से हो रही है। प्रदर्शनकारी मेट्रो से भर भर के आ रहे हैं, तो उनकी तरफ मेट्रो स्टेशन से लगातार जितनी भी को दूर किया जा रहा है उतना ही मेट्रो से तमाम प्रदर्शनकारी तमाम लोग निकल रहे हैं। इसलिए यहाँ अभी एयरपोर्ट भवन के इर्द गिर्द जो इलाका है वहाँ पे भीड़ को तितर बितर किया जा रहा है। वो देखिए पुलिस भाग रही है, यहाँ पे फिर से एक बैरिकेड लगाया गया है, एक नया प्रोटेस्ट यहाँ पे नजर आ रहा है, और प्रदर्शनकारी अभी
5: भारी बारिश।
3: पर अगर दिखा सके, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि वहां पर जहां बता रहे हैं कि कर्तव्य पथ पर एक बार फिर से बैरिकेडिंग के बेहद करीब प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं, और ये तस्वीरें भी मौसमी सिंह हमें सीधे तो वहां से दिखा रहे हैं। मौसमी, इस समय और क्या क्या वहां पर और एडिशनल पुलिस फोर्स का की तैनाती भी की गई है या फिर अभी बैरिकेड करके उनको उसी तरफ रोक दिया गया है? मौसमी, देखिए जहां आप खड़ी हैं, क्योंकि वायुसेना भवन भी है उसके बिल्कुल पास, आप कह सकते हैं कि ना सिर्फ रेल भवन उसके साथ में और कई ऐसी महत्वपूर्ण बिल्डिंगें या फिर इमारतें भी हैं जहां पर लगातार काम चलता है, सरकारी काम। अभी वहां के हालात, क्योंकि आपने वायुसेना भवन के आसपास की तस्वीरें तो दिखा दी, लेकिन क्या आसपास की ऐसी इमारतों के आसपास भी? और देखिए, हम अपने दर्शकों को बता दें कि वायुसेना भवन के ठीक बाहर प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए। जैसा मौसमी सिंह हमारी संवाददाता बता रही थी कि यहां पर बैरिकेडिंग नहीं थी, यहां से लगातार जो ऑफिस जाने आने जाने के लिए रास्ता खोला गया था, लेकिन इसी बीच प्रदर्शनकारी वहां पहुंच गए और वहां पर फिर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उनको रोक दिया। ये तस्वीरें लगातार हमारी संवाददाता मौसमी सिंह हम तक पहुंचा रही थी, बता रही थी कि इस समय वहां के ताजा हालात कैसे हैं। प्रदर्शनकारी जब वहां पर उग्र हुए तो पुलिस को वहां पर उनको बैरिकेडिंग कर रोकना पड़ा। देखिए, पार्लियामेंट के आसपास यानी संसद भवन के आसपास के अलग अलग इलाकों में रफी मार्ग, संसद मार्ग, विजय चौक, यहां तक कि वायुसेना भवन, इन तमाम इमारतों के आसपास के जो इलाके हैं यहां पर प्रदर्शनकारी मौजूद थे, लेकिन पुलिस ने अभी बैरिकेडिंग कर संसद मार्ग के आसपास या संसद के आसपास के इलाकों को रोक दिया गया है। मौसमी का एक बार फिर से रुख करते हैं। मौसमी, क्या सिर्फ वायुसेना भवन के आसपास ही ऐसे प्रदर्शनकारी इकट्ठा है या फिर दूसरी इमारतें, क्योंकि रेल भवन भी एक नया एक्सेस है या फिर आप कह सकते हैं अलग अलग इलाकों के जो एक्सेस हैं उन पर भी इसी तरीके की बैरिकेडिंग की गई है? बिल्कुल मौसमी तस्वीरें आप दिखाते रहिए लगातार, आपका दोबारा से रुक करेंगे। लेकिन जितेंद्र बहादुर सिंह जो हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी रुक कर रहे थे। जितेंद्र, लगातार मौसमी ने बताया कि एकाएक इस इलाके में या फिर वायुसेना भवन के आसपास तो भीड़ इकट्ठा हो गई, बैरिकेडिंग की गई, क्या वहां पर भी अभी जहां आप खड़े हैं वहां पर भी भीड़ अभी वहां पर मौजूद है, क्या प्रदर्शनकारी अभी वहां मौजूद है?
4: सुमित, मैं इस वक्त विजय चौक पर मौजूद हूं और प्रदर्शनकारी जो यहां से करीब 200 मीटर की दूरी पर रेल भवन के पास थे वो अब यहां से पूरी तरीके से तितर बितर हो चुके हैं। पुलिस ने उनको इस एरिया से खाली करने के लिए कहा, का अनाउंसमेंट पुलिस के द्वारा किया गया। उसके बाद पुलिस ने जब हल्का बल प्रयोग किया तो आगे जो रफी मार्ग होते हुए कर्तव्य पथ को क्रॉस करते हुए रेल भवन को छोड़ दिया पूरी तरीके से और ये एरिया लगभग खाली हो चुका है। यहां पर अब कोई भी प्रोटेस्टर्स जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। सुबह से जिस तरीके से यहाँ पर मार्च हुआ, अचानक से भीड़ यहाँ पर पहुंची, सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे थे, उसके बाद अब लगभग खाली हो गया है। विजय चौक की सिचुएशन भी इस वक्त नॉर्मल है, ज्यादा यहाँ जो है किसी भी तरीके से प्रोटेस्टर्स और कोई भी जो है यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा आसपास। अब आगे जो वायुसेना भवन है उस तरफ कुछ लोग मौजूद है जिनको भी हटाने का प्रयास इस वक्त जो है सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा किया जा रहा
3: है। बिल्कुल, आप बने रहिए जितेंद्र हमारे साथ। लेकिन इस बीच एक बड़ी आ रही है कि प्रदर्शनकारी अब क्नॉट प्लेस के आसपास के इलाकों में भी भारी संख्या में वहां पहुंचने लगे हैं। जैसा जितेंद्र बता रहे थे कि देखिए वहां से प्रदर्शनकारियों को हटाया जा रहा है, पुलिस और जो सुरक्षा बल है वहां से उनको आगे पीछे कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच ये बड़ा अपडेट मिल रहा है कि अब क्नॉट प्लेस के आसपास के इलाकों में राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई है, प्रदर्शनकारी वहां पहुंचे हैं। और देखिए हम आपको बता रहे हैं कि क्नॉट प्लेस के इनर सर्कल में भारी भीड़ का जमावड़ा हो गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये क्नॉट प्लेस की तस्वीर है। दरअसल जब संसद मार्ग हो पार्लियामेंट के आसपास के इलाकों से जब इस भीड़ को पीछे धकेला जा रहा था, पीछे किया जा रहा था, तो अब ये भीड़ जो है प्रदर्शनकारी जो है क्नॉट प्लेस के इनर सर्कल के आसपास के इलाकों में वहां पहुंचने लग गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए आप देखिए मेट्रो स्टेशन के गेट पर, मेट्रो स्टेशन के आसपास ये पालिका भवन और पालिका भवन के आसपास का वो इनर सर्कल है जहां पर इस समय भीड़ का क्या आलम है ये तस्वीरें बयां कर रही है। इस समय सारी भीड़ या प्रदर्शनकारी इस समय क्नॉट प्लेस के इनर सर्कल के आसपास पहुंच चुके हैं। भारी संख्या में यहां पर प्रदर्शनकारी जुटने शुरू हो गए हैं।
5: संसद भवन की मार्च करते सीजेपी के प्रदर्शनकारी समय कनॉट प्लेस के पास पहुंच गए हैं और वहां पर उन्होंने देखिए कनॉट प्लेस का जो आउटर सर्कल अब यहां पर बसों को रोक दिया है, यानी उन्होंने अब कनॉट प्लेस इलाके को भी पूरी तरह से जाम कर दिया है। ये आउटर सर्कल आप देख रहे हैं जहां पर इसको भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये यहां पर इकट्ठा हुए हैं, इसी से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर जंतर मंतर है और आगे जनपथ मार्ग पर पूरा उनका जमावड़ा है। और अब ये कनॉट प्लेस के लिए देखिए बैरिकेड वहां पर है, बैरिकेड भी है। तो अब जो प्रदर्शनकारी है ये कनॉट प्लेस के पास इकट्ठा हो गए हैं। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने एक बस को रोक दिया, कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल पर भी ट्रैफिक रोक दिया गया है। तो जो जमावड़ा है वो सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं है, वो कनॉट प्लेस के पास पहुंच गए हैं और बड़ी संख्या में है। यहाँ पर देखिए वो बस रुकी है और इसी के साथ यहाँ जो बैरिकेड था, बैरिकेड लगाया था पुलिस ने, उसको भी जो है हटा दिया है। और अब इसी के बाद जो है लगभग इस इलाके में पूरी तरह से ट्रैफिक दिक्कत पड़ गया। नारेबाजी करते हुए जो छात्र हैं सीजेपी प्रोटेस्टर्स सब आगे बढ़ रहे हैं और अब रायसेना रेल शास्त्री भवन जंतर मंतर होते हुए कनॉट प्लेस भी प्रदर्शनकारी पहुंच रहे हैं।
3: और हमारे साथ हमारी सहयोगी मौसमी सिंह जुड़ी है। मौसमी देखिए लगातार ये तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं अपने, हमारे सहयोगी आशुतोष ने तस्वीरें दिखाई कि क्नॉट प्लेस के आसपास के इलाकों में पहुंचने लगे, लेकिन उन नेताओं का क्या, विपक्ष के नेता जिनको डिटेन किया गया था, जिनको सुबह जब वो जंतर मंतर पहुंचे थे, क्या वो पार्लियामेंट वापस आ गए या अभी उनको डिटेन रखा गया?
6: तरीके से हंगामा हुआ, स्थगित हुई, तो हालांकि हमने यहाँ पे इस इलाके में नहीं देखा कि कोई नेता यहाँ पे आया हो। शायद उनको डिटेन किया गया है और 2-3 घंटे में उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ से भी प्रदर्शनकारियों को बहुत सारी मात्रा में डिटेन किया गया है, बसों में भर के ले जाया गया है। पुलिस अपनी पूरी तैयारी में थी क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे पूरी धारा 163 लगी हुई है, पूरे इलाके में यहाँ पे प्रोटेस्ट करना अलाउड नहीं था। जंतर मंतर में पुलिस ने ये हिदायत दी थी, एडवाइजरी दी थी। अभी लोकेंद्र से कहेंगे, लोकेंद्र आप तस्वीर दिखाइए जो पीछे घट रही है, किस तरीके से यहाँ पे तमाम प्रदर्शनकारी खड़े हुए हैं। बारिश हो रही है लेकिन वो नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी तरीके की तस्वीर हमने पहले रेल भवन में देखी, फिर कर्तव्य पथ पर देखी। कर्तव्य पथ पे आप मान लीजिए कि विजय चौक से लेके बाकी इंडिया गेट की तरफ काफी भारी तादाद में लोग खड़े हुए थे। और अब यहाँ पे आप देखिए 2 बज गया है, 2 बजे के बाद भी लगातार सड़कों पर इसी तरह से चक्का जाम हो रहा है और संसद की तरफ बढ़ने की कोशिश हो रही है प्रदर्शनकारियों की तरफ से।
3: बिल्कुल, और देखिए मौसमी हमारे साथ जितेंद्र बहादुर सिंह भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, मौसमी जैसे बता रही थी कि उन्होंने तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है, आप भी लगातार आप भी बता रहे थे आप दोनों का रुख करते रहेंगे, लगातार ये रिपोर्ट दिखाते रहेंगे, लेकिन इस वक्त एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
9: At DSW, we ask the important questions, like, what shoes are you going to wear? Whether you're prepping for wedding season, festival season, or just planning the ultimate vacay, the right shoes can make or break an RSVP. So own the moment. You've got big plans, and we've got just the shoes. At the perfect price, of course. Get ready to get ready with Designer Shoe Warehouse. Head to your DSW store or DSW.com today, and let us surprise you.
10: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
11: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning. One heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
12: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
7: Presented by Patanjali Gaay Ka Ghee. Lagaye swaad aur sehat.
11: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. 2 taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
12: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
13: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news...
14: After multiple assassination attempts, they can't even get...
15: They're reliable.
16: Always when I need them.
13: To live sports action.
17: One-hand jam by LeBron on the break.
18: That's another three, Steph Curry.
13: And your favorite music.
19: Well, the dawn begins to crack.
13: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app. Or ask your device to play TuneIn.
20: ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है।
21: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से?
22: तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे।
23: वाह वाह वाह वाह।
22: सेबी और एनएससी का कहना है, सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरिफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
24: समझ कर, इन्वेस्ट कर।
25: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
2: AU सोच बदलो और बैंक भी।
3: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई, हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान है। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
4: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
5: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
3: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
6: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: न्यूज़रूम लाइव में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आपको सीधे आपको बड़ी खबर बताते हैं कि वायुसेना भवन के पास भी प्रदर्शनकारी वहां पर अब भी इकट्ठा है, वहां पर बैरिकेडिंग कर उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहां पर प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ गई। हमारी संवाददाता मौसमी सिंह वहां पर मौजूद है, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखाए, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब वायुसेना भवन के पास भी प्रदर्शनकारी वहां पर इकट्ठा है, जिसको लेकर बैरिकेडिंग भी की गई है और लोगों को वहां से आगे जाने से संसद की तरफ जाने से रोका जा रहा है।
1: मेट्रो स्टेशन से लगातार जितनी भीड़ को दूर किया जा रहा है, उतना ही मेट्रो से तमाम प्रदर्शनकारी तमाम लोग निकल रहे हैं। इसलिए यहाँ अभी एयरफोर्स भवन के इर्द गिर्द जो इलाका है वहाँ पे भीड़ को बितर बितर किया जा रहा है। वो देखिए, पुलिस भाग रही है, यहाँ पे फिर से एक बैरिकेड लगाया गया है। एक नया प्रोटेस्ट यहाँ पे नजर आ रहा है और प्रदर्शनकारी अभी इस तरह
2: बनकर बनकर
0: चले। मौसमी सिंह की रिपोर्ट हमने अब तक आपको दिखाई, लेकिन अब सीधे चलते हैं जितेंद्र बहादुर सिंह की तरफ। जितेंद्र, इस समय क्या हालात है और खासतौर पे एक और बात बताइए, क्योंकि जितेंद्र अभी इस समय कई जगहों को मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया था, रूट्स को बंद कर दिया गया था, तो आखिरकार वहां पर लोगों की आवाजाही या लोगों को कैसे किस रास्ते भेजा जा रहा है वापस?
3: देखिए सुमित, जो यहाँ पर रेल भवन के पास पूरी तरीके से भीड़ थी उसको प्रोटेस्टर्स से खाली करा लिया गया है। ये पूरा इलाका जो है उस समय अब से करीब 30-35 मिनट पहले भरा हुआ था, उसको पूरी तरीके से खाली करा करके सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। जो मेट्रो स्टेशन है यहाँ सेंट्रल सेक्रेटरिएट, उसको भी अभी बंद रखा गया।

0: मेट्रो स्टेशन के गेट भी है। इसी वजह से इस पूरे इलाके में प्रदर्शनकारी वहां पर ना एकजुट हो पाए, इस वजह से पूरे इलाके को खाली करा दिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं रेल भवन के ठीक बाहर की तस्वीरें, जहां पर जिस पैसेज से आगे की तरफ यानी वायुसेना भवन की तरफ ये रास्ता जाता है और दूसरी तरफ पार्लियामेंट नई संसद है, जहां से इस पूरे इलाके को, इस पूरी सड़क को खाली करा लिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े। जितेंद्र, उन प्रदर्शनकारियों का क्या, जिनको डिटेन किया गया था, कौन कौन से थानों में, कौन कौन से जगहों पर उनको ले जाया गया?
1: देखिए सुमित, जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर कुछ उग्रता दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उन पर हल्का बल जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा प्रयोग किया गया। उसके बाद बसों में भर करके उनको यहाँ से हिरासत में लिया गया और उसके बाद उनको अलग अलग थानों में, कुछ लोगों को तुगलक थाना है वहाँ पर भेजा गया, कुछ लोगों को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में भेजा गया, जहाँ पर उनसे कुछ जानकारी हासिल की जा रही थी कि कहाँ से और किस राज्य से वो पहुँचे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। क्या वो जंतर मंतर पर मौजूद थे या फिर अलग अलग जगहों से या दूसरे रास्तों से यहाँ पर पहुंचे। सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो यहाँ पर 25 से 30 मिनट पहले जो सिचुएशन थी रेल भवन के पास, उसको पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है। जो लेटेस्ट तस्वीरें हमने भेजी है उसमें ये दिखाई पड़ रहा है कि अब कोई भी प्रोटेस्टर्स यहाँ पर मौजूद नहीं है, बैरिकेडिंग और रास्ते को पूरी तरीके से खोल दिया गया। आगे से जो यहाँ का रास्ता कर्तव्य पथ होते हुए जो इंडिया गेट और इसके साथ साथ जो वायुसेना भवन की तरफ जाता है, वहां से भी लगती दिक्कत ना हो, क्योंकि संसद का सत्र इस वक्त चल रहा है। कई सांसद जो हैं इसके साथ साथ बहुत सारे जो लीडर्स हैं, मंत्री हैं, वो उनका मूवमेंट हो रहा है, तो इस पूरे रास्ते को पूरी तरीके से खोल दिया गया। अब यहाँ की सिचुएशन इस वक्त नॉर्मल है, लेकिन आगे जो है इंडिया गेट के आसपास या उसके आगे के जो रास्ते हैं, चाहे कनॉट प्लेस का हो या फिर जनपथ रोड, उन तमाम जगहों पर अभी लोगों के होने की जानकारी मिल रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा, उनको भी पूरी तरीके से अब हटाया जा रहा है।
0: बिल्कुल जितेंद्र, एक और बात, क्योंकि लगातार हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी मौसमी सिंह भी हमारे साथ जुड़े। मौसमी, जैसा जितेंद्र बता रहे थे कि देखिए रेल भवन के आसपास के इलाके को, उस पूरे सड़क को खाली करा लिया गया, क्या वायुसेना भवन पे जो भीड़ मौजूद थी वो भी वहां से हटा ली गई है या अभी भीड़ प्रदर्शनकारी वहां पर मौजूद है?
2: जी सुमित, देखिए हमने आपको दिखाया था कि कैसे 15 मिनट पहले यहाँ पे तमाम प्रदर्शनकारी आ गए थे। वायुसेना भवन की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे तमाम प्रदर्शनकारी इस सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन से भी निकल के आ रहे थे। अभी ये पूरा जो चौराहा है इसको फिर से एक तरह से चालू किया गया है। पीछे हमारे देखिए जो इलाका हम आपको दिखा रहे थे कि तमाम प्रदर्शनकारी खड़े हुए हैं, वो उनको जो है डिटेन कर लिया गया है, बसों में भर के उनको भेज दिया गया है और यहाँ पे बैरिकेड अभी भी हालांकि लगा हुआ है, डिप्लॉयड है। एक तरीके से रेल भवन से लेके एयरफोर्स भवन तक, राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक एक वक्त था जब तमाम प्रदर्शनकारी इधर उधर भाग रहे थे। हमने देखा कि पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस, लगभग 1.5-2 घंटे तक ये मशक्कत चली है और अब थोड़ा हालात जो है पुलिस ने अपने काबू में किए हैं, प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाया गया है, जबकि संसद लगातार चल रही है, 3 बजे फिर चलनी है और यहाँ पे जो तैनाती है खाकी की वो पूरे इलाके में बढ़ा दी गई है। लेकिन अगर यातायात की बात करें तो बिल्कुल यातायात यहाँ पे ट्रैफिक जैसे ही खोला गया है तो जाम की स्थिति बनी हुई है और एक तरीके से लगातार 11 बजे से लेकर 2 बजे तक ये पूरा प्रदर्शन चला है।
0: बिल्कुल, और मौसमी खासतौर पे क्योंकि पहले आप जिस तरीके से दिखा रही थी, देखिए यातायात अब खोल दिया गया है, क्या मेट्रो गेट्स को भी खोल दिया गया क्योंकि, या फिर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के जितने मेट्रो स्टेशन थे वो बंद रहेंगे, उनका एग्जिट क्लोज रहेगा?
2: मुझे लगता है कि आप ये अगर आप देखें कि हार्डली कोई यहाँ पे जो पैसेंजर्स हैं या सफ़र करने वाले मेट्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, और जाहिर तौर पे जिस तरीके से बिल्कुल फोकल पॉइंट है, चाहे वो केंद्रीय सचिवालय हो या सेवा तीर्थ हो, काफ़ी पास में आता है उद्योग भवन का ये मेट्रो स्टेशन, तो एक तरीके से यहाँ से एक जरिया इस्तेमाल किया गया क्योंकि यातायात बंद किया गया था, तो मेट्रो के जरिए तमाम प्रदर्शनकारी आए। हालांकि अभी पुलिस ने आवाजाही मेट्रो की यहाँ से बंद कर रखी है, ना कोई आ सकता है और ना कोई ज्यादा जा सकता है। देखिए लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे बाहर की तरफ, तो एक तरीके से हालात को सामान्य करने की कोशिश में यहाँ पे पुलिस फोर्स लगी हुई है। अब देखना ये है कि किस तरीके से, जिस तरीके से कैनॉट प्लेस और बाकी इलाकों में प्रदर्शनकारी गए हैं तो वहाँ पे किस

0: तरीके से स्थिति को काबू में किया जाता है। पर जो पॉइंट मैं कह रही हूँ सुमित, एक पॉइंट की जिस तरीके से 11 बजे से लेकर दो तीन घंटे तक ये हंगामा चला है, ये तस्वीरें सड़क पर चली है, प्रदर्शनकारी काफी मात्रा में यहाँ पे मौजूद थे।
1: और मौसमी सवाल इसलिए भी था क्योंकि देखिए थोड़ी देर में सरकारी ऑफिसेज वहाँ पर बहुत ज्यादा है, कर्मचारी जो है वहाँ के ज्यादातर मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं, तो जब वो वहां से निकलेंगे तो आखिरकार एंट्री और एग्जिट कैसे होगा, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। हालांकि मौसमी जैसे बता रही थी कि देखिए व्यवस्थाएं वहां ठीक कर ली गई है, लेकिन सबसे पहले एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं कि इकनौत प्लेस पर प्रदर्शनकारी वहां पर जुटने लग गए हैं, भारी संख्या में प्रदर्शनकारियों का जुटना वहां शुरू हो गया है। इकनौत प्लेस से तस्वीरें भी आ रही हैं जहां पे दिखा रहे हैं कि प्रदर्शनकारी वहां पर एकजुट हो रहे हैं, और जितने प्रदर्शनकारियों को संसद मार्ग संसद के आसपास से निकाला गया था वापस भेजा गया था वो अब इकनौत प्लेस के इनर सर्कल में इकट्ठा होने शुरू हो गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पालिका भवन हो, पालिका भवन के आसपास के इलाके हो, वहां पर ज्यादातर ये भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, इस समय इकनौत प्लेस के सर्कल का क्या हाल है, खासतौर पर क्या प्रदर्शनकारी अब भी वहां पर जुट रहे हैं, क्या वहां से भी उनको हटाया जा रहा है?
2: सुमित, उस तरह की सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं थी क्योंकि कोशिश की गई थी कि जंतर मंतर पर ज्यादातर लोग पहुंचेंगे, लेकिन इतनी संख्या होगी संभवतः इसका आकलन नहीं किया गया था। तो एक बार मैं कोशिश करता हूं कि कुछ झलक मैं आपको दिखाऊं। तेज बरसात हो रही है लेकिन उसके बावजूद प्रदर्शनकारी अभी आउटर सर्कल पर जो है रुके हुए हैं, और उन्होंने क्या किया कि आउटर सर्कल का पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया है। इसी के साथ साथ राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का जो इलाका चूंकि बंद है तो उसके बाहर भी कई भारी संख्या में वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं, और अभी भी आपको जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं वो इसलिए क्योंकि वो इन्हीं इलाकों पर जमा है। तो जो इसके पास शास्त्री भवन से लेकर के रायसीना हिल, उसी के साथ साथ जनपथ रोड, ये तमाम लोग अलग अलग पॉकेट, मतलब आप ये समझिए कि इस प्रदर्शन में कोई एक केंद्र नहीं है। जंतर मंतर केंद्र था, मार्च पार्लियामेंट करना था, कुछ नजदीक पहुंच गए हैं, तो ज्यादातर पॉकेट ज्यादातर हिस्से में प्रदर्शनकारी अब अलग अलग ग्रुप बना करके खड़े हो गए हैं। अब इन्हें कैसे कहां पर एक जगह कैसे ले जाया जाएगा, कम्युनिकेशन कैसे होगा, इंटरनेट चल नहीं रहा है, कॉल से वो एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, और एक और इंपॉर्टेंट बात ये भी हो सकता है आशुतोष, क्योंकि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट हो, कई मेट्रो स्टेशन के गेट बंद किए गए थे, और हो सकता है कि सभी के सभी ये प्रदर्शनकारी अब राजीव चौक से मेट्रो लेने के लिए वहां पहुंचे। क्या वहां पर भी मेट्रो के गेट बंद किए गए हैं, और वहां के ताजा हालात क्या है, ये तस्वीरें अगर एक बार फिर से आप हमें दिखा सके तो।
2: एहतियात के तौर पर दरवाजे इसीलिए बंद रखे हैं कि बड़ी संख्या में ये लोग बाहर ना आने पाए, खासकर यहाँ से इलाके, क्योंकि 1 से 2 किलोमीटर के भीतर आप जो है लुटियंस में पार्लियामेंट पहुंच सकते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, चूंकि जिस तरफ का इलाका यहाँ बंद किया गया है, इससे जुड़ते हुए आसपास उद्योग भवन, केंद्रीय सचिवालय, ये जो इलाके हैं उनको बंद किया गया है, लेकिन अगर कनॉट प्लेस में आपको जो झलक दिखाई पड़ेगी वो प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा है, और अलग अलग रास्तों से, जैसे कि आप ये नहीं कि अगर एक रास्ता बंद है वो जहां उतर पा रहे हैं वहां से वो पैदल ही आगे बढ़ रहे हैं। ये उम्मीद एक बार जरूर लगी थी कि जैसे जैसे दोपहर होगा, थोड़ा तनाव जब बढ़ा था तो संभवतः संख्या कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। और आप जो जमावड़ा, मतलब आप समझिए कि 11 बजे तक जो हम जंतर मंतर देख रहे थे, 11:30 होते होते वो पूरे इस इलाके में फैले, उसके बाद शास्त्री भवन, ये देखिए आपको जो आवाजें सुनाई पड़ रही हैं,
1: बिल्कुल,
2: हम जहां पर है मेरे ठीक नीचे इधर सर वो जमावड़ा है, तो वो अब अलग अलग गुट में अलग अलग जगहों पर इकट्ठा हो रहे हैं।
1: और अभी क्या वहां पर क्या ट्रैफिक व्यवस्था है, क्या गाड़ियां आ जा रही हैं या फिर गाड़ियों की भी एंट्री भी रोकी गई है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब भी ऐसी भीड़ बढ़ती है तो इनर सर्कल के ऊपर ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, अभी वो किस तरीके की व्यवस्था वहां पर है आशुतोष?
2: नहीं, बंद है, पूरी तरह बंद है सुमित। ये तस्वीर में इतना कम से कम मैं जरूर एक झलक दिखा सकता हूँ कैमरे से कि वो बिल्कुल आउटर सर्कल है, यानी अब कोई गाड़ी अंदर नहीं आ सकती, बाहर मूवमेंट नहीं हो सकती। नई दिल्ली इस समय जाम है, बंद है, बहुत सारे लोगों को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, खासकर जो कर्मचारी मेट्रो से आते जाते हैं, अगर मेट्रो के दरवाजे नहीं खुले तो उनके लिए दिक्कत होगी। और इसी के साथ साथ गाड़ियों का प्रवेश, आप समझिए कि नई दिल्ली में अगर कोई ऐसे भी आ रहा है तो ना आए, बारिश के बावजूद भी वो डटे हुए हैं, तो वो आउटर सर्कल का रास्ता बंद है। और जितने रास्ते नई दिल्ली की ओर, संसद मार्ग या इन इलाकों की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उन सारे रास्तों पर वो प्रदर्शनकारी भी रास्ता खोज रहे हैं ना, जहां पे भी एक्सेस मिल रहा है वो वहीं से आना शुरू कर रहे हैं। अगर बस कहीं तक आ रही है वहां से आ रहे हैं, मेट्रो जहां तक आ रही है वहां से आ रहे हैं, तो ऐसे में आज की शाम जो घर जाने उनके लिए मुश्किल होगी, लेकिन जहां तक भी रास्ता खुला है प्रदर्शनकारी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो नई दिल्ली में जमा हो सके। सुमित,
1: बिल्कुल आशुतोष, शुक्रिया, लगातार आप वहां पर बने हुए हैं, एक बार फिर आपसे कोशिश करें अगर आप कुछ और तस्वीरें दिखा सके, क्योंकि आपने कहा कि भीड़ आपके आसपास के इलाकों में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है, अगर आप एक बार फिर से हमें दिखा सके तो।
2: बिल्कुल ठीक मेरे पीछे, ये कनॉट प्लेस का इलाका, और हम कनॉट प्लेस इसलिए कह रहे हैं कि आप इसे एपी सेंटर समझिए, यहीं से आना सुबह ऐसा लगा कि वो कितने रास्तों से कितने दरवाजों से आ रहे हैं, वो यहीं से निकल। आप देखिए कि एक तरफ आपको सिर्फ जाता हुआ इकट्ठा हुआ हुजूम दिखाई देगा, वहां से आपको निकलता नहीं दिखाई देगा। उनके हाथों में तिरंगे हैं, बैनर पोस्टर है, नारेबाजी कर रहे हैं, और अब से एक घंटे पहले उन्होंने सबसे पहले वहां पे बसें रोकी, गाड़ियां रोकी, और अब यहां का ट्रैफिक पूरी तरह रोक दिया गया है। अब एकमात्र रास्ता बचता है कि अगर मेट्रो खुले तो उससे जाएं, तो आप समझिए कि यह स्थिति थोड़ी विकट होने वाली, खासकर यातायात को लेकर के। लेकिन वो जहां से आए अब एक दूसरे से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, फोन के जरिए संपर्क कर रहे हैं कि कहीं से जो भी जहां से पहुंचना चाहता है वो यहां पहुंचने की कोशिश कर रहा है। एक पॉकेट यहां है, जो रास्ता आप तस्वीरों में देख रहे हैं दरअसल यही रास्ता आगे की ओर जो है जुड़ता है, रायसीना हिल की ओर भी ले जाता है, तो उस जो ली मेरिडियन का जो राउंड अबाउट है आपको वहां भीड़ मिल जाएगी। उसी के साथ जनपर रोड को टॉलस्टॉय मार्ग वहां भरा है, और ठीक उसी के पीछे जंतर मंतर है, तो जंतर मंतर से लेकर के नई दिल्ली का, और उसी के साथ चूंकि वो कनेक्ट करता आगे शास्त्री भवन पर, हमने वहां देखा जहां आंसू गैस के गोले छोड़े गए, और उन्हीं रास्तों से होते हुए जो प्रदर्शनकारी हैं वो रेल भवन तक पहुंच गए। रेल भवन के पीछे चूंकि उद्योग भवन का मेट्रो स्टेशन बंद था, उसके आगे के मेट्रो स्टेशन बंद है, तो जहां से वो खुले मेट्रो स्टेशन जिन रास्तों पर, वो वहीं से पैदल चल के, मतलब आप इसको समझिए कि उत्तर का ध्रुव और दक्षिण का ध्रुव इन दोनों जगह से इकट्ठा होते होते नई दिल्ली के बीचों बीच एक बड़ा एपिसेंटर बन गया है, इसलिए पॉकेट पॉकेट में प्रदर्शनकारी आपको दिखाई दे रहे हैं।
1: और आशुतोष, अक्सर ऐसा होता भी है कि जब भी पार्लियामेंट के आसपास बड़ा प्रदर्शन होता है तो अक्सर इन मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया जाता है, और क्रॉट प्लेस या राजीव चौक ऐसा स्टेशन होता है जहां से भीड़ आती जाती रहती है। और ये तस्वीरें लगातार आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगियों में दिखा रहे हैं। लेकिन आशुतोष आप बने रहिएगा, मौसमी सिंह भी हमारे साथ जुड़े। मौसमी, मेट्रो स्टेशन तो बंद है लेकिन क्या ट्रैफिक की मूवमेंट आप जहां पर हैं वहां से शुरू हो गई है, क्योंकि ज्यादातर मेट्रो स्टेशन आसपास के जो बंद किए गए थे, अब ट्रैफिक की मूवमेंट का क्या हाल है वहां पर?
0: बिल्कुल, देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि ये स्थिति अभी जो है यहाँ पे मेट्रो स्टेशन पर हालात सामान्य हो गए हैं, ट्रैफिक की आवाजाही शुरू हो गई है। आगे थोड़ा सा बढ़े अगर तो दिखाएंगे आपको कि कुछ देर पहले यहाँ पे पूरी भारी बैरिकेडिंग थी, पर यहाँ पे अभी सुरक्षा बलों का की तैनाती तो है। सर, मेट्रो स्टेशन खुला हुआ है? खुला है, आवाजाही हो रही है, नॉर्मल चल रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी और सुरक्षा आला अधिकारी तैनात है वो कह रहे हैं कि मेट्रो अब सामान्य चल रहा है, परिस्थिति अब यहाँ पे पार्लियामेंट के आसपास जो है ना सुमित सामान्य हो गई है। एयरफोर्स भवन हो या रेल भवन हो, यातायात भी खोल दिया गया है, और स्थिति जो है अब सामान्य की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है लगभग 2.5-3 घंटे बाद।
1: बिल्कुल मौसमी, देखिए हमारी संवाददाता लगातार हमें रिपोर्ट पहुंचा रही थी, कह रही थी कि देखिए मेट्रो के गेट्स को कई जगहों पर खोल दिया गया है, ट्रैफिक की मूवमेंट स्मूथ हो गई है। हालांकि देखिए अभी जो स्थिति है वो क्नॉट प्लेस के आसपास बहुत ज्यादा प्रदर्शनकारी वहां मौजूद है। हमारे साथ आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी बने हुए। आशुतोष, जैसा मौसमी बता रही थी कि देखिए कई गेट्स को खोल दिया गया, क्या ये कहा जा सकता है कि थोड़ी देर में क्नॉट प्लेस में भी भीड़ कम होनी शुरू हो जाएगी, या फिर अभी भीड़ उसी तरीके से बनी हुई है और बढ़ती जा रही है?
2: अंदेशा दरअसल दूसरा है सुमित, कि जो लुटियंस जो पार्लियामेंट के आसपास का इलाका है, सुरक्षा बलों की पूरी कोशिश होगी कि प्रदर्शनकारियों से यहां से हटा दिया जाए। सत्र चल रहा है, संवेदनशील इलाका है, तो वहां से हटाने के बाद वो कहां जाएंगे? या तो वो जंतर मंतर की तरफ आ रहे हैं, और अगर मैं इशारों में समझाने की कोशिश करूं तो ठीक मेरे पीछे ही साथ की तरफ संसद भवन की पेरी है, तो वो जो रास्ते वहां बंद कर रहे हैं उनको पुशबैक कर रहे हैं, वो धीरे धीरे इसी तरफ आएंगे। अगर कर्तव्य पथ खाली हुआ तो शास्त्री भवन से पीछे जंतर मंतर, जंतर मंतर से और पीछे आएंगे तो जनपद का इलाका होते हुए, तो ये संभावना जरूर है। क्योंकि मेट्रो के गेट जो खोले जा रहे हैं वो सारे प्रवेश मार्ग हैं, यानी कि लोग अंदर आएं और ट्रेन पकड़ के निकल जाएं। एग्जिट पर कई जगहों पर वो प्रतिबंध लगा रहेगा, और जब वो कनॉट प्लेस, तो ये संभावना है कि अब ये एक एपिसेंटर बन जाए, उनकी संख्या अगर कम होती है तो कुछ समय वो यहां पर जरूर रुकें। लेकिन अब ये है कि बातचीत जो हुई है, बातचीत के बाद क्या निकलता है, क्या आश्वासन मिलता है, देखिए फेसलेस प्रोटेस्ट है, लीडर कोई है नहीं कि कोई ये बात करे, किसी की अपील काम कर जाए, कोई एक आदमी अपील कर दे तो खत्म कर दे अनशन, तो ये नहीं पता कि किससे पूछे, किससे जाने कि आप लोग जा रहे हैं, प्रदर्शन कंटिन्यू होगा, इसकी रूपरेखा क्या होगी? क्योंकि ये तो हमें पहले से तय था कि संसद मार्च का मतलब, तस्वीरों के साथ आपको दिखाते चलते हैं कि प्रदर्शन मार्च का मतलब ये नहीं था कि वो संसद भवन तक जाएंगे। आमतौर पर जब इस इलाके में प्रदर्शन होते हैं उसकी जो परिधि होती है, जब पॉलिटिकल हो या संगठनों के हो, तो 150 लोग होते हैं, उन्हें पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन तक जाने दिया जाता है, वहां बैरिकेड लगा के रोक देते हैं। लेकिन जब इतना अथाह संख्या हो तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आगे क्या होगा, इसीलिए कोशिश की गई कि जंतर मंतर पर रोक दिया जाए। लेकिन संख्या इतनी ज्यादा पहुंच गई कि जंतर मंतर के बाद चौराहा, टॉलस्टॉय मार्ग, जनपथ मार्ग और शास्त्री भवन तक वो पहुंच गए। तो संभवतः तैयारी पुलिस की इसी हिसाब से थी कि बल प्रयोग ज्यादा न करना पड़े। अब ये भी हमने देखा कि पुलिस ने बहुत रेस्ट्रेन किया, कई जगहों पर अगर लाठीचार्ज हुए टीयर गैस, वो एसओपी है कि आपको भीड़ संसद भवन के पास नहीं जाने देनी है, लेकिन रेस्ट्रेन हमें पुलिस की ओर से दिखाई दिया कि अगर कोशिश की गई कि पुशबैक के लिए, तो अब ऐसा लग रहा है कि
1: पुशबैक के लिए। और देखिए कोशिश ये की जा रही है कि सामान्य व्यवस्था दोबारा से सुचारू रूप से व्यवस्थित की जा सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष मिश्रा, मौसमी सिंह और जितेंद्र बहादुर सिंह, हमारे तीनों सहयोगी। लेकिन इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

अभी कुछ दिन पहले ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, और विश्व में बहुत कम देश ऐसे हैं कि जिनके पास ये सुविधा है, लेकिन भारत ने जो हाइड्रोजन ट्रेन देशवासियों को समर्पित की है वो सबसे ताकतवर इंजन वाली है और सबसे लंबी है। ये अपने आप में भारत के वैज्ञानिक, भारत के इंजीनियर्स, भारत के इनोवेटर्स, भारत के उद्यमी, भारत के श्रमिक, ये जो एक लक्ष्य लेकर के देश के लिए जी रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, उसी का परिणाम है। साथ ही हम भले भांति जानते हैं और पूरी दुनिया चिंतित भी है, लगातार कहीं न कहीं युद्ध की स्थितियां बनती रही है। पश्चिम एशिया के युद्ध के कारण भारत जैसे देश जो एनर्जी के लिए औरों पर डिपेंडेंट है, उनके लिए ये पश्चिम एशिया का युद्ध एक बहुत ही बड़ा संकट का कारण रहा। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, यानी हर विषय में अनेक बाधाएं, अनेक संकट आए। उसके बावजूद भी भारत 7.7% के ग्रोथ से दुनिया की मेजर इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन के रहा। यह भारत के सामर्थ्य का परिचायक है।

बीजेपी समर्थकों को संसद भवन तक पहुंचने से पुलिस ने रोका, चले आंसू गैस के गोले, हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी, संसद भवन थाने में मौजूद है दिल्ली पुलिस कमिश्नर। जंतर मंतर पर सिसोदिया और चंद्रशेखर समेत कई नेताओं का जमावड़ा, उग्र भीड़ पर पुलिस का एक्शन, संसद मार्च के मद्देनजर घेराबंदी, चप्पे चप्पे पर भारी सुरक्षा बंदोबस्त।

कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। सोलह साल बाद स्पेन फिर बना फुटबॉल का बादशाह। फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में गोल दागा। फ्रांस के एम्बापे ने मेसी को पछाड़कर जीता गोल्डन बूट।

0: नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जारी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन उग्र हो गया। संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी संसद भवन के करीब तक पहुंच गए। पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, आंसू गैस के गोले चलाए गए। प्रदर्शन को देखते हुए संसद भवन की सुरक्षा सख्त कर दी गई। सीआईएसएफ ने संसद भवन की सुरक्षा की कमान संभाल ली है। संसद भवन के आसपास के इलाकों में इस वक्त प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी देखी जा रही है। हालांकि धीरे धीरे स्थिति पर काबू किया जा रहा है। कुछ सड़कें हैं जहां पर परिस्थितियां सामान्य हो गई हैं। मेट्रो की आवाजाही जिसे रोक दिया गया था उसे भी कुछ स्टेशन पर अब सामान्य बताया जा रहा है। यानी कि धीरे धीरे करके जो भीड़ संसद भवन की तरफ आगे बढ़ रही थी, उग्र होती जा रही थी, उसे हल्का बल प्रयोग करके आंसू गैस के गोलों के साथ और पुलिस ने अलग अलग सड़कों पर दबिश देकर किसी तरीके से अब थोड़ा काबू में किया है। लेकिन क्या परिस्थितियां हैं यह हम आपको अगले एक घंटे में विस्तार से बताएंगे, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ सदन के भीतर विपक्षी पार्टियों की तरफ से हंगामा चल रहा था, सरकार के सामने वो सवाल दागे जा रहे थे, तो सड़कों पर सीजेपी का ये प्रोटेस्ट। हम सबसे पहले कर्तव्य पथ का ताजा हाल आपको दिखाते हैं। हमारी संवाददाता मौसमी सिंह की ये रिपोर्ट देखिए।
1: कर्तव्य पथ पर हम लोग खड़े हुए हैं और अभी यहाँ पे स्थिति जो है आप कह लीजिए कि यातायात जो है वो चालू हो गया है। स्थिति यहाँ पे ये है कि प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है, लेकिन दो घंटे पहले यहाँ पे तस्वीर बेहद अलग थी। तमाम प्रदर्शनकारी इन लॉन्स में पीछे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे भरे हुए थे और उसके अलावा खाकी का जो आपको तैनाती दिख रही है बिल्कुल एक्शन में दिल्ली पुलिस और अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे थे। एंटी राइड व्हीकल्स पीछे और तमाम दिल्ली पुलिस के बसें यहाँ पे तैनात थी, लेकिन अब वो खाली करा दिया गया है। यातायात यहाँ पे चल रहा है, हालांकि पुलिस बसेस की तैनाती अभी भी यहाँ पे है। एक हाई अलर्ट मोड में यहाँ पे पुलिस, पीछे हमारे राष्ट्रपति भवन है, हाई अलर्ट मोड में पुलिस नजर आ रही है। बैरिकेडिंग यहाँ पे की गई है और किसी को भी रुकने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स और जितनी भी सुरक्षा बलों की टुकड़ियां थी उन्होंने यहाँ पे रेल भवन से लेके एयरफोर्स भवन तक, राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक जो फोर्स की तैनाती थी उसने प्रदर्शनकारियों को यहाँ एरिया से पूरे पार्लियामेंट के परिसर के आसपास के इलाके से खदेड़ा और लगभग तीन घंटे में अब जो स्थिति यहाँ पे वो नियंत्रण में आई है। कैमरा पर्सन लोकेंद्र के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली। आज
0: सीधे आपको लिए चलते हैं अपने दो संवाददाताओं के पास। हिमांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ में जुड़ रहे हैं पीयूष। पीयूष, आपसे हम समझे कि क्या इस समय प्रदर्शन की स्थिति है। उससे पहले हिमांशु आप बताइए कि सरकार किस तरह की स्ट्रैटेजी सोच रही है इस समय। क्या सरकार को यह लगता है कि ये एक ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट है, क्या उन्हें ये एक फेसलेस प्रोटेस्ट लग रहा है या फिर इसमें पॉलिटिकल एंगल देख रहे हैं? हिमांशु आवाज आ रही है आपको? चलिए हिमांशु के पास आगे चलेंगे। पहले पीयूष ये समझाइए कि जहां पर आप खड़े हैं क्या यहां पर भी जो प्रदर्शनकारी हैं वो पहुंचे थे और इस समय क्या स्थिति पर काबू है? क्या हम समझें कि कमोवेश दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, खासकर सेंट्रल दिल्ली और पार्लियामेंट की ओर बढ़ती हुई जो सड़कें हैं वहां पर नियंत्रण में ला चुकी है स्थिति को दिल्ली पुलिस?
2: जी बिल्कुल श्वेता, इस वक्त अगर स्थिति की बात करें तो स्थिति पूरी तरह से काबू में है। संसद भवन के आसपास जिस तरह से भीड़ पिछले कुछ देर में इकट्ठी हुई थी वो भीड़ अब यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जो पुलिस बल है वो काफ़ी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर लगाया गया है, रास्तों को डाइवर्ट किया गया है। साथ साथ जो भीड़ थी वो अब यहाँ से धीरे धीरे हटती हुई नजर आ रही है। स्थिति फिलहाल पूरी तरह से काबू में है। संसद भवन के कुछ दरवाजे बंद भी किए गए थे, अब उन दरवाजों को खोल दिया गया है और किसी भी तरह की कोई चिंता की बात फिलहाल आसपास इलाके में नजर नहीं आ रही। मैं इस वक्त मौजूद हूँ विजय चौक पर। विजय चौक के अगर आप दाहिनी ओर की बात करें तो वहाँ पड़ता है रेल भवन, और उसके अगर मेरे बाएं ओर अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो इस तरफ पड़ता है संसद का मेन एंट्री गेट। कुछ देर पहले जब हम यहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे तो हमको प्रदर्शनकारियों के नारे लगाने की आवाजें आ रही थी, लेकिन अब वो आवाजें नहीं आ रही है। करते हुए पथ जो रास्ता संसद भवन से होता हुआ, रेल भवन से होता हुआ मेन एंट्री गेट तक पहुंचता है, वो फिलहाल अब वो खाली हो चुका है। वहां पर जो सुचारू रूप से ट्रैफिक है वो चल रहा है, लेकिन इन सब चीजों के बीच में सरकार का अपना मत है। सरकार लगातार जो इस पर नजर बनाए हुए है, और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से स्थिति जंतर मंतर पर भी हुई, जहां पर सोनम वांगचुक की जब तबीयत खराब होने लगी और कोर्ट के निर्देश पर सरकार को एक्शन लेना पड़ा, तब हमने देखा कैसे दिल्ली पुलिस के साथ कुछ कर्मी वहां पहुंचे और सोनम वांगचुक को जो है सफदरजंग अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। जहां तक मांग की जा रही है सीजेपी की तरफ से, उसमें यह भी बहुत महत्वपूर्ण है समझना श्वेता, कि पिछले कुछ दिनों में लगातार सरकार ने ये कोशिश की है संवाद को आगे बढ़ाने की, और ये बताने की कोशिश की है कि जो भी नीट में फेलियर हुए हैं उस पर सरकार ने कड़े से कड़े कदम उठाए हैं। जो री एग्जामिनेशन हुआ उसमें होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ उस एग्जामिनेशन को कराया गया, इसमें सेना की मदद भी ली गई, एयरफोर्स की मदद भी ली गई, और साथ साथ बैंक के अंदर क्वेश्चन पेपर्स रखकर उनको कड़ी सुरक्षा में सेंटर्स तक लेकर जाया गया। तो सरकार का ये मानना है कि जब एक बार पेपर लीक की खबर सामने आई तो उसके बाद से सरकार ने सख्ती के साथ पूरे मामले में जो है कदम उठाए, लेकिन जो चिंताएं हैं, जो युवाओं के द्वारा चिंताएं जाहिर की जा रही है, उस पर भी सरकार काफी गंभीर और लगातार संवाद की स्थिति भी बनी हुई है। एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, एक तरफ जहां संसद भवन के आसपास कुछ प्रदर्शनकारी इकट्ठे हो गए थे, वहीं दूसरी ओर धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनकी मुलाकात गृहमंत्री अमित शाह के साथ भी हुई, और लंबी मुलाकात जो है वो लगभग 1 बजे के आसपास वो मुलाकात शुरू हुई थी और वो लंबी मुलाकात चली। ये भी और बहुत जरूरी है समझना कि इसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कॉल दिया था। आम आदमी पार्टी के कुछ नेता वहां पहुंचे थे, मनीष सिसोदिया, आतिशी, संजय सिंह जैसे नेता वहां पहुंचे, और इससे पहले अलग अलग राजनीतिक दल के नेता भी वहां पहुंचे जिनका समर्थन भी इस प्रोटेस्ट को था। लेकिन फिलहाल की अगर स्थिति की हम बात करें तो स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में नजर आ रही है। चारों तरफ जो संसद भवन के आसपास का इलाका है वो इस वक्त पूरी तरह से खाली नजर आ रहा है। विजय चौक से होता हुआ रेल भवन का जो रास्ता है, जो वहां पर जरूर उम्मीद जताई जा रही थी दिल्ली पुलिस के द्वारा कि वहां पर कुछ प्रदर्शनकारी पहुंच सकते हैं, वहां पर बैरिकेड लगा के उस रास्ते को रोका गया। फिलहाल जो है स्थिति कहीं ना कहीं अब राजीव चौक और मंडी हाउस के पास पनपती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर मेट्रो स्टेशन पर भीड़ देखने को मिल रही है। कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है कि कुछ प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन फिलहाल की स्थिति की बात करें तो सारे दरवाजे संसद भवन के खोल दिए गए, एंट्री एग्जिट आराम से हो रहा है। पहले सिर्फ एक दरवाजा खुला हुआ था जिसमें जो सांसद हैं उनके आने जाने के लिए उस दरवाजे को खोला गया था, लेकिन अब पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में नजर आ रही है। आसपास की अगर हम बात करें तो काफी भारी संख्या में सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया है।
0: संसद भवन की वो तस्वीर हम दिखा भी रहे हैं, एक तो दिल्ली में बरसात और दूसरा इस समय आप देखिए वहां पर खाली, आपको वो सड़कें दिखेंगी, लेकिन कुछ देर पहले की जो तस्वीरें थी उसमें आप दिल्ली पुलिस से लेकर रैपिड एक्शन फोर्स, रायट कंट्रोल, सबको वहां पर आप देख सकते थे, जिनको वो पूरा इलाका इसीलिए खाली कराना था क्योंकि जब भी संसद चल रही होती है, जब भी पार्लियामेंट का सेशन होता है, तब संवेदनशीलता इस पूरे क्षेत्र की बढ़ जाती है। पीयूष, इससे पहले भी दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया था कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको परमिशन नहीं है और इस इलाके में आगे न बढ़े। खैर, वो एक अलग बात है, लेकिन आज जब आगे निकल कर आए हैं, क्या ये केवल आज का एक दिन का प्रोटेस्ट या फिर आज की इन तस्वीरों को देखकर हम
3: ऐसी बातें टालकर मजाक उड़ाने का काम नहीं करते, तो इसका मैं कंडम करता हूँ इस स्टेटमेंट का, और मोदी जी को आइंदा से ऐसी बातें करने में होशियारी बरताना चाहिए।
4: आपसे कॉपरेशन मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि कॉपरेट करें, मॉनसून अच्छा आए और मॉनसून सेशन अच्छा जाए तो देश की बड़ी खुशहाली आएगी।
3: खुशहाल जब तक ये रहते देश में खुशहाली नहीं आएगी, ये हटेंगे तो ही आएंगे। नेचर अपना काम करता है और नेचर हमेशा किसी की परवाह नहीं करता, ना इनकी ना उनकी या हमारी, तो नेचर नेचर है। इन्हों नेचर को भी बदलने का काम कर रहे हैं, वो नहीं होने वाला है।
0: मल्लिकार्जुन खड़गे की बात आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि जब तक एनडीए की सरकार हटेगी नहीं तब तक खुशहाली आ नहीं सकती है। प्रधानमंत्री की तरफ से अपील थी कि मॉनसून सेशन अच्छी तरीके से चले, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि ये मुद्दे अहम है। अब देखिए, जो सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यानी अब तक की तस्वीरें, लगभग अब से एक घंटे पहले तक की ये तस्वीरें कुछ इसी तरीके की थी, जब सीजेपी के जो समर्थक हैं वो सब सड़कों पर इस तरीके से आपको नजर आते। अब कोनॉट प्लेस में भी, कोनॉट प्लेस यानी राजीव चौक, उसका जो इलाका है वहां पर अब कोशिश की जा रही है कि वहां जल्दी से जल्दी स्थिति को सामान्य किया जा सके। हम जल्द ही वहां पर भी अपने संवाददाता से जुड़ेंगे और उनसे पूछेंगे। तो इसमें जितने हिस्से आप देख रहे हैं, संसद भवन के बाहर का हिस्सा आपने देखा, संसद भवन की ओर आती हुई सड़कों वाला हिस्सा आपने देखा, आप राजीव चौक का हिस्सा देख रहे हैं जहां पर जो मेट्रो स्टेशन से के नजदीक की तस्वीरें ये, और राजीव चौक के इनर सर्कल के पास की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये सारी वो तस्वीरें हैं जहां पर आपको अनियंत्रित भीड़ और उग्र प्रदर्शनकारी नजर आते हैं, और उसके बाद उनको काबू में करते हुए जो सुरक्षा बल है वो नजर आते हैं। महिलाएं पुरुष सब सुरक्षा बलों में शामिल हैं, क्योंकि प्रदर्शनकारियों में भी महिलाएं भी शामिल रही। और देखिए, ये वो तस्वीर और अब की तस्वीर जो पीयूष भी दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि अब स्थिति सामान्य है, लेकिन अब कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी इलाके में किसी भी तरीके से अचानक ये प्रदर्शनकारी न पहुंच जाए। तो पीयूष, जिस चीज के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि राजनीतिक पार्टियों के समर्थन की बात आपने की, कि और कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां भी रही पीडीपी की तरह जो ये सोचती रही कि हम अपना समर्थन दें अगर हमारा भी एजेंडा इसमें शामिल कर लिया जाए। हालांकि मुख्य रूप से देखा जाए तो स्टूडेंट्स के मुद्दे और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर, तो क्या आज भर ये प्रदर्शन या फिर आने वाले दिनों के लिए कोई नया ऐलान कर सकते हैं ये?
2: देखिए श्वेता, अगर जानकारी की बात करें, जो अभी उपलब्ध जानकारी है उसके हिसाब से ये जो मार्च की कॉल है वो आज ही के दिन की दी गई थी, क्योंकि आज संसद सत्र का मॉनसून सत्र का पहला दिन है और आज ही के दिन जो है जितने भी प्रदर्शनकारी उन्होंने फैसला लिया था कि वो संसद की ओर मार्च करेंगे। फिलहाल जो उनका मार्च है वो थमता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि संसद के आसपास जो स्थिति थी वो फिलहाल काबू में कर ली गई है। वहीं दूसरी ओर अभिजीत जो है नेता है सीजीपी के, वो हंगर स्ट्राइक पर है, वो लगातार जंतर मंतर पर उनका जो चल रहा है वो लगातार चलता रहेगा। जैसे उनकी इच्छा होगी, जैसा वो कंटिन्यू करना चाहे वो आगे वो बताएंगे, लेकिन फिलहाल की स्थिति के हिसाब से फिलहाल स्थिति काबू में है। और जो मार्च की कॉल थी वो आज ही की थी, आगे अभी किसी तरह का कोई फैसला इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से नहीं लिया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस लगातार बार बार ये कहती रही है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर लोग विश्वास ना करें। भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे, कुछ झड़प की तस्वीरें भी आई थी, लेकिन स्थिति को फिलहाल काबू कर लिया गया है। इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति आज से नहीं हो रही, पिछले काफी लंबे समय से हो रही है, और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग ना सिर्फ सीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, बल्कि जो राजनीतिक दल है संसद के अंदर जिनका अपना वर्चस्व है वो भी मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। नीट पेपर पर जो सरकार की फेलियर है उसकी वो मांग करते रहे। लेकिन यह भी बहुत महत्वपूर्ण है समझना श्वेता, कि जब से पेपर लीक का मामला सामने आया उसके बाद से सरकार ने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ इसमें काम किया, इसमें कोई दोहराई नहीं। सरकार ने अपनी गलती मानी, और जब हमने सरकारी सूत्रों से बात की तो उन्होंने ये बताया था कि जैसे ही पेपर लीक के बारे में पता चला तो उसको कैंसिल इसलिए ही किया गया ताकि ट्रांसपेरेंसी आ सके, लोगों का विश्वास इस व्यवस्था में बन सके, साथ साथ किसी भी तरह की कोई कोताही आगे नहीं बरती जाएगी, उसको लेकर सभी तरह के कदम सरकार की तरफ से उठाए गए। राधाकृष्ण कमेटी की जितने भी रिकमेंडेशन थे उन सभी को इस बार लागू भी किया गया। तो सरकार ये मानना है कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ सरकार आगे बढ़ी और जो स्थिति थी उसको कंट्रोल में करके पेपर लीक के जो मामले उनको रोक के बेहतर तरीके से इस बार पेपर भी कराया गया, जो 21 तारीख को एग्जामिनेशन हुए थे। उन एग्जामिनेशन के बाद फिलहाल किसी तरह की कोई शिकायत निकलती हुई सामने नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि सरकार का यह मानना है कि उन्होंने पूरी तरह से सभी कदम उठाए जो पर्याप्त कदम थे, और आगे भी कोशिश यह रहेगी कि इन कदमों को उठाया जाए ताकि पेपर लीक के मामले सामने ना आए। लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति पिछले काफी लंबे समय से चली आ रही है। कांग्रेस ने धरना भी किया था जंतर मंत्र पर, कांग्रेस के नेता सीजेपी के कार्यकर्ताओं से मिलने भी गए थे, पवन खेड़ा वहां गए थे, फिर समाजवादी पार्टी के नेता वहां पर पहुंचे, फिर आम आदमी पार्टी के नेता वहां पहुंचे। तो विपक्ष का काम है राजनीति करना और राजनीति इस पूरे मामले में होती हुई नजर भी आई। और आज जब धरना प्रदर्शन हुआ तब उस वक्त हमने आम आदमी पार्टी के तरफ से संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, आतिशी जैसे नेताओं को वहां पर पहुंचते हुए भी देखा। तो एक तरफ से
0: हमारे साथ हम 2:15 हम समय के अनुसार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से परिस्थितियां बदली हैं। 2:15 के करीब वायुसेना भवन के नजदीक क्या हालात रहे, मौसमी सिंह की रिपोर्ट देखिए।
5: मेट्रो स्टेशन से लगातार जितनी भीड़ को दूर किया जा रहा है उतना ही मेट्रो से तमाम प्रदर्शनकारी तमाम लोग निकल रहे हैं। इसलिए यहाँ अभी एयरपोर्ट भवन के इर्द गिर्द जो इलाका है वहाँ पे भीड़ इधर उधर किया जा रहा है। वो देखिए पुलिस भाग रही है, यहाँ पे फिर से बैरिकेड लगाया गया है। एक नया प्रोटेस्ट यहाँ पे नजर आ रहा है और प्रदर्शनकारी अभी इस तरह से
6: बनकर
5: धारा 163 लगी हुई है BNS की, जिसके तहत आप यहाँ पे प्रदर्शन नहीं कर सकते। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उद्योग भवन से सामने आ रही है।
0: तो ये लगभग 1 घंटे पहले की हम आपको स्थिति दिखा रहे थे। अभी भी दरअसल क्या हो रहा है कि उस पूरे क्षेत्र में कहां से किस सड़क से आगे बढ़े प्रदर्शनकारी, तो पुलिस की और सुरक्षा बलों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये हो चली है कि किसी भी तरीके से उस संवेदनशील इलाके तक पहुंचने से रोका जा सके। और केवल संसद नहीं, आप देखेंगे वायुसेना भवन के नजदीक ये हुआ है, चाहे वायुसेना भवन हो, सेना भवन हो, ये सारा वो क्षेत्र आता है दिल्ली का जो अति संवेदनशील की श्रेणी में हमेशा रहता है। और हमेशा यहां पर आपको किसी रूप में बैरिकेडिंग जरूर नजर आएगी। सड़कें बंद नहीं रहती हैं लेकिन बैरिकेड्स इस रूप में वहां पर उपलब्ध रहते हैं कि फौरन उस रास्ते को अगर जरूरत पड़े, अगर किसी तरह का थ्रेट हो तो उसे बंद किया जा सके। अब कुल मिलाकर अगर हम आज इन सभी लोगों के, इन सभी प्रदर्शनकारियों की मांगों को देखें अगर पीयूष, तो यह समझ में आता है कि उनकी मांगों में सबसे प्रमुखता से केवल शिक्षा मंत्री का इस्तीफा शामिल है। जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि जो नीट परीक्षा जिसको लेकर सबसे पहले नाराजगी आई सामने, उस नीट परीक्षा को सफलतापूर्वक करा लिया गया। हालांकि जो बाकी पार्टियां हैं जैसे राहुल गांधी हो गए, वो भी छात्रों से संवाद कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक पैरेलल छात्रों के साथ बातचीत करके एक वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था की बात हो रही है, लेकिन यहां पर जो हो रहा है वो एक पैरेलल उसी का, पर उसकी मांग केवल एक या फिर कुछ और मांगे आपको सुनने में आई है।
2: कि देखिए जितने भी प्रदर्शनकारी पहुंचे श्वेता, उन्होंने सिर्फ एक नारा लगाया कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो एक ही मांग है प्रदर्शनकारियों की कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इस पर इस्तीफा दें, क्योंकि ये उनका फेलियर है, एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है और इसीलिए नीट परीक्षा में कहीं ना कहीं गड़बड़ी आई, पेपर लीक हुई और उसके बाद काफी छात्रों को इसकी वजह से परेशानियां झेलनी पड़ी। लगभग 22 लाख छात्र हैं, ना सिर्फ छात्र बल्कि उनके परिवार और उनके साथ साथ वो टीचर्स भी जिन्होंने ये पूरी तैयारियां कराई वो भी काफी परेशान थे और इसीलिए इस पूरी मांग को काफी मोमेंटम मिलता हुआ नजर भी आया। लेकिन ये भी बहुत जरूरी है समझना कि जब ये खामियां पाई गई तो उसके बाद सरकार ने इसमें कदम भी उठाए और पूरी कोशिश की कि परीक्षा जो है वो बेहतर तरीके से करा ली जाए। हमें वो समय भी याद है जब नीट परीक्षा लीक हुई थी तो धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया से भी रिक्वेस्ट किया था कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान और जो पिछले लंबे समय से जो प्रदर्शन हो होता रहा और मांग होती रही कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। उसके बीच में सरकार ने एक चीज जरूर रखी, मेंटेन करने की कोशिश की कि लोगों तक गलत मैसेज ना जाए, गलत खबरें ना पहुंचे, सोशल मीडिया पे जो गलत चीजें चल रही है वो उससे लोग ज्यादा प्रभावित ना हो। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा रीजन भी रहा कि इस कदम की वजह से चीजें बेहतर तरीके से हो भी पाई और जो नीट की परीक्षा उसको सफलतापूर्वक 21 तारीख को करा भी लिया गया। लेकिन छात्रों का यह मानना है कि पूरा सिस्टम ही फेल हो चुका है और इस पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान की बनती है, इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए। कुछ देर पहले जरूर भारी संख्या में यहाँ पर छात्र मौजूद थे, लेकिन फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है श्वेता। और अगर हम संसद भवन के चारों तरफ के इलाके की बात करें, मेरे सहयोगी लोकेंद्र पांडे एक बार अगर कैमरा निकाल के आपको दिखा देंगे तो ये देखिए सामने का जो रोड है जो रायसीना हिल की तरफ से आता है, वहां पर फिलहाल जो है गाड़ी आराम से आ जा रही है। कुछ देर पहले ट्रैफिक पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था और यहाँ पर गाड़ी की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में होती हुई नजर आ रही है। संसद भवन में जो सांसद पहुंच रहे हैं उनके साथ साथ उनके जो स्टाफ मेंबर्स जो पहुंचते हैं वो फिलहाल गाड़ी से आवाजाही कर पा रहे हैं। हालांकि कुछ देर पहले ये स्थिति थी कि कोई गाड़ी यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन फिलहाल स्थिति अब काबू में होती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा बल काफी भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। ये विजय चौक का इलाका है, विजय चौक के इलाके के मेरे लेफ्ट हैंड साइड में पार्लियामेंट बिल्डिंग का वो गेट है जहाँ से जो मंत्री हैं सांसद हैं वो एंट्री करते हैं, और इसके ठीक पीछे रेल भवन है। और कुछ देर पहले जब हम यहाँ पर मौजूद थे,
0: बाकी इलाकों का भी हम अपडेट देंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, पीयूष बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
8: Looking to trade in your current vehicle? We'll get you the most for your trade. At Buyers Volkswagen, we've been putting customers first since 1897. And when you're ready to buy, our team will do whatever it takes to help you drive home in the Volkswagen that's right for you.
9: Drive home a new 26 Volkswagen Tiguan S, front-wheel drive, 229 for 36 months with $3,999 due at signing.
8: Experience the buyer's difference and see why generations of customers continue to choose us. Visit us at columbusvw.com or by the airport.
9: Offer ends 8/31/26. See dealer for details.
10: Thumbtack presents Tile Trouble. Every single time I use my sink, I make eye contact with the uneven grout on my kitchen backsplash. The crooked corners eye me, and I'm haunted by more tiling questions than I thought possible. What kind of pro can fix a backsplash? Can I replace one cracked tile, or should I replace them all? What if I just use Thumbtack? I can hire top-rated pros, read reviews, and compare prices with a tap, all on the app. Thumbtack knows homes. Download the app today.
6: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। In association with
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: Chogan Perfumes, the French edition.
11: This is the sound of Claire cooking dinner at home, and that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge, and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
12: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
13: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits. Classic rock. Coffee House and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
6: For him and her.

0: in association with Hind, bade aaram se. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
0: विमल बोलो जुबां केसरी.
2: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी जॉइनिंग के लिए भटक रहे हैं. 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई. हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं. 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया.
3: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर. आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे.
4: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं.
2: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद।
1: आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं श्वेता सिंह। इस समय हम लगातार खबरें आपको दिखा रहे हैं जो सीजेपी समर्थक हैं उनके संसद मार्ग से जुड़ी हुई। हालांकि अधिकांश इलाकों में अब परिस्थितियां सामान्य नजर आ रही हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि जेपी नड्डा के साथ प्रदर्शनकारियों की मुलाकात हुई है। प्रदर्शनकारियों के साथ जेपी नड्डा की बैठक हुई है, क्या हुआ है, क्या बातचीत हुई है, इसमें ये हम जानेंगे। लेकिन जो मांगे लेकर ये प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे थे, जो हम आपको आज की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, उसमें उनकी तरफ से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। प्रदर्शनकारियों में किसके साथ, किन प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात हुई है, ये सारी चीजें अभी देखना है। प्रदर्शनकारियों के साथ जेपी नड्डा की मीटिंग हुई है, बैठक हुई है। आज का कॉल था सीजेपी के समर्थकों का, इतने दिनों से जंतर मंतर पर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल जारी था, अदालत में मामला पहुंचा, दिल्ली पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई और उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि उसके बाद जो सीजेपी के फाउंडर है उनका अनशन जंतर मंतर पर ही शुरू हो गया और उस अनशन के बीच आज का ये कॉल था कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो बढ़ेंगे देश की संसद की तरफ। मॉनसून सत्र का पहला दिन आज। अब जो बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है जेपी नड्डा के साथ प्रदर्शनकारियों की मुलाकात की, उसके बारे में और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा जुड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या खबर है, क्या बातचीत, कब ये मुलाकात हुई?
2: बिल्कुल, जिस तरीके की जो जानकारी है वो मिल पा रही है उसमें साफ साफ ये है कि कुछ देर पहले जेपी नड्डा के साथ जो है सीजेपी के नेताओं की जो है वो मुलाकात हुई है और उसके बाद जो है ये अनशन खत्म किया गया और अब चीजें हैं जो डिस्कशन हुआ आपसे कुछ देर में जो है वो सारी चीजें जो है वो श्वेता सामने आ जाएंगी।
1: अनशन खत्म हो गया है दिपके का?
2: नहीं, देखिए उनका फास जो है वो तो जो है उसको तोड़वाया गया है। अब देखना ये है कि अनशन पूरी तरीके से खत्म होगा या प्रोटेस्ट जारी रहे, क्योंकि अनशन के लिए फास तो जो मनीष सिसोदिया है उन्होंने उनका तोड़वाया, उसके साथ साथ जो है वो अब क्या रहेगा आगे का इस मुलाकात के बाद वो देखना होगा।
1: ये जो बहुत शुक्रिया हिमांशु मिश्रा इस पूरी बातचीत के लिए। तो बड़ी खबर ये आ रही है कि प्रदर्शन के बीच सीजेपी के साथ जेपी नड्डा की बैठक हुई है। इसकी जो और डिटेल्स हैं अभी कुछ समय में हमारे सामने होंगे, क्योंकि कोशिश सरकार की तरफ से ये की जा रही है कि जो जो छात्र हैं जिन्हें लगता है कि गलत हुआ है उन सब की बात सुनी जाए। लेकिन हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो आज सुबह से प्रदर्शनकारियों की इन सड़कों पर, जो आगे बढ़ रहे थे संसद की तरफ जाना चाह रहे थे उन्हें किस तरीके से रोकने की कोशिश हुई है, और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि स्थिति किस तरीके से सामान्य हुई है, स्थिति पर किस तरीके से नियंत्रण किया गया है। लेकिन बड़ी खबर इस बीच यही रहेगी कि जेपी नड्डा की मुलाकात प्रदर्शनकारियों से हुई है, आगे क्या रुख लेता है ये जो प्रोटेस्ट है उसे अब देखना होगा। बात अब राम मंदिर चढ़ावा मामले की, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। एसआईटी का गठन किस तरीके से हुआ है, एसआईटी की रिपोर्ट, ये सारी चीजें अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है। सॉलिसिटर जनरल ने 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी है, इस्तीफों के बारे में, जो ट्रस्टीज हैं उनके इस्तीफों के बारे में जानकारी दी है। एससी में, सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी के का गठन किस तरीके से हुआ है उसके बारे में जानकारी दी गई है। हमारी संवाददाता अनीशा माथुर इस समय हमारे साथ जुड़ रही है। अनीशा, क्या डिटेल्स हैं अब तक के?
3: देखिए अभी तक हम आपको ये बता सकते हैं कि सुनवाई जारी है, सोलिसिटर जनरल की तरफ से कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एसआईटी का गठन हुआ था, प्राइमा फेसी यानी प्रथम दृष्टया पता लगा है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है और इसीलिए कॉग्निजेबल ऑफेंस क्योंकि एसआईटी ने कहा कि है, इसलिए एफआईआर दर्ज की गई है। और एसआईटी में कमिश्नर लखनऊ है, एक फाइनेंस सचिव है, आईजी लखनऊ है, सीनियर आईपीएस लोग हैं, लेकिन सीजेआई ने कहा कि आप एसआईटी का पुनर्गठन कीजिए, ये देखिए कि ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन जो है, कोई सीनियर अफसर जो है उनको लीजिए, ऐसा कोई सीनियर आईपीएस ऑफिसर इस एसआईटी का को हेड करें ताकि जो भी निर्णायक स्तर पर जांच पहुंचे उसके बारे में कोर्ट को बताया जाए। दूसरी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे

0: को सुझाव यही दिया गया है कि कमिश्नर और फाइनेंस सचिव वगैरह को इंक्लूड किया जाए। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम ये सुनेंगे। साथ ही साथ जो इंटरवीनर्स थे, जो याचिकाकर्ता थे, उनमें से एक की तरफ से ये कहा गया कि कोई वेबसाइट कुछ कोई किसी तरह की मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि क्या जो चंदा दिया गया, जो भी डोनेशन दी गई, जो भी दान पेटी में डाला गया, वो क्या क्या दिया गया। इनफैक्ट सोलिसिटर माफ कीजिएगा देवदत्त कामत सीनियर एडवोकेट ने ये कहा कि कुछ लोगों ने चांदी दी थी, सोना दिया था, लेकिन उसके रिकॉर्ड तक गायब हो गए हैं। कोई इन्वेंटरी का रिकॉर्ड होने की जरूरत है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल ये मुद्दा हम इस समय हम पॉलिटिसाइज नहीं होने देना चाहते, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, एसआईटी का गठन होने दीजिए। अब अगले हफ्ते के लिए सुनवाई टाल दी गई है, ये जानकारी मेरे कॉलीग संजय शर्मा और सृष्टि ओझा ने अभी तक हमें बताई है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच के सामने ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एसआईटी का गठन इस तरह कीजिए जिसमें स्पेशलिस्ट आईपीएस ऑफिसर्स हो, कुछ विशेषज्ञ आईपीएस ऑफिसर्स हो, जो कि ये देख सकें कि इन्वेस्टिगेशन कैसे की, इन्वेस्टिगेशन एक्चुअली कर सके। क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन और ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसलिए आई है क्योंकि सोलिसिटर जनरल ने कहा कि
1: जो आप बता रही हैं वो भी हम इसमें जोड़ते चलें। एक बार जो बड़ी खबर आपने दी है सृष्टि और संजय शर्मा, जो हमारे संवाददाता इस समय सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे, कि अगले हफ्ते, अगले सोमवार को इस मामले में सुनवाई की बात कही जा रही है। राम मंदिर चढ़ावा मामले में अगले हफ्ते अब सुनवाई आगे होगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसआईटी के पुनर्गठन की बात कही गई है। जैसा कि अनीशा समझा भी रही है, जो वित्तीय एक्सपर्ट्स हैं, जिनको फाइनेंशियल एक्सपर्टीज है, उनको जोड़ने के लिए कहा गया है इस एसआईटी में, ताकि बारीकियों को वो देख सके, कहां पर लूपहोल्स रह गए हैं, क्या चोरी के दायरे में केवल वही लोग आ रहे हैं जो पकड़े गए हैं अब तक, या फिर कुछ और लोग हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों को अब उसमें बारीकी से देखा जा सके, इसके लिए अब अगले हफ्ते अब इस मामले पर सुनवाई होगी। तब तक का समय है पुनर्गठन करने के लिए। अब एक बार फिर हम सीजेपी प्रोटेस्ट की तरफ चलते हैं और आपको संसद भवन के बाहर की जो तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे थे, वहां पर अब जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो सामान्य हो चुकी हैं। संसद भवन के पास वहां तक पहुंचने वाली जितनी सड़कें थी उन सबको लेकर लगातार कोशिश थी, और अब केंद्रीय सचिवालय, मेट्रो स्टेशन पर, मेट्रो स्टेशन के आसपास हर जगह स्थिति पूरी तरीके से सामान्य हो चुकी है। वहां पर अब प्रोटेस्टर्स का आगे बढ़ना उस इलाके में नहीं है। रेल भवन, रफी मार्ग, वायुसेना भवन के रास्ते अब खुल गए हैं। ये वो रास्ते हैं जहां से होते हुए आगे आप पार्लियामेंट की तरफ बढ़ सकते हैं, और इस कारण एक एक करके अब जो मेट्रो स्टेशन हैं उनको खोला जा रहा है।
2: ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ, जो कि रफी मार्ग है, जो कि रेल भवन से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। कुछ घंटे पहले यहाँ पर तमाम प्रदर्शनकारी मौजूद थे। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के द्वारा इस पूरे इलाके को अब खाली करा लिया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो सामने की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मेट्रो स्टेशन केंद्रीय सचिवालय का 3 नंबर है, और यहाँ से अब आवाजाही शुरू हो गई है। इसके साथ ही यहाँ पर जो आगे की तरफ रास्ता जाता है, ये सामने जो चौराहा आप देख रहे हैं, ये चौराहा है रेल भवन का, और रेल भवन कुछ देर पहले जो बैरिकेडिंग लगी हुई है पूरी तरीके से, यहाँ पर बहुत सारे जो प्रोटेस्टर्स थे, प्रदर्शनकारी, वो मौजूद थे। इसके साथ ही अब सामान्य आवाजाही इस इलाके में कर दी गई है पुलिस के द्वारा। अब प्रदर्शनकारी पूरी तरीके से यहाँ पर हटा लिए गए हैं। मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4, इसको पूरी तरीके से खोल दिया गया है केंद्रीय सचिवालय का। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान यहाँ पर लगे हुए हैं। इसके साथ ही जो लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं उनको आने जाने दिया जा रहा है। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि केंद्रीय सचिवालय का ये जो गेट है, यहाँ पर सीआईएसएफ के जवानों को भी लगाया गया, इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो भी लगाए गए हैं। कुछ घंटे पहले इसको बंद किया गया था जिससे कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर ना आ सके, लेकिन अब स्थिति काफ़ी सामान्य है और पूरी तरीके से मेट्रो स्टेशन को खोल दिया गया है। अब जो अलग अलग इलाके हैं, जो रास्ते हैं, जो वायुसेना भवन की तरफ रास्ता जाता है उसको भी पूरी तरीके से खोला गया है। कर्तव्य पथ से भी लोगों को हटा लिया गया और वो पूरा रास्ता जो है अब खाली हो चुका है। तो इस पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने खाली करा लिया है। कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग यहाँ पर पहुँचे थे प्रदर्शन करने के लिए, उनको पुलिस ने कुछ

0: लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लेने के बाद उनको आगे जाकर के जो मेट्रो स्टेशन दिल्ली एनसीआर से जो लोग आए थे उनको वहां पर कई लोगों को छोड़ा भी गया है। इसके साथ साथ लोगों को मेट्रो में बैठा करके यहां से भेजा गया है। तो अब स्थिति काफी सामान्य है इस पूरे इलाके में।
1: पीयूष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, दो चीजें इसमें हो जाती हैं। अगर एक बड़ा सवाल यह होता है कि स्थिति को जल्दी से जल्दी काबू में किया जाए ताकि जो आम लोग हैं उनको परेशानी नहीं हो, लेकिन दूसरी चीज कि अगर जो प्रदर्शनकारी हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत है, ये युवा जो हैं अगर उनको अपने रोजगार अपनी परीक्षा की चिंता है तो उसको देखना भी सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। ऐसे में महत्वपूर्ण है जेपी नड्डा की वो मुलाकात भी जो इन प्रदर्शनकारियों से हुई है। ये क्या आपको सरकार की तरफ से इंडिकेशन लगता है कि जो छात्र हैं उनके जो जेन्युइन मुद्दे हैं उन पर पूरी तरीके से ध्यान दिया जाएगा?
2: जी बिल्कुल श्वेता, उनके जो मुद्दे हैं उन पर ज़रूर सरकार जो है गंभीरता से सोच भी रही है। और हमारी जो बातचीत हुई कुछ सरकारी सूत्रों से तो ये बात शुरुआत से ही साफ कर दी गई थी सरकार की तरफ से कि सभी दरवाजे बातचीत के लिए खुले हुए हैं सरकार की तरफ से। और इसीलिए ये बैठक भी हुई है जिसमें जो CJP के मुख्य प्रवक्ता हैं उनकी मुलाकात JP नड्डा के साथ हुई। और इस मुलाकात के बाद जो सूत्र बताते हैं वो ये कि एक मेमोरेंडम CJP के लोगों के द्वारा सरकार को सौंपा गया है और सरकार उस पर अब विचार विमर्श कर रही है। हालांकि मुख्य मांग CJP की और बाकी प्रदर्शनकारियों की यह है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। और इसी के मद्देनजर हमने कुछ देर पहले संसद भवन में एक बैठक होते हुए भी देखी जिसमें धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात गृहमंत्री अमित शाह से चल रही थी। अब अगर हम ताजा स्थिति की बात करें तो जो प्रदर्शनकारी यहां पर मौजूद थे जो काफी संख्या में आ गए थे और संसद भवन के आसपास के इलाके को घेरने की पूरी कवायद की गई थी, वो फिलहाल काबू में होती हुई नजर आ रही है। और सरकार बार बार ये बात प्रदर्शनकारियों से कहती भी रही है कि अगर कुछ मुद्दे हैं तो उसको लेकर सरकार जरूर सुनने के लिए तैयार है। हालांकि सरकार का यह भी मानना है कि जिस तरह के कदम उठाने की जरूरत थी वो कदम उठाए भी गए हैं और जरूर ये सुनिश्चित भी आगे किया जाएगा कि चाहे वो नीट हो या कोई भी दूसरा पेपर हो उसमें पेपर लीक जैसी समस्या ना आए, किसी भी तरह की गड़बड़ी निकल के सामने ना आए।
1: साथ में यही कारण है कि गृह सचिव की भी मुलाकात इस समय दिल्ली पुलिस कमिश्नर से रही है। ये भी एक अहम बैठक है। इससे पहले भी हमने देखा कि इतने कुछ दिनों में किस तरीके से दिल्ली पुलिस की तरफ से भी कोशिशें तो हुई कि ये मार्च न हो, लेकिन ये मार्च हुआ और इस तरीके से हुआ कि कई इलाकों में प्रदर्शनकारी उग्र रूप में नजर आए। और इसी के बीच ये बड़ी बैठक जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, गृह सचिव से दिल्ली पुलिस कमिश्नर की मुलाकात, किस तरीके से कर्तव्य भवन में ये बैठक इस समय चल रही है इसमें ये भी देखना होगा। अव्वल तो आज के दिन की समीक्षा, लेकिन क्या आने वाले दिनों के लिए भी किसी तरह की तैयारी? जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ इसी खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र।
3: बिल्कुल श्वेता, ये उच्च स्तरीय बैठक है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और जो इसमें बैठक में दिल्ली पुलिस कमिश्नर और IB चीफ भी मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरा रुटियन दिल्ली का इलाका है इसको पूरी तरीके से खाली करवा लिया गया है। जिस मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया था, जो केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन, इसके साथ साथ जो दूसरे मेट्रो स्टेशन उनको भी खोल दिया गया है। आवाजाही पूरी तरीके से सामान्य इस पूरे इलाके में कर दी गई है। इसके साथ ही रेल भवन के पास की जो सिचुएशन बनी हुई थी पिछले कुछ घंटे पहले उसको भी सामान्य कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की जो ये बैठक है केंद्रीय गृह सचिव से, तमाम चीजों को लेकर के वो उनको ब्रीफ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से प्रोटेस्टर्स यहां तक पहुंचे उसको लेकर के भी जानकारी दी जा रही है। और उसके बाद कुछ ही घंटों के अंदर तमाम लोकेशन से जो भी प्रदर्शनकारी थे सबको हटा दिया गया है। अब स्थिति सामान्य है। कनॉट प्लेस की भी स्थिति हमने देखा कि वो भी सिचुएशन कंट्रोल में है और वहां से भी प्रोटेस्टर्स को हटा करके बहुत सारे प्रोटेस्टर्स मेट्रो के जरिए भेजे गए हैं। जो दिल्ली NCR से आए थे उनको बताया गया है कि वो बसों के जरिए या फिर मेट्रो के जरिए जा सकते हैं। तो अब स्थिति सामान्य है, इसकी जानकारी केंद्रीय गृह सचिव को जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिया
1: है। ठीक है, इस सबके बीच एक और पहलू है, सोनम वांगचुक का भी, वो अनशन पर बैठे रहे, उसके बाद उनको सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका जो अनशन है वो तोड़वाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट में सोनम वांगचुक की पत्नी की याचिका, उन्होंने अपनी याचिका डाली वहां पर, वो सफदरजंग अस्पताल से बाहर शिफ्ट कराना चाहती हैं सोनम वांगचुक को। इस पर सुनवाई शुरू हो गई है। याचिका में सोनम वांगचुक को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग उनकी पत्नी के द्वारा की गई है। सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में फिलहाल एडमिट है। डॉक्टरों की तरफ से उनके अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं उसको लेकर जो बातें कही गई उस पर सवाल उठाते हुए उनकी पत्नी ने सबसे पहले आपत्ति जताई। और अब संजय शर्मा हमारे साथ हैं। संजय, ये सुनवाई यहां पर शुरू हो गई है, कहां शिफ्ट करवाना चाहती हैं उनकी पत्नी, क्या कहा जा रहा है, क्या केवल अस्पताल सफदरजंग से हटाकर किसी दूसरे अस्पताल भेजे जाने की मांग उनकी है?
4: गीतांजलि ओंगमो की यही वही दलीलें हैं जो उन्होंने पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट में एकल जज पीठ के सामने कही थी। उनका यह कहना था कि वो उनको मेदांता हॉस्पिटल ले जाना चाहती हैं। उस दिन तो उन्होंने यहां तक कहा था कि वो लामा यानी मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट जाकर भी वो उनको सफदरजंग हॉस्पिटल से ले जाएंगी, क्योंकि सफदरजंग हॉस्पिटल में उनके वकीलों को, उनके लोगों को और परिवार के लोगों को एक्सेस नहीं दिया जा रहा है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा था कि अगर ऐसा दिया गया तो अस्पताल के कमरे को कोर्ट रूम बना दिया जाएगा और वहां पर इतने सारे लोगों का आना जाना होगा, तो ये उचित नहीं है उनके सेहत को देखते हुए भी और पैरामीटर्स और सारे। लेकिन कोर्ट ने, सिंगल जज ने कहा था कि सारी रिपोर्ट्स इनके साथ शेयर की जाएं और परिवार के लोगों को वहां पर उनके साथ उनको मिलने दिया जाए, 24 घंटे एक्सेस रहेगा, वो सारी चीजें, वही सारी दलीलें आज डिवीजन बेंच जिसकी अगुवाई चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय।
1: बड़ी खबर और आ रही है इस समय अपने दर्शकों को, हम बता दें जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट साइट है जहां पर सीजेपी का ये प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रोटेस्ट साइट को खाली करा लिया गया है। जंतर मंतर का मंच खाली करा लिया गया है सोनम वांगचुक के वहां से हटने के बाद। वहां पर जो दिपके हैं, जो सीजेपी के प्रमुख, वहां पर वो भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, लेकिन अभी ये जानकारी आ रही है कि जंतर मंतर का जो प्रदर्शन स्थल है उसको खाली करा लिया गया है। अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, क्या खबर है?
5: आज तक पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और वो कॉकरोच जनता पार्टी जिसका प्रदर्शन पिछले कई दिनों से इसी स्टेज से चल रहा था, स्टेज पर फिलहाल पुलिस का कब्जा हो चुका है। जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्टर थे उनको खाली करवा लिया गया। हालांकि अभी इर्द गिर्द कई प्रोटेस्टर हैं जो सुबह से पूरा जो नई दिल्ली का इलाका था उसे हाईजेक कर लिया गया था। सुबह के वक्त पुलिस काफी संयमित नजर आ रही थी, आरएफ की टीम काफी संयमित नजर आ रही थी, लेकिन जब भीड़ की तरफ से कुछ पत्थरबाजी और कुछ उग्र हुई उसके बाद फिर जो है वो पुलिस ने क्रैकडाउन किया है। और पहले जो पार्लियामेंट थाने का इलाका था जहां पर भीड़ थी उनको टीयर गैस की सेल छोड़कर डिस्पर्स किया गया, नई दिल्ली इलाके में कनॉट प्लेस इलाके में डिस्पर्स किया गया। और अब जंतर मंतर के अंदर पुलिस की टीम पहुंची और उसके बाद टीयर गैस की सेल छोड़ी गई। बल प्रयोग यहां पर नहीं किया गया श्वेता, बड़ी बात यह है जो भी प्रोटेस्टर जाना चाहते थे उनको जाने दिया पुलिस ने, आरएफ की टीम ने शांतिपूर्वक जाने का पूरा मौका मिला। और उसके बाद फिलहाल जो मैं देख पा रहा हूं अपनी आंखों के सामने जो स्टेज जिसे दीपके वो भाषण देता था, अब उस स्टेज पर फिलहाल दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है। स्टेज पर क्या कुछ है, प्रोटेस्ट साइट पर क्या कुछ है, पुलिस उसको देख रही है, उसका इंस्पेक्शन कर रही है। और फिलहाल जंतर मंतर पर सुबह के वक्त जो प्रोटेस्टर थे अलग अलग इलाकों से, जिसमें कुछ ऐसा पुलिस का आरोप है कि पत्थरबाजी हुई, पुलिस पर अटैक हुआ, अब वहां पर फिलहाल पुलिस की टीम मौजूद है।
1: तो ये प्रदर्शनकारी वहां से हटे या उन्हें हटाया गया अरविंद?
5: नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए पुलिस ने हटाया है क्योंकि देखिए श्वेता ये समझना होगा कि आज संसद मार्च का ऐलान था और उसके बाद दिल्ली पुलिस का कहना था कि पूरे इलाके में जो प्रोटेस्ट है उसकी मनाही है। जो पहले धारा 144 होती थी अब बीएनएस में वो धारा 163 है वो लगाई गई थी और किसी तरह के प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं थी, ये पुलिस ने पहले ही बता दिया था। परमिशन की इजाजत नहीं थी, परमिशन अगर मांगी भी जाती तो वो नहीं मिलती क्योंकि आपको मालूम है कि जब संसद चलता है तो उस दौरान पूरा जो इलाका है वो संवेदनशील हो जाता है। तो पुलिस ने पहले यह चेतावनी दी हुई थी, लेकिन यहाँ हालत ये थी श्वेता कि जंतर मंतर ही नहीं बल्कि पार्लियामेंट थाना, शास्त्री भवन, नई दिल्ली के जो संवेदनशील इलाके थे वहां पर भीड़ पहुंच गई थी, उग्र भीड़ हो गई थी, जिसके बाद तकरीबन 2 से 3 घंटे तक पुलिस ने संयम बरता। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर वो पार्लियामेंट थाने पहुंचे, पूरे जो जो जो जो पूरा सिचुएशन है उसका असेसमेंट किया और उसके बाद फिर सबसे पहले पार्लियामेंट थाने से टीयर गैस की सेल छोड़ के डिस्बर्स किया गया। उसके बाद फिर कनॉट प्लेस और नई दिल्ली इलाके के जितने संवेदनशील इलाके हैं उनको डिस्बर्स किया गया। और फिलहाल इस वक्त मैं खुद भी मौजूद हूँ श्वेता, जंतर मंतर पे सामने की तरफ जो
6: यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो जवान है यहाँ पर तैनात किए गए हैं। मैं आपको दिखा, ये रायसीना रोड है जो कहीं ना कहीं संसद से रोड जाके जुड़ता है। वहीं आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि अभी अभी स्मोक कैनिस्टर का इस्तेमाल किया गया भीड़ को तितर बितर करने के लिए, प्रदर्शनकारियों को यहां से भगाने के लिए। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि राइट कंट्रोल व्हीकल का जो इस्तेमाल है दिल्ली पुलिस यहां पर कर रही है प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए। पर वहीं आप देख सकते हैं कि कैसे भारी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं यहां पर पहुंचे हैं। उनकी बड़ी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, क्योंकि आज 20 जुलाई को देखा गया था कि संसद चलो मार्च की कॉल दी गई थी कांग्रेस जनता पार्टी के द्वारा। उसी बीच की तस्वीरें आप सेंट्रल दिल्ली की आप देख सकते हैं कि जहां कैसे दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की यहां पर जो कार्रवाई है, जो प्रदर्शनकारी हैं उनको यहां से भगाया जा सके, क्योंकि ये जो मेन चौक है इसको कुछ देर पहले प्रदर्शनकारियों ने ब्लॉक कर दिया था। जो ट्रैफिक मूवमेंट थी यहां पर रुक गई थी, पर उसी बीच दिल्ली पुलिस का एक्शन और कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश
1: वाली। ये जंतर मंतर से खबर दे रहे थे, ये तस्वीरें दिखा रहे थे जंतर मंतर की। अरविंद ओझा ये जानकारी दे रहे हैं कि वहां से प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से एक नियम था, एक आदेश था, इजाजत न मांगी गई थी और न ही संसद जब चल रही होती है उस समय किसी तरह के भी विरोध प्रदर्शन की इजाजत होती नहीं है उस पूरे इलाके में। अब जाहिर है कि उसके बावजूद प्रदर्शनकारी आगे बढ़े थे, कई इलाकों में उग्र होने की खबरें आ रही हैं और उसके बीच दिल्ली पुलिस की यह कार्रवाई जहां पर प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर से हटा दिया गया है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: $20 billion of precious metals sold to 1.8 million customers means APMEX knows how to help you find the investment you want when you want it. Our logistics experts get it to you fast, and our support team is ready to solve any issue by phone, email, or chat. Over 220,000 reviews have one common thread: satisfied customers insisting we're the best precious metals retailer. When you're ready to join them, shop APMEX.com. That's APMEX.com.
10: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
11: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
12: Listening to your favorite station just got even easier. With Google Assistant and TuneIn, your go-to station is just a voice away.
13: You're listening to CNBC.
14: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
15: Keep it on smooth jazz.
16: This is Roots Reggae
17: exclusively on TuneIn.
18: This is classic hip-hop
19: exclusively on TuneIn.
12: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music, and news you love anytime you want.
20: I think the whole process is corrupted और इसका जो खामियाजा है, इसका जो मानसिक जो तनाव से जो है वो हमारे देश का युवा और छात्र गुजर रहे हैं। और ये खाली नीट के पेपर की बात नहीं, न जाने कितने और पेपर लीक हुए हैं पूरे देश भर में, उत्तर प्रदेश में कितने पेपर लीक हुए हैं, हर नौकरी जो निकलती है उसका पेपर ही लीक हो जाता है। तो आखिर कमी कहाँ है, आखिर भ्रष्टाचार कहाँ है और आखिर अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी ये सरकार लेगी कि नहीं देगी, लेगी प्रश्न इस बात का है।
21: संसद का सत्र होता है ये इसीलिए होता है
11: ये सब मुद्दों का जो है वो विस्तार पूर्वक जो है हम लोग डिस्कस कर सके, और सरकार की जवाबदेही सब चीज के लिए होती है, उसी के लिए होता है, और हम लोग चाहते हैं कि सत्र चले और जो है ये अपने प्रश्न जो है वहाँ रखे। लेकिन अगर हुड़दंग करेंगे और वहाँ पे उत्पात मचाएंगे और जैसे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। अगर आपको इतना ही है तो आप भी खड़े हो जाइए, तो आप नहीं, आप आम ट्विस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि आपको किसको सैक करिए किसको रखिए, तो ये आम ट्विस्टिंग अच्छी नहीं है।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
4: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
5: दिस इज द साउंड ऑफ लूसी स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ हर स्पेंडिंग। यू सी, इवन दो शी इज बाइंग अ न्यू पेयर ऑफ जींस, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
7: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn, a carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus, featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar, plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
8: अयोध्या के राम मंदिर की यज्ञशाला में दिनों आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का अनुष्ठान चल रहा है। ट्रस्ट कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने देशभर से बुलाए गए आचार्यों और बटुकों के साथ पूजा शुरू कराई है, जिसमें ट्रस्टी दीनेन्द्र दास भी पूजा कर रहे हैं। इस पारंपरिक पूजा के साथ 11 पुरोहित विधि विधान से इस अनुष्ठान का संपादन कर रहे हैं। दैनिक 251 बार विष्णु सहस्त्र नाम का जाप चल रहा है। देशभर से बुलाए गए 70 वैदिक आचार्य और गुरुकुल के बटुक वाल्मीकि रामायण से लेकर रामचरितमानस तक का पाठ कर रहे हैं। इस अनुष्ठान में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रुद्राभिषेक, विशेष हवन और शांति पाठ का भी आयोजन किया गया है। चढ़ावा चोरी के बाद किए जा रहे इस विशेष अनुष्ठान को प्रायश्चित पूजा बताकर साधु संत सन्यासी सवाल उठा रहे हैं।
9: जो राम मंदिर में महापाप हुआ है, उस पाप का चाहे जितना प्रायश्चित लोग कर ले, अनुष्ठान और पूजन से मां भगवान राम क्षमा नहीं करेंगे।
10: ऐसा है कि जो प्रायश्चित की बात आप लोग कर रहे हैं, प्रायश्चित के लिए जरूरी है कि पहले पाप घोषित किया जाए, क्या पाप हुआ है। अभी पाप ही पता नहीं है, फिर किसके द्वारा वो पाप हुआ है उसका नाम घोषित किया जाए।
11: किसी भी चीज के लिए प्रायश्चित पश्चाताप ही प्रक्षालन होता है।
12: बड़ा अनुष्ठान होना होता है तो उसके पहले भूत शुद्धि इत्यादि और आत्म शुद्धि के लिए प्रायश्चित पूजन किया जाता है। तो इस अनुष्ठान का उद्देश्य क्या है और किस लिए प्रायश्चित किया जा रहा है?
13: तुम कोष का माल हजम करके और उसी पैसे अनुष्ठान करा करके पाप खत्म कर पाओ। अब जनता को बहुत बेवकूफ बना ले, कोई बेवकूफ बनने वाला नहीं है, इनका अनुष्ठान छल है।
8: दूसरी तरफ ट्रस्टी और अनुष्ठान के यजमान दीनेन्द्र दास का कहना है कि राम मंदिर परिसर की यज्ञशाला में यह अनुष्ठान 15 जुलाई 2026 को शुरू हुआ था और इसका समापन 24 जुलाई 2026 को होगा।
10: कौन सा पंडित है जो प्रायश्चित बता रहा है उसका नाम बताया जाए? हम लोग उससे पूछ जानना चाहेंगे कि किन किन ग्रंथों के आधार पर, किन किन पापों के लिए कौन कौन सा प्रायश्चित वो बता रहा है।
8: इस बीच राम मंदिर में चोरी की घटना के बाद पहली बार खबर है कि 23 जुलाई को आरएसएस और वीएचपी ने अयोध्या में संतों की बैठक बुलाई है। ये बैठक अयोध्या की मणिराम छावनी में होने वाली है। इस सम्मेलन का मकसद चोरी की घटना को लेकर ट्रस्ट के खिलाफ चलाए जा रहे संगठित अभियान के खिलाफ जागरूकता फैलाना और रणनीति बनाना है।
14: सूत्र बता रहे हैं कि इसी बैठक में ट्रस्ट के कार्यवाहक महासचिव कृष्ण मोहन को स्थायी महासचिव नियुक्त करने का भी फैसला मंजूर हो सकता है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं रणभूमि। मैं हूं गौरव सावंत। आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है और आज ही कॉकरोच जनता पार्टी से जंतर मंतर से संसद तक का उन्होंने मार्च निकाला। देश की राजधानी दिल्ली में संसद से लेकर सड़क तक हंगामा ही हंगामा नजर आया। कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च को रोकने के लिए संसद भवन परिसर के पास आंसू गैस के गोले छोड़े गए। संसद के जितने भी दरवाजे हैं उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे अभेद्य बनाया गया और उसकी हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जो प्रदर्शनकारी है सुरक्षा का घेरा तोड़ते हुए वो कनॉट प्लेस की तरफ यानी राजीव चौक की तरफ, दूसरी तरफ मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन की तरफ वहां पहुंचे और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन में घुस गए। कई लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ी और सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने तक जा पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव और अन्य नेताओं के साथ प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में जंतर मंतर की ओर कई नेता भी आगे बढ़ रहे थे। उसमें डिंपल यादव भी थी, कुछ और नेता भी थे और समाजवादी पार्टी का दावा यह है कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का किसी को हिरासत में न लेने का ऐलान चलता रहा। पुलिस ने इनकार किया कि उन्होंने किसी को भी हिरासत में लिया है या गिरफ्तार किया है। इस पूरे हंगामे के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह से आपात मुलाकात की। नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार कर रहे हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक उन्होंने संसद मार्च किया। उधर संसद की बातें अगर हम करें तो दोनों सदनों में पूरे दिन का आज कामकाज नहीं हो पाया। नियमों के खिलाफ विपक्ष तख्तियां लेकर संसद में आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद से पहले ही कहा कि जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होता है, वहां तूफान की जगह नहीं होती। लेकिन विपक्ष नीट पेपर लीक, छात्रों के प्रदर्शन, अयोध्या में श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, ऐसे कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करता रहा, अड़ा रहा। विपक्ष भी जानता है कि संसद में मुद्दे BAC यानी बिजनेस एडवाइजरी कमिटी की बैठक में ही तय किए जाते हैं और जिसमें विपक्ष की भी भागीदारी होती है, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष ने संसद को चलने नहीं दिया और दोनों सदनों की कार्यवाही अब कल तक के लिए टाल दी गई है। कल तक के लिए टल गई है ये सारी कार्यवाही। लेकिन इस समय दिल्ली में क्या हो रहा है, सबसे पहले मैं रणभूमि में आपको वो बताऊंगा। फिलहाल दिल्ली के जो कई प्रभावित इलाके हैं धीरे धीरे स्थिति अब वहां सामान्य होती जा रही है। बड़ी खबर ये कि जंतर मंतर से कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक हट गए हैं। जंतर मंतर का मंच इस समय खाली है, बताया ये जा रहा है। जो प्रदर्शनकारी वहां मौजूद थे धीरे धीरे वहां से चले गए और जैसा हम आपको इन तस्वीरों में दिखाएंगे भी कि जंतर मंतर अब या तो वो इलाका जहां कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा था या वो पूरी तरह से खाली हो गया है या अब धीरे धीरे खाली हो रहा है। ये दोपहर 3 बजे की तस्वीरें हैं और हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उसको टाइम स्टैम्प के साथ आपको दिखाएंगे ताकि आपको अंदाजा लग सके कि सवेरे क्या स्थिति थी और इस समय दोपहर में क्या स्थिति है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन की है और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन दोपहर 3 बजे स्थिति वहां सामान्य हो चुकी है। संसद के आसपास के इलाकों में भी अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। कुछ जगह जहां कॉकरोच जनता पार्टी या अन्य प्रदर्शनकारी पहुंच रहे थे, जिस तरह से वो कुछ मेट्रो स्टेशन में भी घुसे, अब पुलिस वहां से लोगों को हटाकर पीछे कर रही है ताकि सामान्य स्थिति बरकरार हो सके। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी ताजा जानकारी के साथ इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, अगर हम इस समय 4 बजे की स्थिति की बात करें तो दिल्ली पुलिस के मुताबिक जमीनी स्थिति ग्राउंड जीरो पर जंतर मंतर से लेकर संसद तक क्या स्थिति है?
1: देखिए, 4 बजे की बड़ी खबर यही है गौरव की मैं ठीक कॉकरोच जनता पार्टी के मंच के सामने मौजूद हूँ और मंच पूरी तरह से खाली हो चुका है। प्रोटेस्टर यहाँ से चले गए हैं, दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है। जो स्टेज है अब वो धीरे धीरे, चूंकि लोहे के ग्रिल से स्टेज बनाया गया था, कारीगर यहाँ मौजूद है, वो जो लोहे का ग्रिल है वो हटाया जा रहा है, धीरे धीरे करके जो मंच है यहाँ से हटाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है कि जो काफी दिनों से जिस मंच से दीपिके जो प्रोटेस्टर है उनको एड्रेस कर रहा था सोनम वांगचुक, जिस मंच पर जो आमरण अनशन पर बैठे हुए थे वहां अब प्रोटेस्टर का कब्जा नहीं है। पुलिस फिलहाल यहां पर मौजूद है और आज तक की टीम यहां पर मौजूद है। दरअसल गौरव, नई दिल्ली इलाके को प्रोटेस्टर ने सुबह अगर कहें हाईजैक कर लिया था तो बड़ी बात नहीं होगी, जबकि पुलिस ने चेतावनी दी थी कि धारा बीएनएस की धारा 163 लगी हुई है, मानसून सत्र चल रहा है, बेहद संवेदनशील ये इलाका है, इसीलिए जंतर मंतर पर आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उसकी इजाजत पुलिस आपको देगी।
0: लेकिन अरविंद ये बताइए, क्या दिल्ली पुलिस की इसको चूक कहा जाए कि आखिर प्रदर्शनकारी जंतर मंतर से निकलकर या अलग अलग इलाकों से निकलकर संसद की ओर कैसे बढ़े कि संसद के दरवाजे बंद करने पड़े, एकाएक वहां पर सुरक्षाकर्मी दौड़ते हुए गए कि अंदेशा था कहीं प्रदर्शनकारी संसद के अंदर ना घुस जाए?
1: बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस का फेलियर भी कहेंगे और इंटेलिजेंस फेलियर तो बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि देखिए दिल्ली पुलिस ने तैयारी जरूर कर रखी थी, 5000 सिक्योरिटी पुलिस थी, उसके बाद आरएएफ की टीम थी और मनाया जा रहा था कि जंतर मंतर, रणनीति यही थी कि जंतर मंतर तक सभी को सीमित किया जाएगा। लेकिन मैं खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ सुबह से, जो पार्लियामेंट थाना आपने इलाका देखा होगा, उस पार्लियामेंट थाना और जंतर मंतर वाली जो पूरी रोड है वो पूरा प्रोटेस्टर वहां पर चले गए थे। हमारे कैमरे में खुद कैद हुआ है कि जब एक पुलिस वाला प्रोटेस्टर को हटाने की कोशिश कर रहा था तो प्रोटेस्टर ने डंडा उठाकर उसको पुलिस वाले को बुरी तरह से
0: ठीक। अरविंद आप इस खबर पर नजर बनाए रखे, ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, खबर यह आ रही है कि दिल्ली पुलिस के जो नए कमिश्नर हैं अनुराग कुमार, उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन से मुलाकात की है। ये मुलाकात कर्तव्य भवन में हुई है। बताया ये जा रहा है कि प्रदर्शन के पूरे हालात पर इस समय चर्चा चल रही है। महत्वपूर्ण बैठक इसलिए भी है क्योंकि इस बैठक में इंटेलिजेंस ब्यूरो के बड़े अधिकारी और आईबी चीफ भी मौजूद है। खबर इस समय यह आ रही है कि ये बैठक इस समय अभी खत्म हुई है गृह सचिव के साथ कर्तव्य भवन में दिल्ली पुलिस कमिश्नर की मुलाकात, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के आला अधिकारी और आईबी चीफ भी मौजूद थे। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, ये जो भीड़ अब तितर बितर हुई है, क्या ये प्रदर्शनकारी अब अपने ठिकानों पर घरों पर चले गए हैं या अंदेशा है कि फिर इकट्ठा हो सकते हैं और फिर स्थिति बिगड़ सकती है?
2: देखिए कहीं ना कहीं जो अभी तक दिल्ली पुलिस कमिश्नर है जो गृह सचिव से मुलाकात कर रहे हैं और वहां आईबी के जो डायरेक्टर है वो भी पहुंचे, क्योंकि जो स्थिति बनी थी उसकी उम्मीद शायद दिल्ली पुलिस को नहीं थी। उनको ये उम्मीद थी कि जंतर मंतर पे ही जो है प्रोटेस्टर्स को रोक दिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से अलग अलग जो ट्रांसपोर्ट के यातायात के साधन है उनके थ्रू, चाहे मेट्रो के थ्रू या गाड़ी या अन्य साधनों के थ्रू जो प्रोटेस्टर पहुंच गए पार्लियामेंट के आसपास, वो एक चौंकाने वाली बात थी। और उसके बाद जिस तरीके से उनको तितर बितर किया गया, चाहे वो अगर आप देखें तो लाठी चार्ज करके या आंसू गैस के गोले छोड़े गए हो, ये तमाम प्रयासों के बाद ही जो है लुटियन जोन का जो महत्वपूर्ण इलाका है, जो संसद भवन के आसपास का इलाका है जहां प्रोटेस्टर आ गए थे, उसको अब खाली करा दिया गया है पूरी तरीके से, चाहे वो मेट्रो स्टेशन हो या अन्य स्थान हो। लेकिन बड़ी चीज यही है कि जब भी संसद चल रही होती है तो धारा 163 जो है बीएनएस की वो यहाँ पर लागू होती है, और ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है एक जगह पे चार लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में अगर ये हालात बन जाए तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंता का विषय था। और दूसरी तरफ जेपी नड्डा से जो सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल है उसमें मुलाकात की है 10 मिनट, उसका क्या आउटकम निकला है नहीं निकला है इसके जो मिनट्स है से कुछ देर में जो है गौरव सामने आ जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है सरकार के लिए चिंता का विषय इसलिए हुआ, 20 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था, ठीक है आज मार्च निकालना था संसद भवन तक, उसके बाद सरकार को उम्मीद थी कि इनको पार्लियामेंट सीट थाने के पास ही रोक दिया जाएगा, लेकिन जो सिचुएशन बनी पार्लियामेंट के आसपास, चाहे वो रेल भवन पे हो, कृषि भवन हो, प्रेस क्लब के पास हो, इस सिचुएशन के मद्देनजर जो है केंद्रीय गृह सचिव ने ये बैठक बुलाई है, जिसमें दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी हैं और आईबी डायरेक्टर भी है।
0: हिमांशु रहिए आप मेरे साथ, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। दिल्ली को अगर आप एक छावनी में तब्दील कर रहे हैं, संसद का सत्र शुरू हो रहा है और उसके बावजूद भीड़ इतनी आगे तक पहुंच गई, ये सुरक्षा व्यवस्था पर कई तरह के प्रश्न चिन्ह लगाता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। कर्तव्य पथ पर इस समय क्या स्थिति है, मेरी सहयोगी मौसमी सिंह कर्तव्य पथ पर मौजूद है, देखिए उनकी ये रिपोर्ट।
3: कर्तव्य पथ पर हम लोग खड़े हुए हैं और अभी यहाँ पे स्थिति जो है, आप कह लीजिए कि यातायात जो है वो चालू हो गया है। स्थिति यहाँ पे ये है कि प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है, लेकिन दो घंटे पहले यहाँ पे तस्वीर बेहद अलग थी। तमाम प्रदर्शनकारी इन लॉन्स में, पीछे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे भरे हुए थे। और उसके अलावा खाकी का जो आपको तैनाती दिख रही है, बिल्कुल एक्शन में दिल्ली पुलिस और अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे थे। एंटी राइड व्हीकल्स पीछे और तमाम दिल्ली पुलिस के बसें यहाँ पे तैनात थी, लेकिन अब वो खाली करा दिया गया है। यातायात यहाँ पे चल रहा है, हालांकि पुलिस बसेस की तैनाती अभी भी यहाँ पे है। एक हाई अलर्ट मोड में यहाँ पे पुलिस, पीछे हमारे राष्ट्रपति भवन है, हाई अलर्ट मोड में पुलिस नजर आ रही है। बैरिकेडिंग यहाँ पे की गई है और किसी को भी रुकने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स और जितनी भी सुरक्षा बलों की टुकड़ियां थी, उन्होंने यहाँ पे रेल भवन से लेके एयरफोर्स भवन तक, राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक जो फोर्स की तैनाती थी, उसने प्रदर्शनकारियों को यहाँ एरिया से, पूरे पार्लियामेंट के परिसर के आसपास के इलाके से खदेड़ा। और लगभग तीन घंटे में अब जो स्थिति यहाँ पे वो नियंत्रण में आई है। कैमरा पर्सन लोकेंद्र के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज।
0: अलग अलग रिपोर्ट्स हम आपको अलग अलग इलाकों से दिखा रहे हैं। कर्तव्य भवन और कर्तव्य पथ पर इस समय मौजूद थी मौसमी सिंह। कुछ समय पहले रेल भवन के पास प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में पहुंच गए और रेल भवन से संसद परिसर बिल्कुल उसके निकट है, स्थिति समय नियंत्रण में है। प्रदर्शनकारी वहां पहुंचे, लौट गए। ग्राउंड जीरो से जितेंद्र बहादुर सिंह की ये रिपोर्ट।
4: मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं, जो कि रफी मार्ग है, जो कि रेल भवन से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। कुछ घंटे पहले यहां पर तमाम प्रदर्शनकारी मौजूद थे, दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के द्वारा इस पूरे इलाके को अब खाली करा लिया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो सामने की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मेट्रो स्टेशन केंद्रीय सचिवालय का 3 नंबर है और यहाँ से अब आवाजाही शुरू हो गई है। इसके साथ ही यहाँ पर जो आगे की तरफ रास्ता जाता है, ये सामने जो चौराहा आप देख रहे हैं, ये चौराहा है रेल भवन का। और रेल भवन कुछ देर पहले जो बैरिकेडिंग लगी हुई है, पूरी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे जो प्रोटेस्टर्स थे, प्रदर्शनकारी, वो मौजूद थे। इसके साथ ही अब सामान्य आवाजाही इस इलाके में कर दी गई है पुलिस के द्वारा। अब प्रदर्शनकारी पूरी तरीके से यहाँ पर हटा लिए गए हैं। मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4, इसको पूरी तरीके से खोल दिया गया है केंद्रीय सचिवालय का। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान यहाँ पर लगे हुए हैं। इसके साथ ही जो लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं, उनको आने जाने दिया जा रहा है। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि केंद्रीय सचिवालय का ये जो गेट है, यहाँ पर CISF के जवानों को भी लगाया गया है। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो भी लगाए गए हैं। कुछ घंटे पहले इसको बंद किया गया था, जिससे कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर ना आ सके, लेकिन अब स्थिति काफ़ी सामान्य है और पूरी तरीके से मेट्रो स्टेशन को खोल दिया गया है। अब जो अलग अलग इलाके हैं, जो रास्ते हैं, जो वायुसेना भवन की तरफ रास्ता जाता है, उसको भी पूरी तरीके से खोला गया है। कर्तव्य पथ से भी लोगों को हटा लिया गया और वो पूरा रास्ता जो है अब खाली हो चुका है। तो इस पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने खाली करा लिया है। कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग यहाँ पर पहुँचे थे प्रदर्शन करने के लिए, उनको पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लेने के बाद उनको आगे जा कर के जो मेट्रो स्टेशन दिल्ली NCR से जो लोग आए थे, उनको वहाँ पर कई लोगों को छोड़ा भी गया है। इसके साथ साथ लोगों को मेट्रो में बैठा करके यहाँ से भेजा गया है। तो अब स्थिति काफी सामान्य है इस पूरे इलाके में।
0: और इस समय जो हम आपको तस्वीरें दिखाने वाले हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के कुछ सदस्य जाके केंद्रीय मंत्री JP नड्डा से मुलाकात की। उन्होंने JP नड्डा के साथ सौरव दास और आशुतोष रानका, उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने अपना जो ज्ञापन है वो मंत्री JP नड्डा को उन्होंने सबमिट किया, उन्होंने दिया। आशुतोष रानका ने बकायदा एक उसके बाद बयान जारी करते हुए कहा कि नीट पेपर लीक के मुद्दे पर जाके उन्होंने मुलाकात की JP नड्डा के साथ और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो सरकार से इस बाबत बात करेंगे। जो दो तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो जो ज्ञापन सौंपा है उन्होंने जेपी नड्डा को, उसकी आप तस्वीर देख रहे हैं। आशुतोष अंका ने कहा, मी एंड सौरभ दास आर स्टिल एट नड्डा जी रेजिडेंस, ही हैज रिक्वेस्टेड सम टाइम टू अलाइन विद देयर लीडरशिप। आशुतोष मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ, हिमांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिमांशु मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, क्या क्या वो बिंदु हैं जो वो सरकार के साथ उठाना चाहते हैं और सरकार ने क्या कहा?
2: देखिए जो मेमोरेंडम है उसकी कॉपी तो अभी तक नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार की तरफ से एश्योरेंस दिया गया है कि भविष्य में इस चीज को जरूर दिया जाएगा कि इस तरीके की घटना पेपर लीक की ना हो और इसको लेकर सरकार को जो भी उचित कदम उठाने वो उठाए जाए। लेकिन 10 मिनट की ये मुलाकात रही और क्योंकि जेपी नड्डा से इसलिए ये मुलाकात हुई है, सीजीपी के दोनों प्रतिनिधियों की, सौरभ दास की और अन्य जो दूसरे प्रतिनिधि हैं उससे, उनसे मुलाकात का कारण ये भी है क्योंकि नीट पेपर एग्जाम जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित है गौरव, और स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित होने के कारण जेपी नड्डा ने मुलाकात की है क्योंकि ये जो पेपर लीक भी हुआ है वो एनटीए द्वारा के उसमें हुआ है क्योंकि नीट का पेपर जो है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के तहत एनटीए जो है वो कंडक्ट कराती है, लेकिन सीधा मामला जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय का बनता है, इसीलिए जेपी नड्डा ने मुलाकात की है और जो उनको आश्वासन दिया गया है और ये कहा गया है कि भविष्य में इस तरीके की चीजें ना हो इसके लिए सरकार जो है वो कड़े कदम उठाएंगे।
0: अच्छा, ये जो डिमांड कर रहे हैं बार बार कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए और 1 करोड़ का कॉम्पेंसेशन दिया जाए जो नीट एस्पिरेंट्स जो मारे गए जिन्होंने आत्महत्या की कथित रूप से, वांगचुक तो सरकार के मुताबिक उनको वो कस्टडी में नहीं है, उनका इलाज चल रहा है, सरकार इस पर क्या कह रही है और खासतौर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर?
2: देखिये, केंद्र सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर पहले ही साफ हो चुका है कि कोई इस्तीफा नहीं होगा। इतने लंबी दिन तक सोनम वांगचुक जो है वो जब बैठे थे प्रदर्शन पे और अनशन पर, तब भी सरकार की तरफ से जो है वो कोई इस तरीके की बात को नहीं कहा गया। दूसरी तरफ ये है जो आज जो प्रतिनिधिमंडल मिला है उसमें हमारे को जो जानकारी है, ये प्रतिनिधिमंडल ने अपना ज्ञापन जो है भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को दे दिया है। उन्होंने हमारी बात को सहानुभूति पूर्वक सुना और पूरी वार्ता पूरी सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न। सीजीपी के जो प्रतिनिधिमंडल ने विश्वास है कि उनकी सरकार हमारी बातों पर विचार करेगी, हम अपने स्थान पर वापस पहुंचकर अपनी सभी समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील करेंगे। तो एक तरीके से ये साफ हो गया है कि सरकार और उनके बीच में जो भी बातचीत हुई है वो स्वार्थपूर्ण है। अब सरकार से जो सीजीपी के प्रतिनिधि मंडल ने इस ज्ञापन के जरिए मांग की है उस पर सरकार अपनी विचार करेगी और साथ ही साथ ये दोनों ही प्रतिनिधि मंडल के सदस्य जाकर जो है वो अपने साथियों को बताएंगे जो उनकी बातचीत हुई है और उसके बाद ये अपील करेंगे कि वो शांति को बनाए रखें, इस तरीके की चीजें ना हो जो आज जो है मार्च के दौरान हुई है।
0: रहिए मेरे साथ, एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है अफवाहों पर विश्वास न करें। दिल्ली पुलिस खारिज कर रही है अफवाहों को। प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने सफाई भी दी है। दिल्ली पुलिस ने कहा है ये जो अफवाह फैलाई जा रही है कि कई लोग 40 से 50 लोग जख्मी हो गए हैं, घायल हो गए हैं पुलिस की कार्रवाई में, ये गलत खबर है। 12 साल की बच्ची के साथ मारपीट का जो दावा किया जा रहा है, दिल्ली पुलिस का कहना है ये गलत है। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उन अफवाहों पर विश्वास न करें। प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने अपनी सफाई दी है। दिल्ली पुलिस लगातार ये कह रही है कि वीडियो रिकॉर्डिंग दिल्ली पुलिस की तरफ से भी हो रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग आम जनता भी कर रही है और जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। 40 से 50 लोगों के घायल होने की खबर और 12 साल की बच्ची के साथ मारपीट की खबर गलत है। ये जो तस्वीरें इस समय आप दोपहर की देख रहे हैं ये संसद भवन परिसर के पास की तस्वीरें हैं। संसद भवन परिसर में जब ये खबर आई कि प्रदर्शनकारी रेल भवन तक पहुंच गए हैं तो सभी दरवाजों को न केवल बंद किया गया, सुरक्षाकर्मी दौड़ते हुए गए, उन्होंने बैरिकेड लगाए। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये क्यूआरटी क्विक रिएक्शन टीम, क्योंकि अंदेशा यह था कि प्रदर्शनकारियों के बीच कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो हिंसा को अंजाम दे सकते हैं और इस आंदोलन का फायदा उठाने का की कोशिश कर सकते हैं। हिमांशु मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अंशुल सिंह मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं। अंशुल, दिल्ली पुलिस ने अपनी सफाई में क्या बातें बताई हैं?
5: जी, अभी से कुछ देर पहले जब हम जंतर मंतर पर मौजूद थे तो हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस की जो टीम थी वो लगातार कांग्रेस जनता पार्टी के लीडर्स से सुबह से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पेज कहाँ फंसा? पेज एक्चुअली यहाँ फंसा, जो नेता थे कांग्रेस जनता पार्टी के, उनको समझाने के बाद भी जो प्रोटेस्टर्स आज मौजूद हुए थे वहाँ पे, जो प्रोटेस्टर्स आए थे वो किसी भी तरह से इनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे, जिसके वजह से कहीं ना कहीं जो सड़कें हैं, जो पार्लियामेंट की तरफ सड़कें जाती हैं, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है, वहां पे थोड़ी थोड़ी बहुत जो है टेंशन का माहौल बढ़ गया था, लेकिन उसके बाद पुलिस ने हल्का फोर्स यूज करके वहां से लोगों को डिस्पर्स कर दिया है। जहां एक तरफ ये बताया जा रहा था कि पूरे जंतर मंतर को खाली करा दिया गया है, वहीं दिल्ली पुलिस ने अब ये क्लैरिफाई किया है कि जहां स्टेज लगा था वो जगह कहीं ना कहीं खाली है, बट उसके अलावा इन प्रदर्शनकारियों को बैठने के लिए अभी भी दिल्ली पुलिस ने एक जगह दे दी है और अपनी सफाई में एक बयान अभी एक्स पर पोस्ट किया है।
0: अंशुल रहिए मेरे साथ, दिल्ली पुलिस ने इस बयान में क्या कहा? जो पत्थरबाजी हुई है उसमें कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, दिल्ली पुलिस का क्या कहना है हम आपको वो भी सुनवाते हैं।
6: ले चलो, आग पे लगी प्यास, मतलब रोक रहे थे आप?
7: हम प्रदर्शन पर रोक रहे थे, बैरिकेड के खड़े थे, सामने से पत्थर लगा दिए, पत्थर मार दिए।
6: ले चलो, आग पे लगी प्यास, मतलब रोक रहे थे आप?
7: हम प्रदर्शन पर रोक रहे थे, बैरिकेड के खड़े थे, सामने से पत्थर लगा दिए, पत्थर मार दिए।
6: ले चलो, आग पे लगी प्यास, मतलब रोक रहे थे।
0: इसी बात का डर था कि छात्रों के बीच कुछ असामाजिक तत्व भी आ सकते हैं और वो हिंसा फैला सकते हैं, और इसीलिए पुलिस ने अपनी कार्रवाई की थी। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर, लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोफा।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
2: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
3: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
1: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
4: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: वेट लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: सहयोग डेलीगेशन ने भी कहा कि उन्होंने सभी से कहा है कि वो शांति बनाए रखें। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी, ताजा जानकारी के साथ क्या कहा?
1: देखिए बिल्कुल, सीजेपी डेलीगेशन की तरफ से जो मेमोरेंडम जो ज्ञापन दिया गया था स्वास्थ्य मंत्री को, उस ज्ञापन को स्वास्थ्य मंत्री ने लिया भी है और साथ ही साथ जो दोनों प्रतिनिधि गए थे उनको पूरी उनकी बात को सुना, सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई है। सीजेपी के जो प्रतिनिधि मंडल है इसमें विश्वास है कि सरकार हमारी बातों पर विश्वास करेगी, इस तरीके की चीजें उन्होंने इस मुलाकात के दौरान जेपी नड्डा जो स्वास्थ्य मंत्री है उनको कहा। उसके साथ साथ जेपी नड्डा ये भी कहा कि आप अपने स्थान पर वापस पहुंचकर हम वापस पहुंचे और सभी समर्थकों से अनुरोध करें कि वो शांति को बनाए रखें। तो एक तरीके से ये साफ हो गया है कि अब जो प्रोटेस्ट है उसमें किसी भी तरीके की कोई ऐसी चीज नहीं है। ज्ञापन सरकार की तरफ सरकार को दे दिया गया है, सरकार ने आश्वासन दिया है कि हम जो भी बातचीत है जो भी मांग है उस पर सरकार जो है विचार करेगी। और उसके साथ साथ दोनों ही प्रतिनिधि मंडल से सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई है और दोनों ही प्रतिनिधि मंडल के जो सदस्य हैं उन्होंने ये भी कहा है कि वो वापस जाने के बाद अपने जितने समर्थक हैं उनसे कहेंगे शांति को बनाए रखें।
0: रहिए मेरे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, केंद्र सरकार ने, सूत्रों ने यह बताया है कि केंद्र सरकार भी अब एक औपचारिक बयान जारी करेगी। सरकार एक आधिकारिक बयान जारी करेगी जो बातचीत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की हुई है सौरभ दास और आशुतोष रानका जो सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल के दो सदस्य उनसे मिले थे। मुलाकात में क्या बात हुई, छात्रों जो सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता हैं नेता हैं उन्होंने क्या कहा और सरकार का इस पर क्या उत्तर है? सरकार इस पर एक आधिकारिक बयान जारी करेगी क्योंकि हिमांशु ये जो मांग की जा रही है कि स्वास्थ्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र लिया जाना चाहिए, सीजेपी उन्हें जिम्मेदार मान रही है पेपर लीक के लिए, सरकार का इस पर मत बिल्कुल अलग है हिमांशु?
1: देखिए बिल्कुल, सरकार का मत बिल्कुल अलग है क्योंकि अगर इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का लेना होता तो जब ये लोग धरने पे बैठे थे अनशन पे बैठे थे तब हो गया होता, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान क्योंकि शिक्षा मंत्री हैं और पूरा नीट एग्जाम जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर आता है। नीट एग्जाम को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी जो है वो एजुकेशन मंत्रालय और एनटीए की है। तो ऐसे में इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जो सीजेपी के दो प्रतिनिधि थे सौरभ दास और आशुतोष, इनसे मुलाकात भी जो है वो स्वास्थ्य मंत्री ने की है। तो ये साफ हो जाता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जो भी थी वो इस पूरे ज्ञापन में नहीं है। सरकार से जो मांगे की गई है सीजेपी के द्वारा ज्ञापन में उनके ऊपर सरकार विचार कर रही है और जल्द ही जो भी फैसला होगा वो सरकार की तरफ से बता भी दिया जाएगा। हाँ, दोनों ही प्रतिनिधि ने कहा कि हम वापस जाएंगे तो अपने जो भी समर्थक हैं उनसे कहेंगे कि शांति को बनाए रखें। सरकार की तरफ से एक विस्तार के अंदर जो है इसको लेकर एक बयान जो है वो जारी किया जाएगा।
0: हिमांशु आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। हालांकि दिल्ली की कई सड़कें तो इस समय खाली हो गई हैं और खासतौर पर संसद के आसपास की सड़कें, लेकिन दिल्ली के कनॉट प्लेस के इलाके में सीजेपी के प्रदर्शन के बाद इस समय जबरदस्त ट्रैफिक जाम है। प्रदर्शन के कारण लगे ट्रैफिक जाम में सैकड़ों गाड़ियां इस समय फंसी हुई हैं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, दफ्तरों से घर जाते समय लोग या बाजार से कनॉट प्लेस में शॉपिंग करके वापस जाते लोग आते लोग वो अब इस जबरदस्त ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं, जैसा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दरअसल कई सड़कों को उस समय बंद किया गया था, कुछ ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया था। अब जब वो ट्रैफिक खोला गया है नई दिल्ली के इलाकों में, क्योंकि संसद भवन परिसर के आसपास कर्तव्य भवन

0: कर्तव्य पथ पर हम लोग खड़े हुए हैं और अभी यहाँ पे स्थिति जो है आप कह लीजिए कि यातायात जो है वो चालू हो गया है। स्थिति यहाँ पे ये है कि प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है, लेकिन 2 घंटे पहले यहाँ पे तस्वीर बेहद अलग थी। तमाम प्रदर्शनकारी इन लॉन्स में पीछे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे भरे हुए थे, और उसके अलावा खाकी का जो आपको तैनाती दिख रही है बिल्कुल एक्शन में दिल्ली पुलिस और अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे थे। एंटी राइड व्हीकल्स पीछे और तमाम दिल्ली पुलिस के बसें यहाँ पे तैनात थी, लेकिन अब वो खाली करा दिया गया है। यातायात यहाँ पे चल रहा है, हालांकि पुलिस बसेस की तैनाती अभी भी यहाँ पे है। एक हाई अलर्ट मोड में यहाँ पे पुलिस, पीछे हमारे राष्ट्रपति भवन है, हाई अलर्ट मोड में पुलिस नजर आ रही है। बैरिकेडिंग यहाँ पे की गई है और किसी को भी रुकने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स और जितनी भी सुरक्षा बलों की टुकड़ियां थी उन्होंने यहाँ पे रेल भवन से लेके एयरफोर्स भवन तक, राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक जो फोर्स की तैनाती थी उसने प्रदर्शनकारियों को यहाँ एरिया से, पूरे इस पार्लियामेंट के परिसर के आसपास के इलाके से खदेड़ा, और लगभग 3 घंटे में अब जो स्थिति यहाँ पे वो नियंत्रण में आई है। कैमरा पर्सन लोकेंद्र के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली। आज
1: इस समय तो स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन कुछ समय पहले तक अंदेशा इस बात का था कि एकाएक जब बैरिकेड को पार करके भीड़ जब आगे बढ़ी और संसद भवन परिसर के समीप पहुंचने लगी, रेल भवन के पास पहुंच गई, जब रेल भवन के पास प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा था, तब स्थिति तनावपूर्ण थी। इस समय नियंत्रण में है, प्रदर्शनकारी लौट गए हैं। ग्राउंड जीरो पर जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी वहां मौजूद हैं, देखिए उनकी ये रिपोर्ट।
2: मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं, जो कि रफी मार्ग है, जो कि रेल भवन से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। कुछ घंटे पहले यहां पर तमाम प्रदर्शनकारी मौजूद थे, दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के द्वारा इस पूरे इलाके को अब खाली करा लिया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो सामने की तस्वीर आप देख रहे हैं ये मेट्रो स्टेशन केंद्रीय सचिवालय का 3 नंबर है और यहाँ से अब आवाजाही शुरू हो गई है। इसके साथ ही यहाँ पर जो आगे की तरफ रास्ता जाता है, ये सामने जो चौराहा आप देख रहे हैं ये चौराहा है रेल भवन का, और रेल भवन कुछ देर पहले जो बैरिकेडिंग लगी हुई है पूरी तरीके से, यहाँ पर बहुत सारे जो प्रोटेस्टर्स थे प्रदर्शनकारी वो मौजूद थे। इसके साथ ही अब सामान्य आवाजाही इस इलाके में कर दी गई है पुलिस के द्वारा, अब प्रदर्शनकारी पूरी तरीके से यहाँ पर हटा लिए गए हैं। मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4 इसको पूरी तरीके से खोल दिया गया है केंद्रीय सचिवालय का, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान यहाँ पर लगे हुए हैं। इसके साथ ही जो लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं उनको आने जाने दिया जा रहा है। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि केंद्रीय सचिवालय का ये जो गेट है यहाँ पर CISF के जवानों को भी लगाया गया है, इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो भी लगाए गए हैं। कुछ घंटे पहले इसको बंद किया गया था जिससे कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर ना आ सके, लेकिन अब स्थिति काफ़ी सामान्य है और पूरी तरीके से मेट्रो स्टेशन को खोल दिया गया है। अब जो अलग अलग इलाके हैं, जो रास्ते हैं, जो वायुसेना भवन की तरफ रास्ता जाता है उसको भी पूरी तरीके से खोला गया है, कर्तव्य पथ से भी लोगों को हटा लिया गया और वो पूरा रास्ता जो है अब खाली हो चुका है। तो इस पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने खाली करा लिया है। कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग यहाँ पर पहुँचे थे प्रदर्शन करने के लिए उनको पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लेने के बाद उनको आगे जा कर के जो मेट्रो स्टेशन दिल्ली NCR से जो लोग आए थे उनको वहाँ पर कई लोगों को छोड़ा भी गया है। इसके साथ साथ लोगों को मेट्रो में बैठा करके यहाँ से भेजा गया है। तो अब स्थिति काफी सामान्य है इस पूरे इलाके।
1: और अभी अभी खबर आ रही है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP Nadda की तरफ से एक बयान सामने आया है। JP Nadda ने कहा सुबह बातचीत का प्रस्ताव उनके पास आया था। JP Nadda का बयान, जैसे ही सुबह बातचीत का प्रस्ताव आया उन्होंने उसे स्वीकारा। 11:50 सुबह 11:50 से बातचीत जारी है छात्रों के साथ। प्रदर्शनकारियों ने 4 बजे दोपहर, अब से थोड़ी देर पहले, लिखित याचिका दी है। JP Nadda का बयान, सुबह ही बातचीत का प्रस्ताव आया उन्होंने उसे तुरंत माना। 11:50 पर बातचीत शुरू हुई और अभी 4 बजे उनका ज्ञापन आया है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, तो सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बातचीत का जैसे ही प्रस्ताव आया उसे स्वीकारा गया, बातचीत चल रही है, ज्ञापन में क्या क्या बिंदु हैं और उस पर सरकार का क्या मत है?
3: देखिए, बिल्कुल सरकार का

0: है जो ज्ञापन के अंदर मुख्य तीन बिंदु है, उन तीनों ही बिंदुओं पे सरकार का ये कहना है, सरकार इस पर बातचीत करेगी लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से जो है अपना जो प्रदर्शन है, प्रोटेस्ट है, उसको समाप्त कीजिए, और बहुत ही स्वादपूर्ण माहौल में बातचीत हुई, एक लिखित ज्ञापन जो है 4 बजे सौरभ के द्वारा और साथ ही आदित्य के द्वारा जो है वो जेपी नड्डा को दिया गया है, जो स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने बातचीत की और उसके बाद ये आश्वासन दिया सरकार से जो संभव होगा वो किया जाएगा। लेकिन स्वार्थ बातचीत के आधार पर उन्होंने ये भी कहा कि आप इस प्रोटेस्ट को जो है वो समाप्त कर दीजिए और शांति को बनाए रखिए।
1: शांति बनाए रखिए, अपना जो प्रोटेस्ट है उसको समाप्त कीजिए। और खबर यह भी आ रही है समय हिमांशु कि संभवतः यह बात मान ली गई है, क्योंकि अभी अरविंद ओझा हमारे सहयोगी बता रहे थे कि वो जो मंच जंतर मंतर पर लगाया गया था कांग्रेस जनता पार्टी का, वो मंच अब हटाया जा रहा है। तो इसका मतलब बातचीत सकारात्मक रही और दोनों पक्ष एक दूसरे की बात मानकर अब उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
0: देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एश्योरेंस दिया है, जो उनकी मांगे हैं सरकार उस पर विचार करेगी और जो भी संभव होगा वो किया जाएगा। जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उनके इस्तीफे की मांग की है, 1 करोड़ पे उन लोगों को राहत देने की बात की है जिन बच्चों ने जो है सुसाइड किया है, तो इन चीजों पर, तीनों मांगों पर विचार सरकार करेगी। जहां तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात है उसको सरकार नहीं मानेगी, लेकिन बाकी जो दो मांगे हैं उनके ऊपर सरकार विचार कर सकती है, और यही आश्वासन जो है वो सरकार के द्वारा दिया गया है। और ये भी कहा गया कि शांति को बनाए रखें, जो भी धरना प्रदर्शन है उसको आप समाप्त कीजिए, सरकार ने आपकी बात को सुना है, सरकार जो है जो भी संभव हो सकेगा
1: जी
0: वो कार्रवाई आगे की जाएगी। और ये भी कहा गया कि सरकार जो है आगे से इस तरीके के पेपर लीक ना हो, इसके लिए जो भी ठोस कदम उठा ले सरकार वो उठा रही है।
1: निश्चित तौर पर, क्योंकि पेपर लीक कभी भी स्वीकारा नहीं जा सकता। आप रहिए मेरे साथ हिमांशु, विस्तार से बात करेंगे और इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके समर्थक, कई और लोग, यहां तक कि विपक्ष के कई राजनीतिक दल सड़कों पर उतर आए थे। संसद भवन के आसपास इस समय सड़कें खाली हैं। संसद से विजय चौक तक का इलाका इस समय सामान्य है। मेरी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल इस समय ग्राउंड जीरो पर है, उन्होंने अभी अभी ये रिपोर्ट भेजी है, सुनिए।
2: संसद भवन, ये जो आपको रास्ता मेरे पीछे नजर आ रहा है, आपको पीछे पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी नजर आ रही है, इस समय यहाँ पर एकदम नॉर्मल सी है। जिस तरीके के बैरिकेड्स लगाए गए थे ताकि जो प्रदर्शनकारी थे जब वो यहाँ आने की कोशिश कर रहे थे, वो सभी बैरिकेड्स को एक तरफ साइड में खड़ा कर दिया गया है। और संसद परिसर के बाहर भी जो सामान्य तौर पर जो पुलिस कर्मी होते हैं वही लोग इस समय मौजूद हैं। तो एक तरफ है संसद भवन और दूसरी तरफ है रेल भवन, जो आपको यहाँ से पीछे नजर आएगा। तो ये सारी रोड जिसके ऊपर काफी भारी तादाद के अंदर पुलिसकर्मी मौजूद थे, वो सब अब एकदम साफ कर दिया गया है। और बैरिकेड्स जिनको लगाया गया था ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं ताकि वो संसद तक ना पहुंच सके, उन सब बैरिकेड्स को अब साइड में कर दिया गया है। ये जो सड़क आपको यहाँ नजर आ रही है संसद के ठीक बाहर, ये सड़क है, ये विजय चौक का इलाका है, यहाँ पर इस समय स्थिति एकदम नॉर्मल है। ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक।
1: तो धीरे धीरे राजधानी दिल्ली में स्थिति सामान्य होती जा रही है और ये सामान्य स्थिति जेपी नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, और सौरभ दास और आशुतोष रानका, कांग्रेस जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि मंडल के सदस्य थे, वो मिले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ। जेपी नड्डा की तरफ से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से जो बयान आया है उसमें कहा गया है कि आज सवेरे ही प्रतिनिधि मंडल ने बातचीत के लिए समय मांगा, 11:50 पर बातचीत शुरू हुई, बातचीत जारी है, शाम 4 बजे ज्ञापन सौंपा गया और सरकार उस पर विचार कर रही है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत रही और अब प्रदर्शनकारी अपने घरों की ओर निकल रहे हैं। इस खबर पर रहेगी नजर, लेकिन फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd. To the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC. This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
7: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
6: The Daily and more. Available on over 200 devices, so you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere.

0: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
1: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
2: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
0: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
3: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: यूपी चुनाव से पहले योगी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं, जहां मुद्दा अपराध और विकास का है और निशाने पर अखिलेश यादव हैं।
5: 2017 के पहले कौन जिला बचा था जहां दंगे न हुए हो, जहां कर्फ्यू न लगा हो? मुजफ्फरनगर का दंगा हो, सहारनपुर का दंगा हो, मेरठ का दंगा हो, बुलंदशहर का दंगा हो, अलीगढ़ के दंगे हो, कौन जिला ऐसा बचा था जहां दंगे न हो? और कौन जनपद ऐसा बचा था जहां बेटी और व्यापारी सुरक्षित रही हो?
4: योगी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की खामियां बता रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं।
5: यात्रा के पहले तो बबुआ 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 5 उसके बाद जिम से फुर्सत मिली तो फिर उनकी अपनी महफिल बैठ जाती थी।
4: वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने ललिता गौतम के परिवार वालों से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही सीएम योगी ने जांच में लापरवाही बरतने वालों पर भी सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललिता गौतम के परिवार वालों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का निर्देश दिया। साथ ही मृतका के पिता और चाचा को एक एक मुख्यमंत्री आवास उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। मई महीने में हुई ललिता गौतम की मौत को लेकर विपक्ष लगातार योगी सरकार को घेर रहा था, जिसके बीच आज योगी आदित्यनाथ ने पीड़ितों से मुलाकात की। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

त्योहारों का मौसम आते ही हर घर में पकवानों की खुशबू और खुशियों का माहौल बनने लगता है। मध्यम वर्गीय परिवारों में उत्सव की तैयारियां बजट को देखकर तय होती हैं। लेकिन इस बार त्योहारों की मिठास पर महंगाई का साया मंडराने लगा है। आम आदमी की रसोई का बजट एक बार फिर से दबाव में आता दिखाई दे रहा है। दरअसल त्योहारी सीजन से ठीक पहले गेहूं और खाने के तेल की कीमतों में तेजी के संकेत मिल रहे हैं। वैश्विक बाजार से लेकर देश की मंडियों तक इसके असर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीते एक महीने में घरेलू बाजार में गेहूं की कीमतें 8% से ज्यादा बढ़ी हैं। वैश्विक स्तर पर गेहूं उत्पादन वाले कुछ इलाकों में सप्लाई को लेकर चिंता से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ी हैं, जिससे ग्लोबल मार्केट में गेहूं वायदा करीब 5% तक उछलकर 2 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे इन बदलावों का असर देश की मंडियों में भी दिखाई दे रहा है और इंदौर मंडी में पिछले एक महीने में गेहूं के दाम करीब 8.44% तक बढ़े हैं। वहीं दिल्ली, कानपुर और कोटा जैसी प्रमुख मंडियों में गेहूं की कीमतें औसतन 3.5% से 4% तक बढ़ी हैं। गेहूं की कीमतों में आई इस तेजी की वजह से केवल अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हलचल नहीं है, मौसम का बदलता मिजाज भी देश में गेहूं उत्पादन के लिए चुनौती बन रहा है। बढ़ते तापमान और बेमौसम बारिश को लेकर चिंताओं के बीच बाजार की नज़र आने वाले रबी सीजन के उत्पादन अनुमान पर टिकी हुई है। महंगाई का असर केवल रोटी तक सीमित नहीं है, पूरी रसोई का स्वाद तय करने वाला खाने का तेल भी दबाव में नजर आ रहा है। कंपनियों और कारोबारियों को आने वाले महीनों में मांग बढ़ने की उम्मीद है, जिससे कीमतों में तेजी बनी रह सकती है। बाजार से जुड़े जानकारों के मुताबिक इस साल सोयाबीन की बुवाई का रकबा घटने की आशंका जताई जा रही है। वैश्विक बाजार में पाम ऑयल की सप्लाई और कीमतों को लेकर चिंताएं बनी हुई है और बायोफ्यूल की मांग बढ़ने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय वनस्पति तेल बाजार पर दबाव देखा जा रहा है। रुपये में कमजोरी की वजह से खाद्य तेल आयात करने वाली कंपनियों की लागत भी बढ़ी है। जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में खाद्य तेलों की कीमतों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। फिलहाल सूरजमुखी तेल की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। सोयाबीन तेल में भी मजबूती का रुख देखा जा रहा है, जबकि पाम ऑयल में हाल के दिनों में खरीदारी बढ़ने के संकेत मिले हैं। यानी रसोई का बजट आने वाले दिनों में और दबाव में आ सकता है। साफ है कि वैश्विक बाजार की हलचल और मौसम से जुड़ी चिंताओं ने खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर असर डालना शुरू कर दिया है। ऐसे में त्योहारी सीजन से पहले आम ग्राहकों की नज़र गेहूं और खाने के तेल के भाव पर टिकी रहेगी। आज तक ब्यूरो।

0: प्रदर्शनकारियों से बातचीत के बाद नड्डा का बयान, सुबह आया था बातचीत का प्रस्ताव, अच्छे माहौल में हुई बात, धरना खत्म करने की अपील, सीजेपी नेताओं ने जताया अपनी मांगे पूरी होने का भरोसा। हंगामे के बाद अब दिल्ली में हालात लगभग सामान्य, संसद भवन के आसपास पूरी तरह से काबू में स्थिति, बच्ची से मारपीट और 50 लोगों के घायल होने की खबर का पुलिस ने किया खंडन। मानसून सत्र के पहले ही दिन मूसलाधार सियासत, पेपर लीक और चढ़ावा चोरी पर बरसा विपक्ष, हंगामे के चलते दोनों सदन कल के लिए स्थगित। चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, सीजीआई ने दिया आदेश, एसआईटी का हो पुनर्गठन, सीनियर अधिकारी की अगुवाई में हो जांच, अब अगले हफ्ते हियरिंग। कश्मीर में नापाक साजिश नाकाम, बारामुल्ला में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी, बड़ी मात्रा में हथियार बरामद।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल दिल्ली में सड़क से संसद तक चल रहे सियासी दंगल पर। दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सीजेपी के प्रदर्शनकारियों ने और प्रतिनिधियों की केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात हो चुकी है। सीजेपी प्रतिनिधि दल ने जेपी नड्डा को अपना मांग पत्र सौंप दिया है और इस पर सरकार की ओर से बयान जारी किया गया है। जेपी नड्डा ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों ने सरकार को अप्रोच किया। सुबह 11:50 पर यह बातचीत चल रही है। मौखिक चर्चा के बाद शाम को 4 बजे लिखित अर्जी दी गई है, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने धरना खत्म करने का अनुरोध किया गया है। इससे पहले सीजेपी की ओर से जेपी नड्डा से मिलने के लिए लोग गए थे और लोगों का कहना है कि सरकार ने उनकी बातें सहानुभूतिपूर्वक सुनी है। सीजेपी ने उम्मीद जताई है कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी और अब वो समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील भी करेंगे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहां पर सीजेपी का प्रतिनिधि मंडल जेपी नड्डा से मिला और उन्हें अपना पत्र उन्होंने सौंपा। जो मांगों का पत्र है वो वहां पर सौंपा गया है। दरअसल संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन सीजेपी ने संसद चलो के नारे के साथ मार्च शुरू किया था तो सड़क पर अफरा तफरी के हालात दिखाई दिए। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई। प्रदर्शनकारी और पत्थरबाजी से लेकर लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले तक दागने की नौबत आ गई, क्योंकि प्रदर्शनकारी संसद भवन की ओर बढ़ रहे थे। इस बीच केंद्र सरकार के मंत्रियों से लेकर अफसरों तक की मुलाकातें चलती रही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की दिल्ली पुलिस कमिश्नर और आईबी चीफ के साथ भी मुलाकात हुई। उधर संसद के अंदर विपक्षी दल अपने अपने मुद्दों को लेकर आक्रामक हो चुके थे। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से लेकर परिसीमन और नीट पेपर लीक तक तमाम मुद्दों पर विपक्षी नेताओं ने सरकार को घेरने की कोशिश की। फिलहाल पहले ही दिन संसद में कोई कामकाज नहीं हो सका है। पहला दिन प्रदर्शन के नाम चढ़ गया। सुबह से शाम तक दिल्ली में क्या क्या हुआ है, आंदोलन के जंतर को सियासत का मंतर कैसे मिल चुका है, इसी से जुड़े सवालों पर हम दंगल में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं।
1: संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ तो सरकार की तैयारी कुछ, विपक्ष का प्लान कुछ और। सरकार सदन में जरूरी मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद लगाए बैठी रही। विपक्ष का एक पांव सदन में, दूसरा जंतर मंतर पर था। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चलता है। अब जीत दीप के अनशन पर थे, आज तोड़ दिया और संसद मार्च शुरू हो गया। जंतर मंतर की सड़कों पर आसमान से दिखती तस्वीर में अच्छे खासे प्रदर्शनकारी दिखते हैं। भीड़ आगे बढ़ी, बैरिकेड से सामना हुआ, बैरिकेड के पीछे पुलिस ने रोका, कुछ पत्थर चले तो पुलिस ने लाठी चार्ज किया। कहीं लाठी कहीं आंसू गैस, प्रदर्शनकारी सबका सामना करते हुए संसद की चार दीवारी से चंद मीटर दूर पहुंच गए। संसद की सुरक्षा बढ़ गई, QRT से लेकर दमकल वाले तक मौजूद थे। CISF के जवान फायरिंग पोजीशन ले चुके थे। उधर 2-3 घंटे तक संसद भवन के आसपास की सड़कों पर प्रदर्शनकारी जमे रहे, पुलिस से आमना सामना, रोक टोक चलती रही। संसद की कार्रवाई शुरू होती उससे पहले PM मोदी आए। 28 साल के नौजवान बनाम 56 साल के नौजवान वाला तंज कसा और सकारात्मक वातावरण की उम्मीद लगाकर चले गए। लेकिन संसद तो संसद ठहरी, दोनों सदन गूंज उठे। एक बार स्थगन, दो बार स्थगन, तीन बार, चौथी बार स्थगित, पांचवी बार में दोनों सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई।
0: तो अभी भी सीजेपी की तरफ से और छात्रों की तरफ से मांग रखी गई है और वो अभी भी अपने मांग पर अड़ी है। उनका कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और उसके साथ साथ बातचीत करने के लिए भी सरकार के साथ तैयार है। अब ऐसे में बातचीत कब, कैसे, किस तरीके से होगी, इस बात को लेकर अभी भी संदिग्धता बनी हुई है। तो क्या सरकार इनसे बातचीत करेगी, क्योंकि जेपी नड्डा उन्हें कह चुके हैं कि हम उच्च स्तरीय बातचीत करेंगे। किस तरीके से बातचीत होगी उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से चर्चा में शामिल होंगे, संजीव झा आम आदमी पार्टी की तरफ से अपनी भूमिका इस पर रखेंगे और धीरेन्द्र कुमार एनडीए में एलजेपी की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे और उसके साथ साथ विजय त्रिवेदी और आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार और एनालिस्ट भी इस चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले शुरुआत सरकार की तरफ से क्या रुख है प्रदीप भंडारी, लेकिन उससे पहले तीन सवाल भी मैं आपके सामने रख लूं, क्योंकि आज दिन भर जिस तरीके से आंदोलन रहा सुबह से लगता है कि सरकार को इस बात का अंदेशा नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर यंगस्टर्स युवा पीढ़ी सड़क पर उतर कर आएगी और उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज भी किया गया, इन सबको लेकर तीन सवाल आपके सामने। पहला सवाल, क्या सीजेपी आंदोलन के बाद पेपर लीक की समस्या का समाधान होने की उम्मीद बढ़ी है क्योंकि सरकार ने बातचीत की तैयारी दिखाई है? दूसरा सवाल, क्या आंदोलन के पहले ही दिन सीजेपी से मुलाकात कर सरकार ने विपक्ष का एजेंडा परवान नहीं चढ़ने दिया है, क्योंकि विपक्ष ने भी ये मुद्दा सदन के भीतर उठाने की कोशिश की। सोनम वांगचुक ने भी सुबह 6:30 बजे जो बयान जारी किया था उसमें यह मांग रखी थी कि सदन के भीतर भी इस पर चर्चा होनी चाहिए। तीसरा सवाल, क्या विपक्ष के मुद्दों के बीच सरकार जरूरी बिल पास करा पाएगी? एक बिल तो सरकार इंट्रोड्यूस कर चुकी है लेकिन शोर शराबे के बीच उस पर चर्चा नहीं हो पाई, आखिरकार कल तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी है। प्रदीप भंडारी चर्चा शुरू करते हैं, सरकार की तरफ से क्या बातचीत की जाएगी, किस तरीके से बातचीत होगी, क्योंकि जो डिमांड उनकी नजर आ रही है, जो खत रखा गया है सरकार के सामने, उसमें तो साफ नजर आता है कि सबसे पहले तो कहा गया है कि सोनम वांगचुक की रिहाई की जाए, उन्हें जहां जाना है वहां जाने दिया जाए। सरकार कह रही है हमने तो उन्हें कन्फाइन नहीं किया लेकिन अभी तक वो सफदरजंग अस्पताल में बंद है। दूसरी मांग सबसे बड़ी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और उसके साथ साथ 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन जो नीट एस्पायरेंट्स हैं जिन्होंने सुसाइड कमिट किया हुआ है उनके घर वालों के लिए, उनके लिए 1 करोड़ का कंपनसेशन, 3 प्रमुख मांगे इसमें साफ नजर आती है। प्रदीप भंडारी
2: देखिए साहिल जी, लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करने का सबको अधिकार है। सरकार बातचीत कर रही है जो आपके स्क्रीन पर फोटो से भी क्लियर होता है, परंतु प्रोटेस्ट की आड़ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का छोटा रिचार्ज अगर पत्थरबाजी, अराजकता और लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र करेगा तो वो उस पर भी सवाल उठेंगे। जैसे जरा एक जरा ध्यान अपना इस तरफ आकर्षित करिए, क्या नीट का लेना इस नारे से कुछ है कि संसद भवन उखाड़ फेंकेंगे? ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के छोटे रिचार्ज द्वारा वहां पे स्टेटमेंट दिया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या इसका छात्रों से लेना देना है? दूसरा,
3: बिल्कुल पीटेंगे, हम भूल जाएंगे कि हम एक संवैधानिक देश में रहते हैं। बिल्कुल, हम एक संवैधानिक देश में।
2: ये दूसरा, प्रधानमंत्री को पीटेंगे, क्या ये नारा नीट से लेना देना इसका है? तीसरा, कि बस नाम रहेगा अल्लाह का, इसका नीट से लेना देना क्या है? चौथा, उमर खालिद को जेल में रखना गलत है, इसका नीट से लेना देना क्या है? पांचवा, सीता के पति का नाम लेकर प्रभु श्रीराम का अपमान करना, इसका क्या लेना देना है नीट से? ये सवाल मैं ही नहीं पूछ रहा, इस देश के करोड़ों वो युवा भी पूछ रहे हैं साहिल जी, जो इस वक्त देश को आगे बढ़ाने के लिए स्काई रूट जैसे बड़े बड़े स्टार्टअप्स को क्रिएट कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, जरा एक चैट के ऊपर अपना नजर डालिए, ये ग्रुप है चलो संसद नाम से, ये 20 जुलाई के लिए बना गया। इसमें कहा जाता है भाई अगर किसी की मौत भी होती है तो होने दो, इससे सरकार पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। ये अभिजीत दीप के जो आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया विंग के हैं, आज तो वो कहीं नहीं दिखे प्रोटेस्ट में, कहीं छुपके बैठे थे। इस तरीके के युवाओं को क्यों वो जानबूझकर मौत के घाट उतारना चाह रहे हैं? क्या इसमें कोई बड़ा एक साजिश है? इसकी भी बात होनी चाहिए। दूसरी, आप थोड़ा एक और चीज के तरफ गौर करिए, एक और ग्रुप बना जिस ग्रुप का नाम है चलो संसद कोऑर्डिनेशन, आज की तारीख में। इसमें कहा जाता है कि लातों के बूत बातों से नहीं मानेंगे, पर्सनली आई थिंक वी शुड स्विच टू नेपाल साइड प्रोटेस्ट, ये कहा गया कल के दिन पे 2:50 पे। तो साहिल जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं इसका नीट और एडुकेशन से क्या लेना देना है? और मैं इसलिए इसको कह रहा हूं क्योंकि जब आपको याद आया होगा कि लद्दाख के अंदर कुछ प्रोटेस्ट हुआ था, मैं 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं।
0: प्रदीप भंडारी
2: 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर रहा
0: हूं। मैंने जो सवाल पूछा, एक मिनट, प्लीज प्लीज प्लीज, आपकी बात सुनी, आप
4: ये मॉडस ऑपरेंडी लद्दाख के अंदर प्रयास किया गया था नेपाल जैसे प्रोटेस्ट का करने का।
0: जो मॉडस ऑपरेंडी है आपके हाथ में पुलिस है, आपके हाथ में आईबी है, आपके हाथ में जांच एजेंसियां हैं, आप जांच करिए, जिसको आपको सजा देनी है आप दे दीजिएगा। अभिजीत दीप के जहां पर बैठे हुए हैं वहां पर जो हुआ वो आज पूरे चैनल्स पर और सब मीडिया के सामने दिखाई दिया था। मुद्दा वो नहीं,
4: समर्थन कर रहे हैं
0: आप, जो तस्वीर यहां पर चलाई गई थी उस तस्वीर में, जो तस्वीर आज आपने दिखाई उस तस्वीर में जो चिट्ठी दी गई थी जेपी नड्डा जी को, वो चिट्ठी के आधार पर मैंने आपको तीन सवाल पूछे। देखिए सीजेपी वाले कुछ बोल रहे थे,
5: जी के पास गए, उन्होंने ही बुलाया था।
0: दरअसल वो कह रहे थे कि जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। मेरा सवाल इसी बात को लेकर था, तीन मांगे रखी गई है, इन तीन मांगों को लेकर सरकार क्या करेगी? जो आसपास बाकी चीजें हुई है, आपकी पुलिस मेरे ख्याल से सक्षम है, अगर आपको लगता है गलत है कार्रवाई करिएगा, अदालत में जाएंगे, मामला लड़ा जाएगा और उस पर जो होगा वो होगा। आज का चर्चा का विषय है जो छात्रों की तरफ से मांगी रखी गई, उस पर सरकार क्या करेगी?
4: आज के ही प्रोटेस्ट के अंदर इस तरीके के नारे हमने देखे, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के हित में हर जानकारी को देने का कार्य मेरा कर्तव्य बनता है। अब आपने बात करी मांगों की, अभी जो आपने 2 सेकंड की बाइट प्ले करी उनके स्पोक्सपर्सन द्वारा, तो उन्होंने कहा कि सरकार ने ही हमें बुलाया था बातचीत करने
0: के लिए। सुना देंगे बाइट, वो आधी बाइट सुनाई गई है, पूरी सुना देंगे बाइट, दोबारा सुना देंगे जी।
4: जितना मैंने स्टेटमेंट सुना उसमें स्टेटमेंट में कहा गया कि सरकार ने ही हमें बुलाया था बातचीत करने के लिए, तो सरकार बातचीत कर रही है। सरकार तो पिछले 18 दिन से प्रोटेस्ट करने का अधिकार भी दे रहे हैं, परंतु तो सरकार के
5: देखिए, दो बार हम लोग जेपी नड्डा जी से मिले, हम लोग 12 बजे यहाँ पे आए थे एंड हम लोग की मीटिंग करीब 2:15-2:30 बजे हुई एंड मीटिंग में हम लोगों ने यही बोला कि हमारे तीन डिमांड्स हैं। पहले कि सोनम वांगचुक जी को तुरंत रिलीज किया जाए एंड जब तक वो फॉर्मेलिटीज पूरी होती है उसमें उनको एक वीडियो बनाने का अलाउ किया जाए, वो वीडियो में यही हो कि वो अपील करे शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। नंबर टू, हमारा ये भी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन तो अब आना ही पड़ेगा, या तो उनको बर्खास्त करे कैबिनेट से या तो वो खुद रिजाइन करे। प्रोटेस्ट तब तक चालू रहेगा जब तक उनका रेजिग्नेशन नहीं आ जाता। और तीसरा, जो नीट के फैमिलीज है, जो बच्चे मर गए हैं 20 से ज्यादा, उन फैमिलीज को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। ये डिमांड्स को लेके हम जेपी नड्डा जी के पास गए, उन्होंने ही बुलाया था।
0: तो ये तीन मांगे जो मैंने यहां पर पढ़कर बताई, वही तीन मांगे सौरभ दास यहां पर बता रहे थे, सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल में वो शामिल थे और उन्होंने ये तीन मांगे जेपी नड्डा के सामने रखी हुई है। और उसके इस बीच प्रदर्शनकारियों से दिल्ली पुलिस ने अपील की है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें, जंतर मंतर के भीतर प्रदर्शन करने के लिए कहा गया है। अरविंद ओझा इस वक्त हमारे साथ में, अरविंद, इस वक्त दिल्ली की सड़कों का क्या हाल है? क्या जंतर मंतर पे प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं? क्या दिल्ली पुलिस ने वो इजाजत दी हुई है?
6: देखिए, दिल्ली जंतर मंतर पर कोई भी प्रदर्शन करता है साहिल, और 24 घंटे सालों दिन पूरे दिन जो है वहाँ पर प्रदर्शनकारी रहते हैं। लेकिन जो आज स्थिति देखने को मिली, सबसे पहले आपने सौरभ दास का जो बयान सुना होगा उसमें उन्होंने कहा कि सोनम वांगचू एक वीडियो अपील करें शांति बनाने की। युवाओं को भारी तादाद में बुला तो लिया गया दिल्ली, संसद मार्च का ऐलान हो गया, लेकिन उनको रोकेगा कौन? स्थिति ये हुई, इस वजह से शायद ऐसा लगता है कॉकरोच जनता पार्टी के जो लीडर जो मंच पर बैठे थे उनको जब ये दिखी स्थिति, अराजक स्थिति, तब उनको भय भी है, क्योंकि नई दिल्ली इलाके की बात की जाए बेहद संवेदनशील ये इलाका है। पार्लियामेंट थाने के बाहर भारी भीड़, और भीड़ की तरफ से कुछ जो पुलिस का आरोप है स्टोन पेल्टिंग भी हुई, कुछ हमारे कैमरे में भी कैद हुआ, जिसके बाद हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, टीयर गैस की सेल छोड़नी पड़ी, उसके बाद डिस्बर्स किया गया उनको कुछ दूर तक, उसके बाद नई दिल्ली इलाके की कनॉट प्लेस, रफी मार्ग।
0: अभी स्थिति क्या है दिल्ली के सड़कों पर? स्थिति अभी क्या है अरविंद, दिल्ली की सड़कों पर स्थिति क्या है?
6: देखिए, नई दिल्ली इलाके में कई जगह से प्रदर्शनकारी जो उग्र होने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको खदेड़ा जरूर गया, लेकिन जंतर मंतर पर अभी कुछ हिस्से में प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं, नई दिल्ली इलाके में घूम रहे हैं, अब बड़ी बात है कि उनको एड्रेस करने वाला नहीं है, वो किसी की सुन भी नहीं रहे। पुलिस ने कोशिश की थी, जो चंद्रशेखर रावत,
0: दिल्ली पुलिस की तरफ से शांति की अपील की गई है। प्रदर्शनकारियों को कहा गया है कि जंतर मंतर के भीतर आप प्रदर्शन कर सकते हैं। और इसी बीच और एक बड़ी खबर, धर्मेंद्र प्रधान और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक जो चल रही थी वो भी खत्म हो गई है। और इस बैठक के बाद क्या हो रहा है और सरकार किस तरीके से सोच रही है, हमारे साथ हिमांशु मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अमित शाह से मिलने गए थे, गृह मंत्री अमित शाह से मिलने गए थे, और अमित शाह से मिलने के बाद अब सरकार का रुख क्या होगा? हिमांशु, एक तरफ जेपी नड्डा से कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के लोग मिलते हैं और उसके बाद 3.5 घंटे धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह की बैठक होती है।
7: देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये बात जेपी नड्डा ने अपने ट्वीट के अंदर भी साफ कर दिया कि 11:50 से जो है वो कांग्रेस जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी था और उनकी जो भी मांगे थी उसको विस्तार पूर्वक उनको सुना गया और एक ज्ञापन जो है उनकी तरफ से जो दिया गया है उसको उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन उनकी तरफ से कोई इस तरीके का आश्वासन नहीं दिया गया कि जो उनकी मांगे हैं उसको सरकार मान लेगी। और साथ ही साथ जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि आप जो है इस धरने प्रदर्शन को जो है आप खत्म कीजिए और शांति बहाल करने में प्रशासन की सहायता कीजिए। यानी कि साफ है कि सरकार ने मुलाकात की है लेकिन अभी तक जो है वो सरकार की तरफ से इन दोनों प्रतिनिधियों को कोई भी आश्वासन जो है वो नहीं दिया गया था। सबसे बड़ी बात यह है जो तीनों मांगे हैं उनमें कहीं भी सरकार इसके लिए एग्री कर रही है नहीं कर रही है अभी तक क्लियरिटी नहीं है। लेकिन जेपी नड्डा ने एक ट्वीट करके ये जानकारी जरूर साझा कर ली है कि उनकी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में जो भी एक ज्ञापन दिया गया है वो उन्होंने लिया और उसके बाद एक विस्तृत चर्चा हुई है। क्या इन जो सीजेपी की मांग है उसको स्वीकार करा जाएगा नहीं करा जाएगा इस पर अभी तक सरकार
0: एक बड़ा मुद्दा इसमें यही रहता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग रखी गई है। क्या सरकार इस पर विचार भी कर सकती है क्योंकि इसी मसले पर दरअसल बातचीत भी हुई है सरकार के भीतर। तो ये मांग छोड़कर बाकी जो दो मांगे उस पर तो चर्चा हो सकती है लेकिन मुख्य मांग उनकी ये भी नजर आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा।
7: देखिए तीन मांगे हैं, तीन में से एक मुख्य मांग जो है वो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे की है। लेकिन सरकार इसके ऊपर जो है कहीं भी एग्री नहीं होगी क्योंकि जो मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है शिक्षा मंत्री की वो शुरू से रही है और सरकार की तरफ से इस तरीके का कोई हिंट अभी तक नहीं दिया गया है कि इस तरीके से कोई इस्तीफा।
0: फिलहाल सरकार की तरफ से कोई हिंट नहीं है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे। आलोक शर्मा जी, मुख्य मांग एक तरीके से विपक्ष के तरफ से भी और उसके साथ साथ जो प्रतिनिधिमंडल मिला है उनके तरफ से भी यही मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। हमारे संवाददाता भी कह रहे हैं कि सरकार के तरफ से इस पर फिलहाल कोई विचार नहीं है।
8: देखिए साहिल जी, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं पुलिस को भी और प्रदर्शनकारियों को भी दोनों को ही संयम बरतने की सलाह देना चाहूंगा। अपनी तरफ से निवेदन भी करना चाहूंगा कि इस तरह के कोई हालात ना बने जिसकी वजह से कहीं पर किसी का कोई जान माल का किसी भी रूप में कोई हानि हो। दूसरी चीज, अब जहां तक बात धर्मेंद्र प्रधान की है, धर्मेंद्र प्रधान पूरी तरह से जिम्मेदार हैं लेकिन सरकार जिम्मेदारी मानने को तैयार नहीं है। ये नॉन अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। ये इस सरकार में जिम्मेदारी किसी की नहीं है, केवल विश्व गुरु जो है वो सब कुछ कर रहे हैं, ब्रह्मांड को वो चला रहे हैं और जिम्मेदारी किसी की नहीं है। हालत यह है कि नीट का पेपर 2024 में भी आउट हुआ और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी गई, उसके बाद 2026 में भी आउट हुआ, 25 की भी खबरें आ रही हैं। एनटीए के ऊपर कभी आज तक एक क्लर्क को भी सस्पेंड नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि एनटीए के अंदर बीजेपी और आरएसएस के लोग भर्ती हैं, उनको भजाया कैसे जाए इसके ऊपर पूरी ताकत लगाई जाती है। अब ये देश का युवा और देश की जनता समझ चुकी है कि पूरे शिक्षा तंत्र के ऊपर आरएसएस ने अपना कब्जा कर लिया है। 152 पेपर लीक होते हैं, छात्रों की गूंज के माध्यम से देहरादून में जिस तरह का माहौल था, मैं वहीं पर मौजूद था, जिस तरह का माहौल था विद्यार्थियों के अंदर, छात्रों के अंदर पूरी तरह से आक्रोश है इस सरकार के लिए। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा कि इस सरकार की इतनी मोटी खाल हो चुकी है, ये सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। अभी हमारे बीजेपी के मित्र साथी पता नहीं क्या क्या गिनवा रहे थे। अरे भाई, आपकी सरकार है, आईटी डिपार्टमेंट से लेकर पुलिस से लेकर सब कुछ आपके पास है, आप क्यों नहीं जांच कराते? मैं तो उल्टा पूरी तरह से आरोप लगाऊंगा कि जितने ये ट्विटर्स और तमाम जो इन्होंने चीजें बताई हैं ये भाजपा ने तो नहीं चलवाई है कहीं, भाजपा ही तो ये तरह तरह के प्रोपेगेंडा नहीं चलवा रही है जितना। अरे भाई सुनिए ना, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला साहिल जी, देखिए अगर ये बीच में बोलेंगे तो मैं फिर पूरी डिबेट डिरेल कर दूंगा। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मैं मुद्दे की बात पर आना चाहता हूँ। मैं चुप हो जाता हूँ साहिल जी, मत करें। आप डिबेट कीजिए अपने।
0: नहीं, एक मिनट आलोक जी, ये सवाल यहाँ पर बीजेपी की तरफ से यह भी आरोप लगाया जा रहा है, जो आज दरअसल भीड़ दिखाई दी दिल्ली के सड़कों पर, क्या यह राजनीतिक भीड़ थी आपको लगता है? क्योंकि एक आयोजन तो आपने देहरादून में किया था या कोटा में किया था, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आयोजन किया गया था, आज की भीड़ को देखकर आपको क्या लगता है? ये बात अलग है कि जो जंतर बंतर पे स्टेज बनाया गया था वहां पर सारी राजनीतिक पार्टियों के नेता पहुंचे हुए थे, कांग्रेस पार्टी से लेकर सभी विपक्षी दलों के नेता वहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन जो भीड़ आज सड़क पर दिखाई दी उसको लेकर कांग्रेस पार्टी का आकलन क्या है?
8: देखिए, ना तो कांग्रेस पार्टी ना किसी और राजनीतिक दल ने इस लोगों को या बच्चों को किसी भी रूप में आह्वानित किया था, किसी का कोई आह्वान नहीं था, ये स्वतः बच्चे आए हैं। और किसी भी, केवल दिल्ली और यहां पर जंतर मंतर की बात नहीं है साहिल जी, हर राज्य में, हर शहर में, हर राजधानी में हजारों हजार बच्चे मशाल की जलूसें निकाल रहे हैं। वो एक अलग बात है कि उनकी पिक्चरें मीडिया में नहीं नजर आ रही हैं। दुर्भाग्य ये है कि धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि इनके लिए एक कमाऊ पूत है, इनके लिए दूध देने वाली गाय है, आरएसएस और बीजेपी के बच्चों को गलत तरीके से भर्ती कराने के मशीन का सर गिना है
0: एक तरीके से। प्रदीप भंडारी,
4: मैं जवाब दूंगा,
0: ये साफ नजर आ रहा है तीन में से एक डिमांड चर्चा से पूरी तरीके से बाहर, क्या आपको लगता है कि छात्र मानेंगे?
4: पहली बात तो साहिल जी, जब आपका शो चल रहा था उसी शो चलते वक्त 6 मिनट पहले इन्हीं से ही प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करी जिसमें पुलिस वाले घायल हुए, तो मुझे लगता है वो भी किसी के माता और पिता है, उनके ऊपर भी उतनी सहानुभूति होनी चाहिए। और पत्थरबाजी का मॉडल को कांग्रेस को नहीं स्वीकारना चाहिए, जैसे कांग्रेस पार्टी के लोग लद्दाख के अंदर डंडे लेकर जो है ऑफिस के ऊपर इन्हें अतिक्रमण किया था, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, जरा ये तस्वीर ध्यान से देखिए। आलोक जी, आपने नीट का एग्जाम नहीं दिया है, ना ही साहिल जी ने दिया है, ना मैंने दिया है, पर नीट के अंदर पेपर के टॉप रैंक नंबर टू
8: पेपर में सुप्रीम कोर्ट में दोनों बार में पर्सनल पेटिशनर रहा हूं,
4: आपके सामने तथ्य रख रहा हूं,
8: दोनों बार में पर्सनल पेटिशनर रहा हूं मैं।
4: सुनिए मेरे भाई, काय हो रहे हैं इतना क्यों घबरा रहे हैं? पंशुल बंसल रैंक नंबर टू,
8: दोबारा कल ही मिले थे
4: और कल ही उन्होंने कहा था रीनी पूरी अच्छी तरीके से हुआ, 11 लाख युवा क्वालिफाई कर चुके हैं जो देश के इतिहास में सबसे ज्यादा है। जितने भी आप आरोपी बोल रहे हैं सबके सब आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, उनपे जांच हो रही है, तो हम किसी को छुपाने के लिए नहीं है, पर बच्चों की आड़ में ये अराजकता की राजनीति क्यों कर रहे हैं? हम तो मिल रहे हैं, सुन रहे, बात कर रहे
0: हैं।
8: साहिल जी 5 सेकंड दीजिए,
0: एक एक मिनट आलोक जी, एक मिनट जरा संजीव झा, बाकी लोगों को भी ले लेते, एक एक करके सभी से प्रतिक्रिया ले लेंगे, सभी से एक एक करके प्रतिक्रिया ले लेंगे। संजीव झा, मैं आता हूँ आपके पास भी आऊंगा, एक एक करके सभी से प्रतिक्रिया लेंगे, बाकी लोग भी है।
8: एक मिनट संजीव झा सुनिए तो सही, साहिल जी,
0: संजीव झा,
8: साहिल जी एक मिनट, साहिल जी केवल एक मिनट रुकिए, साहिल जी एक मिनट रुकिए, केवल मैं कहना चाहूंगा कि नीट का जो पेपर 21 जून को हुआ था उसमें भी भारी अनियमितताएं हुई हैं, और ये 50 खबरें मेरे पास हैं और सबसे ज्यादा एपिसेंटर इसका इसका
4: झूठ बोल रहा है।
8: 30 लोग जेल के अंदर पड़े हुए हैं,
4: ऑलरेडी फैक्ट चेक हो चुका है,
8: 30 लोग जेल के अंदर गए हैं बिहार के अंदर, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में उसका पेटिशनर हूँ।
0: कुछ खबरें महाराष्ट्र से आई थी इस बात को लेकर, और इस बात को लेकर एनटीए के तरफ से सोशल मीडिया पर बात रखी गई है, हालांकि इसकी जांच अलग से होगी। एक मिनट, आज आज इसके बावजूद भी
8: उत्तर देने दीजिए, एक मिनट, गलत बात है, लोकतंत्र बचे, एक मिनट मुझे समय दीजिए साहिल जी, मुझे समझ
0: नहीं, चर्चा सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नहीं होगी, बाकी लोग भी यहाँ पर है, सभी के साथ प्रतिक्रिया लेंगे।
8: तो संजीव झा, बीजेपी को
0: आलोक जी, आता हूँ आपके पास, प्लीज आपके पास आता हूँ मैं, मत करिए ऐसा, आपका भी यही प्रॉब्लम है, प्लीज ऐसा मत करिए, सभी से प्रतिक्रिया लेना जरूरी है, बाकी लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, मैंने कहा आपको इस बात को। संजीव झा, आपने देखा कि एक तरफ तो धर्मेंद्र प्रधान ट्वीट कर रहे हैं, जो ट्वीट प्रदीप भंडारी दिखा रहे हैं कि नीट एग्जाम में जो दूसरे रैंक पर जो छात्र आए हुए हैं वो आकर कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया, दूसरी तरफ भारी संख्या में छात्र हमें सड़क पर दिखाई दिए, जिसे प्रदीप भंडारी कहते हैं कि ये तो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भेजे गए लोग थे, और वो कह रहे हैं कि पथराव वथराव वहां पर हुआ था। ये दोनों चीजें आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का मॉडल रहा है आंदोलन का, जिससे आम आदमी पार्टी तैयार हुई।
9: देखिए, मुझे लगता है कि 27 दिन से ये सब लोग धरना और अनशन पे बैठे हुए थे। 27 दिन में आपको केंद्र की सरकार कहीं नहीं दिखी होगी कि बातचीत को तैयार हो, इनका तो अहंकार इतना बड़ा है, एक बात। दूसरी बात, धर्मेंद्र प्रधान जी नंबर 2 रैंक का तो दिखाते हैं इंटरव्यू, लेकिन वहीं बहुत सारे बच्चे ने यह कहा है कि ओएमआर सीट बदल दी गई है, मेरा नंबर कुछ और था, नंबर कुछ और आ रहा है। एनटी उस पर जांच करने के लिए तैयार नहीं है, उस ऐसे ही एक तरफा खारिज कर दिया, कहा कि ये एआई जनरेटेड है, स्टूडेंट को बुला लो, उसकी बात कर लो, तो वो तो नहीं दिखा रहे। तीसरी बात, अभी जो प्रदीप भंडारी कह रहे थे, मैं एक बात बताइए कि इतनी एजेंसी इनके पास है, आखिर वो ट्वीट करने वाले कौन लोग हैं, वो पहुंच नहीं पाते, व्हाट्सएप कौन कर रहा है पहुंच नहीं पाते, सारे इनके लोग हैं, अगर जांच होगी तो पकड़े जाएंगे, ये करा रहे हैं। आज ही सुबह उसी जंतर मंतर के परिसर में, उसी जंतर मंतर के परिसर में एक पत्थर से भरे हुए ट्रक को वहीं के आंदोलनकारी ने एक्सपोज किया, चढ़ करके दिखाया कहां से आया वो पत्थर, वो ट्रक कैसे पहुंचा वहां पे, जांच कराए ना, चारों तरफ कैमरे, पुलिस को बुलाया गया। तो ये इनका मॉडल है, इनका एक मिनट आप चुप रहिए, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला। अब वही प्रदर्शनकारियों ने बताया कि ये पत्थर के ट्रक यहाँ पे हैं। दूसरी बात कि अगर इस देश के अगर आज अभी भी अजीत दीपके को पुलिस ने डिटेन किया हुआ, उसने ट्वीट किया है, अब देख लीजिए थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चौथी आप इनको साहिल चुप कराइए, ऐसे तो डिबेट नहीं होगा ना, अगर फिर इनको बोलने नहीं दूंगा मैं,
10: क्या इनको ये ऐसा होगा फिर आपके बीच में लोग बात करेंगे, बीच में नहीं बोलूंगा। संजीव जा एक मिनट, प्रदीप भंडारी एक मिनट, संजीव जा एक मिनट भंडारी एक मिनट, हम बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं प्रदीप भंडारी, हम सभी लोग कभी ना कभी छात्र रह चुके हैं और हमें पता है कि छात्रों की समस्या क्या होती है, तो मुझे लगता है कि आज कम से कम छीटाकशी के बजाय अगर हम मुद्दे पर बात करें तो बेहतर रहेगा, एक दूसरे के बीच में बात करने से कोई किसी का भला नहीं होने वाला है, ये बात हम नजरअंदाज नहीं कर सकते,
4: नहीं करूंगा, बोलिए,
10: उतरे हुए थे और 21 दिन के बाद सरकार के कैबिनेट मंत्री को उन्हीं के प्रतिनिधि मंडल से मिलना पड़ा है, तो जरा दोनों की बातें सुन लेते हैं। संजीव जी आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद मैं प्रदीप भंडारी के पास चलूंगा। संजीव जी,
9: चौथी बात ये कह रहे हैं कि ये छोटा रिचार्ज है, अगर इस देश के ये लाखों करोड़ों नौजवान अगर छोटा रिचार्ज किसी पार्टी का है तो फिर आपको घबराना चाहिए, आपको कि आज देश के नौजवान आपसे नाराज है, जो शिक्षा मंत्री पूरे अपने टेन्योर में एक एग्जाम ठीक से नहीं करा पाया उसी की रिजाइन की बात तो कर रहे थे, क्यों इतना बड़ा अहंकार है आपको, क्यों नहीं बुला के टीचरों से बात करते, बच्चों से बात करते, आप बताइए कि इनकी आपकी क्या मजबूरी है, आप क्यों नहीं रिजाइन ले सकते, बातचीत होना चाहिए ना जनतंत्र में, या आप उनको डराएंगे, आप उनको डंडे मारेंगे, आप कहते हैं पत्थर मारने की बात, आपने पुलिस के डंडे लगते हुए देखे हैं, आपने हजारों बच्चों को आज किसी के सर फटे हैं, किसी के पैर फटे हैं, सारे आम घर के बच्चे हैं, आप अगर जाकर के देखिए आपने
10: आपके सहयोगी भी जवाब दे सकते हैं, एनडीए की तरफ से भी जवाब ले सकते हैं, प्रदीप भंडारी एनडीए की तरफ से भी जवाब ले सकते हैं,
11: आज पंजाब के अंदर इन्होंने लाठियां चलाई, आज मनरेगा के वर्कर्स के ऊपर और युवाओं के ऊपर,
9: पंजाब की बात आ गई, पंजाब में भी जवाब देंगे, पंजाब की चिंता आप न करें, इस देश के करोड़ों लड़कों की चिंता नहीं है इनकी, इनको पंजाब की चिंता पंजाब के लोग कर लेंगे, लेकिन जो लोग आज सड़क पे आए थे, जिस जंगी के साथ आपने ये किया है,
10: ये वॉट अबाउट भी बड़ी आसान होती
9: है, ये जंगी को नहीं,
10: आपकी सफी, आपकी कमीज मेरे कमीज से ज्यादा मैली, ये दिखाने में ही ज्यादा मजा आता है, जरा एक मिनट, जरा धीरेन्द्र कुमार आपके पार्टी के नेता तो आंदोलन से निकले, रामविलास पासवान आंदोलन से निकले हुए नेता है, उन्होंने बिहार में जाकर लोक जनशक्ति पार्टी बनाई थी, आपकी पार्टी इस आंदोलन को किस तरीके से देखती है?
12: देखिए ये हक है छात्रों का, लोकतांत्रिक तरीके है हमारे देश में और उसी का हम लोग सभी अनुसरण करते हैं, वर्तमान के जो भी एनडीए के नेता है या मैं तो विपक्ष में भी कुछ लोग हैं जो 74 के आंदोलन से बने हुए हैं और छात्रों को की क्या पीड़ा होती है और सरकारें कैसे दमन करती थी उस समय, इस पीड़ा को भी सहा है, तो हम लोग तो उस रास्ते पे कभी नहीं चल सकते, इसीलिए आपने देखा कि वार्ता के उनका रास्ता हम लोगों ने खोल के रखा है, वार्ता भी हुई है,
10: तो क्या बातचीत पहले से होनी चाहिए थी, जो आज हुआ वो क्या पहले होना चाहिए था?
12: उसके पहले जो होना चाहिए था साहिल भाई, उसमें सुधार होने चाहिए थे, समय पर जांच होने चाहिए थे, भ्रष्टाचार में जो लिप्त थे उनको जेल जाने चाहिए थे, री एग्जाम होने चाहिए थे, उसके सब समय पर परिणाम आने चाहिए थे, सारी चीजें तो की ना, उससे पहले मैं ये करूं जो करने चाहिए थे, इस भावना को, छात्रों की भावना को सरकार ने समझा, और उन चीजों पर एक्शन लिया। आज परिणाम है कि आप देख लीजिए कि किस तरह के 1.59 लाख एससी के बच्चे उत्तीर्ण होकर उनके घरों में खुशियां हैं, 5 लाख से ज्यादा बच्चे ओबीसी के उनके घरों में खुशियां हैं, और 58% से ज्यादा बेटियां सक्सेस हुई हैं उसके घरों में खुशियां हैं। इस पर भी थोड़ी चर्चा करिए ना, जो गुजर गए हैं उनके प्रति संवेदना है। कई ऐसे लोग गए हैं वो भी मेरे ही परिवार के हैं, लेकिन सड़क पर आकर के आप आंदोलन करिए, ये आपका देश है और आपकी सरकार है, लेकिन अपने प्रतिनिधि को सदन के अंदर में बोलने दीजिए ताकि इस बात का विमर्श संवैधानिक तरीके से सदन के अंदर में हो। लेकिन विपक्ष
10: कौन बात उठाएगा, कौन बात उठाएगा, क्या आप भी बात उठाएंगे?
12: बिल्कुल बात उठाएंगे सदन को।
10: आंदोलनकारी जो थे नहीं, जो सरकार की तरफ से कहा गया, पहले तो आंदोलनकारियों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, कहा गया कि ये तो बहुत छोटे लोग हैं, इन पर क्या ध्यान देना। उसके बाद जब उन्होंने कहा कि हम तो अनशन पर बैठेंगे 20 दिन तक, तो उनसे बातचीत नहीं की गई धीरेन्द्र कुमार
12: साहिल भाई, मेरे नहीं कहा
10: तो 20 दिन तक बातचीत क्यों नहीं की?
11: अरे भाई वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट के अंदर जो अधिकार है, हमने थोड़ी कांग्रेस पार्टी ने मिडनाइट में रामदेव बाबा की पार्टी चला दी थी, वो होता है तानाशाही, वो होता है अराजकता।
10: ठीक है प्रदीप, पहले धीरेन्द्र कुमार को तो जवाब देने दीजिए, उनकी तो आंदोलन से आई हुई पार्टी है ना, तो उनको जवाब देने दीजिए, आंदोलन से नजदीकी रास्ता उनका रिश्ता रहा है, बोलिए।
12: छात्र अपने अधिकार का वो कर रहे हैं, इस्तेमाल करते रहेंगे, और सरकार भी संवेदनशील है, सुन रही है साहिल भाई। हमने उतने दिनों में उसी कैबिनेट के हिस्सा है हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान, जहां पर ये फैसले हुए कि सीबीआई की जांच हो, उसी कैबिनेट के सदस्य हैं जिस कैबिनेट ने आज लिया कि उनसे बातचीत का रास्ता हम लोगों को जारी रखना चाहिए। बातें आई, मांगे आ गई, तो कुल मिलाजुला के लोकतंत्र का इससे बढ़िया उदाहरण और क्या हो सकता है? विपक्ष के लोगों को सदन चलाकर
10: आलोक शर्मा, ये लोकतंत्र का पूरा पालन हो रहा है, एनडीए को लगता है कि पूरा लोकतंत्र का पालन हो रहा है। आज सदन के भीतर दीपेंद्र हुड्डा और उसके साथ साथ राज्यसभा में भी हमने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे इस मुद्दे को उठा रहे थे। क्या सरकार इस बात पर चर्चा करने के लिए तैयार है? क्या कांग्रेस पार्टी इस पर चर्चा करवाएगी?
8: देखिए मैं बीजेपी के प्रवक्ता की सबसे पहले झूठ निकालता हूं, ये 21/6 की एफआईआर है लखीसराय बिहार की। यहां पर एक कंपनी है जो एनटीए के 2017 से टेंडर ले रही है और उसके मालिक का नाम है आशीष मित्तल। वो आदमी पूरी तरह से जो सेक्रेटरी एजुकेशन रहे, वो चीफ सेक्रेटरी भी रहे जोशी साहब, उनके बहुत नजदीक का व्यक्ति है, और सिक्योरिटी लैप्सिस का ही सारा खेल है ये। सिक्योरिटी लैप्सिस में क्या हुआ है कि जो फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं उसमें पूरी तरह से गड़बड़ और घपले हुए हैं। 21 जून वाले पेपर में
10: सवाल क्या पूछा है आपसे? दूसरे लोग बैठे, क्या इसको लेकर सदन में चर्चा होगी? क्या
8: मैं आ रहा हूं उस पर,
10: सदन में चर्चा होगी क्या आलोक जी?
8: मैं उस पर भी आ रहा हूं। देखिए सदन को इन लोगों ने अपना एक खेल का मैदान बना लिया। जब 150 सांसदों को ये लोग बाहर कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, सदन पर चर्चा होने का मतलब तो ये होता कि सदन में चर्चा होने के बाद कोई एक्शन हो, लेकिन कोई एक्शन तो किसी के ऊपर होता नहीं।
11: जवाब दूंगा,
8: एक्शन अकाउंटेबिलिटी जीरो है। अभी बिहार का मैंने एग्जांपल दिया, एफआईआर की कॉपी मेरे सामने है, और बीजेपी का प्रवक्ता बीच बीच में बोलते रहे हैं साहिल जी आप
10: सदन में चर्चा होगी कि नहीं होगी, क्योंकि सोनम वांगचुक ये भी मांग कर चुके हैं कि सदन के भीतर सभी पार्टियों के तरफ से चर्चा होना जरूरी है, तभी वो अपना अनशन खत्म करेंगे। सुबह 6:30 ट्वीट करके मांग रखी है उन्होंने, जिसमें सभी पार्टियों के सांसदों से मांग की है उन्होंने।
11: मैं सिर्फ 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा। हर मुद्दे पे सदन में चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। सरकार युवाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होती तो नीट में एमबीबीएस की सीट 51,348 से बढ़कर 1,36,939 नहीं होती, जो देश के इतिहास में सबसे ज्यादा युवाओं को नीट देने वाली सीटें मोदी सरकार ने बढ़ाई है। पर मैं पूछना चाहता हूं साहिल भाई, आपसे प्रोटेस्ट का अधिकार है, पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी क्या आजादी के नारे, क्या संसद खत्म हो जाएगी उसके नारे, क्या प्रधानमंत्री को पीट दिया जाए इस तरीके के नारे का समर्थन करती है, क्या पुलिस पे पत्थरबाजी का समर्थन करती है? और अगर आलोक शर्मा के पास कोई तथ्य है तो जाके सीबीआई को दे दे।
10: ठीक है,
8: अरे भाई मुझे केवल ये बता दीजिए कि 2024 में जो नीट का पेपर
10: आज की स्थिति में, आज की स्थिति में अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें ये बात साफ है,
8: डायरेक्टर थे।
10: ठीक है, सदन के भीतर इस पर चर्चा होगी कि नहीं होगी? आशुतोष, हर आंदोलन में हमने देखा हुआ है, अन्ना आंदोलन की शुरुआत हुई तब शुरुआत में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मंत्री गए थे वहां पर बहुत दिन तक उनको नजरअंदाज किया गया, फिर विलासराव देशमुख को भेजा गया। हर आंदोलन में हम ये बात देखते हैं और उसके बाद आरोप लगाया जाता है कि कोई ना कोई इस आंदोलन के पीछे है। तब आरएसएस पर आरोप लगाया जा रहा था, आज कांग्रेस पार्टी या बाकी दलों पर आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन इस पूरे आंदोलन को आप किस तरीके से देखते हैं, और उसके बाद विजय त्रिवेदी।
13: देखिए साहिल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आज की तारीख में युवाओं के अंदर आक्रोश है, और आक्रोश इस बात को लेकर यह है कि जो सरकार कायदे से परीक्षाएं तक नहीं करा पा रही है और एक के बाद एक लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे सीबीएसई का सवाल हो, तो ये लाखों करोड़ों छात्रों के लिए बहुत दिक्कत वाली बात पैदा होगी, उनके भविष्य को लेकर दिक्कत पैदा होगी, इसलिए लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं। इस पूरे मामले में अभी जैसे जो बात कहेगी, असली सवाल क्या है, असली सवाल लेके क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या नहीं होगा। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो इस आंदोलन का क्या अर्थ है, इस पर भी गहरे सवाल खड़े होंगे। तो जो जिस असली मुद्दे को लेकर सरकार यह आंदोलन शुरू हुआ था, वो पहले दिन से यह था कि दरअसल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। आपको अच्छी तरीके से याद होगा, जब अभिजीत दिपके जब एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि हम जंतर मंतर प्रदर्शन करेंगे, 5 बजे तक अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो फिर हम आंदोलन को तेज करेंगे। फिर 5 बजे के बाद वो 1 हफ्ते का हो गया। अभी तक मुझे लगता है कि जो दो अलग मांगे जोड़ी गई हैं, वो दरअसल पूरे मामलों को डाइल्यूट करना एक तरीके से मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो क्या काकरो जनता पार्टी को अपना यह आंदोलन जारी रखना चाहिए या फिर इसको विड्रॉ करना चाहिए?
10: किस तरफ है आशुतोष, आपका इशारा किस तरफ है? जब आंदोलन पे उतरे तब पता ही, इस सरकार में कभी इस्तीफे होते नहीं है। पिछले 12 साल में आपने देखा होगा एक भी मंत्री ने किसी आंदोलन के चलते इस्तीफा नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी के सरकार में जरूर इस्तीफे होते थे, शिवराज पाटिल को हटाया जाता था, विलासराव देशमुख को हटाया जाता था।
13: बिल्कुल, मैंने कहा कि इस आंदोलन का टेस्ट केस है धर्मेंद्र प्रधान का अपने पद पर बने रहना या इस्तीफा देना। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं, अपने पद पर बने रहते हैं, तो इस आंदोलन का जो औचित्य है उस पर गहरे सवाल खड़े होंगे, या कम से कम सरकार की तरफ से ये कम से कम आश्वासन मिले कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बारे में वो सोचेंगे। अगर चलिए ठीक है इस्तीफा भी ना दे, लेकिन क्या सरकार इस बारे में सोचना चाहती है कि उनके मंत्री महोदय ने गलतियां की हैं, शिक्षा मंत्री होने के नाते एक के बाद एक ब्लंडर्स किए हैं, उनसे शिक्षा मंत्रालय संभल नहीं रहा है, परीक्षाएं लगातार लीक, पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे सीबीएसई का प्रश्न हो चाहे नीट का प्रश्न हो। तो अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है,
10: ये बात तो सफेद लकीर नजर आ रही है साफ तरीके से विजय त्रिवेदी की, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। आज भी 3.5 घंटे मिलकर आए हुए हैं, उसके बाद भी यह बात हम देख रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान शायद इस्तीफा ना दे, लेकिन इस पूरे बात को लेकर एक बार फिर सदन के भीतर चर्चा शुरू हो चुकी है, या उस पर बातचीत करने के लिए विपक्षी दलों को बुलाया गया है, कहा गया है कि आप इस पर बात करिए, यह मुद्दा एक बार फिर सबके सामने लाना, क्या यह इस आंदोलन की सफलता मानी जाएगी, या सिर्फ एक ही मुद्दे पर यह आंदोलन शुरू हुआ था और उसी मुद्दे पर इस आंदोलन को देखा जाएगा?
14: साहिल, आपने बहुत ठीक बात की, आशुतोष जी जो बात कर रहे हैं वो ठीक बात है, लेकिन किसी भी आंदोलन की कामयाबी केवल इस विषय पर तय नहीं होती, और ऐसे आंदोलन हम देखते रहे हैं, ऐसे आंदोलनों से सफलता नहीं मिलती है कि इस्तीफा कोई भी सरकार अपने मंत्री से दिलवा ले। और अभी आंदोलन उस ऊंचाई तक या उस टेम्परेचर तक भी नहीं पहुंचा कि आप सरकार को इस दबाव तक ले आए कि इस्तीफा दे दें, लेकिन इसको मैं आंदोलन की असफलता या नाकामयाबी नहीं मानता। इस आंदोलन ने एक बात तय की कि सरकार को आगे आना पड़ा। सदन के पहले दिन, संसद का सत्र शुरू होने से पहले, उन्हें सम्मान पंक्ति का अनशन खत्म

0: देखिए, मैं आंदोलन आंदोलन को मैं प्रश्न नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन मुझे एक चीज जो लगातार सवाल मेरे मन में खड़ा होता रहा है कि ये आंदोलन विपक्ष से सवाल कर रहा, ये
1: जी
0: आंदोलन सरकार से सवाल क्यों नहीं कर रहा? भाई, आपका आपकी आपकी दिक्कत, आपकी परेशानी सरकार से है, आपकी परेशानी विपक्ष से तो नहीं है। विपक्ष तो नीट का सवाल बहुत पहले से उठाता रहा है। तो सोनम वांगचुक ये कह रहे हैं कि विपक्ष ये वायदा करे कि वो संसद के अंदर उठाएंगे, वो ये नहीं कह रहे कि सरकार ये वायदा करे कि धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से हटाएगी। सर, ये सोनम बागचू ये बात क्यों नहीं कर? और सोनम बागचू, जहां तक मेरी जानकारी, ही इज नॉट अरेस्टेड, वो अरेस्ट नहीं है। तो ये जो मामला मामला दिखाया गया कि दरअसल उनको रिलीज किया जा रहा, मुझे बात समझ में नहीं आती। मैं फिर इस बात को कहता हूं कि
1: नहीं, क्योंकि
0: चूंकि
1: विपक्ष
0: इस
1: के पास तो अलग
0: आंदोलन,
1: अलग मुद्दे हैं ना
0: साहिब जी,
1: आशुतोष।
0: नहीं,
1: विपक्ष तो राम मंदिर का मुद्दा भी उठा रहा है, चढ़ावा चोरी का मुद्दा भी उठा रहा है, विपक्ष
0: साहिल
1: तो
0: साहिल
1: परिसीमन
0: साहिल
1: का मुद्दा भी उठा रहा है।
0: साहिल देखिए, प्रश्न इसी बात को लेकर ये है कि जो सवाल सरकार से पूछे जाने चाहिए थे, वो सोनम वांगचुक या ये आंदोलन विपक्ष से वो सवाल क्यों कर रहा? विपक्ष से वादा क्यों चाहता है? वो सरकार से मजबूती से क्यों नहीं कहता कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, तब तक हम अपने पद से नहीं
1: ठीक है
0: हटेंगे, तब तक हम अपना आंदोलन
1: संजीव
0: फिर से खत्म
1: झा,
0: नहीं
1: क्या
0: करेंगे?
1: आपको भी यही लगता है? उसके बाद प्रदीप भंडारी जवाब देंगे। संजीव झा, क्या आपको भी यही लगता है? आशुतोष ये कह रहे हैं कि विपक्ष से सवाल क्यों आंदोलन की तरफ से?
2: नहीं, मैं असहमत हूं और मैं विजय जी के बात से सहमत हूं। देखिए, मुझे ये लगता है कि इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि कुछ नौजवानों ने आवाज उठाई और अब प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को अब एक प्रेशर बना। और एक जो समझ थी कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाना बहुत मुश्किल है, इस सरकार के खिलाफ आप बोल नहीं सकते, तो इस देश के जनजी ने बताया कि नहीं, अगर उनके साथ अन्याय होगा तो वो बोलेंगे और सरकार का दबाव भी बना। देखिए, मैं तो कई बार गया वहां पे एक सिटीजन होने के नाते, और मैंने देखा वो हमेशा वहां से यही बातें होती थी कि विपक्ष का भी सहयोग चाहिए, और विपक्ष अलग अलग फोरम में बात कर भी रहा है कि भाई जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, अगर लीक होके बच्चे आएंगे तो सिस्टम लीक हो जाएगा और टैलेंट दरकिनार हो जाएगा।
1: ठीक है,
2: तो
1: आलोक
2: मुझे
1: शर्मा,
2: लगता है कि सबसे बड़ी
1: क्या
2: उपलब्धि
1: विपक्ष
2: यही
1: अपनी
2: है इन
1: जिम्मेदारी नहीं
2: नौजवानों
1: निभा
2: ने,
1: रहा था इसके लिए
2: देश
1: आंदोलन
2: के
1: के जरिए
2: नौजवानों ने
1: विपक्ष
2: देश
1: पर
2: के
1: भी दबाव
2: दबाव
1: बनाने की
2: बनाया।
1: कोशिश हुई? आशुतोष उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि विपक्ष पर सवाल क्यों?
3: देखिए, मुझे देखिए, विपक्ष पर सवाल क्यों है ये बहुत बड़ा सवाल है। इससे कहीं ना कहीं दूसरी तरह की स्मेल भी आती है। मैं लेकिन आज की डिबेट को डेविएट नहीं होने देना चाहता। एक कंपनी है इनोवेटिव व्यू, FIR में उसका कहीं नाम नहीं होता है, जो सिक्योरिटी का पूरा NTA से टेंडर लेती है, और ये कंपनी ही 10 साल से गड़बड़ कर रही है, और ये विनीत जोशी जो यहाँ के
1: प्रदीप
3: NTA के
1: भंडारी
3: और इसके पूरे के मालिक रहे हैं उसके नजदीकी रहे हैं, और ये
2: साहिल जी,
3: कंपनी
2: आम
3: ही
2: आदमी
3: सारा
2: पार्टी
3: कांड
2: ने
3: कर रही है।
1: मुद्दे की बात आज की स्थिति
3: मैंने
1: में
3: अभी
1: यही है कि
3: FIR
1: सरकार को
3: दिखाई,
1: बातचीत के लिए
3: मेरे
1: मजबूर
3: पास
1: किया कि
3: दस
1: नहीं
3: और
1: किया इस
3: FIR
1: आंदोलन ने,
2: ये
1: जो विपक्ष से उम्मीद की जा रही थी। सोनम वांगचुक भी विपक्ष से उम्मीद कर रहे हैं कि
2: देखिए
1: सदन के भीतर ये मुद्दा प्रायोरिटी से उठाया जाए। प्रदीप भंडारी,
2: जी
1: क्या
2: साहिल जी,
1: सरकार पर आज की स्थिति में ये दबाव है कि इस पर बातचीत होनी चाहिए?
2: आशुतोष जी को इस बात की पीड़ा है कि आशुतोष जी को लगातार इस आंदोलन के बहाने वो राहुल गांधी को सत्ता में बैठा पाएंगे, उनको लग रहा है वो नहीं हो पा रहा, तब कल तक जिस आंदोलन का वो समर्थन कर रहे थे आज उसी आंदोलन पे क्वेश्चन उठा रहे हैं आशुतोष जी है। ये देखिए, जेंजी को पीटा गया पंजाब के अंदर कुछ ही समय पहले, ये होता है लाठी चार्ज और जेंजी को पिटवाना, हमारे राज्य में प्रोटेस्ट आराम
1: बस
2: से
1: यही
2: हुआ।
1: रहेगी
2: दूसरी बात, जरा ये कल की
1: बड़ी संख्या में जब छात्र सड़क पर उतरते हैं तो उनके मुद्दों को लेकर सरकार और उसके साथ साथ विपक्ष भी सदन के भीतर चर्चा करें और कुछ सॉल्यूशन लेकर आए, क्योंकि आखिरकार ये जो भीड़ उतरी थी ये कुछ सॉल्यूशन की मांग कर रही थी, कुछ उपचार की मांग कर रही थी, उपाय की मांग कर रही थी। इसी बात पर फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए आज को।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
2: धनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: In association with Hind, bade aaram se. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
6: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
5: Vimal, bolo zubaan kesri.
7: Uttar Pradesh chunav ka shankhnaad. और इसकी पहली गूंज पंचायत आज तक के मंच पर।
8: इस बार एक नया रिकॉर्ड टूटने वाला है और
7: हैट्रिक का दावा।
8: पहली बार कोई सरकार तीसरी बार लगातार रिपीट करेगी।
7: विश्वास पूरा।
8: प्रतिष्ठित चैनल आज तक के माध्यम से बड़ी बेबाकी से कह सकता हूँ, विकसित उत्तर प्रदेश की संकल्पना को केवल डबल इंजन के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पूरा कर सकती है।
7: चुनाव से पहले सबसे बड़ा राजनीतिक मंच पंचायत आज तक, जहां गूंजती है उत्तर प्रदेश चुनाव की पहली हुंकार।
9: जहां जुर्म वहीं कहानी, जहां कहानी वहीं साजिश, जहां साजिश वहां क्राइम। जुर्म चाहे कितना ही उलझा हो, उसकी परतें हम सुलझाते हैं। देखिए क्राइम तक YouTube पर और बचिए हर क्राइम से।
10: आई थिंक द होल प्रोसेस इज करप्टेड और इसका जो खामियाजा है, इसका जो मानसिक जो तनाव से जो है वो हमारे देश का युवा और छात्र गुजर रहे हैं। और ये खाली नीट के पेपर की बात नहीं, न जाने कितने और पेपर लीक हुए हैं पूरे देश भर में। उत्तर प्रदेश में कितने पेपर लीक हुए हैं, हर नौकरी जो निकलती है उसका पेपर ही लीक हो जाता है। तो आखिर कमी कहाँ है, आखिर भ्रष्टाचार कहाँ है, और आखिर अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी ये सरकार लेगी कि नहीं देगी, लेगी, प्रश्न इस बात का है।
11: संसद का सत्र होता है, ये इसीलिए होता है कि सब मुद्दों का जो है वो विस्तार पूर्वक जो है हम लोग डिस्कस कर सके, और सरकार की जवाबदेही सब चीज के लिए होती है, उसी के लिए होता है। और हम लोग चाहते हैं कि सत्र चले और जो है ये अपने प्रश्न जो है वहाँ रखे, लेकिन अगर हुड़दंग करेंगे और वहाँ पे उत्पात मचाएंगे और जैसे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। अगर आपको इतना ही है तो आप भी खड़े हो जाइए। तो आप नहीं, आप आम ट्विस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि आपको किसको सैक करिए, किसको रखिए, तो ये आम ट्विस्टिंग अच्छी नहीं है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

0: This is the sound of Lucy, staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn, and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
4: We are over, Jimmy.
5: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
6: संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ तो सरकार की तैयारी कुछ, विपक्ष का प्लान कुछ और। सरकार सदन में जरूरी मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद लगाए बैठी रही। विपक्ष का एक पांव सदन में, दूसरा जंतर मंतर पर था। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चलता है। अब जीत दीप के अनशन पर थे, आज तोड़ दिया और संसद मार्च शुरू हो गया। जंतर मंतर की सड़कों पर आसमान से दिखती तस्वीर में अच्छे खासे प्रदर्शनकारी दिखते हैं। भीड़ आगे बढ़ी, बैरिकेड से सामना हुआ, बैरिकेड के पीछे पुलिस, पुलिस ने रोका, कुछ पत्थर चले तो पुलिस ने लाठी चार्ज किया, कहीं लाठी कहीं आंसू गैस, प्रदर्शनकारी सबका सामना करते हुए संसद की चार दीवारी से चंद मीटर दूर पहुंच गए। संसद की सुरक्षा बढ़ गई, QRT से लेकर दमकल वाले तक मौजूद थे, CISF के जवान फायरिंग पोजीशन ले चुके थे। उधर 2-3 घंटे तक संसद भवन के आसपास की सड़कों पर प्रदर्शनकारी जमे रहे, पुलिस से आमना सामना, रोक टोक चलती रही। संसद की कार्रवाई शुरू होती उससे पहले पीएम मोदी आए। 28 साल के नौजवान बनाम 56 साल के नौजवान वाला तंज कसा और सकारात्मक वातावरण की उम्मीद लगाकर चले गए, लेकिन संसद तो संसद ठहरी। दोनों सदन गूंज उठे, एक बार स्थगन, दो बार स्थगन, तीन बार, चौथी बार स्थगित, पांचवी बार में दोनों सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। मामले वही, किसी के लिए राम मंदिर चढ़ावा चोरी, तो किसी के लिए नीट पेपर लीक, किसी के लिए परिसीमन, तो जम्मू कश्मीर वाले नेताजी 370 की माला लेकर आए। कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर पहुंचने वाले तरह तरह के नेता भी अपनी अपनी मांगों को CJP की मांगों के साथ नत्थी करके बता रहे थे।
7: अपने भविष्य की मांग कर रहे हैं, अपनी भविष्य सुरक्षित रहे उनकी मांग कर रहे हैं, तो ऐसे नौबत में लाठी चार्ज की क्या जरूरत है?
8: वी वांट कि छात्रों की बात सुनी जाए, क्योंकि अब पानी जो है सर से ऊपर से निकल चुका है।
9: युवाओं के इस मार्च को रोकने के लिए जिस शिद्दत से पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का प्रबंधन किया गया, अगर उसी शिद्दत से एग्जाम करा लेते तो नीट का पेपर नहीं लीक होता, SSC का पेपर नहीं लीक होता, टेट का पेपर नहीं लीक होता।
6: सदन के बाहर से अंदर तक और प्रदर्शन के मंच से सड़क तक विपक्ष के नेता सवाल उठाते थे कि CJP के प्रदर्शनकारियों की मांग जायज और सरकार को उनकी सुननी चाहिए।
10: इतिहास अगर हम पलटे हैं तो विदेशी लुटेरों ने मंदिर लूटे थे, विश्वविद्यालय तोड़े थे, आंदोलनकारियों को प्रताड़ित किया था, आज वही भाजपा कर रही है। भाजपा सरकार नहीं, अहंकार की तरह काम कर रही है, अहंकार है उनके अंदर। कम से कम बच्चों की बात तो सुननी चाहिए थी। नीट में इतना बड़ा घोटाला हुआ, घपला हुआ, आज भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं।
6: खबर है कि सरकार ने मांगे सुनी, केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या बात हुई ये अभी सामने नहीं आया, लेकिन दोपहर के 3 बजे से पहले संसद भवन के आसपास की जो सड़कें उबल रही थी, जंतर मंतर पर जो मंच नेताओं नारों और तख्तियों से गुलजार था, वहां दोपहर 3 बजे के बाद धीरे धीरे शांति बहाली नजर आई। मंच खाली हो गया, सड़कें खाली होने लगी। प्रदर्शन का हासिल क्या हुआ, नेताओं के सियासी स्टंट का क्या हुआ, नीट के विद्यार्थियों को क्या मिला, चढ़ावे पर शोर की सियासत का क्या हासिल, इन तमाम सवालों के जवाब संसद के मानसून सत्र में बाकी दिनों की कार्यवाही में मिलेंगे। लेकिन देश को ये जरूर पता है कि सत्र के पहले दिन लोकसभा की कार्रवाई 5 स्थगन के साथ कुल 30 से 35 मिनट और राज्यसभा की कार्रवाई 5 स्थगन के साथ कुल 25 से 30 मिनट चली, जिसमें लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल पेश किया जाना था, हंगामे की भीड़ चढ़ गया और राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पेश होने वाला था वो भी रह गया। आज तक ब्यूरो।
10: ये सरकार नहीं अहंकार है। और जो श्रद्धांजलि में भेदभाव करते हो, जब लाखों लाख और करोड़ों लोग और करोड़ों परिवार इस आंदोलन से जुड़े हों, जिन बच्चों की जान गई उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार को। और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र नौजवान युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती है। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहें अपनी बात कहने तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं वो दे रहे हैं।
11: लेकिन सरकार कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर अगर चर्चा चले तो सबके लिए अच्छा है। चर्चा से इनका क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि सरकार के पास तो बहुत बहुत बहुत बहुत मेजोरिटी है। तो सुनने दो, देश की आवाज सुनाइए पार्लियामेंट में, यही है पार्लियामेंट का काम। तो आप मना कर रहे हैं कि सिर्फ आपके विषय उठाएंगे, तो विपक्ष नेचुरली असंतुष्ट है।

0: तो दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ। देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: प्रदर्शनकारियों से बातचीत के बाद नड्डा का बयान, सुबह आया था बातचीत का प्रस्ताव, अच्छे माहौल में हुई बात, धरना खत्म करने की अपील, सीजेपी ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे समेत रखी 3 मांग। हंगामे के बाद अब दिल्ली में हालात लगभग सामान्य, संसद भवन के आसपास पूरी तरह से काबू में स्थिति, बच्ची से मारपीट और 50 लोगों के घायल होने की खबर का पुलिस ने किया खंडन। मॉनसून सत्र के पहले दिन ही मूसलाधार सियासत, पेपर लीक और चढ़ावा चोरी पर बरसा विपक्ष, हंगामे के चलते दोनों सदन कल के लिए स्थगित, गृहमंत्री अमित शाह से मिले शिक्षा मंत्री 3.5 घंटे बाद। चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, सीजेआई ने दिया आदेश, एसआईटी का हो पुनर्गठन, सीनियर अधिकारी की अगुवाई में हो जांच, अब अगले हफ्ते हियरिंग। उत्तर से पूर्व तक कुदरत का कहर, असम के जोरहाट, शिवसागर, चराईदेव में भीषण तबाही, पुंछ में लैंडस्लाइड से 7 की मौत, राजौरी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
2: लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इतिहास के लिए ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
3: एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है।
4: गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है।
5: आप सदन नहीं चला सकते।
6: मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा, 28 की एवरेज वाले नौजवानों ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया है।

0: आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन जोरदार हंगामा सड़क पर हुआ। जंतर मंतर पर करीब तीन हफ्तों से धरना दे रहे कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने आज संसद की ओर मार्च करने की कोशिश की। प्रदर्शनकारी संसद तक तो नहीं पहुंच सके, लेकिन पुलिस को बीच में ही लाठीचार्ज करना पड़ा। इस बीच एक बड़े घटनाक्रम में सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरभ दास की केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है। सीजेपी की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में तीन बड़ी मांगे रखी गई हैं। उन तीन बड़ी मांगों में शामिल है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। उधर आज धर्मेंद्र प्रधान की गृहमंत्री अमित शाह से बहुत लंबी मुलाकात हुई है। इन सब के बीच सीजेपी का समर्थन करने वाला विपक्ष सरकार पर हमलावर है। संसद के दोनों सदन में विपक्ष के हंगामे के चलते आज कार्रवाई ही नहीं हो सकी। सवाल यह है कि सीजेपी के इस प्रदर्शन और विपक्ष की इस लड़ाई से सरकार कैसे निपटेगी, क्या संसद सत्र में कामकाज हो सकेगा, क्या नड्डा से सीजेपी की मुलाकात सुलह की राह खोल रही है। सीजेपी का प्रदर्शन, विपक्ष का समर्थन, हल्ला बोल में आज इसी पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, जिसमें आज कई सांसद भी, सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे, तो हमारे साथ राजीव राय समाजवादी पार्टी के सांसद जुड़ेंगे, अरुण भारती हमारे साथ सांसद एलजेपी के जुड़ेंगे और गुरदीप सप्पल कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। सत्र तो संसद का शुरू हुआ है, मगर पहले दिन सियासत सड़क की हुई। नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मुख्य मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने आज खूब हंगामा किया। सीजेपी के प्रदर्शनकारियों को संसद तक पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। संसद के लिए मार्च निकालने से पहले सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने अपनी भूख हड़ताल खत्म की। अभिजीत दिपके अपने समर्थकों के साथ संसद तक नहीं पहुंच सके। उधर जंतर मंतर से प्रदर्शनकारी हट चुके हैं। दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने में कामयाब रही। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर कर्तव्य भवन में केंद्रीय गृह सचिव से मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में आईबी प्रमुख भी मौजूद थे, जबकि सीजेपी प्रतिनिधिमंडल की केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई है। उधर संसद मार्च के लिए सीजेपी के शक्ति प्रदर्शन को विपक्ष का खुलकर साथ मिला। डिंपल यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के सांसद संसद से सीजेपी को समर्थन देने जंतर मंतर पहुंचे थे। इस बीच लोकसभा और राज्यसभा विपक्ष के बार बार हंगामों की वजह से बार बार स्थगित होती रही। विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि नीट से लेकर चढ़ावा चोरी के मसलों पर सरकार लोगों की आवाज दबा रही है।
1: आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश।
2: हमारे सांसद थाने में बैठे हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है, ये कौन सी सरकार जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है कि अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती। आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, दुनिया में आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे।
0: संसद का ये मॉनसून सत्र पिछले बजट सत्र से बिल्कुल अलग परिस्थितियों में शुरू हुआ है। टीएमसी के 20 बागी लोकसभा सांसद नई पार्टी एनसीपीआई के साथ जुड़कर एनडीए को समर्थन का ऐलान कर चुके हैं, तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना से 6 लोकसभा सांसदों के एकनाथ शिंदे की शिवसेना में विलय को लोकसभा स्पीकर की मंजूरी मिल चुकी है। सरकार वंदे मातरम के अपमान पर सजा वाले बिल समेत कई अहम बिल संसद सत्र में पेश करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले कहा था कि तथ्यों और तर्कों से बात असरदार होती, न कि हंगामों से।
3: जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए, हर आवाज को अवसर मिले, हर विचार को सम्मान मिले, ये संसद की हमारी भूमिका है।
0: संसद सत्रों में हर बार सरकार और विपक्ष के बीच खाई दिखी है, लेकिन अब की बार जहां सरकार का संख्या बल बढ़ा है तो विपक्ष के पास कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बीते हफ्तों में खूब चर्चा हुई है और ऐसे में मामला आर पार की नौबत का आता दिख रहा है। आज तक ब्यूरो। तो आज कई पार्टियों की तरफ से सांसद भेजे गए इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। सुधांशु त्रिवेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राजीव राय सांसद समाजवादी पार्टी के जुड़ेंगे। अरुण भारती जुड़ गए हैं हमारे साथ। राजीव राय जी, अरुण भारती हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सांसद है एलजेपी के, और गुरदीप सप्पल कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जिसमें जानकारी ये दी जा रही है कि पुलिस की तरफ से ये गुजारिश की गई है, प्रदर्शनकारियों से दिल्ली पुलिस की अपील है, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों से अपील है कि शांतिपूर्ण तरीके से वो अपना विरोध दिखाएं, सोशल मीडिया की अफवाहों पर भरोसा ना करें। अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। अरविंद, क्या बताया गया है?
4: देखिए, दिल्ली पुलिस ने अपील की है कि जो प्रोटेस्ट करना है वो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करें, जंतर मंतर उसके लिए एक जगह है। और उसके अलावा मानसून सत्र भी चल रहा है अंजना, और नई दिल्ली इलाका बेहद संवेदनशील इलाका है, और सुबह के वक्त जिस तरह के हालात बने, अमूमन ये कहा जाता है, पुलिस को सिखाया भी जाता है कि मिनिमम बल प्रयोग करना है, वो आज हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा भी। जब शास्त्री भवन की तरफ भीड़ आगे बढ़ी, जब पार्लियामेंट थाने से आगे संसद भवन की तरफ भीड़ आगे बढ़ी, पुलिस ने काफी हद तक रोकने की कोशिश की, लेकिन जब आरोप है कि पुलिस की तरफ पत्थरबाजी हुई, उसके बाद मिनिमम बल प्रयोग करके भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की गई। सबसे बड़ा सवाल अंजना यह है कि जो कांग्रेस जनता पार्टी के लीडरशिप है वो जो प्रदर्शन कर रही है, युवाओं को तो बुला लिया उन लोगों ने, लेकिन अब रोके कैसे? अब वो खुद भी अपील कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जाए।
0: लेकिन अरविंद, अभी क्या स्थिति है?
4: देखिए, नई दिल्ली के कमोबेश कई इलाकों से जो प्रदर्शनकारी थे, जो उग्र होने की कोशिश कर रहे थे, संसद भवन की तरफ जा रहे थे, उनको तो खदेड़ दिया गया, लेकिन कनॉट प्लेस के इलाकों में, नई दिल्ली के इलाकों में छोटे छोटे ग्रुप बनाकर वो घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस हालांकि उनको आइडेंटिफाई करे, इसलिए हम कह रहे हैं कि आपने इतनी बड़ी भीड़ तो बुला ली, लेकिन उनको रोकेगा कौन, उनको समझाएगा कौन कि आपको कहां तक जाना है, कहां तक रुकना है, पुलिस से मिसबिहेव नहीं करना है। अच्छा। क्योंकि पुलिस भी संयमित होकर समझा रही थी सुबह के वक्त, लेकिन जब एक दो बार स्टोन पिल्टिंग की शिकायत हुई, कुछ पुलिस कर्मी घायल हुए, उसके बाद मिनिमम बल प्रयोग करना, क्योंकि पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह भी थी क्योंकि मानसून सत्र चल रहा है, संसद भवन विजय चौक का इलाका बेहद संवेदनशील है, कोई अप्रिय घटना न हो जाए, कानून व्यवस्था खराब न हो, यह भी पुलिस।
0: अरविंद, एक जल्दी से एक और छोटा सा सवाल है, छोटा सा जवाब दीजिएगा। आप दिल्ली पुलिस को लगातार कवर करते हैं और जो कानून व्यवस्था की स्थितियां रहती है, कई पुलिस कर्मियों के भी घायल होने की खबर आ रही है, इस पर क्या अपडेट है?
4: देखिए, कई पुलिसकर्मी घायल है, न सिर्फ पुलिसकर्मी घायल है बल्कि अर्धसैनिक बल के जवान घायल है। इस वजह से दिल्ली पुलिस और पार्लियामेंट थाने के से जंतर मंतर की जो सड़क है उस पर कई गाड़ियां टूटी भी हुई हैं। इसीलिए दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि भी असिस्ट किया जा रहा है कि कितने पुलिसकर्मी, कितने अर्धसैनिक बल के जवान घायल है, उसके आधार पर पुलिस केस दर्ज भी करेगी।
0: कितने प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं?
4: देखिए, प्रदर्शनकारी कितने घायल है उसके बारे में जानकारी नहीं आई, क्योंकि एक बड़ी अच्छी चीज अंजना यहाँ देखने को मिली कि जो पुलिस जब उनको डिस्बर्स कर रही थी तो जो प्रोटेस्टर फंसे थे, निकलना चाह रहे थे, उनको सेफ पैसेज भी पुलिस ने दिया। वो उसमें ज्यादातर वो लोग थे जो पुलिस से मिसबिहेव कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने भगदड़ मचने की स्थिति आई तो पुलिस ने उनको सेफ पैसेज दिया कि आप यहां से निकल जाएं, क्योंकि उसमें कई युवा थे, तो उनको निकलने का भी रास्ता दिया गया। लेकिन जो दो अहम जानकारी आई है कि जिस तरह का नुकसान हुआ, पुलिस कर्मियों को चोट आई है, तो पुलिस इस मामले में केस भी दर्ज करेगी और साथ ही साथ जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए भी आगे कोशिश की जाएगी।
0: नजर बनाए रखिए, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इस मुद्दे पर जानकारी देते हुए। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपके साथ शुरुआत करती हूं। तीन बड़े सवाल हैं मेरे। आखिरकार आज आपको कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधियों से बात करनी पड़ी, तो फिर आपको नहीं लगता है कि उसमें देरी की गई जिसकी वजह से ऐसी परिस्थितियां बनी? दूसरी तरफ क्या आप यह बताने की स्थिति में है कि क्या जो तीन मांगे उन्होंने रखी है उस पर किस तरह का समझौता सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच में हुआ है? और तीसरी बड़ी बात, क्या आप बड़े पैमाने पर, मतलब क्या ये मान रहे हैं कि ये सिर्फ सीजेपी के प्रदर्शनकारी थे या फिर आप इसको छात्रों से भी जुड़ा हुआ देख रहे
5: हैं? देखिए, पहली बात, सरकार किसी भी मुद्दे के ऊपर और विशेषकर छात्रों और युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे पर पूरी तरीके से संवेदनशील है, सतर्क है, सजग है। इसलिए सरकार उन सारे विषयों पे गंभीरता से विचार करेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हाँ, दूसरी बात जो आपने कही कि यहां पर जो लोग हैं उसमें सिर्फ सीजेपी के लोग हैं या इसमें अन्य लोग हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि जो भी ये युवा प्रदर्शनकारी हैं, इनको घुसपैठियों से सावधान रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आज जो लोग इनका समर्थन कर रहे हैं वो तो मतलब व्यावसायिक ढंग से देखा जाए कि प्रोफेशनल आंदोलन करता है, वो अनेक मुद्दों पे आंदोलन करते रहे हैं, तो उनका आंदोलन मुद्दा आधारित है यह विश्वास करना थोड़ा सहज नहीं लगता है। क्योंकि आप ये देखिए, आम आदमी पार्टी कितने मुद्दे पे कितने प्रकार के आंदोलन किए और फिर बदल गए। दूसरा, इस बात के लिए भी युवाओं को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, ये जितने भी आंदोलन हैं ये सिर्फ सीढ़ी बनाई जाती है राजनीति में आने की, ये सिर्फ एक हवा बनाई जाती है, एक मुखौटा बनाया जाता है कि गैर राजनीतिक आंदोलन है। देखिए, अन्ना आंदोलन था, पूरी पार्टी राजनीति में आ गई। किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन में आए कई लोग चुनाव लड़ लिए, भले ही उसमें से कुछ एक की जमानत जब्त हो गई अलग बात है। पहलवान आंदोलन में भी चुनाव लड़े और एक पहलवान जो थी वो विधायक होने में सफल भी हो गई। तो अब ये सीजेपी को तय करना होगा कि वो राजनीतिक मंच के लिए अपना कंधा देने को तैयार हैं या नहीं, या उनको इतनी समझ है कि नहीं।
0: तो
5: यहां पर एक और बात भी कहना चाहूंगा जिना जी, भाई मुद्दा अगर है, हाँ जी,
0: कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने कभी ना कभी आंदोलन नहीं किया हो? आप सुधांशु जी अपनी ही पार्टी को देख लीजिए, चाहे आपने राम मंदिर आंदोलन किया हो या फिर आप आपके कई नेता जेपी आंदोलन में शामिल हुए हो, हर पार्टी तो इसी तरह से आगे बढ़ती है। कोई भी पार्टी देख लीजिए, एलजेपी को देख लीजिए आप, जिसमें रामविलास पासवान जी हो, या फिर आप मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी को देख लीजिए।
5: आपने जो बात कही मैं बिल्कुल स्पष्ट करता हूं, जेपी आंदोलन कोई गैर राजनीतिक आंदोलन नहीं था, सब लोग पहले से राजनीति में थे। राम मंदिर आंदोलन देश का इकलौता आंदोलन है जिस आंदोलन का कोई नेता कभी राजनीति में नहीं आया। उस आंदोलन में महान नृत्यगोपाल दास जी से लेके अशोक सिंगल जी से लेके मोरोपंत पिंगले जी तक कभी नहीं आए। अडवाणी जी पहले से राजनीति में थे, उमा भारती पहले से सांसद थी। तो यही एक अंतर है, जिन लोगों ने कहा हम गैर राजनीतिक आंदोलन कर रहे हैं, सब मुखौटा लगा के खटाखट राजनीति में आने गए। चलिए, आज भी मैं पूछता हूं कि अगर मुद्दा शिक्षा व्यवस्था है तो यह बताइए, संसद को उखाड़ फेंकेंगे इसका शिक्षा व्यवस्था से क्या लेना देना? मोदी का लास्ट डे होगा इसका शिक्षा व्यवस्था से क्या लेना देना? मोदी को पीटेंगे इसका शिक्षा व्यवस्था से क्या लेना देना? अच्छा ये बताइए, ये प्रेमानंद महाराज पाखंडी हैं, इसका शिक्षा व्यवस्था से क्या लेना देना? मेरा लिंग मेरी आजादी, मेरा जेंडर मेरी आजादी, और वो ढपली वाले लोग आ जाते हैं आजादी आजादी, भाई साहब इसका शिक्षा से क्या लेना देना है? जरा मेरे बता दे मेरे को, हमारे विपक्षी लोग, अब कोई इस ढंग की वाहियात बात करता है कि सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं, भाई साहब इसका शिक्षा से क्या लेना देना है? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि युवाओं को बहुत, और फिर एक गाना गाया जाता है बस नाम रहेगा अल्लाह का, इसका धर्मेंद्र प्रधान जी के प्रति इस्तीफे से क्या लेना देना है? जरा मुझे पूरा एक्सट्रपोलेशन करके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जियोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री जहां से भी संभव हो सके मुझे ये लिंक बता दें। इसलिए देश को यह बहुत सावधानी से समझने की जरूरत है। और मैं एक और भी फैक्ट रखना चाहता हूं, ये हर संसद सत्र से पहले कुछ ना कुछ बवाल पिछले 3-4-5 सालों में एक कस्टमरी सा हो गया है। याद करिए 30-31 जनवरी 2001 संसद का सत्र शुरू होता है और 29 जनवरी को किसान आंदोलन को लेकर अनेक विदेश से बहुत सारी सेलिब्रिटीज का बयान आ जाता है। मानसून सत्र 20 जुलाई 2021 से प्रारंभ होता है, 19 जुलाई को पेगासस की रिपोर्ट आ जाती है। जुलाई 21 जुलाई 2023 को संसद का मानसून सत्र शुरू होता है, उससे पहले मणिपुर का वीडियो आ जाता है। मतलब आप बताइए, जनवरी 2024 में शुरू होता, उससे पहले बीबीसी की रिपोर्ट आ जाती है। 2024 के नवंबर में सत्र शुरू होता है तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर कोई फॉरेन में अमेरिका में जाके कोर्ट में अपील कर देता है। तो जरा ये लिंक भी दे दीजिए, सिर्फ महज संयोग है कि सीधे संसद सत्र से एक दिन पहले या दो दिन पहले विगत 4-5 सालों में, मैंने उदाहरण और डेट के साथ कोट करके,
0: तो ठीक है सुधांशु जी, सुधांशु जी
5: कह रहा हूं कि लेकिन पेपर संदेह है जी, जी, नियत को लेकर
0: पेपर लीक तो आपकी सरकार की देखरेख में हुआ ना, वो तो किसी विदेशी ताकत ने कराया नहीं। अब वो मानसून सत्र के पहले होना था तो हुआ। एक आखिरी सवाल है सर जिसका मुझे जवाब नहीं मिला, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी, कि आखिरकार तो बात आपको कांग्रेस जनता पार्टी से करनी ही पड़ी ना, बात तो करनी ही पड़ी, पहले से क्यों नहीं ये संवेदनशीलता दिखाई?
5: देखिए, जिस समय सोनम वांगचुक जी वहां पर बैठे हुए धरने पे, और वो पहली बार तो नहीं बैठे, वो तो वहां लद्दाख में भी बैठ चुके थे और वहां लेके हिंसा भी हुई थी। तो यहां फिर मैं कह रहा हूं, वहां मुद्दा कुछ और था, यहां मुद्दा कुछ और है। और मैं फिर जो मैंने क्यों बोला अंजना जी, मैं इसलिए बताना चाहता हूं, जब गंभीरता से कोई बात करना चाहेगा तो बात करेंगे, मैंने ये सारी बातें क्यों गिनाई। पेपर लीक अगर मुद्दा है तो ये यही नारे हैं जो पिछले 5-6 साल में सीए के प्रोटेस्ट से लेके, किसान आंदोलन से लेके, पहलवान आंदोलन से लेके, सारे आंदोलनों में यही वाक्य, यही शब्द, यही शब्दावली, और कुछ तो वैसे जो कभी नहीं बोले गए, जैसे मेरा जेंडर मेरी आजादी, जंग के हर घर से हिडमा मारोगे, भाई सब क्या है। घुमा फिरा के आंदोलन कोई भी हो, नारे यही के होते हैं, सवाल तो ये है, और चेहरे वही होते हैं, यानी चेहरा भी वही है और आवाज भी वही है, सिर्फ मुखौटा बदलता है क्या। आंदोलन चलाने वालों को ध्यान रखना चाहिए कि पिछले दरवाजे से मुखौटा लगाए हुए लोग आपके आंदोलन को यूसर्प करने के लिए आ रहे हैं।
0: चलिए ठीक है, अब गुरदीप सप्पल जी, आप विपक्ष की तरफ से मोर्चा संभालिए, उसके बाद से सांसद राजीव राय जी और भारती जी के पास चलेंगे। गुरदीप सप्पल जी, आपकी पार्टी इस पूरे मुद्दे पर कहां खड़ा है, क्योंकि बहुत एक ऐसा रिश्ता दिखा जिसमें आपकी पार्टी को भी कटघरे में वहां पर प्रदर्शनकारियों ने खड़ा किया और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी वो बोलते नजर आए, फिर ऐसी तस्वीर आई जिसमें आपके नेता भी गए और आपके लोगों ने भी समर्थन दिया, इन सब में सरकार को घेरने का सिर्फ एक जरिया ये बनकर रह जाएगा कि आपको लगता है आर पार कुछ एक्शन होगा।
6: शुक्रिया अंजना जी, पहले तो दो ऑब्जर्वेशन करना चाहूंगा। आज पहले हम सबको निंदा करनी चाहिए जो बल प्रयोग हुआ छात्रों के ऊपर, मीडिया को भी करनी चाहिए, हमको भी करनी चाहिए, और जो तस्वीरें ऑफिशियली जारी हुई पार्लियामेंट से कि रेडी टू शूट एलएमजीज और असॉल्ट राइफल लेके जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के सैनिक खड़े थे उनकी फोटोग्राफ जारी की गई, क्या हम कोई मिलिट्री डिक्टेटरशिप में है, लोकतंत्र में है? ये युवा, ये बच्चे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, इस तरह के फोटोग्राफ रिलीज करने का घोर कंडेमनेशन होना चाहिए, निंदा होनी चाहिए और आपको भी करनी चाहिए, ये उचित नहीं है एक लोकतंत्र में इस तरह की तस्वीरें। दूसरी बात, पूरा दिन पार्लियामेंट के आसपास हंगामा हुआ, हजारों हजार युवा और छात्रों ने हंगामा किया, लेकिन एक सवाल देश के प्रधानमंत्री से या देश के गृह मंत्री से मीडिया ने, इंक्लूडिंग आपके चैनल ने, आज सुबह से नहीं पूछा है, ये दो बात ऑब्जर्वेशन के तौर पर। अब आज ये आज जो हुआ, ये बात सही कि कॉल सीजेपी का था, लेकिन आज जो सड़क पर लोग थे वो तमाम वो लोग थे, वो युवा थे जो तंग आ चुके हैं इस सरकार की पॉलिसी से, खासतौर पे पेपर लीक पे, और जहां जहां उनको मौका मिल रहा है वहां वहां वो स्वतः स्फूर्त आ रहे हैं। मैं 2 दिन पहले देहरादून में था जब राहुल जी का प्रोग्राम था छात्रों की गूंज, बड़ी तेज बारिश थी, वेन्यू चेंज हो गया, बीजेपी ने जैस्मीन का प्रोग्राम रख दिया, लेकिन दसियों हजार बच्चा, इतना युवा हमारी पार्टी में मेंबर नहीं है, दसियों हजार बच्चा कंधे से कंधा जोड़कर राहुल जी के प्रोग्राम में आया। जब कल भुवनेश्वर में धर्मेंद्र प्रधान के घर का घेराव किया गया तो हजारों की भीड़ वहां जुटी एनएसयूआई के प्रोग्राम में, कल जब बोकारो में हुआ, कल जब सीकर में हुआ, कल जब रांची में हुआ, तो हजारों बच्चे जुट रहे हैं। तो ये इसको नोटिस करना चाहिए कि ये वो युवा हैं जो गुस्से में हैं, जिनके दर्द है, जिनको अपना भविष्य अंधकार में लग रहा है, और वो हर जगह जाके खड़े हो रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, और उनके ऊपर आप लाठीचार्ज करेंगे और आप आंसू गैस चलाएंगे, ये उचित नहीं है। सवाल ये है कि इनकी डिमांड है, इनकी डिमांड है जिसको राहुल गांधी ने बिल्कुल स्पष्ट देहरादून में अपने चार्टर में रखा है कि हम कांग्रेस पार्टी की ओर से 3 बातें कर रहे हैं। एक कि एग्जाम पैटर्न अब टेक्नोलॉजी के हिसाब से 21वीं सदी के हिसाब से हो, स्टूडेंट सेंट्रिक हो, फ्लेक्सिबल क्वेश्चन पेपर्स हो, रैंडम क्वेश्चन पेपर्स हो, और सिक्योर क्वेश्चन बैंक हो, यह राहुल गांधी जी ने डिमांड की है। दूसरी डिमांड है कि ये जिस तरह का एनटीए आपने बना दिया, जिस तरह की संस्थाएं बना दी जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई ऑडिट नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठेके पे चलती है, वो आप बंद कीजिए। आप पॉलिटिक्स में एजुकेशन में पॉलिटिक्स को उड़ाना बंद कीजिए। आप वाइस चांसलर आरएसएस के लगाना बंद कीजिए। आप ठेकेदारी पे पूरे एग्जाम कराना बंद कीजिए, और आप जो गुनहगार हैं पेपर लीक के उनको सजा दीजिए। ये दूसरी बात राहुल गांधी ने सामने रखी देश के। और तीसरी बात कि जिन बच्चों की आत्महत्याएं हुई हैं, जिनको नुकसान हुआ है, उनको आप कॉम्पनसेशन दीजिए, उनके री एग्जाम तुरंत कराइए। ये हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है। और चौथा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी। आज प्रधानमंत्री ने बोला सुबह,
0: मैं आ रही हूं सुधांशु जी, राजीव राय जी से एक सवाल हो जाए। खबर आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह से धर्मेंद्र प्रधान की लंबी मुलाकात हुई है, 3.5 घंटे के आसपास ये मुलाकात चली है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या जानकारी है इस मीटिंग के बारे में?
7: देखिए बिल्कुल अंजना, 3.5 घंटे तक जो है धर्मेंद्र प्रधान जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ उन संसद भवन में उनकी मुलाकात चलती रही, और उसी दौरान जो है जेपी नड्डा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी लगातार जो है सीजेपी के जो प्रोटेस्टर हैं उनके साथ जो है बातचीत करते रहे, और फिर उनकी आखिरकार मुलाकात हुई जिसमें सीजेपी के दोनों जो प्रतिनिधि आए थे सौरव और आदित्य, दोनों ने ही जो है वो अपना ज्ञापन भी दिया। आशुतोष रायंका दोनों ने अपनी जो बात को रखा और उसके बाद ज्ञापन दिया और अपनी तीनों मांगों को रखा, उसके बाद बातचीत का क्रम आगे बढ़ा है। और लेकिन जेपी नड्डा ने ये भी अपील की कि आप वापस जब जाएं तो ये अपील करें कि अब जो धरना प्रदर्शन है उसको खत्म किया जाए और प्रशासन के साथ जो है शांति बनाए रखने में सहयोग करें। अब सरकार इन तीनों मांगों पर जो है वो क्या सोच रही है, नहीं सोच रही है, अभी तक इसको लेकर कोई भी चीज जो है वो सरकार की तरफ से नहीं आई है। लेकिन इतना जरूर है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है वो नहीं हो सकता। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, जब से ये मांग चली है सीजेपी की तब से अब तक कोई भी सरकार की तरफ से इस को लेकर बयान या कोई भी एक तरीके से इशारा भी जो है वो नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं बाकी जो दो मांगे हैं उन पर सरकार क्या सोच रही है, नहीं सोच रही है, उसको बारे में भी जल्द से जल्द जो है सरकार की तरफ से साफ कर दिया जाएगा।
0: चलिए ठीक है, आपसे और जानकारी लेंगे। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। करीब 3.5 घंटे ये मुलाकात चली है। राजीव राय जी, आपके पास एक बार आ रही हूं, और आपकी पार्टी ने भी और डिंपल यादव जी तो वहां पर पहुंची भी थी। आज बड़ा सवाल ये है कि इस पूरी व्यवस्था को ठीक करना है। ऐसे में ऐसा जो उनका कहना है सुधांशु जी का, भारतीय जनता पार्टी का, कि ऐसे नारे लगाए गए जो कि एक पैटर्न दिखाते हैं इस पर हमेशा सरकार को घेरने का हर सत्र के पहले, इस पर आपका जवाब।
8: सुधांशु जी पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं और कहां से लोगों को प्लांट करके नारे लगवाते हैं। अंजना जी, मैं इतने दिनों तक अपने क्षेत्र में था और कल शाम को ही आया, और यकीन मानिए मैं जहां भी जाता था अपने क्षेत्र में, भैया आप यहां क्या कर रहे हैं, देखिए वह पेपर लीक हो रहा है, हमारे इतने पेपर लीक हो गए, आप लोग समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं, अखिलेश जी जाएंगे क्यों नहीं। और मैं मजबूर हो गया कि कल शाम को जब एयरपोर्ट से उतरा तो सीधे वहां गया। ये लोगों के देश की भावनाएं हैं, ये तो कोई भी अगर आंदोलन होता, ये जो लोग विपक्ष में थे यही लोग हैं कि उस समय के सीएजी के विनोद राय जी को आगे करके उनसे रिपोर्ट बनवा के 2G 3G कोल स्कैम सब में रोज रोज इस्तीफा मांगते थे, और जब इन्हीं की सरकार आई तो कोई किसी में सब में सबके सब बरी हो गए। और राजनाथ सिंह जी इनके मंत्री हैं, बोलते हैं सरकार में कोई इस्तीफा नहीं देता है। मैं सब पूछता हूं कि इस देश में आप भी इतने लंबे समय से पत्रकारिता कर रही हैं, बहुत सारी सरकारों को, बहुत सारे प्रधानमंत्री को, बहुत सारे कैबिनेट को आपने कवर किया है, क्या नैतिकता के नाम पर इस देश में इस्तीफे नहीं होते थे, लोग इस्तीफा नहीं देते थे? और जो मैं वहां गया था किसी ने ऐसे कोई नारे नहीं लगाए, और मैं बड़ा दुखी हूं आपके पत्रकार अरविंद ओझा जी से के रिपोर्ट से, अगर आपकी इजाजत हो, और हालांकि मेरा कांसेस परमिट नहीं करेगा, मैं भी था उस थाने में, मैं भी उस आंदोलन में था। और अंजना जी आप महिला है दर्द होगा, लड़कियां बिना कपड़ों के ऊपर के कपड़े फटे हुए दौड़ दौड़ के भाग भाग के छिपने के लिए थाने में दौड़ी, डिंपल जी ने उनको ढका और सर फटा हुआ खून लहूलुहान, मैं गया सारे डीसीपी एसीपी सबके यहां खोज रहा था कि एक एम्बुलेंस तो मंगा दो, ये बच्चे मर जाएंगे, मेरे पास वीडियो है फोटो है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं सबूत पर बोल रहा हूं। फिर वो कहा गया कि आ रही है एम्बुलेंस, फिर जब मैं जाकर नाराजगी व्यक्त की कमरा दरवाजा बंद करके, पुलिस वाले बैठे थे पुलिस स्टेशन में, जब मैं गुस्सा किया तो बोले चार बाहर एम्बुलेंस खड़ी है, मैं बाहर एम्बुलेंस में जाता हूँ, आईपीएस रैंक ऑफिसर को खोजता हूँ, उनको बोलता हूँ अच्छा मैं पता कर रहा हूँ हम तो बाहर से हैं। मैं जाकर उस वीडियो को, जो एक एम्बुलेंस खड़ी थी उसका वीडियो भी बनाकर ले आया हूँ, जिसमें न तो कोई ड्राइवर था, न तो कोई मेडिसिन थी, न कोई फार्मासिस्ट था, नर्स था, एक बच्चा बैठकर करा रहा था। अभी कहिए अगर आपके पास टाइम है तो मैं प्ले कर दूंगा। और मेरे ऊपर भी लाठी चली। और ये बताइए, ये कानून व्यवस्था बनाना काम है, लेकिन कानून में कहां रखा है बिना नेम प्लेट के पुलिस वाले रहेंगे, शादी वर्दियों में पुलिस वाले रहेंगे, शादी वर्दियों में पुलिस वाले लाठी मार रहे थे, महिला एक लड़की को घसीट के ला रहे थे, तब हम लोग चिल्लाए वहां, और ये अपनी आंखों देखा। मैं किसी प्रोपेगंडा में नहीं जा रहा हूं, मैं किसी पार्टी किसी उसका नहीं कर रहा हूं। और मांग क्या, मैं तो चूंकि उस कमेटी में भी हूं, शिक्षा की कमेटी में हूं, स्टैंडिंग कमेटी में हूं, लेकिन जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक जब तक रिपोर्ट पेश नहीं की जा सकती मैं यहां नहीं बोल सकता जो कारनामे वहां हुए हैं। और मैं चूंकि एजुकेशन से जुड़ा हूं तो मैं भी जानता हूं कि परीक्षा कैसी होती है। जो सुझाव देना था वहां सुझाव दे दिया, और अगर वो रिपोर्ट पेश हो गई होती तो पार्लियामेंट में आज इनको तार तार कर देता। आज मैं मेरे पास जो सबूत है मेरे वो है, लेकिन चूंकि गाइडलाइन इसे नहीं बोल सकता। इतना नंगा नाच पुलिस प्रशासन का, और सारे लोग, डिंपल जी ने बहुत सारे विजुअल्स आपके पास भी हैं, उन खाली इतना ही बोला, थोड़ी तो माना होता है, सीखो ये बेटियां हैं, ये देश की बेटियां, कपड़े फाड़ रहे हो, और उस लड़की आई जो बचा रही थी, अपील कर रही थी कि यहां से कोई नहीं जाएगा, मैं बोल रही हूं, उसको लाठी मार दिया था इन लोगों ने। एक व्यक्ति जिसका लहूलुहान था, देखा नहीं जा रहा था, आके पुलिस वालों को पैर पकड़ रहा था कि आपके बच्चे फले फूले, आपके बच्चे आगे पढ़े, इतना हृदय विदारक दृश्य था। और ये बोलते हैं कि वो नारा दे दिया किसान आंदोलन में खालिस्तानियों से जोड़ देंगे, कोई भी आंदोलन होगा उसमें विदेशी फंडिंग लगा देंगे, इन्हीं का सब प्लांट किया हुआ है, यही अपने लोगों को भेजते हैं, उन्हीं से नारे दिलवाते हैं, तो साबित भी हो चुका है ना,
0: ठीक है।
8: ये तो एक बार नहीं, कई बार साबित हो चुका है। सिंपल सी बात है, परीक्षा प्रणाली में सुधार, ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते? इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने इस्तीफे नहीं मांगे हैं विपक्ष में रहते हुए, और सरकार के मंत्रियों ने इस्तीफे दिए हैं कि नहीं दिए हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रालय में, मंत्रिमंडल में इस्तीफे हुए हैं कि नहीं हुए? कौन सी ऐसी सरकार आ गई, अहंकारी सरकार आ गई, जो सारे कुकर्म करेंगे और दोष दूसरों के बढ़ेंगे और इस्तीफा नहीं देंगे? कौन सी ऐसी चिट्ठी हुई? क्या इसलिए कि एक इस्तीफा मांग लोगे तो भेद खुल जाएगा, सारे पोल पट्टी बाहर आ जाएगी, बाहर आकर आ जाएगा? आप बिस्तरवी की पराकाष्ठा पार किए सिद्धांत जी, आपके घर में भी बेटे बेटियां होंगे, और जाएंगे घर में तो आवाज आपसे भी पूछेगा अगर बाहर हो। हमारे साथ तीन बच्चियां आई है पार्लियामेंट तक, हमने रिसेप्शन पे बैठाकर उनको गाड़ी से भेजवाया, जो ये कह रहे थे कि हमारे पिताजी बीजेपी के नेता हैं, हम बता कर नहीं आए।
0: सुधांशु जी जवाब दे, सुधांशु जी जवाब दीजिए सुधांशु जी, फिर मैं भारती जी आ रही हूँ।
5: देखिये, मैंने तथ्य और डेट कोट करके बोले थे, और राजीव राय जी ने बगैर तथ्य डेट कोट किए हुए अपने मन से एक भावनात्मक चित्रण करने का प्रयास किया। अरे फैक्ट का जवाब दीजिए, मेरा लिंग मेरी आजादी का इस्तीफा से क्या मतलब है? बताइए, उमर खालिद के बारे में जो बोल रहा है वो हमारा प्लांट किया हुआ है?
8: अरे मैं पूछ रहा हूं,
5: आप कोई समझदार है कि इतनी बचकानी शैतानी हरकत कर रहे हैं?
0: राजीव
5: सुनिए मेरे भाई,
0: राजीव बारी बारी बारी बारी,
5: ये नाम रहेगा अल्लाह का,
0: इसके बाद मैं आपको बोलने दूंगी,
5: टीचर है वो, घोषित वामपंथी है राजीव राय जी, कुछ भी आके यहां पर आपको बोलना शुरू कर देना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने वो वीडियो देखा था ना, नाम रहेगा अल्लाह का जो गा रही है, अरे घोषित वामपंथी है, आप कह रहे हमारे, वो तो आके कुछ भी बोलना शुरू कर देना। मुझे लगता है जो राजीव राय जी ने बोला ये बिल्कुल साफ दर्शाता है कि उद्देश्य तथ्यात्मक तर्कसंगत विमर्श करना नहीं, किसी प्रकार येन केन प्रकारेण भड़काना है। अब मैं प्रमाण के साथ पुनः बोलता हूं,
0: आर्यू राजीव जी वो पूरा कर ले, मैं आपसे जवाब लूंगी, तब दिखा दीजिएगा, मैं तुरंत आ रही हूं।
5: दस हजार लोग आए राहुल गांधी जी, नहीं मैंने फिर सुना दे रहा हूं भैया, राजीव राय जी ये जितने नारे लगे वो हमेशा से लगे हैं, और लेफ्टिस्ट लोग ढपली लगा के आजादी आजादी बोलते हैं, और आपको शर्म नहीं आ रही, आप कह रहे हैं वो हम लोगों के आदमी है, इतनी भचकानी हरकत मत करिए। अब मैं गुरदीप जी की बात का जवाब देता हूं, इन्होंने कहा 10,000 लोग आए थे राहुल गांधी के कार्यक्रम में, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे, हम इतनी भीड़ नहीं ला सकते थे। ये देखिए, पहली बार स्वीकार किया किसी कांग्रेस के नेता ने कि उनके बस की 10,000 की भीड़ लाना नहीं है, वो राहुल गांधी जी के कार्यक्रम में कांग्रेस के बाहर के लोग। तब दूसरी बात कहना चाहता हूं, इस देश में पेपर लीक हुए हैं, मगर एक आंदोलन अंजना जी वो हुआ है जो उस सरकार के ही नेता ने किया है। राजस्थान में 19 पेपर लीक हुए थे, और सचिन पायलट जी ने अजमेर से जयपुर तक यात्रा निकाली थी पेपर लीक के खिलाफ, और कहा था चाहे मेरे पैरों के छाले भी फट जाएं, मगर मैं छात्रों के हितों के लिए संघर्ष करूंगा। बोलिए हां या ना। और इतना ही नहीं, उसके बाद उन्होंने यह भी कहा था कि ये कैसे मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो जादूगर हैं, अर्थात कि वो लॉकर में रहते हैं, लॉक और पेपर बाहर आ जाता है। और उसके बाद क्या हुआ था यह भी मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, आज ये लोग जो ज्ञान दे रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि यूएपीए कानून जो है, यानी सीडेशन का लॉ, इसको निरस्त कर देना चाहिए, इसका दुरुपयोग होता है। मगर उसका उपयोग कहां किया गया? पहली सरकार राजस्थान की कांग्रेस सरकार जिसने उपयोग किया, किसके अगेंस्ट किया? आतंकवादियों के खिलाफ नहीं, अपराधियों के खिलाफ नहीं, अपने विरोधियों के प्रति नहीं, सचिन पायलट और उनके विधायकों के खिलाफ, अपनी पार्टी के विधायकों के खिलाफ इन्होंने देशद्रोह के मुकदमे के तहत कार्य किया, उनकी सर्विलेंस कराई। अब मैं दूसरा भी पूछना चाहता हूं,
0: सुधांशु जी गई उनकी सरकार राजस्थान से,
5: कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, चार
0: अब वहां भी आपकी सरकार है सर, केंद्र में भी आपकी सरकार है,
5: सुन लीजिए,
0: सब जगह आपकी सरकार है,
5: तो ढाई साल से राजस्थान में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, जो लोग ये कहने का प्रयास करते हैं अंजना जी, तो कांग्रेस चार राज्यों में सरकार में भी तो है, गवर्नेंस का एक मॉडल बताएं। जैसे मोदी जी ने गुजरात मॉडल दिया था, जैसे हम लोग विपक्ष में थे मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली लक्ष्मी योजना और कृषि में विकास करके दिखाया था। भाई साहब कर्नाटक तेलंगाना दोनों तो बहुत संपन्न राज्य हैं, हिमाचल और केरल भी, दिखाओ तो ना कि मॉडल ये है गवर्नेंस का। चलो जहां आपकी राज्य सरकार है वहां के आप एग्जाम में दिखाइए हमने ये किया, जबकि फैक्ट ये है कि जिन एजेंसीज पे आप आरोप लगा रहे हैं, तेलंगाना की यूनिवर्सिटी ने भी उसी को पेपर सेट करने के लिए दिया है और कर्नाटक की यूनिवर्सिटी ने भी उन्हीं को पेपर सेट करने के लिए दिया। तो अगर आप ईमानदार हैं तो अपने सामने रखिए, यह भी ध्यान रखिए, चार राज्यों में आप सरकार में, आप कहिए मैं ये करके दिखा रहा हूं, जैसे हम विपक्ष में थे और दिखाते थे कि हमारा राज्यों का मॉडल ये।
0: चलिए जल्दी से गुरदीप सप्पल जी जवाब दीजिए, राजीव राय जी भी कुछ दिखाना चाह रहे हैं, भारती जी के पास मुझे जाना है।
6: हाँ। तीन चार बातें बोल दी हैं सुधांशु जी ने, पहले तो नारों पे बोला। सुधांशु जी नारों के इस्तेमाल पे इतना परेशान मत होइए, हमने देखा है कि आपके लोग जय श्री राम का नारा किसी की लिंचिंग के लिए भी लगाते हैं। ऊर्जा मंत्री के यूपी से जब पूछा जाता है कि बिजली नहीं आ रही तो कहते हैं जय श्री राम, अगर जनार्दन रेड्डी से पूछते हैं कि आप सदन में नहीं आ रहे हैं कर्नाटक में तो वो बोलते हैं जय श्री राम, अगर बंगाल में किसी पे हमला करना है तो बोलते हैं जय श्री राम। नारों का दुरुपयोग पे आप किसी को सलामत दीजिए। दूसरी बात, आपने बोला मुखौटा और गैर राजनीतिक, अरे आरएसएस से बड़ा मुखौटा और गैर राजनीतिक संगठन इस देश के अंदर कौन है? हम तो कहते हैं कांग्रेस में कि राजनीति आत्मा है डेमोक्रेसी की, गैर राजनीतिक चीजें तो आप बोलते आए हैं। और तीसरी बात, आपने बड़े अच्छा वो बोला आज गुजरात की मॉडल के बारे में, हम तो ये जानते हैं कि हिमाचल हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो या केरला हो, सारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, पर कैपिटा में गुजरात से ऊपर है। हमको ब्रांडिंग जो आपने पीआरओ ब्रांडिंग करके एक झूठी एक माहौल तैयार किया था, अब तो देश में कलाई खुल गई। आप पुरानी बातें मत बोलिए, आज की तारीख में बताइए 154 पेपर लीक हुए हैं जो पकड़े गए 10 साल के अंदर, 154 जो नहीं पकड़े गए उनकी बात कीजिए। और ये बताइए कि जो एनटीए आपने बनाया 2018 में, उस एनटीए को आपने ऑडिट से मुक्त क्यों किया? आपने एनटीए जो बनाया उस एनटीए को इस तरह से क्यों बनाया कि पेपर सेटिंग हो, पेपर का ट्रांसपोर्टेशन हो, सेंटर का लोकेशन हो, पेपर की चेकिंग हो, सब ठेके पे दिया जाए? ठेकेदारों से इतना प्रेम क्यों आपकी सरकार को? इसका जवाब दीजिए ना। ये जो व्हाट अबाउट ट्री है कि आपकी सरकार में हुआ, इधर से हुआ, उसको छोड़ दीजिए। छात्र ये पूछ रहा है कि मोदी सरकार ने वो पॉलिसी क्यों बनाई? इस देश में यूपीएससी है, यूपीएससी पूरी तरह सरकार के कंट्रोल में है, ट्रांसपेरेंट है, उसका ऑडिट होता है, उसके परमानेंट इंप्लॉयज हैं। आपने एनटीए में परमानेंट इंप्लॉयज रखने तक से मना कर दिया ताकि आरएसएस के लोगों को आप वहां पे काम दे सकें ठेकेदारी पे, ठीक, और ठीक, कमाई भी कर सके।
0: अभी तक भारती जी बोल भी नहीं पाए हैं,
6: इसका जवाब चाह रहे हैं।
0: सुधांशु जी एक साथ जवाब दीजिएगा, एनटीए पर तो गंभीर सवाल उठते ही है। अरुण भारती जी आपकी पार्टी कहां खड़ी है और इस तरह के आंदोलन को लेकर क्या जो संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए, बातचीत पहले से ही क्यों नहीं शुरू की गई, ऐसा लगता है आपकी पार्टी को?
9: अंजना जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मुझे थोड़ा समय दीजिएगा बोलने के लिए। देखिए छात्रों को लेकर के हम लोग बड़ा स्पष्ट है, हमारे नेता चिराग पासवान जी इस बात को लेकर बड़ा स्पष्ट है कि छात्र की जो चिंताएं हैं हमारी चिंताएं हैं, हमारे छात्र हैं, हमारे बच्चे हैं, इनकी जो भी चिंताएं होंगी, जो भी मांगे होंगी, उनको हम लोग मानेंगे। मगर छात्र राजनीति के आड़ में कुछ ऐसे लोग उसमें घुस जाएं जो अराजकता फैलाने का प्रयास करें तो कदाचित सही नहीं है। आप देख रहे होंगे लगातार अभी राजीव राय जी बोल रहे थे कि डिंपल जी तख्ती लेकर के गई। मुझे याद है, जहां तक मुझे मेरी मेमोरी सही सर्व करती है, अखिलेश जी जब सीएम थे 5 साल तो 3 बार पेपर लीक हुए थे सीपीएमटी के, उस वक्त उनको तख्ती लेकर के जाते हुए मैंने नहीं देखा था। देखिए हमारे बच्चे हैं, इनकी जो जायज मांगी होगी सुनी जाएगी। और चिराग पासवान जी भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री होने के तौर पर लगातार इसको लेकर के मंत्रिमंडल में बातचीत भी कर रहे हैं, उठा भी रहे हैं। जब विपक्षी दल हमारे ऐसे बच्चों के आंदोलनों में अपना एजेंडा चलाने का प्रयास करते हैं तब यह दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। जब लगातार हम लोग देखते हैं कि किस तरह के कम्युनिस्ट पार्टियां लगातार वहां आती हैं, अलग अलग इस तरह के बातें करती हैं जो कि कहीं ना कहीं से इस आंदोलन को ही उनकी राजनीति चमकाने या फिर उस बुलाई गई भीड़ पर पलने की कोशिश जैसी लगती है। देखिए बच्चे हमारे हैं, इसलिए आप मत चलाइए अपने राजनीतिक हथकंडे, मत दीजिए अपने डंडे और अपने झंडे। बच्चे हमारे समझदार हैं और जैसे ही आज उनका मिला ज्ञापन जेपी नड्डा जी को, जेपी नड्डा जी ने उनसे मुलाकात की, उनके मांगों को भी लिया है और आगे उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। विपक्ष लगातार देखिए इनके पास अपने खुद के एजेंडे नहीं है, संसद चल रहा है, बहस के लिए फ्लोर खुला हुआ है। और इससे पहले मैं अपनी बात आगे ले जाऊं, एक बात और करना चाहूंगा कि इस बार विपक्ष ने बहुत ही गलत एक संसदीय परंपरा शुरू की है, एक संसदीय परंपरा का अपमान किया है, जहां पर जब दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी जाती है वहां भी नारेबाजी। भला बताइए, आज तक कभी ऐसा हुआ था? आप जब श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो उनको पूरी श्रद्धा दीजिए। उसके बाद अध्यक्ष जी ने कहा कि सवाल लीजिए, सवाल हमारे आप मंत्रियों से कीजिए, आप बहस कीजिए, चर्चा कीजिए, 0 आवर है, 377 है, मुद्दों को रखिए। सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको सदन में बहस नहीं करना है, रोड पर आकर के तमाशा करना है, प्रदर्शन करना है, और छात्रों के बुलाए आंदोलन में खुद की राजनीति चमकानी है और खुद को पालना है, क्योंकि असली मुद्दे जो विकास के लिए चाहिए। मैं बता रहा हूं जिस तरह से छात्रों को छलने का काम यहां किया गया, अभी इस तरह से उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए, सपा ने कांग्रेस ने 24 में लोकसभा, बस 10 सेकंड, 2024 में लोकसभा चुनाव में चलाए थे हथकंडे की संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। 2 साल हो गया, कौन सा संविधान खत्म हुआ, कौन सा आरक्षण खत्म हुआ? सिर्फ लोगों को भरमाते हैं, डराते हैं, अपने राजनीतिक हथकंडों को चलाते हैं।
0: ठीक है, अब राजीव राय जी जवाब दीजिए, सीपीएमटी का 2-2 बार 3-3 बार पेपर लीक होना अखिलेश सरकार में, वो पूछ रहे हैं कि तब काहे नहीं तख्ती लेके निकले थे सड़क पर। और इसी के साथ साथ उनका सवाल है कि एक प्रथा जो है, अगर श्रद्धांजलि दी जा रही है उस वक्त ऐसा नहीं करना चाहिए नारेबाज। अपना वीडियो भी दिखा लीजिए जो बता रहे, आपने खुद बनाया ना राजीव जी,
8: झूठ बोलने के बड़े
0: राजीव जी
8: लोग है।
0: राजीव जी, हम सिर्फ आपसे कंफर्म कर रहे हैं क्योंकि सेंसिटिव इश्यू है, आप एक सांसद हैं, क्या आपने स्वयं ये वीडियो बनाया है या कोई सर्कुलेटेड वीडियो है? अगर स्वयं बनाया है तो जरूर दिखाइए, क्योंकि आपको इसकी सच्चाई,
8: हाँ ठीक है,
0: सच्चाई की आप मतलब आप ही को वेरीफाई करना होगा।
8: हाँ जाना जी,
0: हाँ।

0: करेंगे चैनल पर, कुछ भी बोल देंगे।
1: बोलिए
2: राजीव,
0: आप पुलिस स्टेशन में था और आपकी पुलिस थी वहाँ, पीटा नहीं जा रहा था वहाँ, हम लोग बचा कर ले आए थे वहाँ।
1: अच्छा
0: सुबह से उठते झूठ के अलावा भी।
3: अरे भाई आपने खुद बोला कि वीडियो आपने बनाया, इसका मतलब आप वीडियो बना रहे थे। बोलिए हाँ या ना। आपने अभी चैनल में बोला एक वीडियो आपने खुद बनाया, इसलिए चिल्लाइए नहीं, शांति से बैठिए। आपने
0: मैं चुनौती देता हूँ, मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं लाइव।
3: अरे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपकी आत्मा मर गई, आप खुद कह रहे हैं और कह रहे हैं मैं वीडियो बना रहा था
0: पुलिस स्टेशन में,
3: क्योंकि वीडियो बनाते हुए व्यक्ति किसी को बचा नहीं सकता। आपने खुद बोला आप वीडियो बना रहे थे, तो दर्शक क्या कर सकते हैं कि किसके मन का विचार कर
1: रहे हैं। राजीव
0: तब वीडियो बना रहे थे,
1: ठीक आराम से राजीव जी,
0: वीडियो ले बचा रहे थे। हम आप जैसे निर्दयी नहीं है,
3: अच्छा सब वीडियो बना रहे थे,
0: क्रूर नहीं है हम, आपके साथ बेशर्म नहीं है हम, आप जैसे पत्थर।
3: मतलब जो वीडियो बना रहा,
1: जवाब दीजिए सुधांशु,
3: उनके अनुसार पिटाई का वीडियो बना रहा था मगर बचा नहीं रहे थे, वो बड़ा दयावान है।
0: ठीक है,
3: आपने बोला, मैंने आप ही का वर्ड पकड़ा। अरे बिलबिलाइए नहीं साहब, देखिए फैक्ट आने के बाद आदमी कैसे बिलबिला जाता है वो आपके दर्शक देख सकते हैं। अब मैं अगले पॉइंट पर बताता हूँ। अंजना जी, दूसरा इन्होंने बोला,
1: जवाब दीजिए उसके गुरदीप जी, आप भी बीच में मत बोलिए, मैं आ रही हूँ। राजीव जी, सबसे जवाब लूंगी जल्दी से।
3: आपने
1: सुधांशु जी बोलिए,
3: अब हमने अपने टर्न पे बोलिए, मैं बस ब्रीफ में क्विकली बोल रहा हूँ दो पॉइंट्स में। इनके मुंह से क्या निकला अंजना जी कि खमनई को श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी। अब मुद्दा अभी छात्रों की बात कर रहे थे, अचानक खमनई कहां से आ गए। अरे भाई खमनई को श्रद्धांजलि इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि खमनई हेड ऑफ द स्टेट नहीं थे। इब्राहिम रईसी की फरवरी 2025 में जब डेथ हुई थी वो राष्ट्रपति थे, वो सुप्रीम लीडर उनका अंदरूनी मामला है। जैसे सोनिया गांधी जी सुप्रीम लीडर थी, पर हेड ऑफ द स्टेट का प्रोटोकॉल सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिलेगा, सोनिया गांधी जी को नहीं मिलेगा। उसी प्रकार ईरान के राष्ट्रपति को मिलेगा। इब्राहिम रईसी की डेथ के ऊपर फरवरी 2025 में भारत सरकार ने ऑफिशियली शोक व्यक्त किया और शोक मनाया भी। इनकी डेथ के ऊपर फॉरेन सेक्रेटरी ने जाके किया। अब इतनी अकल किसी को नहीं है कि जो हेड ऑफ द स्टेट नहीं है, जो वहां का एक इंटरनल लीडर है, उस पर कह रहे हैं संसद में होना चाहिए। अब तीसरी बात देखिए, नीट के मुद्दे पर अंजना जी एक और बात समझिए, इन लोगों के मन में रिएक्शन क्यों है। जब तक ये नीट का एग्जाम नहीं आया था तब तक सारे प्राइवेट कॉलेजों में सीटें बिकती थी। एक मेडिकल की सीट एमबीबीएस की 20-25 लाख रुपए से लेके 45-50 लाख रुपए में जाती थी, सबको पता है। और पीजी की सीट 50-60 से लेके 1 करोड़ तक। कितने मध्य वर्ग के परिवार के बच्चे जा पाते थे। जब से मोदी जी ने नीट की व्यवस्था की तब से उन सारे बच्चों को वो अधिकार मिला कि वो भी उन प्राइवेट स्कूलों में जा सकते हैं। और मोटी रकम कमाने वाले कौन थे, मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, उन कॉलेजों के मालिक 90% कांग्रेस के नेता हैं। तो आपके मन में नीट के आने के बाद जो दर्द है, जो आपके मन की कसक है, वो समझी जा सकती है कि जो बच्चों का शोषण करके कमाई हो रही थी वो अब बंद हो गई। अब एग्जाम के थ्रू आ रहे हैं जिसमें कि कॉलेज के लिए कमाई का स्कोप खत्म हो गया है, शायद ये भी एक कारण हो सकता है।
1: सुधांशु जी, सुधांशु जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि पहले सीट की बोली लगती थी, लेकिन अब अगर पेपर की बोली लगने लगे तो ये तो उसका विकल्प नहीं हो सकता ना। एनटीए और एनटीए के कामकाज को लेकर बहुत गंभीर सवाल है।
3: एक लाइन में बोल दो।
1: हाँ, तो आप इसका जवाब भी तो दीजिए। अब आप एक विकल्प लेकर आए, उस विकल्प में पेपर की बोली लग रही है, क्या फर्क हुआ?
3: अब एक लाइन बोल देता हूं। देखिए, पेपर लीक उसे कहते हैं कि पेपर प्रिंट हो और उसके बाद परीक्षा स्थल पर जाए, वहां से लीक हो जाए। इस बार स्थिति बड़ी विचित्र हुई है, जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुई। पेपर सेटिंग करने वाले ने पेपर लीक कर दिया। मतलब ये तो वो स्थिति हो गई कि जज अपना जजमेंट लिखता है और प्रोनाउंस करने से पहले तक जजमेंट माना जाता है कि वो गोपनीय रहेगा। अब अगर जज जिसने जजमेंट लिखा है वही लीक कर दे तो अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति, पर सरकार उसकी भी व्यवस्था कर रही है ताकि अब पेपर सेटिंग करने, ऐसा पहले नहीं होता था, ये नहीं माना जाता था कि पेपर सेट करने वाले खुद लीक करेंगे, तो अब उसकी भी व्यवस्था टेक्नोलॉजी वगैरह के माध्यम से की जा रही है कि अब पेपर सेट करने वालों के पास भी वह परिस्थिति न रहे कि वो लीक कर सके।
1: गुरदीप सप्पल
4: सुधांशु जी की तीन बातों पर जवाब देता हूं एक एक लाइन में। सुधांशु जी को यह दर्द तो है कि राजीव जी ने पिटाई करते वीडियो बनाया, लेकिन यह दर्द नहीं है कि उनकी पुलिस ने छात्रों की पिटाई की, यह सच्चाई है। दूसरी बात, अब इन्होंने बोल दिया नीट पे पहले सीटें बिकती थी। सुधांशु जी, आपने जो व्यवस्था बनाई उसमें दो बड़ी खामी है। आपने सरकारी कॉलेज बनाने ही बंद कर दिए। आज प्राइवेट की फीस 1 करोड़ से 3 करोड़ है मेडिकल की, और आप कहते हैं गरीब बच्चा वहां एडमिशन ले सकता है। और दूसरी बात, जो व्यवस्था अब एनटीए और आपके सिस्टम ने बनाई है, मैं आपको महाराष्ट्र का पिछले साल का एग्जांपल देता हूं। वहां का जो सेंट्रल एडमिशन टेस्ट था

0: इंजीनियरिंग के लिए, उसमें टॉप 15 लोग जिनका परसेंटाइल 100 था या 99.999 था, उनके 12वीं में पीसीएम के अंदर 35 से 45% नंबर थे। ऐसे कैसे संभव है कि जो सिस्टम आपने बनाया कि एंट्रेंस में 100% है और 12वीं के एग्जाम में आप 35 से 45 के बीच में अटक रहे हैं?
1: ठीक है,
0: ये है प्रॉब्लम।
1: जरा कमी है गुरदीप जी, ठीक है, आपके इस बात का भी जवाब। राजीव जी जल्दी से दो लाइन का एक कमेंट, टाइम खत्म हो रहा है। राजीव जी जल्दी से दो लाइन का, फिर दो लाइन का जवाब लूंगी सुधांशु जी से। राजीव जी, अच्छा शायद आवाज नहीं जा रही है। सुधांशु जी जल्दी से सिर्फ दो लाइन में जवाब जो वो कह रहे हैं सिस्टम को लेकर। सुधांशु जी देखिए, ये जो एग्जाम में फेल, मतलब पेपर का लीक होना या मार्किंग सिस्टम में प्रॉब्लम, ये किसी और ने नहीं क्रिएट किया है, ये आप ही को, आप सरकार हैं साहब, आप ही को सॉल्व करना होगा।
2: हाँ बिल्कुल, जो आपने बात कही, सरकार इस बात की पूरी व्यवस्था करने का प्रयास करेगी। अब ये भी हो सकता है कि पेपर सेटिंग एक व्यक्ति को न दिया जाए, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स बना लिए जाएं, उनके लिए एक पूरा 150 लोग अलग अलग देश में तय कर लिए जाएं, उनसे सर्टेन पेपर क्वेश्चंस ले लिए जाएं, फिर उनको मिक्स करके बनाए, व्यवस्था की जा रही है।
1: ठीक है, समय इतनी की इजाजत देता है, आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज रात 9 बजे जरूर रहिएगा मेरे साथ, ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाएंगे सीजेपी के कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च का संपूर्ण विश्लेषण, और इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या इस बार ट्रंप ईरान को मिटाकर ही रुकेंगे, और आखिर में आपको बताएंगे कि फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन की जीत पर गाजा में जश्न क्यों मनाया गया। देखते रहे।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया
3: है। हाँ ला भाई मेरा बैट, वो अभी तो ठीक हुआ। तो
5: चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Honey, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील टीएमटी से बना.
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील टीएमटी बाय एकदम सॉलिड.
4: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं. गोल्डी हिंग कण कण में जान.
5: वी आर ओवर जिमी.
6: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे. गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा. आप अपना देख लो.
7: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए. सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स. और अब लाइन लाइना डेट्स. इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती.
8: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स.
9: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं. 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई. हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं. 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया.
10: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर. आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे. इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं.
9: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम.
11: In association with
12: Sera Sanitaryware, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
13: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच. हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें.
14: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
11: In association with
15: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
16: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया
3: है।
4: हाँ
3: ला, ला भाई मेरा बैट।
5: वो अभी तो ठीक हुआ तू
6: तो चार्ज हुआ यार।
7: बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: We are over, Jimmy.
2: Hey, life में scratches तो आएंगे. गाड़ी के scratches को तो Cosmo PP अब संभाल लेगा. आप अपना देख लो.
3: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार. अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता, तो फिर सोचना क्या. रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें.
4: YouTube पे अब देखिए आज तक वर्टिकल. अरे भाई फिर घुमा रहे हैं, छोड़ दीजिए, घुमाने की आदत छोड़ दीजिएगा. अब देखिए आज तक वर्टिकल.
5: नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्रेडिबिलिटी किसकी है, किसको ये तैयारी करनी थी. आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, दुनिया में आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे हैं और आपके यूपी के मुख्यमंत्री ने आपके दिल्ली के ऊपर आरोप लगा दिया. SIT बनाकर क्या तक तैयारी कर दी कि मंदिर में चोरी हुई. भाई सच्चाई किसने खोली, SIT ने खोली कि SIT से चंदा चोरी हो गई. कौन जिम्मेदार है इसके लिए. नीट आप एग्जामिनेशन नहीं करा रहे हो, एग्जामिनेशन कराया उसके बाद भी शिकायतें हैं, तो आप क्या किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हो. नौकरी रोजगार दिए नहीं, अगर नौकरी रोजगार दिए होते इतने बच्चे क्या यहाँ सड़कों पे आते.
6: टू पुट फोर्थ माय व्यूज अबाउट दिस पेपर लीक एंड नीट एग्जामिनेशन घोटाला एंड नो चंदा चोरी तो है ही है, सब उसके समर्थक उधर बैठे हैं, लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ. और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहाँ पर आए हैं, वहाँ लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: हल्ला बोल में आज आप कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन पर देख रहे थे हमारी चर्चा। हम ब्रेक नहीं ले रहे, अब देखिए 7 तक नेहा के साथ।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

0: आज तक इस खास शो में अगले आधे घंटे में दिन भर की तमाम बड़ी खबरें शामिल होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदर्शनकारियों से बातचीत के बाद नड्डा का बयान, सुबह आया था बातचीत का प्रस्ताव, अच्छे माहौल में हुई बात, धरना खत्म करने की अपील, सीजेपी ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे समेत रखी 3 मांगे। हंगामे के बाद अब दिल्ली में हालात लगभग सामान्य, बच्ची से मारपीट और 50 के घायल होने की खबर का पुलिस ने किया खंडन, राहुल गांधी ने सरकार पर किया हमला। मॉनसून सत्र के पहले दिन मूसलाधार सियासत, पेपर लीक और चढ़ावा चोरी पर बरसा विपक्ष, हंगामे के चलते दोनों सदन कल तक के लिए स्थगित, शाह से मिले शिक्षा मंत्री, 3.5 घंटे चली बात। चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, सीजेआई ने दिया आदेश, एसआईटी का पुनर्गठन, सीनियर अधिकारी की अगुवाई में हो जांच, अब अगले हफ्ते हियरिंग। उत्तर से पूर्व तक कुदरत का कहर, असम के जोरहाट, शिवसागर, चराईदेव में भीषण तबाही, पुंछ में लैंडस्लाइड से 7 की मौत, रजौरी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। सबसे बड़ी खबर के साथ शो की शुरुआत कर रहे हैं, आज कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने जंतर मंतर से संसद तक मार्च किया, देश की राजधानी दिल्ली में संसद से लेकर सड़क तक हंगामा बरपा रहा। कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च को रोकने के लिए संसद भवन के पास आंसू गैस के गोले दागे गए और संसद के सभी दरवाजों पर सुरक्षा व्यवस्था अब भेद कर दी गई, जिसकी वजह से अब स्थिति नियंत्रित है।
1: जबरदस्त हंगामा बरपा है, कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक संसद भवन का घेराव कर रहे हैं और पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। प्रदर्शनकारी बेकाबू हुए तो पुलिस को उन्हें रोकने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा, फिर लाठियां चली, आंसू गैस के गोले दागे गए। प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए राजीव चौक और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन तक में घुस गए, जबकि कई लोग बैरिकेडिंग तोड़कर सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने तक पहुंच गए। कर्तव्य पथ पर भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला, देखिए ये दोपहर में करीब 1:30 बजे की तस्वीरें हैं।
2: कर्तव्य पथ का चौराहा है जहां आपको सिर्फ पुलिस के साइरेंस सुनाई देंगे और ये तस्वीर है जहां प्रोटेस्टर्स कुछ इस तरीके से अभी बाहर निकले।
1: सोशल मीडिया पर बताया गया कि प्रदर्शनकारियों में बहुत सारे घायल हैं, जिस पर दिल्ली पुलिस ने सफाई दी। दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि सोशल मीडिया पर गीतांजलि नाम की 12 साल की लड़की के साथ मारपीट, बाल खींचने और सिर में चोट लगने और साथ ही लगभग 40 से 50 अन्य लोगों के सिर फूटने के दावों वाली पोस्ट में गलत जानकारी फैलाई जा रही है। ये जानकारी गलत है, पोस्ट में किए जा रहे दावे सच नहीं है, कृपया गलत या गुमराह करने वाली जानकारी न फैलाएं और न ही उसे आगे बढ़ाएं। बहरहाल काफी देर तक यूं ही बवाल चलता रहा, लेकिन कुछ घंटों में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पा लिया।
2: कर्तव्य पथ पर हम लोग खड़े हुए हैं और अभी यहाँ पे स्थिति जो है आप कह लीजिए कि यातायात जो है वो चालू हो गया है। स्थिति यहाँ पे ये है कि प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है, लेकिन 2 घंटे पहले यहाँ पे तस्वीर बेहद अलग थी। तमाम प्रदर्शनकारी इन लॉन्स में पीछे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे भरे हुए थे और उसके अलावा खाकी का जो आपको तैनाती दिख रही है बिल्कुल एक्शन में दिल्ली पुलिस और अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे थे, एंटी राइड व्हीकल्स पीछे और तमाम दिल्ली पुलिस के बसें यहाँ पे तैनात थी, लेकिन अब वो खाली करा दिया गया है।
1: कुछ देर पहले तक रेल भवन के पास भी प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा था, लेकिन वहां भी थोड़ी देर में स्थिति नियंत्रण में आ गई।
3: मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं, जो कि रफी मार्ग है, जो कि रेल भवन से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। कुछ घंटे पहले यहां पर तमाम प्रदर्शनकारी मौजूद थे, दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के द्वारा इस पूरे इलाके को अब खाली करा लिया गया है।
1: संसद भवन के आसपास भी सड़कें अब खाली हैं, संसद से विजय चौक तक का इलाका खाली और सामान्य दिख रहा है।
4: यहाँ पर एकदम नॉर्मल सी है, जिस तरीके के बैरिकेड्स लगाए गए थे ताकि जो प्रदर्शनकारी थे जब वो यहाँ आने की कोशिश कर रहे थे वो सभी बैरिकेड्स को एक तरफ साइड में खड़ा कर दिया गया है और संसद परिसर के बाहर भी जो सामान्य तौर पर जो पुलिस कर्मी होते हैं वही लोग इस समय मौजूद है।
1: जंतर मंतर पर भी जहाँ सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा था उसे भी खाली करा लिया गया है। कुल मिलाकर अब स्थिति नियंत्रण में है। आज तक ब्यूरो।
0: तो सीजेपी के इस विरोध प्रदर्शन के साथ ही इस पर सियासत भी तेज है। विपक्ष ने सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को मुद्दा बना लिया है, सरकार पर जोरदार हमला बोला है। विपक्ष मांग कर रहा है कि सीजेपी की मांगों को सरकार मान ले।
5: सीजेपी के प्रदर्शन ने विपक्ष को सरकार के खिलाफ निशाना साधने का मौका दे दिया। आम आदमी पार्टी के दो नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह सीजेपी के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे, जहां पुलिस अफसर से उनकी तीखी बहस हुई।
6: आपको वहां हमने कहा था कि उस वाला वो रास्ता खुला, आप प्लीज उधर से आ जाइए।
7: तो इधर से मान लो,
6: नहीं सुनो, एक मिनट सुनो ना, वो रास्ता है जंतर मंतर के लिए,
7: ये है ना रास्ता,
6: यहाँ से रास्ता नहीं है सर,
7: ये रास्ता
6: नहीं है।
7: अरे जंतर मंतर बराबर आते हैं,
8: सारे लोग आ रहे हैं।
7: नहीं, सुनिए मेरी बात।
5: समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव भी जंतर मंतर पहुंची, जहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।
9: आज पूरे लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इतिहास के लिए ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप मीडिया रिपोर्टर्स हैं, पुलिस वाले भी उनकी आंखों में शर्मिंदगी दिख रही थी, लेकिन अपनी ड्यूटी के कारण अपने बैचेस निकाल के आए थे, गुंडे बने हुए थे कुछ पुलिस वाले, कुछ पुलिस वाले तो सहयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले बिना वर्दी के आए थे और बच्चों को मारा है, बच्चों को करंट दिया है। और जहां रूल होता है कि आपको टांगों में मारा चाहिए, बच्चों की छातियों पे मारा है।
5: इधर संसद के गलियारे में भी सीजेपी के प्रदर्शन की गूंज सुनाई दे रही थी।
10: इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार को? और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र, नौजवान, युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती है। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहे अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं।
11: बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है, और बच्चों पे आप टियर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हमारे।
5: कांग्रेस पूछ रही है कि अपना हक मांगने वाले युवाओं पर लाठीचार्ज क्यों?
12: क्या मांग कर रहे हैं? अपने भविष्य की मांग कर रहे हैं, अपने भविष्य सुरक्षित रहे उनकी मांग कर रहे हैं, तो ऐसे नौबत में लाठी चार्ज की क्या जरूरत?
5: विपक्ष सरकार पर हमलावर है, लेकिन सरकार से जुड़े नेता अलग सुर साध रहे हैं।
13: अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अच्छी तरह से डिस्कस करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ऐसे प्रोटेस्ट करने से तो कुछ काम नहीं होगा।
14: अब जो जंतर मंतर पे हो रहा है वो विद्यार्थियों के नाम पे राजनीति हो रही है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रही है।
5: इन सब बयानों के बीच सीजेपी का प्रतिनिधि मंडल स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिला। ये तभी की तस्वीरें हैं। सीजेपी ने अपने ज्ञापन में तीन मांगे रखी हैं। नंबर एक, सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए। नंबर दो, धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए या उनका इस्तीफा हो। नंबर तीन, नीट पेपर लीक की वजह से आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले।
15: सोनम वांगचुक जी को तुरंत रिलीज किया जाए, धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन तो अब आना ही पड़ेगा। और तीसरा, जो नीट के फैमिलीज है, जो बच्चे मर गए हैं 20 से ज्यादा, उन फैमिलीज को 1 करोड़ का मुआवजा मिले।
5: इस ज्ञापन के बाद सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने भरोसा जताया है कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी। आज तक ब्यूरो।
0: वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक वीडियो जारी करके मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने संदेश में सरकार को युवा विरोधी बताया।
16: दिस कंट्री हैज मेजॉरिटी ऑफ यंग पीपल। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द मोस्ट एंटी यूथ प्राइम मिनिस्टर इंडिया हैज एवर हैड। द बॉयज एंड गर्ल्स हु आर वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर नॉट क्रिमिनल्स, दे आर डिमांडिंग देयर राइट्स। देयर राइट्स आर टू हैव एन एजुकेशन सिस्टम दैट रिस्पेक्ट्स देम, to have an education system that is fair, to have an education system that is working. There's absolutely nothing wrong in what they're doing and it's disgusting what the government is doing.
0: और आज ही से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ, मगर सत्र की शुरुआत होते ही हंगामा शुरू हो गया। लोकसभा, राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया, जिसके बाद हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही को कई बार स्थगित करना पड़ा।
17: समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो।
18: गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रहे
17: हैं, संसद की मर्यादा नहीं बनती है।
5: मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई और सदन में विपक्षी सांसद जमकर बरसे,
17: सदन नहीं चलाना चाहते।
5: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। बार बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। मुख्य मुद्दा था पेपर लीक का।
19: नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्रेडिबिलिटी किसकी है, किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, दुनिया में आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे हैं।
5: लोकसभा के साथ राज्यसभा में नीट पेपर लीक का मुद्दा छाया रहा। राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया।
18: सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहाँ पर आए हैं।
5: नीट पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ संसद के भीतर ही नहीं संसद के बाहर भी गूंजा। समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ तख्ती लेकर डिंपल यादव ने मार्च किया।
20: वी वांट कि छात्रों की बात सुनी जाए, क्योंकि अब पानी जो है सर से ऊपर से निकल चुका है। देश के लिए जहाँ किसान, जहाँ हमारा एनवायरनमेंट हो, चाहे हमारा युवा हो, सभी परेशान हैं, और ये सरकार कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी रिफॉर्म्स लाने को तैयार नहीं है।
5: इन तमाम हंगामों के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक के पास होने के बाद देश की सर्वोच्च अदालत में जजों की संख्या बढ़ जाएगी। इस बिल का मकसद सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या एक्ट 1956 में और संशोधन करना है। प्रस्तावित कानून का मकसद केंद्र द्वारा जारी उस अध्यादेश की जगह लेना है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की गई थी। आज तक ब्यूरो।
0: और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के बाहर अपने संबोधन में कहा कि ये सत्र काफी ऐतिहासिक है। इस सत्र में सरकार कई अहम बिल लाने वाली है। साथ ही पीएम ने विपक्षी दलों से सकारात्मक रवैया अपनाना और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने की अपील भी की। और अपने ही संबोधन में प्रधानमंत्री राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि 28 साल के नौजवानों ने अंतरिक्ष में देश का झंडा गाड़ दिया। मैं 56 साल के युवा की बात नहीं कर रहा हूं।
21: जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए, हर आवाज को अवसर मिले, हर विचार को सम्मान मिले, ये संसद की हमारी भूमिका है।
0: कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने पीएम मोदी के बयान पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को किसी और चिंता नहीं करनी चाहिए।
22: ना आप अपना छाती का चिंता रखिए, आपका 56 इंच का छाती है ना, आप उसका ख्याल रखिए। हवा उतर रही है, इतना पाप करने के बाद मानसून क्या भगवान भी बख्शेगा नहीं हमें? लूट मची है, चंदा चोरी हर मंदिर में, तो ये मानसून का ये बड़ा माहिर है वे, असली मुद्दों से हटकर ये नॉनसेंस बताते।
0: बिहार विधानसभा में आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई, मगर सदन शुरू होते ही इससे पहले विपक्ष ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी विधायकों ने विधानमंडल के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष यहां शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है।
5: हाथों में तख्तियां और जुबान पर तेवर, बिहार में विधानसभा में मॉनसून सत्र की शुरुआत का पहला दिन हंगामा खेज था। विपक्ष के विधायक तख्तियां लेकर पहुंचे थे, नीट पेपर लीक का मुद्दा यहां भी उछाला गया। विपक्ष के विधायकों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा।
14: विधानमंडल का मुख्य गेट है और इसके ठीक बाहर ही आरजेडी माले तमाम विपक्षी दलों के जो नेता हैं, वो विधायक हैं, वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और हाथों में स्लोगन्स है, बैनर है, पोस्टर है। आरजेडी के विधायक हैं रणविजय साहू जी। रणविजय जी, आज पहले ही दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले आप लोग तो आक्रामक तेवर,
23: ये सड़क पर और सदन के अंदर भी सरकार के आंख खोलने का काम करेंगे। आज पूरे देश भर में छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, निज छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, पेपर लीक हुआ है, लेकिन सरकार चुप है, मोदी सरकार खामोश है और केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। जब तक बर्खास्त नहीं करेंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
5: विपक्ष आक्रामक था। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री ने भी धर्मेंद्र प्रधान पर जोरदार निशाना साधा। जंतर मंतर वाली गूंज यहां भी सुनाई दी।
1: आप भी बिहार के शिक्षा मंत्री रहे चंद्रशेखर जी, केवल नीट का सवाल ही है या और भी मुद्दों पे घेरेंगे सभा?
2: ये भाजपा नीति नफरती सरकार न सिर्फ बेरोजगारों के लिए कब्र खोद रही है, संपूर्ण देश की मिल्कियत को चंद विश्वसनीय विश्वस्त उद्योगपतियों के हाथ में बेच रही है, भारत के भविष्य के लिए खतरा है। इसीलिए ऐसे निकम्मी सरकार को हटाने का संकल्प लेकर के हम लोग आंदोलन के समर्थन में हैं। जंतर मंतर पर जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई है उसके खिलाफ हम लोग प्रतिकार स्वरूप यहां खड़े हैं। आंदोलन होगा, गली में होगी, सड़क पर होगा, सदन में होगा।
1: नेता प्रतिपक्ष क्या शामिल हो रहे हैं आज की कार्रवाई में या अभी भी बाहर?
2: नेता प्रतिपक्ष कहाँ है तो हम नहीं अभी बता सकते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष और इस पार्टी के हम लोग सिपाही हैं। इस पार्टी के हम लोग सिपाही हैं, हर कदम हमारी पार्टी और हमारे नेता अन्याय जुल्म के खिलाफ है।
1: चलिए, तेजस्वी यादव नहीं है और विधायकों को मालूम भी नहीं है कि कब से विधानसभा की कार्यवाही में वो शामिल होंगे, और आईपी गुप्ता जो है वो भी पहुंच गए हैं, मतलब सदन के अंदर भी यही रुक रहेगा गुप्ता जी?
3: अब ये जो बेशरम सरकार है वो सारे दरवाजे बंद करते, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, शासन प्रशासन को, तो हमारे पास एक ही रास्ता है, सदन।
5: मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले एक और दिलचस्प तस्वीर सामने आई। देखिए, इस आदमी के कंधे पर आरजेडी का गमछा था, तभी यहाँ रामकृपाल यादव पहुँचे, इसके बाद तस्वीर बदल गई। इस आदमी ने ये हरा गमछा फेंक दिया और इसकी जगह बीजेपी का गमछा पहन लिया। कार्यकर्ताओं ने आवाज लगाई कि अब ये बीजेपी में शामिल हो गया। बहरहाल, बिहार विधानसभा से जोरदार हंगामे के साथ सत्र शुरू तो हो गया, लेकिन सत्र क्या सुचारू रूप से चल पाएगा, ये सवाल बना हुआ है। शशि भूषण सिंह, पटना आज तक।
0: रबा शेयर बाजार की कारोबार के दौरान बिकवाली के दबाव के बीच घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 443 अंक कमजोर होकर 77,709 और निफ्टी 96 अंक टूटकर 24,239 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार में गिरावट की वजह पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, कमजोर वैश्विक संकेत और बैंकिंग शेयर्स में बिकवाली रही। शेयर बाजार की गिरावट के बीच रुपए पर दबाव बना रहा और डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे कमजोर होकर 96.44 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। कच्चे तेल की कीमतें और डॉलर की मजबूती के चलते रुपए पर दबाव देखने को मिला। वहीं सराफा बाजार में आज तेजी का रुख रहा। सोना 756 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा होकर 1,41,915 रुपए पर पहुंच गया, जबकि चांदी 3,493 रुपए बढ़कर 2,18,967 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सुरक्षित निवेश सेफ हेवन की मांग बढ़ने से सोने और चांदी में तेजी देखने को मिली है। और अब बात फुटबॉल वर्ल्ड कप की। नया सिकंदर फुटबॉल वर्ल्ड कप को मिल गया है। फीफा वर्ल्ड कप का नया बादशाह है स्पेन। बीती रात हुए शानदार मुकाबले में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर स्पेन की टीम ने अपने देश को, अपने फैंस को झूमने गाने और आतिशबाजी करने का मौका दे दिया। आज पूरी दुनिया इस नए विजेता का वेलकम कर रही है।
4: 2026, the champions of the world.
5: एक तरफ फुटबॉल का सिकंदर खड़ा है तो दूसरी तरफ मेसी की ये मायूसी वाली तस्वीरें। स्पेन ने अर्जेंटीना को फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में मात दे दी और उसके साथ ही मेसी का दिल टूट गया। रो पड़े मेसी। इधर मेसी की आंखें नम थीं, दूसरी तरफ जश्न था। ये दुनिया जीत लेने के बाद स्पेन के झूमते खिलाड़ियों की तस्वीर है जिन्होंने ये महामुकाबला जीता है और साथ ही पूरी दुनिया का दिल भी जीत लिया है। ये वो पल है जब विश्व विजेता स्पेन को न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में ये ट्रॉफी सौंपी गई। बेहद भावुक लम्हा था। दोनों टीमों के खिलाड़ियों का पहले मेडल पहनाकर स्वागत किया गया। अर्जेंटीना की ओर से सबसे पहले मेसी पहुंचे, फिर एक एक करके अन्य खिलाड़ी भी पहुंचे, फिर ट्रंप ने विजेता टीम को ये ट्रॉफी सौंपी। ट्रंप ने खास तौर पर उनसे मिलकर उनकी हौसला अफजाई भी की। पूरे वर्ल्ड कप में स्पेन शान के साथ खेला। पूरी टूर्नामेंट में स्पेन ने सिर्फ एक गोल खाया और फिर फाइनल में भी उसकी किलाबंदी इतनी ताकतवर साबित हुई कि मेसी समेत अर्जेंटीना के तमाम सितारे गोल करना तो दूर अटैक तक करने को तरस गए। उधर स्पेन लगातार आक्रामक होता जा रहा था। पहले और दूसरे हाफ में उसने कई शानदार अटैक भी किए, लेकिन हर बार अर्जेंटीना के गोलकीपर मार्टिनेज ने कई शानदार बचाव करते हुए नतीजे को एक्स्ट्रा टाइम तक धकेल दिया। आखिरकार 106वें मिनट में टोरेस ने इस पावरफुल लेफ्ट फुटर के जरिए गोल कर सनसनी मचा दी। इसके बाद शुरू हुआ न खत्म होने वाला जश्न। आज तक ब्यूरो।
0: रोहित शर्मा का रॉयल रूट पहले लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में देखने को मिला, जब उन्होंने 138 रन की रिकॉर्ड तोड़ पारी खेली। इसके बाद आया उनका वो जवाब जो आलोचकों की बोलती कई महीनों तक बंद रखने के लिए काफी है।
5: संन्यास के शोर पर सेंचुरी भारी, मुंहतोड़ जवाब देने की अब रोहित की बारी। संन्यास की सलाह देने वालों को रोहित शर्मा का ये जवाब हमेशा याद रहेगा और खुद रोहित के लिए तो यादगार रहेगा ही। ढेरों सवालों का बोझ लेकर वो मैदान पर उतरे थे, लेकिन हर एक शॉट के साथ साथ ये बोझ भी हल्का होता चला गया। 138 रन की पारी के दौरान मैदान का शायद ही कोई कोना होगा जो उनके शॉट से गुलजार ना हुआ हो। इस शतक के साथ ही रोहित ने कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए। लॉर्ड्स में वनडे शतक जमाने वाला पहला भारतीय, सबसे उम्रदराज भारतीय और विदेशी धरती पर सबसे ज्यादा वनडे शतक जमाने वाला बल्लेबाज। फिर जब रनों का अंबार लग गया तो रोहित ने आलोचकों को जवाब भी दिया अपने ही अंदाज में।
6: Look, my job is with the bat. Come and play, represent my country, represent the team. That's what I've been told to do since I made my debut. So that's what I'm going to do. You know, the noise since I made my debut was there. Till the time I'm going to stay here, it's always going to be there. So it doesn't really matter too much. What matters is what I do on the field, try and contribute to the success of the team. That's all my focus is right now. Let the noise be there. If there's no noise, there's no fun. My job is inside, their job is outside. So that's how I look at it.
5: Team India ye mukabla haar zarur gayi, lekin Rohit Sharma Lord se aisi rahat lekar aa rahe hain jo aane wale dino mein khud unke aur team ke liye kafi kaam aane wali hai. Aaj Tak Bureau.
0: इस बुलेटिन में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो।
8: इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
24: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन।
25: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम। And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo, flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd. To the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
26: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
27: Hey there, it's Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville.
28: Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had.
27: And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues, and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcasts,
28: in the TuneIn app
27: or at TuneIn.com.
29: For him and her.
30: Papa. सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
31: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
30: छक्का?
31: सब कैशलेस हो गया
30: है। हाँ। ओ ला भाई मेरा बैट।
31: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
30: वो अभी तो चार्ज हुआ यार। ला बैट किसका है?
32: टाटा AIG है तो भरोसा है।
33: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
8: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: देख, इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
11: अच्छा, सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
10: अर्ज किया है, दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह,
12: समझ कर इन्वेस्ट कर।
13: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
6: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
7: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
10: वी आर ओवर जिमी।
11: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा। आप अपना देख लो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
2: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
3: In association with Hind, बड़े आराम से
4: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
5: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
3: विमल, बोलो जुबां केसरी।
6: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
7: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
8: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
6: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
9: मुझे पैरालिसिस हुआ था क्योंकि मैं थोड़ा प्यार में पागल हो गई थी किसी के, एंड मैं बहुत ज्यादा मतलब इन्वेस्टेड थी उस इंसान के अंदर। तो फिर वापस से मुझे एक बार और स्ट्रोक आया था जनवरी में, बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप ओनली। आई स्टार्टेड टेकिंग स्टेरॉइड्स, इसमें स्टेरॉइड्स होते हैं। माय वेट वाज 52 एंड विद इन 7 days माय वेट वाज 85। सो इट्स अ ट्रिजेमिनल न्यूरोलॉजिया, मुझे डॉक्टर ने ही बताया। हाँ, ये सलमान खान को भी बीमारी है, वो भी मुझे डॉक्टर ने ही बताया कि उनको भी है। सडन अटैक्स आते हैं यहाँ पे, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ करंट लग गया है। दिस इज अ सुसाइडल डिजीज।

0: भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है, बहुत बड़ी सफलता है। और ये जो स्काईरूट स्टार्टअप है उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है, मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं।
1: अब आर्थिक तूफान आ रहा है और उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया है अदानी अंबानी वाला, वो अब खड़ा नहीं रहेगा, वो टूटेगा पूरा का पूरा। और दुख की बात है कि नुकसान आम जनता को, मतलब वो अपने महलों में बैठे रहेंगे और यूपी के जो युवा हैं, यूपी के जो की जो जनता है, उनको पूरा का पूरा शॉक उनको लगेगा। जो आर्थिक शॉक आ रहा है वो अब अदानी अंबानी को नहीं लगेगा, मोदी को नहीं लगेगा, अब उत्तर प्रदेश और देश के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे बिजनेस वालों को लगने वाला है। और ऐसे लगने वाला है जो शायद बहुत सालों में नहीं हुआ।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: प्रदर्शनकारी से बातचीत के बाद नड्डा का बयान, सुबह आया था बातचीत का प्रस्ताव, अच्छे माहौल में हुई बात, धरना खत्म करने की अपील, सीजेपी ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे समेत रखी 3 मांगे। हंगामे के बाद दिल्ली में हालात लगभग सामान्य, बच्ची से मारपीट और 50 के घायल होने की खबर का पुलिस ने किया खंडन, राहुल गांधी ने सरकार पर बोला हमला। मूसलाधार सियासत, पेड़ पर लीक और चढ़ावा चोरी पर बरसा विपक्ष, हंगामे के चलते दोनों सदन कल तक स्थगित, शाह से मिले शिक्षा मंत्री, 3.5 घंटे चली बात। चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, सीजीआई ने दिया आदेश, एसआईटी का हो पुनर्गठन, सीनियर अधिकारी की अगुवाई में हो जांच, अब अगले हफ्ते हियरिंग। कुदरत का कहर, असम के जोरहाट, शिवसागर, चराईदेव में भीषण तबाही, पुंछ में लैंडस्लाइड से 7 की मौत, रजौरी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। पहाड़ों पर भयंकर तरीके से बारिश हो रही है, नतीजा ये हुआ है कि पहाड़ टूट रहे हैं, दरक रहे हैं, लगातार भूस्खलन और फ्लैश फ्लड वहां हो रहे हैं, बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, पहाड़ों से बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर गिर रहे हैं, लोगों के जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। सबसे ज्यादा बुरा हाल जम्मू कश्मीर का है, वहां बीती रात पुंछ के लोरान इलाके में फ्लैश फ्लड आया और लैंडस्लाइड हुई। तस्वीरों में आप देखिए कैसे इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई है, किस कदर वहां पर हादसे में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। लोरान के डोमाइल ढोक में यह घटना हुई है, जिसमें पीड़ित मलबे के नीचे ही दब गए, कड़ी मशक्कत के बाद वहां पर स्थानीय लोगों ने मदद पहुंचाई। अब तक 3 लोगों के शवों को बाहर निकाल लिया गया है, राहत और बचाव दल बाकी लोगों की तलाश कर रहा है। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश हो रही है, पुंछ, रजौरी, किश्तवाड़ सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं और चिंता की बात यह है कि मौसम विभाग ये कह रहा है कि अभी आने वाले 24 से 36 घंटे तक ऐसे ही भारी बरसात रह सकती है।
3: बारिश कहर बरपा रही है, खास तौर पर जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में तो कोहराम मचा हुआ है। कहीं बादल फट रहा है, कहीं फ्लैश फ्लड आ रहा है, कहीं पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं, कहीं भारी भूस्खलन हो रहा है, कहीं पूरा पहाड़ ही भरभरा कर नीचे गिर जा रहा है।
4: देखो भाई ये टंडर, ये अब देखो काम नहीं का काम, ये देखो टंडर हो गया पानी।
3: पूरे जम्मू कश्मीर में 12 लोगों की मौत हुई है, बहुत से लोग लापता हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल राजौरी, पुंछ, डोडा और किश्तवाड़ में है। एहतियातन वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। पुंछ में भारी बारिश के बाद आए फ्लैश फ्लड में भाटा दूरिया टनल उजड़ गई। राजौरी में खेवड़ा नाला ओवरफ्लो हो गया, जिसका पानी कई कॉलोनियों में घुस गया। फ्लैश फ्लड में कई गाड़ियां बह गई और कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। आर्मी, एसडीआरएफ और पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं और चिंता की बात यह है कि अगले 24 से 36 घंटों तक अभी और ज्यादा बारिश का अनुमान है। ये पुंछ की तस्वीरें हैं, जहां एक प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा का पूरा पहाड़ ही गिर गया। नीचे मशीनें दिख रही हैं, पूरा सुरंग प्रोजेक्ट है, लेकिन ऊपर से भूस्खलन हो गया, भारी बारिश से मिट्टी कच्ची हो गई और पूरा पहाड़ ही नीचे गिर गया। ऊपर बहुत से घर बने हुए हैं जिनमें दरारें आ गई हैं। अचानक से भारी बारिश के बाद आए फ्लैश फ्लड का पानी रेजिडेंशियल इलाकों में घुस गया है। इसी तरह से ये तबाही भी पुंछ में ही हुई है। यहाँ पुंछ नेशनल हाईवे 144 को बनाने का काम चल रहा है। ये कंपनी यहाँ पर 35 किलोमीटर की सड़क बना रही थी, लेकिन अचानक से रात में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। यहाँ काम कर रहे मजदूरों की जान किसी तरह से बच गई, लेकिन उनकी मशीनें, बाकी सामान सब कुछ बह गया। अंदर सीमेंट का गोदाम था जिसमें 5000 से ज्यादा सीमेंट के बैग थे। इतना पानी आया कि सब कुछ खराब हो गया।
5: रोड बनाना है, हमारा काम है। 35 किलोमीटर का रोड हम बना रहे हैं, NH 144 से। और सर, इसमें काफी करीब जो रात को पानी आए हैं, फ्लड आए हैं, उसके काफी हमारे मटेरियल नुकसान हुए हैं। और नए नए टायर हमारे चले गए हैं, नदी में बह गया है। ऑयल भरा हुआ ड्रम था, वो नुकसान हो गया है। उसके बाद मैकेनिकल के पार्ट थे बहुत, वो नदी में चले गए हैं सर। बाकी सीमेंट गोदाम के हमारे 5-6 हजार बैग, वो पूरा जम गए हैं। पूरा पानी उसमें भर गया था गोदाम में। हमारे मटेरियल क्वालिटी से ऑपरेटर्स दह गए हैं हमारे।

0: पर भी असर पड़ा है।
1: भारी बारिश को देखते हुए माता वैष्णो देवी की यात्रा को भी स्थगित करना पड़ा है। अब जो श्रद्धालु यहां पहुंचे थे वो इस उम्मीद में हैं कि यात्रा फिर से शुरू होगी, लेकिन खराब मौसम को देखते हुए ये उम्मीद कम लगती है।
2: हमारी एनिवर्सरी है तो मैं सोचा माता रानी के दर्शन करेंगे, पर पता चला कि यहाँ सब कुछ बंद किया हुआ है, तो कुछ कर नहीं सकते हैं, सिर्फ उम्मीद है। अब बोल रहे 3-4 दिन लगेंगे, पर यू नेवर नो कि कब तक टाइम लगेगा।
3: यहाँ स्थायी रूप से बंद किया गया है, 2-3 दिन लगेंगे खुलने में। अभी दर्शन करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है।
4: आए थे यहाँ उम्मीद से लेके कि माता रानी के दर्शन होंगे, लेकिन अब कुछ ऐसी आपदा आ गई है। सर, मेटेरियल डिपार्टमेंट ने बोला है कि काफी बरसात है, ऊपर दिक्कत आई है, परेशानियां आई हैं, तो अब थोड़ा सा दुख तो लगता है, अब क्या कर सकते हैं।
1: उधर खराब मौसम की वजह से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा भी रोक दी गई है। लगातार बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा भी प्रभावित हो रही है। केदारनाथ हाईवे और केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भी भूस्खलन हो रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल अग्रिम आदेशों तक केदारनाथ यात्रा को रोका गया है और यात्रियों से सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील की गई है।
5: मौसम विभाग ने वर्षा की भारी चेतावनी जारी की गई थी, जिससे कि जनपद में रात भर रुक रुक करके बारिश हो रही है और केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह लैंडस्लाइड होने की स्थिति बनी हुई है, और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए और यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है।
1: रुद्रप्रयाग में बाबा केदार के रास्ते पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के अलावा अन्य सहायक नदियां भी उफान पर बह रही हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी विकराल रूप धारण करते हुए वार्निंग लेवल के पास बह रही है। नदी किनारे के सभी घाट डूब गए हैं। अलकनंदा नदी से 30 मीटर दूर भगवान शिव की विशाल मूर्ति भी जलमग्न हो चुकी है।
6: पैदल यात्रा मार्ग सहित केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन हो रहा है और यात्रियों को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए आज के लिए केदारनाथ यात्रा को फिलहाल अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया है।
7: उधर असम में भी बाढ़ कहर बरपा रही है। खास तौर पर अपर असम के जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। यहाँ इतनी बारिश हुई है कि मुख्य नदियों के अलावा उनकी सहायक नदियां भी उफान पर हैं। बहुत बुरा हाल है। करीब 20,000 से ज्यादा लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए। आज तक संवाददाता पूर्णा विकास की ये रिपोर्ट देखिए।
1: लगातार कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। जोरहाट, शिवसागर और चराइदेव जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ने से अनेक गांव जलमग्न हैं। कई सड़कों और तटबंधों को नुकसान पहुंचा है। हजारों परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी है। इस वक्त ऊपरी असम में 20,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की वजह से प्रभावित हैं। जो लोग इस बाढ़ में फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए नावों का सहारा लिया जा रहा है। इन नावों में छोटे छोटे बच्चों के अलावा लोगों के जानवर भी हैं। एक परिवार तो अपने साथ बकरियों को बचा कर लाया है। एम्बुलेंस भी इसी बाढ़ के पानी में चल रही है। समस्या यह है कि जहां पानी कम है वहां तो एम्बुलेंस पहुंच रही है, लेकिन जहां पानी ज्यादा है वहां कैसे जाएगी। जोरहाट जिले में भोगदोई नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे निचले इलाकों में व्यापक जलभराव हो गया है। बोरीगांव क्षेत्र का तटबंध बाढ़ के पानी से ऊपर बहने लगा है, जिसके बाद पानी रिहायशी इलाकों और कृषि भूमि में घुस गया। कई गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं।
8: अभी भी देख रहे हैं कि पानी का फ्लो जितना सुबह में था दोपहर को था उससे ज्यादा हो रहा है। अगर रात भर ऐसे ही सिचुएशन रहा तो परिस्थिति अधिक भयंकर हो सकती है। हमको प्रशासन का आदमी भी आया है, यहाँ पर एनडीएफबी भी आया है, वो लोग जो रेस्क्यू टीम आया है, जो आदमी का घर पानी के अंदर है उनको रेस्क्यू कर ले गया है और एक रेस्क्यू हाउस भी बनाया है। तो परिस्थिति मतलब अभी ये कह सकते हैं कि बहुत ही भयानक परिस्थिति है, क्योंकि पानी का फ्लो लगातार बढ़ती रही है।
9: नदी का तो पानी ठीक ठाक ही था, 4 बजे के

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: वी आर ओवर जिमी।
6: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: अयोध्या के राम मंदिर की यज्ञशाला में दिनों आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का अनुष्ठान चल रहा है। ट्रस्ट कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने देश भर से बुलाए गए आचार्यों और बटुकों के साथ पूजा शुरू कराई है, जिसमें ट्रस्टी दीनेन्द्र दास भी पूजा कर रहे हैं। इस पारंपरिक पूजा के साथ 11 पुरोहित विधि विधान से इस अनुष्ठान का संपादन कर रहे हैं। दैनिक 251 बार विष्णु सहस्त्र नाम का जाप चल रहा है। देश भर से बुलाए गए 70 वैदिक आचार्य और गुरुकुल के बटुक वाल्मीकि रामायण से लेकर रामचरितमानस तक का पाठ कर रहे हैं। इस अनुष्ठान में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रुद्राभिषेक, विशेष हवन और शांति पाठ का भी आयोजन किया गया है। चढ़ावा चोरी के बाद किए जा रहे इस विशेष अनुष्ठान को प्रायश्चित पूजा बताकर साधु संत सन्यासी सवाल उठा रहे हैं।
2: जो राम मंदिर में महापाप हुआ है, उस पाप का चाहे जितना प्रायश्चित लोग कर ले अनुष्ठान और पूजन से, मां भगवान राम क्षमा नहीं करेंगे।
3: ऐसा है कि जो प्रायश्चित की बात आप लोग कर रहे हैं, प्रायश्चित के लिए जरूरी है कि पहले पाप घोषित किया जाए, क्या पाप हुआ है। अभी पाप ही पता नहीं है, फिर किसके द्वारा वो पाप हुआ है उसका नाम घोषित किया जाए।
4: किसी भी चीज के लिए प्रायश्चित पश्चाताप ही प्रक्षालन होता है।
5: बड़ा अनुष्ठान होना होता है तो उसके पहले भूत शुद्धि इत्यादि और आत्म शुद्धि के लिए प्रायश्चित पूजन किया जाता है। तो इस अनुष्ठान का उद्देश्य क्या है और किस लिए प्रायश्चित किया जा रहा है?
3: तुम कोष का माल हजम करके और उसी पैसे अनुष्ठान करा करके पाप खत्म कर पाओ। अब जनता को बहुत बेवकूफ बना ले, कोई बेवकूफ बनने वाला नहीं है, इनका अनुष्ठान छल है।
1: दूसरी तरफ ट्रस्टी और अनुष्ठान के यजमान दीनेन्द्र दास का कहना है कि राम मंदिर परिसर की यज्ञशाला में यह अनुष्ठान 15 जुलाई 2026 को शुरू हुआ था और इसका समापन 24 जुलाई 2026 को होगा।
3: कौन सा पंडित है जो प्रायश्चित बता रहा है उसका नाम बताया जाए? हम लोग उससे जानना चाहेंगे कि किन किन ग्रंथों के आधार पर, किन किन पापों के लिए कौन कौन सा प्रायश्चित वो बता रहा है।
1: इस बीच राम मंदिर में चोरी की घटना के बाद पहली बार खबर है कि 23 जुलाई को आरएसएस और वीएचपी ने अयोध्या में संतों की बैठक बुलाई है। ये बैठक अयोध्या की मणिराम छावनी में होने वाली है। इस सम्मेलन का मकसद चोरी की घटना को लेकर ट्रस्ट के खिलाफ चलाए जा रहे संगठित अभियान के खिलाफ जागरूकता फैलाना और रणनीति बनाना है। सूत्र बता रहे हैं कि इसी बैठक में ट्रस्ट के कार्यवाहक महासचिव कृष्ण मोहन को स्थायी महासचिव नियुक्त करने का भी फैसला मंजूर हो सकता है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर। Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्रेडिबिलिटी किसकी है, किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, दुनिया में आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे और आपके यूपी के मुख्यमंत्री ने आपके दिल्ली के ऊपर आरोप लगा दिया, SIT बनाकर क्या तक तैयारी कर दी कि मंदिर में चोरी हुई। भाई सच्चाई किसने खोली? SIT ने खोली कि SIT से चंदा चोरी हो गई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नीट आप एग्जामिनेशन नहीं करा रहे हो, एग्जामिनेशन कराया उसके बाद भी शिकायतें हैं, तो आप क्या किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हो? नौकरी रोजगार दिए नहीं, अगर नौकरी रोजगार दिए होते इतने बच्चे क्या यहाँ सड़कों पे आते?
2: लहरों का ये शोर डरा रहा है, साथ ही उस खतरे का भी साफ इशारा कर रहा है जो इन लहरों के साथ पुंछ के तमाम इलाकों में बढ़ता जा रहा है। देर रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश पुंछ के लोगों के लिए आफत लेकर आई है। कहीं पुल तबाह हो गए हैं, कहीं घरों को नुकसान पहुंचा है। मानसूनी प्रहार से पूरे पुंछ जिले का हाल बेहद बुरा है। इन तस्वीरों को देखिए, बारिश के मौसम में जो दीवार पुल की हिफाजत के लिए बनाई थी वो देर रात आए उफान के साथ बहती चली गई, जिसके बाद इस पुल पर भी खतरा मंडरा रहा है। पुंछ में तेज बारिश के बीच नदी का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंचा, लोगों को भारी नुकसान हुआ। अब वहां से बर्बादी की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं।
3: आप देख सकते हो रात की बारिश की वजह से हमारा बहुत सा नुकसान हो गया हुआ है, तो हमने पहले भी बहुत जगह अपील की कि हमें यहाँ पे क्रेट और डंगा वगैरह डाल के दो, हम अपना बिजनेस लाएं, लेकिन हमारी किसी ने सुनी नहीं। और देख सकते हो आज हमारा 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया और हमारी आटा चक्की है, फैक्ट्री है, पीछे वेल्डिंग की दुकान है, सारी बह गई है और हमारी मस्जिद भी बह चुकी है। और हम यही अपील करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ मिले, मुजीफा वगैरह, कि हम अपना बिजनेस वापस स्टैंड करें, क्योंकि हम लोग लोन लेके बिजनेस खड़ा करते हैं और आप देख सकते हो कि कितना लॉस हो गया। अब हम इसी से हमारा घर चलता है, यही सारा लॉस हो गया तो हम कैसे करेंगे?
2: सिर्फ पुंछ और राजौरी पर ही मानसून की मार नहीं पड़ी है, बल्कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। किश्तवाड़ की इन तस्वीरों को देखिए, नदी का उफान साफ बता रहा है कि यहाँ संकट का दायरा किस तरह बढ़ता जा रहा है। जो इलाके नदी के किनारे बसे हैं वो खतरे से सबसे ज्यादा घिरे हैं। बारिश के बीच जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर लैंडस्लाइड ने भी मुसीबत बढ़ा दी है। रास्ते बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिन जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में बारिश का हाल कुछ ऐसा ही रहने वाला है, जो लोगों का संकट और ज्यादा बढ़ा सकता है। आज तक ब्यूरो।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: विशेष मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही. आगे देखिए खबरदार मेरी सहयोगी श्वेता सिंह के साथ.
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
0: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर.

0: प्रदर्शनकारियों से बातचीत के बाद नड्डा का बयान, सुबह आया था बातचीत का प्रस्ताव, अच्छे माहौल में हुई बात, धरना खत्म करने की अपील, सीजेपी ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे समेत रखी 3 मांग। हंगामे के बाद अब दिल्ली में हालात लगभग सामान्य, बच्ची से मारपीट और 50 लोगों के घायल होने की खबर का पुलिस ने किया खंडन, राहुल गांधी ने सरकार पर किया हमला। मॉनसून सत्र के पहले दिन ही मूसलाधार सियासत, पेपर लीक और चढ़ावा मामले पर बरसा विपक्ष, हंगामे के चलते दोनों सदन कल के लिए स्थगित, शाह से मिले शिक्षा मंत्री 3.5 घंटे बाद। चढ़ावा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, सीजेआई ने दिया आदेश, एसआईटी का हो पुनर्गठन, सीनियर अधिकारी की अगुवाई में हो जांच, अब अगले हफ्ते हियरिंग। उत्तर से पूरब तक कुदरत का कहर, असम के जोरहाट, शिवसागर, चराईदेव में भीषण तबाही, पूंछ में लैंडस्लाइड में 7 की मौत, राजौरी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health का सच in association with
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
1: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: का, जहां आज पूरे देश की निगाहें दिल्ली पर लगी रही। दिल्ली जहां देश की संसद का मॉनसून सत्र आज शुरू हुआ, जहां संसद तक मार्च का ऐलान करते हुए प्रदर्शन में दिन भर खूब हंगामा दिल्ली में दिखा। लाचार्ज से लेकर आंसू गैस तक के गोले चले। फिलहाल आज दिल्ली में जंतर मंतर पर तो सीजेपी का विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया। प्रदर्शनकारी केरल हाउस के पास बैठे हैं। इस खबर में इस वक्त बड़ी ब्रेकिंग बता दें हम आपको, दावा है कि दिल्ली पुलिस अलग अलग जगहों से मिल रही शिकायतों के आधार पर अलग अलग FIR दर्ज कर रही है। 70 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सभी CCTV फुटेज और मोबाइल वीडियो की जांच की जा रही है। इस बड़ी खबर के साथ अब आपको आज दिन भर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच 7 घंटे की वीडियो रिपोर्ट दिखाएंगे, जहां सुबह से सियासत भी खूब हुई है, सड़क पर संग्राम भी है, कहीं प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, कहीं पुलिस वालों पर हमला कुछ प्रदर्शनकारियों ने किया है। इन सब के बीच आज सोनम वांगचुक को छोड़कर बाकी सभी अनशन करने वाले लोगों ने अनशन तोड़ दिया है, लेकिन सवाल है कि आगे क्या होगा। इस सवाल के जवाब तक पहुंचेंगे, लेकिन पहले आज देखिए कब क्या हुआ।
1: सोमवार दोपहर करीब 1:15 बजे संसद परिसर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकलता है। इस बीच अचानक संसद परिसर में हलचल दिखती है। सुरक्षा कर्मी दौड़कर संसद के गेट की तरफ जाते हैं। सोमवार दोपहर के इस वीडियो में वो संसद का गेट बंद करके वहां तैनात हो जाते हैं। दूसरे सुरक्षा कर्मी पोजीशन लिए देखते हैं। क्या इसलिए? क्योंकि CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारी संसद के बहुत करीब तक अपना मार्च लेकर पहुंच गए, जिन्हें रोकने और तितर बितर करने के लिए सुरक्षा कर्मियों को बल प्रयोग करना पड़ता है। आंसू गैस के गोले उसी वक्त सोमवार दोपहर सुरक्षा बलों की तरफ से फायर किया जाता है और फिर कर्तव्य पथ तक हलचल नजर आती है।
2: हम कर्तव्य पथ पे खड़े हुए हैं, लगातार 2 घंटे से भीड़ को हटाने की कोशिश प्रदर्शनकारी है। यहाँ पे आप देखिए, ये कर्तव्य पथ का चौराहा है जहाँ आपको सिर्फ पुलिस के साइरेंस सुनाई देंगे, और ये तस्वीर है जहाँ प्रोटेस्टर्स

0: इन सब की शुरुआत होती है जंतर मंतर से। वक्त सोमवार सुबह 10 बजे का, जब मानसूनी बारिश के मौसम में हरियाली दिखती दिल्ली की जमीन पर नीट पेपर लीक के बाद देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगते हुए महीने भर से चलते प्रदर्शन में सोमवार को सबसे ज्यादा प्रदर्शनकारी जुड़ते हैं। यहां संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन संसद चलो वाले मार्च का ऐलान किया गया। इस बीच बहुत से प्रदर्शनकारी दौड़कर जंतर मंतर आते हुए दिखते हैं। सवाल सुबह से उठने लगा कि क्या जो कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया से जन्मी है, उसने नीट पेपर लीक के मुद्दे पर देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगकर छेड़े आंदोलन में जनता को अपने साथ जोड़ लिया है।
1: जब मैं यूएसए में था तब ये लोग मुझे बोलते थे रास्ते पर कोई नहीं आएगा, ये बस सोशल मीडिया ट्रेंड बनकर रह जाएगा। आज दिखा दो जंतर मंतर की तरफ जो सारे चारों रास्ते आ रहे, चारों रास्ते भर चुके हैं। ये हमारी जीत है, ये हमारी पहली जीत है कि हम यहाँ पर एक महीना बैठे और आज हमारा मार्च होने जाने वाला है।
0: वहाँ हजारों सीजेपी के आंदोलन समर्थक जुटते हैं और फिर पुलिस बैरिकेड को गिराकर आगे बढ़ने लगते हैं। सीजेपी समर्थक जैसे ही बैरिकेड तोड़कर आगे निकलते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश में लाठी चार्ज होता है। इधर कुछ प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते तो पुलिस लाठी चलाकर उन्हें रोकती है। तब तक जंतर मंतर पर ही सुबह 10:15 बजे खबर आती है कि शबाना आजमी और योगेंद्र यादव ने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आईसा के 3 स्टूडेंट लीडर की भूख हड़ताल को खत्म करा दिया है। आईसा के ये 3 नेता 23 दिन से सोनम वांगचुक के साथ भूख हड़ताल कर रहे थे।
2: लड़ाई बहुत आगे जानी है और उस लड़ाई के लिए हमें आपकी जिंदगी, आपकी ताकत चाहिए, तो इसलिए हम आपको निम्रता से बहुत बहुत ये करते हैं कि आप प्लीज कुछ खा लीजिए और इसकी वजह से हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं।
0: एक अनशन इधर खत्म होता है तब तक उधर संसद का मानसून सत्र शुरू हो जाता है, जहाँ हंगामे के बीच 12:00 बजे संसद परिसर से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव की अगुवाई में जंतर मंतर के लिए निकल पड़ते हैं। तब तक 12:30 बजे खबर यह आ जाती है कि आगे प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के मकसद से सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपकी ने भी सोनम वांगचुक की पत्नी की मौजूदगी में मंच पर ही अपना अनशन तोड़ दिया है।
3: दिन भर चलते इस प्रदर्शन में पुलिस को 2 जगह जूझना पड़ रहा था, एक तो प्रदर्शनकारियों को संभालना, दूसरा अफवाह फैलाने वालों से लड़ना। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसने न्यूनतम बल का इस्तेमाल किया है, लेकिन प्रदर्शनकारी और अब विपक्षी दल सवाल उठाते हैं, पूछते हैं कि पुलिस ने लाठी क्यों चलाई। जवाब में पुलिस कहती है कि हालात न बिगड़ने देने के लिए।
0: दोपहर 1 बजे तक प्रदर्शनकारी संसद के करीब रेल भवन तक पहुंच जाते हैं, जहां बैरिकेड लगाकर उन्हें रोका जाता है।
4: संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है हमारे पीछे आप देखें, और वहीं रेल भवन जो कि संसद परिसर पर ही है, यहां से बाई तरफ आप देखें तो संसद है, और अगर हम आपको पीछे हमारे दिखाए तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे तमाम प्रदर्शनकारियों का हुजूम यहाँ पे है जो नारेबाजी कर रहे हैं। सीजेपी ने जो मार्च का आह्वान किया था तो यहाँ पे जो पूरी सिक्योरिटी है वो एक तरफ नजर आ रही है, यहाँ पे प्रोटेस्टर्स को कुछ इस तरीके से संसद परिसर के आखिरी बैरिकेड पर आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो आप देखिए कि टियर शो और टियर गैस को इस्तेमाल करने जा रही है, यहाँ पे टियर गैस का इस्तेमाल पुलिस करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे जो आरएएफ है उसको तैनात किया गया है।
0: प्रदर्शनकारी एक जगह से हटते हैं, दूसरी जगह इकट्ठा होकर फिर आगे बढ़ने लगते हैं।
5: मेरिडियन होटल के साथ सामने की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी थे उनको तितर बितर करने के लिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने जो अपना एक्शन है वो शुरू कर लिया। मैं आपको दिखाना चाहूँ के जो गोले हैं यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको यहाँ से तितर बितर किया जा सके। आप देख सकते हैं ली मेरिडियन होटल के सामने की तस्वीरें, जनपद अशोक रोड और रायसीना रोड को जोड़ने वाली सड़क है, जहाँ कुछ देर पहले देखा गया था कि जो भारी संख्या में जो कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शनकारी थे यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, रोड को ब्लॉक कर देते हैं। उसी बीच दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर शुरू कर दिया। आपने मेरे पीछे देखा कि कैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मोक कैनिस्टर जो हैं छोड़े गए हैं, और आपको दिखाना चाहूंगा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं ऐसे जो प्रदर्शनकारी हैं वो तितर बितर यहाँ से किए जा रहे हैं।
0: दोपहर 3:30 बजे पटेल चौक के पास प्रदर्शनकारी पहुंच जाते हैं, जहाँ सुरक्षा कर्मी बल प्रयोग करके उन्हें रोकते हैं। इसके बाद पालिका बाजार के पास प्रदर्शनकारी पहुंच गए, पुलिस ने उन्हें यहां भी हटाया।
5: इस समय मैं दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस पे खड़ा हूं, जहां मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है यहां कनॉट प्लेस पहुंच गया है, जहां मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पालिका बाजार पर आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस का एक्शन। दिल्ली पुलिस के जो जवान है यहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनको खदेड़ रहे हैं, अभी अभी लाठी चार्ज होकर हटा। कुछ देर पहले देखा गया था कि यहां पर जो स्मोक के कैनिस्टर्स थे वो चलाए गए ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको यहां से खदेड़ा जा सके। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सीधे आप देख सकते हैं कि जनपथ रोड है, कनॉट प्लेस का ये इलाका है, और देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो पुलिस बल है वो कहीं ना कहीं लाठी चार्ज कर रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे यहाँ पर पुलिस वाले जो हैं कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं प्रदर्शनकारी भी भाग रहे हैं।
0: पुलिस दावा करती है कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से कई जगहों पर पत्थरबाजी भी की गई है, जिसमें कई पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं।
6: दिल्ली पुलिस सभी प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने और शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील करती है। सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध है कि वे कृपया शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें, किसी भी गैरकानूनी या हिंसक गतिविधि में शामिल न हों और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा दिए गए कानूनी निर्देशों का पालन करें। जनता को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अफवाहों, गलत जानकारी या अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें और न ही उन्हें फैलाएं।
0: दोपहर 3:00 बजे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर प्रदर्शनकारी जुटे हुए दिखते हैं, वहीं भीतर से दिल्ली पुलिस कमिश्नर लगातार हालात पर निगरानी और मीटिंग के बाद निकलते हैं।
7: कुमार यहाँ पर पहुंचे हुए और घंटों यहाँ पर बातचीत की, जो सीनियर अधिकारी है उनसे बातचीत की और पूरा जायजा लिया, इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी भी मौजूद थे। अब जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन में इस वक्त मौजूद है, और जबकि बाहर की तरफ भारी भीड़ प्रोटेस्टर की है जिन्होंने बैरिकेड तोड़ने की भी कोशिश की, और पुलिस कमिश्नर अब पार्लियामेंट थाने से बाहर निकल रहे हैं अनुराग कुमार। और जिस तरह से नई दिल्ली में जो हालात है उस हालात के बारे में पूरी जानकारी ली, अब यहाँ से वो निकल रहे हैं।
0: कुछ ही देर में पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर फिर हंगामा प्रदर्शनकारी शुरू करते हैं और पुलिस मोर्चा संभाल लेती है।
7: का बल प्रयोग पुलिस कर रही है जब ये जो प्रोटेस्टर है वो नियंत्रण खो रहे हैं उसके बाद, और अब चारों तरफ से अगर ये पूरा जो इलाका देखेंगे तो चारों तरफ से अब जो बस पे लोग खड़े गए थे उनको उतारने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। तो पूरी तरह से अगर दिल्ली की पुलिस की बात करें तो सुबह से ही संयम बरत रही है, जिस तरह की भीड़ है उसके बावजूद भी संयम बरतने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ का हिस्सा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, तो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, और ये जो रास्ता है ये जंतर, अगर ये देखिए ये जंतर मंतर से ये जो रास्ता है ये जाता है, तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो तमाम फोर्सेज सुबह से लगी हुई हैं, और पूरे नई दिल्ली इलाके की बात करें तो इसी तरीके से जो भीड़ है वो जमा है।
0: करीब आधे घंटे तक यहीं पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के पास पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने रहते हैं।
7: पूरी तरीके से जो प्रोटेस्टरों को खदेड़ने शुरू कर दिया है, देखिए जो आपको आवाज सुनाई दे रही होगी ये टीयर गैस की सेल है, आसमान पर दूर दूर तक जो टीयर गैस की सेल है वो छोड़ी जा रही है, और ये वज्रवाहन है इसी से टीयर गैस की सेल छोड़ी जा रही है। पार्लियामेंट से अब हम जंतर मंतर की तरफ बढ़ रहे हैं, ये जो पूरा इलाका था ये सुबह से ही जो प्रोटेस्टर थे उनके कब्जे में था, पुलिस सुबह से संयमित थी, लेकिन जब पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आने लगी, इस तरह की शिकायतें आने लगी कि पुलिस के साथ गाली गलौज और कुछ आरएएफ के लोगों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। देखिए इस तरीके के जो पत्थर है, ये पत्थर इस तरीके के जो पत्थर है, वो पत्थर जब चले उसके बाद क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। ये देखिए सड़क पर आपको पत्थर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद ये क्रैकडाउन शुरू हो चुका है बड़े पैमाने पर पुलिस का और फोर्सेस का, और जो भीड़ है उसको नई दिल्ली इलाके से पूरी तरह से खदेड़ा जा रहा है, खदेड़ कर भगाया जा रहा है। दूसरी तरफ दिखाइए, ये देखिए किस तरीके से जो बैरिकेड है वो बैरिकेड यहाँ पर पूरी तरह से गिरा हुआ है, इस बैरिकेड को तोड़ दिया गया था।
0: शाम 4 बजे तक कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से वीडियो जारी किया जाता है। दावा ये कि पुलिस ने अब जंतर मंतर पर लाठीचार्ज किया है। पुलिस का दावा वही है कि केवल कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों को हल्का बल इस्तेमाल करके रोका गया है। इन सब के बीच शाम 6 बजे तक ये वीडियो सामने आता है, जहां जंतर मंतर पर सब कुछ सामान्य दिखने लगता है। दावा होता है कि प्रदर्शनकारी हट चुके हैं, मंच और टेंट को हटा लिया गया है।
3: इस प्रदर्शन में फिर आगे क्या हुआ, इसका समय अनुसार रिपोर्ट हम दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने वीडियो दिया है जिसमें प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर भी हमला हुआ है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और अर्धसैनिक बलों पर भी पत्थरबाजी की है, उन पर वार किया है। दावा है कि प्रदर्शनकारियों ने जनपद पर कई दुकानें तोड़ी हैं। हिंसा में 5 से ज्यादा आईपीएस अफसर घायल हैं, ये जानकारी दी जा रही है और ये उसी का वीडियो आप देख रहे हैं। तो क्या है हकीकत इसकी? एक तरफ पुलिस के लिए कहा जा रहा है कि उसकी तरफ से अतिरिक्त बल का इस्तेमाल, दिल्ली पुलिस ने कहा कि नहीं, हमने कम बल का इस्तेमाल किया है, संयमित रहे हैं। और दूसरी तरफ अरविंद, ये तस्वीर जो पुलिस के द्वारा है हमारे सामने और जिसमें पत्थर चलते हुए, और आपके भी रिपोर्ट में हमने देखा कि सड़क पर वो पत्थर पड़े हुए थे, क्या कहा जा रहा है, कितने पुलिसकर्मी घायल हैं इस समय?
7: देखिए पुलिस और सीएपीएफ के जवान मिलाकर 50 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल हैं, कई को चोटें लगी हैं, 5 जो आईपीएस अधिकारी हैं उनको वो जख्मी हुए हैं इस पूरे मामले में। कई जगह पथराव हुआ है, जनपद इलाके में दुकानों पर पथराव हुआ, उसके अलावा कई तस्वीरें आज तक के पास है जिसकी पुष्टि दिल्ली पुलिस ने की है। पुलिस पर अटैक हुआ है, सीएपीएफ के जवानों पर अटैक हुआ, उसके तस्वीरें भी सामने आई हैं। साथ ही साथ पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा गया है और ये सब कुछ नई दिल्ली इलाके में हुआ है जो बेहद संवेदनशील इलाका है। देखिए पुलिस के सामने चुनौती थी, एक तरफ जो कुछ युवा थे, युवाओं के साथ कुछ ऐसे भी लोग थे जो स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे जब पूछताछ की गई है तो पता चला कि वो छात्र है ही नहीं। तो संयमित थी पुलिस सुबह से ही, जो हमने आंखों देखी जो हमारी रिपोर्ट थी नई दिल्ली इलाके में, जबकि मानसून सत्र चल रहा है पार्लियामेंट का और ये इलाका आज से नहीं, जब भी पार्लियामेंट सेशन चलता है तब ये इस इलाके में किसी तरह के प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं दी जाती है। पहले 144 धारा जो हम नए कानून के तहत 163 जो धारा है वो लगाई गई थी और दिल्ली पुलिस ने लगातार अपील की थी, बावजूद इसके जंतर मंतर से जो प्रोटेस्टर है वो निकल के जब शास्त्री भवन, रेल भवन और पार्लियामेंट थाने की तरफ जाते हैं तब पुलिस को लगा कि अब कम बल प्रयोग करके इनको डिस्बर्स करना चाहिए, वही करने की कोशिश की गई, तब सामने से पत्थरबाजी हुई जिसका वीडियो भी आज तक को दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने दिया है, जिसमें पुलिस पर अटैक हो रहा है, पत्थरबाजी हो रही है, जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस का दावा है कि इस मामले में मल्टीपल एफआईआर दिल्ली पुलिस दर्ज करने जा रही है। कई वीडियो मिले हैं, कई सीसीटीवी मिले हैं जिनको वेरीफाई किया जा रहा है। क्या इस सब के पीछे साजिश थी, इस एंगल की भी तहकीकात दिल्ली पुलिस की टीम कर रही है। और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर कई संदिग्ध हैंडल भी ट्रैक डाउन किए हैं दिल्ली पुलिस ने, जिनके जरिए मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी इसमें
3: जी। और इसीलिए हम शुरुआत में ही ये कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस को 2 चरणों में काम करना पड़ रहा था। छात्रों को, अगर देश के छात्रों को किसी तरह की तकलीफ होती है तो वो पूरे देश की तकलीफ है। अगर परीक्षा की पारदर्शिता, पेपर लीक होना, ऐसे मुद्दे उठ रहे थे तो उन छात्रों की बात सुनना, उनको सही करना एक सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। पर उसके साथ साथ जैसा अरविंद कह रहे हैं कि छात्रों के अलावा अगर कुछ लोग इसमें रहे तो उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई होगी वो अब दिल्ली पुलिस देख रही है। 2 दिन पहले 18 जुलाई को, शनिवार को, जब दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था, तब अभिजीत दीपके ने यह ऐलान किया था कि अब वो सोनम वांगचुक की जगह भूख हड़ताल करेंगे। आज की अगर स्थिति आप देखें तो सोनम वांगचुक ने 23वें दिन भी अपना अनशन जारी रखने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जब तक प्रदर्शन कर रहे युवाओं को सांसदों से मिलने की इजाजत नहीं दी जाती या उन्हें अस्पताल में छात्रों से मिलने नहीं दिया जाता, तब तक वो अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे। अस्पताल से दो दिन से नोट लिखकर वांगचुक अपना बयान जारी कर रहे हैं। यहां आपको हम बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने वांगचुक की हेल्थ रिपोर्ट मंगाई है। कोर्ट उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अगली सुनवाई मंगलवार 21 जुलाई यानी कल होगी। वहीं सोनम वांगचुक को पुलिस की तरफ से जब कोर्ट के आदेश पर शनिवार को अस्पताल ले जाया गया तो उनकी जगह सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि वो अनशन करेंगे। आज उसका दूसरा दिन है लेकिन दोपहर में अभिजीत ने भी अनशन तोड़ दिया, इस दावे के साथ कि इसके लिए वांगचुक ने ही कहा। तीसरा अनशन लेफ्ट से जुड़े संगठन आयसा के तीन नेताओं का चल रहा था। उन्होंने भी आज शबाना आजमी, मनोज झा, प्रकाश राज, योगेंद्र यादव की मौजूदगी में अनशन तोड़ दिया, जहां शबाना आजमी ये कहती दिखी कि आगे अभी और लड़ाई लड़नी। यानी अनशन अब केवल सोनम वांगचुक का जारी है, लेकिन पिछले दो दिन में उनकी मांग में अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली बात नहीं आती है। उनकी पत्नी की तरफ से भी जारी वीडियो में यह कहा गया कि सरकार प्रश्न पत्र लीक होने जैसी घटनाओं समेत शिक्षा व्यवस्था की हाल की नाकामियों का जिम्मा लेती है, या फिर राजनीतिक दल संसद में इस मुद्दे को उठाने का भरोसा देते हैं, या फिर अलग अलग दलों के सांसद और नेता अस्पताल आकर उनसे मिलकर आश्वासन देते हैं तो वो अपना अनशन खत्म कर देंगे। जिसके बाद बहुत से लोग ये सवाल करने लगे कि क्या इस्तीफे वाली मांग अब नहीं रही। इसके बाद आज की कहानी आती है जहां सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के दो प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरव दास स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं। करीब 10 मिनट तक दोनों पक्षों के बीच बातचीत होती है और प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों का ज्ञापन सरकार को उनके जरिए सौंपा। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग है, सोनम वांगचुक को जल्द अस्पताल से छुट्टी दिए जाने और उनके इलाज तथा रहने के स्थान में सरकारी हस्तक्षेप न होने की मांग शामिल थी। इसके अलावा जिन नीट अभ्यर्थियों ने आत्महत्या की उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग रखी गई, जिसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री सोशल मीडिया पर बता चुके हैं कि उन्होंने सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध किया कि वो अपने धरने को समाप्त करें और सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन की मदद करें।
8: हम लोगों ने यही बोला कि हमारे तीन डिमांड्स हैं। पहले कि सोनम वांगचुक जी को तुरंत रिलीज किया जाए एंड जब तक वो फॉर्मेलिटीज पूरी होती है उसमें उनको एक वीडियो बनाने का अलाउ किया जाए। वो वीडियो में यही हो कि वो अपील करे शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। नंबर टू, हमारा ये भी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन तो अब आना ही पड़ेगा, या तो उनको बर्खास्त करे कैबिनेट से या तो वो खुद रिजाइन करे। प्रोटेस्ट तब तक चालू रहेगा जब तक उनका रेजिग्नेशन नहीं आ जाता। और तीसरा, जो नीट के फैमिलीज है, जो बच्चे मर गए हैं 20 से ज्यादा, उन फैमिलीज को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। ये डिमांड्स को लेके हम जेपी नड्डा जी के पास गए।
9: दो राउंड की वार्ता हुई, 1-2 बजे के करीब और 1 अभी 4 बजे के करीब। नड्डा जी ने कहा है कि वो अपने सीनियर लीडरशिप से इस बारे में बात कर रहे हैं और आगे जो भी बात रहेगी उनकी तरफ से उन्हें कम्युनिकेट किया जाएगा। आश्वासन तो बस यही मिला है कि वो अपनी सीनियर लीडरशिप से इस बारे में बात करेंगे और जो भी उधर से बात होती है उसका नतीजा आप लोगों के साथ जल्द शेयर किया जाएगा।
3: दिल्ली पुलिस आज के प्रदर्शन के बाद अब इन्वेस्टिगेशन में जुट चुकी है। जांच से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता दें, पुलिस आज प्रदर्शन के दौरान हिंसा के पीछे साजिश की जांच करेगी। पुलिस का दावा है कि कई संदिग्ध सोशल मीडिया हैंडल से भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही थी। पुलिस के अनुसार जैसे एक अफवाह फैलाने वाली झूठी पोस्ट में कहा गया कि हिंसा में कुछ प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, ऐसी झूठी पोस्ट फैलाने के पीछे कौन लोग थे दिल्ली पुलिस इसकी जांच भी करेगी। साथ ही हिंसा भड़काने के मामले अगर किसी राजनीतिक पार्टी की भूमिका सामने आएगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अरविंद ओझा हमारे साथ हैं। अरविंद, सीधी सी बात है कि जब छात्रों की बात आती है तो सबकी सहानुभूति है, सबकी संवेदना है, क्योंकि जिस तरह की के घटनाक्रम रहे हैं उसमें कोई नहीं चाहता कि देश का भविष्य अंधकार में डूबे, लेकिन अगर वाकई इसमें ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है जो छात्र नहीं है, केवल उकसावे के लिए या झूठ फैलाने के लिए इसमें शामिल रहे, तो उसकी कार्रवाई का प्लान है दिल्ली पुलिस का?
10: बिल्कुल, और देखिए श्वेता, जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा,
7: सुबह की बात करें तो सुबह से दिल्ली पुलिस की टीम पूरी तरह से संयमी थी, क्योंकि बात छात्रों की थी। लेकिन जब दिल्ली पुलिस को कई फुटेज मिलने लगे, कई इन्फॉर्मेशन मिलने लगे कि इसमें कई ऐसे लोग हैं जो छात्र नहीं हैं, जिसके बाद जब स्टोन पिल्टिंग पुलिस पर अटैक होने लगा, उसके बाद फिर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। अब जो पुलिस के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि इस मामले में अब दिल्ली पुलिस कई FIR दर्ज करेगी, क्योंकि कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, जनपद इलाके में कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई, स्टोन पिल्टिंग की गई। तो इस मामले में अब साजिश के एंगल पर भी दिल्ली पुलिस जांच करेगी। साथ ही साथ कई ऐसे संदिग्ध सोशल मीडिया हैंडल है जिससे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई, क्योंकि कई होता यूं है कि जब इस तरह का कोई प्रदर्शन होता है तो उसमें बाहरी तत्व, असामाजिक तत्व, वो रोटियां सेकने के लिए आ जाते हैं। लेकिन एक चिंता की बात श्वेता, आज मैंने जो देखी कि इस तरह के बड़े प्रोटेस्ट को कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी दल वो कॉल तो कर देता है, बुला देता है कि संसद मार्च कर देते हैं, लेकिन बाद वो प्रोटेस्ट में शामिल लोग आखिर सुने किसकी, ये समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि कांग्रेस जनता पार्टी ने लोगों को संसद मार्च का ऐलान तो कर दिया, लोग आ गए, लेकिन उसके बाद जब भीड़ बेकाबू हो गई तो उनको समझाने बुझाने वाला कोई नहीं था। वो अपने हिसाब से चल रहे थे, वो अपने हिसाब से स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे, उनको कोई रोकने वाला भी नहीं था। यहां तक कि कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से जब अपील आई तब भी वो रुकने को तैयार नहीं थे, और उसके बाद फिर लास्ट में जो आखिरकार है दिल्ली पुलिस ने न्यूनतम बल प्रयोग करके उनको डिस्बर्स किया। श्वेता,
3: बहुत शुक्रिया। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं। आज संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन था, आज से शुरुआत हो गई है। संसद में विपक्षी दल राम मंदिर चढ़ावा मामले से लेकर परिसीमन और नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर आक्रामक दिखे। सरकार को घेरने की विपक्ष की तरफ से खूब कोशिश हुई। इसी टकराव की वजह से मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद में कोई कामकाज नहीं हो सका, जहां विपक्ष भी CJP के प्रदर्शन में साथ देने लगा।
10: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं।
11: सरकार की इस उम्मीद पर पहले दिन विपक्ष का विरोध भारी पड़ा। संसद की कार्यवाही अपने तय वक्त पर शुरू हुई। प्रधानमंत्री भी लोकसभा में मौजूद होते, लेकिन कुछ ही देर में दोनों सदनों में हंगामा शुरू होता और लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन राज्यसभा में नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेपर लीक और नीट परीक्षा घोटाले का मुद्दा उठाया।
12: दिस पेपर लीक एंड नीट एग्जामिनेशन घोटाला एंड नो चंदा चोरी तो है ही है, सब उसके समर्थक उधर बैठे हैं, लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है।
11: सदन के बाहर भी विपक्ष ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल किए और प्रदर्शनकारियों से भेदभाव का आरोप लगाया।
13: ये सरकार नहीं अहंकार है, और जो श्रद्धांजलि में भेदभाव करते हो, जब लाखों लाख और करोड़ों लोग और करोड़ों परिवार इस आंदोलन से जुड़े हों, जिन बच्चों की जान गई उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार को।
11: इस तरह मानसून सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को कई बार स्थगित करना पड़ा।
14: ये आपका जो व्यवहार है ये ठीक नहीं है, कृपया करके आप बैठ जाइए।
11: सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही संसद के बाहर नीट पेपर लीक पर विपक्ष ने अपने इरादे जताए, जो सदन के अंदर भी नहीं बदले। विपक्षी सांसदों के पोस्टर बैनर लहराने पर स्पीकर ने आपत्ति जताई और दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार पर छात्रों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा से पीछे हटने का आरोप लगाया है।
15: हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है, और बच्चों पे आप टियर गैस कर रहे हो और उनके उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए, बच्चे हमारे।
11: वहीं दिन में इस मुद्दे पर सवाल होने पर चुप रहे राहुल गांधी शाम को पोस्ट करके वीडियो जारी करते हैं।
0: कहते हैं कि 152 पेपर लीक, 7.5 करोड़ छात्र पीड़ित और सजा एक दोषी को भी नहीं, सजा किसे मिली? मेहनती युवाओं को।
16: We've been raising this issue not for weeks or months, we've been raising it for years as a fundamental problem and Modi disrespects all the young people of this country.
0: कांग्रेस की तरह समाजवादी पार्टी भी इस मामले में आक्रामक दिखी, प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता दिखाने और नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार से जवाबदेही की मांग करने के लिए संसद से जंतर मंतर तक मार्च निकाला गया। डिंपल यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने नारेबाजी की। डिंपल यादव की अगुवाई में पार्टी के सांसद पैदल मार्च करते हुए जंतर मंतर तक पहुंचे। राजनीति के बीच मानवीय तस्वीर भी दिखी, जब प्रदर्शनकारियों डिंपल यादव ने पानी पिलाया। डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस बर्बरता कर रही।
17: पुलिस वाले भी उनकी आंखों में शर्मिंदगी दिख रही थी, लेकिन अपनी ड्यूटी के कारण अपने बैचेस निकाल के आए थे, गुंडे बने हुए थे कुछ पुलिस वाले। कुछ पुलिस वाले तो सहयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले बिना वर्दी के आए थे और बच्चों को मारा है, बच्चों को करंट दिया है। और जहां रूल होता है कि आपको टांगों में मारना चाहिए, बच्चों की छातियों पे मारा है। ये सीधे आघात हमारी भारत माता के सीने पे इन लोगों ने किया है। आज
0: इस तरह संसद से सड़क तक विपक्ष ने सरकार पेपर लीक पर कटघरे में खड़ा करना चाहा और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग। वहीं सरकार कह रही है कि वो बातचीत के लिए तैयार है।
18: सब लोग आंदोलन में थे, हमने अपनी जिम्मेदारी समझी, आंदोलनकारियों का साथ दिया, उनके मुद्दों का साथ दिया, लेकिन जो व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है वो बहुत ही निंदनीय है और मोदी की तानाशाही का उदाहरण है।
0: पिछले कुछ दिनों में कई विपक्षी नेताओं ने जंतर मंतर पर पहुंचकर आंदोलन का समर्थन किया, जिसकी झलक आज भी देखने को मिली।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने आज राहुल गांधी की 56 साल की उम्र पर तंज कसा। पीएम मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस के युवा वैज्ञानिकों की सराहना की। इसी दौरान उन्होंने कहा कि मैं किसी 56 साल के युवक की बात नहीं कर रहा हूं।
19: सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई
20: सर, वी आर वेरी वेरी प्रिविलेज्ड टू हियर यू।
19: स्काईरूट ने दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। कब से मेरा ध्यान जो गया, आपकी पूरी टीम 25-30 साल की दिखती है, ये मुझे और खुशी दे रही थी।
0: स्काई रूट की टीम को बधाई में कही बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सत्र की शुरुआत में दिए भाषण में दोहराई, सिवाय एक बात के।
21: भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है, बहुत बड़ी सफलता है। और ये जो स्काईरूट स्टार्टअप है उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है।
0: अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी कंपनी की ऐतिहासिक सफलता पर टीम को बधाई देते प्रधानमंत्री ने जो कुछ आगे कहा उस पर संसद सत्र में सियासी हंगामा होना तय।
21: ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया, मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूँ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही ये कहा पीछे खड़े मंत्री किरेन रिजिजू हंसने लगे। वो समझ गए प्रधानमंत्री मोदी का तंग बिना नाम लिए राहुल गांधी पर है जो हाल ही में 56 साल के हुए। प्रधानमंत्री मोदी का वार कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को नौजवान नेता बताने पर है, जबकि 60 साल का होते आम आदमी रिटायर हो जाता है, वरिष्ठ नागरिक का ठप्पा लग जाता है।
21: मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं।
0: राहुल गांधी का स्कूबा डाइविंग करना, कड़ाके की सर्दी में टी शर्ट में दिखना, कांग्रेस से सबके जरिए राहुल को 56 साल का होने पर भी नौजवानों के नेता के तौर पर पेश करती। तो जब प्रधानमंत्री ने बिना राहुल का नाम लिए 56 साल के युवा वाला निशाना साधा तो कांग्रेस 56 इंच वाला बयान याद दिलाकर वार करने लगी।
17: राहुल गांधी पे भी उन्होंने एक वेल्ड अटैक किया, 56 की बात करी, उन्होंने कहा कि मुझे एक युवा की चिंता नहीं है लेकिन मुझे युवाओं की चिंता है।
22: ना आप अपना छाती का चिंता रखिए, आपका 56 इंच का छाती है ना, आप उसका ख्याल रखिए, हवा उतर रही है।
1: कि 56 साल के युवा बन के घूम रहे हैं, लेकिन आज भी 56 साल में भी देश के इस जो रियल इशूज है या रियल जो देश से कनेक्ट होना है आज तक वो नहीं हो पाया।
0: ऐसा पहली बार नहीं, प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग तरीके से राहुल के 56 साल का होने पर उनकी सियासी समझ पर पहले भी सवाल उठाते आए हैं।
2: अभी मैंने एक नेता का भाषण सुना, उन्होंने कहा एक झटके में मैं गरीबी हटा दूंगा।
22: एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे।
2: अब जिनको 5-5, 6-6 दशक देश का राज करने को मिला, वो जब आज कहेंगे कि मैं एक झटके में गरीबी हटा दूंगा, तो देश सोचता है ये क्या बोल रही। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल लीडरशिप की क्वेश्चनेबल होती जा रही है।
23: अब इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है, अभी वो नॉन स्टार्टर है। न तो लिफ्ट हो रहा है न वो लॉन्च हो रहा है।
0: इसी को लेकर पहले भी 56 बनाम 56 की सियासी जुबानी जंग शुरू हुई।
22: बांग्लादेश का राष्ट्रपति उल्टा बयान देता है और नरेंद्र मोदी जी उसके साथ बैठे हुए हैं, चुप, एक शब्द नहीं निकलता मुंह से। कहां गई 56 इंच की छाती?
24: जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था उस लाइन में?
25: द आइडिया ऑफ मिस्टर मोदी 56 इंच चेस्ट, डायरेक्ट कनेक्शन विद गॉड, दैट्स ऑल गॉन, इट्स हिस्ट्री नाउ।
0: प्रधानमंत्री मोदी और राहुल में 56 इंच बनाम 56 साल की टक्कर कई वर्षों से चल रही है।
12: हम कभी झुकेंगे नहीं, हमारी छाती 56 इंच की है। ठीक है, किसी का शरीर बड़ा होता है, किसी का गोरा होता है, किसी का काला होता है, जैसा कि मेरी हाइट ज्यादा है, मोदी जी की हाइट उतनी है, शाह साहब की जरा हाइट कम है, अलग अलग बात है। लेकिन आपकी 56 इंच छाती तो रहने दो, लेकिन इससे देश को क्या फायदा हुआ तुम्हारे छाती का?
0: साल 2014 से राहुल गांधी जब भी सरकार को किसी मुद्दे पर घेर लेते हैं या चुनावी झटका देते हैं, वो प्रधानमंत्री पर सीधा हमला करने के लिए 56 इंच का जिक्र करते हैं।
24: किसानों की बात आई, हम ऑर्डिनेंस पास करेंगे भैया, 3 बार ऑर्डिनेंस पास कर दिया। दम नहीं है, पार्लियामेंट में पास नहीं होने देंगे हम, देख लेना, 1 इंच जमीन नहीं जाएगी, 56 इंच की छाती 5.6 इंच छाती हो जाएगी 6 महीने में।
0: साल 2014 में मुलायम सिंह को जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार 56 इंच की छाती वाला बयान दिया, जिसके बाद राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं कि पीएम मोदी की 56 इंच की छाती काम नहीं आई। मोदी और राहुल के बीच सियासी अदावत में अब राहुल को 56 साल का युवा बताकर तंज पीएम ने किया, जिसका राहुल क्या जवाब देंगे, नजरें सियासत में सबकी इस पर लगी रहेंगी।
3: अब बात मौसम की करते हैं। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बरसात हो रही है। पिछले 24 घंटे में राजौरी इलाके में 92 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। नदियां उफान पर हैं। राजौरी में SDRF, NDRF और सेना के संयुक्त राहत अभियान में नदी के पास से एक शव को रिट्रीव कर लिया गया है, निकाल लिया गया है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को हेलीकॉप्टर की मदद से अंजाम दिया गया है। इस पूरे क्षेत्र में भारी बारिश की वजह से कुछ लोग यहां नदी के पास फंस गए थे, जहां से रेस्क्यू ऑपरेशन में लोगों को निकाला गया और एक बॉडी अभी वहां से निकाली गई है।

0: जम्मू कश्मीर में हालात बारिश से सबसे ज्यादा खराब हैं। राजौरी के अलावा जम्मू, कटरास, पुंछ, गांधरबल, श्रीनगर में सबसे ज्यादा बरसात हुई है। यहां पर भूस्खलन से लेकर बादल फटने तक की घटनाएं हो चुकी हैं। फ्लैश फ्लड से तबाही हुई है। बड़ी खबर यह भी है कि खराब मौसम की वजह से अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। अगले 2 दिनों तक अमरनाथ यात्रा स्थगित रहेगी। यात्री आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि बरसात इतनी ज्यादा हो रही है, फिसलन है, किसी तरह का खतरा न रहे इस वजह से 2 दिनों के लिए अमरनाथ यात्रा को स्थगित किया गया है।
1: देश में इस वक्त बारिश का रेड अलर्ट अगर कहीं है तो वो उत्तर के 3 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। यहीं पर पानी सबसे ज्यादा आफत मचा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ का बफलियाज इलाका, जहां पर कुदरत का रौद्र रूप खौफ भरने वाला है। यहां भयंकर बारिश के बाद बादल फटता और फ्लैश फ्लड आ जाता है। पूरा का पूरा रास्ता, स्कूल, सब जगह मलबा भर जाता है। जम्मू कश्मीर का पुंछ फ्लैश फ्लड के बाद यहां सुरंग ढह जाती है और पूरा पहाड़ गिर जाता है। इस वीडियो को आप देखिए कि पहाड़ गिरने से पहले मशीनें दिखाई दे रही, यानी यहां पर काम हो रहा था, लेकिन बारिश के बाद यहां पर सुरंग का प्रोजेक्ट भूस्खलन का शिकार हो गया। भारी बारिश से मिट्टी की पकड़ कमजोर हो गई और पूरा का पूरा पहाड़ नीचे गिर आता है, जिससे आसपास बने घर

0: शाम के हमारे 5-6 हजार बैग वो पूरा जम गए हैं, पूरा पानी उसमें भर गया था गोदाम में। हमारे मटेरियल क्वालिटी से ऑपरेटर्स दह गए हैं हमारे।
1: यहाँ SBI कंपनी पिछले 3 साल से कुछ नेशनल हाईवे का काम कर रही है, लेकिन बीती रात फ्लैश फ्लड से इससे भारी नुकसान हुआ है। अब किश्तवाड़ से आई डरावनी तस्वीर देखिए। यहाँ रेटल पावर प्रोजेक्ट साइट पर अचानक से फ्लैश फ्लड से तबाही मच जाती है। क्षतिग्रस्त हुआ पावर प्रोजेक्ट नदी के किनारे था, पास में ही यहाँ नदी बह रही है, इधर ये पावर प्लांट है। तस्वीरों में दिखता है कि ऊपर पूरा पहाड़ है और उसके अंदर से पानी आ रहा बहुत तेज। नीचे मशीनें दिखती हैं और पानी ऊपर से आकर नीचे नदी में मिल जाता है। ये पूरा फ्लैश फ्लड पूरे प्रोजेक्ट पर खतरा मंडरा रहा है। आगे वही फ्लैश फ्लड का पानी रेजिडेंशियल इलाकों में पहुँच कर नुकसान पहुँचाता है, घरों के बगल से निकलता है। डोडा में रागी नाला के पास भूस्खलन की वजह से ऊपर से एक बस के ऊपर पत्थर गिरे जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे की तस्वीर भी सामने आई जिसमें बस की हालत देखकर समझना मुश्किल नहीं कि पत्थर गिरने से मुसाफिरों की क्या हालत हुई होगी। पूरी तरह से बस पिचक गई है। चलती बस पर अचानक से पहाड़ी के ऊपर से पत्थर आकर गिरे हैं। लगातार पहाड़ों से होते भूस्खलन की वजह से अभी ये हाईवे बंद कर दिया गया है। यहाँ राजौरी नदी में आई बाढ़ की वजह से एक पुल भी टूटा है और बहुत नुकसान हुआ है। नदी लगातार उफान पर है, आज भी बारिश हुई है।
2: जिस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, ये राजौरी का एक अहम ब्रिज है और ये ब्रिज करीब 10 गांवों को हाईवे से जोड़ता है, मगर अफसोस के इस ब्रिज को का एक हिस्सा जो है वो पूरी तरह से टूट चुका है। तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप यहां देख सकते हैं किस तरह से ये हिस्सा जो है पूरी तरह से इस ब्रिज का टूट चुका है। उफान पर होने के बाद जब इस ब्रिज के नजदीक पानी पहुंचता है तो इसका आधा हिस्सा जो है वो इस तरफ वाला वो बहा के साथ में ले जाता है, जिस कारण अब लोगों का आना जाना बंद हो चुका है।
1: ये भी राजौरी की तस्वीरें हैं जहां 2 गाय इन लहरों के बीच में फंस गई। गायों को रस्सियों के सहारे निकालने की कोशिश हुई। एक शख्स अपनी जान जोखिम में डालकर इन गायों को निकालता है। बताया जा रहा है कि गुर्जर समुदाय के जानवर हैं। ये गांदरबल का साफापुर इलाका है जहां फ्लैश फ्लड आया है। पानी की रफ्तार देखकर आप ये धोखा खा सकते हैं जैसे कोई नदी होगी, लेकिन ये मुख्य सड़क है जिस पर गाड़ियां भी चल रही, लेकिन पूरी सड़क पर मटमैला पानी भरा हुआ है। श्रीनगर शहर में भी भारी बारिश हुई, इतनी कि यहां प्रसिद्ध लाल चौक एरिया में पानी जमा हो गया।
3: जम्मू कश्मीर में आज लगातार दूसरे दिन सोमवार को भी जमकर बारिशें हो रही है, लेकिन आज बहुत तेज बारिशें कश्मीर के अधिकतर इलाकों में सुबह से ही हो रही हैं। नदियां उफान पर हैं, यहां तक कि अमरनाथ यात्रा को आज दूसरे दिन भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि अमरनाथ गुफा के आसपास इलाकों में कल से ही तेज बारिशें हो रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले 2 दिन तक कश्मीर के अधिकतर इलाकों में इसी तरह तेज बारिशें होंगी।
1: भारी बारिश को देखते हुए माता वैष्णो देवी की यात्रा को स्थगित करना पड़ा है। अब जो श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं वो इस उम्मीद में हैं कि यात्रा फिर से शुरू होगी, लेकिन खराब मौसम को देखते हुए उम्मीद कम लगती है।
4: तो मैं सोचा माता रानी के दर्शन पर पता चला कि यहां सब कुछ बंद किया हुआ है, तो कुछ कर नहीं सकते हैं, सिर्फ उम्मीद है। अब बोल रहे 3-4 दिन लगेंगे, पर यू नेवर नो कि कब तक टाइम लगेगा।
5: यहां अस्थायी रूप से बंद किया गया है, 2-3 दिन लगेंगे खुलने में। अभी दर्शन करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है।
6: आए थे यहाँ उम्मीद से लेके कि माता रानी के दर्शन होंगे, लेकिन अब कुछ ऐसी आपदा आ गई है। सर, मेटेरियल डिपार्टमेंट ने बोला है कि काफी बरसात है, ऊपर दिक्कतें आई हैं, परेशानी आई हैं, तो अब थोड़ा सा दुख तो लगता है, अब क्या कर सकते हैं।
1: जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में NDRF, SDRF और सेना मिलकर राहत और बचाव के काम में जुटे। ऐसे एक बचाव अभियान में इस टीम ने नौशेरा से एक शव को निकाला है।
7: उत्तराखंड में भी बारिश से हाल बेहाल है। बारिश को देखते हुए चारधाम यात्रा पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में कल से लगातार बारिश हो रही है।
1: उत्तराखंड में भारी बारिश से पहाड़ों से पत्थर गिरने की घटनाएं बढ़ गई। देहरादून मसूरी के बीच हाईवे पर लैंडस्लाइड होने की वजह से इसे बंद करना पड़ा। पत्थर गिरने से हाईवे का एक हिस्सा टूट गया, इस वजह से गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई, जिससे ट्रैफिक प्रभावित हुआ। खराब मौसम को देखते हुए उत्तराखंड में

0: चार धाम की यात्रा भी रोक दी गई है। लगातार बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा भी प्रभावित हो रही है। केदारनाथ हाईवे और केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भी भूस्खलन हो रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते फिलहाल अग्रिम आदेश तक केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है और यात्रियों से सुरक्षित जगहों पर रुकने की अपील की गई है।
1: वर्षा की भारी चेतावनी जारी की गई थी, जिससे कि जनपद में रात भर रुक रुक करके बारिश हो रही है और केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह लैंडस्लाइड होने की स्थिति बनी हुई है और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए और यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है।
0: रुद्रप्रयाग में बाबा केदार के रास्ते पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के अलावा दूसरी सहायक नदियां उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी विकराल रूप धारण करते हुए वार्निंग लेवल के निकट बह रही है। नदी किनारे के घाट डूब गए हैं। अलकनंदा नदी से 30 मीटर दूर भगवान शिव की विशाल मूर्ति पानी में डूब चुकी है।
2: लगातार हो रही बारिश के कारण रुद्रप्रयाग में नदी नाले उफान पे आ गए हैं। आप अलकनंदा नदी का विकराल रूप देख सकते हैं। नदी कल देर रात से विकराल रूप धारण करके बह रही है। नदी किनारे जो भी स्नान घाट थे, जो नदी किनारे जाने तक के पैदल रास्ते थे, वह पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। इन घाटों का नदी के बीच कहीं भी कोई अता पता नहीं है। नदी के दोनों छोरों के जो घाट हैं, वह पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं।
0: भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड में एक नेशनल हाईवे समेत 60 से ज्यादा सड़कें बंद, जिन्हें खोलने का काम चल रहा है। सोमवार को भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड के सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित करनी पड़ी। बहुत से पहाड़ी जिलों के लिए मौसम विभाग की तरफ से बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के बाकी इलाकों की तरह देहरादून में मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने यहां रेड अलर्ट जारी कर दिया है। शहर की सड़कें पानी में डूबी, इस वजह से सड़क पर ट्रैफिक धीमा है। लगातार होती बारिश से देहरादून के मशहूर तारकेश्वर मंदिर की सीढ़ियों पर पानी बहता दिखता है, मानो ये कोई झरना हो।
3: इस समय हम देहरादून के मशहूर तारकेश्वर मंदिर में मौजूद हैं और ये मंदिर के बीचों बीच से तमसा नदी यहाँ पर बह रही है। कितना विकराल रूप धारण की हुई है। पिछले कुछ दिनों से मौसम जो है वो बदला हुआ था और मानसून की बेरुखी की वजह से ऐसा लग रहा था ये नदियां जो है सूख जाएंगी, लेकिन एक बार फिर से ये ना सिर्फ रिचार्ज हुई है बल्कि पूरे उफान पर बह रही है।
4: रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप रहिए खबरदार।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit-disclosures for fees and details.
9: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today. Beautiful.
10: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
2: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी.
1: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
2: AU current account ke saath milta hai free UPI QR overdraft facility aur ek hi app se bank ke sare kaam. AU!
3: Soch badlo aur bank bhi.
4: फेना पावर वॉश अब है और शक्तिशाली.
5: गहरी सफाई.
6: हाँ, पावर वॉश का कमाल.
5: गहरी खुशबू
6: और प्यार भरी भी.
5: कैसे?
6: यह है एक्टिव नीडल्स की शक्ति.
7: इसीलिए फेना ही लेना.
8: पापा
9: सॉरी यार, गलती हो गई है. ये चोट खर्चा वर्चा.
10: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा.
9: छक्का?
10: सब कैशलेस हो गया है.
9: हाँ
11: तो भरोसा है.
12: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा. जीते हर बाजी.
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
2: Fena Power Wash, ab hai aur shaktishali.
3: Gehri safai?
2: Haan, Power Wash ka kamaal.
3: Gehri khushbu?
2: Aur pyar bhari bhi.
3: Kaise?
2: ये है एक्टिव नीडल्स की शक्ति,
4: इसीलिए फेना ही लेना।
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
6: ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है।
7: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से?
8: तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे।
9: वाह वाह वाह वाह।
8: सेबी और NSE का कहना है, सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरिफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
10: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
11: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
12: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
13: We are over, Jimmy.
14: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
15: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
16: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
17: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट अंजना के साथ और हरदम रहिए खबरदार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का संसद मार्च दिखाएंगे। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन दिल्ली की सड़कों पर हंगामा, लाठीचार्ज, धक्का मुक्की देखने को मिली। पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और परीक्षा सुधारों की मांग को लेकर जंतर मंतर पर सुबह से ही प्रदर्शनकारी जुटने लगे थे। जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन की ओर बढ़ने की कोशिश की, पुलिस के साथ उनकी तीखी झड़प हुई। इस दौरान बैरिकेड्स तोड़े गए, जिसके जवाब में पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और लाठी चार्ज करना पड़ा। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। दिन भर चले इस हंगामे और टकराव के बीच एक बड़ी खबर यह आई कि सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत का रास्ता खुल गया। आज आपको इस प्रदर्शन का एक विस्तृत विश्लेषण दिखाएंगे। आखिर सरकार किस बात पर मानी है और किस बात पर अभी भी ठनी है। इसके बाद आपको अमेरिका और ईरान की जंग के बारे में बताएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर वर्चस्व की जंग अब महायुद्ध का रूप ले चुकी है। पिछले 9 दिनों से ईरान के ठिकानों पर अमेरिकी सेना लगातार बम बरसा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख से लग रहा है कि वो इस बार ईरान की सैन्य ताकत, उसके आर्थिक आधार को पूरी तरह खत्म करेंगे। दूसरी तरफ ईरान ने भी खाड़ी देशों में मौजूदा जो अमेरिकी ठिकाने हैं उन पर जबरदस्त पलटवार किया है। आखिर में आपको बताएंगे कि फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में स्पेन की जीत पर गाजा से लेकर पाकिस्तान तक तमाम मुस्लिम आबादी जश्न क्यों मना रही है, और आखिर क्यों स्पेन बनाम अर्जेंटीना का यह मुकाबला इसराइल बनाम फिलिस्तीन की जंग में बदल गया है, दो विचारधाराओं की लड़ाई बन गया है। लेकिन सबसे पहले जंतर मंतर, जहां से आई ये तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं, जहां सिर्फ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें एएनआई ने आज शाम को उस वक्त जारी की जब कॉकरोच जनता पार्टी ने यह बताया कि इस वक्त वो केरला हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केरला हाउस भी जंतर मंतर से ज्यादा दूर नहीं है और यहां से भी संसद भवन की दूरी सिर्फ 1.5 किलोमीटर है, लेकिन दावा है कि जंतर मंतर फिलहाल के लिए खाली हो चुका है। ये तस्वीरें दोनों समझिए, जो तस्वीरें आज शाम को वहां से आई है, ये केरला हाउस के बाहर की, वो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और उससे पहले कि ये तस्वीर देखिए, जो जंतर मंतर की आज शाम की तस्वीर है, देखिए

0: एक साथ बोल देता हूँ, मैं हर चीज को वन टू वन नहीं दे सकता यार, एक साथ बोल रहा हूँ मैं।
1: तो दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, आज हम आपको विस्तृत तरीके से बताएंगे आज सुबह से क्या कुछ हुआ है। लेकिन ये शाम की तस्वीरें जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं, एक तरफ वो जंतर मंतर जो अब खाली दिख रहा है और दूसरी तरफ केरला हाउस के बाहर जहां पर प्रदर्शन अब भी चल रहा है। इससे पहले कांग्रेस जनता पार्टी ने ऐलान किया था कि वो अपनी मांगों को लेकर संसद तक एक मार्च निकालेगी, जिसे संसद चलो का नाम भी दिया गया था। इस मार्च के लिए आज का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा था। हालांकि दिल्ली पुलिस का दावा है कि इस मार्च के लिए ना तो अनुमति मांगी गई थी और ना ही अनुमति दी गई थी, ऐसा दिल्ली पुलिस का दावा है। यह अनुमति इसलिए जरूरी होती है ताकि प्रशासन कानून व्यवस्था, सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन सबको सुनिश्चित कर सके और बाकी लोगों को इससे परेशानी ना हो। इस मामले में दिल्ली पुलिस का दावा है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने कभी भी संसद मार्च के लिए उसकी अनुमति नहीं मांगी, जिसके कारण उसने प्रदर्शन कर रहे लोगों की भीड़ को रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए। यहां ये जानना भी जरूरी है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने खुद अब तक दिल्ली पुलिस के इन दावों पर कुछ नहीं कहा है। अगर ये पार्टी आगे कहती है कि उसने दिल्ली पुलिस से इस मार्च की अनुमति ली थी तो हम इसके बारे में आपको जरूर बताएंगे, लेकिन अभी तक जो तस्वीर है उसमें अनुमति को लेकर क्लैरिटी नहीं है। जो जानकारी आई है और दिल्ली पुलिस के दावे हैं उनके मुताबिक ये अनुमति नहीं ली गई थी। तो ये हो गई पहली बात। एएनआई के मुताबिक सुबह 8 बजे से जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी और इसीलिए हमने ये तय किया कि हम आपको समय के हिसाब से जब जब जो कुछ हुआ है वो बताएं। देखिए 9 बजे का वक्त था, ज्यादातर लोग संसद मार्च में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जिनकी मुख्य रूप से 4 मांगे थी। पेपर लीक के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, पेपर लीक मामलों की जवाबदेही, परीक्षा व्यवस्था में जरूरी सुधार और जिन छात्रों ने पेपर लीक के कारण आत्महत्या की है उन्हें न्याय मिले, उन्हें मुआवजा दिलाना। कॉकरोच जनता पार्टी का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने उसके ऐसे सभी समर्थकों को जंतर मंतर पर पहुंचने से ही रोक दिया जो संसद मार्च में शामिल होना चाहते थे। एएनआई ने सुबह 9:02 पर यह बताया कि इस विरोध प्रदर्शन के कारण कुल 5 मेट्रो स्टेशन के दरवाजों को बंद कर दिया गया है। अब ये कौन से थे आप सोचे, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक, सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन, सब शामिल थे बंद। इन सभी स्टेशनों पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ दिखी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हुआ कि इनमें कितने लोग संसद मार्च में शामिल होने आए थे और कितने लोग अपने दफ्तर जाने के लिए वहां पर खड़े थे। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी ने कुछ वीडियो जारी किए जिनमें यह बताया गया कि यह सारी भीड़ जंतर मंतर पर आ रही थी, जिसे रोकने के लिए इन सभी मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया, उनका यह दावा था। देखिए तो 9:30 बजे तक ये संसद मार्च शुरू नहीं हुआ था। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक दिल्ली पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स के पास आकर खड़े हो गए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस उनसे अपील कर रही थी। दिल्ली पुलिस कह रही थी कि वो अपने इस मार्च को अभी के लिए स्थगित कर दे। देखिए आज संसद का मॉनसून सत्र का पहला दिन था। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो जंतर मंतर से नए संसद भवन की दूरी कितनी है, सिर्फ 1.5 किलोमीटर, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं। और कॉकरोच जनता पार्टी की योजना यही थी कि वो 1.5 किलोमीटर लंबा एक मार्च निकालेंगे और पेपर लीक के मुद्दे पर अपनी आवाज उठाएंगे। जैसे ही प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ने लगे उन्हें रोकने की कोशिश की गई। सबसे पहले जंतर मंतर के पास लगे बैरिकेड को हटाया गया और इसके बाद कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। दिल्ली पुलिस का आरोप है उनका यह आरोप है कि शास्त्री भवन के पास कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। सिलसिलेवार ढंग से वक्त के हिसाब से जो कुछ हुआ है, जो दावे दोनों तरफ के हम आपको दिखा रहे हैं। आगे बताइए, कुछ इलाकों में पुलिस ने लाठी चार्ज किया, जिससे प्रदर्शनकारियों के बीच भगदड़ जैसी स्थिति मच गई। कॉकरोच जनता पार्टी का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाल रहे उनके समर्थकों पर जानबूझकर आंसू गैस के गोले दागे, लाठियां चलाई। दिल्ली पुलिस का लेकिन दावा है कि उसने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कार्रवाई की, और जब भी कोई हिंसा पर उतारू होता या फिर जवाबी कार्रवाई में पुलिस पर ही हमला करता, तब स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उसने कदम उठाए। हमारे पास एएनआई का वो वीडियो भी है जो उसने 10:20 पर पोस्ट किया। इस वीडियो में क्या दिख रहा है? रैपिड एक्शन फोर्स के जवान प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर बल प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, ये आपके सामने है। और इन तस्वीरों से पता चलता है कि सुबह 10:00 जब ये संसद मार्च शुरू हुआ, तब से टकराव की स्थिति बन गई थी। और हमारे पास जो तस्वीरें आए हैं वो क्या दिखा रही है देखिए।
2: प्रदर्शनकारी हैं, उनको यहां से तितर बितर किया जा सके। आप देख सकते हैं ली मेरिडियन होटल के सामने की तस्वीरें।
3: हल्का बल प्रयोग पुलिस कर रही है जब ये जो प्रोटेस्टर है वो नियंत्रण खो रहे हैं उसके बाद। और अब चारों तरफ से अगर ये पूरा जो इलाका देखेंगे तो चारों तरफ से अब जो बस पे लोग खड़े गए थे उनको उतारने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। अब ये देखिए, अभी अभी जो टीयर गैस की एक टीयर सेल छोड़ी गई, ये देखिए ये दूसरी टीयर सेल आपको छोड़ी हुई आपको दिखाई दे रही है। इस तरीके से जो आंसू गैस के गोले हैं वो यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं भीड़ को तितर बितर करने के लिए। ये सीधी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए, अब ये पत्थर भी, पत्थर रितेश मिश्रा आप देखेंगे, ये देखिए जूते चप्पल पत्थर, वो पत्थरबाजी यहाँ पर हो रही है। और इस तरीके से टीयर गैस की सेल यहाँ पर छोड़ी जा रही है।
1: तो हमारे सहयोगी की लाइव रिपोर्टिंग के दौरान जो पत्थर आए वो आपने देखे, वहीं दूसरी तरफ आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे वो भी आपने देखा। दावा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक आज संसद भवन तक पहुंचने में कामयाब हो गए, जिसके बाद संसद भवन के गेट को बंद कर दिया गया और संसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई। ये भी तब हुआ जब संसद भवन के अंदर सरकार और विपक्ष के सांसद मौजूद थे और बाहर तनावपूर्ण हालात बने हुए थे। उस वक्त हमारे जो रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो में रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनका कहना है कि प्रदर्शनकारियों का एक समूह संसद मार्ग के बहुत नजदीक था और वहां इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। लेकिन इस दावे की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या ये प्रदर्शनकारी संसद भवन के अंदर प्रवेश करने में कामयाब हुए थे या फिर नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने दोपहर 2:51 पर यह दावा किया कि इस मार्च में गीतांजलि जी के बाल खींचे गए और एक 12 साल की बच्ची के साथ मारपीट हुई। यहां कई लोगों ने गीतांजलि जी का मतलब सोनम बांगचुक की पत्नी से भी जोड़ा और कारण यही था कि उनका नाम भी गीतांजलि है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन दावों को पूरी तरह खारिज किया, कहा कि इस तरह की सभी खबरें झूठी हैं और ये खबरें भ्रामक हैं, लोग इन झूठी खबरों पर विश्वास ना करें, ये दिल्ली पुलिस ने कहा। देखिए,
4: जनपद रोड पर हूं जो कि जंतर मंतर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है, लेकिन ये आसपास का दायरा उन प्रदर्शनकारियों से भरा हुआ है जो बड़ी संख्या में अब आगे जंतर मंतर की ओर बढ़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मार्च को अनुमति नहीं दी है। जंतर मंतर पर जाने की तो अनुमति है लेकिन बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन इस बीच ये भारी जो संख्या दिख रही है ये सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों में है।
5: नारेबाजी कर रहे हैं, बीजेपी ने जो मार्च का आह्वान किया था, तो यहाँ पे जो पूरी सिक्योरिटी है वो एक तरफ हो रही है,
6: आप इस जगह को तुरंत खाली कर दें वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
4: संसद भवन के पास तक बहुत सारे जो कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हालांकि पुलिस की पूरी तरीके से यहाँ पर बंदोबस्त किया गया है और पुलिस ने बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा रखा है और सारे लोगों को यहाँ पर रोका हुआ है। तेज बरसात हो रही है लेकिन उसके बावजूद प्रदर्शनकारी अभी आउटर सर्कल पर जो है रुके हुए हैं और उन्होंने क्या किया कि आउटर सर्कल का पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया है। इसी के साथ साथ राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का जो इलाका चूंकि बंद है तो उसके बाहर भी कई भारी संख्या में वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं।
2: आप देख सकते हैं राइट कंट्रोल व्हीकल के अंदर जो कैनिस्टर्स हैं वो भरे जा रहे हैं। तो आप यहीं से समझ गए होंगे कि इस समय जो केंद्रीय दिल्ली का दिल जिसे कनॉट प्लेस कहा जाता है वहां इस समय क्या कार्यवाही चल रही है। मार्केट के अंदर जा जाकर जो सीजीपी के धरना प्रदर्शन करने वाले लोग हैं कांग्रेस जनता पार्टी के उनको पकड़ा जा रहा है, उनको खदेड़ा जा रहा है।
1: इस बीच एएनआई ने कुछ वीडियो जारी किए हैं जिनके आधार पर दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पत्थरबाजी करने की बात की है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की और इस पत्थरबाजी में घायल हुए एक सब इंस्पेक्टर का यह भी आरोप है कि जब वो बैरिकेड के पास भीड़ को रोकने का प्रयास कर रहे थे तब जानबूझकर उन पर पत्थर फेंके गए जिनमें वो घायल हो गए। देखिए

0: संसद मार्च की शुरुआत कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के भाषण से हुई थी, जो उन्होंने सुबह 8 बजे दिया था। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे 2 घंटे पहले सुबह करीब 6 बजे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास का दावा है कि दिल्ली पुलिस ने उनसे संपर्क किया था। सुबह 10:48 पर ANI ने बताया कि सौरभ दास को डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर लाया गया था और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार से बातचीत चल रही है। सुबह 11:45 पर यह खबर आई कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा अपने आवास पर सौरभ दास और आशुतोष रांका से मुलाकात करने वाले हैं और यहां आशुतोष रांका भी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बड़ी बात यह कि जब यह खबर आई तब उसके 1 घंटे बाद अभिजीत दीपके ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। दोपहर 12:50 पर यह तस्वीरें आई जिनमें अभिजीत दीपके ने मंच से अपनी भूख हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया और वो करते हुए नजर भी गया। और कॉकरोच जनता पार्टी का दावा है कि सोनम वांगचुक ने खुद ही अपील की थी कि अभिजीत दीपके अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दे और उसी के बाद ये फैसला हुआ। देखिए, पहले 18 जुलाई को जब दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था तब अभिजीत दीपके ने ऐलान किया था कि अब वो सोनम वांगचुक की जगह भूख हड़ताल करेंगे और आज 2 दिन बाद उन्होंने सोनम वांगचुक की ही अपील पर इस भूख हड़ताल को खत्म कर दिया। और बड़ी बात यह है कि इस भूख हड़ताल के खत्म होने के बाद दोपहर करीब 2 बजे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रंका से मुलाकात की है। खुद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने शाम 4:57 पर इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और ये बताया कि आज सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया और सुबह 11:50 से ही सरकार की कॉकरोच जनता पार्टी से बातचीत जारी है। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी का दावा है कि जब उन्होंने अपना लिखित ज्ञापन जेपी नड्डा को सौंपा तब उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि वो उनकी मांगों को सही स्तर पर पहुंचाएंगे और अभी उन्होंने उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया है।
1: हम 12 बजे के करीब लगभग नड्डा जी के रेजिडेंस पर आए थे, 2:15 के आसपास उनसे मीटिंग हुई। हमने 3 डिमांड्स रखी हैं। पहला, सोनम वांगचुक जी को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए और एक वीडियो के माध्यम से लोगों में वो अपना बात पहुंचा पाए, इस चीज को अलाउ किया जाए। दूसरी चीज, धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि एक नाकाबिल शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए या फिर उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए। और तीसरी डिमांड, जो भी नीट के पेपर लीक होने के बाद जिन स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली थी उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन दिया जाए। 2 राउंड की वार्ता हुई, 1 2 बजे के करीब और 1 अभी 4 बजे के करीब। नड्डा जी ने कहा है कि वो अपने सीनियर लीडरशिप से इस बारे में बात कर रहे हैं और आगे जो भी बात रहेगी उनकी तरफ से उन्हें कम्युनिकेट किया जाएगा। आश्वासन तो बस यही मिला है कि वो अपनी सीनियर लीडरशिप से इस बारे में बात करेंगे और जो भी उधर से बात होती है उसका नतीजा आप लोगों के साथ जल्द शेयर किया जाएगा।
0: तो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ये बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने उन्हें ये आश्वासन दिया है कि वो अपनी पार्टी के अंदर वर्चस्व जो वरिष्ठ नेता हैं और जो डिसीजन मेकर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे और फिर मामला आगे बढ़ेगा। इधर दिल्ली पुलिस ने भी सभी प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने, कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। क्या कहा है ये सुनिए।
2: दिल्ली पुलिस सभी प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने और शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील करती है। सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध है कि वे कृपया शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें, किसी भी गैरकानूनी या हिंसक गतिविधि में शामिल न हों और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा दिए गए कानूनी निर्देशों का पालन करें। जनता को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अफवाहों, गलत जानकारी या अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें और न ही उन्हें फैलाएं। नागरिकों से अनुरोध है कि वे जानकारी के विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करें और शांति, सद्भाव व कानून व्यवस्था बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। धन्यवाद।
0: कांग्रेस जनता पार्टी का दावा है कि संसद मार्च में सोनम बांगचुक भी शामिल होना चाहते थे। सफदरजंग अस्पताल में भर्ती सोनम बांगचुक ने हाथ से लिखी एक चिट्ठी जारी की, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि अब वो स्वस्थ है और उन्हें संसद मार्च में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए और कम से कम अस्थायी रूप से डिस्चार्ज करके ऐसा किया जाए। हालांकि इससे पहले सुबह करीब ये चिट्ठी उन्होंने अभी लिखी है, जिसमें आई विल कंटिन्यू माई फास्ट भी उन्होंने लिखा है, 23वें दिन का जिक्र किया है। लेकिन इससे पहले सुबह करीब 10 बजे सफदरजंग अस्पताल ने सोनम बागचुक का एक मेडिकल बुलेटिन जारी किया, जिसमें यह बताया गया था कि उनका स्वास्थ्य स्थिर है लेकिन उन्हें अब भी डॉक्टर्स की निगरानी में रखना जरूरी है। इसके अलावा सोनम बागचुक की पत्नी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें यह मांग की गई है कि सोनम बागचुक को उनकी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने की छूट दी जाए, जिस पर हाईकोर्ट ने आज सुनवाई भी की। और यह कहा हाईकोर्ट ने कि वो कल इस मामले में फिर से सुनवाई करेगा, जब सोनम बागचुक की मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। वैसे सोनम बागचुक ने आज शाम को एक और चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने अस्पताल में भर्ती रहते हुए अपने अनशन को जारी रखने का ऐलान किया है। और उन्होंने ये चिट्ठी, जिसकी मैं चर्चा कर रही थी, ये चिट्ठी उन्होंने लिखी है और इसको पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आई विल कंटिन्यू माई फास्ट। और उन्होंने इस बारे में पूरे आरोप लगाते हुए कि जो आज प्रदर्शनकारियों के साथ किया गया है, उसकी वजह से वो इस अनशन को जारी रखना चाहते हैं। सीइंग द ब्रूटैलिटी, जैसा कि आप ये चिट्ठी देख रहे हैं। या ये भी देखिए कि आज कई विपक्षी नेता इस मार्च से पहले कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए जंतर मंतर पर पहुंचे और उन्होंने साथ दिया। आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, संजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लिना शामिल हुई, जबकि टीएमसी की तरफ से कीर्ति आजाद, महुआ मोइत्रा और आजाद समाज पार्टी की तरफ से चंद्रशेखर आजाद जंतर मंतर पहुंचे। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थन में एक मार्च भी निकाला और इस दौरान अभिनेता प्रकाश राज, शबाना आजमी भी प्रदर्शनकारियों के साथ नजर आए। इसके बाद ये पूरा विरोध प्रदर्शन हुआ और इस पर संसद में काफी गतिरोध देखने को मिला। देखिए,
3: सुन तो नहीं दे रहा, अरे सुनिए सुनिए, सारे लोग जा रहे हैं तो आप क्यों नहीं जा रहे?
4: ये आंदोलन है, आवाज को सुने।

0: कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना 16 मई को तब हुई थी जब इससे 10 दिन पहले नीट परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। बाद में कॉकरोच जनता पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया और इसके संस्थापक अभिजीत दीप के 6 जून को अमेरिका से दिल्ली लौटे। शुरुआत में कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर सिर्फ एक दिन का विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन बाद में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर 28 जून से सोनम वांगचुक की हड़ताल वहां पर शुरू हुई। जब इस हड़ताल को 20 दिन से ज्यादा हो गए तब दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट का हवाला देते हुए सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया। अब भी कॉकरोच जनता पार्टी की सबसे बड़ी मांग यही है कि नीट पेपर लीक के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई हो और उन्हें पद से हटाया जाए। यहां यह भी देखिए कि धर्मेंद्र प्रधान वही नेता जो साल 2014 से एनडीए की केंद्र सरकार का हिस्सा है। साल 2014 से 2021 के बीच वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री रहे। 2021 से वो लगातार भारत के शिक्षा मंत्री हैं। यानी वो मौजूदा सरकार के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन पर लगातार जिनको मौका मिला सरकार में प्रतिनिधित्व रहा। और इसके पीछे एक कारण यह भी है कि जब 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लागू हुआ तब इसका श्रेय धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया क्योंकि उस वक्त पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे। धर्मेंद्र प्रधान एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता देवेंद्र प्रधान भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि होने के कारण धर्मेंद्र प्रधान पहले 1983 में बीजेपी की छात्र इकाई से जुड़े, बाद में ओडिशा बीजेपी के लिए संगठन स्तर पर वो काम करने लगे। बाद में बीजेपी में उनका कद इसलिए भी बढ़ता गया क्योंकि उन्होंने पार्टी को कई चुनाव जिताए, जैसे 2025 में बिहार, 24 में हरियाणा, 22 में उत्तर प्रदेश, 17 में उत्तराखंड, 16 में असम और 14 में झारखंड। विधानसभा और बिहार के लोकसभा का चुनाव बीजेपी ने जीता तब पार्टी ने चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान को ही नियुक्त किया था और इस वजह से उनका कद पार्टी में बढ़ता गया। 21 में धर्मेंद्र प्रधान पहली बार केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने और जब खराब स्वास्थ्य के कारण रमेश पोखरियाल निशंक को इस पद से हटाया गया था तब उन्होंने ये पद संभाला। पेपर लीक को लेकर अब वो विपक्ष के निशाने पर है और कॉकरोच जनता पार्टी जिन तीन मांगों को लेकर यह आंदोलन कर रही है उनमें एक मांग उनके इस्तीफे की भी शामिल है। खैर, इस विरोध प्रदर्शन के बीच हम आपसे कुछ और भी कहना चाहते हैं। जिस नीट का पेपर मई महीने में लीक हुआ था वो परीक्षा 21 जून को दोबारा कराई गई। इस बार इस परीक्षा में 20 लाख से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया था। 20 लाख का आंकड़ा कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता है। हमारे देश में हर साल लगभग 1 करोड़ छात्र 12वीं कक्षा पास करते हैं जिनमें लाखों बच्चे मेडिकल की पढ़ाई के लिए नीट की परीक्षा देते हैं। यह भी तब होता है जब ज्यादातर छात्रों को पता होता है कि अगर वो इस परीक्षा में पास हो भी गए तो भी शायद उन्हें किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे देश में मेडिकल की पढ़ाई के लिए उतनी सीटें हैं ही नहीं जितने बच्चे नीट की परीक्षा के लिए क्वालिफाई होते हैं। उदाहरण के लिए 4 दिन पहले जब 16 जुलाई को नीट का रिजल्ट आया तब यह परीक्षा 20 लाख से ज्यादा छात्रों ने दी थी, लेकिन जानते हैं इनमें से जो छात्र पास हुए उनकी संख्या 11,21,000 थी। इसका मतलब यह हुआ कि 9 लाख बच्चे तो परीक्षा देने के बाद क्वालिफाई नहीं कर पाए। जिन 11,21,000 छात्रों ने यह परीक्षा पास भी की उनमें भी लाखों छात्रों को किसी भी मेडिकल कॉलेज में शायद दाखिला नहीं मिले। कारण है हमारे देश में एमबीबीएस की कुल सीटें हैं 1,36,939, 63,296 सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की हैं, 73,643 सीटें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की हैं। यानी 11 लाख बच्चे नीट की परीक्षा में पास तो हुए लेकिन इनमें 1,36,000 छात्रों को ही एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला मिल पाएगा और बाकी के जो 9,86,000 छात्र बचेंगे उनके पास विकल्प होगा कि वो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की पढ़ाई करें या जो एनिमल हस्बेंड्री है जानवरों के डॉक्टर बनने की या आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी इनके डॉक्टर बने। इनमें भी असीमित सीटें नहीं है, 80,000 सीटें हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 11,21,000 छात्र नीट की परीक्षा में अगर क्वालिफाई कर भी जाते हैं तो इनमें से 9 लाख जो छात्र हैं उनके पास किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिले की गुंजाइश नहीं बनेगी क्योंकि इतनी मेडिकल सीट्स नहीं है। मौजूदा सरकार ने पिछले 12 सालों में एमबीबीएस की सीटें 54,000 से बढ़ाकर 1,36,000 तो की, मेडिकल कॉलेज की संख्या भी 381 से बढ़कर 883 हो गई है, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में हर साल 9 से 10 लाख छात्र नीट परीक्षा में पास होने के बाद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता। और सोचिए जब पहले से सीटों के लिए इतना संघर्ष है उस दौरान पेपर लीक हो तो छात्रों की जो मानसिक व्यथा है वो हम सब समझ सकते हैं। हमारे देश में कई गरीब छात्र ऐसे हैं जो नीट परीक्षा में 1,00,000 रैंक पाने के बाद भी डॉक्टर नहीं बन पाते, और कारण यह है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में कट ऑफ बहुत कम होती है, क्योंकि सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस की पढ़ाई का 1 साल का खर्च 1,00,000 से भी कम होता है। प्राइवेट कॉलेजेस में यही खर्च जानते हैं कितना है? 30 से 40 लाख रुपए। से गरीब छात्रों के लिए मुमकिन ही नहीं है। अब यहां यह भी देखिए कि हमारे देश में अच्छे और समृद्ध परिवार के बच्चे भी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में पढ़कर डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि वहां सरकार उन्हें अच्छी शिक्षा देती है। वहां सरकार, और आप सोचिए बड़े बड़े जो एम्स जैसे अस्पताल है वहां से अगर आप पढ़ते हैं तो जाहिर तौर पर आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ऐसे में जहां जहां सरकारी खर्च पर बच्चे पढ़ते हैं वहां सरकार द्वारा 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, जिसके कारण सरकारी कॉलेजेस में दाखिले के लिए एक बहुत कड़ा संघर्ष होता है। लेकिन इसी देश में जब सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई के लिए इतनी ज्यादा प्रतियोगिता है, वहीं सरकारी स्कूलों का हाल अच्छा नहीं है। आज भी सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला कम हुआ, प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों का दाखिला बढ़ गया है। फीस आप देख ही रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स की क्या हालत है। सवाल उठता है कि जो सरकारी कॉलेजेस में अच्छी शिक्षा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती हैं, वही सरकारें सरकारी स्कूलों में ऐसा क्यों नहीं करती? आज नीट के इस मुद्दे पर संसद में भी खूब हंगामा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार प्रदर्शनकारियों की आवाज को दबा रही है। ये तस्वीरें आज के विरोध प्रदर्शन की भी देखिए, और जो संसद में हंगामा हुआ है वो भी देखिए।
1: नियमों के तहत पर्याप्त समय पर्याप्त मौका दूंगा। नारेबाजी करना तथ्य ले रहना उचित नहीं है।
2: दिस पेपर लीक and neat examination ghotala and no chanda chori to hai hi hai sab uske samarthak udhar baithe hain lekin sir ye student ka mamla hai ye student ka mamla hai jo lakhon bachchon ki jo bhavishya hai unke bhavishya ke bare mein main baat kar raha hu aur uske liye aaj yahan jantar mantar pe हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है।
0: इस पूरे हंगामे के बीच आज मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उस स्टार्टअप की बात की जिसने भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च किया है। प्राइवेट रॉकेट लॉन्च, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्टार्टअप में काम करने वाले युवाओं की औसत उम्र सिर्फ 28 साल है। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहे, बल्कि देश के 28 साल के उन नौजवानों की बात कर रहे हैं जो अंतरिक्ष में झंडा गाड़ रहे हैं। यानी यहां प्रधानमंत्री मोदी का निशाना विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर था जो 56 साल के। सुनिए,
3: भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है, बहुत बड़ी सफलता है। और ये जो स्काईरूट स्टार्टअप है उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश के ये स्टार्टअप ने 28 के एवरेज वाले नौजवानों ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया है, उनको तो बधाई है ही है। लेकिन ऐसी बातें जो हैं जो भारत को आत्मविश्वास से भर देती है, विश्व में भारत का प्रोफाइल सर्वमान्य सर्वस्वीकृत बनता जाता है।
0: जिस स्टार्टअप ने भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया उसके संस्थापक पवन कुमार चंदाना है। उनकी कहानी आज आपको जरूर सुननी चाहिए। हैदराबाद में 1991 में जन्मे पवन के लिए स्कूल की पढ़ाई आसान नहीं थी। गणित यानी मैथ्स में सिर्फ 51 अंक आए थे। ऐसा सुनते ही हम सब अपने बचपन के मैथ्स के मार्क्स याद करने लगते हैं, लेकिन किसने सोचा था कि 51 अंक मैथ्स में गणित में लाने वाले आगे जाकर भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च करेंगे, लेकिन ये हुआ और इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने मेहनत की, पहले ही कोशिश में आईआईटी में दाखिले की परीक्षा पास कर ली। साल 2007 में उन्होंने आईआईटी खड़गपुर में प्रवेश लिया, जहां उनके कई साथी विदेशों में आकर्षक नौकरियों का सपना देख रहे थे। पवन के मन में एक सपना था, रॉकेट बनाना। साल 2012 में पढ़ाई पूरी होते ही उन्होंने इसरो का रुख किया। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में लगभग 6 वर्षों तक उन्होंने भारत के सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम किया और फिर देखिए जो स्थिति बनी है कि आज एक प्राइवेट रॉकेट को लॉन्च करने में वो कामयाब हुए और इसीलिए आज प्रधानमंत्री ने खास तौर पर उनकी कामयाबी का जिक्र किया।
4: I'm right here at Sriharikota at the launch site, and we have these special cards which we received from our team members, our investors, policymakers, and all well-wishers across the country. We also have a very special card from none other than our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji.
5: 3, 2, 1, 0.
6: And we have liftoff of Vikram 1, India's first private orbital launch
7: lift
6: vehicle.
7: Liftoff normal.
8: सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई।
0: बड़ी कामयाबी और वो खुशी चेहरे पर दिख रही थी। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली खबर की बात करते हैं और बताते हैं आपको अमेरिका और ईरान वॉर की। पिछले करीब 9 रातों से ईरान पर बमों की बरसात हो रही है। अमेरिकी सेना ने खास पैटर्न के तहत शाम होते ही ईरान के शहरों पर बमबारी शुरू कर दी है। कई बार तो ये हमले कई कई घंटों तक लगातार चलते रहते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नियंत्रण पाने को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का ये राउंड 2 चल रहा है और इस बार दोनों ही देश एक दूसरे पर बड़े पैमाने पर हमले कर रहे हैं। एक बार नजर हटी लोगों की कि शायद ये युद्ध अब स्थिर हो रहा है, लेकिन ये युद्ध अब आक्रामक रूप ले रहा है। अमेरिकी सेना के निशाने पर फारस की खाड़ी से लगते ईरान प्रांत खुजस्तान से लेकर ओमान की खाड़ी से में चाबहार तक है और इसके बीच में आने वाले लगभग हर उस इलाके पर हमला किया जा रहा है जिसका इस्तेमाल ईरान अपने रणनीतिक और आर्थिक फायदे के लिए कर रहा है। पिछले 3 दिनों में अमेरिका ने जास्क, सिरिक, बुशहर, बंदर अब्बास, केशम आइलैंड, अहवाज यज्द, शादेगान, बंदर महशहर, बंदर इमाम खुमैनी और कुंडराक में हमले किए हैं। इनमें ये ज्यादातर तटीय इलाके हैं जहां पर पूरा मैप हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका ने तबरीज पर भी हमला किया है। तबरीज ईरान की सेना का गढ़ माना जाता है और माना जा रहा है कि यहां एक अंडरग्राउंड मिसाइल बेस था जिसको अमेरिका ने तबाह किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक उनके निशाने पर मुख्य तौर पर ईरान के वो सैन्य ठिकाने हैं जिनका इस्तेमाल वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नियंत्रण पाने के लिए करता है। इन ठिकानों से ईरान विदेशी कमर्शियल जहाजों पर हमला करता है। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के सैन्य ठिकानों में कमांड सेंटर्स, एयर डिफेंस, तटीय क्षेत्र के सर्वेलेंस सेंटर्स, नौसेना से जुड़े ठिकाने, मिसाइल और ड्रोन की लॉन्च साइट्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क सेंटर्स को निशाना बनाया गया है। हालांकि ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक अमेरिकी सेना सैन्य ठिकानों के नाम पर ऐसी जगहों को टारगेट कर रही है जिससे आम नागरिकों को परेशानी हो। आरोप है कि जास्क में खासतौर पर अमेरिकी सेना ने एक डीसलाइनेशन प्लांट पर हमला किया है। इस हमले के बाद करीब 20 गांव के 10,000 लोगों के लिए पानी जो पीने का है उसकी समस्या खड़ी हो गई है। डीसलाइनेशन प्लांट यहां यानी जहां समुद्री पानी से नमक हटाया जाता है। अब ईरान का आरोप यह भी है कि सैन्य ठिकानों पर हमले की आड़ में उसने बंदर अब्बास के शाहिद मिर्जाई टनल और दो पुलों को भी निशाने पर लिया है।

0: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the strait. They don't control anything. So we'll see what happens. But we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably three. It's probably three as opposed to two. Great patriots.
1: हमलों के बीच एक खबर ये भी आई है कि अमेरिकी सेना ने खार्ग आइलैंड पर जमीनी हमले का प्लान बना लिया है। इस खबर के बाद से ईरान में खलबली है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी सैनिक खार्ग पर कब्जे के इरादे से उतरे तो बचकर वापस नहीं जाएंगे। फारस की खाड़ी में मौजूद खार्ग आइलैंड, जिसके बारे में हमने आपको कई बार बताया है, आइलैंड ईरानी जो कच्चा तेल है उसका महत्वपूर्ण ठिकाना है। 90% कच्चे तेल का यहीं से निर्यात होता है, इसी आइलैंड से निर्यात होता है। ये डिपो है, सबसे बड़ा ऑयल डिपो। यहां पर ईरानी कच्चे तेल का स्टोरेज भी करीब 3 करोड़ बैरल है। यानी एक तरह से देखा जाए तो अगर खार्ग आइलैंड पर अमेरिकी सेना ने कब्जा कर लिया, ईरान की कमर टूट जाएगी। ईरान को भी एहसास हो गया है कि अमेरिकी सेना अब की बार पिछली बार की तुलना में ज्यादा बड़े और घातक हमले कर रही है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने एक ट्वीट करके बताया है कि अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ हर दिन नए नए मिलिट्री हथियारों का इस्तेमाल कर रही है और हमलों के बाद युद्ध रोकने का दावा भी कर रही है। हालांकि अमेरिका के घातक हमलों के जवाब में ईरान ने भी भीषण पलटवार किए हैं। ईरान ने अब तक बहरीन, कतर, कुवैत, इराक, जॉर्डन को निशाने पर लिया है। कुवैत में कैंप अरफजान और अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया गया है। और इस बार सबसे ज्यादा चर्चा जॉर्डन की हो रही है, जहां पर खूब हमले इस वक्त ईरान कर रहा है। अमेरिकी नौसेना के 5th जो फ्लीट है उसके मुख्यालय को भी टारगेट किया गया है। ईरान ने कतर में अल उदैद एयरबेस को निशाना बनाया। जॉर्डन के मुवफाक सॉल्टी एयरबेस पर हमले किए गए। IRGC का कहना है कि इन सभी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाने पर लिया गया है और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कंफर्म किया है कि ईरान के इन हमलों में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, 1 लापता है। जानकारी के मुताबिक ईरान ने जॉर्डन के मुवफाक सॉल्टी एयरबेस पर जो हमला किया था उसमें 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 1 लापता है। इसके अलावा इराक में 1 अमेरिकी सैनिक के मारे जाने की खबर है। यह अमेरिकी सैनिक ईरान के एक आत्मघाती ड्रोन को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि IRGC का दावा है कि उन्होंने जॉर्डन पर जो हमले किए हैं उसमें कई अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। IRGC का कहना है कि उन्हें जॉर्डन से खुफिया जानकारियां मिली थी जिसकी मदद से अमेरिकी सेना के 20 हैंगर्स को उन्होंने तबाह कर दिया। IRGC यह भी कह रहा है कि उन्होंने जॉर्डन के अकाबा एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना के कई एयरक्राफ्ट्स को तबाह कर दिया है। इन हमलों के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार और पूर्व IRGC कमांडर मोहसिन रजाई ने एक इंटरव्यू दिया और कहा कि अगर अमेरिका इसी तरह से हमले करता रहा तो इसके जवाब में ईरान बड़े आक्रामक युद्ध में

ईरान को अमेरिका की इस नई रणनीति की खबर मिल गई और शायद इसीलिए जॉर्डन इस युद्ध का अब एपिसेंटर बन गया है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि अमेरिका ने जॉर्डन को सिर्फ चेहरा बनाकर पेश किया जबकि अपने हथियारों को इसराइल के सीक्रेट बेस पर रखा है। वो चाहता है कि ईरान जॉर्डन पर हमले करके अपने हथियारों को खपाए और इसी बीच इसराइल की जमीन से अमेरिका हमले कर सके। ईरान इसराइल पर हमला नहीं करेगा क्योंकि इसराइल पर हमला करना ईरान के लिए मुसीबत मोल लेने जैसा होगा। इसराइल के रक्षा मंत्री ने हाल ही में धमकी दी थी कि अगर ईरान ने उन पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया तो उनका देश युद्ध में उतर जाएगा। और यही वजह है कि ईरान जॉर्डन को अपने निशाने पर लिए हुए है और वहां के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। और अब आपको फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच हुए रोमांचक मुकाबले के बारे में बताएंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस मुकाबले में जीत भले स्पेन को मिली लेकिन इसका सबसे ज्यादा जश्न कहां मना? सबसे ज्यादा जश्न गाजा, फिलिस्तीन और कई इस्लामिक मुल्कों के साथ साथ दुनिया के कई मुस्लिम इलाकों में भी मनाया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में बताने से पहले आपको मैच का रोमांच दिखाते हैं। फीफा का ये फाइनल खेल से ज्यादा 120 मिनट का वो गदर था जिसने दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों की सांसें थाम दी। न्यू जर्सी का मेटलाइफ स्टेडियम जहां मैदान पर फुटबॉल कम और युद्ध जैसा माहौल ज्यादा नजर आ रहा था। मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों की मंशा साफ थी, कोई भी एक इंच जमीन छोड़ने को तैयार नहीं था। पहले 30 मिनट में ही मैदान पर जंग जैसा माहौल बन गया और फिर खतरनाक टैकल्स, फाउल और फिर खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त धक्का मुक्की। अर्जेंटीना और स्पेन के खिलाड़ी एक दूसरे की जर्सी खींचते, आपस में भिड़ते, रेफरी से बहस करते हुए नजर आए। रेफरी को बार बार जेब से कार्ड निकालने पड़े। 90 मिनट का रेगुलर टाइम खत्म होने तक स्कोर था 0-0। अर्जेंटीना की डिफेंस को टूट रहा था और ना स्पेनिश गोलकीपर की दीवार ढह रही थी। मैदान पर खिलाड़ियों का पारा हाई था तो स्टैंड्स में बैठक जो दर्शक थे वो भी शांत नहीं थे। जब स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन्स पर वीआईपी दीर्घा में मौजूद डोनाल्ड ट्रंप और फीफा प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो को दिखाया गया तो पूरे स्टेडियम में जबरदस्त हूटिंग शुरू हो गई। नतीजा ना निकलने पर मैच एक्स्ट्रा टाइम में खिंच गया। इस दौरान स्पेनिश गोलकीपर ने अर्जेंटीना के दो पक्के गोल बचाकर साबित कर दिया कि क्यों उन्हें इस टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना जाना तय था। और फिर आया एक्स्ट्रा टाइम के दूसरे हाफ का 106वां मिनट, वो पल जिसने इतिहास लिख दिया। युवा सनसनी लामिनी यमाल ने अपनी जादुई ड्रिबलिंग से अर्जेंटीना के डिफेंस को चकमा देते हुए गेंद को बॉक्स की तरफ बढ़ाया। वहां मौजूद थे फेरन टोरेस, एक सेकेंड का भी फ्रैक्शन समझिए, एक राइट फुट फिनिश और गेंद अर्जेंटीना के गोलकीपर को छकाते हुए सीधा नेट में समा गई। स्टेडियम में मानो ज्वालामुखी फट पड़ा। स्पेन के सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी और कोच डगआउट छोड़कर मैदान में कूद पड़े क्योंकि स्पेन 1-0 से आगे हो चुका था। 120 मिनट का टाइम पूरा होने पर जैसे ही रेफरी ने फाइनल सीटी बजाई स्टेडियम में अलग माहौल हो गया। एक तरफ अर्जेंटीना के खिलाड़ी मैदान पर ही घुटनों के बल बैठकर रो पड़े, स्टैंड्स में बैठे अर्जेंटीना के फैंस अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे, तो दूसरी तरफ स्पेन का जश्न बेकाबू था। लमिने यमाल और टोरेस स्टेडियम का चक्कर लगा रहे थे, हवा में आतिशबाजी हो रही थी। स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 की चमचमाती ट्रॉफी उठा ली। मेसी जब रनर अप मेडल लेने पहुंचे तो अपनी भावनाओं पर वो काबू नहीं रख पाए, उनके आंसू छलक पड़े, वो भावुक हो गए। ये मेसी का आखिरी विश्व कप हो सकता है। यूं तो अर्जेंटीना अंतिम वक्त में वापसी करने में माहिर रहा है लेकिन इस मैच में ऐसा नहीं हुआ। मेसी मैदान पर थे फिर भी अर्जेंटीना ने एक्स्ट्रा टाइम के दूसरे हाफ तक गोल नहीं दागा। लेकिन क्या ये जीत सिर्फ फुटबॉल के मैदान तक सीमित थी? बिल्कुल नहीं। इस मैच की फाइनल सीटी बजते ही एक और जंग शुरू हुई, वो थी राजनीति, धर्म और विचारधारा की जंग। क्योंकि यह मुकाबला सिर्फ स्पेन बनाम अर्जेंटीना नहीं था बल्कि फिलिस्तीन बनाम इसराइल बन गया था, इसीलिए दुनिया के कई हिस्सों खासकर इस्लामिक हलकों में इसका जोरदार जश्न मनाया गया। स्पेन के गोल की गूंज गाजा में भी जोर से सुनाई दी। क्यों? ये मुकाबला दो टीमों से ज्यादा दो विचारधाराओं का बन गया था, जहां एक तरफ थी इसराइल समर्थक अर्जेंटीना की टीम तो दूसरी तरफ थी फिलिस्तीन समर्थन स्पेन की टीम। यही वजह रही कि जब स्पेन जीता तो गाजा में पटाखे फूटे।
दरअसल स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने गाजा में इसराइल की कार्रवाई के खिलाफ

0: जोरदार आवाज उठाई थी। इसके अलावा मई 2024 में स्पेन ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दे दी। स्पेन ने हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गाजा में हो रहे हमलों की आलोचना की और यही वजह है कि जब स्पेन की टीम मैदान पर उतरी तो गाजा के लोगों को उसमें अपनी आवाज, अपना एक सच्चा हमदर्द नजर आया। दूसरी तरफ राजनीति के इसी समीकरण में अर्जेंटीना को प्रो इजराइल खेमे में देखा जा रहा था। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने सत्ता संभालते इजराइल के प्रति खुलकर अपना समर्थन जताया। इतना ही नहीं, फाइनल मैच से ठीक पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वीडियो बनाकर खुले तौर पर अर्जेंटीना की टीम का समर्थन किया।
1: אני כמובן אין לי עדפות, אבל שארגנטינה תנצח.
2: בטח.
3: Yo saludo de mi parte. Que agradezco siempre su generosidad para conmigo. Que además es un amigo. Las palabras cuando dijo que hinchaba por Argentina.
0: इसी वर्ल्ड कप में इजिप्ट के खिलाफ हुए मैच के दौरान अर्जेंटीना के फैंस ने इजराइल के झंडा लहराया था। इस तरह अर्जेंटीना की छवि इजराइल समर्थक के रूप में ही इस मैच में नजर आई। इसीलिए जैसे ही एक्स्ट्रा टाइम के 106वें मिनट में स्पेन ने गोल कर दिया, गाजा में जश्न शुरू हो गया। गाजा के तमाम लोगों ने स्पेन की जीत को अपनी नैतिक जीत माना। इसके अलावा पाकिस्तान, तुर्की समेत तमाम मुस्लिम देशों ने इस मैच में स्पेन का समर्थन किया। इसके अलावा मोरक्को मूल के युवा स्टार लैमिन यमाल जैसे खिलाड़ियों ने फिलिस्तीन का खुला समर्थन किया है और खुला समर्थन कर दुनिया भर। इसके साथ हम रुक रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट में एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा देखते रहिए।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
6: Thumbtack presents Uncertainty Strikes. I was surrounded. The aisle and the options were closing in. There were paint rollers, satin and matte finish, angle brushes and natural bristles. There were too many choices. What if I never got my living room painted? What if I couldn't figure out what type of paint to use? What if I just used Thumbtack? I can hire a top-rated pro that knows everything about interior paint, easily compare prices and read reviews. Thumbtack knows homes. Download the app today.
7: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Terms apply. Visit wellsfargo.com/depositdisclosures for fees and details.
9: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices. So you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here. On TuneIn.
10: Sokudo.
11: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst. Meets the cool UI UX designer. Meets the gifted content writer. Meets the talented photographer. To create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
12: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का। और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
13: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना। ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। PNB, मेरा अपना बैंक।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: फेना पावर वॉश अब है और शक्तिशाली।
2: गहरी सफाई।
3: हाँ, पावर वॉश का कमाल।
2: गहरी खुशबू
3: और प्यार भरी भी।
2: कैसे?
3: यह है एक्टिव नीडल्स की शक्ति।
4: इसीलिए फेना ही लेना।
5: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
7: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
9: Get into the huddle with TuneIn. TuneIn brings you nonstop sports talk, live games, and expert analysis all in one place. From kickoff to final whistle, follow your favorite teams all season long with ESPN Radio, Talk Sport, Big 12 Radio, and more. Plus, listen to your favorite sports broadcasts on over 200 devices, so you never miss a moment of sports action with TuneIn. Stay in the game with TuneIn and start listening now.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: फेना पावर वॉश अब है और शक्तिशाली।
3: गहरी सफाई।
4: हाँ, पावर वॉश का कमाल,
3: गहरी खुशबू
4: और प्यार भरी भी।
3: कैसे?
4: यह है एक्टिव नीडल्स की शक्ति,
5: इसीलिए फेना ही लेना।
6: वी आर ओवर जिमी।
7: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
8: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
9: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
4: तो सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना।
9: मतलब
4: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
9: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
4: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।
10: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
11: इन एसोसिएशन विद हिंद, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। विमल बोलो जुबां केसरी।
12: नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्रेडिबिलिटी किसकी है, किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, दुनिया में आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे और आपके यूपी के मुख्यमंत्री ने आपके दिल्ली के ऊपर आरोप लगा दिया। SIT बनाकर क्या तक तैयारी कर दी कि मंदिर में चोरी हुई? भाई सच्चाई किसने खोली? SIT ने खोली कि SIT से चंदा चोरी हो गई, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नीट आप एग्जामिनेशन नहीं करा रहे हो, एग्जामिनेशन कराया उसके बाद भी शिकायतें हैं, तो आप क्या किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हो? नौकरी रोजगार दिए नहीं, अगर नौकरी रोजगार दिए होते इतने बच्चे क्या यहाँ सड़कों पे आते?

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और गिराने वाले हमेशा अपने ही होते हैं, क्योंकि गैरों को क्या पता कि सबसे गहरी चोट कहां लगेगी। नमस्कार।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: प्रदर्शनकारियों से जेपी नड्डा की मुलाकात, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ रखी 3 मांगे। कहा, सरकार हमारी बातों पर करेगी विचार। केरल हाउस के करीब प्रदर्शन हुआ शिफ्ट। दिल्ली में स्थिति सामान्य, बच्ची से मारपीट, 50 लोगों के घायल होने की खबर का पुलिस ने किया खंडन। राहुल गांधी का सरकार पर हमला, पुलिस को भी चेताया। संसद का मॉनसून सत्र और पहले दिन ही मूसलाधार राजनीति, हंगामे के बाद दोनों सदन कल तक के लिए स्थगित। संकट के बीच शाह प्रधान के बीच मैराथन बातचीत। चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, सीजेआई ने दिया आदेश, एसआईटी का हो पुनर्गठन, सीनियर अधिकारी की अगुवाई में हो जांच, अब अगले सप्ताह हियरिंग। और उत्तर से पूर्व तक कुदरत का कहर, असम के जोरहाट, शिवसागर, चराईदेव में भीषण तबाही, पुंछ में लैंडस्लाइड से 7 की मौत, अमरनाथ यात्रा कल और परसों के लिए भी स्थगित।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर, आप देख रहे हैं दस्तक। और आज दस्तक कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन पर। आज हमारे पूरे देश की नजर दिल्ली पर जमी रही। आज संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ तो कॉकरोच जनता पार्टी ने चलो संसद मार्च निकाला। दिन भर खूब हंगामा हुआ। नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी अड़ी हुई है। जंतर मंतर पर करीब एक महीने पहले सीजेपी के आंदोलन की शुरुआत हुई जो आज संसद मार्च को लेकर पुलिस के साथ टकराव में बदली। और फिर सीजेपी की स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जेपी नड्डा के साथ मीटिंग हुई। सीजेपी ने 3 मांगों वाला ज्ञापन सौंपा। तो क्या अब यह आंदोलन शांत होगा? आइए देखते हैं।
1: कॉकरोच जनता पार्टी का संसद चलो मार्च, पुलिस से टकराव। संसद के मानसून सत्र का पहला दिन, सीजेपी का विरोध प्रदर्शन। आंसू गैस के गोले चले, प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका। दिन भर क्या क्या हुआ, सीजेपी आंदोलन की पूरी टाइमलाइन। जेपी नड्डा के साथ कॉकरोच जनता पार्टी की क्या बात हुई? संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ तो पिछले एक महीने से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद चलो मार्च का ऐलान कर दिया। नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आड़ी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारी संसद जाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में दिल्ली पुलिस बैरिकेडिंग करती है और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले भी दागती है। और फिर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात होती है। इस मुलाकात की तस्वीरें सामने आती हैं और जेपी नड्डा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हैं कि आज सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया और सुबह 11:50 से ही हमारी बातचीत जारी है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई, उनके डेलीगेशन के साथ विस्तार से पहले मौखिक चर्चा हुई और उनके द्वारा लगभग 4 बजे मुझे लिखित याचिका दी गई। मैंने सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध किया कि वो अपने धरने को समाप्त करें और सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन की मदद करें। और फिर सीजेपी की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को दिया गया ज्ञापन भी सामने आता है जिसमें 3 प्रमुख मांगे रखी गईं। सोनम वांगचुक को तत्काल रिहा किया जाए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, नीट यूजी 2026 की तैयारी कर रहे जिन अभ्यर्थियों ने आत्महत्या की उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए।
2: मीटिंग में हम लोगों ने यही बोला कि हमारे 3 डिमांड्स हैं। पहले कि सोनम वांगचुक जी को तुरंत रिलीज किया जाए एंड जब तक वो फॉर्मेलिटीज पूरी होती है उसमें उनको एक वीडियो बनाने का अलाउ किया जाए। वो वीडियो में यही हो कि वो अपील करे शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। नंबर 2, हमारा ये भी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन तो अब आना ही पड़ेगा, या तो उनको बर्खास्त करे कैबिनेट से या तो वो खुद रिजाइन करे। प्रोटेस्ट तब तक चालू रहेगा जब तक उनका रेजिग्नेशन नहीं आ जाता। और तीसरा, जो नीट के फैमिलीज है, जो बच्चे मर गए हैं 20 से ज्यादा, उन फैमिलीज को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। ये डिमांड्स को लेके हम जेपी नड्डा जी के पास गए, उन्होंने ही बुलाया था।
0: कॉकरोच जनता पार्टी ने उम्मीद व्यक्त की है कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी और वो अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील करेंगे। उधर आज धर्मेंद्र प्रधान के गृह मंत्री अमित शाह से लंबी चौड़ी मुलाकात हुई। अब सवाल यह है कि सीजेपी के इस प्रदर्शन और विपक्ष के उसको समर्थन से सरकार कैसे निपटेगी। और सवाल यह भी है कि क्या स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ सीजेपी की मुलाकात सुलह का रास्ता खोल रही है। आइए इस पूरे घटनाक्रम की हम टाइमलाइन देखते हैं।
1: दिन निकल चलते ही जंतर मंतर पर एक गहमा गहमी भी शुरू होती है, क्योंकि संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के साथ सीजेपी ने संसद चलो मार्च का ऐलान किया था, लिहाजा दिल्ली पुलिस अलर्ट पर रहती है। सुबह 7:50 जंतर मंतर पर पुलिस अलर्ट, कॉकरोच जनता पार्टी संसद मार्च को लेकर अड़ जाती है, जबकि दिल्ली पुलिस कहती है कि इस तरह की कोई अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे में जंतर मंतर और संसद भवन के बीच 8 लेयर के बैरिकेड लगाए जाते हैं, साथ ही दिल्ली पुलिस से लेकर पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया जाता है।
3: आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीआरपीएफ का यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है, बैरिकेड्स का एक लेयर बनाया गया है, अंदर से लेकर बाहर तक काफी संख्या में बैरिकेड्स यहाँ पर हैं, डिप्लॉयमेंट्स यहाँ पर हैं, दिल्ली पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ सेंट्रल एजेंसीज, लोग सड़कों पर मार्च कर रहे हैं और जंतर मंतर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
1: सुबह 8:30 अभिजीत दिपके ने भरी हुंकार, कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च को लेकर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके कहते हैं कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मार्च होने जा रहा है, संसद जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। सुबह 9:00 पटेल चौक मेट्रो स्टेशन का एग्जिट बंद, दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर जंतर मंतर के पास पटेल चौक मेट्रो स्टेशन का एग्जिट बंद कर दिया, जहां किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती।
4: संसद के मानसून सत्र के पहले दिन कॉकरोच जनता पार्टी और छात्रों के संसद मार्च की तस्वीरें सामने आने लगी है। सुबह सुबह सैकड़ों हजारों की संख्या में ये जो छात्र हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों से सीधे जंतर मंतर की ओर पहुंच रहे हैं। तमाम पाबंदियों के बावजूद भी ये छात्र जो हैं ज्यादातर, हालांकि इसमें कई उम्र के दूसरे लोग भी दिखाई दे रहे हैं, ये आप राजीव चौक और कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल की तस्वीरें देख रहे हैं, अलग अलग मेट्रो स्टेशन से निकल करके और ये तमाम सारे टॉलस्टॉय मार्ग से होते हुए जंतर मंतर की ओर जा रहे हैं। इधर का मार्ग देख लीजिए, यहां से भी छात्र निकल रहे हैं।
1: सुबह 10:18 सीजेपी के मार्च के दौरान लाठीचार्ज, जंतर मंतर पर पुलिस कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करती है। ये प्रदर्शनकारी संसद की तरफ बढ़ रहे थे, पुलिस उन्हें रोकने में लगी थी, जिसके बाद लाठीचार्ज किया गया। दोपहर 12:26 सोनम वांगचुक ने सफदरजंग अस्पताल को चिट्ठी लिखकर कहा कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और सीजेपी के प्रदर्शन मार्च में शामिल होना चाहते हैं। दोपहर 12:44 सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर छोड़ी गई आंसू गैस, सीजेपी के प्रदर्शनकारी रेल भवन पहुंचे तो उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया।
5: टीयर गैस को इस्तेमाल करने जा रही है और यहाँ पे टीयर गैस का इस्तेमाल पुलिस करते हुए नजर आ रही है। यहाँ पे जो आरएएफ है उसको तैनात किया गया है और यहाँ पे पूरी भीड़ जिस तरीके से आप पीछे देखें तो लोगों का हुजूम आपको नजर आएगा, एक तरीके से यहाँ पे टीयर गैस का इस्तेमाल करते हुए रेल भवन यहाँ पे है, पीछे संसद का पूरा मार्ग है और यहाँ पे प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस की तरफ से टीयर गैस का इस्तेमाल हो रहा है।
1: दोपहर 12:45 दो दिन की भूख हड़ताल के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने अपना अनशन खत्म कर दिया। कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक के अनुरोध पर दिपके ने अनशन खत्म किया। दोपहर 1:09 संसद की सुरक्षा बढ़ाई गई, सीजेपी के चलो संसद मार्च को देखते हुए संसद की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी जाती है, अतिरिक्त पुलिस बल यहां तैनात किया गया है।
6: आज तक की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और मैं संसद भवन के पास इस वक्त मौजूद हूं। यहां पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से संसद भवन के पास तक बहुत सारे जो कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि पुलिस की पूरी तरीके से यहां पर बंदोबस्त किया गया है और पुलिस ने बैरिकेडिंग यहां पर लगा रखा है और सारे लोगों को यहां पर रोका हुआ है। इसके उस पार जो सेंट्रल सेक्रेटरिएट मेट्रो स्टेशन है उसके आसपास तक तमाम लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं।
1: दोपहर 1:28 अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं। धर्मेंद्र प्रधान संसद भवन में अमित शाह के कक्ष में मुलाकात के लिए पहुंचे थे। दोपहर 2:11 सोनम वांगचुक की पत्नी भी प्रदर्शन में शामिल हुई। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो भी प्रदर्शन में शामिल होती हैं, लेकिन संसद के पास प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए भारी फोर्स तैनात रहती है जो प्रदर्शनकारियों को दूर रखने की मशक्कत करती है।
7: पहले टीयर गैस की सेल छोड़ी गई और उसके बाद यहाँ पर जो प्रोटेस्टर हैं उनमें भगदड़ मच गई है और जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो भीड़ को तितर बितर करने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। अगर ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं पार्लियामेंट थाने के बाहर का ये नजारा है और इस तरीके से चारों तरफ जो प्रोटेस्टर हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। रह रहकर टीयर गैस की सेल यहाँ पर छोड़ी गई है और हल्का जो बल प्रयोग है वो पुलिस करके कोशिश कर रही है कि किसी तरह से जो भीड़ है उसको तितर बितर किया जा सके।
1: शाम 4:20 जेपी नड्डा से मिले सीजेपी प्रवक्ता, सौंपी मांगों की लिस्ट। दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन के बीच सीजेपी नेताओं ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की और अपनी मांगों वाला ज्ञापन नड्डा को सौंपा। शाम 5:13 दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से की शांति बरतने की अपील। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से शांति रखने की अपील की। पुलिस सभी प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने और शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने को कहती है। पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों से अनुरोध है कि वो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें, किसी भी गैर कानूनी या हिंसक गतिविधि में शामिल न हो। आज तक ब्यूरो।
0: आपने सीजेपी के संसद मार्च की तस्वीरें देखी। आज प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर कई घंटों तक विरोध प्रदर्शन किया, सरकार को अपनी मांगों का प्रस्ताव भी सौंपा। वहीं दूसरी तरफ आज विपक्ष ने सीजेपी के संसद मार्च का भरपूर समर्थन किया। विपक्ष की तरफ से यही कहा गया कि नौजवानों बेरोजगारों का मुद्दा उठा रहे सीजेपी के प्रदर्शनकारियों की बात केंद्र सरकार को सुननी चाहिए।
1: पेपर लीक के मुद्दे पर सीजेपी का संसद मार्च। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में उतरा विपक्ष। संसद मार्च पर विपक्ष बनाम केंद्र सरकार। आंदोलन का जंतर, सियासत का मंतर। सीजेपी ने नीट पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम में सुधार की मांग को लेकर संसद मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी यही चाहते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें ताकि पेपर लीक जैसे मुद्दे पर जिम्मेदारों की जवाबदेही तय हो। इसी कड़ी में मॉनसून सत्र के पहले दिन प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन की तरफ मार्च किया, अपनी आवाज सरकार तक पहुँचाई। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों की बात सुनने के बजाय केंद्र सरकार आवाज उठाने वालों को डरा रही है।
8: स्टूडेंट्स पे जो लाठी चार्ज की, नौजवान बच्चों पे जो किए, ये डेमोक्रेसी पे हल्ला है और जो लोग अपने बात रखने के लिए दिल्ली आते हैं उनके ऊपर ऐसी लाठी चार्ज अगर होती है और उनको अगर ऐसा डराया जाता है तो ये डेमोक्रेसी नहीं है और सरकार इसके बारे में सोचने के लिए हम 10 बोले लेकिन वो सरकार सोच रही नहीं, उल्टा बच्चों को, नौजवानों को तंग कर रहे।
1: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने मांग उठाई कि पेपर लीक के मुद्दे पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, देश के नौजवानों को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन सरकार कुछ सुनने और समझने को तैयार नहीं है।
9: हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टियर गैस कर रहे हो और उनके उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हमारे।
1: आरजेडी सांसद मनोज झा का आरोप है कि सरकार पेपर लीक के मुद्दे पर अपनी नाकामी छिपाना चाहती है, जबकि सरकार को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। विपक्ष के आरोप का जवाब जेडीयू सांसद संजय झा ने दिया। झा का दावा है कि पेपर लीक के सभी आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचा दिए गए और खामियों को दूर करके नीट की दोबारा परीक्षा कराई गई।
10: जब सत्ता बहरी हो जाती है, सुनने से इनकार करती है, संवाद को विवाद में तब्दील करती है, तब ऐसा हुआ करता है। बच्चे में क्या चांद सितारे मांग रहे थे, क्या संवाद मांग रहे थे? अहंकार में डूबे हुए हो, पूरे देश की पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ रहे हो और कहते हो चाणक्य नीति। चाणक्य देख लो, इस चाणक्य नीति का जवाब जनता दे रही है, किसी का आंदोलन नहीं है, ये स्पॉन्टेनियस है। आपको पार्लियामेंट के दरवाजे बंद करने पड़े, ये डर लोगों ने आपके अंदर पैदा किया।
11: के एग्जाम में सही में जो जो जो बच्चे हैं, जरूर उनको परेशानी हुई, लेकिन सरकार ने कभी इसको कवर अप करने का कोशिश नहीं किया। अगर नीट का एग्जाम में कमी आई, सरकार ने तुरंत पूरा एग्जाम को कैंसिल कर दिया। एग्जाम को कैंसिल ही नहीं कर दिया, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो प्रोफेसर वगैरह थे, सब पे को पकड़ा गया, पूरा क्रैक किया गया इसमें, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, और उसके बाद सारे एजेंसी को लगा करके फुल प्रूफ एग्जाम भी कराया गया और सरकार ने भी कहा है कि अगले बार से फुल प्रूफ कैसे हो उसका जरूर कोशिश कर।
1: समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए घेरा, कहा प्रदर्शनकारियों की आवाज दबाना सरकार को बहुत महंगा पड़ सकता है।
12: ये जो व्यवहार पुलिस का है, ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। मंदिर को लूटना, विश्वविद्यालयों को बंद करना और छात्रों की ये प्रताड़ना, ये तो अंग्रेजों ने भी नहीं की हो। अंग्रेजों ने तो सुना है, अगर कोई धरना और प्रदर्शन पे बैठा है तो उसकी बात सुनी है। इसीलिए गांधी आज दुनिया में पूजे जाते हैं, गांधी की तस्वीर प्रतिमा दुनिया में है, इसीलिए कि उन्होंने रास्ता दिखाया कि ये आंदोलन का रास्ता है। अगर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग को लेकर क्योंकि बैठे, उनके साथ ऐसा व्यवहार आप करेंगे?
13: बात करनी चाहिए सर सरकार को इन प्रदर्शन,
12: सरकार को बात ही नहीं करनी चाहिए। और एक मंत्री को कितने दिन वहां रखोगे आप? क्यों एक जगह में बैठा के रखते हो? जब एक मंत्री एक जगह बैठता है तो अपने आदमियों को सेट कर लेता है और अपने आदमियों को सेट करने के बाद करप्शन बड़े पैमाने पे होता है। आप बदलते रहिए, लोहिया जी यही कहते थे ना, सरकार बदलनी चाहिए उसी तरह जैसे रोटी बदलती है, तो सरकार में बैठे हुए मंत्री तो बदले।
1: आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ सीजेपी के संसद मार्च का समर्थन किया बल्कि प्रदर्शन में शामिल हुए। सांसद संजय सिंह ने प्रदर्शनकारियों को रोकने का आरोप सरकार पर लगाया, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए दावा किया है कि प्रदर्शनकारियों के कंधे पर बंदूक रखकर आम आदमी पार्टी निशाना साध रही है।
14: हमने अपनी जिम्मेदारी समझी, आंदोलनकारियों का साथ दिया, उनके मुद्दों का साथ दिया, लेकिन जो व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है वो बहुत ही निंदनीय है और मोदी की तानाशाही का उदाहरण है, मैं इतना कहना चाहता हूँ।
15: अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रही है। ये जो नई पार्टी आई है ये भी और कुछ नहीं, छात्रों के नाम पर उसी तरीके से राजनीति चमका रही है जिस तरीके से 2010-11 में केजरीवाल ने चमकाया था, जब केजरीवाल भी जन लोकपाल के नाम पे अनशन और उपोषण करते थे। आज जन लोकपाल कहां गया? जन लोकपाल तो नहीं बना, केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए।
1: बीजेपी सांसद हेमा मालिनी की माने तो प्रदर्शन की आड़ में संसद को ठप करना गलत है, सरकार किसी भी मुद्दे पर संवाद के लिए तैयार है।
9: प्रॉब्लम है तो अच्छी तरह से डिस्कस करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ऐसे प्रोटेस्ट करने से तो कुछ काम नहीं होगा। और आप अगर देश के जितने युवा है, एजुकेशन सिस्टम है, इसके लिए हमारी मोदी सरकार हमेशा साथ रहा है, बहुत काम किया है उसके लिए। अभी ये जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका कोई मतलब ही नहीं है।
1: अच्छी बात यह है कि सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच संवाद की शुरुआत हो चुकी है। पहले राउंड की मीटिंग में सीजेपी ने अपनी मांग रख दी है, अब गेंद सरकार के पाले में है। अब देखना यही है कि सुलह का रास्ता निकलेगा या नहीं। आज तक ब्यूरो।
0: संसद मार्च को लेकर जमकर राजनीति हुई, लेकिन संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक बड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के मिशन और विजन की बात की, तो इसी दौरान राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया।
16: सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई
17: सर। वी आर वेरी वेरी प्रिविलेज टू हियर यू।
16: स्काई रूट ने दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। कब से मेरा ध्यान जो गया, आपकी पूरी टीम 25-30 साल की दिखती है, ये मुझे और खुशी दे रही है।
18: स्काई रूट की टीम को बधाई में कही बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सत्र की शुरुआत में दिए भाषण में दोहराई, सिवाय एक बात के।
16: भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है, बहुत बड़ी सफलता है। और ये जो स्काई रूट स्टार्टअप है, उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है।
18: अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी कंपनी की ऐतिहासिक सफलता पर टीम को बधाई देते प्रधानमंत्री ने जो कुछ आगे कहा, उस पर संसद सत्र में सियासी हंगामा होना तय।
16: ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया, मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूँ।
18: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही ये कहा, पीछे खड़े मंत्री किरेन रिजिजू हंसने लगे। वो समझ गए प्रधानमंत्री मोदी का तंज बिना नाम लिए राहुल गांधी पर है जो हाल ही में 56 साल के हुए। प्रधानमंत्री मोदी का वार कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को नौजवान नेता बताने पर है, जबकि 60 साल का होते आम आदमी रिटायर हो जाता है, वरिष्ठ नागरिक का ठप्पा लग जाता है।
16: मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूँ।
18: राहुल गांधी का स्कूबा डाइविंग करना, कड़ाके की सर्दी में टी शर्ट में दिखना, कांग्रेस से सबके जरिए राहुल को 56 साल का होने पर भी नौजवानों के नेता के तौर पर पेश करती। तो जब प्रधानमंत्री ने बिना राहुल का नाम लिए 56 साल के युवा वाला निशाना साधा, तो कांग्रेस 56 इंच वाला बयान याद दिलाकर वार करने लगी।
19: राहुल गांधी पे भी उन्होंने एक वेल्ड अटैक किया, 56 की बात करी, उन्होंने कहा कि मुझे एक युवा की चिंता नहीं है लेकिन मुझे युवाओं की चिंता है।
20: ना आप अपना छाती का चिंता रखिए, आपका 56 इंच का छाती है ना, आप उसका ख्याल रखिए, हवा उतर रही है
0: कि 56। दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे अमेरिका का अगला टारगेट खार्क द्वीप और ईरान की चेतावनी। आप देखते रहिए दस्तक।
21: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसे, इन एसोसिएशन विद
22: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
23: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
24: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
25: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
26: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
27: From New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
26: Smartless.
16: Hey guys, we got a mouthful of English muffin with a glass full of
26: Marketplace.
28: Big three on the program today, or, you know, the big three of the
26: and more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
29: We are over, Jimmy.
30: Hey, life mein scratches to aayenge.
2: गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
5: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना।
4: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना? अर्ज किया है, पहले गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं।
6: वाँ वाँ वाँ वाँ।
4: सेबी और एनएसई का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड एप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
7: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
8: एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
10: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
6: AU सोच बदलो और बैंक भी।
7: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
8: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
7: छक्का
8: सब कैशलेस हो गया है।
7: हाँ ला भाई मेरा बैट।
9: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
10: चार्ज हुआ यार।
11: बैट किसका है?
12: टाटा AIG है तो भरोसा है।
13: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
3: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
4: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
5: इस मांग को आगे बढ़ाया, उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
3: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
6: इन एसोसिएशन विद
7: सेरा सैनिटरीवेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा। E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: यूट्यूब पे अब देखिए आज तक वर्टिकल। अरे भाई फिर घुमा रहे हैं, छोड़ दीजिए घुमाने की आदत, आज तक वर्टिकल।
9: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज तक पर।

अभी कुछ दिन पहले ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, और विश्व में बहुत कम देश ऐसे हैं कि जिनके पास ये सुविधा है, लेकिन भारत ने जो हाइड्रोजन ट्रेन देशवासियों को समर्पित की है वो सबसे ताकतवर इंजन वाली है और सबसे लंबी है। ये अपने आप में भारत के वैज्ञानिक, भारत के इंजीनियर्स, भारत के इनोवेटर्स, भारत के उद्यमी, भारत के श्रमिक, ये जो एक लक्ष्य लेकर के देश के लिए जी रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, उसी का परिणाम है। साथ ही हम भले भांति जानते हैं और पूरी दुनिया चिंतित भी है, लगातार कहीं न कहीं युद्ध की स्थितियां बनती रही है। पश्चिम एशिया के युद्ध के कारण भारत जैसे देश जो एनर्जी के लिए यूरोप पर डिपेंडेंट है, उनके लिए ये पश्चिम एशिया का युद्ध एक बहुत ही बड़ा संकट का कारण रहा। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, यानी हर विषय में अनेक बाधाएं, अनेक संकट आए। उसके बावजूद भी भारत 7.7% के ग्रोथ से दुनिया की मेजर इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन के रहा। यह भारत के सामर्थ्य का परिचायक है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत एक बार फिर से आपका। और अब खबर ईरान के उस खार्ग द्वीप की, जिस पर कब्जा करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपनी सेना भेज सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के खार्ग द्वीप पर ग्राउंड ऑपरेशन की अनुमति किसी भी समय ट्रंप दे सकते हैं, और अगर ग्राउंड ऑपरेशन को स्वीकृति मिली तो अमेरिकी सैनिक और स्पेशल कमांडोज खार्ग द्वीप पर कब्जा करने के लिए ईरानी सेना से जमीनी युद्ध लड़ेंगे। ट्रंप के ऑपरेशन खार्ग को लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने सीधी धमकी दी है। धमकी ये कि अमेरिकी सेना ने ईरान की धरती पर कदम रखा तो अंजाम विनाशकारी होगा। आखिर मुश्तबा खामनेई की धमकी का मतलब क्या है, आइए इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं।

0: ईरान पर 9 दिनों से जारी अमेरिकी बमबारी। अब ट्रंप के टारगेट पर है ईरान का खजाना। खार्क पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में ट्रंप। ट्रंप को मुश्तबा खामिनई की सीधी धमकी। ईरान में सेना भेजी तो विनाशकारी होंगे नतीजे। ईरान और अमेरिका में आर पार की जंग।
1: What we're doing now is we're ending any chance where they could have a nuclear missile. If you look at it, after a week and a half, not 4 weeks, a week and a half, 2 weeks, we stopped them from probably, but I don't want to have the word probably.
0: ईरान के ताजा हमलों में एक दो नहीं बल्कि 3 सैनिकों की मौत हो चुकी है। ये मौतें जॉर्डन और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हुए हमलों के दौरान हुई हैं। ईरान सेना की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि जॉर्डन के लोगों से मिली खुफिया जानकारी के बाद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया था। दावे के मुताबिक ईरानी हमले में सिर्फ जॉर्डन के अल अजरात में अमेरिकी सेना के एक दो नहीं बल्कि 20 हैंगर तबाह हो गए। वहीं अकाबा हवाई अड्डे पर अमेरिकी C-17 परिवहन विमान और P-8 निगरानी विमान पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ जिससे भारी नुकसान हुआ। ईरान के खातम अल अंबिया केंद्रीय मुख्यालय के कमांडर अब्दुल्लाही ने अमेरिका को सीधी धमकी देते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ किसी भी नई सैन्य कार्रवाई का निर्णायक और विनाशकारी जवाब दिया जाएगा। मतलब अमेरिका की ईंट का जवाब ईरान पत्थर से देगा। हम धोखेबाज, अपराधी और शपथ तोड़ने वाले अमेरिकी दुश्मन को याद दिलाते हैं कि किसी भी आक्रामक का जबरदस्ती, विस्तारवाद या क्रूरता का सशस्त्र बलों द्वारा निर्णायक और विनाशकारी जवाब दिया जाएगा। ईरान सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई जारी है, यहां तक कि कुवैत के पावर और वाटर प्लांट को निशाना बनाया गया। अगर अमेरिकी सेना के हमले जारी रहे तो मिडल ईस्ट के बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामिनई ने अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ी जंग का ऐलान कर दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच हुआ 14 सूत्रीय समझौता अमेरिका ने खुद ही तोड़ा। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अमेरिका अपने वादों पर कायम नहीं रहता। अमेरिका की नीति दबाव, ताकत के इस्तेमाल और दूसरे देशों पर अपनी शर्तें थोपने की रही है। ईरान के साथ हुए समझौते का अमेरिका द्वारा बार बार उल्लंघन करने से एक बार फिर साबित हो गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर बेकार हैं। अगर अमेरिका ने ईरान पर सैन्य हमले जारी रखे तो उसे ऐसा जवाब मिलेगा जिसे वो लंबे समय तक नहीं भूल पाएगा। ईरान और उसके सहयोगी समूह किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान अपना बारूदी कहर बरपा रहा है। बहरीन, कुवैत, यूएई, जॉर्डन, इराक से लेकर सीरिया तक अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के हमले थामने का नाम नहीं ले रहे। दूसरी तरफ हुर्मुज को ईरान ने पूरी तरह बंद कर दिया है। तैयारी अब हुर्मुज के बाद बाब अल मंदेब को बंद करने की है। ईरान का प्लान यही है कि अगर अमेरिका की सेना की तरफ से हमले जारी रहे तो रेड सी को भी बंद करवा देगा। ईरान ने यमन के हुती को बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद करने के लिए तैयार रहने को कहा है। मतलब इस रूट से गुजरने वाले जहाजों को अब हुती निशाना बनाएंगे। हुती की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि संगठन ने रेड सी में जहाजों को निशाना बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए बाब अल मंदेब के पास यमन के हुदैदा और अदन की खाड़ी के ऊपर स्थित पहाड़ी इलाकों में मिसाइलें और ड्रोन तैनात कर दिए गए हैं। इसी कड़ी में हुती ने आज सऊदी अरब के खिलाफ बाब अल मंदेब स्ट्रेट में नौसैनिक नाकेबंदी का ऐलान किया है। ईरान की तरफ से अमेरिका को ये सीधा जवाब है। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना भी हुर्मुज से ईरान को बेदखल नहीं कर सकती, जबकि ईरान चाहे तो रेड सी का रास्ता भी रोक सकता है। युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक देश पूर्ण प्रतिरोध हासिल नहीं कर लेता। अमेरिका का समर्थन करने वाले देशों को हुर्मुज में परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जिन देशों ने अमेरिका के साथ सहयोग किया है और साथ ही व्यापार और तेल निर्यात के लिए हुर्मुज का उपयोग जारी रखा है, उन्हें हुर्मुज पर ईरान के साथ रिश्तों पर पड़ने वाले प्रभाव की उम्मीद रखनी चाहिए। जो भी देश अमरीकियों का साथ देगा उसे हुर्मुज में निश्चित रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कोई भी इस मार्ग का उपयोग करके उपकरण और गोला बारूद नहीं ला सकता और फिर उनका इस्तेमाल हमारे खिलाफ नहीं कर सकता। बड़ी बात यह है कि खार्क द्वीप को लेकर अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट का जवाब ईरान ने दिया है। ईरान ने ऐलान किया है कि खाद द्वीप पर अमेरिकी सेना से निपटने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ने खाद द्वीप पर कब्जा करने के लिए अपनी सेना भेजने की गलती की तो अंजाम पूरी दुनिया देखेगी। खाद द्वीप पर कब्जा करने का प्रयास करने वाली किसी भी अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का स्वागत करने के लिए हमारे लोग तैयार हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसके परिणाम अमेरिका को भुगतने होंगे। मुझे लगता है कि खाद में बहुत से लोग हैं और उनमें से काफी लोग अमेरिकी सैनिकों का स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। भले ही अमेरिका की तरफ से लगातार ईरान के अलग अलग इलाकों में बमबारी जारी हो, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान का दावा है न तो उसके पास मिसाइल की कमी है और न ही ड्रोन की, क्योंकि युद्ध काल में ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन का उत्पादन दोगुना कर दिया था। अगर अमेरिका एक साल तक युद्ध लड़ता है तो ईरान के पास इतने विध्वंसक हथियार हैं जो पूरे मिडल ईस्ट को तबाह करने के लिए काफी हैं। मतलब यही है कि ईरान जंग के मैदान से

0: घटना का विस्फोटक खुलासा। कारगिल युद्ध पर बोले मौलाना, मुनीर की बोलती बंद। कारगिल में मारे गए पाक सैनिकों की हकीकत मौलाना ने बताई। आसिम मुनीर को मौलाना फजल रहमान ने औकात दिखा दी।
1: पाकिस्तान के आईन, पाकिस्तान के कानून और पाकिस्तान के पुरामन निजाम के साथ खड़े हैं।
0: पाकिस्तान में मौलाना फजल रहमान नाम का भूचाल आया हुआ है।
1: अब अवाम को जंग में झोंकना चाहते हैं।
0: हर रोज मौलाना कोई ना कोई विस्फोटक खुलासा कर रहे हैं।
1: आप तो सूबाई हुकूमत के ताकत को इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं हैं।
0: और आसिम मुनीर से लेकर पाकिस्तानी फौज की बखिया उधेड़ रहे हैं। आज हम जमीयत उलेमाए इस्लाम फजल यानी JUIF के प्रमुख मौलाना फजल रहमान का वो टेप सुनाने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी फौज पर सबसे तगड़ा प्रहार किया है। जी हाँ, मौलाना ने सार्वजनिक मंच से 1999 के कारगिल युद्ध को लेकर वो सच उगल दिया है जिसे पाकिस्तानी सेना दशकों से छिपाती आई है। मौलाना फजल रहमान ने सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कारगिल युद्ध में पाकिस्तान ने अपने ही मारे गए सैनिकों को पहचानने और उनके शव लेने से साफ इनकार कर दिया था और उन्हें भारत के रहमो करम पर छोड़ दिया था।
1: मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम्हारे नजर में अपने शहीद की क्या कदर कीमत है। क्या बता सकते हो, आज तक कौम को तुमने बताया कि कारगिल में आपके कितने जवान शहीद हुए और आपने वहां से कितने शुहदा के जनाजे वसूल किए? जरा बताओ तो सही। तुमने अपने शुहदाओं को हिंदुओं के सपुर्द किया और वहां से एक बयान आया कि हमने इस्लामी तरीके से उनको दफन कर दिया। उनकी तादाद मुख्तलिफ बताई जा रही है लेकिन है सैकड़ों में। तुम अपने शुहदा के जनाजे वसूल करने के लिए तैयार नहीं हो। तुमने अपने जनाजे हिंदुओं के हवाले किए। अपने शुहदा की तौहीन, उनकी तजलील, उनकी तहकीर जो तुम लोगों ने की है, आप अब अपने जरायम को छुपाने के लिए शुहदा के ओट में छुपने की कोशिश करते हो।
2: क्या बात,
1: हमने कोई गलत बात नहीं कही।
0: पाकिस्तान में मौलाना डीजल के नाम से मशहूर मौलाना फजलुर रहमान का ये विस्फोटक खुलासा भारत के उस स्टैंड की पुष्टि करता है जिसे भारत पिछले 27 सालों से दुनिया के सामने रखता आया है कि कारगिल में मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों का अंतिम संस्कार भारतीय सेना ने पूरे इस्लामिक रीति रिवाजों के साथ किया था क्योंकि पाकिस्तान उन्हें अपना मानने से इनकार कर रहा था। आपको बता दें कि JUIF के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान लगातार पाकिस्तानी सेना पर तीखे हमले कर रहे हैं जिसके बाद उनके खिलाफ देशद्रोह के आरोप में मुकदमा भी दर्ज किया गया है लेकिन फिर भी वो आसिम मुनीर पर तीखे हमले कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि मुनीर अपनी संस्थागत नाकामियों को छिपाने और अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए शहीद सैनिकों के बलिदान का फायदा उठा रहे हैं और पाकिस्तान के ये मौलाना आर्मी चीफ आसिम मुनीर को सीधी चुनौती भी दे चुके हैं। फजलुर रहमान ने कहा है कि अगर सेना को राजनीति करनी है तो वर्दी उतार कर अपनी पार्टी बनाए और चुनाव लड़े।
1: आपने अगर सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि वर्दी वाले को लोग क्या वोट देते हैं। ये आपका इख्तियार है कि आप जिसको चाहेंगे हुकूमत देंगे और जिससे चाहेंगे हुकूमतें छीन लेंगे।
0: आपको बता दें कि पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक पाकिस्तान में इस वक्त गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और इस विद्रोह को कुचलने के लिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। फिर मुनीर से गृह युद्ध संभल नहीं रहा है, हाल ही में बलूचिस्तान के मस्तूम जिले में बीएलए के हमले

0: में एक तो नहीं बल्कि 45 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया और साथ ही साथ आजाद बलूचिस्तान का भी ऐलान कर दिया गया। और इस दावे पर पाकिस्तान के सीनियर पत्रकार नजम सेठी और पाकिस्तान की JUIF पार्टी के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने मोहर लगाई है।
1: बलोच इलाकों में बगावतें थी, पूरा बलोच इलाका पाकिस्तान के इख्तियार से निकल चुका था। आज भी वहां पर पाकिस्तान हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं है, लेकिन हम तो बलोच इलाके को रो रहे थे, अब तो पश्तून इलाका भी खून में नहा रहा है। पश्तून इलाके में हमने 2-3 दिन के अंदर 50 से ज्यादा लाशें वसूल की।
0: मौलाना फजलुर रहमान ने यही बताया कि बलूचिस्तान से पाकिस्तानी सेना के पैर उखड़ चुके हैं, तो नजम सेठी मानते हैं कि बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब पाकिस्तान के हाथों से बलूचिस्तान निकल चुका है।
2: बलूचिस्तान अब हमारा एक वीक स्पॉट बन चुका है, तो ये जो बीच था ये मरी ट्राइबल्स के अंदर था पहले से, फिर ये आपको पता है कि यही जो बीच था, यही जो प्रॉब्लम था, ये 60 की दिहाई में अयूब खान के ज़माने में जो रिवोल्ट हुआ वो भी मरी इलाकों में हुआ, उसके बाद 70 की दिहाई में जब भुट्टो साहब थे तो रिवोल्ट हुआ वो भी मरी ट्राइब्समैन की वहाँ हुआ, तो ये सारी बातें रियासत को पता है।
0: बलूचिस्तान में मुनीर की सेना को मुंह की खानी पड़ी। पीओके में आजादी की मांग को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना हैवानियत की सभी हदों को पार कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में भी हालात इतने बेकाबू हैं कि मुनीर की सेना ने हाथ खड़े कर दिए हैं और नौबत एयर स्ट्राइक तक पहुंच गई है, और इसीलिए मौलाना फजलुर रहमान अब एक के बाद एक आसिफ मुनीर की बखिया उधेड़ रहे हैं। आज तक ब्यूरो
3: दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: दिस इज द साउंड ऑफ लूसी staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
7: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
8: Hey there, it's Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville. Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had. And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues, and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcasts, in the TuneIn app or at TuneIn.com.
9: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
10: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?
11: AU करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
12: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: ये सरकार नहीं अहंकार है। और जो श्रद्धांजलि में भेदभाव करते हो, जब लाखों लाख और करोड़ों लोग और करोड़ों परिवार इस आंदोलन से जुड़े हों, जिन बच्चों की जान गई उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार को। और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र नौजवान युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती है। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहां तक आना चाहे अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं।
2: लेकिन सरकार कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर अगर चर्चा चले तो सबके लिए अच्छा है। चर्चा से इनका क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि सरकार के पास तो बहुत बहुत बहुत बहुत मेजोरिटी है। तो सुनने दो, देश की आवाज सुनाइए पार्लियामेंट में, यही है पार्लियामेंट का काम। तो आप मना कर रहे हैं कि सिर्फ आपके विषय उठाएंगे, तो विपक्ष नेचुरली असंतुष्ट है।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
4: We are over, Jimmy.
5: Hey! लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
6: पहाड़ों पर जमकर कर बरस रहे हैं मानसूनी बादल। उत्तराखंड में लगातार बारिश से बिगड़ रहे हालात। लैंडस्लाइड के चलते उत्तराखंड की कई सड़कों पर मलबा। मैदानों में जहां बारिश का सूखा पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों पर मानसून का प्रचंड रूप देखा जा रहा है। उत्तराखंड के 6 जिलों में कल जमकर बादल बरसे। ये तस्वीर देहरादून के संतला देवी मंदिर के पास की है, जहां बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ जाने के बाद 7 लोगों की जान पर बनाई। नदी के बीच बने टापू पर लोगों को बचाने के लिए SCDRF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और उन्हें बचा लिया। देहरादून का IT पार्क भी बारिश के प्रचंड रूप से अछूता नहीं रहा। भारी बारिश के बाद पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। लोगों को गाड़ियां चलाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड के दूसरे इलाकों में भी भारी बारिश का दौर जारी है। टिहरी में हो बारिश के चलते इलाकों में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं बारिश के साथ साथ पहाड़ों से हो रही लैंडस्लाइड के चलते उत्तराखंड के लोगों में दहशत का माहौल है। मालदेवता इलाके के सिल्ला मोटर मार्ग पर लैंडस्लाइड होने से आवाजाही प्रभावित हुई है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
7: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: आज तक भर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ ही क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

सीजेपी प्रदर्शनकारियों ने जेपी नड्डा से की मुलाकात। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ रखी 3 मांगे। कहा सरकार हमारी बातों पर करेगी विचार। केरल हाउस के करीब प्रदर्शन शिफ्ट। दिल्ली में हालात सामान्य। बच्ची से मारपीट और 50 लोगों के घायल होने की खबर का पुलिस ने किया खंडन। राहुल गांधी का सरकार पर हमला। पुलिस को भी चेताया। संसद का मानसून सत्र का पहला दिन ही मूसलाधार सियासत। हंगामे के बाद दोनों ही सदन कल तक के लिए स्थगित। संकट के बीच शाह धर्मेंद्र प्रधान के बीच मैराथन बातचीत। चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। सीजेआई ने दिया आदेश। एसआईटी का हो पुनर्गठन। सीनियर अधिकारी की अगुवाई में हो जांच। अब अगले हफ्ते हियरिंग। और उत्तर से पूर्व तक कुदरत का कहर। असम के जोरहाट शिवसागर चराईदेव में भीषण तबाही। पुंछ में लैंडस्लाइड से 7 की मौत। अमरनाथ यात्रा कल और परसों के लिए भी स्थगित।

0: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। त्रिपुरा के सबसे बड़े पुलिस अफसर यानी राज्य के डीजीपी सोमवार सुबह पुलिस हेडक्वार्टर अपने दफ्तर जाते हैं। पुलिस हेडक्वार्टर वो जगह होती है जहां राज्य के सबसे सीनियर पुलिस अफसर बैठते हैं। दफ्तर जाने के बाद वो अगले 1.5 घंटे तक न किसी से मिलते हैं, न किसी का फोन उठाते हैं। दफ्तर का दरवाजा भी अंदर से बंद था। 1.5 घंटे बाद मजबूरन पुलिस वाले दरवाजा तोड़कर जब अंदर दाखिल होते हैं तो दफ्तर के अंदर ही मौजूद बाथरूम में डीजीपी साहब की लाश फंदे से झूलती मिलती है। ये तस्वीर 18 जुलाई की है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में त्रिपुरा पुलिस के 92 बैच की पासिंग आउट परेड थी। इसमें राज्य के मुख्यमंत्री और त्रिपुरा पुलिस के सबसे बड़े अफसर यानी राज्य के डीजीपी अनुराग धनखड़ भी मौजूद थे। इस मौके पर डीजीपी अनुराग धनखड़ ने नए नए पुलिस वालों को संबोधित भी किया था। तस्वीर देखकर कहीं से भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि बतौर डीजीपी अनुराग धनखड़ की आखिरी पासिंग आउट परेड साबित होगी। इस पासिंग आउट परेड के सिर्फ 48 घंटे बाद वो हुआ जो इससे पहले देश में कभी नहीं हुआ था। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में मौजूद ये त्रिपुरा पुलिस का हेडक्वार्टर है। 2 मंजिला इस हेडक्वार्टर की पहली मंजिल पर राज्य के डीजीपी का दफ्तर है। रोजाना की तरह सुबह करीब 10:30 बजे अनुराग धनखड़ अपनी सरकारी गाड़ी में दफ्तर पहुंचते हैं। अमूमन दफ्तर आने के बाद डीजीपी पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद सीनियर पुलिस अफसरों के साथ सुबह की मीटिंग करते हैं, लेकिन सोमवार को अपने दफ्तर में दाखिल होने से पहले उन्होंने वहां मौजूद गार्ड और अपने पीएसओ यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर को हिदायत दी कि उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो कुछ जरूरी काम में बिजी है। इसके बाद वो अपने दफ्तर में दाखिल हो गए। दफ्तर में दाखिल हुए डीजीपी अनुराग धनखड़ को अब करीब 1.5 घंटे हो चुके थे। गार्ड और पीएसओ को वो पहले ही आगाह कर चुके थे कि कोई उन्हें डिस्टर्ब न करे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस दौरान उन्हें लैंडलाइन नंबर पर भी जो फोन आ रहे थे वो डीजीपी पिक नहीं कर रहे थे। अमूमन ऐसा होता नहीं है। 1.5 घंटे तक उन्होंने किसी को बुलाया भी नहीं। कई सीनियर अफसर भी उन्हें कॉल कर रहे थे पर वो किसी का मोबाइल पर भी कॉल नहीं उठा रहे थे। तब पहली बार सिक्योरिटी गार्ड और पीएसओ को कुछ अजीब लगा। उन्होंने डीजीपी साहब के कमरे में जाने का फैसला किया, लेकिन तब वो और हैरान रह गए जब धक्का देने पर भी दरवाजा नहीं खुला। दरअसल दरवाजा अंदर से बंद था और ऐसा पहली बार हुआ था। पिछले 10 महीने से जब से अनुराग धनखड़ डीजीपी बने थे कभी अंदर से उनका दरवाजा बंद नहीं हुआ था। जब आवाज देने पर भी दरवाजा नहीं खुला तो पुलिस हेडक्वार्टर में हड़कंप मच गया। फौरन आला पुलिस अफसरों को इतला दी गई। इसके बाद वो भी डीजीपी के कमरे के बाहर इकट्ठा हो गए। मगर जब तमाम कोशिशों के बावजूद अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिला, ना ही दरवाजा खुला, तब ये तय किया गया कि डीजीपी साहब के कमरे का दरवाजा तोड़ दिया जाए। इसके बाद दरवाजा तोड़ दिया गया, पर कमरे में दाखिल होने वाले लोग हैरान थे। डीजीपी साहब अपनी कुर्सी पर नहीं थे। पूरा दफ्तर खंगालने के बाद जब एक पुलिस अफसर उनके ऑफिस के अंदर ही वॉशरूम में झांकता है तो सन्न रह जाता। अंदर वॉशरूम में डीजीपी अनुराग धनखड़ की लाश फंदे से झूल रही थी। यह देश का पहला ऐसा मामला है जब एक राज्य के डीजीपी यानी सबसे बड़े पुलिस अफसर की लाश पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर उन्हीं के दफ्तर में यूं फंदे से झूलती मिली। अमूमन ऐसे आम केस में आम लोग लाश को फंदे से उतारने से पहले पुलिस को फोन करते हैं, लेकिन यहाँ अजीब सीन था। खुद पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर डीजीपी साहब की लाश फंदे से झूल रही थी और राज्य के ज्यादातर सीनियर पुलिस अफसर उस वक्त उसी पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद थे, लिहाजा पुलिस वालों की मौजूदगी में ही आनन फानन में डीजीपी साहब की लाश फंदे से नीचे उतारी गई और फिर फौरन पुलिस वाले एम्बुलेंस के साथ नजदीक के सरकारी अस्पताल गोविंद बल्लभ हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अस्पताल में जैसे ही डॉक्टरों को पता चलता है कि इस वक्त सीरियस हालत में किसी और को नहीं बल्कि त्रिपुरा के डीजीपी को लाया गया है, पूरा अस्पताल हरकत में आ जाता है। ये तस्वीर ठीक उसी वक्त की है जब डीजीपी साहब को यहाँ लाया गया था। अस्पताल में लाते ही डॉक्टर उन्हें सीपीआर देना शुरू कर देते हैं। सीपीआर यानी सीने पर हाथों से दबाव डालकर सांस को वापस लाने की कोशिश। इस वक्त जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अस्पताल के डॉक्टर डीजीपी साहब को वही सीपीआर देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी डीजीपी साहब की सांसें नहीं लौटी। इसके बाद 12:48 पर डॉक्टरों ने डीजीपी को मुर्दा करार दे दिया।
1: যখন প্রায় 12টা নাগাদ আনা হয় তখন ওনার আমাদের যে ডক্টর উনি অ্যাটেন্ড করেন ওনার পালস ব্লাড প্রেশার বা টেম্পারেচার বা অন্য কোনো যে জীবনের যে সাইনগুলি সেটা আমরা পাইনি। সঙ্গে সঙ্গে ওনাকে কার্ডিও পালমোনারি রিসেকশন শুরু করা হয় একদম ইমার্জেন্সিতে। আমাদের সব এক্সপার্টরা মিলে প্রায় 48 মিনিটের মতো তাকে সিপিআর দেওয়া হয়। সব ধরনের প্রচেষ্টা আমরা যখন আর পারিনি যে ওনাকে রিভাইভ করতে তখন 12:48 আমরা ডেথ ডিক্লেয়ার করি।
2: এবং যেহেতু
1: ওনাকে যখন আনা হয়েছে তো ওনাকে আমরা কিছুই পাইনি, আমাদের রোগ নির্ণয় আমাদের সম্ভব নয় অবস্থা, যেহেতু অনেকটা ব্রড ডেথ সেখানে আমরা পোস্টমর্টমের জন্য আমরা সেটা পোস্টমর্টম বলতে পারি। আমরা তো সেটা আমরা সেটা এতটা দেখার আমাদের সুযোগও নেই সময় নেই, কারণ এখানে এত খারাপ ছিল আমরা এখন তো পোস্টমর্টম করবো, ওরা পুরো ব্যাপারটা ওনারা দেখতে পারবে।
3: কয়টা নাগাদ মানে ডিক্লেয়ার করেছিলেন?
1: 12:48।
0: इससे पहले दोपहर को जब डीजीपी साहब की मौत की खबर पुलिस हेडक्वार्टर से बाहर आई तब कुछ देर तक यह अफवाह थी कि उन्होंने खुद को गोली मार दी है, लेकिन डीजीपी साहब के शरीर पर गोली या जख्म के कोई निशान नहीं मिले। बाकी मौत की असली वजह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बता देगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सचमुच डीजीपी अनुराग धनखड़ ने खुदकुशी की है तो उसकी वजह क्या है? राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अफसर पुलिस हेडक्वार्टर जाकर अपने ही दफ्तर के अंदर खुदकुशी क्यों करेगा? हालांकि शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक कोई सुसाइड नोट सामने नहीं आया। अगर ऐसा कोई सुसाइड नोट है तो हो सकता है बाद में सामने आए। ये भी मुमकिन है कि फिलहाल सुसाइड नोट का सच त्रिपुरा पुलिस ने छुपा रखा।
4: महानिदेशक अनुराग धनखड़ साहेब आज के एटा अस्वाभाविक मृत्यु এবং এই অস্বাভাবিক তার পেছনে যে আমাদের ত্রিপুরাতে যে অস্বাভাবিকতা বিরাজ করছে এটা এই দুর্ঘটনা তারই কারণ। কারণ অনুরাগ ধনখড় সাহেবের মতো একজন ফাইনেস্ট অফিসার, আত্মসম্মান বোধ সম্পন্ন অফিসার, যিনি এসডিপিইউ থেকে একেবারে ডিজি অবধি উঠেছেন, এরকম বহু ঘটনা সামলে এসছেন, তার মতো একটা অফিসার নিজেকে নিজের জীবন নিতে পারে না, আত্মহত্যা করতে পারে না। এই ঘটনা এই ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরাজ্যের আইএস আইপিএস যারা সৎ দক্ষ তাদের উপরে বিগত 8.5 বছর ধরে যে ধরনের মানসিক ভাবে তাদেরকে পদস্থ করা হচ্ছে, তাদের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, তাদের আত্মসম্মান আঘাত দেওয়া হচ্ছে, আজকে এই ঘটনার এই কারণ তার পেছনে। আজ আমরা এখানে দেখেছি, আমরা বলেছি তার একমাত্র ছেলে নাকি কানাডা, এই তার ছেলে এখানে আসা অবধি তার দেহ দেখা অবধি এখানে তার দেহ সংরক্ষণ করে যাতে তারপরে এই পোস্টমর্টম তো করতে হবে, তারপরে করা হোক। এবং আমরা দাবি জানাবো এই ঘটনার বিচার বিভাগীয় একজন আমাদের হাইকোর্টের বর্তমান চিফ জাস্টিস তার নেতৃত্বে দ্রুত এ তদন্ত বসানো হোক। কেন ঘটনাটা হলো? এটা ত্রিপুরাজ্যের নাগরিকরা যাতে নিরাপদ নেই, পুলিশের মহানির্দেশকও সেই অবস্থা থেকে মুক্ত না, আজকে এটা এটা প্রমাণিত করল।
0: 1994 ব্যাচ কে আইপিএস অফিসার অনুরাগ ধনখড় পিছলে সাল মই মে ত্রিপুরা কে ডিজিপি বনে থে। बतौर डीजीपी उनका कार्यकाल पिछले महीने जून में ही खत्म हो चुका था, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें एक्सटेंशन दे दिया था। अनुराग धनखड़ के परिवार में पत्नी और एक बेटा है, बेटा कनाडा में है।
5: दुर्भाग्यजनक নিষ্ঠাবান, কর্তব্যপরায়ণ, স্বচ্ছ পুলিশ আধিকারিক যেভাবে চলে গেলেন, পজব ডেথ কি একটা পোস্টমর্টম রিপোর্ট এলে জানা যাবে, পোস্টমর্টম শুরু হবে এখন, তারপরে বলা যাবে যে মৃত্যুর কারণটা কি। কিন্তু যেটাই হয়েছে দুর্ভাগ্যজনক, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও খবর শুনে পিএইচকিউতে ছুটে গেছেন, উনি আমাদেরকে বলেছেন এখানে আসতে, মাননীয় মন্ত্রী রতনলাল নাথ, অর্থমন্ত্রী প্রণজ সিংহ রায়, অনিমেষ দেববর্মা, আমরা সবাই এসেছি এবং ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলেছি, ওনার পরিবার, ওনার স্ত্রী ছিলেন, ওনার সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছি। তবে এটাই বলতে পারবো যে যেটা হয়েছে অত্যন্ত দুঃখজনক, এটা অনাকাঙ্ক্ষিত। ওনার মতো একজন নিষ্ঠাবান অফিসার এভাবে পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে, এটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। তো আমরা পরিবারের পাশে আছি, সরকার পরিবারের পাশে আছে, মুখ্যমন্ত্রী পরিবারের পাশে আছে। পোস্টমর্টম রিপোর্ট যতক্ষণ না আসে কত ডেথ সম্পর্কে বলা সেটা সঠিক হবে না, এটা উচিত হবে না।
6: মর্গে আমাদের ডাইরেক্টর জেনারেল পুলিশ অনুরাগ ধনকর সাহেব, ওনার আনন্যাচারাল ডেথ হয়েছে অন ইউনিফর্ম, ওনার অফিস কক্ষে আনন্যাচারাল ডেথ সংঘটিত হয়েছে। দীর্ঘদিনের সম্পর্ক, ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট এফিসিয়েন্ট অফিসার ত্রিপুরা হ্যাজ এভার উইটনেসড। উনি, আমি যে এলাকায় থাকি উনি এলাকার একজন ভোটারও বটে। ওনার এই ঘটনা শুনে আমরা দুজনে একটু মফসল ছিলাম, ছুটে এসেছি ওনাকে দেখার জন্য। সমবেদনা জ্ঞাপন করার জন্য এই মুহূর্তে, যেহেতু আর্নাচারাল ডেথ, আমাদের পক্ষে এই মুহূর্তে এর থেকে বেশি কমেন্ট করা ঠিক হবে না। তবে এটুকু অনুরোধ করব উচ্চ পদস্থ পুলিশ আধিকারিকদের কাছে, ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট অ্যান্ড এফিসিয়েন্ট পুলিশ অফিসারের এই আর্নাচারাল ডেথ, তার রহস্য উন্মোচন সত্যিকার অর্থে নিশ্চিত করবে।
0: शुरुआती तफ्तीश के बाद जो खबर सामने आ रही वो ये कि अनुराग धनखड़ और उनकी पत्नी के बीच बनती नहीं थी, दोनों में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। सूत्रों के मुताबिक रविवार रात भी पति पत्नी में झगड़ा हुआ था। इसके बाद सुबह डीजीपी घर से सीधे पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे और उसके बाद फंदे से झूलती उनकी लाश मिली। अनुराग धनखड़ एक बेहद ईमानदार पुलिस अफसर माने जाते थे, पूरे करियर में उनकी छवि बेदाग रही। करीब तीन दशक के अपने कार्यकाल में त्रिपुरा पुलिस के अलावा डेपुटेशन पर बीएसएफ, सीआईएसएफ, यूएन पीस कीपिंग फोर्स के साथ साथ सीबीआई में भी वो काम कर चुके थे। धनखड़ सीबीआई में रहते हुए उस जांच टीम का हिस्सा थे जिसने पंजाब नेशनल बैंक घोटाले की जांच की, जिसमें नीरव मोदी मुख्य आरोपी थे। इसके अलावा 1984 के सिख दंगों की जाँच में भी वो शामिल रहे। त्रिपुरा के डीजीपी बनने से पहले वो राज्य के इंटेलिजेंस के हेड थे। तन्मय चक्रवर्ती, अगरतला, त्रिपुरा, आज तक। हनीमून पर अपने ही पति राजा रघुवंशी के कत्ल की आरोपी सोनम की जमानत सही है या गलत, इस पर कल यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय पुलिस से यह पूछा था कि क्या सोनम की गिरफ्तारी के वक्त उसे गिरफ्तारी की वजह बताई गई थी, और अगर वजह बताई गई थी तो उससे जुड़े दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जाए। अब मंगलवार को मेघालय पुलिस वही दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेगी और इसी के बाद सोनम की जमानत का फैसला होगा। सोनम जेल के बाहर आजाद रहेगी या वापस जेल जाएगी, ये वो सवाल है जिसका जवाब तलाशने में खुद देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को भी वक्त लग रहा है। 1 जुलाई को सोनम की जमानत कानूनी सवालों में लिपटकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। 3 जुलाई को तय हुआ कि इस केस को एक तारीख दो, तो 9 जुलाई को नई तारीख दी गई। पहली सुनवाई हुई, मेघालय पुलिस की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए, दलील दी कि मेघालय की पहले लोअर कोर्ट और फिर हाई कोर्ट ने सोनम को गलत जमानत दी है। एक धारा के टाइपो एरर की वजह से कोई जमानत का हकदार नहीं हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ने दलील सुनी और फिर सोनम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा कि उसकी जमानत क्यों न खारिज कर दी जाए। 14 जुलाई को दूसरी सुनवाई की तारीख तय हुई। लगा 14 जुलाई को ही इस बात का फैसला हो ही जाएगा कि सोनम वापस जेल जाएगी या बाहर आजाद रहेगी। लेकिन दलील और बहस यहां तक पहुंच गई जहां सुप्रीम कोर्ट को मेघालय पुलिस से पूछना पड़ा कि गलत धारा छोड़ी, क्या आपने सोनम को गिरफ्तार करते वक्त उसे उसकी गिरफ्तारी की वजह बताई थी? अगर हाँ तो वो दस्तावेज हूबहू कोर्ट को दिखाइए। अब दिखाने के लिए तो वक्त चाहिए, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते का और वक्त दे दिया। कहा 21 जुलाई को दस्तावेज के साथ आइए और तब तय करेंगे कि सोनम का करना क्या है। वैसे है ना कमाल, एक हाई प्रोफाइल और बेहद चर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस के मामले में आरोपी नंबर 1 सोनम 9 महीने में ही जमानत पर रिहा हो जाती है। इसी साल 27 अप्रैल को सोनम को शिलोंग की एक अदालत जमानत दे देती है। पुलिस मेघालय हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती देती है, लेकिन मेघालय हाईकोर्ट भी 29 जून को अपने फैसले में सोनम की जमानत को बरकरार रखती है। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सोनम को जमानत पर बाहर आए लगभग 2.5 महीने तो हो ही चुके हैं, पर कमाल देखिए कि 2.5 महीने बाद भी ये फैसला नहीं हो पाया कि सोनम की आजादी सही है या गलत। दरअसल मेघालय पुलिस ने सोनम की गिरफ्तारी के बाद कत्ल से जुड़े मामले में नए नए जन्मे भारतीय न्यायिक संहिता यानी BNS की जो धारा लगाई थी वो कानून की किताब में तो छोड़िए किसी अदालत या पुलिस स्टेशन के पन्नों तक में दर्ज नहीं। यानी मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी के कत्ल के मामले में सोनम पर जो धारा लगाई उस धारा का कोई वजूद ही नहीं है। अब जब वो धारा ही नहीं है तो अदालत को कैसे पता चलेगा कि पुलिस ने सोनम को किस जुर्म में पकड़ा है? और जब पुलिस को ही पता नहीं तो पुलिस सोनम को कैसे बताएगी कि उसे किस जुर्म में उसने गिरफ्तार किया है? ये लाइनें हमारी नहीं है, ये मेघालय हाईकोर्ट ने कहा है सोनम को जमानत देते हुए। अगर अब भी आप पूरी कहानी नहीं समझ पाए तो चलिए आसान लफ्जों में समझाता हूँ। पिछले साल मई में राजा रघुवंशी के कत्ल के बाद मेघालय पुलिस ने सोनम समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें 3 किराए के कातिल थे और 1 सोनम का प्रेत। बाद में मेघालय पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की और सोनम को अपने ही पति के कत्ल के इल्जाम में आरोपी नंबर 1 बनाए। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अदालत में मुकदमा शुरू हो गया। मुकदमा शुरू होते ही सोनम ने शिलोंग की निचली अदालत में जमानत की अर्जी लगा दी। बस यहीं से खेल शुरू हुआ। असल में 1 जुलाई 2024 से देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे CRPC और IPC में बड़े बदलाव करते हुए न सिर्फ इनके नाम बदल दिए गए बल्कि बहुत सी धाराएं या तो हटा दी गई या फिर कई धाराओं को एक साथ जोड़ दी गई। अब IPC यानी इंडियन पीनल कोड या भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी BNS का जन्म हो चुका था। इस BNS के तहत देश में होने वाले तमाम जुर्मों को कुल 358 धाराओं में लपेट दिया गया। यानी BNS के तहत देश में होने वाले हर तरह के जुर्म के लिए कुल 358 धाराएं हैं। अब जाहिर है आजादी के बाद से चली आ रही IPC की धाराओं की जगह जब BNS और उसकी नई धाराएं आईं, तो आम लोगों को छोड़िए खुद पुलिस और कानून के रखवालों को इसे समझने, रटने और याद करने में मुश्किलें आने लगी। मसलन पहले लोगों की जुबान पर रटा हुआ था कि IPC की धारा 300 यानी केस मर्डर का है और धारा 302 यानी कितनी सजा उस मर्डर के लिए मिलेगी। BNS में धारा 300 की जगह 100 हो गया, 101 मतलब मर्डर केस का है, जबकि BNS में 302 की जगह 103 नई धारा बनी। 103 ये बताती है कि मर्डर के लिए क्या सजा मिलेगी। सोनम के केस में गलती ये हुई कि मेघालय पुलिस ने BNS की धारा 103 यानी मर्डर के केस की जगह 403 लिख दिया। अब चूंकि BNS की धारा 358 पर आकर ही खत्म हो जाती है तो जाहिर कानून की किताब में 403 नंबर की धारा कोई हो ही नहीं सकती। बस इसी एक गलती को शिलोंग की निचली अदालत ने पकड़ लिया। कोर्ट का कहना था कि जब धारा 304 है ही नहीं तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि सोनम को किस जुर्म में पकड़ा गया है। यानी इस हिसाब से सोनम का भी उसका जुर्म पुलिस ने नहीं बताया होगा। इसीलिए निचली अदालत ने इसी साल 27 अप्रैल को सोनम को जमानत पर रिहा करने का हुक्म सुना दिया। जाहिर है सोनम को जमानत मिल जाना हर किसी के लिए हैरान करने वाला था, मेघालय पुलिस भी हैरान थी। इसी के बाद मेघालय पुलिस ने सोनम को जमानत देने के निचली अदालत के फैसले को मेघालय हाईकोर्ट में चुनौती दी। मेघालय हाईकोर्ट में इस पर लंबी बहस हुई। उम्मीद यही थी कि हाईकोर्ट निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए सोनम की जमानत खारिज कर देगी, लेकिन मेघालय हाईकोर्ट ने भी चौंका दिया।
7: Was given bail on the grounds that due to clerical error, a section, the number of the section was changed from 103 to 403. There is no 403 in the BNS, and the grounds of arrest. It is not that the grounds of arrest were not made to understand. When the transit remand was made, also the grounds of arrest were made, given to understand to the accused. During production also the grounds of arrest were given to understand, and the accused had understood that that she was arrested for murder. But court has taken a different stand and given order that grounds of arrest were not made to be understood by the accused. We have appealed for that. It does not mean that there will be any difference in the trial.
0: दरअसल मेघालय हाई कोर्ट ने भी सोनम के केस में बीएनएस की वही 403 वाली धारा पकड़ ली, जो कहीं कानून में है ही नहीं। हाई कोर्ट का कहना था कि बीएनएस की धारा 403 जो वजूद में ही नहीं है, उससे कैसे पता चलेगा कि सोनम पर इल्जाम क्या है। हाई कोर्ट का ये भी कहना था कि गलत धारा लगाने से ये भी पता चलता है कि खुद सोनम भी इस बात से अनजान थी कि पुलिस ने उसे क्यों पकड़ा। इसीलिए निचली अदालत का फैसला सही है और सोनम जमानत की हकदार। मेघालय हाईकोर्ट ने 29 जून को इसी बिना पर मेघालय पुलिस की उस अर्जी को भी खारिज कर दिया, जिसमें सोनम की जमानत खारिज करने की गुजारिश की गई थी। अब सोचिए, कानून की एक छोटी सी गलती ने सोनम को वो आजादी दिला दी जो आने वाले कई बरसों तक शायद ही उसके हिस्से आने वाली थी। सोनम जमानत पर बाहर आने के बाद से ही शिलोंग में रह रही। मेघालय हाईकोर्ट के फैसले के बाद खुद राजा रघुवंशी के माँ बाप भी हैरान हैं।
8: ये पता है कि सोनम को जमानत नहीं मिलना चाहिए। अगर उसको जमानत दे दिए तो अभी आप सरकार पूरे ऑल इंडिया देख रहे कि लेडीज है आदमी को क्यों मार रही है। उसकी वजह से सरकार से पूछो, सरकार ने पूछा कि क्यों मार रही है। सरकार तो वहाँ के आँख बंद करके बैठी है। ऐसे औरतों को अगर सरकार छूट देती रहेगी तो कई पति मरेंगे, कई पति मरेंगे। तो मेरा से कहने का मतलब उसको जमानत नहीं, उसके रद्द करना चाहिए।
9: क्या लगता है पुलिस ने जो वहाँ पे कार्रवाई की है, जो केस डायरी उन्होंने पेश
8: उसके जो केस डायरी बनी थी 790 के चार्ज बनी थी, उसमें एक भी धारा नहीं लगी है। वो सोनम बाहर आ गई है तो जो अभी तक वो केस के जो फाइल में अभी तक यही नहीं मालूम पड़ा कि इसको किस आधार पर छोड़ा है। इसका फायदा वो सोनम उठा रही है।
0: मेघालय पुलिस का ये भी कहना है कि धारा लिखने के दौरान उनसे गलती जरूर हुई और बाद में उन्होंने कोर्ट के सामने अपनी इस गलती को माना भी, मगर इस एक गलती के लिए सोनम के जमानत पर बाहर आने को मेघालय पुलिस गलत मानती है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
11: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सबसे पहले आपको बता दें सिक्किम से बड़ी और अहम खबर आ रही है। सिक्किम के समरडुंग सुरंग में 27 मजदूरों के फंसे होने की जानकारी, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। युद्ध स्तर पर यह रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। सिक्किम में आपको बता दें कि एनएचपीसी तीस्ता स्टेज के भीतर मीथेन गैस के धमाके के साथ भूस्खलन के बाद बचाव अभियान शुरू किया गया है। सुरंग के भीतर करीब 1.5 किलोमीटर के हिस्से में मीथेन गैस जमा हो गई थी। गैस को निकालने की कोशिशों के दौरान एक जबरदस्त धमाका हुआ जिससे कि सुरंग के भीतर की जमीन खिसक गई और 27 मजदूर टनल के भीतर फंस गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सिक्किम में लैंडस्लाइड के बाद टनल में भूस्खलन हुआ है और आपको यह भी बता दें कि युद्ध स्तर पर लगातार काम जारी है। सिक्किम के समरदुंग सुरंग में 27 मजदूरों के फंसे होने की जानकारी है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लोगों को बाहर निकालने के लिए कोशिशें लगातार की जा रही हैं। एनएचपीसी तीस्ता स्टेज के भीतर मीथेन गैस में धमाका हुआ और उसके धमाके के बाद तुरंत ही भूस्खलन से ये मजदूर अंदर फंस गए हैं। तो 27 मजदूर हैं जो भीतर फंसे हुए हैं, निकालने का काम लगातार जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। इस खबर से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
12: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
13: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
10: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: बीजेपी प्रदर्शनकारियों ने जेपी नड्डा से की मुलाकात। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ रखी हैं 3 मांगे। कहा सरकार हमारी बातों पर करेगी विचार। केरल हाउस से करीब शिफ्ट किया है प्रदर्शन। दिल्ली में हालात सामान्य। बच्ची से मारपीट और 50 लोगों के घायल होने की खबर का पुलिस ने किया है खंडन। राहुल गांधी का सरकार पर हमला, पुलिस को भी चेताया। संसद का मॉनसून सत्र से पहले दिन ही मूसलाधार सियासत। हंगामे के बाद दोनों ही सदन कल तक के लिए स्थगित किए गए। संकट के बीच शाह और धर्मेंद्र प्रधान के बीच मैराथन बातचीत। चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। सीजीआई ने दिए आदेश, एसआईटी का पुनर्गठन हो, सीनियर अधिकारी की अगुवाई में हो जांच। अब अगले हफ्ते हियरिंग। और सिक्किम में लैंडस्लाइड के बाद निर्माणाधीन टनल में फंस गए 27 मजदूर। मीथेन गैस विस्फोट के बाद समरदुंग सुरंग में हादसा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को मिलेगा लोकमान्य तिलक पुरस्कार। 1 अगस्त से पुणे में आयोजित समारोह में गृहमंत्री शाह देंगे देश की सुरक्षा में कूटनीतिक योगदान का बड़ा सम्मान। मुंबई में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज हुई। गणपति बप्पा के आसनों से सजे हैं बाजार। सहेली कार्यशाला में इको फ्रेंडली गणेश आसनों की धूम। 14 सितंबर से शुरू होने वाले गणेश महोत्सव को लेकर मुंबई में चरम पर उत्साह। लालबाग में गणपति के सिंहासन और सजावट के सामानों की बढ़ गई है मांग। अकोला में जीवंत हुई जगन्नाथपुरी के सदियों पुरानी प्रसाद की मटकी परंपरा। आषाढ़ अमावस्या के बाद पहले सोमवार को भरी गई भगवान जगन्नाथ की प्रसाद की मटकी। भगवान जगन्नाथ के दर्शन और महाप्रसाद के लिए उमड़े श्रद्धालु। परंपरा, श्रद्धा और संस्कृति का अनूठा संगम। पुणे में इलेक्ट्रिक स्कूटर में चार्जिंग के दौरान भीषण आग, एक व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने की खबर। गुजरात के आणंद में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म की हत्या के आरोपी सुरेश परमार की पुलिस मुठभेड़ में मौत हुई। आरोपी ने हिरासत से भागने के लिए पुलिस पर चाकू से हमला बोला था। गुजरात के जामनगर में फैक्ट्री में कामकाज के दौरान भट्टी में विस्फोट हुआ, 3 मजदूर झुलस गए, 2 की हालत गंभीर है। गुजरात के जूनागढ़ में अवैध बायोडीजल लैकेट का भंडाफोड़ हुआ। नगर निगम ने 3 ठिकानों पर छापेमारी करके 2,13,00,000 रूपये के अवैध बायोडीजल को जब्त किया। 8 की गिरफ्तारी। गुजरात के भावनगर में चांदीपुरा वायरस से मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है, बच्चों की स्क्रीनिंग शुरू। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में खाद्य विभाग और पुलिस की टीम की बड़ी कार्रवाई। गाय भैंस के तबेले से प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की 612 बोतल जब्त। महाराष्ट्र के कल्याण में बोरे में मिली थी युवक की सड़ी गली लाश, हत्या की जांच में जुटी हुई है पुलिस। शिरडी में फल विक्रेता की चाकू कूदकर हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने पुरानी रंजिश के चलते हत्या की जताई आशंका। अहमदाबाद के गुमा में तेंदुए की दस्तक से लोगों में दहशत, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हलचल। वन विभाग का सर्च ऑपरेशन जारी। वडोदरा में नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी सलीम गिरफ्तार, 1,00,000 फिरौती मांगने के आरोप भी हैं। रेस्टोरेंट बिल में बिना सहमति सर्विस चार्ज जोड़ने पर सीसीपीए ने 41 रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। गाइडलाइंस के मुताबिक सर्विस चार्ज स्वैच्छिक है, जिसे जबरदस्ती नहीं वसूला जा सकता। फीफा वर्ल्ड कप के दौरान देश में भी स्पोर्ट्स वेयर, स्नैक्स और ड्रिंक्स की बिक्री ने रिकॉर्ड तोड़े। लाइव स्ट्रीमिंग वाले बार पब में जोरदार बुकिंग से 1500 से 10,000 में टिकट बिके। वैश्विक बाजार में ब्रेंट क्रूड $91 प्रति बैरल के पार निकलने से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की आशंका। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों से जुलाई में अब तक 22,868 करोड़ का शुद्ध निवेश किया। अप्रैल जून तिमाही में चाइनीज ब्रांड्स की बाजार हिस्सेदारी घटकर 18% पर लुढ़क गई है। फिल्म रामायण में जटायु के किरदार में नजर आएंगे अनुपम खेर, रावण के साथ युद्ध करते हुए नजर आएंगे। 8 अगस्त को बेंगलुरु में होगा फिल्म टॉक्सिक का ट्रेलर जारी। 26 अगस्त को फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। द ओडिसी का बॉक्स ऑफिस पर उठा तूफान, 3rd दिन भी डबल डिजिट में कमाई, 7 करोड़ के पार हुआ है कलेक्शन। आप लोगों की तबीयत कैसी है, सलमान खान ने सोशल मीडिया पर किया है पोस्ट, बीमार होने की खबरों का किया खंडन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में मिलावटी दूध के खिलाफ एफडीए की ताबड़तोड़ एक्शंस जारी हैं और एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे के विरोध में छोटे दूध कारोबारी सड़कों पर उतर आए हैं। उनके प्रदर्शन को शिवसेना नेता संजय निरुपम का खुला समर्थन भी मिल गया है। आरोप अब यह है कि मुंडे बड़ी दूध कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर छोटी डेयरीज पर छापेमारी कर रहे हैं, उन्हें बंद करवा रहे हैं।

0: जब से तुकाराम मुंडे को महाराष्ट्र एफडीए की कमान सौंपी गई है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की मिलावटी दूध के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। अक्सर सुर्खियों में रहने वाले तुकाराम मुंडे की कार्यशैली ऐसी है कि उनका 21 साल की नौकरी में 25 बार ट्रांसफर हो चुका है। सत्ताधारी शिवसेना के फायर ब्रांड नेता संजय निरुपम लगातार उनकी कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं।
1: महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर मुंडे जी लगातार रेड कर रहे हैं और कई दुकानें, कई सालों से चली हुई दुकानें भी जो हैं वो बंद कर रहे हैं। फिलहाल डेयरी इंडस्ट्री जो है उन पर तुकाराम मुंडे की धड़क कार्रवाई शुरू है, लेकिन हमारे साथ हैं शिवसेना नेता संजय निरुपम जी, जिन्होंने इस पर आवाज उठाई है। उनका कहना है कि जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे डेयरी वाले हैं, उनको इससे दिक्कतें हो रही हैं।
2: देखिए, दूध हो या किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ हो, अगर उसमें कोई मिलावट करता है तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा गुनाह है और ऐसे गुनाहगारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर्व सामान्य नागरिकों को पूरा अधिकार है कि उनको जो खाने पीने की चीजें मिल रही हैं उसमें मिलावट न हो, शुद्ध रहे। और इस दृष्टिकोण से अगर एफडीए कोई एक्शन लेता है, कार्रवाई करता है, एक कड़े कानूनों को इम्प्लीमेंट करवाता है, तो बिल्कुल हम एफडीए के साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन इस अभियान की आड़ में जिस तरीके से मनमानी हरकतें चल रही है और जिस तरीके से बगैर उसके रिपरकशन को सोचे कार्रवाई हो रही है, वो आपत्तिजनक है।
0: संजय निरुपम आरोप लगा रहे हैं कि बड़ी दूध कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए मुंडे छोटे दूध कारोबारियों को परेशान कर रहे हैं। निरुपम कह रहे हैं कि जिन नियमों का हवाला देकर छोटे छोटे दुकानदारों की दुकानें बंद की जा रही हैं, उन नियमों को पूरा करने के लिए उन्हें पर्याप्त समय भी नहीं दिया जा रहा।
2: इन डेयरियों को कहा गया है कि अब आप तबेले का दूध तो खुले प्लास्टिक के थैले में बेच सकते हैं, लेकिन जो ये आप टैंकर का दूध ले रहे हैं बड़ी बड़ी मिल्क कोऑपरेटिव से जो आपके पास आ रहा है, उसको आप पैक करके बेचिए और उसके ऊपर आपका ठप्पा रहना चाहिए, आपकी मुहर होनी चाहिए और उसके ऊपर डिक्लेरेशन होना चाहिए कि इसमें क्या क्या कॉन्टेंट है, इसमें फैट कितना, ये क्या संभव है एक एक छोटे छोटे डेयरी ऑपरेटर जो बहुत ही छोटे व्यापारी हैं उनके लिए करना।
0: इससे पहले 17 जुलाई को एफडीए की ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद महाराष्ट्र के छोटे दूध कारोबारियों ने मुंबई में एफडीए दफ्तर के बाहर संजय निरुपम की अगुवाई में प्रदर्शन किया था।
3: जो छोटी छोटी दुकानें हैं हमारी यहाँ पर, 150 लीटर हमारा दूध का डेली का व्यवसाय।
4: आप लोग सबके सब लोग दूध का ही व्यापार?
3: हम दूध के व्यवसायी, साइकिल से हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी, पहले दादाजी करते थे, फिर पिताजी थे, अब हम हैं, तो हम कंटिन्यू उसी पे चल रहे हैं, हमें और दूसरा कुछ नहीं आता है। उनका ये कहना है कि जो हम लोग लूज दूध देते हैं वो हम एक थैली में पैक करके अपने हाथों से देते हैं। उनका ये कहना है कि आपका जो अमूल पैकेजिंग होती है वो पैकेजिंग आप करके दीजिए,
4: जैसे कि या तो आप पॉलिथीन में, टेट्रा पैक में, जैसे
3: जैसे अमूल वगैरह की थैली होती है ना, उस पैक में दीजिए। उसमें FSI नंबर लिखिए, फेट लिखिए, SNF लिखिए, पीछे उसके बैक साइड पे न्यूट्रिशन वगैरह जो भी
4: क्वालिटी किस क्वालिटी का दूध है वो डिस्क्लोजर आपको करना पड़ेगा, इसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं है ये लिखना पड़ेगा, ये तमाम बातें
3: आप। लेकिन मैम आप सोचिए कि हम लोग इतने छोटे, हम इतने बड़े नहीं है कि हम लोग वो पैकेजिंग अफोर्ड कर पाए।
0: एफडीए की कार्रवाई और लाइसेंस सस्पेंड होने के बाद मुंबई की मशहूर पारसी डेयरी को भी अपनी दुकान बंद करनी पड़ी थी।
4: इस वक्त हम मुंबई के मरीन लाइन स्थित पारसी डेयरी पर हैं और यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये एक लेगेसी बिजनेस माना जाता है, 1916 से ये बिजनेस चल रहा है और आइकॉनिक एक माना जाता है। कई सारे लोग पारसी डेयरी के बहुत बड़े फैंस हैं और बहुत से आज जब लोगों के यहाँ पे दूध नहीं पहुँचा, जो चीज़ें वो डेली ऑर्डर करते हैं वो नहीं पहुँचा, तब उन्होंने जाँच पड़ताल की तो उन्हें पता चला कि दरअसल पारसी डेयरी के ऊपर जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक्शन लिया है। दरअसल इनकी जो काफ़ी सारी जो प्रोडक्शन जहां पे होता है वहां पर काफ़ी सारी खामियां पाई गई।
0: वहीं ठाणे के उल्लासनगर में भी एफडीए की टीम एक्शन में दिखी। इस दौरान एक डेयरी से प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की 612 बोतलें जब्त की गई। एफडीए ने डेयरी मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।
5: लगभग 612 ऑक्सीटोसिन इंजेक्शंस की जो वायल्स है वो हमने जब्त की है और इसमें संबंधित जो तबेला मालक है उनके ऊपर गुना दाखिल किया है। इसमें जो आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन देकर ज़्यादा दूध निकालने के लिए इन्होंने जो ये किया था, प्रोसीजर की थी, उस उपलक्ष्य में ये कार्रवाई हुई है और जो पिनल सेक्शन है वो लगा के FIR रजिस्ट्रेशन हुआ है। आगे का तपास जो है सेंट्रल तपास पदक के अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं।
0: दरअसल ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन गाय और भैंस से ज्यादा दूध निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक होता है।
6: FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे के आदेश के बाद खाद्य सुरक्षा और दूध की मिलावट रोकने के लिए आपको बता दें कि ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है डेरीज पर और तबेलों पर। मुंबई महाराष्ट्र में बहुत से डेरी फार्म और तबेलों पर कार्रवाई की जा रही है, और इसी बीच उल्लासनगर कैंप नंबर 3 के एक तबेले पर कार्रवाई की गई, जहां पर प्रतिबंधित 612 ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन मिले। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन वो इंजेक्शन है जो भैंसों में गायों में उनका दूध बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये प्रतिबंधित इंजेक्शन है। ऐसे 612 इंजेक्शन जब्त किए गए पुलिस और FDA अफसरों के तहत, और इसके बाद जो तबेला ओनर था और अन्य जो लोग वहां पर काम कर रहे थे उन पर BNS और फूड ड्रग नियमों के तहत केस दर्ज किया गया है उल्लासनगर कैंप नंबर 3 पुलिस स्टेशन में। आपको बता दें ये इंजेक्शन भी जब्त कर लिए गए हैं, नोटिस इशू कर दी गई है, और इस तरीके की कार्रवाई महाराष्ट्र में अन्य जगहों पर भी चल रही है। कैमरा पर्सन महेश मोरे, दीपेश त्रिपाठी और विद्या के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
7: महाराष्ट्र के कल्याण में एक लड़की अपने दोस्त का मर्डर करके उसकी डेड बॉडी को बोरे में बाथरूम में बंद करके फरार हो गई, और इतना ही नहीं लड़की जानबूझकर डेड बॉडी को सड़ाने के लिए नल खोल कर गई थी, जिससे कि डेड बॉडी सड़ जाए और उसके सबूत भी न मिल पाए। हालांकि वारदात के बाद लड़की ने मकान मालिक को इसकी जानकारी दी, और उसके बाद पुलिस वहां पहुंची उस फ्लैट पर। अब आरोपी लड़की की तलाश में पुलिस एक टीम कोलकाता पहुंचा चुकी है। सवाल अब यह है कि आखिर उसने अपने बॉयफ्रेंड का मर्डर किया क्यों?
0: कल्याण में बॉयफ्रेंड की हत्या कर गर्लफ्रेंड फरार, बाथरूम में बोरे में डेड बॉडी, कोलकाता तक जुड़े तार। महाराष्ट्र के कल्याण में दिल दहला देने वाला सामने आया है। मलंग रोड इलाके की नीलकंठ सोसाइटी में हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड ने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। दरअसल इस सोसाइटी के एक फ्लैट से पिछले 2 दिनों से तेज दुर्गंध आ रही थी, जिसके बाद पड़ोसियों ने मानपाड़ा पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस जब फ्लैट का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची तो देखा कि एक बोरे में 37 साल के हमीदुल्ला इस्लाम का शव पड़ा है।
8: महाराष्ट्र के कल्याण में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड की हत्या कर गोनी में बांध कर बाथरूम में पिछले 15 दिनों से नल खुला छोड़कर सिर्फ सड़ने के लिए छोड़ दिया था। जी हाँ, मैं इस समय कल्याण

0: आरोपी महिला है, गर्लफ्रेंड, उसका नाम हसीबा है और उसका जो प्रियकर है उसका नाम हमीदुल्ला इस्लाम है, जो यहाँ 2.5 महीना पहले आए हुए थे और रहते थे। प्राथमिक जानकारी में इतना है कि महिला को जो आरोपी है वो यहाँ लेके आया था और उसे बेचना चाहता था, ऐसी प्राथमिक जानकारी है। लेकिन उसके पहले ही महिला प्रियकर ने अपने प्रेमी को, प्रेमी की हत्या कर उसे गोनी में बांधकर बाथरूम में 15 दिनों से छोड़ दिया था ताकि उसकी बॉडी सड़ जाए और जो भी सबूत है वो मिटाया जा सके। बता दें कि पुलिस को जब इसकी जानकारी लगी तो पुलिस ताबड़तोड़ घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच के लिए 2 टीमें बना दिए।
1: शुरुआती जांच में सामने आया है कि महिला का नाम हबीबा है और मृतक का नाम हमीदुल्ला इस्लाम। युवक की हत्या धारदार हथियार से की गई है। महिला का दावा है कि उसे भनक लग गई थी कि उसका प्रेमी उसे जान से मारने वाला है, लेकिन उससे पहले ही लड़की ने हमीदुल्ला की हत्या कर दी और डेड बॉडी बोरे में भरकर बाथरूम में रखकर नल खुला छोड़ गई, जिससे बॉडी सड़ जाए और अहम सबूत मिट जाए। पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद आरोपी महिला कोलकाता फरार हो गई। उसने मकान मालिक को एक वॉइस मैसेज भेजकर वारदात की जानकारी दी थी।
2: के जो मकान मालिक है उनको वॉइस नोट भेजा है और उसने गुनाह कबूल किया है कि मैंने मेरे प्रेमी की हत्या की है और उसका डेड बॉडी बाथरूम में रखा गया है, तो आप जाकर वो उसको आप इधर दफना दो। तो घर मालिक ने ये बात पुलिस को बताया और पुलिस ने यहाँ पर आकर देखा तो बाथरूम में एक गोली में डेड बॉडी लिपटी हुई थी और वो अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम हुआ उसका और उसी का शोध चल रहा है।
1: कल्याण पुलिस की एक टीम मुख्य आरोपी हसीबा की गिरफ्तारी के लिए कोलकाता रवाना हो गई, लेकिन कल्याण में हुई इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत देखी जा रही है।
0: एक बाथरूम में पिछले 15 दिनों से ये बॉडी यहां पे पड़ी हुई थी और नल चालू करके गर्लफ्रेंड फरार हो गई थी ताकि जो बॉडी है वो सड़ जाए और जो क्या बोलते हैं सबूत मिटा सके। ये आप देख सकते हैं, ये वही बाथरूम है। मैं कैमरामैन से बोलूंगा ये दिखाने के लिए, ये बाथरूम है। बाथरूम में यहीं पे वो बॉडी सड़ने के लिए जो है नल खुला छोड़ के गर्लफ्रेंड फरार हो गई है कलकत्ता जाके। वहां से रूम मालिक को वॉइस मेल भेजकर इसकी सूचना देती है कि नल चालू है और बाथरूम में बॉडी है। ऐसा बताने के बाद रूम मालिक ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने ताबड़तोड़ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। आप ये देख सकते हैं रूम का पूरा बिखरा हुआ है। ये वही गोनी है जिस गोनी में शव को लपेट कर यहाँ पे बाथरूम में रखा गया था। जो ये रूम है इसकी सूचना जब वॉइस मेल के द्वारा रूम मालक को मिली तो रूम मालक ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस यहाँ पे आके शव को कब्जे में लेकर बाकी उसके सख्त जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसको शुरू कर दिया था। एक चीज अहम है, जिस व्यक्ति ने पहला दरवाजा खोला वो मेरे साथ थे, उनसे बात करने की कोशिश करता। क्या बताओगे कैसे मालूम चला ये घटना?
3: हमको रूम मालिक ने फोन किया, पुलिस लोग भी आए थे। वो टाइम मेरे को बोला बास आता है, तो मैं गया हैंडग्लव्स पहन के, मास्क पहन के, उसको सर में हाथ लगाया मैं, तो मैं सर को बोला बॉडी था, तो साहब लोग ने बोला रुको थोड़ा। फिर मैं ब्लेड से उनको काट के पूरा शक्ल दिखा दिया उनका, बॉडी उलिया जैसा था, बस बाकी मैं बाहर आया।
1: मकान मालिक ने कहा कि पुलिस ऑडियो मैसेज के जरिए मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रही है।
4: उसने बोला कि ऐसा ऐसा है, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को बेचने लाया था इधर, फिर वो मेरे को मिला, फिर मैंने उसको यहाँ बोला कि मैं अकेले रहती हूँ, चलो काफी वाइफ के लिए पार्ट हो गई। मैंने उसको फिर वो मैं मारने वाला था मेरे को, लेकिन मैंने उसको मार के निकल गए।
1: पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि क्या लड़की ने हमीदुल्ला इस्लाम की हत्या करने के लिए अपने साथ किसी की मदद ली थी। ऐसे कई सवालों के जवाब महाराष्ट्र पुलिस को आरोपी हसीबा की गिरफ्तारी के बाद ही मिल पाएंगे। मिथिलेश गुप्ता, कल्याण आज तक।
5: मुंबई में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं क्योंकि 14 सितंबर से श्री गणेश जी के इस महाउत्सव को मनाया जाएगा और उससे पहले ही बप्पा की सजावट से जुड़ी हुई तमाम जो चीजें हैं वो बाजार की रंगत को बढ़ा रही हैं। फिलहाल हमारी एक टीम ऐसी कार्यशाला में पहुंची जहां बप्पा के आसन और सिंहासन को बनाने का काम जारी है। मुंबई के लालबाग का राजा पंडाल से सटी गली में सहेली नाम की एक कार्यशाला है

0: जहां गणेश भक्तों की भीड़ है। वैसे तो कार्यशाला में बहुत से आसन हैं जिस पर साई रूप आसन, महादेव शिवलिंग आसन, पंडिरीचा रूप आसन, सुखकर्ता आसन, मौर्य आसन, वक्रतुंड आसन, मंगलमूर्ति आसन की सबसे ज्यादा डिमांड बताई जा रही है।
1: गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, सबसे पहले तो आप खुद भी गणेश जी के दर्शन करिए। लालबाग के राजा, जिनका दर्शन करने के लिए मुंबई, महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से लोग आते हैं, हम भी इस समय उनके ही परिसर में पहुंचे हुए हैं। लालबाग के राजा का जो मंडल है उससे ठीक सटी एक गली है और गली में ही एक ऐसी कार्यशाला है जहां पर गणपति बप्पा को सजाने का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। उनके सिंहासन, उनके आसन को एक से बढ़कर एक रंग रूप दे करके बनाया गया है। थोड़ा तस्वीरों में देखें, एक से बढ़कर एक सिंहासन इस समय गणपति बप्पा गणेश जी के लिए जो है यहां बनाकर रखे हैं। गौरतलब है कि 14 सितंबर से गणेश उत्सव पूरा देश मनाने वाला है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि अपने घरों में, यानी कि घर गृहती जो गणेश जी ले जाएंगे, उन्हें जिस सिंहासन पर बिठाया जाए वो उनका पसंदीदा हो, डिमांडिंग हो और कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग भी हो। यही वजह है कि आप देखें, एक बहुत बड़ी कार्यशाला इस समय यहां पर है और लोग यहां पर ढेरों की तादाद में पहुंच रहे हैं, अपने पसंदीदा एक से बढ़कर एक सिंहासन भी बना रहे हैं। आकर्षित का केंद्र वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जरा सा वाटर वॉल पेपर देखें, इसे गणेश जी के ठीक पीछे रख दिया जाएगा और जब बप्पा इसके समक्ष बैठेंगे, विराजमान होंगे, तो आप समझ सकते हैं किस तरह की खूबसूरती देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये देखिए कितनी प्यारी सी रुद्र के साथ में शिवलिंग का भी अवतार यहां पर किया गया। इस तरह की एक से बढ़कर एक प्रतिमाओं से गढ़ी एक से बढ़कर एक सिंहासन आसन, जिसे छोटे छोटे मंडप भी कहे जाते हैं, वो बनाने का काम है। हमारे साथ में सुनील जी हैं और मुझे लगता है कि ये कार्यशाला आप ही चला रहे हैं।
2: नमस्ते सर। अच्छा। मेरा नाम सुनील किमजी वोरा है। हमारे फर्म का नाम है सहेली एंटरप्राइज। ये लालबाग चिवड़ा गली में लालबाग राजा के पास में ही है। अच्छा। हम लास्ट 25 साल से ये सब डेकोरेशन का काम करते हैं सर।
1: अच्छा, मैं काफी देर से यहाँ देख पा रहा हूँ जो लोग आ रहे हैं वो भी एक से बढ़कर एक जो आसन है सिंहासन ले जा रहे हैं, लेकिन आप बताएं सबसे ज्यादा डिमांड किन सिंहासनों की है?
2: जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे सबसे ज्यादा विट्ठल पंडरीनाथ की है, शंकर भगवान की है। जैसे आप लोग अभी ये साल सबसे ज्यादा चला वो स्वामी समर्थ का है। अच्छा। आज का ट्रेंड चलो स्वामी समर्थ का, तो स्वामी समर्थ का हम लोग इसमें तीन साइज बना के रखे। हाँ। हमारे यहाँ आपको हर चीज में इसमें तीन साइज मिलेंगे, छोटा, मीडियम और बड़ा, ऐसे तीन मिलेंगे। हाँ। जैसे आपका बप्पा होंगे वैसे वो साइज के आपको करके ये मिल जाएंगे सब। अच्छा, हमारे
1: जितनी लंबाई बप्पा की होगी उतनी साइज में आप सिंहासन बनाएंगे। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग राजा पंडरीचा,
2: ये राजा पंडित विट्ठल के हैं, एक नाम उनका राजा पंडित है। जैसे गणपति का नाम है वक्रतुंड, मनोदर, हम लोग वो नाम पे वो थीम पे सुखकर्ता है, लंबोदर है, वक्रतुंडे, अलग अलग नाम पे मोरे है। जैसे गणपति बापा का नाम है वैसे हम लोग उसके नाम पे भी बनाए, वो सब अलग अलग चीज का आपको मिल सकता है हमारे यहाँ।
1: अच्छा, मैंने देखा एक दो लोगों ने आपसे छत्रपति शिवाजी महाराज की भी सिंहासन मांगी, वो भी
2: हमारे यहाँ महाराज के शिव महाराज के राज्यभिषेक का सिंहासन वो भी रखे, जिसके साथ में उनके मावड़े भी रखे हुए है। अच्छा। कि अगर आप घर पे बना सकते हो तो आपको अलग से मावड़ा चाहिए तो मावड़े भी मिल सकते हैं, जो फोल्डिंग पूरे आते हैं। मैम,
1: ये सारे आपके ऑर्डर बिक चुके हैं या मतलब आपने अभी लगाया?
2: हमारा ये एग्जीबिशन लगा है, आपको एक ही आइटम पे नहीं है, आपको चाहिए तो हम लोग इसके ऊपर बुकिंग करते हैं कि आपको अभी हाफ पेमेंट देके रखते हैं और बाद में आपको गणपति के से पहले आप लेके जा सकते हैं।
0: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: Tune in to How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn, and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
4: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
5: दुनिया भर में फुटबॉल के नए सिकंदर का स्वागत हो रहा है. फीफा वर्ल्ड कप का नया बेताज बादशाह स्पेन. जब एडोल्फो सुआरेज मैड्रिड पहुंचे तो उनका ऐसा भव्य स्वागत हुआ कि दुनिया दंग रह गई. देखिए कैसे स्पेन की फुटबॉल टीम के लिए सड़कों पर सैलाब उमड़ आया था. बीती रात हुए शानदार मुकाबले में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर स्पेन की टीम ने अपने देश को, अपने फैंस को झूमने और गाने और आतिशबाजी का मौका दिया है. आज पूरी दुनिया इस नए विजेता का वेलकम कर रही है. कल न्यूजर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर फीफा विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया. लेकिन स्पेन की इस ऐतिहासिक जीत के बीच सारी सुर्खियां बटोर ले गए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप. ट्रॉफी प्रेजेंटेशन के दौरान ट्रंप ने एक बार फिर कुछ ऐसा किया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. फीफा के प्रोटोकॉल को ताक पर रखते हुए ट्रंप ट्रॉफी सौंपने के बाद भी पोडियम पर जमे रहे, जिसे स्पेन के खिलाड़ी असहज महसूस कर रहे थे. और आखिरकार फीफा अध्यक्ष को खुद ही बीच बचाव के लिए आना पड़ा. ट्रंप की इस पुरानी आदत और स्टेडियम में हुई भारी हूटिंग का पूरा ड्रामा हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए जाने हैं.
6: 2026, the champions of the world are Spain.
7: 19 जुलाई 2026 न्यू जर्सी का मेटलाइफ स्टेडियम. स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर 2026 फीफा विश्व कप का खिताब अपने नाम किया. लेकिन स्पेन की इस ऐतिहासिक जीत से ज्यादा चर्चा एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हो रही है. जब दुनिया की नजरें चैंपियन टीम के ट्रॉफी लिफ्ट करने पर टिकी थीं, तब डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे स्टेडियम को हैरान कर दिया. जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप और फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ट्रॉफी प्रेजेंटेशन के लिए मैदान पर पहुंचे, पूरे स्टेडियम में दर्शकों का गुस्सा फूट पड़ा. चारों तरफ से तीखी हूटिंग शुरू हो गई. ट्रंप ने फीफा अध्यक्ष के साथ मिलकर स्पेनिश टीम को मेडल पहनाए और स्पेन के कप्तान रोड्री के हाथों में चमचमाती विश्व कप ट्रॉफी सौंप दी. लेकिन खेल का असली ड्रामा तो इसके ठीक बाद शुरू हुआ. डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपनी पुरानी आदत से बाज नहीं आए. फीफा के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के मुताबिक ट्रॉफी सौंपने के बाद राष्ट्राध्यक्ष या मेहमान मंच छोड़ देते हैं ताकि विजेता खिलाड़ी खुलकर जीत का जश्न मना सके. वहीं दुनिया भर के फोटो और वीडियो जर्नलिस्ट ऐतिहासिक लम्हे को अपने कैमरे में कैद करने के लिए मौजूद रहते हैं. लेकिन ट्रंप ट्रॉफी देने के बाद भी सेंटर स्टेज पर ही डटे रहे. स्पेन के खिलाड़ी हैरान और असहज नजर आए कि आखिर जश्न मनाएं तो कैसे. स्पेन के कप्तान ने हाथ लगाकर ट्रंप को स्टेज से उतर जाने का इशारा किया. स्थिति को बिगड़ता देख फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो खुद आगे आए और किसी तरह ट्रंप को साइड में ले गए. ऐसा पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने ऐसा किया हो. ठीक एक साल पहले 2025 के फीफा क्लब विश्व कप में भी ट्रंप ने इसी स्टेडियम में ट्रॉफी सौंपने के बाद मंच छोड़ने से इनकार कर दिया था. चेल्सी ने 3-0 से जीत हासिल की थी. उस समय भी ट्रंप और जियानी ने ट्रॉफी प्रेजेंट की. ट्रंप स्टेज पर जमे रहे और खिलाड़ी ट्रॉफी उठाकर जश्न मनाने लगे. खेल हो या राजनीति, डोनाल्ड ट्रंप को लाइमलाइट में रहने की पुरानी आदत है. भले ही फीफा ने मेजबान देश के राष्ट्रपति होने के नाते उन्हें खास मौका दिया हो, लेकिन विश्व कप के इस महामंच पर ट्रंप ने अपनी आदत से सुर्खियां बटोर ली। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
5: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: बीजेपी प्रदर्शनकारियों ने जेपी नड्डा से किया मुलाकात। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ रखी 3 मांगे। कहा सरकार हमारी बातों पर करेगी विचार। केरल हाउस के करीब प्रदर्शन शिफ्ट। दिल्ली में हालात सामान्य। बच्ची से मारपीट और 50 लोगों के घायल होने की खबर का पुलिस ने खंडन किया। राहुल गांधी का सरकार पर हमला। पुलिस को भी चेताया। संसद का मानसून सत्र के पहले दिन ही मूसलाधार सियासत। दोनों ही सदनों में जोरदार हंगामा। संकट के बीच शाह धर्मेंद्र प्रधान के बीच मैराथन बातचीत। चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। सीजेआई ने दिया आदेश। एसआईटी का हो पुनर्गठन। सीनियर अधिकारी की अगुवाई में हो जांच। अब अगले हफ्ते हियरिंग। और उत्तर से पूर्व तक कुदरत का कहर। असम के जोरहाट शिवसागर में भीषण तबाही। पुंछ में लैंडस्लाइड से 7 की मौत। अमरनाथ यात्रा आज और कल के लिए भी स्थगित।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

दिल्ली के जंतर मंतर पर पुलिस ने कांग्रेस जनता पार्टी समर्थकों को हटाया। सीटीपी बोली नियतों को पीटा गया। संसद मार्च में भी लाठीचार्ज। संसद भवन से पहले रेल भवन पर रोका गया था मार्च। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने छोड़े थे आंसू गैस के गोले। प्रदर्शनकारियों के साथ कुछ संसद कर रहे सपा सांसदों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। डिंपल यादव ने कार्रवाई का विरोध करते हुए इसे गलत बताया। सोना वांगचुक बोले अनशन नहीं तोड़ूंगा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है। दिल्ली हाईकोर्ट सोना वांगचुक की पत्नी गीतांजलि की याचिका पर सुनवाई को तैयार है। वांगचुक की हेल्थ रिपोर्ट मांगी गई। 21 जुलाई को फिर से सुनवाई। पिपली के खिलाफ सीजेपी के प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय मंत्री नड्डा से मुलाकात की। बोले सुबह आया था बातचीत का प्रस्ताव। अच्छे माहौल में हुई बात। धरना खत्म करने की अपील की गई। जेपी नड्डा से मिले सीजेपी के प्रतिनिधि सौरभ दास बोले ठोस आश्वासन नहीं मिला है। 3 मांगों को पूरा करने का ज्ञापन सौंपा गया है। सीजेपी ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई और साथ ही नीट 2026 के जिन अभ्यर्थियों ने आत्महत्या की उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की मुआवजा देने की मांग की। भारी हंगामे के बाद अब दिल्ली में हालात लगभग सामान्य है। बच्चों से मारपीट और 50 लोगों के घायल होने की खबरों का पुलिस ने खंडन किया। सीजेपी के प्रोटेस्ट को राहुल गांधी का सरकार पर हमला। बोले मोदी युवाओं के सबसे बड़े विरोधी हैं। पेपर लीक करने वाले अपराधी आजादी से घूम रहे हैं। एक का भी इस्तीफा नहीं लिया गया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल उठाए। बोले प्रदर्शनकारियों के साथ दुश्मन देश के लोगों जैसा व्यवहार किया गया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से युवाओं की बात सुनने और प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज नहीं करने के आग्रह किया। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक की हालत स्थिर है लेकिन ब्लड शुगर कम है, डॉक्टर्स ने जानकारी दी। सीजेपी के प्रदर्शन में हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने की हाई लेवल मीटिंग। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। संसद में आज सुबह 9:30 बजे एनडीए की मंगल मिलन नाम से बैठक है। संसद की रणनीति पर चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होगी एनडीए की मंगल मिलन बैठक। एनसीपीआई के नए राज्यसभा सांसदों का होगा स्वागत। मॉनसून सत्र के पहले दिन मूसलाधार सियासत। पेपर लीक और चढ़ावा चोरी पर बरसा विपक्ष। भारी हंगामे के दौरान दोनों ही सदन स्थगित किए गए। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले जंतर मंतर पर लाठीचार्ज से बच्चों की आवाज दबा रही है सरकार। चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टल गई है। सीजीआई ने एसआईटी के पुनर्गठन का आदेश दिया। सीनियर अधिकारी की अगुवाई में जांच हो, अब अगले हफ्ते सुनवाई। आज सीएम योगी का बहराइच श्रावस्ती का दौरा। 748 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र भी हंगामेदार रहा। विपक्ष ने नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। विपक्षी सदस्यों ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा परीक्षाओं में लगातार हो रही अनियमितताओं की नैतिक जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए। आरजेडी के नेताओं ने एनटीए को भंग करने की भी मांग उठाई। बोले एजेंसी छात्रों पर भरोसा कायम करने में विफल रही है और परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार की जरूरत है। बिहार विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 87,000 करोड़ से ज्यादा का बजट सदन में पेश। उपमुख्यमंत्री का ब्यौरा दिया गया। मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा पहुंचे जेडीयू के विधायक अनंत सिंह। निशांत कुमार के बर्थडे पर दी बधाई। कहा जाएंगे जन्मदिन में। बिहार विधानसभा में सरकारी मॉडल स्कूलों का रंग भगवा किए जाने पर गुस्साई सियासत। विपक्ष ने सम्राट सरकार पर जमकर हमला बोला। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के सम्राट सरकार का घेराव करते हुए कहा कि स्कूलों का भगवाकरण ठीक नहीं है। शिक्षा मंत्री ज्यादा करेंगे तो हम लोग उनका सब चिट्ठा खोल देंगे। एआईएमएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बिहार सरकार का घेराव करते हुए कहा एक सेक्युलर स्टेट में इसकी इजाजत नहीं होगी कि धर्म का प्रचार किया जाए। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने विपक्ष के बयान पर पलटवार किया। बोले विपक्ष के कहने से हम मॉडल स्कूल को चरवाहा स्कूल नहीं बना देंगे। त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ की संदिग्ध मौत हुई। पुलिस मुख्यालय में मिला शव। शुरुआती जांच में सर्विस पिस्तौल से आत्महत्या का मामला। एमपी विधानसभा में मानसून सत्र के पहले ही दिन हंगामा। विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरा। सदन में विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। कांग्रेस ने खाद की किल्लत, मूंग खरीदी और कर्ज माफी के बड़े मुद्दे उठाए। नुक्कड़ नाटकों के जरिए प्रदर्शन कर सरकार पर किसानों की अनदेखी के आरोप लगाए। कांग्रेस विधायक सीएम मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और एमपी के कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना के मुखौटे पहनकर सदन में पहुंचे थे। जमकर नारेबाजी की गई। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने उज्जैन में जमीन खरीद को लेकर चर्चा किए गए स्थगन प्रस्ताव पर बोले इस पूरे मामले में स्पष्टीकरण आना चाहिए। वाराणसी में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी ने फूका पुतला बताया। जारी रहेगा ये प्रदर्शन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को मिलेगा लोकमान्य तिलक पुरस्कार। 1 अगस्त को पुणे में आयोजित समारोह में गृहमंत्री शाह देंगे देश की सुरक्षा में कूटनीतिक योगदान का सम्मान।
जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग तेज हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रदर्शन किया, सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। आज दिल्ली में किसान घाट पर किसान महापंचायत, भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में सैकड़ों की तादाद में पंजाब से दिल्ली पहुंच रहे किसान। भारत में डेंगू की पहली वैक्सीन को मिली है मंजूरी, 4 साल से 60 वर्ष की उम्र वालों को लगेंगी 2 डोज, टीकाकरण से पहले नहीं होगी किसी भी तरह की जांच की जरूरत। पहलगाम में सीआरपीएफ ने गर्भवती महिला की बचाई जान, समय पर अस्पताल पहुंचाने से डिलीवरी सुरक्षित हुई। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, करगिल में बादल फटने से तबाही, फ्लैश फ्लड में पेड़, वाहन और खेत भी बहे, बाढ़ बारिश से अब तक 12 लोगों की जान गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भूस्खलन से मिट्टी का घर ढहा, मलबे में दबने 60 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भारी बारिश के कारण जम्मू श्रीनगर NH 44 पर यातायात बाधित हुआ, अधिकारियों ने यात्रियों से जोखिम भरे मार्गों से बचने की अपील की। जम्मू कश्मीर में 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया, लोगों से नदी किनारे से दूर रहने की अपील की गई। भारी बारिश के बीच जम्मू और भद्रवाह हाईवे पर बड़ा हादसा, चलती गाड़ी पर गिर गए थे बोल्डर, बस समेत कई वाहन चपेट में आए, 2 की मौत और कई घायल। श्रीनगर में भी जोरदार बारिश के बाद कई इलाकों में भर गया पानी, रिहायशी इलाकों और दुकानों में घुसा बाढ़ का पानी। राजौरी में भारी बारिश के बाद नदी में फंस गए थे मवेशी, लोगों ने रेस्क्यू किया, प्रशासन की लोगों से नदी के किनारे न जाने की अपील। असम के जोरहाट में भी भारी बारिश की वजह से लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ा, कई इलाके जलमग्न है, आवाज पानी की बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। जोरहाट के अलावा शिवसागर और चराईदेव भी बाढ़ से प्रभावित हुए प्रमुख, और उनकी सहायक नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से कई गांव जलमग्न। उत्तराखंड के देहरादून हरिद्वार में टेहरी में भारी बारिश का रेड अलर्ट, तपकेश्वर मंदिर के पास तमसा नदी में उफान, मंदिर परिसर जलमग्न, भारी बारिश के चलते स्कूल बंद। लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए चारधाम यात्रा पर अगले आदेशों तक रोक, और बारिश और भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे जगह जगह बंद। यूपी के 37 जिलों में तेज आंधी, गरज चमक और बारिश के साथ रेड अलर्ट की चेतावनी, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। यूपी के बलरामपुर में पहली बारिश में खुल गई है तैयारियों के पोल, सड़कें बन गई है तालाब, घरों और दुकानों में घुसा पानी। फिरोजाबाद में झमाझम बारिश के बाद जल भरा, प्रमुख सड़कें डूबी, अस्पताल और रेलवे स्टेशन पर लोग परेशान, स्कूलों में भी छुट्टी की घोषणा। धनबाद में मूसलाधार बारिश से निचले इलाकों में और मुख्य सड़कों पर जल भरा, कई स्कूली बच्चे परीक्षा देने से वंचित रहे। पटना में भारी बारिश के बाद अस्पताल में घुसा पानी, मरीजों की बड़ी परेशानी, कई विभाग जलमग्न हुए, ऑर्थो विभाग में सांप देखे जाने से हड़कंप। मोतिहारी में नेपाल से छोड़े गए पानी से आई है बाढ़, नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके पानी में डूबे। लखनऊ के जवाहर भवन की 4th मंजिल पर कैंटीन में भीषण आग लगी थी, 15 दमकल की गाड़ियों ने काबू पाया, कोई हताहत नहीं। पुणे में इलेक्ट्रिक स्कूटर में चार्जिंग के दौरान भीषण आग लगी, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बारिश के दौरान ट्रक और कार में जोरदार टक्कर हुई, दुर्घटना में 3 लोगों के घायल होने की खबर। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में चलते ट्रक का ब्रेक फेल हो गया था, पिकअप पर स्कूटी को टक्कर मारी, हादसे में कई लोग घायल, लंबा जाम लगा। गुरुग्राम में रिटायर्ड एयर मार्शल से 2 करोड़ 68 लाख रुपए की ठगी का भंडाफोड़ हुआ, दुबई से चल रहा था नेटवर्क, 6 की गिरफ्तारी। जलंधर में ट्रैक्टर ट्रॉली ने साइकिल सवार को कुचल डाला, हादसे में शख्स की मौके पर ही मौत हुई। राजस्थान के टोंक में शराब के ठेके में घुस गया था तेंदुआ, अफरा तफरी मची, अचानक से हमला कर पूरा वाकया ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। समस्तीपुर में एक तरफा प्यार में छात्रा की हत्या, धमकी देने के अगले ही दिन युवक ने गोली मारी, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने थाना घेराव किया। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर की गुल्लक तोड़कर चोरी, चोरों ने नोटों से भरे हुए बैग को उड़ाया। सवाईमाधोपुर में दवा वापस नहीं लेने पर विवाद, ग्राहक ने मेडिकल संचालक पर किया कैंची से हमला, दुकानदार घायल हुआ। गुजरात के आणंद में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी सुरेश परमार की पुलिस मुठभेड़ में मौत हुई, आरोपी ने हिरासत से भागने के दौरान पुलिस पर चाकू से हमला बोला था। गुजरात के जामनगर में फैक्ट्री में कामकाज के दौरान भट्टी में विस्फोट हुआ, 3 मजदूर झुलस गए, 2 की हालत गंभीर। गुजरात के जूनागढ़ में अवैध बायोडीजल रैकेट का भंडाफोड़, नगर निगम ने 3 ठिकानों पर छापेमारी करके 2 करोड़ 13 लाख रुपए का अवैध बायोडीजल जब्त किया, 8 की गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में खाद्य विभाग और पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गाय भैंस के तबेले में प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की 612 बॉटल्स जब्त। महाराष्ट्र के कल्याण में बोरे में मिली युवक की सड़ी गली लाश, हत्या की जांच में पुलिस जुटी है। शिरडी में फल विक्रेता की चाकू कूद कर हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने पुरानी रंजिश के चलते हत्या की आशंका जताई। अहमदाबाद की गुमा में तेंदुए की दस्तक से लोगों में दहशत, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें, वन विभाग ने सर्च ऑपरेशन जारी किया। वडोदरा में नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी सलीम गिरफ्तार, 1 लाख फिरौती मांगने का आरोप है। फिल्म रामायण में जटायु के किरदार में नजर आएंगे अनुपम खेर, रावण के साथ युद्ध करते नजर आएंगे। 8 अगस्त को बेंगलुरु में होगा फिल्म टॉक्सिक का ट्रेलर जारी, 26 अगस्त को फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
दो ओडिसी का बॉक्स ऑफिस पर उठा तूफान, तीसरे दिन भी डबल डिजिट में कमाई 60 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन। आप लोगों की तबीयत कैसी है, सलमान खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, बीमार होने की खबरों को खंडित किया। तारक मेहता के निर्माता आसिफ मोदी ने त्रियुगी नारायण मंदिर में शिव पार्वती विवाह स्थल पर विशेष पूजा अर्चना की, पुत्र के विवाह के लिए पौराणिक स्थल भी देखा। रेस्टोरेंट बिल में बिना समिति के सर्विस चार्ज जोड़ने पर सीसीपीए ने 41 रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की है। गाइडलाइंस के मुताबिक सर्विस चार्ज स्वैच्छिक है, जबरदस्ती नहीं वसूला जा सकता। फीफा वर्ल्ड कप के दौरान देश में स्पोर्ट्स वेयर, स्नैक्स और ड्रिंक्स की बिक्री ने रिकॉर्ड तोड़े। लाइव स्ट्रीमिंग वाले बार पब्स में जोरदार बुकिंग से 1500 से 10,000 में बिके टिकट्स। वैश्विक बाजार में ब्रेंट क्रूड $91 प्रति बैरल के पार पहुंचा है, डीजल के दाम बढ़ने की आशंका। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों से जुलाई में अब तक 22,868 करोड़ का शुद्ध निवेश किया। अप्रैल जून तिमाही में चाइनीज ब्रांड्स की बाजार हिस्सेदारी घटकर 18% पर लुढ़क गई है। ईरान युद्ध पर न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर, घायल सैनिकों की संख्या सार्वजनिक नहीं कर रहा अमेरिका। रिपोर्ट के मुताबिक हमलों में कई अमेरिकी सैनिक हुए जख्मी, कई हेलीकॉप्टर भी हुए तबाह, लेकिन पेंटागन ने नहीं दी जानकारी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान, कहा अमेरिका ईरान के साथ बातचीत के लिए तैयार है लेकिन कूटनीति गंभीर और भरोसेमंद होने चाहिए। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी का ऐलान किया, कहा फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो। रूस ने यूक्रेन के जापोरिजिया क्षेत्र पर भीषण हमला बोला, 3 लोगों की मौत, 45 लोग घायल हुए, घायलों में 8 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन ने रूस को पहुंचाया बड़ा नुकसान, यूक्रेन का दावा, बीते रात हुए हमले में ब्लैक सी और आजोब सागर में रूस के 7 जहाजों पर किया गया ड्रोन से हमला। रूसी विदेश मंत्री सर्गे लावरोव ने मॉस्को में उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री चोई सून से मुलाकात की, दोनों ही नेताओं के बीच रिश्तों को मजबूत करने पर बात। एंडी बर्नहैम बने हैं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री, के स्टामर की जगह संभाला है पद, किंग चार्ल्स की सहमति के बाद बने प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बनते ही कहा, मैं यूक्रेन के राष्ट्रपति को कहना चाहता हूं यूक्रेन को नहीं रुकेगी ब्रिटेन की मदद। एंडी बर्नहैम के पीएम बनने के बाद ब्रिटिश सरकार में लगी इस्तीफों की झड़ी, ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली ने दिया अपने पद से इस्तीफा, साथ ही वित्त मंत्री रेचल रीव्स ने भी सरकार से अपने, तो उप प्रधानमंत्री डेविड लेमी ने भी अपना पद छोड़ा। गजा पर हुआ इसराइल का बड़ा हमला, अल जाला स्ट्रीट पर हुए हमले में 14 लोग हुए घायल, इजरायली सेना का दावा, इलाके में हमास के एक सदस्य को बनाया गया था निशाना। फिलीपींस का चीन पर बड़ा आरोप, दक्षिण चीन सागर के विवादित शोल में चीनी कोस्ट गार्ड के जवानों ने एक फिलीपीनी नौसैनिक बोट पर डंडों से हमला बोला था।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का संसद मार्च दिखाएंगे। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन दिल्ली की सड़कों पर हंगामा, लाठीचार्ज, धक्का मुक्की देखने को मिली। पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और परीक्षा सुधारों की मांग को लेकर जंतर मंतर पर सुबह से ही प्रदर्शनकारी जुटने लगे थे। जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन की ओर बढ़ने की कोशिश की, पुलिस के साथ उनकी तीखी झड़प हुई। इस दौरान बैरिकेड्स तोड़े गए, जिसके जवाब में पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और लाठी चार्ज करना पड़ा। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। दिन भर चले इस हंगामे और टकराव के बीच एक बड़ी खबर यह आई कि सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत का रास्ता खुल गया। आज आपको इस प्रदर्शन का एक विस्तृत विश्लेषण दिखाएंगे। आखिर सरकार किस बात पर मानी है और किस बात पर अभी भी ठनी है। इसके बाद आपको अमेरिका और ईरान की जंग के बारे में बताएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर वर्चस्व की जंग अब महायुद्ध का रूप ले चुकी है। पिछले 9 दिनों से ईरान के ठिकानों पर अमेरिकी सेना लगातार बम बरसा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख से लग रहा है कि वो इस बार ईरान की सैन्य ताकत, उसके आर्थिक आधार को पूरी तरह खत्म करेंगे। दूसरी तरफ ईरान ने भी खाड़ी देशों में मौजूदा जो अमेरिकी ठिकाने हैं उन पर जबरदस्त पलटवार किया है। आखिर में आपको बताएंगे कि फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में स्पेन की जीत पर गाजा से लेकर पाकिस्तान तक तमाम मुस्लिम आबादी जश्न क्यों मना रही है, और आखिर क्यों स्पेन बनाम अर्जेंटीना का ये मुकाबला इसराइल बनाम फिलिस्तीन की जंग में बदल गया है, दो विचारधाराओं की लड़ाई बन गया है। लेकिन सबसे पहले जंतर मंतर, जहां से आई ये तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं, जहां सिर्फ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें एएनआई ने आज शाम को उस वक्त जारी की जब कॉकरोच जनता पार्टी ने यह बताया कि इस वक्त वो केरला हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केरला हाउस भी जंतर मंतर से ज्यादा दूर नहीं है और यहां से भी संसद भवन की दूरी सिर्फ 1.5 किलोमीटर है, लेकिन दावा है कि जंतर मंतर फिलहाल के लिए खाली हो चुका है। ये तस्वीरें दोनों समझिए, जो तस्वीरें आज शाम को वहां से आई है, ये केरला हाउस के बाहर की, वो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और उससे पहले कि ये तस्वीर देखिए, जो जंतर मंतर की आज शाम की तस्वीर है, देखिए।

0: एक साथ बोल रहा हूं मैं।
1: तो दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, आज हम आपको विस्तृत तरीके से बताएंगे आज सुबह से क्या कुछ हुआ है। लेकिन ये शाम की तस्वीरें जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं, एक तरफ वो जंतर मंतर जो अब खाली दिख रहा है और दूसरी तरफ केरला हाउस के बाहर जहां पर प्रदर्शन अब भी चल रहा है। इससे पहले कांग्रेस जनता पार्टी ने ऐलान किया था कि वो अपनी मांगों को लेकर संसद तक एक मार्च निकालेगी, जिसे संसद चलो का नाम भी दिया गया था। इस मार्च के लिए आज का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा था। हालांकि दिल्ली पुलिस का दावा है कि इस मार्च के लिए ना तो अनुमति मांगी गई थी और ना ही अनुमति दी गई थी, ऐसा दिल्ली पुलिस का दावा है। यह अनुमति इसलिए जरूरी होती है ताकि प्रशासन कानून व्यवस्था, सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन सबको सुनिश्चित कर सके और बाकी लोगों को इससे परेशानी ना हो। इस मामले में दिल्ली पुलिस का दावा है कि कांग्रेस जनता पार्टी ने कभी भी संसद मार्च के लिए उसकी अनुमति नहीं मांगी, जिसके कारण उसने प्रदर्शन कर रहे लोगों की भीड़ को रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए। यहां यह जानना भी जरूरी है कि कांग्रेस जनता पार्टी ने खुद अब तक दिल्ली पुलिस के इन दावों पर कुछ नहीं कहा है। अगर ये पार्टी आगे कहती है कि उसने दिल्ली पुलिस से इस मार्च की अनुमति ली थी तो हम इसके बारे में आपको जरूर बताएंगे, लेकिन अभी तक जो तस्वीर है उसमें अनुमति को लेकर क्लैरिटी नहीं है। जो जानकारी आई है और दिल्ली पुलिस के दावे हैं उनके मुताबिक ये अनुमति नहीं ली गई थी। तो ये हो गई पहली बात। एएनआई के मुताबिक सुबह 8 बजे से जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी और इसीलिए हमने ये तय किया कि हम आपको समय के हिसाब से जब जब जो कुछ हुआ है वो बताएं। देखिए 9 बजे का वक्त था, ज्यादातर लोग संसद मार्च में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जिनकी मुख्य रूप से 4 मांगे थी। पेपर लीक के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, पेपर लीक मामलों की जवाबदेही, परीक्षा व्यवस्था में जरूरी सुधार और जिन छात्रों ने पेपर लीक के कारण आत्महत्या की है उन्हें न्याय मिले, उन्हें मुआवजा दिलाना। कांग्रेस जनता पार्टी का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने उसके ऐसे सभी समर्थकों को जंतर मंतर पर पहुंचने से ही रोक दिया जो संसद मार्च में शामिल होना चाहते थे। एएनआई ने सुबह 9:02 पर यह बताया कि इस विरोध प्रदर्शन के कारण कुल 5 मेट्रो स्टेशन के दरवाजों को बंद कर दिया गया है। अब ये कौन से थे आप सोचिए, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक, सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन, सब शामिल थे बंद। इन सभी स्टेशनों पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ दिखी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हुआ कि इनमें कितने लोग संसद मार्च में शामिल होने आए थे और कितने लोग अपने दफ्तर जाने के लिए वहां पर खड़े थे। हालांकि कांग्रेस जनता पार्टी ने कुछ वीडियो जारी किए जिनमें यह बताया गया कि ये सारी भीड़ जंतर मंतर पर आ रही थी, जिसे रोकने के लिए इन सभी मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया, उनका यह दावा था। देखिए तो 9:30 बजे तक ये संसद मार्च शुरू नहीं हुआ था। कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थक दिल्ली पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स के पास आकर खड़े हो गए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस उनसे अपील कर रही थी। दिल्ली पुलिस कह रही थी कि वो अपने इस मार्च को अभी के लिए स्थगित कर दे। देखिए आज संसद का मॉनसून सत्र का पहला दिन था। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो जंतर मंतर से नए संसद भवन की दूरी कितनी है, सिर्फ 1.5 किलोमीटर, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं। और कांग्रेस जनता पार्टी की योजना यही थी कि वो 1.5 किलोमीटर लंबा एक मार्च निकालेंगे और पेपर लीक के मुद्दे पर अपनी आवाज उठाएंगे। जैसे ही प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ने लगे उन्हें रोकने की कोशिश की गई। सबसे पहले जंतर मंतर के पास लगे बैरिकेड को हटाया गया और इसके बाद कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। दिल्ली पुलिस का आरोप है। उनका यह आरोप है कि शास्त्री भवन के पास कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। सिलसिलेवार ढंग से वक्त के हिसाब से जो कुछ हुआ है, जो दावे दोनों तरफ के हम आपको दिखा रहे हैं। आगे बताइए, कुछ इलाकों में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे प्रदर्शनकारियों के बीच भगदड़ जैसी स्थिति मच गई। कांग्रेस जनता पार्टी का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाल रहे उनके समर्थकों पर जानबूझकर आंसू गैस के गोले दागे, लाठियां चलाई। दिल्ली पुलिस का लेकिन दावा है कि उसने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कार्रवाई की, और जब भी कोई हिंसा पर उतारू होता या फिर जवाबी कार्रवाई में पुलिस पर ही हमला करता, तब स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उसने कदम उठाए। हमारे पास एएनआई का वो वीडियो भी है जो उसने 10:20 पर पोस्ट किया। इस वीडियो में क्या दिख रहा है? रैपिड एक्शन फोर्स के जवान प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर बल प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, ये आपके सामने है। और इन तस्वीरों से पता चलता है कि सुबह 10 बजे जब ये संसद मार्च शुरू हुआ, तब से टकराव की स्थिति बन गई थी। और हमारे पास जो तस्वीरें आए हैं वो क्या दिखा रही हैं, देखिए।
2: जब ये जो प्रोटेस्टर है वो नियंत्रण खो रहे हैं उसके बाद, और अब चारों तरफ से अगर ये पूरा जो इलाका देखेंगे तो चारों तरफ से अब जो बस पे लोग खड़े गए थे उनको उतारने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। अब ये देखिए, अभी अभी जो टीयर गैस की एक टीयर सेल छोड़ी गई, ये देखिए, ये दूसरी टीयर सेल आपको छोड़ी हुई आपको दिखाई दे रही है। इस तरीके से जो आंसू गैस के गोले हैं वो यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं भीड़ को तितर बितर करने के लिए। ये सीधी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और ये देखिए, अब ये पत्थर भी, पत्थर रितेश मिश्रा आप देखेंगे, ये देखिए ये जूते पर पत्थर, वो पत्थरबाजी यहाँ पर हो रही है, और इस तरीके से टीयर गैस की सेल यहाँ पर छोड़ी जा रही है।
1: तो हमारे सहयोगी की लाइव रिपोर्टिंग के दौरान जो पत्थर आए वो आपने देखे, वहीं दूसरी तरफ आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे वो भी आपने देखा। दावा है कि कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थक आज संसद भवन तक पहुंचने में कामयाब हो गए, जिसके बाद संसद भवन के गेट को बंद कर दिया गया और संसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई। ये भी तब हुआ जब संसद भवन के अंदर सरकार और विपक्ष के सांसद मौजूद थे और बाहर तनावपूर्ण हालात बने हुए थे। उस वक्त हमारे जो रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो में रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनका कहना है कि प्रदर्शनकारियों का एक समूह संसद मार्ग के बहुत नजदीक था और वहां इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया, लेकिन इस दावे की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या ये प्रदर्शनकारी संसद भवन के अंदर प्रवेश करने में कामयाब हुए थे या फिर नहीं। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने दोपहर 2:51 पर यह दावा किया कि इस मार्च में गीतांजलि जी के बाल खींचे गए और एक 12 साल की बच्ची के साथ मारपीट हुई। यहां कई लोगों ने गीतांजलि जी का मतलब सोनम बांगचुक की पत्नी से भी जोड़ा, और कारण यही था कि उनका नाम भी गीतांजलि है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन दावों को पूरी तरह खारिज किया, कहा कि इस तरह की सभी खबरें झूठी हैं और ये खबरें भ्रामक हैं, लोग इन झूठी खबरों पर विश्वास ना करें, ये दिल्ली पुलिस ने कहा। देखिए,
3: जनपद रोड पर हूं जो कि जंतर मंतर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है, लेकिन ये आसपास का दायरा उन प्रदर्शनकारियों से भरा हुआ है जो बड़ी संख्या में अब आगे जंतर मंतर की ओर बढ़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मार्च को अनुमति नहीं दी है, जंतर मंतर पर जाने की तो अनुमति है लेकिन बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन इस बीच ये भारी जो संख्या दिख रही है ये सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों में है।
4: नारेबाजी कर रहे हैं, सीजेपी ने जो मार्च का आह्वान किया था, तो यहाँ पे जो पूरी सिक्योरिटी है वो एक तरफ
3: संसद भवन के पास तक बहुत सारे जो कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हालांकि पुलिस की पूरी तरीके से यहाँ पर बंदोबस्त किया गया है और पुलिस ने बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा रखा है और सारे लोगों को यहाँ पर रोका हुआ है। तेज बरसात हो रही है लेकिन उसके बावजूद प्रदर्शनकारी भी आउटर सर्कल पर जो है रुके हुए हैं और उन्होंने क्या किया कि आउटर सर्कल का पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया है। इसी के साथ साथ राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का जो इलाका है चूंकि बंद है तो उसके बाहर भी कई भारी संख्या में वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं।
5: आप देख सकते हैं राइट कंट्रोल व्हीकल के अंदर जो कैनिस्टर्स हैं वो भरे जा रहे हैं। तो आप यहीं से समझ गए होंगे कि इस समय जो केंद्रीय दिल्ली का दिल जिसे कनॉट प्लेस कहा जाता है वहां इस समय क्या कार्यवाही चल रही है। मार्केट के अंदर जा जाकर जो CGP के धरना प्रदर्शन करने वाले लोग हैं कांग्रेस जनता पार्टी के उनको पकड़ा जा रहा है, उनको खदेड़ा जा रहा है।
1: इस बीच ANI ने कुछ वीडियो जारी किए हैं जिनके आधार पर दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पत्थरबाजी करने की बात की है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की और इस पत्थरबाजी में घायल हुए एक सब इंस्पेक्टर का यह भी आरोप है कि जब वो बैरिकेड के पास भीड़ को रोकने का प्रयास कर रहे थे तब जानबूझकर उन पर पत्थर फेंके गए जिनमें वो घायल हो गए। देखिए

0: संसद मार्च की शुरुआत कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के भाषण से हुई थी, जो उन्होंने सुबह 8 बजे दिया था। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे 2 घंटे पहले सुबह करीब 6 बजे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास का दावा है कि दिल्ली पुलिस ने उनसे संपर्क किया था। सुबह 10:48 पर ANI ने बताया कि सौरभ दास को डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर लाया गया था और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार से बातचीत चल रही है। सुबह 11:45 पर यह खबर आई कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा अपने आवास पर सौरभ दास और आशुतोष रांका से मुलाकात करने वाले हैं और यहां आशुतोष रांका भी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बड़ी बात यह है कि जब यह खबर आई तब उसके 1 घंटे बाद अभिजीत दीपके ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। दोपहर 12:50 पर यह तस्वीरें आई जिनमें अभिजीत दीपके ने मंच से अपनी भूख हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया और वो करते हुए नजर भी गए। और कॉकरोच जनता पार्टी का दावा है कि सोनम वांगचुक ने खुद ही अपील की थी कि अभिजीत दीपके अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दे और उसी के बाद ये फैसला हुआ। देखिए, पहले 18 जुलाई को जब दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था तब अभिजीत दीपके ने ऐलान किया था कि अब वो सोनम वांगचुक की जगह भूख हड़ताल करेंगे और आज 2 दिन बाद उन्होंने सोनम वांगचुक की ही अपील पर इस भूख हड़ताल को खत्म कर दिया। और बड़ी बात यह है कि इस भूख हड़ताल के खत्म होने के बाद दोपहर करीब 2 बजे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रंका से मुलाकात की है। खुद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने शाम 4:57 पर इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और ये बताया कि आज सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया और सुबह 11:50 से ही सरकार की कॉकरोच जनता पार्टी से बातचीत जारी है। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी का दावा है कि जब उन्होंने अपना लिखित ज्ञापन जेपी नड्डा को सौंपा तब उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि वो उनकी मांगों को सही स्तर पर पहुंचाएंगे और अभी उन्होंने उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया है।
1: हम 12 बजे के करीब लगभग नड्डा जी के रेजिडेंस पर आए थे, 2:15 के आसपास उनसे मीटिंग हुई। हमने 3 डिमांड्स रखी हैं। पहला, सोनम वांगचुक जी को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए और एक वीडियो के माध्यम से लोगों में वो अपना बात पहुंचा पाए, इस चीज को अलाउ किया जाए। दूसरी चीज, धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि एक नाकाबिल शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए या फिर उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए। और तीसरी डिमांड, जो भी नीट के पेपर लीक होने के बाद जिन स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली थी उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन दिया जाए। 2 राउंड की वार्ता हुई, 1 2 बजे के करीब और 1 अभी 4 बजे के करीब। नड्डा जी ने कहा है कि वो अपने सीनियर लीडरशिप से इस बारे में बात कर रहे हैं और आगे जो भी बात रहेगी उनकी तरफ से उन्हें कम्युनिकेट किया जाएगा। आश्वासन तो बस यही मिला है कि वो अपनी सीनियर लीडरशिप से इस बारे में बात करेंगे और जो भी उधर से बात होती है उसका नतीजा आप लोगों के साथ जल्द शेयर किया जाएगा।
0: तो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ये बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने उन्हें ये आश्वासन दिया है कि वो अपनी पार्टी के अंदर वर्चस्व जो वरिष्ठ नेता हैं और जो डिसीजन मेकर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे और फिर मामला आगे बढ़ेगा। इधर दिल्ली पुलिस ने भी सभी प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने, कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। क्या कहा है ये सुनिए।
2: दिल्ली पुलिस सभी प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने और शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील करती है। सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध है कि वे कृपया शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें, किसी भी गैरकानूनी या हिंसक गतिविधि में शामिल न हों और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा दिए गए कानूनी निर्देशों का पालन करें। जनता को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अफवाहों, गलत जानकारी या अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें और न ही उन्हें फैलाएं। नागरिकों से अनुरोध है कि वे जानकारी के विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करें और शांति, सद्भाव व कानून व्यवस्था बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। धन्यवाद।
0: कांग्रेस जनता पार्टी का दावा है कि संसद मार्च में सोनम बांगचुक भी शामिल होना चाहते थे। सफदरजंग अस्पताल में भर्ती सोनम बांगचुक ने हाथ से लिखी एक चिट्ठी जारी की, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि अब वो स्वस्थ है और उन्हें संसद मार्च में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए और कम से कम अस्थायी रूप से डिस्चार्ज करके ऐसा किया जाए। हालांकि इससे पहले सुबह करीब ये चिट्ठी उन्होंने अभी लिखी है, जिसमें आई विल कंटिन्यू माई फास्ट भी उन्होंने लिखा है, 23वें दिन का जिक्र किया है। लेकिन इससे पहले सुबह करीब 10 बजे सफदरजंग अस्पताल ने सोनम बागचुक का एक मेडिकल बुलेटिन जारी किया, जिसमें यह बताया गया था कि उनका स्वास्थ्य स्थिर है, लेकिन उन्हें अब भी डॉक्टर्स की निगरानी में रखना जरूरी है। इसके अलावा सोनम बागचुक की पत्नी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें यह मांग की गई है कि सोनम बागचुक को उनकी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने की छूट दी जाए, जिस पर हाईकोर्ट ने आज सुनवाई भी की। और यह कहा हाईकोर्ट ने कि वो कल इस मामले में फिर से सुनवाई करेगा, जब सोनम बागचुक की मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। वैसे सोनम बागचुक ने आज शाम को एक और चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने अस्पताल में भर्ती रहते हुए अपने अनशन को जारी रखने का ऐलान किया है। और उन्होंने ये चिट्ठी, जिसकी मैं चर्चा कर रही थी, ये चिट्ठी उन्होंने लिखी है और इसको पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आई विल कंटिन्यू माई फास्ट। और उन्होंने इस बारे में पूरे आरोप लगाते हुए कि जो आज प्रदर्शनकारियों के साथ किया गया है, उसकी वजह से वो इस अनशन को जारी रखना चाहते हैं। सीइंग द ब्रूटैलिटी, जैसा कि आप ये चिट्ठी देख रहे हैं। यहाँ ये भी देखिए कि आज कई विपक्षी नेता इस मार्च से पहले कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए जंतर मंतर पर पहुंचे और उन्होंने साथ दिया। आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, संजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लिना शामिल हुई, जबकि टीएमसी की तरफ से कीर्ति आजाद, महुआ मोइत्रा और आजाद समाज पार्टी की तरफ से चंद्रशेखर आजाद जंतर मंतर पहुंचे। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थन में एक मार्च भी निकाला और इस दौरान अभिनेता प्रकाश राज, शबाना आजमी भी प्रदर्शनकारियों के साथ नजर आए। इसके बाद यह पूरा विरोध प्रदर्शन हुआ और इस पर संसद में काफी गतिरोध देखने को मिला। देखिए,
3: ये आंदोलन है, आवाज को सुने।

कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना 16 मई को तब हुई थी जब इससे 10 दिन पहले नीट परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। बाद में कॉकरोच जनता पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया और इसके संस्थापक अभिजीत दीप के 6 जून को अमेरिका से दिल्ली लौटे। शुरुआत में कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर सिर्फ एक दिन का विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन बाद में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर 28 जून से सोनम वांगचुक की हड़ताल वहां पर शुरू हुई। जब इस हड़ताल को 20 दिन से ज्यादा हो गए तब दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट का हवाला देते हुए सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया। अब भी कॉकरोच जनता पार्टी की सबसे बड़ी मांग यही है कि नीट पेपर लीक के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई हो और उन्हें पद से हटाया जाए। यहां यह भी देखिए कि धर्मेंद्र प्रधान वही नेता जो साल 2014 से एनडीए की केंद्र सरकार का हिस्सा है। साल 2014 से 2021 के बीच वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री रहे। 2021 से वो लगातार भारत के शिक्षा मंत्री हैं। यानी वो मौजूदा सरकार के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन पर लगातार जिनको मौका मिला सरकार में प्रतिनिधित्व रहा। और इसके पीछे एक कारण यह भी है कि जब 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लागू हुआ तब इसका श्रेय धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया क्योंकि उस वक्त पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे। धर्मेंद्र प्रधान एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता देवेंद्र प्रधान भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि होने के कारण धर्मेंद्र प्रधान पहले 1983 में बीजेपी की छात्र इकाई से जुड़े, बाद में ओडिशा बीजेपी के लिए संगठन स्तर पर वो काम करने लगे। बाद में बीजेपी में उनका कद इसलिए भी बढ़ता गया क्योंकि उन्होंने पार्टी को कई चुनाव जिताए, जैसे 2025 में बिहार, 24 में हरियाणा, 22 में उत्तर प्रदेश, 17 में उत्तराखंड, 16 में असम और 14 में झारखंड। विधानसभा और बिहार के लोकसभा का चुनाव बीजेपी ने जीता तब पार्टी ने चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान को ही नियुक्त किया था और इस वजह से उनका कद पार्टी में बढ़ता गया। 21 में धर्मेंद्र प्रधान पहली बार केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने और जब खराब स्वास्थ्य के कारण रमेश पोखरियाल निशंक को इस पद से हटाया गया था तब उन्होंने ये पद संभाला। पेपर लीक को लेकर अब वो विपक्ष के निशाने पर है और कॉकरोच जनता पार्टी जिन तीन मांगों को लेकर यह आंदोलन कर रही है उनमें एक मांग उनके इस्तीफे की भी शामिल है। खैर, इस विरोध प्रदर्शन के बीच हम आपसे कुछ और भी कहना चाहते हैं। जिस नीट का पेपर मई महीने में लीक हुआ था वो परीक्षा 21 जून को दोबारा कराई गई। इस बार इस परीक्षा में 20 लाख से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया था। 20 लाख का आंकड़ा कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता है। हमारे देश में हर साल लगभग 1 करोड़ छात्र 12वीं कक्षा पास करते हैं जिनमें लाखों बच्चे मेडिकल की पढ़ाई के लिए नीट की परीक्षा देते हैं। ये भी तब होता है जब ज्यादातर छात्रों को पता होता है कि अगर वो इस परीक्षा में पास हो भी गए तो भी शायद उन्हें किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे देश में मेडिकल की पढ़ाई के लिए उतनी सीटें हैं ही नहीं जितने बच्चे नीट की परीक्षा के लिए क्वालिफाई होते हैं। उदाहरण के लिए 4 दिन पहले जब 16 जुलाई को नीट का रिजल्ट आया तब यह परीक्षा 20 लाख से ज्यादा छात्रों ने दी थी, लेकिन जानते हैं इनमें से जो छात्र पास हुए उनकी संख्या 11,21,000 थी। इसका मतलब यह हुआ कि 9 लाख बच्चे तो परीक्षा देने के बाद क्वालिफाई नहीं कर पाए। जिन 11,21,000 छात्रों ने यह परीक्षा पास भी की उनमें भी लाखों छात्रों को किसी भी मेडिकल कॉलेज में शायद दाखिला नहीं मिले। कारण है हमारे देश में एमबीबीएस की कुल सीटें हैं 1,36,939, 63,296 सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की हैं, 73,643 सीटें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की हैं। यानी 11 लाख बच्चे नीट की परीक्षा में पास तो हुए लेकिन इनमें 1,36,000 छात्रों को ही एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला मिल पाएगा और बाकी के जो 9,86,000 छात्र बचेंगे उनके पास विकल्प होगा कि वो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की पढ़ाई करें या जो एनिमल हस्बेंड्री है जानवरों के डॉक्टर बनने की या आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी इनके डॉक्टर बने। इनमें भी असीमित सीटें नहीं है।

0: अगर क्वालिफाई कर भी जाते हैं तो इनमें से 9 लाख जो छात्र हैं उनके पास किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिले की गुंजाइश नहीं बनेगी क्योंकि इतनी मेडिकल सीट्स नहीं है। मौजूदा सरकार ने पिछले 12 सालों में MBBS की सीटें 54,000 से बढ़ाकर 1,36,000 तो की। मेडिकल कॉलेज की संख्या भी 381 से बढ़कर 883 हो गई है, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में हर साल 9 से 10 लाख छात्र नीट परीक्षा में पास होने के बाद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता। और सोचिए, जब पहले से सीटों के लिए इतना संघर्ष है, उस दौरान पेपर लीक हो तो छात्रों की जो मानसिक व्यथा है वो हम सब समझ सकते हैं। हमारे देश में कई गरीब छात्र ऐसे हैं जो नीट परीक्षा में 1,00,000 रैंक पाने के बाद भी डॉक्टर नहीं बन पाते, और कारण यह है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में कट ऑफ बहुत कम होती है, क्योंकि सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में MBBS की पढ़ाई का एक साल का खर्च 1,00,000 से भी कम होता है। प्राइवेट कॉलेजेस में यही खर्च जानते हैं कितना है, 30 से 40 लाख रुपए, से गरीब छात्रों के लिए मुमकिन ही नहीं है। अब यहां यह भी देखिए कि हमारे देश में अच्छे और समृद्ध परिवार के बच्चे भी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में पढ़कर डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि वहां सरकार उन्हें अच्छी शिक्षा देती है। वहां सरकार, और आप सोचिए, बड़े बड़े जो एम्स जैसे अस्पताल है वहां से अगर आप पढ़ते हैं तो जाहिर तौर पर आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ऐसे में जहां जहां सरकारी खर्च पर बच्चे पढ़ते हैं वहां सरकार द्वारा 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, जिसके कारण सरकारी कॉलेजेस में दाखिले के लिए एक बहुत कड़ा संघर्ष होता है। लेकिन इसी देश में जब सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई के लिए इतनी ज्यादा प्रतियोगिता है, वहीं सरकारी स्कूलों का हाल अच्छा नहीं। आज भी सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला कम हुआ, प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों का दाखिला बढ़ गया है। फीस आप देख ही रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स की क्या हालत है। सवाल उठता है कि जो सरकारी कॉलेजेस में अच्छी शिक्षा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती हैं, वही सरकारें सरकारी स्कूलों में ऐसा क्यों नहीं करती। आज नीट के इस मुद्दे पर संसद में भी खूब हंगामा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार प्रदर्शनकारियों की आवाज को दबा रही है। ये तस्वीरें आज के विरोध प्रदर्शन की भी देखिए, और जो संसद में हंगामा हुआ है वो भी देखिए।
1: नियमों के तहत पर्याप्त समय पर्याप्त मौका दूंगा, नारेबाजी करना तथ्या लेराना उचित नहीं है।
2: दिस पेपर लीक and neat examination ghotala and no chanda chori to hai hi hai sab uske samarthak udhar baithe hain lekin sir ye student ka mamla hai ye student ka mamla hai jo lakhon bachchon ki jo bhavishya hai unke bhavishya ke bare mein main baat kar raha hu aur uske liye aaj yahan jantar mantar pe हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही
0: है। इस पूरे हंगामे के बीच आज मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उस स्टार्टअप की बात की जिसने भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च किया है। प्राइवेट रॉकेट लॉन्च, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्टार्टअप में काम करने वाले युवाओं की औसत उम्र सिर्फ 28 साल है। उन्होंने यह भी कहा कि वो किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहे, बल्कि देश के 28 साल के उन नौजवानों की बात कर रहे हैं जो अंतरिक्ष में झंडा गाड़ रहे हैं। यानी यहां प्रधानमंत्री मोदी का निशाना विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर था जो 56 साल के। सुनिए,
3: भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है, बहुत बड़ी सफलता है, और ये जो स्काईरूट स्टार्टअप है उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश के ये स्टार्टअप ने 28 के एवरेज वाले नौजवानों ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया है, उनको तो बधाई है ही है। लेकिन ऐसी बातें जो हैं जो भारत को आत्मविश्वास से भर देती है, विश्व में भारत का प्रोफाइल

0: सर्वमान्य सर्वस्वीकृत बनता जाता है।
1: जिस स्टार्टअप ने भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया उसके संस्थापक पवन कुमार चंदाना है। उनकी कहानी आज आपको जरूर सुननी चाहिए। हैदराबाद में 1991 में 1991 में जन्मे पवन के लिए स्कूल की पढ़ाई आसान नहीं थी। गणित यानी मैथ्स में सिर्फ 51 अंक आए थे। ऐसा सुनते ही हम सब अपने बचपन के मैथ्स के मार्क्स याद करने लगते हैं, लेकिन किसने सोचा था कि 51 अंक मैथ्स में गणित में लाने वाले आगे जाकर भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च करेंगे। लेकिन ये हुआ, और इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने मेहनत की, पहले ही कोशिश में आईआईटी में दाखिले की परीक्षा पास कर ली। साल 2007 में उन्होंने आईआईटी खड़गपुर में प्रवेश लिया, जहां उनके कई साथी विदेशों में आकर्षक नौकरियों का सपना देख रहे थे। पवन के मन में एक सपना था, रॉकेट बनाना। साल 2012 में पढ़ाई पूरी होते ही उन्होंने इसरो का रुख किया। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में लगभग 6 वर्षों तक उन्होंने भारत के सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम किया, और फिर देखिए जो स्थिति बनी है कि आज एक प्राइवेट रॉकेट को लॉन्च करने में वो कामयाब हुए, और इसीलिए आज प्रधानमंत्री ने खास तौर पर उनकी कामयाबी का जिक्र किया।
2: I'm right here at Sriharikota at the launch site, and we have these special cards which we received from our team members, our investors, policymakers, and all well-wishers across the country. We also have a very special card from none other than our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji.
3: 3, 2, 1, 0.
4: And we have liftoff of Vikram 1, India's first private orbital launch vehicle.
5: Liftoff normal. सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई।
1: बड़ी कामयाबी, और वो खुशी चेहरे पर दिख रही थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं और बताते हैं आपको अमेरिका और ईरान वॉर की। पिछले करीब 9 रातों से ईरान पर बमों की बरसात हो रही है। अमेरिकी सेना ने खास पैटर्न के तहत शाम होते ही ईरान के शहरों पर बमबारी शुरू कर दी है। कई बार तो ये हमले कई कई घंटों तक लगातार चलते रहते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नियंत्रण पाने को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का ये राउंड 2 चल रहा है, और इस बार दोनों ही देश एक दूसरे पर बड़े पैमाने पर हमले कर रहे हैं। एक बार नजर हटी लोगों की कि शायद ये युद्ध अब स्थिर हो रहा है, लेकिन ये युद्ध अब आक्रामक रूप ले रहा है। अमेरिकी सेना के निशाने पर फारस की खाड़ी से लगते ईरान प्रांत खुजस्तान से लेकर ओमान की खाड़ी से में चाबहार तक है, और इसके बीच में आने वाले लगभग हर उस इलाके पर हमला किया जा रहा है जिसका इस्तेमाल ईरान अपने रणनीतिक और आर्थिक फायदे के लिए कर रहा है। पिछले 3 दिनों में अमेरिका ने जास्क, सिरिक, बुशहर, बंदर अब्बास, केशम आइलैंड, अहवाज यज्द, शादेगान, बंदर महशहर, बंदर इमाम खुमैनी और कुंडराक में हमले किए हैं। इनमें ये ज्यादातर तटीय इलाके हैं जहां पर, पूरा मैप हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका ने तबरीज पर भी हमला किया है। तबरीज ईरान की सेना का गढ़ माना जाता है, और माना जा रहा है कि यहां एक अंडरग्राउंड मिसाइल बेस था जिसको अमेरिका ने तबाह किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक उनके निशाने पर मुख्य तौर पर ईरान के वो सैन्य ठिकाने हैं जिनका इस्तेमाल वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नियंत्रण पाने के लिए करता है। इन ठिकानों से ईरान विदेशी कमर्शियल जहाजों पर हमला करता है। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के सैन्य ठिकानों में कमांड सेंटर्स, एयर डिफेंस, तटीय क्षेत्र के सर्विलेंस सेंटर्स, नौसेना से जुड़े ठिकाने, मिसाइल और ड्रोन की लॉन्च साइट्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क सेंटर्स को निशाना बनाया गया है। हालांकि ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक अमेरिकी सेना सैन्य ठिकानों के नाम पर ऐसी जगहों को टारगेट कर रही है जिससे आम नागरिकों को परेशानी हो। आरोप है कि जास्क में खासतौर पर अमेरिकी सेना ने एक डीसलाइनेशन प्लांट पर हमला किया है। इस हमले के बाद करीब 20 गांव के 10,000 लोगों के लिए पानी जो पीने का है उसकी समस्या खड़ी हो गई है। डीसलाइनेशन प्लांट यहां यानी जहां समुद्री पानी से नमक हटाया जाता है। अब ईरान का आरोप यह भी है कि सैन्य ठिकानों पर हमले की आड़ में उसने बंदर अब्बास के शाहिद मिर्जाई टनल और 2 पुलों को भी निशाने पर लिया है।

0: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the strait. They don't control anything. So we'll see what happens. But we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably three. It's probably three as opposed to two. Great patriots.
1: हमलों के बीच एक खबर ये भी आई है कि अमेरिकी सेना ने खार्ग आइलैंड पर जमीनी हमले का प्लान बना लिया है। इस खबर के बाद से ईरान में खलबली है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी सैनिक खार्ग पर कब्जे के इरादे से उतरे तो बचकर वापस नहीं जाएंगे। फारस की खाड़ी में मौजूद खार्ग आइलैंड, जिसके बारे में हमने आपको कई बार बताया है, आइलैंड ईरानी जो कच्चा तेल है उसका महत्वपूर्ण ठिकाना है। 90% कच्चे तेल का यहीं से निर्यात होता है, इसी आइलैंड से निर्यात होता है। ये डिपो है, सबसे बड़ा ऑयल डिपो। यहां पर ईरानी कच्चे तेल का स्टोरेज भी करीब 3 करोड़ बैरल है। यानी एक तरह से देखा जाए तो अगर खार्ग आइलैंड पर अमेरिकी सेना ने कब्जा कर लिया, ईरान की कमर टूट जाएगी। ईरान को भी यह एहसास हो गया है कि अमेरिकी सेना अब की बार पिछली बार की तुलना में ज्यादा बड़े और घातक हमले कर रही है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने एक ट्वीट करके बताया है कि अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ हर दिन नए नए मिलिट्री हथियारों का इस्तेमाल कर रही है और हमलों के बाद युद्ध रोकने का दावा भी कर रही है। हालांकि अमेरिका के घातक हमलों के जवाब में ईरान ने भी भीषण पलटवार किए हैं। ईरान ने अब तक बहरीन, कतर, कुवैत, इराक, जॉर्डन को निशाने पर लिया है। कुवैत में कैंप अरफजान और अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया गया है। और इस बार सबसे ज्यादा चर्चा जॉर्डन की हो रही है, जहां पर खूब हमले इस वक्त ईरान कर रहा है। अमेरिकी नौसेना के 5th जो फ्लीट है उसके मुख्यालय को भी टारगेट किया गया है। ईरान ने कतर में अल उदैद एयरबेस को निशाना बनाया। जॉर्डन के मुवफाक सॉल्टी एयरबेस पर हमले किए गए। IRGC का कहना है कि इन सभी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाने पर लिया गया है और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कंफर्म किया है कि ईरान के इन हमलों में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, 1 लापता है। जानकारी के मुताबिक ईरान ने जॉर्डन के मुवफाक सॉल्टी एयरबेस पर जो हमला किया था उसमें 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 1 लापता है। इसके अलावा इराक में 1 अमेरिकी सैनिक के मारे जाने की खबर है। ये अमेरिकी सैनिक ईरान के एक आत्मघाती ड्रोन को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि IRGC का दावा है कि उन्होंने जॉर्डन पर जो हमले किए हैं उसमें कई अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। IRGC का कहना है कि उन्हें जॉर्डन से खुफिया जानकारियां मिली थी जिसकी मदद से अमेरिकी सेना के 20 हैंगर्स को उन्होंने तबाह कर दिया। IRGC ये भी कह रहा है कि उन्होंने जॉर्डन के अकाबा एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना के कई एयरक्राफ्ट्स को तबाह कर दिया है। इन हमलों के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार और पूर्व IRGC कमांडर मोहसिन रजाई ने एक इंटरव्यू दिया और कहा कि अगर अमेरिका इसी तरह से हमले करता रहा तो इसके जवाब में ईरान बड़े आक्रामक युद्ध में उतर जाएगा।
2: ما اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. در مورد اینکه بخوان نقطه‌ای از سرزمین ما رو هم بگیرن ما ممکنه وارد همون مرحله تهاجمی بشیم از حالت تدافعی.
1: محسن رضایی که از بیان کو امریکا کے لیے بڑی دھمکی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ امریکا کی तरह ही ईरान ने इस बार मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर पहले से बड़े हमले किए, खास तौर से जॉर्डन। जॉर्डन उसके निशाने पर है और खास वजह है। आप याद कीजिए 28 फरवरी से 8 अप्रैल के बीच में जब युद्ध का पहला दौर था तब ईरान के निशाने पर मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश थे, लेकिन जॉर्डन पर उसने UAE, कतर, कुवैत और बहरीन की तुलना में बहुत कम हमले किए थे। लेकिन इस बार ईरान ने जॉर्डन पर ज्यादा हमले किए हैं और इसकी वजह वो खबर है जिसके मुताबिक अमेरिकी सेना ने जॉर्डन और इसराइल को अपना मुख्य बेस बना लिया है। ईरान पर बड़े हमले करने के लिए जर्मनी और UK से फाइटर जेट्स और हथियारों की खेप मंगवाई गई है जो इसी रीजन के अनडिस्क्लोज लोकेशंस पर रखी गई। माना जाता है कि यह हथियार इसराइल और जॉर्डन के सैन्य ठिकानों में रखे गए। कुवैत और बहरीन की तुलना में ईरान से जॉर्डन की दूरी भी ज्यादा है, इससे अमेरिकी सेना इसी को अपना अहम बेस बना रही है। कुछ एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ईरान वॉर में अपनी जमीन देकर जॉर्डन अमेरिकी एहसानों का बदला चुका रहा है। साल 2022 में जॉर्डन और अमेरिका के बीच 7 वर्षों के लिए समझौता हुआ था, जिसके तहत अमेरिका उसे करीब 14,000 करोड़ रुपए सालाना दे रहा है। ईरान को अमेरिका की इस नई रणनीति की खबर मिल गई और शायद इसीलिए जॉर्डन इस युद्ध का अब एपिसेंटर बन गया है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि अमेरिका ने जॉर्डन को सिर्फ चेहरा बनाकर पेश किया, जबकि अपने हथियारों को इजराइल के सीक्रेट बेस पर रखा है। वो चाहता है कि ईरान जॉर्डन पर हमले करके अपने हथियारों को खपाए और इसी बीच इजराइल की जमीन से अमेरिका हमले कर सके। ईरान इसराइल पर हमला नहीं करेगा क्योंकि इसराइल पर हमला करना ईरान के लिए मुसीबत मोल लेने जैसा होगा। इसराइल के रक्षा मंत्री ने हाल ही में धमकी दी थी कि अगर ईरान ने उन पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया तो उनका देश युद्ध में उतर जाएगा। और यही वजह है कि ईरान जॉर्डन को अपने निशाने पर लिए हुए है और वहां के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। और अब आपको फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच हुए रोमांचक मुकाबले के बारे में बताएंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस मुकाबले में जीत भले स्पेन को मिली, लेकिन इसका सबसे ज्यादा जश्न कहां मना? सबसे ज्यादा जश्न गाजा, फिलिस्तीन और कई इस्लामिक मुल्कों के साथ साथ दुनिया के कई मुस्लिम इलाकों में भी मनाया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में बताने से पहले आपको मैच का रोमांच दिखाते हैं। फीफा का ये फाइनल खेल से ज्यादा 120 मिनट का वो गदर था जिसने दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों की सांसें थाम दी। न्यू जर्सी का मेटलाइफ स्टेडियम, जहां मैदान पर फुटबॉल कम और युद्ध जैसा माहौल ज्यादा नजर आ रहा था। मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों की मंशा साफ थी, कोई भी एक इंच जमीन छोड़ने को तैयार नहीं था। पहले 30 मिनट में ही मैदान पर जंग जैसा माहौल बन गया और फिर खतरनाक टैकल्स, फाउल और फिर खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त धक्का मुक्की। अर्जेंटीना और स्पेन के खिलाड़ी एक दूसरे की जर्सी खींचते, आपस में भिड़ते, रेफरी से बहस करते हुए नजर आए। रेफरी को बार बार जेब से कार्ड निकालने पड़े। 90 मिनट का रेगुलर टाइम खत्म होने तक स्कोर था 0-0। अर्जेंटीना की डिफेंस को टूट रहा था और ना स्पेनिश गोलकीपर की दीवार ढह रही थी। मैदान पर खिलाड़ियों का पारा हाई था तो स्टैंड्स में बैठे जो दर्शक थे वो भी शांत नहीं थे। जब स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन्स पर वीआईपी दीर्घा में मौजूद डोनाल्ड ट्रंप और फीफा प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो को दिखाया गया तो पूरे स्टेडियम में जबरदस्त हूटिंग शुरू हो गई। नतीजा ना निकलने पर मैच एक्स्ट्रा टाइम में खिंच गया। इस दौरान स्पेनिश गोलकीपर ने अर्जेंटीना के 2 पक्के गोल बचाकर साबित कर दिया कि क्यों उन्हें इस टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना जाना तय था। और फिर आया एक्स्ट्रा टाइम के दूसरे हाफ का 106वां मिनट, वो पल जिसने इतिहास लिख दिया। युवा सनसनी लामिनी यमाल ने अपनी जादुई ड्रिबलिंग से अर्जेंटीना के डिफेंस को चकमा देते हुए गेंद को बॉक्स की तरफ बढ़ाया। वहां मौजूद थे फेरन टोरेस, एक सेकेंड का भी फ्रैक्शन समझिए, एक राइट फुट फिनिश और गेंद अर्जेंटीना के गोलकीपर को छकाते हुए सीधा नेट में समा गई। स्टेडियम में मानो ज्वालामुखी फट पड़ा। स्पेन के सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी और कोच डगआउट छोड़कर मैदान में कूद पड़े क्योंकि स्पेन 1-0 से आगे हो चुका था। 120 मिनट का टाइम पूरा होने पर जैसे ही रेफरी ने फाइनल सीटी बजाई, स्टेडियम में अलग माहौल हो गया। एक तरफ अर्जेंटीना के खिलाड़ी मैदान पर ही घुटनों के बल बैठकर रो पड़े, स्टैंड्स में बैठे अर्जेंटीना के फैंस अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे, तो दूसरी तरफ स्पेन का जश्न बेकाबू था। लामिन यमाल और टोरेस स्टेडियम का चक्कर लगा रहे थे, हवा में आतिशबाजी हो रही थी। स्पेन ने फीफा विश्व कप 2026 की चमचमाती ट्रॉफी उठा ली। मेसी जब रनर अप मेडल लेने पहुंचे तो अपनी भावनाओं पर वो काबू नहीं रख पाए, उनके आंसू छलक पड़े, वो भावुक हो गए। ये मेसी का आखिरी विश्व कप हो सकता है। यूं तो अर्जेंटीना अंतिम वक्त में वापसी करने में माहिर रहा है, लेकिन इस मैच में ऐसा नहीं हुआ। मेसी मैदान पर थे फिर भी अर्जेंटीना ने एक्स्ट्रा टाइम के दूसरे हाफ तक गोल नहीं दागा। लेकिन क्या यह जीत सिर्फ फुटबॉल के मैदान तक सीमित थी? बिल्कुल नहीं। इस मैच की फाइनल सीटी बजते ही एक और जंग शुरू हुई, वो थी राजनीति, धर्म और विचारधारा की जंग। क्योंकि यह मुकाबला सिर्फ स्पेन बनाम अर्जेंटीना नहीं था बल्कि फिलिस्तीन बनाम इसराइल बन गया था, इसीलिए दुनिया के कई हिस्सों, खासकर इस्लामिक हल्कों में इसका जोरदार जश्न मनाया गया। स्पेन के गोल की गूंज गाजा में भी जोर से सुनाई थी। क्यों ये मुकाबला दो टीमों से ज्यादा दो विचारधाराओं का बन गया था, जहां एक तरफ थी इसराइल समर्थक अर्जेंटीना की टीम तो दूसरी तरफ थी फिलिस्तीन समर्थन स्पेन की टीम। यही वजह रही कि जब स्पेन जीता तो गाजा में पटाखे फूटे। दरअसल स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सैंचेज ने गाजा में इसराइल की कार्रवाई के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई थी। इसके अलावा मई 2024 में स्पेन ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दे दी। स्पेन ने हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गाजा में हो रहे हमलों की आलोचना की, और यही वजह है कि जब स्पेन की टीम मैदान पर उतरी तो गाजा के लोगों को उसमें अपनी आवाज, अपना एक सच्चा हमदर्द नजर आया। दूसरी तरफ राजनीति के इसी समीकरण में अर्जेंटीना को प्रो इसराइल खेमे में देखा जा रहा था। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने सत्ता संभालते ही इसराइल के प्रति खुलकर अपना समर्थन जताया। इतना ही नहीं, फाइनल मैच से ठीक पहले इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वीडियो बनाकर खुले तौर पर अर्जेंटीना की टीम का समर्थन किया।
3: אני כמובן, אין לי עדפות, אבל שארגנטינה תנצח.
4: בטח.
5: Dios saludo de mi parte. Que agradezco siempre su generosidad para conmigo.
4: Que
5: además es un amigo.
4: Las
5: palabras cuando dijo que hinchaba por Argentina.
1: इसी वर्ल्ड कप में इजिप्ट के खिलाफ हुए मैच के दौरान अर्जेंटीना के फैंस ने इसराइल के झंडा लहराया था। इस तरह अर्जेंटीना की छवि इसराइल समर्थक के रूप में ही इस मैच में नजर आई। इसीलिए जैसे ही एक्स्ट्रा टाइम के 106वें मिनट में स्पेन ने गोल कर दिया, गाजा में जश्न शुरू हो गया। गाजा के तमाम लोगों ने स्पेन की जीत को अपनी नैतिक जीत माना। इसके अलावा पाकिस्तान, तुर्की समेत तमाम मुस्लिम देशों ने इस मैच में स्पेन का समर्थन किया। इसके अलावा मोरक्को मूल के युवा स्टार लैमिन यमाल जैसे खिलाड़ियों ने फिलिस्तीन का खुला समर्थन किया है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और गिराने वाले हमेशा अपने ही होते हैं, क्योंकि गैरों को क्या पता कि सबसे गहरी चोट कहां लगेगी। नमस्कार। कांग्रेस जनता पार्टी ने जंतर मंतर से संसद तक मार्च किया। देश की राजधानी दिल्ली में संसद से लेकर सड़क तक हंगामा नजर आया। कांग्रेस जनता पार्टी के संसद मार्च को रोकने के लिए संसद भवन के पास आंसू गैस के गोले दागे गए और संसद के सभी दरवाजों पर सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य कर दी गई, जिसकी वजह से अब स्थिति नियंत्रण में है।
6: जबरदस्त हंगामा बरपा है। कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थक संसद भवन का घेराव कर रहे हैं और पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। प्रदर्शनकारी बेकाबू हुए तो पुलिस को उन्हें रोकने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा, फिर लाठियां चली, आंसू गैस के गोले दागे गए। प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए राजीव चौक और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन तक में घुस गए, जबकि कई लोग बैरिकेडिंग तोड़कर सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने तक पहुंच गए। कर्तव्य पथ पर भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। देखिए, ये दोपहर में करीब 1:30 बजे की तस्वीरें हैं।
7: कर्तव्य पथ का चौराहा है जहां आपको सिर्फ पुलिस के साइरेंस सुनाई देंगे, और ये तस्वीर है जहां प्रोटेस्टर्स कुछ इस तरीके से
6: सोशल मीडिया पर बताया गया कि प्रदर्शनकारियों में बहुत सारे घायल हैं, जिस पर दिल्ली पुलिस ने सफाई दी। दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि सोशल मीडिया पर गीतांजलि नाम की 12 साल की लड़की के साथ मारपीट, बाल खींचने और सिर में चोट लगने और साथ ही लगभग 40 से 50 अन्य लोगों के सिर फूटने के दावों वाली पोस्ट में गलत जानकारी फैलाई जा रही है। ये जानकारी गलत है। पोस्ट में किए जा रहे दावे सच नहीं है। कृपया गलत या गुमराह करने वाली जानकारी न फैलाएं और न ही उसे आगे बढ़ाएं। बहरहाल काफी देर तक यूं ही बवाल चलता रहा, लेकिन कुछ घंटों में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पा लिया।
7: कर्तव्य पथ पर हम लोग खड़े हुए हैं और अभी यहाँ पे स्थिति जो है, आप कह लीजिए कि यातायात जो है वो चालू हो गया है। स्थिति यहाँ पे ये है कि प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है, लेकिन 2 घंटे पहले यहाँ पे तस्वीर बेहद अलग थी। तमाम प्रदर्शनकारी इन लॉन्स में, पीछे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे भरे हुए थे। और उसके अलावा खाकी का जो आपको तैनाती दिख रही है बिल्कुल एक्शन में दिल्ली पुलिस और अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे थे, एंटी राइड व्हीकल्स पीछे और तमाम दिल्ली पुलिस के बसें यहां पे तैनात थी, लेकिन अब वो खाली करा दिया गया है।
6: कुछ देर पहले तक रेल भवन के पास भी प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा था, लेकिन वहां भी थोड़ी देर में स्थिति नियंत्रण में आ गई।
8: मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं, जो कि रफी मार्ग है, जो कि रेल भवन से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। कुछ घंटे पहले यहां पर तमाम प्रदर्शनकारी मौजूद थे, दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के द्वारा इस पूरे इलाके को अब खाली करा लिया गया है।
6: संसद भवन के आसपास भी सड़कें अब खाली हैं। संसद से विजय चौक तक का इलाका खाली और सामान्य दिख रहा है।
9: यहाँ पर एकदम नॉर्मल सी है, जिस तरीके के बैरिकेड्स लगाए गए थे ताकि जो प्रदर्शनकारी थे जब वो यहाँ आने की कोशिश कर रहे थे, वो सभी बैरिकेड्स को एक तरफ साइड में खड़ा कर दिया गया है। और संसद परिसर के बाहर भी जो सामान्य तौर पर जो पुलिस कर्मी होते हैं वही लोग इस समय मौजूद है।
6: जंतर मंतर पर भी जहाँ सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा था उसे भी खाली करा लिया गया है। कुल मिलाकर अब स्थिति नियंत्रण में है। आज तक ब्यूरो।
1: सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि विपक्ष ने सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को मुद्दा बना लिया है और सरकार पर जोरदार हमला बोला है। विपक्ष मांग कर रहा है कि सीजेपी की मांगों को सरकार माने।
10: सीजेपी के प्रदर्शन ने विपक्ष को सरकार के खिलाफ निशाना साधने का मौका दे दिया। आम आदमी पार्टी के दो नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह सीजेपी के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे, जहां पुलिस अफसर से उनकी तीखी बहस हुई।
11: आपको वहां हमने कहा था कि उस वाला वो रास्ता खुला है, आप प्लीज उधर से आ जाइए।
12: तो इधर से मान लो,
11: नहीं सुनो, एक मिनट सुनो ना। हाँ। वो रास्ता है जंतर मंतर के लिए,
12: ये है ना रास्ता, यहां से
11: रास्ता नहीं है सर,
12: ये रास्ता।
11: अरे जंतर मंतर बराबर आते
13: हैं,
12: सुनिए मेरी बात।
10: समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव भी जंतर मंतर पहुंची, जहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।
14: आज पूरे लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इतिहास के लिए ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप मीडिया रिपोर्टर्स हैं, पुलिस वाले भी उनकी आंखों में शर्मिंदगी दिख रही थी, लेकिन अपनी ड्यूटी के कारण अपने बैचेस निकाल के आए थे, गुंडे बने हुए थे कुछ पुलिस वाले तो सहयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले बिना वर्दी के आए थे और बच्चों को मारा है, बच्चों को करंट दिया है। और जहां रूल होता है कि आपको टांगों में मारा चाहिए, बच्चों की छातियों में मारा है।
10: इधर संसद के गलियारे में भी सीजेपी के प्रदर्शन की गूंज सुनाई दे रही थी।
15: इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार को? और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र, नौजवान, युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती है। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहें अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं।
16: बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है, और बच्चों पे आप टियर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हमारे।
10: कांग्रेस पूछ रही है कि अपना हक मांगने वाले युवाओं पर लाठीचार्ज क्यों?
17: क्या मांग कर रहे हैं? अपने भविष्य की मांग कर रहे हैं, अपने भविष्य सुरक्षित रहे उनकी मांग कर रहे हैं, तो ऐसे नौबत में लाठी चार्ज की क्या जरूरत?
10: विपक्ष सरकार पर हमलावर है, लेकिन सरकार से जुड़े नेता अलग सुर साध रहे हैं।
18: अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अच्छी तरह से डिस्कस करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ऐसे प्रोटेस्ट करने से तो कुछ काम नहीं होगा।
19: अब जो जंतर मंतर पे हो रहा है वो विद्यार्थियों के नाम पे राजनीति हो रही है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रही है।
10: इन सब बयानों के बीच सीजेपी का प्रतिनिधि मंडल स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिला। ये तभी की तस्वीरें हैं। सीजेपी ने अपने ज्ञापन में तीन मांगे रखी हैं। नंबर एक, सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए। नंबर दो, धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए या उनका इस्तीफा हो। नंबर तीन, नीट पेपर लीक की वजह से आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले।
20: सोनम वांगचुक जी को तुरंत रिलीज किया जाए, धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन तो अब आना ही पड़ेगा। और तीसरा, जो नीट के फैमिलीज है, जो बच्चे मर गए हैं 20 से ज्यादा, उन फैमिलीज को 1 करोड़ का मुआवजा मिले।
10: इस ज्ञापन के बाद सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने भरोसा जताया है कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी। आज तक ब्यूरो।
1: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक वीडियो जारी करके मोदी सरकार पर
13: हमला करते नजर आए। राहुल गांधी ने अपने संदेश में सरकार को युवा विरोधी बताया है।
21: दिस कंट्री हैज अ मेजॉरिटी ऑफ यंग पीपल। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द मोस्ट एंटी यूथ प्राइम मिनिस्टर इंडिया हैज एवर हैड। द बॉयज एंड गर्ल्स हु आर वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर नॉट क्रिमिनल्स। दे आर डिमांडिंग देयर राइट्स। देयर राइट्स आर टू हैव एन एजुकेशन सिस्टम दैट रिस्पेक्ट्स देम, टू हैव एन एजुकेशन सिस्टम दैट इज फेयर, to have an education system that is working. There's absolutely nothing wrong in what they are doing and it's disgusting what the government is doing.
13: संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया मगर सत्र की शुरुआत ही हंगामेदार रही। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया, उसके बाद हंगामा शुरू हुआ। सदन की कार्यवाही को कई बार स्थगित करना पड़ा।
22: समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो।
10: मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई और सदन में विपक्षी सांसद जमकर बरसे।
22: सदन नहीं चलाना चाहते।
10: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। बार बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। मुख्य मुद्दा था पेपर लीक का।
23: नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्रेडिबिलिटी किसकी है? किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, दुनिया में आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे।
10: लोकसभा के साथ राज्यसभा में नीट पेपर लीक का मुद्दा छाया रहा। राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया।
24: सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं और उसके लिए आज यहां जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं।
10: नीट पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ संसद के भीतर ही नहीं संसद के बाहर भी गूंजा। समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ तख्ती लेकर डिंपल यादव ने मार्च किया।
25: वी वांट कि छात्रों की बात सुनी जाए, क्योंकि अब पानी जो है सर से ऊपर से निकल चुका है। देश के लिए जहाँ किसान, जहाँ हमारा एनवायरनमेंट हो, चाहे हमारा युवा हो, सभी परेशान हैं और ये सरकार कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी रिफॉर्म्स लाने को तैयार नहीं है।
10: इन तमाम हंगामों के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक के पास होने के बाद देश की सर्वोच्च अदालत में जजों की संख्या बढ़ जाएगी। इस बिल का मकसद सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या एक्ट 1956 में और संशोधन करना है। प्रस्तावित कानून का मकसद केंद्र द्वारा जारी उस अध्यादेश की जगह लेना है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की गई थी। आज तक ब्यूरो।
13: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के बाहर अपने संबोधन में कहा कि यह सत्र काफी ऐतिहासिक है। इस सत्र में सरकार कई बिल लाने वाली है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों के सकारात्मक रवैये अपनाने और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने की भी उनसे अपील की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 28 साल के नौजवानों ने अंतरिक्ष में देश का झंडा गाड़ दिया है, मैं 56 साल की युवा की बात नहीं कर रहा।
26: जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए, हर आवाज को अवसर मिले, हर विचार को सम्मान मिले, ये संसद की हमारी भूमिका है।
13: बिहार विधानसभा में भी मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है मगर सदन शुरू होता है इससे पहले ही विपक्ष ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी विधायकों ने विधानमंडल के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष यहां शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
10: हाथों में तख्तियां और जुबान पर तेवर। बिहार में विधानसभा में मॉनसून सत्र की शुरुआत का पहला दिन हंगामा खेज था। विपक्ष के विधायक तख्तियां लेकर पहुंचे थे। नीट पेपर लीक का मुद्दा यहां भी उछाला गया। विपक्ष के विधायकों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा।
0: विधानमंडल का मुख्य गेट है और इसके ठीक बाहर ही आरजेडी माले तमाम विपक्षी दलों के जो नेता हैं, वो विधायक हैं, वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और हाथों में स्लोगन्स है, बैनर है, पोस्टर है। आरजेडी के विधायक हैं रणविजय साहू जी। रणविजय जी, आज पहले ही दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले आप लोग तो आक्रामक तेवर,
2: ये सड़क पर और सदन के अंदर भी सरकार के आंख खोलने का काम करेंगे। आज पूरे देश भर में छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, निज छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, पेपर लीक हुआ है, लेकिन सरकार चुप है, मोदी सरकार खामोश है और केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। जब तक बर्खास्त नहीं करेंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
10: विपक्ष आक्रामक था। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री ने भी धर्मेंद्र प्रधान पर जोरदार निशाना साधा। जंतर मंतर वाली गूंज यहां भी सुनाई दी।
0: आप भी बिहार के शिक्षा मंत्री रहे चंद्रशेखर जी, केवल नीट का सवाल ही है या और भी मुद्दों पे घेरेंगे सवाल?
3: ये भाजपा नीति नफरती सरकार न सिर्फ बेरोजगारों के लिए कब्र खोद रही है, संपूर्ण देश की मिल्कियत को चंद विश्वसनीय विश्वस्त उद्योगपतियों के हाथ में बेच रही है। भारत के भविष्य के लिए खतरा है, इसीलिए ऐसे निकम्मी सरकार को हटाने का संकल्प लेकर के हम लोग आंदोलन के समर्थन में हैं। जंतर मंतर पर जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई है उसके खिलाफ हम लोग प्रतिकार स्वरूप यहां खड़े हैं। आंदोलन होगा, गली में होगी, सड़क पर होगा, सदन में होगा।
0: नेता प्रतिपक्ष क्या शामिल हो रहे हैं आज की कार्यवाही में या अभी भी बाहर?
3: नेता प्रतिपक्ष कहाँ है तो हम नहीं अभी बता सकते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष और इस पार्टी के हम लोग सिपाही हैं। इस पार्टी के हम लोग सिपाही हैं, हर कदम हमारी पार्टी और हमारे नेता अन्याय जुल्म के खिलाफ है।
0: चलिए, तेजस्वी यादव नहीं है और विधायकों को मालूम भी नहीं है कि कब से विधानसभा की कार्यवाही में वो शामिल होंगे और आईपी गुप्ता जो है वो भी पहुंच गए हैं, मतलब सदन के अंदर भी यही रुक रहेगा गुप्ता जी?
4: अब ये जो बेशरम सरकार है वो सारे दरवाजे बंद करके, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, शासन प्रशासन को, तो हमारे पास एक ही रास्ता है, सदन।
10: मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले एक और दिलचस्प तस्वीर सामने आई। देखिए, इस आदमी के कंधे पर आरजेडी का गमछा था, तभी यहाँ रामकृपाल यादव पहुँचे। इसके बाद तस्वीर बदल गई। इस आदमी ने ये हरा गमछा फेंक दिया और इसकी जगह बीजेपी का गमछा पहन लिया। कार्यकर्ताओं ने आवाज लगाई कि अब ये बीजेपी में शामिल हो गया। बहरहाल, बिहार विधानसभा से जोरदार हंगामे के साथ सत्र शुरू तो हो गया, लेकिन सत्र क्या सुचारू रूप से चल पाएगा, ये सवाल बना हुआ है। शशि भूषण सिंह, पटना आज तक।
13: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। रविवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के ड्राफ्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। सोमवार को इसे विधानसभा में पेश कर दिया गया। हालांकि इसके विरोध में कांग्रेस विधायक काले कपड़े पहनकर सदन में पहुंचे और आरोप लगाया कि सरकार ने चोरी से बिल पेश किया है।
5: इसके लिए संसद है, आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी संबंधी उल्लेख।
7: राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर ऐसी सियासत जोरी है कि एक तरफ जांच एजेंसियां चोरों का पूरा हिसाब पता नहीं लगा पाई हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में चढ़ावा चोरी पर सियासत जोरी जबरदस्त है।
15: ये सरकार नहीं, अहंकार है। बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ये कोशिश रहती है घोटाला करने।
8: राम मंदिर में चोरी क्यों हो रही है, तो क्या ये प्रधानमंत्री का जवाब है? शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री।
27: लूट मची है, चंदा चोरी,
28: उन्होंने रखवाली नहीं, चोरी नहीं है, डकैती।
7: अयोध्या में हुई चढ़ावा चोरी पर इस सियासी शोर के बीच जांच एजेंसियां तमाम खुलासे कर रही हैं और ये खुलासे खुद आरोपियों से पूछताछ के बाद हुए हैं। एक दिन पहले करीब 40 घंटे तक पुलिस रिमांड में रहे टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव से हुई पूछताछ में पुलिस को बड़े राज की बातें पता चली हैं।
29: चढ़ावा चोरी के पैसे से टिन्नू ने सूत्रों के मुताबिक कुछ संपत्तियां भी अर्जित की थी, जिसके दस्तावेज पुलिस को मिल गए हैं।
7: टिन्नू यादव से 39 घंटे की पूछताछ में ही पता चला है कि अप्रैल 2026 में टिन्नू यादव ने सिफारिश कर अपने भतीजे मनीष यादव को नौकरी दिलवाई थी, जिसके बाद 15 अप्रैल 2026 से मनीष यादव को चढ़ावे की गिनती के काम में लगाया गया था। महीने भर के अंदर मई के दूसरे हफ्ते में मनीष यादव ने अविनाश शुक्ला के साथ मिलकर पहली बार चोरी की। उससे पहले मनीष यादव अनुकल्प, लवकुश और अविनाश को चोरी में मदद कर रहा था। ये भी पता चला है कि नाइट शिफ्ट के दौरान मनीष यादव को चोरी की रकम के साथ बाइक पर बैठाकर टिन्नू यादव ही बिना चेकिंग मंदिर से बाहर ले जाया करता था। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर बुलेट गाड़ी और एक कार पुलिस ने बरामद की है।
29: पुलिस ने टिन्नू यादव की पत्नी के नाम से पंजीकृत फर्म का रिकॉर्ड भी तलब किया है। इसके लिए पुलिस ने स्टेट GST ऑफिसर्स की सहायता ली है।
7: इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में आज SIT ने सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। इस मामले में अब अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और मनीष शुक्ला के साथ आज तक ब्यूरो।
13: अयोध्या का चढ़ावा चोरी मामला दिल्ली में संसद तक गूंज रहा है। दूसरी तरफ जांच एजेंसियां लगातार चोरी से अर्जित संपत्तियों को लेकर खुलासे कर रही हैं। SIT ने सुप्रीम कोर्ट में क्या स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है उसका पूरा खुलासा भी हो नहीं पाया, लेकिन अब चोरी कांड में सूत्रों के हवाले से आरोपी टिन्नू यादव को लेकर तमाम खुलासे जरूर हो रहे हैं।
5: इसके लिए संसद है, आप तर्क से चर्चा करें।
7: राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर ऐसी सियासत जोरी है कि एक तरफ जांच एजेंसियां चोरों का पूरा हिसाब पता नहीं लगा पाई हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में चढ़ावा चोरी पर सियासत जोरी जबरदस्त है।
15: ये सरकार नहीं, अहंकार है। BJP के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ही कोशिश रहती है घोटाला करने।
8: राम मंदिर में चोरी क्यों हो रही है, तो क्या ये प्रधानमंत्री का जवाब है? शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री।
27: लूट मची है, चंदा चोरी,
28: उन्होंने रखवाली नहीं, चोरी नहीं है, डकैती।
7: अयोध्या में हुई चढ़ावा चोरी पर इस सियासी शोर के बीच जांच एजेंसियां तमाम खुलासे कर रही हैं, और ये खुलासे खुद आरोपियों से पूछताछ के बाद हुए हैं। एक दिन पहले करीब 40 घंटे तक पुलिस रिमांड में रहे टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव से हुई पूछताछ में पुलिस को बड़े राज की बातें पता चली हैं।
29: चढ़ावा चोरी के पैसे से टिन्नू ने सूत्रों के मुताबिक कुछ संपत्तियां भी अर्जित की थी, जिसके दस्तावेज पुलिस को मिल गए हैं।
7: टिन्नू यादव से 39 घंटे की पूछताछ में ही पता चला है कि अप्रैल 2026 में टिन्नू यादव ने सिफारिश कर अपने भतीजे मनीष यादव को नौकरी दिलवाई थी, जिसके बाद 15 अप्रैल 2026 से मनीष यादव को चढ़ावे की गिनती के काम में लगाया गया था। महीने भर के अंदर मई के दूसरे हफ्ते में मनीष यादव ने अविनाश शुक्ला के साथ मिलकर पहली बार चोरी की। उससे पहले मनीष यादव अनुकल्प, लवकुश और अविनाश को चोरी में मदद कर रहा था। ये भी पता चला है कि नाइट शिफ्ट के दौरान मनीष यादव को चोरी की रकम के साथ बाइक पर बैठाकर टिन्नू यादव ही बिना चेकिंग मंदिर से बाहर ले जाया करता था। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर बुलेट गाड़ी और एक कार पुलिस ने बरामद की है।
29: पुलिस ने टिन्नू यादव की पत्नी के नाम से पंजीकृत फर्म का रिकॉर्ड भी तलब किया है। इसके लिए पुलिस ने स्टेट GST ऑफिसर्स की सहायता ली है।
7: इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में आज SIT ने सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। इस मामले में अब अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और मनीष शुक्ला के साथ आज तक ब्यूरो।
13: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: सीजेपी प्रदर्शनकारियों ने जेपी नड्डा से किया मुलाकात। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ रखी तीन मांगे। कहा सरकार हमारी बातों पर करेगी विचार। केरल हाउस के करीब प्रदर्शन शिफ्ट। दिल्ली में हालात सामान्य। बच्ची से मारपीट और 50 लोगों के घायल होने की खबर का पुलिस ने खंडन किया। राहुल गांधी का सरकार पर हमला, पुलिस को भी चेताया। संसद का मानसून सत्र के पहले दिन ही मूसलाधार सियासत। दोनों ही सदनों में जोरदार हंगामा। संकट के बीच शाह धर्मेंद्र प्रधान के बीच मैराथन बातचीत। चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। सीजेआई ने दिया आदेश, एसआईटी का हो पुनर्गठन। सीनियर अधिकारी की अगुवाई में हो जांच। अब अगले हफ्ते हियरिंग। और उत्तर से पूर्व तक कुदरत का कहर। असम के जोरहाट शिवसागर में भीषण तबाही। पुंछ में लैंडस्लाइड से 7 की मौत। अमरनाथ यात्रा आज और कल के लिए भी स्थगित। कांग्रेस जनता पार्टी ने जंतर मंतर से संसद तक मार्च किया। देश की राजधानी दिल्ली में संसद से लेकर सड़क तक हंगामा नजर आया। कांग्रेस जनता पार्टी के संसद मार्च को रोकने के लिए संसद भवन के पास आंसू गैस के गोले दागे गए और संसद के सभी दरवाजों पर सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य कर दी गई, जिसकी वजह से अब स्थिति नियंत्रण में है।
1: जबरदस्त हंगामा बरपा है। कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थक संसद भवन का घेराव कर रहे हैं और पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। प्रदर्शनकारी बेकाबू हुए तो पुलिस को उन्हें रोकने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा, फिर लाठियां चली, आंसू गैस के गोले दागे गए। प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए राजीव चौक और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन तक में घुस गए, जबकि कई लोग बैरिकेडिंग तोड़कर सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने तक पहुंच गए। कर्तव्य पथ पर भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। देखिए, ये दोपहर में करीब 1:30 बजे की तस्वीरें हैं।
2: कर्तव्य पथ का चौराहा है जहां आपको सिर्फ पुलिस के साइरेंस सुनाई देंगे और ये तस्वीर है जहां प्रोटेस्टर्स कुछ इस तरीके से बाहर।
1: सोशल मीडिया पर बताया गया कि प्रदर्शनकारियों में बहुत सारे घायल हैं, जिस पर दिल्ली पुलिस ने सफाई दी। दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि सोशल मीडिया पर गीतांजलि नाम की 12 साल की लड़की के साथ मारपीट, बाल खींचने और सिर में चोट लगने और साथ ही लगभग 40 से 50 अन्य लोगों के सिर फूटने के दावों वाली पोस्ट में गलत जानकारी फैलाई जा रही है। ये जानकारी गलत है। पोस्ट में किए जा रहे दावे सच नहीं है। कृपया गलत या गुमराह करने वाली जानकारी न फैलाएं और न ही उसे आगे बढ़ाएं। बहरहाल काफी देर तक यूं ही बवाल चलता रहा, लेकिन कुछ घंटों में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पा लिया।
2: कर्तव्य पथ पर हम लोग खड़े हुए हैं और अभी यहाँ पे स्थिति जो है, आप कह लीजिए कि यातायात जो है वो चालू हो गया है। स्थिति यहाँ पे ये है कि प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है, लेकिन 2 घंटे पहले यहाँ पे तस्वीर बेहद अलग थी। तमाम प्रदर्शनकारी इन लॉन्स में पीछे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे भरे हुए थे और उसके अलावा खाकी का जो आपको तैनाती दिख रही है, बिल्कुल एक्शन में दिल्ली पुलिस और अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे थे। एंटी राइड व्हीकल्स पीछे और तमाम दिल्ली पुलिस के बसें यहाँ पे तैनात थी, लेकिन अब वो खाली करा दिया गया है।
1: कुछ देर पहले तक रेल भवन के पास भी प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा था, लेकिन वहां भी थोड़ी देर में स्थिति नियंत्रण में आ गई।
3: मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं, जो कि रफी मार्ग है, जो कि रेल भवन से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। कुछ घंटे पहले यहां पर तमाम प्रदर्शनकारी मौजूद थे। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के द्वारा इस पूरे इलाके को अब खाली करा लिया गया है।
1: संसद भवन के आसपास भी सड़कें अब खाली हैं। संसद से विजय चौक तक का इलाका खाली और सामान्य दिख रहा है।
4: यहाँ पर एकदम नॉर्मल सी है, जिस तरीके के बैरिकेड्स लगाए गए थे ताकि जो प्रदर्शनकारी थे जब वो यहाँ आने की कोशिश कर रहे थे, वो सभी बैरिकेड्स को एक तरफ साइड में खड़ा कर दिया गया है और संसद परिसर के बाहर भी जो सामान्य तौर पर जो पुलिस कर्मी होते हैं वही लोग इस समय मौजूद है।
1: जंतर मंतर पर भी जहाँ सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा था उसे भी खाली करा लिया गया है। कुल मिलाकर अब स्थिति नियंत्रण में है। आज तक ब्यूरो।
0: सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि विपक्ष ने सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को मुद्दा बना लिया है और सरकार पर जोरदार हमला बोला है। विपक्ष मांग कर रहा है कि सीजेपी की मांगों को सरकार माने।
5: सीजेपी के प्रदर्शन ने विपक्ष को सरकार के खिलाफ निशाना साधने का मौका दे दिया। आम आदमी पार्टी के दो नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह सीजेपी के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे, जहां पुलिस अफसर से उनकी तीखी बहस हुई।
6: आपको वहां हमने कहा था कि उस वाला वो रास्ता खुला, आप प्लीज उधर से आ जाइए।
7: तो इधर से मान लो,
6: नहीं सुनो, एक मिनट सुनो ना, वो रास्ता है जंतर मंतर के लिए,
7: ये है ना रास्ता,
6: यहाँ से रास्ता नहीं है सर,
7: ये रास्ता
6: भाई, अरे जंतर मंतर बराबर आते हैं,
8: सारे लोग आ रहे हैं,
7: सुनिए मेरी बात।
5: समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव भी जंतर मंतर पहुंची, जहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।
9: आज पूरे लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इतिहास के लिए ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप मीडिया रिपोर्टर्स हैं, पुलिस वाले भी, उनकी आंखों में शर्मिंदगी दिख रही थी, लेकिन अपनी ड्यूटी के कारण अपने बैचेस निकाल के आए थे, गुंडे बने हुए थे कुछ पुलिस वाले, कुछ पुलिस वाले तो सहयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले बिना वर्दी के आए थे और बच्चों को मारा है, बच्चों को करंट दिया है, और जहां रूल होता है कि आपको टांगों में मारा चाहिए, बच्चों की छातियों में मारा है।
5: इधर संसद के गलियारे में भी सीजेपी के प्रदर्शन की गूंज सुनाई दे रही थी।
10: इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार को? और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र, नौजवान, युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती है। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहे अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं।
11: बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है, और बच्चों पे आप टियर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हमारे।
5: कांग्रेस पूछ रही है कि अपना हक मांगने वाले युवाओं पर लाठीचार्ज क्यों?
12: क्या मांग कर रहे हैं? अपने भविष्य की मांग कर रहे हैं, अपने भविष्य सुरक्षित रहे उनकी मांग कर रहे हैं, तो ऐसे नौबत में लाठी चार्ज की क्या जरूरत है?
5: विपक्ष सरकार पर हमलावर है, लेकिन सरकार से जुड़े नेता अलग सुर साध रहे हैं।
13: अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अच्छी तरह से डिस्कस करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ऐसे प्रोटेस्ट करने से तो कुछ काम नहीं होगा।
14: अब जो जंतर मंतर पे हो रहा है वो विद्यार्थियों के नाम पे राजनीति हो रही है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रही है।
5: इन सब बयानों के बीच सीजेपी का प्रतिनिधि मंडल स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिला। ये तभी की तस्वीरें हैं। सीजेपी ने अपने ज्ञापन में तीन मांगे रखी हैं। नंबर एक, सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए। नंबर दो, धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए या उनका इस्तीफा हो। नंबर तीन, नीट पेपर लीक की वजह से आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले।
15: सोनम वांगचुक जी को तुरंत रिलीज किया जाए, धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन तो अब आना ही पड़ेगा, और तीसरा, जो नीट के फैमिलीज है, जो बच्चे मर गए हैं 20 से ज्यादा, उन फैमिलीज को 1 करोड़ का मुआवजा मिले।
5: इस ज्ञापन के बाद सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने भरोसा जताया है कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी। आज तक ब्यूरो।
0: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक वीडियो जारी करके मोदी सरकार पर हमला करते नजर आए। राहुल गांधी ने अपने संदेश में सरकार को युवा विरोधी बताया है।
16: इस कंट्री हैज मेजॉरिटी ऑफ यंग पीपल। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द मोस्ट एंटी यूथ प्राइम मिनिस्टर इंडिया हैज एवर हैड। द बॉयज एंड गर्ल्स हु आर वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर नॉट क्रिमिनल्स, दे आर डिमांडिंग देयर राइट्स। देयर राइट्स आर टू हैव एन एजुकेशन सिस्टम दैट रिस्पेक्ट्स देम, टू हैव एन एजुकेशन सिस्टम दैट इज फेयर, to have an education system that is working. There's absolutely nothing wrong in what they are doing and it's disgusting what the government is doing.
0: संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया, मगर सत्र की शुरुआत ही हंगामेदार रही। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया, उसके बाद हंगामा शुरू हुआ, सदन की कार्यवाही को कई बार स्थगित करना पड़ा।
17: समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, मर्यादा नहीं बनती है।
5: मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई और सदन में विपक्षी सांसद जमकर बरसे,
17: सदन नहीं चलाना चाहते।
5: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। बार बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। मुख्य मुद्दा था पेपर लीक का।
18: नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्रेडिबिलिटी किसकी है, किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, दुनिया में आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे।
5: लोकसभा के साथ राज्यसभा में नीट पेपर लीक का मुद्दा छाया रहा। राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया।
19: सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहाँ पर आए हैं।
5: नीट पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ संसद के भीतर ही नहीं संसद के बाहर भी गूंजा। समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ तख्ती लेकर डिंपल यादव ने मार्च किया।
20: वी वांट कि छात्रों की बात सुनी जाए, क्योंकि अब पानी जो है सर से ऊपर से निकल चुका है। देश के लिए जहाँ किसान, चाहे हमारा एनवायरनमेंट हो, चाहे हमारा युवा हो, सभी परेशान हैं, और ये सरकार कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी फोर्स लाने को तैयार नहीं है।
5: इन तमाम हंगामों के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक के पास होने के बाद देश की सर्वोच्च अदालत में जजों की संख्या बढ़ जाएगी। इस बिल का मकसद सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या एक्ट 1956 में और संशोधन करना है। प्रस्तावित कानून का मकसद केंद्र द्वारा जारी उस अध्यादेश की जगह लेना है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की गई थी। आज तक ब्यूरो।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के बाहर अपने संबोधन में कहा कि यह सत्र काफी ऐतिहासिक है। इस सत्र में सरकार कई बिल लाने वाली है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों के सकारात्मक रवैये अपनाने और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने की भी उनसे अपील की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 28 साल के नौजवानों ने अंतरिक्ष में देश का झंडा गाड़ दिया है, मैं 56 साल के युवा की बात नहीं कर रहा।
21: जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए, हर आवाज को अवसर मिले, हर विचार को सम्मान मिले, ये संसद की हमारी भूमिका है।
0: बिहार विधानसभा में भी मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है, मगर सदन शुरू होता है इससे पहले ही विपक्ष ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी विधायकों ने विधानमंडल के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष यहां शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
5: हाथों में तख्तियां और जुबान पर तेवर, बिहार में विधानसभा में मॉनसून सत्र की शुरुआत का पहला दिन हंगामा खेज था। विपक्ष के विधायक तख्तियां लेकर पहुंचे थे, नीट पेपर लीक का मुद्दा यहां भी उछाला गया। विपक्ष के विधायकों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा।
14: विधानमंडल का मुख्य गेट है और इसके ठीक बाहर ही आरजेडी, माले, तमाम विपक्षी दलों के जो नेता हैं, वो विधायक हैं, वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और हाथों में स्लोगन्स है, बैनर है, पोस्टर है। आरजेडी के विधायक हैं रणविजय साहू जी। रणविजय जी, आज पहले ही दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले आप लोग तो आक्रामक तेवर।
22: ये सड़क पर और सदन के अंदर भी सरकार के आंख खोलने का काम करेंगे। आज पूरे देश भर में छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, निज छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, पेपर लीक हुआ है, लेकिन सरकार चुप है, मोदी सरकार खामोश है और केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। जब तक बर्खास्त नहीं करेंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
5: विपक्ष आक्रामक था। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री ने भी धर्मेंद्र प्रधान पर जोरदार निशाना साधा। जंतर मंतर वाली गूंज यहां भी सुनाई दी।
2: आप भी बिहार के शिक्षा मंत्री रहे चंद्रशेखर जी, केवल नीट का सवाल ही है या और भी मुद्दों पे घेरेंगे सपा?
3: ये भाजपा नीति नफरती सरकार न सिर्फ बेरोजगारों के लिए कब्र खोद रही है, संपूर्ण देश की मिल्कियत को चंद विश्वसनीय विश्वस्त उद्योगपतियों के हाथ में बेच रही है, भारत के भविष्य के लिए खतरा है। इसीलिए ऐसे निकम्मी सरकार को हटाने का संकल्प लेकर के हम लोग आंदोलन के समर्थन में हैं। जंतर मंतर पर जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई है उसके खिलाफ हम लोग प्रतिकार स्वरूप यहां खड़े हैं। आंदोलन होगा, गली में होगी, सड़क पर होगा, सदन में होगा।
2: नेता प्रतिपक्ष क्या शामिल हो रहे हैं आज की कार्रवाई में या अभी भी बाहर?
3: नेता प्रतिपक्ष कहाँ है तो हम नहीं अभी बता सकते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष और इस पार्टी के हम लोग सिपाही हैं। इस पार्टी के हम लोग सिपाही हैं, हर कदम हमारी पार्टी और हमारे नेता अन्याय जुल्म के खिलाफ है।
2: चलिए, तेजस्वी यादव नहीं है और विधायकों को मालूम भी नहीं है कि कब से विधानसभा की

0: है वो सारे दरवाजे बंद करते, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, शासन प्रशासन को, तो हमारे पास एक ही रास्ता है, सदन।
1: मानसून सत्र शुरू होने से पहले एक और दिलचस्प तस्वीर सामने आई। देखिए, इस आदमी के कंधे पर आरजेडी का गमछा था, तभी यहाँ रामकृपाल यादव पहुँचे। इसके बाद तस्वीर बदल गई। इस आदमी ने ये हरा गमछा फेंक दिया और इसकी जगह बीजेपी का गमछा पहन लिया। कार्यकर्ताओं ने आवाज लगाई कि अब ये बीजेपी में शामिल हो गया। बहरहाल बिहार विधानसभा से जोरदार हंगामे के साथ सत्र शुरू तो हो गया, लेकिन सत्र क्या सुचारू रूप से चल पाएगा, ये सवाल बना हुआ है। शशि भूषण सिंह, पटना आज तक।
2: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। रविवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के ड्राफ्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। सोमवार को इसे विधानसभा में पेश कर दिया गया। हालांकि इसके विरोध में कांग्रेस विधायक काले कपड़े पहनकर सदन में पहुंचे और आरोप लगाया कि सरकार ने चोरी से बिल पेश किया है।
3: इसके लिए संसद है, आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संबंधी उल्लेख।
4: राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर ऐसी सियासत जोरी है कि एक तरफ जांच एजेंसियां चोरों का पूरा हिसाब पता नहीं लगा पाई हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में चढ़ावा चोरी पर सियासत जोरी जबरदस्त है।
5: ये सरकार नहीं, अहंकार है। बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ही कोशिश रहती है घोटाला करने।
6: राम मंदिर में चोरी क्यों हो रही है, तो क्या ये प्रधानमंत्री का जवाब है? शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री।
7: लूट मची है, चंदा चोरी,
8: उन्होंने रखवाली नहीं, चोरी नहीं है, डकैती।
4: अयोध्या में हुई चढ़ावा चोरी पर इस सियासी शोर के बीच जांच एजेंसियां तमाम खुलासे कर रही हैं और ये खुलासे खुद आरोपियों से पूछताछ के बाद हुए हैं। एक दिन पहले करीब 40 घंटे तक पुलिस रिमांड में रहे टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव से हुई पूछताछ में पुलिस को बड़े राज की बातें पता चली हैं।
9: चढ़ावा चोरी के पैसे से टिन्नू ने सूत्रों के मुताबिक कुछ संपत्तियां भी अर्जित की थी, जिसके दस्तावेज पुलिस को मिल गए हैं।
4: टिन्नू यादव से 39 घंटे की पूछताछ में ही पता चला है कि अप्रैल 2026 में टिन्नू यादव ने सिफारिश कर अपने भतीजे मनीष यादव को नौकरी दिलवाई थी, जिसके बाद 15 अप्रैल 2026 से मनीष यादव को चढ़ावे की गिनती के काम में लगाया गया था। महीने भर के अंदर मई के दूसरे हफ्ते में मनीष यादव ने अविनाश शुक्ला के साथ मिलकर पहली बार चोरी की। उससे पहले मनीष यादव अनुकल्प, लवकुश और अविनाश को चोरी में मदद कर रहा था। ये भी पता चला है कि नाइट शिफ्ट के दौरान मनीष यादव को चोरी की रकम के साथ बाइक पर बैठाकर टिन्नू यादव ही बिना चेकिंग मंदिर से बाहर ले जाया करता था। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर बुलेट गाड़ी और एक कार पुलिस ने बरामद की है।
9: पुलिस ने टिन्नू यादव की पत्नी के नाम से पंजीकृत फर्म का रिकॉर्ड भी तलब किया है। इसके लिए पुलिस ने स्टेट GST ऑफिसर्स की सहायता ली है।
4: इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में आज SIT ने सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। इस मामले में अब अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और मनीष शुक्ला के साथ आज तक ब्यूरो।
2: अयोध्या का चढ़ावा चोरी मामला दिल्ली में संसद तक गूंज रहा है। दूसरी तरफ जांच एजेंसियां लगातार चोरी से अर्जित संपत्तियों को लेकर खुलासे कर रही हैं। SIT ने सुप्रीम कोर्ट में क्या स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है, उसका पूरा खुलासा भी हो नहीं पाया। लेकिन अब चोरी कांड में सूत्रों के हवाले से आरोपी टिन्नू यादव को लेकर तमाम खुलासे जरूर हो रहे हैं।
3: इसके लिए संसद है, आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संबंधी उल्लेख।
4: राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर ऐसी सियासत जोरी है कि एक तरफ जांच एजेंसियां चोरों का पूरा हिसाब पता नहीं लगा पाई हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में चढ़ावा चोरी पर सियासत जोरी जबरदस्त है।
5: ये सरकार नहीं, अहंकार है। बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ही कोशिश रहती है घोटाला करने।
6: राम मंदिर में चोरी क्यों हो रही है, तो क्या ये प्रधानमंत्री का जवाब है? शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री।
7: लूट मची है, चंदा चोरी,
8: उन्होंने रखवाली नहीं, चोरी नहीं है, डकैती।
4: अयोध्या में हुई चढ़ावा चोरी पर इस सियासी शोर के बीच जांच एजेंसियां तमाम खुलासे कर रही हैं और ये खुलासे खुद आरोपियों से पूछताछ के बाद हुए हैं। एक दिन पहले करीब 40 घंटे तक पुलिस रिमांड में रहे टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव से हुई पूछताछ में पुलिस को बड़े राज की बातें पता चली हैं।
9: चढ़ावा चोरी के पैसे से टिन्नू ने सूत्रों के मुताबिक कुछ संपत्तियां भी अर्जित की।

0: थी जिसके दस्तावेज पुलिस को मिल गए हैं।
1: टिन्नू यादव से 39 घंटे की पूछताछ में ही पता चला है कि अप्रैल 2026 में टिन्नू यादव ने सिफारिश कर अपने भतीजे मनीष यादव को नौकरी दिलवाई थी, जिसके बाद 15 अप्रैल 2026 से मनीष यादव को चढ़ावे की गिनती के काम में लगाया गया था। महीने भर के अंदर मई के दूसरे हफ्ते में मनीष यादव ने अविनाश शुक्ला के साथ मिलकर पहली बार चोरी की। उससे पहले मनीष यादव अनुकल्प, लवकुश और अविनाश को चोरी में मदद कर रहा था। ये भी पता चला है कि नाइट शिफ्ट के दौरान मनीष यादव को चोरी की रकम के साथ बाइक पर बैठाकर टिन्नू यादव ही बिना चेकिंग मंदिर से बाहर ले जाया करता था। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर बुलेट गाड़ी और एक कार पुलिस ने बरामद की है।
0: पुलिस ने टिन्नू यादव की पत्नी के नाम से पंजीकृत फर्म का रिकॉर्ड भी तलब किया है। इसके लिए पुलिस ने स्टेट GST ऑफिसर्स की सहायता ली है।
1: इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में आज SIT ने सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। इस मामले में अब अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और मनीष शुक्ला के साथ आज तक ब्यूरो।
2: पहाड़ों पर भयंकर बारिश हो रही है, नतीजा ये हुआ है कि पहाड़ टूट रहे हैं, लगातार भूस्खलन फ्लैश फ्लड हो रहा है, बादल फट रहे हैं, पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, लोगों की जानमाल का भारी नुकसान लोगों को हो रहा है और सबसे ज्यादा बुरा हाल है जम्मू कश्मीर का।
3: बारिश कहर बरपा रही है, खास तौर पर जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में तो कोहराम मचा हुआ है। कहीं बादल फट रहा है, कहीं फ्लैश फ्लड आ रहा है, कहीं पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं, कहीं भारी भूस्खलन हो रहा है, कहीं पूरा पहाड़ ही भरभरा कर नीचे गिर जा रहा है।
4: देखो भाई ये डंड रही है।
3: पूरे जम्मू कश्मीर में 12 लोगों की मौत हुई है, बहुत से लोग लापता हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल राजौरी, पुंछ, डोडा और किश्तवाड़ में है। एहतियातन वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। पुंछ में भारी बारिश के बाद आए फ्लैश फ्लड में भाटा दूरिया टनल उजड़ गई। राजौरी में खेवड़ा नाला ओवरफ्लो हो गया जिसका पानी कई कॉलोनियों में घुस गया। फ्लैश फ्लड में कई गाड़ियां बह गई और कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। आर्मी, SDRF और पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं और चिंता की बात यह है कि अगले 24 से 36 घंटों तक अभी और ज्यादा बारिश का अनुमान है। ये पुंछ की तस्वीरें हैं जहां एक प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा का पूरा पहाड़ ही गिर गया। नीचे मशीनें दिख रही हैं, पूरा सुरंग प्रोजेक्ट है लेकिन ऊपर से भूस्खलन हो गया। भारी बारिश से मिट्टी कच्ची हो गई और पूरा पहाड़ ही नीचे गिर गया। अचानक से भारी बारिश के बाद आए फ्लैश फ्लड का पानी रेजिडेंशियल इलाकों में घुस गया है। इसी तरह से ये तबाही भी पुंछ में ही हुई है। यहाँ पुंछ नेशनल हाईवे 144 को बनाने का काम चल रहा है। ये कंपनी यहाँ पर 35 किलोमीटर की सड़क बना रही थी लेकिन अचानक से रात में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। यहाँ काम कर रहे मजदूरों की जान किसी तरह से बच गई लेकिन उनकी मशीनें, बाकी सामान सब कुछ बह गया। अंदर सीमेंट का गोदाम था जिसमें 5000 से ज्यादा सीमेंट के बैग थे। इतना पानी आया कि सब कुछ खराब हो गया।
5: सर इसमें काफी करीब जो रात को पानी आए हैं, फ्लड आए हैं, उसके काफी हमारे मटेरियल नुकसान हुए हैं।
3: यहाँ SGI कंपनी पिछले 3 साल से पुंछ नेशनल हाईवे को बनाने का काम कर रही है। ये पुंछ का बफलियास इलाका है। यहाँ भी भयंकर बारिश के बाद बादल फटा और फ्लैश फ्लड आ गया। पूरा रास्ता, स्कूल, सब जगह मलबा भर गया है। किश्तवाड़ में भी रैटल पावर प्रोजेक्ट साइट पर अचानक से फ्लैश फ्लड आ गया। ये पावर प्रोजेक्ट नदी के किनारे था, बगल में नदी बह रही है और इधर ये पावर प्लांट। तस्वीरों में दिख रहा है कि ऊपर पूरा पहाड़ है और उसके अंदर से पानी आ रहा है। पूरे प्रोजेक्ट पर खतरा मंडरा रहा है। आगे फ्लैश फ्लड का यही पानी रेजिडेंशियल इलाकों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। डोडा में रागी नाला के पास भूस्खलन की वजह से ऊपर से एक बस के ऊपर पत्थर गिरे जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। यहाँ राजौरी में नदी में आई बाढ़ की वजह से एक पुल भी टूटा है और बहुत सा नुकसान हुआ है। नदी लगातार उफान पर है, आज भी बारिश हुई है।
6: तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से ये हिस्सा जो है पूरी तरह से इस ब्रिज का टूट चुका है।
7: उफान पर होने के बाद जब इस ब्रिज के नजदीक पानी पहुंचता है तो इसका आधा हिस्सा जो है वो इस तरफ वाला वो बहा के साथ में ले जाता है।
3: ये भी राजौरी की तस्वीरें हैं जहाँ 2 भैंसे इन लहरों के बीच में फंस गई है। भैंसों को रस्सियों के सहारे निकालने की कोशिश हो रही है। एक शख्स भी अपनी जान जोखिम में डालकर इन भैंसों को निकाल रहा है। बताया जा रहा है कि ये गुर्जर समुदाय के जानवर हैं। ये गांदेरबल का सफापुर इलाका है जहां फ्लैश फ्लड आया है। पानी की रफ्तार देखकर आप ये धोखा खा सकते हैं कि जैसे ये कोई नदी होगी, लेकिन ये मुख्य सड़क है जिस पर गाड़ियां भी चल रही हैं, लेकिन पूरी सड़क पर मटमैला पानी भरा हुआ है। श्रीनगर शहर में भी भारी बारिश हुई है, इतनी कि यहाँ के प्रसिद्ध लाल चौक एरिया में पानी जमा हो गया।
8: नदियां उफान पर हैं, यहां तक कि अमरनाथ यात्रा को आज दूसरे दिन भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि अमरनाथ गुफा के आसपास इलाकों में कल से ही तेज बारिशें हो रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले दो दिन तक कश्मीर के अधिकतर इलाकों में इसी तरह तेज बारिशें होंगी।
3: भारी बारिश को देखते हुए माता वैष्णो देवी की यात्रा को भी स्थगित करना पड़ा है। अब जो श्रद्धालु यहां पहुंचे थे वो इस उम्मीद में हैं कि यात्रा फिर से शुरू होगी, लेकिन खराब मौसम को देखते हुए ये उम्मीद कम लगती है।
9: दो तीन दिन लगेंगे खुलने में, अभी दर्शन करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है।
3: उधर खराब मौसम की वजह से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा भी रोक दी गई है। लगातार बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा भी प्रभावित हो रही है। केदारनाथ हाईवे और केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भी भूस्खलन हो रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल अग्रिम आदेशों तक केदारनाथ यात्रा को रोका गया है और यात्रियों से सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील की गई है।
10: मौसम विभाग ने वर्षा की भारी चेतावनी जारी की गई थी, जिससे कि जनपद में रात भर रुक रुक करके बारिश हो रही है और केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह लैंडस्लाइड होने की स्थिति बनी हुई है और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए और यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है।
3: रुद्रप्रयाग में बाबा केदार के रास्ते पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के अलावा अन्य सहायक नदियां भी उफान पर बह रही हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी विकराल रूप धारण करते हुए वार्निंग लेवल के पास बह रही है। नदी किनारे के सभी घाट डूब गए हैं। अलकनंदा नदी से 30 मीटर दूर भगवान शिव की विशाल मूर्ति भी जलमग्न हो चुकी है।
11: पैदल यात्रा मार्ग सहित केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन हो रहा है और यात्रियों को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए आज के लिए केदारनाथ यात्रा को फिलहाल अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया है।
3: भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड में एक नेशनल हाईवे समेत 60 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का काम चल रहा है। सोमवार को बारिश की वजह से उत्तराखंड के सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित करनी पड़ी। बहुत से पहाड़ी जिलों के लिए मौसम विभाग की तरफ से बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज तक ब्यूरो।
2: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: सीजेपी प्रदर्शनकारियों ने जेपी नड्डा से किया मुलाकात। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ रखी तीन मांगे। कहा सरकार हमारी बातों पर करेगी विचार। केरल हाउस के करीब प्रदर्शन शिफ्ट। दिल्ली में हालात सामान्य। बच्ची से मारपीट और 50 लोगों के घायल होने की खबर का पुलिस ने खंडन किया। राहुल गांधी का सरकार पर हमला, पुलिस को भी चेताया। संसद का मानसून सत्र के पहले दिन ही मूसलाधार सियासत, दोनों ही सदनों में जोरदार हंगामा। संकट के बीच शाह धर्मेंद्र प्रधान के बीच मैराथन बातचीत। चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। सीजीआई ने दिया आदेश, एसआईटी का हो पुनर्गठन। सीनियर अधिकारी की अगुवाई में हो जांच, अब अगले हफ्ते हियरिंग। और उत्तर से पूर्व तक कुदरत का कहर। असम के जोरहाट शिवसागर में भीषण तबाही, पुंछ में लैंडस्लाइड से 7 की मौत। अमरनाथ यात्रा आज और कल के लिए भी स्थगित। कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर से संसद तक मार्च किया। देश की राजधानी दिल्ली में संसद से लेकर सड़क तक हंगामा नजर आया। कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च को रोकने के लिए संसद भवन के पास आंसू गैस के गोले दागे गए और संसद के सभी दरवाजों पर सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य कर दी गई, जिसकी वजह से अब स्थिति नियंत्रण में है।
1: जबरदस्त हंगामा बरपा है। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक संसद भवन का घेराव कर रहे हैं और पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। प्रदर्शनकारी बेकाबू हुए तो पुलिस को उन्हें रोकने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा, फिर लाठियां चली, आंसू गैस के गोले दागे गए। प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए राजीव चौक और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन तक में घुस गए, जबकि कई लोग बैरिकेडिंग तोड़कर सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने तक पहुंच गए। कर्तव्य पथ पर भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। देखिए, ये दोपहर में करीब 1:30 बजे की तस्वीरें हैं।
2: कर्तव्य पथ का चौराहा है जहां आपको सिर्फ पुलिस के साइरन सुनाई देंगे और ये तस्वीर है जहां प्रोटेस्टर्स कुछ इस तरीके से
1: सोशल मीडिया पर बताया गया कि प्रदर्शनकारियों में बहुत सारे घायल हैं, जिस पर दिल्ली पुलिस ने सफाई दी। दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि सोशल मीडिया पर गीतांजलि नाम की 12 साल की लड़की के साथ मारपीट, बाल खींचने और सिर में चोट लगने और साथ ही लगभग 40 से 50 अन्य लोगों के सिर फूटने के दावों वाली पोस्ट में गलत जानकारी फैलाई जा रही है। ये जानकारी गलत है। पोस्ट में किए जा रहे दावे सच नहीं है। कृपया गलत या गुमराह करने वाली जानकारी न फैलाएं और न ही उसे आगे बढ़ाएं। बहरहाल काफी देर तक यूं ही बवाल चलता रहा, लेकिन कुछ घंटों में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पा लिया।
2: कर्तव्य पथ पर हम लोग खड़े हुए हैं और अभी यहाँ पे स्थिति जो है, आप कह लीजिए कि यातायात जो है वो चालू हो गया है। स्थिति यहाँ पे ये है कि प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है, लेकिन 2 घंटे पहले यहाँ पे तस्वीर बेहद अलग थी। तमाम प्रदर्शनकारी इन लॉन्स में, पीछे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे भरे हुए थे। और उसके अलावा खाकी का जो आपको तैनाती दिख रही है, बिल्कुल एक्शन में दिल्ली पुलिस और अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे थे। एंटी राइड व्हीकल्स पीछे और तमाम दिल्ली पुलिस के बसें यहाँ पे तैनात थी, लेकिन अब वो खाली करा दिया गया है।
1: कुछ देर पहले तक रेल भवन के पास भी प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा था, लेकिन वहां भी थोड़ी देर में स्थिति नियंत्रण में आ गई।
3: मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं, जो कि रफी मार्ग है, जो कि रेल भवन से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। कुछ घंटे पहले यहां पर तमाम प्रदर्शनकारी मौजूद थे। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के द्वारा इस पूरे इलाके को अब खाली करा लिया गया है।
1: संसद भवन के आसपास भी सड़कें अब खाली हैं। संसद से विजय चौक तक का इलाका खाली और सामान्य दिख रहा है।
4: यहाँ पर एकदम नॉर्मल सी है, जिस तरीके के बैरिकेड्स लगाए गए थे ताकि जो प्रदर्शनकारी थे जब वो यहाँ आने की कोशिश कर रहे थे, वो सभी बैरिकेड्स को एक तरफ साइड में खड़ा कर दिया गया है। और संसद परिसर के बाहर भी जो सामान्य तौर पर जो पुलिस कर्मी होते हैं वही लोग इस समय मौजूद है।
1: जंतर मंतर पर भी जहाँ सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा था उसे भी खाली करा लिया गया है। कुल मिलाकर अब स्थिति नियंत्रण में है। आज तक ब्यूरो।
0: सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि विपक्ष ने सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को मुद्दा बना लिया है और सरकार पर जोरदार हमला बोला है। विपक्ष मांग कर रहा है कि सीजेपी की मांगों को सरकार माने।
5: सीजेपी के प्रदर्शन ने विपक्ष को सरकार के खिलाफ निशाना साधने का मौका दे दिया। आम आदमी पार्टी के दो नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह सीजेपी के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे, जहां पुलिस अफसर से उनकी तीखी बहस हुई।
6: आपको वहां हमने कहा था कि उस वाला वो रास्ता खुला, आप प्लीज उधर से आ जाइए।
7: तो इधर से मान लो,
6: नहीं सुनो, एक मिनट सुनो ना। हाँ। वो रास्ता है जंतर मंतर के लिए, यहाँ से रास्ता नहीं है सर,
7: ये रास्ता।
6: अरे जंतर मंतर बराबर आते
8: हैं,
7: सुनिए मेरी बात।
5: समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव भी जंतर मंतर पहुंची, जहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।
9: आज पूरे लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इतिहास के लिए ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप मीडिया रिपोर्टर्स हैं, पुलिस वाले भी उनकी आंखों में शर्मिंदगी दिख रही थी, लेकिन अपनी ड्यूटी के कारण अपने बैचेस निकाल के आए थे, गुंडे बने हुए थे कुछ पुलिस वाले। कुछ पुलिस वाले तो सहयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले बिना वर्दी के आए थे और बच्चों को मारा है, बच्चों को करंट दिया है। और जहां रूल होता है कि आपको टांगों में मारा चाहिए, बच्चों की छातियों में मारा है।
5: इधर संसद के गलियारे में भी सीजेपी के प्रदर्शन की गूंज सुनाई दे रही थी।
10: इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार को? और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र, नौजवान, युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती है। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहे अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं।
11: बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है, और बच्चों पे आप टियर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हमारे।
5: कांग्रेस पूछ रही है कि अपना हक मांगने वाले युवाओं पर लाठीचार्ज क्यों?
12: क्या मांग कर रहे हैं? अपने भविष्य की मांग कर रहे हैं, अपने भविष्य सुरक्षित रहे उनकी मांग कर रहे हैं, तो ऐसे नौबत में लाठी चार्ज की क्या जरूरत?
5: विपक्ष सरकार पर हमलावर है, लेकिन सरकार से जुड़े नेता अलग सुर साध रहे हैं।
13: अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अच्छी तरह से डिस्कस करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ऐसे प्रोटेस्ट करने से तो कुछ काम नहीं होगा।
14: अब जो जंतर मंतर पे हो रहा है वो विद्यार्थियों के नाम पे राजनीति हो रही है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रही है।
5: इन सब बयानों के बीच सीजेपी का प्रतिनिधि मंडल स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिला। ये तभी की तस्वीरें हैं। सीजेपी ने अपने ज्ञापन में तीन मांगे रखी हैं। नंबर एक, सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए। नंबर दो, धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए या उनका इस्तीफा हो। नंबर तीन, नीट पेपर लीक की वजह से आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले।
15: सोनम वांगचुक जी को तुरंत रिलीज किया जाए, धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन तो अब आना ही पड़ेगा। और तीसरा, जो नीट के फैमिलीज है, जो बच्चे मर गए हैं 20 से ज्यादा, उन फैमिलीज को 1 करोड़ का मुआवजा मिले।
5: इस ज्ञापन के बाद सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने भरोसा जताया है कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी। आज तक ब्यूरो।
0: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक वीडियो जारी करके मोदी सरकार पर हमला करते नजर आए। राहुल गांधी ने अपने संदेश में सरकार को युवा विरोधी बताया है।
16: दिस कंट्री हैज मेजॉरिटी ऑफ यंग पीपल। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द मोस्ट एंटी यूथ प्राइम मिनिस्टर इंडिया हैज एवर हैड। द बॉयज एंड गर्ल्स हु आर वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर नॉट क्रिमिनल्स, दे आर डिमांडिंग देयर राइट्स। देयर राइट्स आर टू हैव एन एजुकेशन सिस्टम दैट रिस्पेक्ट्स देम, टू हैव एन एजुकेशन सिस्टम दैट इज फेयर, to have an education system that is working. There's absolutely nothing wrong in what they're doing and it's disgusting what the government is doing.
0: संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया, मगर सत्र की शुरुआत ही हंगामेदार रही। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया, उसके बाद हंगामा शुरू हुआ। सदन की कार्रवाई को कई बार स्थगित करना पड़ा।
17: समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो।
5: मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई और सदन में विपक्षी सांसद जमकर बरसे।
17: सदन नहीं चलाना चाहते।
5: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। बार बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। मुख्य मुद्दा था पेपर लीक का।
8: नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्रेडिबिलिटी किसकी है, किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, दुनिया में आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे हैं।
5: लोकसभा के साथ राज्यसभा में नीट पेपर लीक का मुद्दा छाया रहा। राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया।
18: सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहाँ पर आए हैं।
5: नीट पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ संसद के भीतर ही नहीं संसद के बाहर भी गूंजा। समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ तख्ती लेकर डिंपल यादव ने मार्च किया।
19: वी वांट कि छात्रों की बात सुनी जाए, क्योंकि अब पानी जो है सर से ऊपर से निकल चुका है। देश के लिए जहाँ किसान, चाहे हमारा एनवायरनमेंट हो, चाहे हमारा युवा हो, सभी परेशान हैं, और ये सरकार कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी रिफॉर्म्स लाने को तैयार नहीं है।
5: इन तमाम हंगामों के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक के पास होने के बाद देश की सर्वोच्च अदालत में जजों की संख्या बढ़ जाएगी। इस बिल का मकसद सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या एक्ट 1956 में और संशोधन करना है। प्रस्तावित कानून का मकसद केंद्र द्वारा जारी उस अध्यादेश की जगह लेना है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की गई थी। आज तक ब्यूरो।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के बाहर अपने संबोधन में कहा कि ये सत्र काफी ऐतिहासिक है। इस सत्र में सरकार कई बिल लाने वाली है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों के सकारात्मक रवैये अपनाने और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने की भी उनसे अपील की। बिहार विधानसभा में भी मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है, मगर सदन शुरू होता है इससे पहले ही विपक्ष ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी विधायकों ने विधानमंडल के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष यहां शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
5: हाथों में तख्तियां और जुबान पर तेवर, बिहार में विधानसभा में मॉनसून सत्र की शुरुआत का पहला दिन हंगामा खेज था। विपक्ष के विधायक तख्तियां लेकर पहुंचे थे, नीट पेपर लीक का मुद्दा यहां भी उछाला गया। विपक्ष के विधायकों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा।
14: विधानमंडल का मुख्य गेट है और इसके ठीक बाहर ही आरजेडी, माले, तमाम विपक्षी दलों के जो नेता हैं, वो विधायक हैं, वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और हाथों में स्लोगन्स है, बैनर है, पोस्टर है। आरजेडी के विधायक हैं रणविजय साहू जी। रणविजय जी, आज पहले ही दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले आप लोग तो आक्रामक तेवर,
20: ये सड़क पर और सदन के अंदर भी सरकार के आंख खोलने का काम करेंगे। आज पूरे देश भर में छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, नीट छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, पेपर लीक हुआ है, लेकिन सरकार चुप है, मोदी सरकार खामोश है और केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। जब तक बर्खास्त नहीं करेंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
5: विपक्ष आक्रामक था। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री ने भी धर्मेंद्र प्रधान पर जोरदार निशाना साधा। जंतर मंतर वाली गूंज यहां भी सुनाई दी।
14: आप भी बिहार के शिक्षा मंत्री रहे चंद्रशेखर जी, केवल नीट का सवाल ही है या और भी मुद्दों पे घेरेंगे सभा?
21: ये भाजपा नीति नफरती सरकार न सिर्फ बेरोजगारों के लिए कब्र खोद रही है, संपूर्ण देश की मिल्कियत को चंद विश्वसनीय विश्वस्त उद्योगपतियों के हाथ में बेच रही है, भारत के भविष्य के लिए खतरा है। इसीलिए ऐसे निकम्मी सरकार को हटाने का संकल्प लेकर के हम लोग आंदोलन के समर्थन में हैं। जंतर मंतर पर जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई है उसके खिलाफ हम लोग प्रतिकार स्वरूप यहां खड़े हैं। आंदोलन होगा, गली में होगी, सड़क पर होगा, सदन में होगा।
14: नेता प्रतिपक्ष क्या शामिल हो रहे हैं आज की कार्यवाही में या अभी भी बाहर?
21: नेता प्रतिपक्ष कहाँ है तो हम नहीं अभी बता सकते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष और इस पार्टी के हम लोग सिपाही हैं, इस पार्टी के हम लोग सिपाही हैं। हर कदम हमारी पार्टी और हमारे नेता अन्याय जुल्म के खिलाफ है।
14: चलिए, तेजस्वी यादव नहीं है और विधायकों को मालूम भी नहीं है कि कब से विधानसभा की कार्यवाही में वो शामिल होंगे, और आईपी गुप्ता जो है वो भी पहुंच गए हैं।
21: मतलब सदन के अंदर भी यही रुक रहेगा गुप्ता जी?
2: अब ये जो बेशरम सरकार है वो सारे दरवाजे बंद करके, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, शासन प्रशासन को, तो हमारे पास एक ही रास्ता है, सदन।
5: मानसून सत्र शुरू होने से पहले एक और दिलचस्प तस्वीर सामने आई। देखिए, इस आदमी के कंधे पर आरजेडी का गमछा था, तभी यहाँ रामकृपाल यादव पहुँचे, इसके बाद तस्वीर बदल गई। इस आदमी ने ये हरा गमछा फेंक दिया और इसकी जगह बीजेपी का गमछा पहन लिया। कार्यकर्ताओं ने आवाज लगाई कि अब ये बीजेपी में शामिल हो गया। बहरहाल बिहार विधानसभा से जोरदार हंगामे के साथ सत्र शुरू तो हो गया, लेकिन सत्र क्या सुचारू रूप से चल पाएगा, ये सवाल बना हुआ है। शशि भूषण सिंह, पटना आज तक।
0: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। रविवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के ड्राफ्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। सोमवार को इसे विधानसभा में पेश कर दिया गया। हालांकि इसके विरोध में कांग्रेस विधायक काले कपड़े पहनकर सदन में पहुंचे और आरोप लगाया कि सरकार ने चोरी से बिल पेश किया है।
3: इसके लिए संसद है, आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी संबंधी उल्लेख।
22: राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर ऐसी सियासत जोरी है कि एक तरफ जांच एजेंसियां चोरों का पूरा हिसाब पता नहीं लगा पाई हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में चढ़ावा चोरी पर सियासत जोरी जबरदस्त है।
10: ये सरकार नहीं, अहंकार है। बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ही कोशिश रहती है घोटाला करने।
23: राम मंदिर में चोरी क्यों हो रही है, तो क्या ये प्रधानमंत्री का जवाब है? शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री।
24: लूट मची है, चंदा चोरी,
25: उन्होंने रखवाली नहीं, चोरी नहीं है, डकैती।
22: अयोध्या में हुई चढ़ावा चोरी पर इस सियासी शोर के बीच जांच एजेंसियां तमाम खुलासे कर रही हैं और ये खुलासे खुद आरोपियों से पूछताछ के बाद हुए हैं। एक दिन पहले करीब 40 घंटे तक पुलिस रिमांड में रहे टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव से हुई पूछताछ में पुलिस को बड़े राज की बातें पता चली हैं।
26: चढ़ावा चोरी के पैसे से टिन्नू ने सूत्रों के मुताबिक कुछ संपत्तियां भी अर्जित की थी जिसके दस्तावेज पुलिस को मिल गए हैं।
22: टिन्नू यादव से 39 घंटे की पूछताछ में ही पता चला है कि अप्रैल 2026 में टिन्नू यादव ने सिफारिश कर अपने भतीजे मनीष यादव को नौकरी दिलवाई थी, जिसके बाद 15 अप्रैल 2026 से मनीष यादव को चढ़ावे की गिनती के काम में लगाया गया था। महीने भर के अंदर मई के दूसरे हफ्ते में मनीष यादव ने अविनाश शुक्ला के साथ मिलकर पहली बार चोरी की। उससे पहले मनीष यादव अनुकल्प, लवकुश और अविनाश को चोरी में मदद कर रहा था। ये भी पता चला है कि नाइट शिफ्ट के दौरान मनीष यादव को चोरी की रकम के साथ बाइक पर बैठाकर टिन्नू यादव ही बिना चेकिंग मंदिर से बाहर ले जाया करता था। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर बुलेट गाड़ी और एक कार पुलिस ने बरामद की है।
26: पुलिस ने टिन्नू यादव की पत्नी के नाम से पंजीकृत फर्म का रिकॉर्ड भी तलब किया है। इसके लिए पुलिस ने स्टेट जीएसटी ऑफिसर्स की सहायता ली है।
22: इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईटी ने सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। इस मामले में अब अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और मनीष शुक्ला के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अयोध्या का चढ़ावा चोरी मामला दिल्ली में संसद तक गूंज रहा है। दूसरी तरफ जांच एजेंसियां लगातार चोरी से अर्जित संपत्तियों को लेकर खुलासे कर रही हैं। एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है, उसका पूरा खुलासा भी हो नहीं पाया, लेकिन अब चोरी कांड में सूत्रों के हवाले से आरोपी टिन्नू यादव को लेकर तमाम खुलासे जरूर हो रहे हैं।
3: इसके लिए संसद है, आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी।
22: राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर ऐसी सियासत जोरी है कि एक तरफ जांच एजेंसियां चोरों का पूरा हिसाब पता नहीं लगा पाई हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में चढ़ावा चोरी पर सियासत जोरी जबरदस्त है।
10: ये सरकार नहीं, अहंकार है। बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ही कोशिश रहती है घोटाला करने।
23: राम मंदिर में चोरी क्यों हो रही है, तो क्या ये प्रधानमंत्री का जवाब है? शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री।
24: लूट मची है, चंदा चोरी,
25: उन्होंने रखवाली नहीं, चोरी नहीं है, डकैती।
22: अयोध्या में हुई चढ़ावा चोरी पर इस सियासी शोर के बीच जांच एजेंसियां तमाम खुलासे कर रही हैं और ये खुलासे खुद आरोपियों से पूछताछ के बाद हुए हैं। एक दिन पहले करीब 40 घंटे तक पुलिस रिमांड में रहे टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव से हुई पूछताछ में पुलिस को बड़े राज की बातें पता चली हैं।
26: चढ़ावा चोरी के पैसे से टिन्नू ने सूत्रों के मुताबिक कुछ संपत्तियां भी अर्जित की थी जिसके दस्तावेज पुलिस को मिल गए हैं।
22: टिन्नू यादव से 39 घंटे की पूछताछ में ही पता चला है कि अप्रैल 2026 में टिन्नू यादव ने सिफारिश कर अपने भतीजे मनीष यादव को नौकरी दिलवाई थी, जिसके बाद 15 अप्रैल 2026 से मनीष यादव को चढ़ावे की गिनती के काम में लगाया गया था। महीने भर के अंदर मई के दूसरे हफ्ते में मनीष यादव ने अविनाश शुक्ला के साथ मिलकर पहली बार चोरी की। उससे पहले मनीष यादव अनुकल्प, लवकुश और अविनाश को चोरी में मदद कर रहा था। ये भी पता चला है कि नाइट शिफ्ट के दौरान मनीष यादव को चोरी की रकम के साथ बाइक पर बैठाकर टिन्नू यादव ही बिना चेकिंग मंदिर से बाहर ले जाया करता था। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर बुलेट गाड़ी और एक कार पुलिस ने बरामद की है।
26: पुलिस ने टिन्नू यादव की पत्नी के नाम से पंजीकृत फर्म का रिकॉर्ड भी तलब किया है। इसके लिए पुलिस ने स्टेट जीएसटी ऑफिसर्स की सहायता ली है।
22: इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईटी ने सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। इस मामले में अब अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और मनीष शुक्ला के साथ आज तक ब्यूरो।
0: पहाड़ों पर भयंकर बारिश हो रही है, नतीजा ये हुआ है कि पहाड़ टूट रहे हैं, लगातार भूस्खलन फ्लैश फ्लड हो रहा है, बादल फट रहे हैं, पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, लोगों की जानमाल का भारी नुकसान लोगों को हो रहा है और सबसे ज्यादा बुरा हाल है जम्मू कश्मीर का।
1: बारिश कहर बरपा रही है, खास तौर पर जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में तो कोहराम मचा हुआ है। कहीं बादल फट रहा है, कहीं फ्लैश फ्लड आ रहा है, कहीं पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं, कहीं भारी भूस्खलन हो रहा है, कहीं पूरा पहाड़ ही भरभरा कर नीचे गिर जा रहा है।
4: देखो भाई ये टन रही है।
1: पूरे जम्मू कश्मीर में 12 लोगों की मौत हुई है, बहुत से लोग लापता हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल राजौरी, पुंछ, डोडा और किश्तवाड़ में है। एहतियातन वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। पुंछ में भारी बारिश के बाद आए फ्लैश फ्लड में भाटा दूरिया टनल उजड़ गई। राजौरी में खेवड़ा नाला ओवरफ्लो हो गया जिसका पानी कई कॉलोनियों में घुस गया। फ्लैश फ्लड में कई गाड़ियां बह गई और कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। आर्मी, SDRF और पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं और चिंता की बात यह है कि अगले 24 से 36 घंटों तक अभी और ज्यादा बारिश का अनुमान है। ये पुंछ की तस्वीरें हैं जहां एक प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा का पूरा पहाड़ ही गिर गया। नीचे मशीनें दिख रही हैं, पूरा सुरंग प्रोजेक्ट है लेकिन ऊपर से भूस्खलन हो गया। भारी बारिश से मिट्टी कच्ची हो गई और पूरा पहाड़ ही नीचे गिर गया। अचानक से भारी बारिश के बाद आए फ्लैश फ्लड का पानी रेजिडेंशियल इलाकों में घुस गया है। इसी तरह से यह तबाही भी पुंछ में ही हुई है। यहाँ पुंछ नेशनल हाईवे 144 को बनाने का काम चल रहा है। ये कंपनी यहाँ पर 35 किलोमीटर की सड़क बना रही थी लेकिन अचानक से रात में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। यहाँ काम कर रहे मजदूरों की जान किसी तरह से बच गई लेकिन उनकी मशीनें, बाकी सामान सब कुछ बह गया। अंदर सीमेंट का गोदाम था जिसमें 5000 से ज्यादा सीमेंट के बैग थे। इतना पानी आया कि सब कुछ खराब हो गया।
6: सर इसमें काफी करीब जो रात को पानी आए हैं, फ्लड आए हैं, उसके काफी हमारे मटेरियल नुकसान हुए हैं।
1: यहाँ SGI कंपनी पिछले 3 साल से पुंछ नेशनल हाईवे को बनाने का काम कर रही है। ये पुंछ का बफलियास इलाका है। यहाँ भी भयंकर बारिश के बाद बादल फटा और फ्लैश फ्लड आ गया। पूरा रास्ता, स्कूल, सब जगह मलबा भर गया है। किश्तवाड़ में भी रैटल पावर प्रोजेक्ट साइट पर अचानक से फ्लैश फ्लड आ गया। ये पावर प्रोजेक्ट नदी के किनारे था, बगल में नदी बह रही है और इधर ये पावर प्लांट। तस्वीरों में दिख रहा है कि ऊपर पूरा पहाड़ है और उसके अंदर से पानी आ रहा है। पूरे प्रोजेक्ट पर खतरा मंडरा रहा है। आगे फ्लैश फ्लड का यही पानी रेजिडेंशियल इलाकों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। डोडा में रागी नाला के पास भूस्खलन की वजह से ऊपर से एक बस के ऊपर पत्थर गिरे जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। यहाँ राजौरी में नदी में आई बाढ़ की वजह से एक पुल भी टूटा है और बहुत सा नुकसान हुआ है। नदी लगातार उफान पर है, आज भी बारिश हुई है।
7: तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से ये हिस्सा जो है पूरी तरह से इस ब्रिज का टूट चुका है। उफान पर होने के बाद जब इस ब्रिज के नजदीक पानी पहुंचता है तो इसका आधा हिस्सा जो है वो इस तरफ वाला वो बहा के साथ में ले जाता है।
1: ये भी राजौरी की तस्वीरें हैं, जहां दो भैंसें इन लहरों के बीच में फंस गई हैं। भैंसों को रस्सियों के सहारे निकालने की कोशिश हो रही है। एक शख्स भी अपनी जान जोखिम में डालकर इन भैंसों को निकाल रहा है। बताया जा रहा है कि ये गुर्जर समुदाय के जानवर हैं। ये गांदेरबल का सफापुर इलाका है, जहां फ्लैश फ्लड आया है। पानी की रफ्तार देखकर आप ये धोखा खा सकते हैं कि जैसे ये कोई नदी होगी, लेकिन ये मुख्य सड़क है जिस पर गाड़ियां भी चल रही हैं, लेकिन पूरी सड़क पर मटमैला पानी भरा हुआ है। श्रीनगर शहर में भी भारी बारिश हुई है, इतनी कि यहाँ के प्रसिद्ध लाल चौक एरिया में पानी जमा हो गया।
9: नदियां उफान पर हैं, यहां तक कि अमरनाथ यात्रा को आज दूसरे दिन भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि अमरनाथ गुफा के आसपास इलाकों में कल से ही तेज बारिशें हो रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले दो दिन तक कश्मीर के अधिकतर इलाकों में इसी तरह तेज बारिशें होंगी।
1: भारी बारिश को देखते हुए माता वैष्णो देवी की यात्रा को भी स्थगित करना पड़ा है। अब जो श्रद्धालु यहां पहुंचे थे, वो इस उम्मीद में हैं कि यात्रा फिर से शुरू होगी, लेकिन खराब मौसम को देखते हुए ये उम्मीद कम लगती है।
11: दो तीन दिन लगेंगे खुलने में, अभी दर्शन करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है।
1: उधर खराब मौसम की वजह से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा भी रोक दी गई है। लगातार बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा भी प्रभावित हो रही है। केदारनाथ हाईवे और केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भी भूस्खलन हो रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल अग्रिम आदेशों तक केदारनाथ यात्रा को रोका गया है और यात्रियों से सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील की गई है।
12: मौसम विभाग ने वर्षा की भारी चेतावनी जारी की गई थी, जिससे कि जनपद में रात भर रुक रुक करके बारिश हो रही है और केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह लैंडस्लाइड होने की स्थिति बनी हुई है और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए और यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है।
1: रुद्रप्रयाग में बाबा केदार के रास्ते पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के अलावा अन्य सहायक नदियां भी उफान पर बह रही हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी विकराल रूप धारण करते हुए वार्निंग लेवल के पास बह रही है। नदी किनारे के सभी घाट डूब गए हैं। अलकनंदा नदी से 30 मीटर दूर भगवान शिव की विशाल मूर्ति भी जलमग्न हो चुकी है।
13: पैदल यात्रा मार्ग सहित केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन हो रहा है और यात्रियों को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए आज के लिए केदारनाथ यात्रा को फिलहाल अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया है।
1: भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड में एक नेशनल हाईवे समेत 60 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का काम चल रहा है। सोमवार को बारिश की वजह से उत्तराखंड के सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित करनी पड़ी। बहुत से पहाड़ी जिलों के लिए मौसम विभाग की तरफ से बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज तक ब्यूरो।
0: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: सीजेपी प्रदर्शनकारियों ने जेपी नड्डा से किया मुलाकात। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ रखी 3 मांगे। कहा सरकार हमारी बातों पर करेगी विचार। केरल हाउस के करीब प्रदर्शन शिफ्ट। दिल्ली में हालात सामान्य। बच्ची से मारपीट और 50 लोगों के घायल होने की खबर का पुलिस ने खंडन किया। राहुल गांधी का सरकार पर हमला, पुलिस को भी चेताया। संसद का मानसून सत्र के पहले दिन ही मूसलाधार सियासत। दोनों ही सदनों में जोरदार हंगामा। संकट के बीच शाह धर्मेंद्र प्रधान के बीच मैराथन बातचीत। चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। सीजेआई ने दिया आदेश, एसआईटी का हो पुनर्गठन। सीनियर अधिकारी की अगुवाई में हो जांच, अब अगले हफ्ते हियरिंग। और उत्तर से पूर्व तक कुदरत का कहर। असम के जोरहाट शिवसागर में भीषण तबाही। पुंछ में लैंडस्लाइड से 7 की मौत। अमरनाथ यात्रा आज और कल के लिए भी स्थगित। कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर से संसद तक मार्च किया। देश की राजधानी दिल्ली में संसद से लेकर सड़क तक हंगामा नजर आया। कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च को रोकने के लिए संसद भवन के पास आंसू गैस के गोले दागे गए और संसद के सभी दरवाजों पर सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य कर दी गई, जिसकी वजह से अब स्थिति नियंत्रण में है।
1: जबरदस्त हंगामा बरपा है। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक संसद भवन का घेराव कर रहे हैं और पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। प्रदर्शनकारी बेकाबू हुए तो पुलिस को उन्हें रोकने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा, फिर लाठियां चली, आंसू गैस के गोले दागे गए। प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए राजीव चौक और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन तक में घुस गए, जबकि कई लोग बैरिकेडिंग तोड़कर सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने तक पहुंच गए। कर्तव्य पथ पर भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। देखिए, ये दोपहर में करीब 1:30 बजे की तस्वीरें हैं।
2: कर्तव्य पथ का चौराहा है जहां आपको सिर्फ पुलिस के साइरेंस सुनाई देंगे और ये तस्वीर है जहां प्रोटेस्टर्स कुछ इस तरीके से
1: सोशल मीडिया पर बताया गया कि प्रदर्शनकारियों में बहुत सारे घायल हैं, जिस पर दिल्ली पुलिस ने सफाई दी। दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि सोशल मीडिया पर गीतांजलि नाम की 12 साल की लड़की के साथ मारपीट, बाल खींचने और सिर में चोट लगने और साथ ही लगभग 40 से 50 अन्य लोगों के सिर फूटने के दावों वाली पोस्ट में गलत जानकारी फैलाई जा रही है। ये जानकारी गलत है। पोस्ट में किए जा रहे दावे सच नहीं है। कृपया गलत या गुमराह करने वाली जानकारी न फैलाएं और न ही उसे आगे बढ़ाएं। बहरहाल काफी देर तक यूं ही बवाल चलता रहा, लेकिन कुछ घंटों में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पा लिया।
2: कर्तव्य पथ पर हम लोग खड़े हुए हैं और अभी यहाँ पे स्थिति जो है, आप कह लीजिए कि यातायात जो है वो चालू हो गया है। स्थिति यहाँ पे ये है कि प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है, लेकिन 2 घंटे पहले यहाँ पे तस्वीर बेहद अलग थी। तमाम प्रदर्शनकारी इन लॉन्स में पीछे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे भरे हुए थे, और उसके अलावा खाकी का जो आपको तैनाती दिख रही है बिल्कुल एक्शन में दिल्ली पुलिस और अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे थे। एंटी राइड व्हीकल्स पीछे और तमाम दिल्ली पुलिस के बसें यहाँ पे तैनात थी, लेकिन अब वो खाली करा दिया गया है।
1: कुछ देर पहले तक रेल भवन के पास भी प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा था, लेकिन वहां भी थोड़ी देर में स्थिति नियंत्रण में आ गई।
3: मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं, जो कि रफी मार्ग है, जो कि रेल भवन से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। कुछ घंटे पहले यहां पर तमाम प्रदर्शनकारी मौजूद थे। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के द्वारा इस पूरे इलाके को अब खाली करा लिया गया है।
1: संसद भवन के आसपास भी सड़कें अब खाली हैं। संसद से विजय चौक तक का इलाका खाली और सामान्य दिख रहा है।
4: यहाँ पर एकदम नॉर्मल सी है, जिस तरीके के बैरिकेड्स लगाए गए थे ताकि जो प्रदर्शनकारी थे जब वो यहाँ आने की कोशिश कर रहे थे, वो सभी बैरिकेड्स को एक तरफ साइड में खड़ा कर दिया गया है। और संसद परिसर के बाहर भी जो सामान्य तौर पर जो पुलिस कर्मी होते हैं वही लोग इस समय मौजूद हैं।
1: जंतर मंतर पर भी जहाँ सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा था उसे भी खाली करा लिया गया है। कुल मिलाकर अब स्थिति नियंत्रण में है। आज तक ब्यूरो।
0: सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि विपक्ष ने सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को मुद्दा बना लिया है और सरकार पर जोरदार हमला बोला है। विपक्ष मांग कर रहा है कि सीजेपी की मांगों को सरकार माने।
5: सीजेपी के प्रदर्शन ने विपक्ष को सरकार के खिलाफ निशाना साधने का मौका दे दिया। आम आदमी पार्टी के दो नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह सीजेपी के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे, जहां पुलिस अफसर से उनकी तीखी बहस हुई।
6: आपको वहां हमने कहा था कि उस वाला वो रास्ता खुला, आप प्लीज उधर से आ जाइए।
7: तो इधर से मान लो,
6: नहीं सुनो, एक मिनट सुनो ना, वो रास्ता है जंतर मंतर के लिए,
7: ये है ना रास्ता, यहां से
6: रास्ता नहीं है सर,
7: ये रास्ता।
6: अरे जंतर मंतर बराबर आते हैं,
8: सारे लोग आ रहे हैं,
7: सुनिए मेरी बात।
5: समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव भी जंतर मंतर पहुंची, जहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।
9: आज पूरे लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इतिहास के लिए ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप मीडिया रिपोर्टर्स हैं, पुलिस वाले भी उनकी आंखों में शर्मिंदगी दिख रही थी, लेकिन अपनी ड्यूटी के कारण अपने बैचेस निकाल के आए थे, गुंडे बने हुए थे कुछ पुलिस वाले, कुछ पुलिस वाले तो सहयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले बिना वर्दी के आए थे और बच्चों को मारा है, बच्चों को करंट दिया है, और जहां रूल होता है कि आपको टांगों पे मारा चाहिए, बच्चों की छातियों पे मारा है।
5: इधर संसद के गलियारे में भी सीजेपी के प्रदर्शन की गूंज सुनाई दे रही थी।
10: इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार को? और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र, नौजवान, युवा जब यहाँ आए हैं, और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती है। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहे अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं।
11: बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है, और बच्चों पे आप टियर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हमारे।
5: कांग्रेस पूछ रही है कि अपना हक मांगने वाले युवाओं पर लाठीचार्ज क्यों?
12: क्या मांग कर रहे हैं? अपने भविष्य की मांग कर रहे हैं, अपने भविष्य सुरक्षित रहे उनकी मांग कर रहे हैं, तो ऐसे नौबत में लाठी चार्ज की क्या जरूरत है?
5: विपक्ष सरकार पर हमलावर है, लेकिन सरकार से जुड़े नेता अलग सुर साध रहे हैं।
13: अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अच्छी तरह से डिस्कस करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ऐसे प्रोटेस्ट करने से तो कुछ काम नहीं होगा।
14: अब जो जंतर मंतर पे हो रहा है, वो विद्यार्थियों के नाम पे राजनीति हो रही है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रही है।
5: इन सब बयानों के बीच सीजेपी का प्रतिनिधि मंडल स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिला। ये तभी की तस्वीरें हैं। सीजेपी ने अपने ज्ञापन में तीन मांगे रखी हैं। नंबर एक, सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए। नंबर दो, धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए या उनका इस्तीफा हो। नंबर तीन, नीट पेपर लीक की वजह से आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले।
15: सोनम वांगचुक जी को तुरंत रिलीज किया जाए, धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन तो अब आना ही पड़ेगा। और तीसरा, जो नीट के फैमिलीज है, जो बच्चे मर गए हैं 20 से ज्यादा, उन फैमिलीज को 1 करोड़ का मुआवजा मिले।
5: इस ज्ञापन के बाद सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने भरोसा जताया है कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी। आज तक ब्यूरो।
0: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक वीडियो जारी करके मोदी सरकार पर हमला करते नजर आए। राहुल गांधी ने अपने संदेश में सरकार को युवा विरोधी बताया है।
16: दिस कंट्री हैज मेजॉरिटी ऑफ यंग पीपल। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द मोस्ट एंटी यूथ प्राइम मिनिस्टर इंडिया हैज एवर हैड। द बॉयज एंड गर्ल्स हु आर वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर नॉट क्रिमिनल्स, दे आर डिमांडिंग देयर राइट्स। देयर राइट्स आर टू हैव एन एजुकेशन सिस्टम दैट रिस्पेक्ट्स देम, टू हैव एन एजुकेशन सिस्टम दैट इज फेयर, to have an education system that is working. There's absolutely nothing wrong in what they are doing and it's disgusting what the government is doing.
0: संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया, मगर सत्र की शुरुआत ही हंगामेदार रही। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया, उसके बाद हंगामा शुरू हुआ। सदन की कार्रवाई को कई बार स्थगित करना पड़ा।
17: समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो।
5: मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई और सदन में विपक्षी सांसद जमकर बरसे।
17: सदन नहीं चलाना चाहते।
5: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। बार बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। मुख्य मुद्दा था पेपर लीक का।
18: नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्रेडिबिलिटी किसकी है, किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, दुनिया में आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे हैं।
5: लोकसभा के साथ राज्यसभा में नीट पेपर लीक का मुद्दा छाया रहा। राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया।
19: सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहाँ पर आए हैं।
5: नीट पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ संसद के भीतर ही नहीं संसद के बाहर भी गूंजा। समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ तख्ती लेकर डिंपल यादव ने मार्च किया।
20: वी वांट कि छात्रों की बात सुनी जाए, क्योंकि अब पानी जो है सर से ऊपर से निकल चुका है। देश के लिए जहाँ किसान, चाहे हमारा एनवायरनमेंट हो, चाहे हमारा युवा हो, सभी परेशान हैं, और ये सरकार कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी रिफॉर्म्स लाने को तैयार नहीं है।
5: इन तमाम हंगामों के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक के पास होने के बाद देश की सर्वोच्च अदालत में जजों की संख्या बढ़ जाएगी। इस बिल का मकसद सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या एक्ट 1956 में और संशोधन करना है। प्रस्तावित कानून का मकसद केंद्र द्वारा जारी उस अध्यादेश की जगह लेना है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की गई थी। आज तक ब्यूरो।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के बाहर अपने संबोधन में कहा कि यह सत्र काफी ऐतिहासिक है। इस सत्र में सरकार कई बिल लाने वाली है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों के सकारात्मक रवैये अपनाने और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने की भी उनसे अपील की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 28 साल के नौजवानों ने अंतरिक्ष में देश का झंडा गाड़ दिया है, मैं 56 साल के युवा की बात नहीं कर रहा।
21: जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए, हर आवाज को अवसर मिले, हर विचार को सम्मान मिले, ये संसद की हमारी भूमिका है।
0: बिहार विधानसभा में भी मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है, मगर सदन शुरू होता है इससे पहले ही विपक्ष ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी विधायकों ने विधानमंडल के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष यहां शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
5: हाथों में तख्तियां और जुबान पर तेवर, बिहार में विधानसभा में मॉनसून सत्र की शुरुआत का पहला दिन हंगामा खेज था। विपक्ष के विधायक तख्तियां लेकर पहुंचे थे, नीट पेपर लीक का मुद्दा यहां भी उछाला गया। विपक्ष के विधायकों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा।
14: विधानमंडल का मुख्य गेट है और इसके ठीक बाहर ही आरजेडी माले तमाम विपक्षी दलों के जो नेता हैं, वो विधायक हैं, वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और हाथों में स्लोगन्स है, बैनर है, पोस्टर है। आरजेडी के विधायक हैं रणविजय साहू जी। रणविजय जी, आज पहले ही दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले आप लोग तो आक्रामक तेवर,
22: ये सड़क पर और सदन के अंदर भी सरकार के आंख खोलने का काम करेंगे। आज पूरे देश भर में छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, नीच छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, पेपर लीक हुआ है, लेकिन सरकार चुप है, मोदी सरकार खामोश है और केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। जब तक बर्खास्त नहीं करेंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
5: विपक्ष आक्रामक था। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री ने भी धर्मेंद्र प्रधान पर जोरदार निशाना साधा। जंतर मंतर वाली गूंज यहां भी सुनाई दी।
2: आप भी बिहार के शिक्षा मंत्री रहे चंद्रशेखर जी, केवल नीट का सवाल ही है या और भी मुद्दों पे घेरेंगे सपा?
3: ये भाजपा नीति नफरती सरकार न सिर्फ बेरोजगारों के लिए कब्र खोद रही है, संपूर्ण

0: तस्वीर सामने आई। देखिए, इस आदमी के कंधे पर आरजेडी का गमछा था, तभी यहाँ रामकृपाल यादव पहुँचे। इसके बाद तस्वीर बदल गई। इस आदमी ने ये हरा गमछा फेंक दिया और इसकी जगह बीजेपी का गमछा पहन लिया। कार्यकर्ताओं ने आवाज लगाई कि अब ये बीजेपी में शामिल हो गया। बहरहाल बिहार विधानसभा से जोरदार हंगामे के साथ सत्र शुरू तो हो गया, लेकिन सत्र क्या सुचारू रूप से चल पाएगा, ये सवाल बना हुआ है। शशि भूषण सिंह, पटना आज तक।
1: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। रविवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के ड्राफ्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। सोमवार को इसे विधानसभा में पेश कर दिया गया। हालांकि इसके विरोध में कांग्रेस विधायक काले कपड़े पहनकर सदन में पहुंचे और आरोप लगाया कि सरकार ने चोरी से बिल पेश किया है।
2: इसके लिए संसद है, आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी
3: धन संबंधी उल्लेख। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर ऐसी सियासत जोरी है कि एक तरफ जांच एजेंसियां चोरों का पूरा हिसाब पता नहीं लगा पाई है, दूसरी तरफ दिल्ली में चढ़ावा चोरी पर सियासत जोरी जबरदस्त है।
4: ये सरकार नहीं, अहंकार है। बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ये कोशिश रहती है घोटाला करने।
5: राम मंदिर में चोरी क्यों हो रही है, तो क्या ये प्रधानमंत्री का जवाब है? शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री।
6: लूट मची है, चंदा चोरी,
7: उन्होंने रखवाली नहीं, चोरी नहीं है, डकैती।
3: अयोध्या में हुई चढ़ावा चोरी पर इस सियासी शोर के बीच जांच एजेंसियां तमाम खुलासे कर रही हैं और ये खुलासे खुद आरोपियों से पूछताछ के बाद हुए हैं। एक दिन पहले करीब 40 घंटे तक पुलिस रिमांड में रहे टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव से हुई पूछताछ में पुलिस को बड़े राज की बातें पता चली हैं।
8: चढ़ावा चोरी के पैसे से टिन्नू ने सूत्रों के मुताबिक कुछ संपत्तियां भी अर्जित की थी, जिसके दस्तावेज पुलिस को मिल गए हैं।
3: टिन्नू यादव से 39 घंटे की पूछताछ में ही पता चला है कि अप्रैल 2026 में टिन्नू यादव ने सिफारिश कर अपने भतीजे मनीष यादव को नौकरी दिलवाई थी, जिसके बाद 15 अप्रैल 2026 से मनीष यादव को चढ़ावे की गिनती के काम में लगाया गया था। महीने भर के अंदर मई के दूसरे हफ्ते में मनीष यादव ने अविनाश शुक्ला के साथ मिलकर पहली बार चोरी की। उससे पहले मनीष यादव अनुकल्प, लवकुश और अविनाश को चोरी में मदद कर रहा था। ये भी पता चला है कि नाइट शिफ्ट के दौरान मनीष यादव को चोरी की रकम के साथ बाइक पर बैठाकर टिन्नू यादव ही बिना चेकिंग मंदिर से बाहर ले जाया करता था। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर बुलेट गाड़ी और एक कार पुलिस ने बरामद की है।
8: पुलिस ने टिन्नू यादव की पत्नी के नाम से पंजीकृत फर्म का रिकॉर्ड भी तलब किया है। इसके लिए पुलिस ने स्टेट GST ऑफिसर्स की सहायता ली है।
3: इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में आज SIT ने सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। इस मामले में अब अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और मनीष शुक्ला के साथ आज तक ब्यूरो।
1: अयोध्या का चढ़ावा चोरी मामला दिल्ली में संसद तक गूंज रहा है। दूसरी तरफ जांच एजेंसियां लगातार चोरी से अर्जित संपत्तियों को लेकर खुलासे कर रही हैं। SIT ने सुप्रीम कोर्ट में क्या स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है, उसका पूरा खुलासा भी हो नहीं पाया। लेकिन अब चोरी कांड में सूत्रों के हवाले से आरोपी टिन्नू यादव को लेकर तमाम खुलासे जरूर हो रहे हैं।
2: इसके लिए संसद है, आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी धन संबंधी उल्लेख।
3: राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर ऐसी सियासत जोरी है कि एक तरफ जांच एजेंसियां चोरों का पूरा हिसाब पता नहीं लगा पाई है, दूसरी तरफ दिल्ली में चढ़ावा चोरी पर सियासत जोरी जबरदस्त है।
4: ये सरकार नहीं, अहंकार है। बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ये कोशिश रहती है घोटाला करने।
5: राम मंदिर में चोरी क्यों हो रही है, तो क्या ये प्रधानमंत्री का जवाब है? शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री।
6: लूट मची है, चंदा चोरी,
7: उन्होंने रखवाली नहीं, चोरी नहीं है, डकैती।
3: अयोध्या में हुई चढ़ावा चोरी पर इस सियासी शोर के बीच जांच एजेंसियां तमाम खुलासे कर रही हैं और ये खुलासे खुद आरोपियों से पूछताछ के बाद हुए हैं। एक दिन पहले करीब 40 घंटे तक पुलिस रिमांड में रहे टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव से हुई पूछताछ में पुलिस को बड़े राज की बातें पता चली हैं।
8: चढ़ावा चोरी के पैसे से टिन्नू ने सूत्रों के मुताबिक कुछ संपत्तियां भी अर्जित की थी, जिसके दस्तावेज पुलिस को मिल गए हैं।
3: टिन्नू यादव से 39 घंटे की पूछताछ में ही पता चला है कि अप्रैल 2026 में टिन्नू यादव ने सिफारिश कर

0: अपने भतीजे मनीष यादव को नौकरी दिलवाई थी, जिसके बाद 15 अप्रैल 2026 से मनीष यादव को चढ़ावे की गिनती के काम में लगाया गया था। महीने भर के अंदर मई के दूसरे हफ्ते में मनीष यादव ने अविनाश शुक्ला के साथ मिलकर पहली बार चोरी की। उससे पहले मनीष यादव अनुकल्प, लवकुश और अविनाश को चोरी में मदद कर रहा था। ये भी पता चला है कि नाइट शिफ्ट के दौरान मनीष यादव को चोरी की रकम के साथ बाइक पर बैठाकर टिन्नू यादव ही बिना चेकिंग मंदिर से बाहर ले जाया करता था। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर बुलेट गाड़ी और एक कार पुलिस ने बरामद की है।
1: पुलिस ने टिन्नू यादव की पत्नी के नाम से पंजीकृत फर्म का रिकॉर्ड भी तलब किया है। इसके लिए पुलिस ने स्टेट जीएसटी ऑफिसर्स की सहायता ली है।
0: इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईटी ने सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। इस मामले में अब अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और मनीष शुक्ला के साथ आज तक ब्यूरो।
2: पहाड़ों पर भयंकर बारिश हो रही है, नतीजा ये हुआ है कि पहाड़ टूट रहे हैं, लगातार भूस्खलन फ्लैश फ्लड हो रहा है, बादल फट रहे हैं, पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, लोगों की जानमाल का भारी नुकसान लोगों को हो रहा है और सबसे ज्यादा बुरा हाल है जम्मू कश्मीर का।
3: बारिश कहर बरपा रही है, खास तौर पर जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में तो कोहराम मचा हुआ है। कहीं बादल फट रहा है, कहीं फ्लैश फ्लड आ रहा है, कहीं पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं, कहीं भारी भूस्खलन हो रहा है, कहीं पूरा पहाड़ ही भरभरा कर नीचे गिर जा रहा है।
4: देखो भाई ये डंड रही है।
3: पूरे जम्मू कश्मीर में 12 लोगों की मौत हुई है, बहुत से लोग लापता हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल राजौरी, पुंछ, डोडा और किश्तवाड़ में है। एहतियातन वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। पुंछ में भारी बारिश के बाद आए फ्लैश फ्लड में भाटा दूरिया टनल उजड़ गई। राजौरी में खेवड़ा नाला ओवरफ्लो हो गया, जिसका पानी कई कॉलोनियों में घुस गया। फ्लैश फ्लड में कई गाड़ियां बह गई और कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। आर्मी, SDRF और पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं और चिंता की बात यह है कि अगले 24 से 36 घंटों तक अभी और ज्यादा बारिश का अनुमान है। ये पुंछ की तस्वीरें हैं, जहां एक प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा का पूरा पहाड़ ही गिर गया। नीचे मशीनें दिख रही हैं, पूरा सुरंग प्रोजेक्ट है, लेकिन ऊपर से भूस्खलन हो गया। भारी बारिश से मिट्टी कच्ची हो गई और पूरा पहाड़ ही नीचे गिर गया। अचानक से भारी बारिश के बाद आए फ्लैश फ्लड का पानी रेजिडेंशियल इलाकों में घुस गया है। इसी तरह से यह तबाही भी पुंछ में ही हुई है। यहाँ पुंछ नेशनल हाईवे 144 को बनाने का काम चल रहा है। ये कंपनी यहाँ पर 35 किलोमीटर की सड़क बना रही थी, लेकिन अचानक से रात में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। यहाँ काम कर रहे मजदूरों की जान किसी तरह से बच गई, लेकिन उनकी मशीनें, बाकी सामान सब कुछ बह गया। अंदर सीमेंट का गोदाम था, जिसमें 5,000 से ज्यादा सीमेंट के बैग थे। इतना पानी आया कि सब कुछ खराब हो गया।
5: सर इसमें काफी करीब जो रात को पानी आए हैं, फ्लड आए हैं, उसके काफी हमारे मटेरियल नुकसान हुए हैं।
3: यहाँ SGI कंपनी पिछले 3 साल से पुंछ नेशनल हाईवे को बनाने का काम कर रही है। ये पुंछ का बफलियाज इलाका है। यहाँ भी भयंकर बारिश के बाद बादल फटा और फ्लैश फ्लड आ गया। पूरा रास्ता, स्कूल, सब जगह मलबा भर गया है। किश्तवाड़ में भी रैटल पावर प्रोजेक्ट साइट पर अचानक से फ्लैश फ्लड आ गया। ये पावर प्रोजेक्ट नदी के किनारे था, बगल में नदी बह रही है और इधर ये पावर प्लांट। तस्वीरों में दिख रहा है कि ऊपर पूरा पहाड़ है और उसके अंदर से पानी आ रहा है। पूरे प्रोजेक्ट पर खतरा मंडरा रहा है। आगे फ्लैश फ्लड का यही पानी रेजिडेंशियल इलाकों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। डोडा में रागी नाला के पास भूस्खलन की वजह से ऊपर से एक बस के ऊपर पत्थर गिरे, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। यहाँ राजौरी में नदी में आई बाढ़ की वजह से एक पुल भी टूटा है और बहुत सा नुकसान हुआ है। नदी लगातार उफान पर है, आज भी बारिश हुई है।
6: तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से ये हिस्सा जो है पूरी तरह से इस ब्रिज का टूट चुका है।
7: उफान पर होने के बाद जब इस ब्रिज के नजदीक पानी पहुंचता है तो इसका आधा हिस्सा जो है वो इस तरफ वाला वो बहा के साथ में ले जाता है।
3: ये भी राजौरी की तस्वीरें हैं, जहां 2 भैंसें इन लहरों के बीच में फंस गई हैं। भैंसों को रस्सियों के सहारे निकालने की कोशिश हो रही है। एक शख्स भी अपनी जान जोखिम में डालकर इन भैंसों को निकाल रहा है। बताया जा रहा है कि ये गुर्जर समुदाय के जानवर हैं। ये गांधेरबल का सफापुर इलाका है जहाँ फ्लैश फ्लड आया है। पानी की रफ्तार देखकर आप ये धोखा खा सकते हैं कि जैसे ये कोई नदी होगी, लेकिन ये मुख्य सड़क है जिस पर गाड़ियां भी चल रही हैं, लेकिन पूरी सड़क पर मटमैला पानी भरा हुआ है। श्रीनगर शहर में भी भारी बारिश हुई है, इतनी कि यहाँ के प्रसिद्ध लाल चौक एरिया में पानी जमा हो गया।
8: नदियां उफान पर हैं, यहां तक कि अमरनाथ यात्रा को आज दूसरे दिन भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि अमरनाथ गुफा के आसपास इलाकों में कल से ही तेज बारिशें हो रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले दो दिन तक कश्मीर के अधिकतर इलाकों में इसी तरह तेज बारिशें होंगी।
3: भारी बारिश को देखते हुए माता वैष्णो देवी की यात्रा को भी स्थगित करना पड़ा है। अब जो श्रद्धालु यहां पहुंचे थे वो इस उम्मीद में हैं कि यात्रा फिर से शुरू होगी, लेकिन खराब मौसम को देखते हुए ये उम्मीद कम लगती है।
9: दो तीन दिन लगेंगे खुलने में, अभी दर्शन करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है।
3: उधर खराब मौसम की वजह से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा भी रोक दी गई है। लगातार बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा भी प्रभावित हो रही है। केदारनाथ हाईवे और केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भी भूस्खलन हो रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल अग्रिम आदेशों तक केदारनाथ यात्रा को रोका गया है और यात्रियों से सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील की गई है।
10: मौसम विभाग ने वर्षा की भारी चेतावनी जारी की गई थी, जिससे कि जनपद में रात भर रुक रुक करके बारिश हो रही है और केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह लैंडस्लाइड होने की स्थिति बनी हुई है और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए और यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है।
3: रुद्रप्रयाग में बाबा केदार के रास्ते पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के अलावा अन्य सहायक नदियां भी उफान पर बह रही हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी विकराल रूप धारण करते हुए वार्निंग लेवल के पास बह रही है। नदी किनारे के सभी घाट डूब गए हैं। अलकनंदा नदी से 30 मीटर दूर भगवान शिव की विशाल मूर्ति भी जलमग्न हो चुकी है।
6: पैदल यात्रा मार्ग सहित केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन हो रहा है और यात्रियों को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए आज के लिए केदारनाथ यात्रा को फिलहाल अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया है।
3: भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड में एक नेशनल हाईवे समेत 60 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का काम चल रहा है। सोमवार को बारिश की वजह से उत्तराखंड के सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित करनी पड़ी। बहुत से पहाड़ी जिलों के लिए मौसम विभाग की तरफ से बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज तक ब्यूरो।
2: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: सीजेपी प्रदर्शनकारियों ने जेपी नड्डा से किया मुलाकात। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ रखी 3 मांगे। कहा सरकार हमारी बातों पर करेगी विचार। केरल हाउस के करीब प्रदर्शन शिफ्ट। दिल्ली में हालात सामान्य। बच्ची से मारपीट और 50 लोगों के घायल होने की खबर का पुलिस ने खंडन किया। राहुल गांधी का सरकार पर हमला, पुलिस को भी चेताया। संसद का मानसून सत्र के पहले दिन ही मूसलाधार से आसत। दोनों ही सदनों में जोरदार हंगामा। संकट के बीच शाह धर्मेंद्र प्रधान के बीच मैराथन बातचीत। चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। सीजीआई ने दिया आदेश, एसआईटी का हो पुनर्गठन। सीनियर अधिकारी की अगुवाई में हो जांच। अब अगले हफ्ते हियरिंग। और उत्तर से पूर्व तक कुदरत का कहर। असम के जोरहाट शिवसागर में भीषण तबाही। पुंछ में लैंडस्लाइड से 7 की मौत। अमरनाथ यात्रा आज और कल के लिए भी स्थगित। कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर से संसद तक मार्च किया। देश की राजधानी दिल्ली में संसद से लेकर सड़क तक हंगामा नजर आया। कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च को रोकने के लिए संसद भवन के पास आंसू गैस के गोले दागे गए और संसद के सभी दरवाजों पर सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य कर दी गई, जिसकी वजह से अब स्थिति नियंत्रण में है।
1: जबरदस्त हंगामा बरपा है। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक संसद भवन का घेराव कर रहे हैं और पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। प्रदर्शनकारी बेकाबू हुए तो पुलिस को उन्हें रोकने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा, फिर लाठियां चली, आंसू गैस के गोले दागे गए। प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए राजीव चौक और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन तक में घुस गए, जबकि कई लोग बैरिकेडिंग तोड़कर सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने तक पहुंच गए। कर्तव्य पथ पर भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। देखिए, ये दोपहर में करीब 1:30 बजे की तस्वीरें हैं।
2: कर्तव्य पथ का चौराहा है जहां आपको सिर्फ पुलिस के साइरन सुनाई देंगे और ये तस्वीर है जहां प्रोटेस्टर्स कुछ इस तरीके से
1: सोशल मीडिया पर बताया गया कि प्रदर्शनकारियों में बहुत सारे घायल हैं, जिस पर दिल्ली पुलिस ने सफाई दी। दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि सोशल मीडिया पर गीतांजलि नाम की 12 साल की लड़की के साथ मारपीट, बाल खींचने और सिर में चोट लगने और साथ ही लगभग 40 से 50 अन्य लोगों के सिर फूटने के दावों वाली पोस्ट में गलत जानकारी फैलाई जा रही है। ये जानकारी गलत है। पोस्ट में किए जा रहे दावे सच नहीं है। कृपया गलत या गुमराह करने वाली जानकारी न फैलाएं और न ही उसे आगे बढ़ाएं। बहरहाल काफी देर तक यूं ही बवाल चलता रहा, लेकिन कुछ घंटों में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पा लिया।
2: कर्तव्य पथ पर हम लोग खड़े हुए हैं और अभी यहाँ पे स्थिति जो है, आप कह लीजिए कि यातायात जो है वो चालू हो गया है। स्थिति यहाँ पे ये है कि प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है, लेकिन 2 घंटे पहले यहाँ पे तस्वीर बेहद अलग थी। तमाम प्रदर्शनकारी इन लॉन्स में पीछे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे भरे हुए थे, और उसके अलावा खाकी का जो आपको तैनाती दिख रही है बिल्कुल एक्शन में दिल्ली पुलिस और अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे थे। एंटी राइड व्हीकल्स पीछे और तमाम दिल्ली पुलिस के बसें यहाँ पे तैनात थी, लेकिन अब वो खाली करा दिया गया है।
1: कुछ देर पहले तक रेल भवन के पास भी प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा था, लेकिन वहां भी थोड़ी देर में स्थिति नियंत्रण में आ गई।
3: मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं, जो कि रफी मार्ग है, जो कि रेल भवन से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। कुछ घंटे पहले यहां पर तमाम प्रदर्शनकारी मौजूद थे। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के द्वारा इस पूरे इलाके को अब खाली करा लिया गया है।
1: संसद भवन के आसपास भी सड़कें अब खाली हैं। संसद से विजय चौक तक का इलाका खाली और सामान्य दिख रहा है।
4: यहाँ पर एकदम नॉर्मल सी है, जिस तरीके के बैरिकेड्स लगाए गए थे ताकि जो प्रदर्शनकारी थे जब वो यहाँ आने की कोशिश कर रहे थे, वो सभी बैरिकेड्स को एक तरफ साइड में खड़ा कर दिया गया है। और संसद परिसर के बाहर भी जो सामान्य तौर पर जो पुलिस कर्मी होते हैं वही लोग इस समय मौजूद है।
1: जंतर मंतर पर भी जहाँ सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा था उसे भी खाली करा लिया गया है। कुल मिलाकर अब स्थिति नियंत्रण में है। आज तक ब्यूरो।
0: सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि विपक्ष ने सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को मुद्दा बना लिया है और सरकार पर जोरदार हमला बोला है। विपक्ष मांग कर रहा है कि सीजेपी की मांगों को सरकार माने।
5: सीजेपी के प्रदर्शन ने विपक्ष को सरकार के खिलाफ निशाना साधने का मौका दे दिया। आम आदमी पार्टी के दो नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह सीजेपी के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे, जहां पुलिस अफसर से उनकी तीखी बहस हुई।
6: आपको वहां हमने कहा था कि उस वाला वो रास्ता खुला, आप प्लीज उधर जा देंगे,
7: तो इधर से मान लो।
6: नहीं सुनो, एक मिनट सुनो ना। हाँ। वो रास्ता है जंतर मंतर के लिए, यहाँ से रास्ता नहीं है सर,
7: ये रास्ता।
6: अरे जंतर मंतर बराबर आते
8: हैं, सारे लोग आ रहे हैं।
7: सुनिए मेरी बात।
5: समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव भी जंतर मंतर पहुंची, जहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।
9: आज पूरे लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इतिहास के लिए ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप मीडिया रिपोर्टर्स हैं, पुलिस वाले भी उनकी आंखों में शर्मिंदगी दिख रही थी, लेकिन अपनी ड्यूटी के कारण अपने बैचेस निकाल के आए थे, गुंडे बने हुए थे कुछ पुलिस वाले। कुछ पुलिस वाले तो सहयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले बिना वर्दी के आए थे और बच्चों को मारा है, बच्चों को करंट दिया है। और जहां रूल होता है कि आपको टांगों में मारा चाहिए, बच्चों की छातियों में मारा है।
5: इधर संसद के गलियारे में भी सीजेपी के प्रदर्शन की गूंज सुनाई दे रही थी।
10: इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार को? और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र, नौजवान, युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती है। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहे अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं।
11: बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है, और बच्चों पे आप टियर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हमारे।
5: कांग्रेस पूछ रही है कि अपना हक मांगने वाले युवाओं पर लाठीचार्ज क्यों?
12: क्या मांग कर रहे हैं? अपने भविष्य की मांग कर रहे हैं, अपने भविष्य सुरक्षित रहे उनकी मांग कर रहे हैं, तो ऐसे नौबत में लाठीचार्ज की क्या जरूरत?
5: विपक्ष सरकार पर हमलावर है, लेकिन सरकार से जुड़े नेता अलग सुर साध रहे हैं।
13: अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अच्छी तरह से डिस्कस करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ऐसे प्रोटेस्ट करने से तो कुछ काम नहीं होगा।
14: अब जो जंतर मंतर पे हो रहा है वो विद्यार्थियों के नाम पे राजनीति हो रही है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रही है।
5: इन सब बयानों के बीच सीजेपी का प्रतिनिधि मंडल स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिला। ये तभी की तस्वीरें हैं। सीजेपी ने अपने ज्ञापन में तीन मांगे रखी हैं। नंबर एक, सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए। नंबर दो, धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए या उनका इस्तीफा हो। नंबर तीन, नीट पेपर लीक की वजह से आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को एक एक करोड़ का मुआवजा मिले।
15: सोनम वांगचुक जी को तुरंत रिलीज किया जाए, धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन तो अब आना ही पड़ेगा। और तीसरा, जो नीट के फैमिलीज है, जो बच्चे मर गए हैं 20 से ज्यादा, उन फैमिलीज को 1 करोड़ का मुआवजा मिले।
5: इस ज्ञापन के बाद सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने भरोसा जताया है कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी। आज तक ब्यूरो।
0: कांग्रेस जनता पार्टी ने जंतर मंतर से संसद तक मार्च किया। देश की राजधानी दिल्ली में संसद से लेकर सड़क तक हंगामा नजर आया। कांग्रेस जनता पार्टी के संसद मार्च को रोकने के लिए संसद भवन के पास आंसू गैस के गोले दागे गए और संसद के सभी दरवाजों पर सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य कर दी गई, जिसकी वजह से अब स्थिति नियंत्रण में है।
1: जबरदस्त हंगामा बरपा है। कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थक संसद भवन का घेराव कर रहे हैं और पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। प्रदर्शनकारी बेकाबू हुए तो पुलिस को उन्हें रोकने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा, फिर लाठियां चली, आंसू गैस के गोले दागे गए। प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए राजीव चौक और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन तक में घुस गए, जबकि कई लोग बैरिकेडिंग तोड़कर सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने तक पहुंच गए। कर्तव्य पथ पर भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। देखिए, ये दोपहर में करीब 1:30 बजे की तस्वीरें हैं।
16: कर्तव्य पथ का चौराहा है जहां आपको सिर्फ पुलिस के साइरेंस सुनाई देंगे और ये तस्वीर है जहां प्रोटेस्टर्स कुछ इस तरीके से घूम रहे हैं और पुलिस ये प्रोटेस्टर अभी बाहर निकले हैं आप देखिए।
1: सोशल मीडिया पर बताया गया कि प्रदर्शनकारियों में बहुत सारे घायल हैं, जिस पर दिल्ली पुलिस ने सफाई दी। दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि सोशल मीडिया पर गीतांजलि नाम की 12 साल की लड़की के साथ मारपीट, बाल खींचने और सिर में चोट लगने और साथ ही लगभग 40 से 50 अन्य लोगों के सिर फूटने के दावों वाली पोस्ट में गलत जानकारी फैलाई जा रही है। ये जानकारी गलत है, पोस्ट में किए जा रहे दावे सच नहीं है। कृपया गलत या गुमराह करने वाली जानकारी न फैलाएं और न ही उसे आगे बढ़ाएं। बहरहाल काफी देर तक यूं ही बवाल चलता रहा, लेकिन कुछ घंटों में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पा लिया।
16: कर्तव्य पथ पर हम लोग खड़े हुए हैं और अभी यहाँ पे स्थिति जो है, आप कह लीजिए कि यातायात जो है वो चालू हो गया है। स्थिति यहाँ पे ये है कि प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है, लेकिन 2 घंटे पहले यहाँ पे तस्वीर बेहद अलग थी। तमाम प्रदर्शनकारी इन लॉन्स में पीछे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे भरे हुए थे, और उसके अलावा खाकी का जो आपको तैनाती दिख रही है, बिल्कुल एक्शन में दिल्ली पुलिस और अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे थे। एंटी राइड व्हीकल्स पीछे और तमाम दिल्ली पुलिस के बसें यहां पे तैनात थी, लेकिन अब वो खाली करा दिया गया है।
1: कुछ देर पहले तक रेल भवन के पास भी प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा था, लेकिन वहां भी थोड़ी देर में स्थिति नियंत्रण में आ गई।
3: इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं, जो कि रफी मार्ग है, जो कि रेल भवन से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। कुछ घंटे पहले यहां पर तमाम प्रदर्शनकारी मौजूद थे। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के द्वारा इस पूरे इलाके को अब खाली करा लिया गया है।
1: संसद भवन के आसपास भी सड़कें अब खाली हैं। संसद से विजय चौक तक का इलाका खाली और सामान्य दिख रहा है।
4: यहाँ पर एकदम नॉर्मल सी है, जिस तरीके के बैरिकेड्स लगाए गए थे ताकि जो प्रदर्शनकारी थे जब वो यहाँ आने की कोशिश कर रहे थे, वो सभी बैरिकेड्स को एक तरफ साइड में खड़ा कर दिया गया है। और संसद परिसर के बाहर भी जो सामान्य तौर पर जो पुलिस कर्मी होते हैं वही लोग इस समय मौजूद हैं।
1: जंतर मंतर पर भी जहाँ सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा था उसे भी खाली करा लिया गया है। कुल मिलाकर अब स्थिति नियंत्रण में है। आज तक ब्यूरो।
0: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक वीडियो जारी करके मोदी सरकार पर हमला करते नजर आए। राहुल गांधी ने अपने संदेश में सरकार को युवा विरोधी बताया है।
17: दिस कंट्री हैज मेजॉरिटी ऑफ यंग पीपल। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द मोस्ट एंटी यूथ प्राइम मिनिस्टर इंडिया हैज एवर हैड। द बॉयज एंड गर्ल्स हु आर वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर नॉट क्रिमिनल्स, दे आर डिमांडिंग देयर राइट्स। देयर राइट्स आर टू हैव एन एजुकेशन सिस्टम दैट रिस्पेक्ट्स देम, टू हैव एन एजुकेशन सिस्टम दैट इज फेयर, to have an education system that is working. There's absolutely nothing wrong in what they are doing and it's disgusting what the government is doing.
0: संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया, मगर सत्र की शुरुआत ही हंगामेदार रही। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया, उसके बाद हंगामा शुरू हुआ। सदन की कार्रवाई को कई बार स्थगित करना पड़ा।
18: समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो।
5: मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई और सदन में विपक्षी सांसद जमकर बरसे।
18: सदन नहीं चलाना चाहते।
5: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया, बार बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। मुख्य मुद्दा था पेपर लीक का।
19: नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसका जिम्मेदार कौन है, क्रेडिबिलिटी किसकी है, किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, दुनिया में आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे हैं।
5: लोकसभा के साथ राज्यसभा में नीट पेपर लीक का मुद्दा छाया रहा। राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया।
20: सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं, और उसके लिए आज यहां जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं।
5: नीट पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ संसद के भीतर ही नहीं, संसद के बाहर भी गूंजा। समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ तख्ती लेकर डिंपल यादव ने मार्च किया।
2: वी वांट कि छात्रों की बात सुनी जाए, क्योंकि अब पानी जो है सर से ऊपर से निकल चुका है। देश के लिए जहाँ किसान, चाहे हमारा एनवायरमेंट हो, चाहे हमारा युवा हो, सभी परेशान है और ये सरकार कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी रिफॉर्म्स लाने को तैयार नहीं है।
5: इन तमाम हंगामों के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक के पास होने के बाद देश की सर्वोच्च अदालत में जजों की संख्या बढ़ जाएगी। इस बिल का मकसद सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या एक्ट 1956 में और संशोधन करना है। प्रस्तावित कानून का मकसद केंद्र द्वारा जारी उस अध्यादेश की जगह लेना है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की गई थी। आज तक ब्यूरो।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के बाहर अपने संबोधन में कहा कि यह सत्र काफी ऐतिहासिक है। इस सत्र में सरकार कई बिल लाने वाली है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों के सकारात्मक रवैये अपनाने और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने की भी उनसे अपील की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 28 साल के नौजवानों ने अंतरिक्ष में देश का झंडा गाड़ दिया है, मैं 56 साल के युवा की बात नहीं कर रहा।
21: जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए, हर आवाज को अवसर मिले, हर विचार को सम्मान मिले। ये संसद की हमारी भूमिका है।
0: बिहार विधानसभा में भी मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है, मगर सदन शुरू होता है इससे पहले ही विपक्ष ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी विधायकों ने विधानमंडल के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष यहां शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
5: हाथों में तख्तियां और जुबान पर तेवर, बिहार में विधानसभा में मॉनसून सत्र की शुरुआत का पहला दिन हंगामा खेज था। विपक्ष के विधायक तख्तियां लेकर पहुंचे थे, नीट पेपर लीक का मुद्दा यहां भी उछाला गया। विपक्ष के विधायकों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा।
14: विधानमंडल का मुख्य गेट है और इसके ठीक बाहर ही आरजेडी, माले, तमाम विपक्षी दलों के जो नेता हैं, वो विधायक हैं, वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और हाथों में स्लोगन्स है, बैनर है, पोस्टर है। आरजेडी के विधायक हैं रणविजय साहू जी। रणविजय जी, आज पहले ही दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले आप लोग तो आक्रामक तेवर।
22: ये सड़क पर और सदन के अंदर भी सरकार के आंख खोलने का काम करेंगे। आज पूरे देश भर में छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, नीट छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, पेपर लीक हुआ है, लेकिन सरकार चुप है, मोदी सरकार खामोश है और केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। जब तक बर्खास्त नहीं करेंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
5: विपक्ष आक्रामक था। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री ने भी धर्मेंद्र प्रधान पर जोरदार निशाना साधा। जंतर मंतर वाली गूंज यहां भी सुनाई दी।
14: आप भी बिहार के शिक्षा मंत्री रहे चंद्रशेखर जी, केवल नीट का सवाल ही है या और भी मुद्दों पे घेरेंगे सवाल?
23: ये भाजपा नीति नफरती सरकार न सिर्फ बेरोजगारों के लिए कब्र खोद रही है, संपूर्ण देश की मिल्कियत को चंद विश्वसनीय विश्वस्त उद्योगपतियों के हाथ में बेच रही है। भारत के भविष्य के लिए खतरा है, इसीलिए ऐसे निकम्मी सरकार को हटाने का संकल्प लेकर के हम लोग आंदोलन के समर्थन में हैं। जंतर मंतर पर जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई है, उसके खिलाफ हम लोग प्रतिकार स्वरूप यहां खड़े हैं। आंदोलन होगा, गली में होगी, सड़क पर होगा, सदन में होगा।
14: नेता प्रतिपक्ष क्या शामिल हो रहे हैं आज की कार्यवाही में या अभी भी बाहर?
23: नेता प्रतिपक्ष कहाँ है तो हम नहीं अभी बता सकते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष और इस पार्टी के हम लोग सिपाही हैं, हर कदम हमारी पार्टी और हमारे नेता अन्याय जुल्म के खिलाफ है।
14: चलिए, तेजस्वी यादव नहीं है और विधायकों को मालूम भी नहीं है कि कब से विधानसभा की कार्यवाही में वो शामिल होंगे और आईपी गुप्ता जो है वो भी पहुंच गए हैं।
6: मतलब सदन के अंदर भी यही रुक रहेगा गुप्ता जी?
7: अब ये जो बेशरम सरकार है वो सारे दरवाजे बंद करके, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, शासन प्रशासन को, तो हमारे पास एक ही रास्ता है, सदन।
5: मानसून सत्र शुरू होने से पहले एक और दिलचस्प तस्वीर सामने आई। देखिए, इस आदमी के कंधे पर आरजेडी का गमछा था, तभी यहाँ रामकृपाल यादव पहुँचे। इसके बाद तस्वीर बदल गई। इस आदमी ने ये हरा गमछा फेंक दिया और इसकी जगह बीजेपी का गमछा पहन लिया। कार्यकर्ताओं ने आवाज लगाई कि अब ये बीजेपी में शामिल हो गया। बहरहाल बिहार विधानसभा से जोरदार हंगामे के साथ सत्र शुरू तो हो गया, लेकिन सत्र क्या सुचारू रूप से चल पाएगा, ये सवाल बना हुआ है। शशि भूषण सिंह, पटना आज तक।
0: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। रविवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के ड्राफ्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। सोमवार को इसे विधानसभा में पेश कर दिया गया। हालांकि इसके विरोध में कांग्रेस विधायक काले कपड़े पहनकर सदन में पहुंचे और आरोप लगाया कि सरकार ने चोरी से बिल पेश किया है।
8: इसके लिए संसद है, आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संबंधी उल्लेख।
1: राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर ऐसी सियासत जोरी है कि एक तरफ जांच एजेंसियां चोरों का पूरा हिसाब पता नहीं लगा पाई हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में चढ़ावा चोरी पर सियासत जोरी जबरदस्त है।
10: ये सरकार नहीं, अहंकार है। बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ही कोशिश रहती है घोटाला करने।
16: राम मंदिर में चोरी क्यों हो रही है, तो क्या ये प्रधानमंत्री का जवाब है? शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री।
9: लूट मची है, चंदा चोरी,
24: उन्होंने रखवाली नहीं, चोरी नहीं है, डकैती।
1: अयोध्या में हुई चढ़ावा चोरी पर इस सियासी शोर के बीच जांच एजेंसियां तमाम खुलासे कर रही हैं और ये खुलासे खुद आरोपियों से पूछताछ के बाद हुए हैं। एक दिन पहले करीब 40 घंटे तक पुलिस रिमांड में रहे टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव से हुई पूछताछ में पुलिस को बड़े राज की बातें पता चली हैं।
25: चढ़ावा चोरी के पैसे से टिन्नू ने सूत्रों के मुताबिक कुछ संपत्तियां भी अर्जित की थी, जिसके दस्तावेज पुलिस को मिल गए हैं।
1: टिन्नू यादव से 39 घंटे की पूछताछ में ही पता चला है कि अप्रैल 2026 में टिन्नू यादव ने सिफारिश कर अपने भतीजे मनीष यादव को नौकरी दिलवाई थी, जिसके बाद 15 अप्रैल 2026 से मनीष यादव को चढ़ावे की गिनती के काम में लगाया गया था। महीने भर के अंदर मई के दूसरे हफ्ते में मनीष यादव ने अविनाश शुक्ला के साथ मिलकर पहली बार चोरी की। उससे पहले मनीष यादव अनुकल्प, लवकुश और अविनाश को चोरी में मदद कर रहा था। ये भी पता चला है कि नाइट शिफ्ट के दौरान मनीष यादव को चोरी की रकम के साथ बाइक पर बैठाकर टिन्नू यादव ही बिना चेकिंग मंदिर से बाहर ले जाया करता था। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर बुलेट गाड़ी और एक कार पुलिस ने बरामद की है।
25: पुलिस ने टिन्नू यादव की पत्नी के नाम से पंजीकृत फर्म का रिकॉर्ड भी तलब किया है। इसके लिए पुलिस ने स्टेट जीएसटी ऑफिसर्स की सहायता ली है।
1: इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईटी ने सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। इस मामले में अब अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और मनीष शुक्ला के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अयोध्या का चढ़ावा चोरी मामला दिल्ली में संसद तक गूंज रहा है। दूसरी तरफ जांच एजेंसियां लगातार चोरी से अर्जित संपत्तियों को लेकर खुलासे कर रही हैं। एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है, उसका पूरा खुलासा भी हो नहीं पाया, लेकिन अब चोरी कांड में सूत्रों के हवाले से आरोपी टिन्नू यादव को लेकर तमाम खुलासे जरूर हो रहे हैं।
8: इसके लिए संसद है, आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संबंधी उल्लेख।
1: राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर ऐसी सियासत जोरी है कि एक तरफ जांच एजेंसियां चोरों का पूरा हिसाब पता नहीं लगा पाई हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में चढ़ावा चोरी पर सियासत जोरी जबरदस्त है।
10: ये सरकार नहीं, अहंकार है। बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ही कोशिश रहती है घोटाला करने।
16: राम मंदिर में चोरी क्यों हो रही है, तो क्या ये प्रधानमंत्री का जवाब है? शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री।
9: लूट मची है, चंदा चोरी,
24: उन्होंने रखवाली नहीं, चोरी नहीं है, डकैती।
1: अयोध्या में हुई चढ़ावा चोरी पर इस सियासी शोर के बीच जांच एजेंसियां तमाम खुलासे कर रही हैं और ये खुलासे खुद आरोपियों से पूछताछ के बाद हुए हैं। एक दिन पहले करीब 40 घंटे तक पुलिस रिमांड में रहे टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव से हुई पूछताछ में पुलिस को बड़े राज की बातें पता चली हैं।
25: चढ़ावा चोरी के पैसे से टिन्नू ने सूत्रों के मुताबिक कुछ संपत्तियां भी अर्जित की थी जिसके दस्तावेज पुलिस को मिल गए हैं।
1: टिन्नू यादव से 39 घंटे की पूछताछ में ही पता चला है कि अप्रैल 2026 में टिन्नू यादव ने सिफारिश कर अपने भतीजे मनीष यादव को नौकरी दिलवाई थी, जिसके बाद 15 अप्रैल 2026 से मनीष यादव को चढ़ावे की गिनती के काम में लगाया गया था। महीने भर के अंदर मई के दूसरे हफ्ते में मनीष यादव ने अविनाश शुक्ला के साथ मिलकर पहली बार चोरी की। उससे पहले मनीष यादव अनुकल्प, लवकुश और अविनाश को चोरी में मदद कर रहा था। ये भी पता चला है कि नाइट शिफ्ट के दौरान मनीष यादव को चोरी की रकम के साथ बाइक पर बैठाकर टिन्नू यादव ही बिना चेकिंग मंदिर से बाहर ले जाया करता था। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर बुलेट गाड़ी और एक कार पुलिस ने बरामद की है।
25: पुलिस ने टिन्नू यादव की पत्नी के नाम से पंजीकृत फर्म का रिकॉर्ड भी तलब किया है। इसके लिए पुलिस ने स्टेट GST ऑफिसर्स की सहायता ली है।
1: इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में आज SIT ने सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। इस मामले में अब अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और मनीष शुक्ला के साथ आज तक ब्यूरो।
0: पहाड़ों पर भयंकर बारिश हो रही है, नतीजा ये हुआ है कि पहाड़ टूट रहे हैं, लगातार भूस्खलन फ्लैश फ्लड हो रहा है, बादल फट रहे हैं, पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, लोगों की जानमाल का भारी नुकसान लोगों को हो रहा है और सबसे ज्यादा बुरा हाल है जम्मू कश्मीर का।
3: बारिश कहर बरपा रही है, खास तौर पर जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में तो कोहराम मचा हुआ है। कहीं बादल फट रहा है, कहीं फ्लैश फ्लड आ रहा है, कहीं पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं, कहीं भारी भूस्खलन हो रहा है, कहीं पूरा पहाड़ ही भरभरा कर नीचे गिर जा रहा है।
4: देखो भाई ये टन रही है।
3: पूरे जम्मू कश्मीर में 12 लोगों की मौत हुई है, बहुत से लोग लापता हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल राजौरी, पुंछ, डोडा और किश्तवाड़ में है। एहतियातन वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। पुंछ में भारी बारिश के बाद आए फ्लैश फ्लड में भाटा दूरिया टनल उजड़ गई। राजौरी में खेवड़ा नाला ओवरफ्लो हो गया जिसका पानी कई कॉलोनियों में घुस गया। फ्लैश फ्लड में कई गाड़ियां बह गई और कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। आर्मी, SDRF और पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं और चिंता की बात यह है कि अगले 24 से 36 घंटों तक अभी और ज्यादा बारिश का अनुमान है। ये पुंछ की तस्वीरें हैं जहां एक प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा का पूरा पहाड़ ही गिर गया। नीचे मशीनें दिख रही हैं, पूरा सुरंग प्रोजेक्ट है लेकिन ऊपर से भूस्खलन हो गया। भारी बारिश से मिट्टी कच्ची हो गई और पूरा पहाड़ ही नीचे गिर गया। अचानक से भारी बारिश के बाद आए फ्लैश फ्लड का पानी रेजिडेंशियल इलाकों में घुस गया है। इसी तरह से ये तबाही भी पुंछ में ही हुई है। यहाँ पुंछ नेशनल हाईवे 144 को बनाने का काम चल रहा है। ये कंपनी यहाँ पर 35 किलोमीटर की सड़क बना रही थी लेकिन अचानक से रात में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। यहाँ काम कर रहे मजदूरों की जान किसी तरह से बच गई लेकिन उनकी मशीनें, बाकी सामान सब कुछ बह गया। अंदर सीमेंट का गोदाम था जिसमें 5000 से ज्यादा सीमेंट के बैग थे। इतना पानी आया कि सब कुछ खराब हो गया।
11: सर इसमें काफी करीब जो रात को पानी आए हैं, फ्लड आए हैं, उसके काफी हमारे मटेरियल नुकसान हुए हैं।
3: यहाँ SGI कंपनी पिछले 3 साल से पुंछ नेशनल हाईवे को बनाने का काम कर रही है। ये पुंछ का बफलियाज इलाका है। यहाँ भी भयंकर बारिश के बाद बादल फटा और फ्लैश फ्लड आ गया। पूरा रास्ता, स्कूल, सब जगह मलबा भर गया है। किश्तवाड़ में भी रैटल पावर प्रोजेक्ट साइट पर अचानक से फ्लैश फ्लड आ गया। ये पावर प्रोजेक्ट नदी के किनारे था, बगल में नदी बह रही है और इधर ये पावर प्लांट। तस्वीरों में दिख रहा है कि ऊपर पूरा पहाड़ है और उसके अंदर से पानी आ रहा है। पूरे प्रोजेक्ट पर खतरा मंडरा रहा है। आगे फ्लैश फ्लड का यही पानी रेजिडेंशियल इलाकों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। डोडा में रागी नाला के पास भूस्खलन की वजह से ऊपर से एक बस के ऊपर पत्थर गिरे जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। यहाँ राजौरी में नदी में आई बाढ़ की वजह से एक पुल भी टूटा है और बहुत सा नुकसान हुआ है। नदी लगातार उफान पर है, आज भी बारिश हुई है।
12: तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से ये हिस्सा जो है पूरी तरह से इस ब्रिज का टूट चुका है। उफान पर होने के बाद जब इस ब्रिज के नजदीक पानी पहुंचता है तो इसका आधा हिस्सा जो है वो इस तरफ वाला वो बहा के साथ में ले जाता है।
3: ये भी राजौरी की तस्वीरें हैं, जहां दो भैंसें इन लहरों के बीच में फंस गई हैं। भैंसों को रस्सियों के सहारे निकालने की कोशिश हो रही है। एक शख्स भी अपनी जान जोखिम में डालकर इन भैंसों को निकाल रहा है। बताया जा रहा है कि ये गुर्जर समुदाय के जानवर हैं। ये गांदेरबल का सफापुर इलाका है, जहां फ्लैश फ्लड आया है। पानी की रफ्तार देखकर आप ये धोखा खा सकते हैं कि जैसे ये कोई नदी होगी, लेकिन ये मुख्य सड़क है जिस पर गाड़ियां भी चल रही हैं, लेकिन पूरी सड़क पर मटमैला पानी भरा हुआ है। श्रीनगर शहर में भी पूरी सड़क पर मटमैला पानी भरा हुआ है। श्रीनगर शहर में भी भारी बारिश हुई है, इतनी कि यहां के प्रसिद्ध लाल चौक एरिया में पानी जमा हो गया।
13: नदियां उफान पर हैं, यहां तक कि अमरनाथ यात्रा को आज दूसरे दिन भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि अमरनाथ गुफा के आसपास कश्मीर के अधिकतर इलाकों में इसी तरह तेज बारिशें होंगी।
3: भारी बारिश को देखते हुए माता वैष्णो देवी की यात्रा को भी स्थगित करना पड़ा है। अब जो श्रद्धालु यहां पहुंचे थे, वो इस उम्मीद में हैं कि यात्रा फिर से शुरू होगी, लेकिन खराब मौसम को देखते हुए ये उम्मीद कम लगती है।
15: दो तीन दिन लगेंगे खुलने में, अभी दर्शन करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है।
3: उधर खराब मौसम की वजह से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा भी रोक दी गई है। लगातार बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा भी प्रभावित हो रही है। केदारनाथ हाईवे और केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भी भूस्खलन हो रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल अग्रिम आदेशों तक केदारनाथ यात्रा को रोका गया है और यात्रियों से सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील की गई है।
17: मौसम विभाग ने वर्षा की भारी चेतावनी जारी की गई थी, जिससे कि जनपद में रात भर रुक रुक करके बारिश हो रही है और केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह लैंडस्लाइड होने की स्थिति बनी हुई है, और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए और यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है।
3: रुद्रप्रयाग में बाबा केदार के रास्ते पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के अलावा अन्य सहायक नदियां भी उफान पर बह रही हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी विकराल रूप धारण करते हुए वार्निंग लेवल के पास बह रही है। नदी किनारे के सभी घाट डूब गए हैं। अलकनंदा नदी से 30 मीटर दूर भगवान शिव की विशाल मूर्ति भी जलमग्न हो चुकी है।
18: पैदल यात्रा मार्ग सहित केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन हो रहा है और यात्रियों को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए आज के लिए केदारनाथ यात्रा को फिलहाल अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया है।
3: भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड में एक नेशनल हाईवे समेत 60 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का काम चल रहा है। सोमवार को बारिश की वजह से उत्तराखंड के सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित करनी पड़ी। बहुत से पहाड़ी जिलों के लिए मौसम विभाग की तरफ से बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज तक ब्यूरो।
0: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: सीजेपी प्रदर्शनकारियों ने जेपी नड्डा से किया मुलाकात। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ रखी तीन मांगे। कहा सरकार हमारी बातों पर करेगी विचार। केरल हाउस के करीब प्रदर्शन शिफ्ट। दिल्ली में हालात सामान्य। बच्ची से मारपीट और 50 लोगों के घायल होने की खबर का पुलिस ने खंडन किया। राहुल गांधी का सरकार पर हमला, पुलिस को भी चेताया। संसद का मॉनसून सत्र के पहले दिन ही मूसलाधार सियासत। दोनों ही सदनों में जोरदार हंगामा। संकट के बीच शाह धर्मेंद्र प्रधान के बीच मैराथन बातचीत। चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। सीजीआई ने दिया आदेश, एसआईटी का हो पुनर्गठन। सीनियर अधिकारी की अगुवाई में हो जांच। अब अगले हफ्ते हियरिंग। और उत्तर से पूर्व तक कुदरत का कहर। असम के जोरहाट शिवसागर में भीषण तबाही। पुंछ में लैंडस्लाइड से 7 की मौत। अमरनाथ यात्रा आज और कल के लिए भी स्थगित। कांग्रेस जनता पार्टी ने जंतर मंतर से संसद तक मार्च किया। देश की राजधानी दिल्ली में संसद से लेकर सड़क तक हंगामा नजर आया। कांग्रेस जनता पार्टी के संसद मार्च को रोकने के लिए संसद भवन के पास आंसू गैस के गोले दागे गए और संसद के सभी दरवाजों पर सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य कर दी गई, जिसकी वजह से अब स्थिति नियंत्रण में है।
1: जबरदस्त हंगामा बरपा है। कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थक संसद भवन का घेराव कर रहे हैं और पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। प्रदर्शनकारी बेकाबू हुए तो पुलिस को उन्हें रोकने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा, फिर लाठियां चली, आंसू गैस के गोले दागे गए। प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए राजीव चौक और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन तक में घुस गए, जबकि कई लोग बैरिकेडिंग तोड़कर सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने तक पहुंच गए। कर्तव्य पथ पर भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। देखिए, ये दोपहर में करीब 1:30 बजे की तस्वीरें हैं।
2: कर्तव्य पथ का चौराहा है जहां आपको सिर्फ पुलिस के साइरन सुनाई देंगे और ये तस्वीर है जहां प्रोटेस्टर्स कुछ इस तरीके से बाहर निकले।
1: सोशल मीडिया पर बताया गया कि प्रदर्शनकारियों में बहुत सारे घायल हैं, जिस पर दिल्ली पुलिस ने सफाई दी। दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि सोशल मीडिया पर गीतांजलि नाम की 12 साल की लड़की के साथ मारपीट, बाल खींचने और सिर में चोट लगने और साथ ही लगभग 40 से 50 अन्य लोगों के सिर फूटने के दावों वाली पोस्ट में गलत जानकारी फैलाई जा रही है। ये जानकारी गलत है। पोस्ट में किए जा रहे दावे सच नहीं है। कृपया गलत या गुमराह करने वाली जानकारी न फैलाएं और न ही उसे आगे बढ़ाएं। बहरहाल काफी देर तक यूं ही बवाल चलता रहा, लेकिन कुछ घंटों में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पा लिया।
2: कर्तव्य पथ पर हम लोग खड़े हुए हैं और अभी यहाँ पे स्थिति जो है, आप कह लीजिए कि यातायात जो है वो चालू हो गया है। स्थिति यहाँ पे ये है कि प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है, लेकिन 2 घंटे पहले यहाँ पे तस्वीर बेहद अलग थी। तमाम प्रदर्शनकारी इन लॉन्स में पीछे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे भरे हुए थे और उसके अलावा खाकी का जो आपको तैनाती दिख रही है, बिल्कुल एक्शन में दिल्ली पुलिस और अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे थे। एंटी राइड व्हीकल्स पीछे और तमाम दिल्ली पुलिस के बसें यहाँ पे तैनात थी, लेकिन अब वो खाली करा दिया गया है।
1: कुछ देर पहले तक रेल भवन के पास भी प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा था, लेकिन वहां भी थोड़ी देर में स्थिति नियंत्रण में आ गई।
3: मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं, जो कि रफी मार्ग है, जो कि रेल भवन से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। कुछ घंटे पहले यहां पर तमाम प्रदर्शनकारी मौजूद थे। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के द्वारा इस पूरे इलाके को अब खाली करा लिया गया है।
1: संसद भवन के आसपास भी सड़कें अब खाली हैं। संसद से विजय चौक तक का इलाका खाली और सामान्य दिख रहा है।
4: यहाँ पर एकदम नॉर्मल सी है, जिस तरीके के बैरिकेड्स लगाए गए थे ताकि जो प्रदर्शनकारी थे जब वो यहाँ आने की कोशिश कर रहे थे, वो सभी बैरिकेड्स को एक तरफ साइड में खड़ा कर दिया गया है और संसद परिसर के बाहर भी जो सामान्य तौर पर जो पुलिस कर्मी होते हैं वही लोग इस समय मौजूद है।
1: जंतर मंतर पर भी जहाँ सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा था उसे भी खाली करा लिया गया है। कुल मिलाकर अब स्थिति नियंत्रण में है। आज तक ब्यूरो
0: सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि विपक्ष ने सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को मुद्दा बना लिया है और सरकार पर जोरदार हमला बोला है। विपक्ष मांग कर रहा है कि सीजेपी की मांगों को सरकार माने।
5: सीजेपी के प्रदर्शन ने विपक्ष को सरकार के खिलाफ निशाना साधने का मौका दे दिया। आम आदमी पार्टी के दो नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह सीजेपी के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे, जहां पुलिस अफसर से उनकी तीखी बहस हुई।
6: आपको वहां हमने कहा था कि उस वाला वो रास्ता खुला, आप प्लीज उधर से आ जाएंगे।
7: तो इधर से मान लो,
6: नहीं सुनो, एक मिनट सुनो ना, वो रास्ता है जंतर मंतर के लिए,
7: ये है ना रास्ता,
6: यहाँ से रास्ता नहीं है सर,
7: ये रास्ता।
6: अरे जंतर मंतर बराबर आते हैं,
8: सारे लोग आ रहे हैं,
7: सुनिए मेरी बात।
5: समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव भी जंतर मंतर पहुंची, जहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।
9: आज पूरे लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इतिहास के लिए ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप मीडिया रिपोर्टर्स हैं, पुलिस वाले भी उनकी आंखों में शर्मिंदगी दिख रही थी, लेकिन अपनी ड्यूटी के कारण अपने बैचेस निकाल के आए थे, गुंडे बने हुए थे कुछ पुलिस वाले, कुछ पुलिस वाले तो सहयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले बिना वर्दी के आए थे और बच्चों को मारा है, बच्चों को करंट दिया है, और जहां रूल होता है कि आपको टांगों में मारा चाहिए, बच्चों की छातियों में मारा है।
5: इधर संसद के गलियारे में भी सीजेपी के प्रदर्शन की गूंज सुनाई दे रही थी।
10: इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार को? और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र, नौजवान, युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती है। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहे अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं।
11: बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है, और बच्चों पे आप टियर गैस कर रहे हो और उनके उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हमारे।
5: कांग्रेस पूछ रही है कि अपना हक मांगने वाले युवाओं पर लाठीचार्ज क्यों?
12: क्या मांग कर रहे हैं? अपने भविष्य की मांग कर रहे हैं, अपने भविष्य सुरक्षित रहे उनकी मांग कर रहे हैं, तो ऐसे नौबत में लाठी चार्ज की क्या जरूरत?
5: विपक्ष सरकार पर हमलावर है, लेकिन सरकार से जुड़े नेता अलग सुर साध रहे हैं।
13: अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अच्छी तरह से डिस्कस करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ऐसे प्रोटेस्ट करने से तो कुछ काम नहीं होगा।
14: अब जो जंतर मंतर पे हो रहा है वो विद्यार्थियों के नाम पे राजनीति हो रही है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रही है।
5: इन सब बयानों के बीच सीजेपी का प्रतिनिधि मंडल स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिला। ये तभी की तस्वीरें हैं। सीजेपी ने अपने ज्ञापन में तीन मांगे रखी हैं। नंबर एक, सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए। नंबर दो, धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए या उनका इस्तीफा हो। नंबर तीन, नीट पेपर लीक की वजह से आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले।
15: सोनम वांगचुक जी को तुरंत रिलीज किया जाए, धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन तो अब आना ही पड़ेगा। और तीसरा, जो नीट के फैमिलीज है, जो बच्चे मर गए हैं 20 से ज्यादा, उन फैमिलीज को 1 करोड़ का मुआवजा मिले।
5: इस ज्ञापन के बाद सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने भरोसा जताया है कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी। आज तक ब्यूरो।
0: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक वीडियो जारी करके मोदी सरकार पर हमला करते नजर आए। राहुल गांधी ने अपने संदेश में सरकार को युवा विरोधी बताया है।
16: इस कंट्री हैज मेजॉरिटी ऑफ यंग पीपल। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द मोस्ट एंटी यूथ प्राइम मिनिस्टर इंडिया हैज एवर हैड। द बॉयज एंड गर्ल्स हु आर वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर नॉट क्रिमिनल्स, दे आर डिमांडिंग देयर राइट्स। देयर राइट्स आर टू हैव एन एजुकेशन सिस्टम दैट रिस्पेक्ट्स देम, टू हैव एन एजुकेशन सिस्टम दैट इज फेयर, to have an education system that is working. There's absolutely nothing wrong in what they are doing and it's disgusting what the government is doing.
0: संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया, मगर सत्र की शुरुआत ही हंगामेदार रही। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया, उसके बाद हंगामा शुरू हुआ। सदन की कार्यवाही को कई बार स्थगित करना पड़ा।
17: समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो।
5: मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई और सदन में विपक्षी सांसद जमकर बरसे।
17: सदन नहीं चलाना चाहते।
5: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। बार बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। मुख्य मुद्दा था पेपर लीक का।
18: नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्रेडिबिलिटी किसकी है, किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, दुनिया में आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे।
5: लोकसभा के साथ राज्यसभा में नीट पेपर लीक का मुद्दा छाया रहा। राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया।
19: सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहाँ पर आए हैं।
5: नीट पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ संसद के भीतर ही नहीं संसद के बाहर भी गूंजा। समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ तख्ती लेकर डिंपल यादव ने मार्च किया।
20: वी वांट कि छात्रों की बात सुनी जाए, क्योंकि अब पानी जो है सर से ऊपर से निकल चुका है। देश के लिए जहाँ किसान, चाहे हमारा एनवायरनमेंट हो, चाहे हमारा युवा हो, सभी परेशान हैं, और ये सरकार कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी फॉर्म लाने को तैयार नहीं है।
5: इन तमाम हंगामों के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक के पास होने के बाद देश की सर्वोच्च अदालत में जजों की संख्या बढ़ जाएगी। इस बिल का मकसद सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या एक्ट 1956 में और संशोधन करना है। प्रस्तावित कानून का मकसद केंद्र द्वारा जारी उस अध्यादेश की जगह लेना है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की गई थी। आज तक ब्यूरो।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के बाहर अपने संबोधन में कहा कि यह सत्र काफी ऐतिहासिक है। इस सत्र में सरकार कई बिल लाने वाली है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों के सकारात्मक रवैये अपनाने और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने की भी उनसे अपील की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 28 साल के नौजवानों ने अंतरिक्ष में देश का झंडा गाड़ दिया है, मैं 56 साल के युवा की बात नहीं कर रहा।
21: जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी

0: तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए, हर आवाज को अवसर मिले, हर विचार को सम्मान मिले, ये संसद की हमारी भूमिका है।
1: बिहार विधानसभा में भी मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है, मगर सदन शुरू होता है इससे पहले ही विपक्ष ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी विधायकों ने विधानमंडल के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष यहां शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
2: हाथों में तख्तियां और जुबान पर तेवर, बिहार में विधानसभा में मॉनसून सत्र की शुरुआत का पहला दिन हंगामा खेज था। विपक्ष के विधायक तख्तियां लेकर पहुंचे थे, नीट पेपर लीक का मुद्दा यहां भी उछाला गया। विपक्ष के विधायकों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा।
3: विधानमंडल का मुख्य गेट है और इसके ठीक बाहर ही आरजेडी माले तमाम विपक्षी दलों के जो नेता हैं, वो विधायक हैं, वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और हाथों में स्लोगन्स है, बैनर है, पोस्टर है। आरजेडी के विधायक हैं रणविजय साहू जी। रणविजय जी, आज पहले ही दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले आप लोग तो आक्रामक तेवर,
4: ये सड़क पर और सदन के अंदर भी सरकार के आंख खोलने का काम करेंगे। आज पूरे देश भर में छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, निज छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, पेपर लीक हुआ है, लेकिन सरकार चुप है, मोदी सरकार खामोश है और केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। जब तक बर्खास्त नहीं करेंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
2: विपक्ष आक्रामक था। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री ने भी धर्मेंद्र प्रधान पर जोरदार निशाना साधा। जंतर मंतर वाली गूंज यहां भी सुनाई दी।
3: आप भी बिहार के शिक्षा मंत्री रहे चंद्रशेखर जी, केवल नीट का सवाल ही है या और भी मुद्दों पर घेरेंगे सवाल?
5: ये भाजपा नीति नफरती सरकार न सिर्फ बेरोजगारों के लिए कब्र खोद रही है, संपूर्ण देश की मिल्कियत को चंद विश्वसनीय विश्वस्त उद्योगपतियों के हाथ में बेच रही है। भारत के भविष्य के लिए खतरा है, इसीलिए ऐसे निकम्मी सरकार को हटाने का संकल्प लेकर के हम लोग आंदोलन के समर्थन में हैं। जंतर मंतर पर जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई है उसके खिलाफ हम लोग प्रतिकार स्वरूप यहां खड़े हैं। आंदोलन होगा, गली में होगी, सड़क पर होगा, सदन में होगा।
3: नेता प्रतिपक्ष क्या शामिल हो रहे हैं आज की कार्यवाही में या अभी भी बाहर?
5: नेता प्रतिपक्ष कहाँ है तो हम नहीं अभी बता सकते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष और इस पार्टी के हम लोग सिपाही हैं, इस पार्टी के हम लोग सिपाही हैं। हर कदम हमारी पार्टी और हमारे नेता अन्याय जुल्म के खिलाफ है।
3: चलिए, तेजस्वी यादव नहीं है और विधायकों को मालूम भी नहीं है कि कब से विधानसभा की कार्यवाही में वो शामिल होंगे और आईपी गुप्ता जो है वो भी पहुंच गए हैं, मतलब सदन के अंदर भी यही रुक रहेगा गुप्ता जी?
6: अब ये जो बेशरम सरकार है वो सारे दरवाजे बंद करके, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, शासन प्रशासन को, तो हमारे पास एक ही रास्ता है, सदन।
2: मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले एक और दिलचस्प तस्वीर सामने आई। देखिए, इस आदमी के कंधे पर आरजेडी का गमछा था, तभी यहाँ रामकृपाल यादव पहुँचे, इसके बाद तस्वीर बदल गई। इस आदमी ने ये हरा गमछा फेंक दिया और इसकी जगह बीजेपी का गमछा पहन लिया। कार्यकर्ताओं ने आवाज लगाई कि अब ये बीजेपी में शामिल हो गया। बहरहाल, बिहार विधानसभा से जोरदार हंगामे के साथ सत्र शुरू तो हो गया, लेकिन सत्र क्या सुचारू रूप से चल पाएगा, ये सवाल बना हुआ है। शशि भूषण सिंह, पटना आज तक।
1: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। रविवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के ड्राफ्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। सोमवार को इसे विधानसभा में पेश कर दिया गया। हालांकि इसके विरोध में कांग्रेस विधायक काले कपड़े पहनकर सदन में पहुंचे और आरोप लगाया कि सरकार ने चोरी से बिल पेश किया है।
7: इसके लिए संसद है, आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी संबंधी उल्लेख।
8: राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर ऐसी सियासत जोरी है कि एक तरफ जांच एजेंसियां चोरों का पूरा हिसाब पता नहीं लगा पाई हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में चढ़ावा चोरी पर सियासत जोरी जबरदस्त है।
9: ये सरकार नहीं, अहंकार है। बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ये कोशिश रहती है घोटाला करने।
10: राम मंदिर में चोरी क्यों हो रही है, तो क्या ये प्रधानमंत्री का जवाब है? शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री।
11: लूट मची है, चंदा चोरी।
12: उन्होंने रखवाली नहीं, चोरी नहीं है, डकैती।

0: अयोध्या में हुई चढ़ावा चोरी पर इस सियासी शोर के बीच जांच एजेंसियां तमाम खुलासे कर रही हैं और ये खुलासे खुद आरोपियों से पूछताछ के बाद हुए हैं। एक दिन पहले करीब 40 घंटे तक पुलिस रिमांड में रहे टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव से हुई पूछताछ में पुलिस को बड़े राज की बातें पता चली हैं।
1: चढ़ावा चोरी के पैसे से टिन्नू ने सूत्रों के मुताबिक कुछ संपत्तियां भी अर्जित की थी जिसके दस्तावेज पुलिस को मिल गए हैं।
0: टिन्नू यादव से 39 घंटे की पूछताछ में ही पता चला है कि अप्रैल 2026 में टिन्नू यादव ने सिफारिश कर अपने भतीजे मनीष यादव को नौकरी दिलवाई थी, जिसके बाद 15 अप्रैल 2026 से मनीष यादव को चढ़ावे की गिनती के काम में लगाया गया था। महीने भर के अंदर मई के दूसरे हफ्ते में मनीष यादव ने अविनाश शुक्ला के साथ मिलकर पहली बार चोरी की। उससे पहले मनीष यादव अनुकल्प, लवकुश और अविनाश को चोरी में मदद कर रहा था। ये भी पता चला है कि नाइट शिफ्ट के दौरान मनीष यादव को चोरी की रकम के साथ बाइक पर बैठाकर टिन्नू यादव ही बिना चेकिंग मंदिर से बाहर ले जाया करता था। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर बुलेट गाड़ी और एक कार पुलिस ने बरामद की है।
1: पुलिस ने टिन्नू यादव की पत्नी के नाम से पंजीकृत फर्म का रिकॉर्ड भी तलब किया है। इसके लिए पुलिस ने स्टेट GST ऑफिसर्स की सहायता ली है।
0: इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में आज SIT ने सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। इस मामले में अब अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और मनीष शुक्ला के साथ आज तक ब्यूरो।
2: अयोध्या का चढ़ावा चोरी मामला दिल्ली में संसद तक गूंज रहा है। दूसरी तरफ जांच एजेंसियां लगातार चोरी से अर्जित संपत्तियों को लेकर खुलासे कर रही हैं। SIT ने सुप्रीम कोर्ट में क्या स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है उसका पूरा खुलासा भी हो नहीं पाया, लेकिन अब चोरी कांड में सूत्रों के हवाले से आरोपी टिन्नू यादव को लेकर तमाम खुलासे जरूर हो रहे हैं।
3: इसके लिए संसद है, आप तर्क से चर्चा करें।
0: राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर ऐसी सियासत जोरी है कि एक तरफ जांच एजेंसियां चोरों का पूरा हिसाब पता नहीं लगा पाई हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में चढ़ावा चोरी पर सियासत जोरी जबरदस्त है।
4: ये सरकार नहीं, अहंकार है। BJP के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ही कोशिश रहती है घोटाला करने।
5: राम मंदिर में चोरी क्यों हो रही है, तो क्या ये प्रधानमंत्री का जवाब है? शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री।
6: लूट मची है, चंदा चोरी,
7: उन्होंने रखवाली नहीं, चोरी नहीं है, डकैती।
0: अयोध्या में हुई चढ़ावा चोरी पर इस सियासी शोर के बीच जांच एजेंसियां तमाम खुलासे कर रही हैं और ये खुलासे खुद आरोपियों से पूछताछ के बाद हुए हैं। एक दिन पहले करीब 40 घंटे तक पुलिस रिमांड में रहे टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव से हुई पूछताछ में पुलिस को बड़े राज की बातें पता चली हैं।
1: चढ़ावा चोरी के पैसे से टिन्नू ने सूत्रों के मुताबिक कुछ संपत्तियां भी अर्जित की थी जिसके दस्तावेज पुलिस को मिल गए हैं।
0: टिन्नू यादव से 39 घंटे की पूछताछ में ही पता चला है कि अप्रैल 2026 में टिन्नू यादव ने सिफारिश कर अपने भतीजे मनीष यादव को नौकरी दिलवाई थी, जिसके बाद 15 अप्रैल 2026 से मनीष यादव को चढ़ावे की गिनती के काम में लगाया गया था। महीने भर के अंदर मई के दूसरे हफ्ते में मनीष यादव ने अविनाश शुक्ला के साथ मिलकर पहली बार चोरी की। उससे पहले मनीष यादव अनुकल्प, लवकुश और अविनाश को चोरी में मदद कर रहा था। ये भी पता चला है कि नाइट शिफ्ट के दौरान मनीष यादव को चोरी की रकम के साथ बाइक पर बैठाकर टिन्नू यादव ही बिना चेकिंग मंदिर से बाहर ले जाया करता था। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर बुलेट गाड़ी और एक कार पुलिस ने बरामद की है।
1: पुलिस ने टिन्नू यादव की पत्नी के नाम से पंजीकृत फर्म का रिकॉर्ड भी तलब किया है। इसके लिए पुलिस ने स्टेट GST ऑफिसर्स की सहायता ली है।
0: इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में आज SIT ने सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। इस मामले में अब अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और मनीष शुक्ला के साथ आज तक ब्यूरो।
2: पहाड़ों पर भयंकर बारिश हो रही है, नतीजा ये हुआ है कि पहाड़ टूट रहे हैं, लगातार भूस्खलन, फ्लैश फ्लड हो रहा है, बादल फट रहे हैं, पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, लोगों की जानमाल का भारी नुकसान लोगों को हो रहा है और सबसे ज्यादा बुरा हाल है जम्मू कश्मीर का।
8: बारिश कहर बरपा रही है, खास तौर पर जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में तो कोहराम मचा हुआ है। कहीं बादल फट रहा है, कहीं फ्लैश फ्लड आ रहा है, कहीं पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं, कहीं भारी भूस्खलन हो रहा है, कहीं पूरा पहाड़ ही भरभरा कर नीचे गिर जा रहा है।
9: देखो भाई ये डंड रही है।
8: पूरे जम्मू कश्मीर में 12 लोगों की मौत हुई है, बहुत से लोग लापता हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल राजौरी, पुंछ, डोडा और किश्तवाड़ में है। एहतियातन वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। पुंछ में भारी बारिश के बाद आए फ्लैश फ्लड में भाटा दूरिया टनल उजड़ गई। राजौरी में खेवड़ा नाला ओवरफ्लो हो गया, जिसका पानी कई कॉलोनियों में घुस गया। फ्लैश फ्लड में कई गाड़ियां बह गई और कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। आर्मी, SDRF और पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं और चिंता की बात यह है कि अगले 24 से 36 घंटों तक अभी और ज्यादा बारिश का अनुमान है। ये पुंछ की तस्वीरें हैं जहां एक प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा का पूरा पहाड़ ही गिर गया। नीचे मशीनें दिख रही हैं, पूरा सुरंग प्रोजेक्ट है, लेकिन ऊपर से भूस्खलन हो गया। भारी बारिश से मिट्टी कच्ची हो गई और पूरा पहाड़ ही नीचे गिर गया। अचानक से भारी बारिश के बाद आए फ्लैश फ्लड का पानी रेजिडेंशियल इलाकों में घुस गया है। इसी तरह से यह तबाही भी पुंछ में ही हुई है। यहाँ पुंछ नेशनल हाईवे 144 को बनाने का काम चल रहा है। ये कंपनी यहाँ पर 35 किलोमीटर की सड़क बना रही थी, लेकिन अचानक से रात में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। यहाँ काम कर रहे मजदूरों की जान किसी तरह से बच गई, लेकिन उनकी मशीनें, बाकी सामान सब कुछ बह गया। अंदर सीमेंट का गोदाम था जिसमें 5000 से ज्यादा सीमेंट के बैग थे। इतना पानी आया कि सब कुछ खराब हो गया।
10: सर इसमें काफी करीब जो रात को पानी आए हैं, फ्लड आए हैं, उसके काफी हमारे मटेरियल नुकसान हुए हैं।
8: यहाँ SGI कंपनी पिछले 3 साल से पुंछ नेशनल हाईवे को बनाने का काम कर रही है। ये पुंछ का बफलियाज इलाका है। यहाँ भी भयंकर बारिश के बाद बादल फटा और फ्लैश फ्लड आ गया। पूरा रास्ता, स्कूल, सब जगह मलबा भर गया है। किश्तवाड़ में भी रैटल पावर प्रोजेक्ट साइट पर अचानक से फ्लैश फ्लड आ गया। ये पावर प्रोजेक्ट नदी के किनारे था, बगल में नदी बह रही है और इधर ये पावर प्लांट। तस्वीरों में दिख रहा है कि ऊपर पूरा पहाड़ है और उसके अंदर से पानी आ रहा है। पूरे प्रोजेक्ट पर खतरा मंडरा रहा है। आगे फ्लैश फ्लड का यही पानी रेजिडेंशियल इलाकों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। डोडा में रागी नाला के पास भूस्खलन की वजह से ऊपर से एक बस के ऊपर पत्थर गिरे, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। यहाँ राजौरी में नदी में आई बाढ़ की वजह से एक पुल भी टूटा है और बहुत सा नुकसान हुआ है। नदी लगातार उफान पर है, आज भी बारिश हुई है।
11: तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से ये हिस्सा जो है पूरी तरह से इस ब्रिज का टूट चुका है।
12: उफान पर होने के बाद जब इस ब्रिज के नजदीक पानी पहुंचता है तो इसका आधा हिस्सा जो है वो इस तरफ वाला वो बहा के साथ में ले जाता है।
8: ये भी राजौरी की तस्वीरें हैं जहां 2 भैंसें इन लहरों के बीच में फंस गई हैं। भैंसों को रस्सियों के सहारे निकालने की कोशिश हो रही है। एक शख्स भी अपनी जान जोखिम में डालकर इन भैंसों को निकाल रहा है। बताया जा रहा है कि ये गुर्जर समुदाय के जानवर हैं। ये गांधेरबल का सफापुर इलाका है जहां फ्लैश फ्लड आया है। पानी की रफ्तार देखकर आप ये धोखा खा सकते हैं कि जैसे ये कोई नदी होगी, लेकिन ये मुख्य सड़क है जिस पर गाड़ियां भी चल रही हैं, लेकिन पूरी सड़क पर मटमैला पानी भरा हुआ है। श्रीनगर शहर में भी भारी बारिश हुई है, इतनी कि यहां के प्रसिद्ध लाल चौक एरिया में पानी जमा हो गया।
13: नदियां उफान पर हैं, यहां तक कि अमरनाथ यात्रा को आज दूसरे दिन भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि अमरनाथ गुफा के आसपास इलाकों में कल से ही तेज बारिशें हो रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले 2 दिन तक कश्मीर के अधिकतर इलाकों में इसी तरह तेज बारिशें होंगी।
8: भारी बारिश को देखते हुए माता वैष्णो देवी की यात्रा को भी स्थगित करना पड़ा है। अब जो श्रद्धालु यहां पहुंचे थे वो इस उम्मीद में हैं कि यात्रा फिर से शुरू होगी, लेकिन खराब मौसम को देखते हुए ये उम्मीद कम लगती है।
14: 2-3 दिन लगेंगे खुलने में, अभी दर्शन करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है।
8: उधर खराब मौसम की वजह से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा भी रोक दी गई है। लगातार बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा भी प्रभावित हो रही है। केदारनाथ हाईवे और केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भी भूस्खलन हो रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल अग्रिम आदेशों तक केदारनाथ यात्रा को रोका गया है और यात्रियों से सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील की गई है।
15: मौसम विभाग ने वर्षा की भारी चेतावनी जारी की गई थी, जिससे कि जनपद में रात भर रुक रुक करके बारिश हो रही है और केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह लैंडस्लाइड होने की स्थिति बनी हुई है और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए और यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है।
8: रुद्रप्रयाग में बाबा केदार के रास्ते पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के अलावा अन्य सहायक नदियां भी उफान पर बह रही हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी विकराल रूप धारण करते हुए वार्निंग लेवल के पास बह रही है। नदी किनारे के सभी घाट डूब गए हैं। अलकनंदा नदी से 30 मीटर दूर भगवान शिव की विशाल मूर्ति भी जलमग्न हो चुकी है।
16: पैदल यात्रा मार्ग सहित केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन हो रहा है और यात्रियों को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए आज के लिए केदारनाथ यात्रा को फिलहाल अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया है।
8: भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड में एक नेशनल हाईवे समेत 60 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का काम चल रहा है। सोमवार को बारिश की वजह से उत्तराखंड के सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित करनी पड़ी। बहुत से पहाड़ी जिलों के लिए मौसम विभाग की तरफ से बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज तक ब्यूरो।
2: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: सीजेपी प्रदर्शनकारियों ने जेपी नड्डा से किया मुलाकात। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ रखी तीन मांगे। कहा सरकार हमारी बातों पर करेगी विचार। केरल हाउस के करीब प्रदर्शन शिफ्ट। दिल्ली में हालात सामान्य। बच्ची से मारपीट और 50 लोगों के घायल होने की खबर का पुलिस ने खंडन किया। राहुल गांधी का सरकार पर हमला, पुलिस को भी चेताया। संसद का मॉनसून सत्र के पहले दिन ही मूसलाधार सियासत। दोनों ही सदनों में जोरदार हंगामा। संकट के बीच शाह धर्मेंद्र प्रधान के बीच मैराथन बातचीत। चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। सीजीआई ने दिया आदेश, एसआईटी का हो पुनर्गठन। सीनियर अधिकारी की अगुवाई में हो जांच। अब अगले हफ्ते हियरिंग। और उत्तर से पूर्व तक कुदरत का कहर। असम के जोरहाट शिवसागर में भीषण तबाही। पुंछ में लैंडस्लाइड से 7 की मौत। अमरनाथ यात्रा आज और कल के लिए भी स्थगित। कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर से संसद तक मार्च किया। देश की राजधानी दिल्ली में संसद से लेकर सड़क तक हंगामा नजर आया। कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च को रोकने के लिए संसद भवन के पास आंसू गैस के गोले दागे गए और संसद के सभी दरवाजों पर सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य कर दी गई, जिसकी वजह से अब स्थिति नियंत्रण में है।
1: जबरदस्त हंगामा बरपा है। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक संसद भवन का घेराव कर रहे हैं और पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। प्रदर्शनकारी बेकाबू हुए तो पुलिस को उन्हें रोकने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा, फिर लाठियां चली, आंसू गैस के गोले दागे गए। प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए राजीव चौक और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन तक में घुस गए, जबकि कई लोग बैरिकेडिंग तोड़कर सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने तक पहुंच गए। कर्तव्य पथ पर भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। देखिए, ये दोपहर में करीब 1:30 बजे की तस्वीरें हैं।
2: कर्तव्य पथ का चौराहा है जहां आपको सिर्फ पुलिस के साइरन सुनाई देंगे और ये तस्वीर है जहां प्रोटेस्टर्स अभी बाहर निकले।
1: सोशल मीडिया पर बताया गया कि प्रदर्शनकारियों में बहुत सारे घायल हैं, जिस पर दिल्ली पुलिस ने सफाई दी। दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि सोशल मीडिया पर गीतांजलि नाम की 12 साल की लड़की के साथ मारपीट, बाल खींचने और सिर में चोट लगने और साथ ही लगभग 40 से 50 अन्य लोगों के सिर फूटने के दावों वाली पोस्ट में गलत जानकारी फैलाई जा रही है। ये जानकारी गलत है। पोस्ट में किए जा रहे दावे सच नहीं है। कृपया गलत या गुमराह करने वाली जानकारी न फैलाएं और न ही उसे आगे बढ़ाएं। बहरहाल काफी देर तक यूं ही बवाल चलता रहा, लेकिन कुछ घंटों में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पा लिया।
2: कर्तव्य पथ पर हम लोग खड़े हुए हैं और अभी यहाँ पे स्थिति जो है, आप कह लीजिए कि यातायात जो है वो चालू हो गया है। स्थिति यहाँ पे ये है कि प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है, लेकिन 2 घंटे पहले यहाँ पे तस्वीर बेहद अलग थी। तमाम प्रदर्शनकारी इन लॉन्स में पीछे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे भरे हुए थे और उसके अलावा खाकी का जो आपको तैनाती दिख रही है, बिल्कुल एक्शन में दिल्ली पुलिस और अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे थे। एंटी राइड व्हीकल्स पीछे और तमाम दिल्ली पुलिस के बसें यहाँ पे तैनात थी, लेकिन अब वो खाली करा दिया गया है।
1: कुछ देर पहले तक रेल भवन के पास भी प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा था, लेकिन वहां भी थोड़ी देर में स्थिति नियंत्रण में आ गई।
3: मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं, जो कि रफी मार्ग है, जो कि रेल भवन से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। कुछ घंटे पहले यहां पर तमाम प्रदर्शनकारी मौजूद थे। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के द्वारा इस पूरे इलाके को अब खाली करा लिया गया है।
1: संसद भवन के आसपास भी सड़कें अब खाली हैं। संसद से विजय चौक तक का इलाका खाली और सामान्य दिख रहा है।
4: यहाँ पर एकदम नॉर्मल सी है, जिस तरीके के बैरिकेड्स लगाए गए थे ताकि जो प्रदर्शनकारी थे जब वो यहाँ आने की कोशिश कर रहे थे, वो सभी बैरिकेड्स को एक तरफ साइड में खड़ा कर दिया गया है और संसद परिसर के बाहर भी जो सामान्य तौर पर जो पुलिस कर्मी होते हैं वही लोग इस समय मौजूद है।
1: जंतर मंतर पर भी जहाँ सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा था उसे भी खाली करा लिया गया है। कुल मिलाकर अब स्थिति नियंत्रण में है। आज तक ब्यूरो
0: सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि विपक्ष ने सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को मुद्दा बना लिया है और सरकार पर जोरदार हमला बोला है। विपक्ष मांग कर रहा है कि सीजेपी की मांगों को सरकार माने।
5: सीजेपी के प्रदर्शन ने विपक्ष को सरकार के खिलाफ निशाना साधने का मौका दे दिया। आम आदमी पार्टी के दो नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह सीजेपी के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे, जहां पुलिस अफसर से उनकी तीखी बहस हुई।
6: आपको वहां हमने कहा था कि उस वाला वो रास्ता खुला, आप प्लीज उधर से आ जाइए।
7: तो इधर से मान लो,
6: नहीं सुनो, एक मिनट सुनो ना, वो रास्ता है जंतर मंतर के लिए,
7: ये है ना रास्ता,
6: यहाँ से रास्ता नहीं है सर,
7: ये रास्ता।
6: अरे जंतर मंतर बराबर आते हैं,
8: सारे लोग आ रहे हैं,
7: सुनिए मेरी बात।
5: समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव भी जंतर मंतर पहुंची, जहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।
9: आज पूरे लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इतिहास के लिए ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप मीडिया रिपोर्टर्स हैं, पुलिस वाले भी उनकी आंखों में शर्मिंदगी दिख रही थी, लेकिन अपनी ड्यूटी के कारण अपने बैचेस निकाल के आए थे, गुंडे बने हुए थे कुछ पुलिस वाले, कुछ पुलिस वाले तो सहयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले बिना वर्दी के आए थे और बच्चों को मारा है, बच्चों को करंट दिया है, और जहां रूल होता है कि आपको टांगों में मारा चाहिए, बच्चों की छातियों में मारा है।
5: इधर संसद के गलियारे में भी सीजेपी के प्रदर्शन की गूंज सुनाई दे रही थी।
10: इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार को? और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र, नौजवान, युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती है। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहे अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं।
11: बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है, और बच्चों पे आप टियर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हमारे।
5: कांग्रेस पूछ रही है कि अपना हक मांगने वाले युवाओं पर लाठीचार्ज क्यों?
12: क्या मांग कर रहे हैं? अपने भविष्य की मांग कर रहे हैं, अपने भविष्य सुरक्षित रहे उनकी मांग कर रहे हैं, तो ऐसे नौबत में लाठी चार्ज की क्या जरूरत?
5: विपक्ष सरकार पर हमलावर है, लेकिन सरकार से जुड़े नेता अलग सुर साध रहे हैं।
13: अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अच्छी तरह से डिस्कस करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ऐसे प्रोटेस्ट करने से तो कुछ काम नहीं होगा।
14: अब जो जंतर मंतर पे हो रहा है वो विद्यार्थियों के नाम पे राजनीति हो रही है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रही है।
5: इन सब बयानों के बीच सीजेपी का प्रतिनिधि मंडल स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिला। ये तभी की तस्वीरें हैं। सीजेपी ने अपने ज्ञापन में तीन मांगे रखी हैं। नंबर एक, सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए। नंबर दो, धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए या उनका इस्तीफा हो। नंबर तीन, नीट पेपर लीक की वजह से आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले।
15: सोनम वांगचुक जी को तुरंत रिलीज किया जाए, धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन तो अब आना ही पड़ेगा। और तीसरा, जो नीट के फैमिलीज है, जो बच्चे मर गए हैं 20 से ज्यादा, उन फैमिलीज को 1 करोड़ का मुआवजा मिले।
5: इस ज्ञापन के बाद सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने भरोसा जताया है कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी। आज तक ब्यूरो।
0: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक वीडियो जारी करके मोदी सरकार पर हमला करते नजर आए। राहुल गांधी ने अपने संदेश में सरकार को युवा विरोधी बताया है।
16: दिस कंट्री हैज मेजॉरिटी ऑफ यंग पीपल। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द मोस्ट एंटी यूथ प्राइम मिनिस्टर इंडिया हैज एवर हैड। द बॉयज एंड गर्ल्स हु आर वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर नॉट क्रिमिनल्स, दे आर डिमांडिंग देयर राइट्स। देयर राइट्स आर टू हैव एन एजुकेशन सिस्टम दैट रिस्पेक्ट्स देम, टू हैव एन एजुकेशन सिस्टम दैट इज फेयर, to have an education system that is working. There's absolutely nothing wrong in what they are doing and it's disgusting what the government is doing.
0: संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया, मगर सत्र की शुरुआत ही हंगामेदार रही। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया, उसके बाद हंगामा शुरू हुआ। सदन की कार्यवाही को कई बार स्थगित करना पड़ा।
17: समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो।
5: मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई और सदन में विपक्षी सांसद जमकर बरसे।
17: सदन नहीं चलाना चाहते।
5: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। बार बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। मुख्य मुद्दा था पेपर लीक का।
18: नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्रेडिबिलिटी किसकी है, किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, दुनिया में आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे हैं।
5: लोकसभा के साथ राज्यसभा में नीट पेपर लीक का मुद्दा छाया रहा। राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया।
19: सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहाँ पर आए हैं।
5: नीट पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ संसद के भीतर ही नहीं संसद के बाहर भी गूंजा। समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ तख्ती लेकर डिंपल यादव ने मार्च किया।
20: वांट की छात्रों की बात सुनी जाए, क्योंकि अब पानी जो है सर से ऊपर से निकल चुका है। देश के लिए जहाँ किसान, चाहे हमारा एनवायरनमेंट हो, चाहे हमारा युवा हो, सभी परेशान हैं, और ये सरकार कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी फोर्स लाने को तैयार नहीं है।
5: इन तमाम हंगामों के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक के पास होने के बाद देश की सर्वोच्च अदालत में जजों की संख्या बढ़ जाएगी। इस बिल का मकसद सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या एक्ट 1956 में और संशोधन करना है। प्रस्तावित कानून का मकसद केंद्र द्वारा जारी उस अध्यादेश की जगह लेना है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की गई थी। आज तक ब्यूरो।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के बाहर अपने संबोधन में कहा कि यह सत्र काफी ऐतिहासिक है। इस सत्र में सरकार कई बिल लाने वाली है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों के सकारात्मक रवैये अपनाने और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने की भी उनसे अपील की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 28 साल के नौजवानों ने अंतरिक्ष में देश का झंडा गाड़ दिया है, मैं 56 साल की युवा की बात नहीं कर रहा।
21: जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए, हर आवाज को अवसर मिले, हर विचार को सम्मान मिले, ये संसद की हमारी भूमिका है।
0: बिहार विधानसभा में भी मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है, मगर सदन शुरू होता है इससे पहले ही विपक्ष ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी विधायकों ने विधानमंडल के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष यहां शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
5: हाथों में तख्तियां और जुबान पर तेवर, बिहार में विधानसभा में मॉनसून सत्र की शुरुआत का पहला दिन हंगामा खेज था। विपक्ष के विधायक तख्तियां लेकर पहुंचे थे, नीट पेपर लीक का मुद्दा यहां भी उछाला गया। विपक्ष के विधायकों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा।
14: विधानमंडल का मुख्य गेट है और इसके ठीक बाहर ही आरजेडी, माले, तमाम विपक्षी दलों के जो नेता हैं, वो विधायक हैं, वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और हाथों में स्लोगन्स है, बैनर है, पोस्टर है। आरजेडी के विधायक है रणविजय साहू जी। रणविजय जी, आज पहले ही दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले आप लोग तो आक्रामक तेवर,
22: ये सड़क पर और सदन के अंदर भी सरकार के आंख खोलने का काम करेंगे। आज पूरे देश भर में छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, नीट छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, पेपर लीक हुआ है, लेकिन सरकार चुप है, मोदी सरकार खामोश है और केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। जब तक बर्खास्त नहीं करेंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
5: विपक्ष आक्रामक था। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री ने भी धर्मेंद्र प्रधान पर जोरदार निशाना साधा। जंतर मंतर वाली गूंज यहां भी सुनाई दी।
2: आप भी बिहार के शिक्षा मंत्री रहे चंद्रशेखर जी, केवल नीट का सवाल ही है या और भी मुद्दों पे घेरेंगे सवाल?
3: ये भाजपा नीति नफरती सरकार न सिर्फ बेरोजगारों के लिए कब्र खोद रही है, संपूर्ण देश की मिल्कियत को चंद विश्वसनीय विश्वस्त उद्योगपतियों के हाथ में बेच रही है, भारत के भविष्य के लिए खतरा है। इसीलिए ऐसे निकम्मी सरकार को हटाने का संकल्प लेकर के हम लोग आंदोलन के समर्थन में हैं। जंतर मंतर पर जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई है उसके खिलाफ हम लोग प्रतिकार स्वरूप यहां खड़े हैं। आंदोलन होगा, गली में होगी, सड़क पर होगा, सदन में होगा।
2: नेता प्रतिपक्ष क्या शामिल हो रहे हैं आज की कार्रवाई में या अभी भी बाहर?
3: नेता प्रतिपक्ष कहाँ है तो हम नहीं अभी बता सकते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष और इस पार्टी के हम लोग सिपाही हैं। इस पार्टी के हम लोग सिपाही हैं, हर कदम हमारी पार्टी और हमारे नेता अन्याय जुल्म के खिलाफ है।
2: चलिए, तेजस्वी यादव नहीं है और विधायकों को मालूम भी नहीं है कि कब से विधानसभा की कार्यवाही में वो शामिल होंगे, और आईपी गुप्ता जो है वो भी पहुंच गए हैं, मतलब सदन के अंदर भी यही रुक रहेगा गुप्ता जी?
4: अब ये जो बेशरम सरकार है वो सारे दरवाजे बंद करके, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, शासन प्रशासन को, तो हमारे पास एक ही रास्ता है, सदन।
23: मानसून सत्र शुरू होने से पहले एक और दिलचस्प तस्वीर सामने आई। देखिए, इस आदमी के कंधे पर आरजेडी का गमछा था, तभी यहाँ रामकृपाल यादव पहुँचे, इसके बाद तस्वीर बदल गई। इस आदमी ने ये हरा गमछा फेंक दिया और इसकी जगह बीजेपी का गमछा पहन लिया। कार्यकर्ताओं ने आवाज लगाई कि अब ये बीजेपी में शामिल हो गया। बहरहाल, बिहार विधानसभा से जोरदार हंगामे के साथ सत्र शुरू तो हो गया, लेकिन सत्र क्या सुचारू रूप से चल पाएगा, ये सवाल बना हुआ है। शशि भूषण सिंह, पटना आज तक।
0: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। रविवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के ड्राफ्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। सोमवार को इसे विधानसभा में पेश कर दिया गया। हालांकि इसके विरोध में कांग्रेस विधायक काले कपड़े पहनकर सदन में पहुंचे और आरोप लगाया कि सरकार ने चोरी से बिल पेश किया है।
24: इसके लिए संसद है, आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संबंधी उल्लेख।
25: राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर ऐसी सियासत जोरी है कि एक तरफ जांच एजेंसियां चोरों का पूरा हिसाब पता नहीं लगा पाई हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में चढ़ावा चोरी पर सियासत जोरी जबरदस्त है।
26: ये सरकार नहीं, अहंकार है। बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ही कोशिश रहती है घोटाला करने।
27: राम मंदिर में चोरी क्यों हो रही है, तो क्या ये प्रधानमंत्री का जवाब है? शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री।
28: लूट मची है, चंदा चोरी,
29: उन्होंने रखवाली नहीं, चोरी नहीं है, डकैती।
25: अयोध्या में हुई चढ़ावा चोरी पर इस सियासी शोर के बीच जांच एजेंसियां तमाम खुलासे कर रही हैं और ये खुलासे खुद आरोपियों से पूछताछ के बाद हुए हैं। एक दिन पहले करीब 40 घंटे तक पुलिस रिमांड में रहे टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव से हुई पूछताछ में पुलिस को बड़े राज की बातें पता चली हैं।
30: चढ़ावा चोरी के पैसे से टिन्नू ने सूत्रों के मुताबिक कुछ संपत्तियां भी अर्जित की थी जिसके दस्तावेज पुलिस को मिल गए हैं।
25: टिन्नू यादव से 39 घंटे की पूछताछ में ही पता चला है कि अप्रैल 2026 में टिन्नू यादव ने सिफारिश कर अपने भतीजे मनीष यादव को नौकरी दिलवाई थी, जिसके बाद 15 अप्रैल 2026 से मनीष यादव को चढ़ावे की गिनती के काम में लगाया गया था। महीने भर के अंदर मई के दूसरे हफ्ते में मनीष यादव ने अविनाश शुक्ला के साथ मिलकर पहली बार चोरी की। उससे पहले मनीष यादव अनुकल्प, लवकुश और अविनाश को चोरी में मदद कर रहा था। यह भी पता चला है कि नाइट शिफ्ट के दौरान मनीष यादव को चोरी की रकम के साथ बाइक पर बैठाकर टिन्नू यादव ही बिना चेकिंग मंदिर से बाहर ले जाया करता था। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर बुलेट गाड़ी और एक कार पुलिस ने बरामद की है।
30: पुलिस ने टिन्नू यादव की पत्नी के नाम से पंजीकृत फर्म का रिकॉर्ड भी तलब किया है। इसके लिए पुलिस ने स्टेट जीएसटी ऑफिसर्स की सहायता ली है।
25: इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईटी ने सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। इस मामले में अब अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और मनीष शुक्ला के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अयोध्या का चढ़ावा चोरी मामला दिल्ली में संसद तक गूंज रहा है। दूसरी तरफ जांच एजेंसियां लगातार चोरी से अर्जित संपत्तियों को लेकर खुलासे कर रही हैं। एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है उसका पूरा खुलासा भी हो नहीं पाया, लेकिन अब चोरी कांड में सूत्रों के हवाले से आरोपी टिन्नू यादव को लेकर तमाम खुलासे जरूर हो रहे हैं।
24: इसके लिए संसद है, आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी संबंधी उल्लेख।
25: राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर ऐसी सियासत जोरी है कि एक तरफ जांच एजेंसियां चोरों का पूरा हिसाब पता नहीं लगा पाई हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में चढ़ावा चोरी पर सियासत जोरी जबरदस्त है।
26: ये सरकार नहीं अहंकार है, बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ही कोशिश रहती है घोटाला करने।
27: राम मंदिर में चोरी क्यों हो रही है तो क्या ये प्रधानमंत्री का जवाब है? शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री।
28: लूट मची है, चंदा चोरी,
29: उन्होंने रखवाली नहीं, चोरी नहीं है, डकैती।
25: अयोध्या में हुई चढ़ावा चोरी पर इस सियासी शोर के बीच जांच एजेंसियां तमाम खुलासे कर रही हैं और ये खुलासे खुद आरोपियों से पूछताछ के बाद हुए हैं। एक दिन पहले करीब 40 घंटे तक पुलिस रिमांड में रहे टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव से हुई पूछताछ में पुलिस को बड़े राज की बातें पता चली हैं।
30: चढ़ावा चोरी के पैसे से टिन्नू ने सूत्रों के मुताबिक कुछ संपत्तियां भी अर्जित की थी जिसके दस्तावेज पुलिस को मिल गए हैं।
25: टिन्नू यादव से 39 घंटे की पूछताछ में ही पता चला है कि अप्रैल 2026 में टिन्नू यादव ने सिफारिश कर अपने भतीजे मनीष यादव को नौकरी दिलवाई थी, जिसके बाद 15 अप्रैल 2026 से मनीष यादव को चढ़ावे की गिनती के काम में लगाया गया था। महीने भर के अंदर मई के दूसरे हफ्ते में मनीष यादव ने अविनाश शुक्ला के साथ मिलकर पहली बार चोरी की। उससे पहले मनीष यादव अनुकल्प, लवकुश और अविनाश को चोरी में मदद कर रहा था। ये भी पता चला है कि नाइट शिफ्ट के दौरान मनीष यादव को चोरी की रकम के साथ बाइक पर बैठाकर टिन्नू यादव ही बिना चेकिंग मंदिर से बाहर ले जाया करता था। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर बुलेट गाड़ी और एक कार पुलिस ने बरामद की है।
30: पुलिस ने टिन्नू यादव की पत्नी के नाम से पंजीकृत फर्म का रिकॉर्ड भी तलब किया है। इसके लिए पुलिस ने स्टेट GST ऑफिसर्स की सहायता ली है।
25: इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में आज SIT ने सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। इस मामले में अब अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और मनीष शुक्ला के साथ आज तक ब्यूरो।
0: पहाड़ों पर भयंकर बारिश हो रही है, नतीजा ये हुआ है कि पहाड़ टूट रहे हैं, लगातार भूस्खलन फ्लैश फ्लड हो रहा है, बादल फट रहे हैं, पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, लोगों की जानमाल का भारी नुकसान लोगों को हो रहा है और सबसे ज्यादा बुरा हाल है जम्मू कश्मीर का।
1: बारिश कहर बरपा रही है, खास तौर पर जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में तो कोहराम मचा हुआ है, कहीं बादल फट रहा है, कहीं फ्लैश फ्लड आ रहा है, कहीं पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं, कहीं भारी भूस्खलन हो रहा है, कहीं पूरा पहाड़ ही भरभरा कर नीचे गिर जा रहा है।
6: देखो भाई ये टन रही है।
1: पूरे जम्मू कश्मीर में 12 लोगों की मौत हुई है, बहुत से लोग लापता हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल राजौरी, पुंछ, डोडा और किश्तवाड़ में है। एहतियातन वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। पुंछ में भारी बारिश के बाद आए फ्लैश फ्लड में भाटा दूरिया टनल उजड़ गई। राजौरी में खेवड़ा नाला ओवरफ्लो हो गया जिसका पानी कई कॉलोनियों में घुस गया। फ्लैश फ्लड में कई गाड़ियां बह गई और कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। आर्मी, SDRF और पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं और चिंता की बात यह है कि अगले 24 से 36 घंटों तक अभी और ज्यादा बारिश का अनुमान है। ये पुंछ की तस्वीरें हैं जहां एक प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा का पूरा पहाड़ ही गिर गया। नीचे मशीनें दिख रही हैं, पूरा सुरंग प्रोजेक्ट है लेकिन ऊपर से भूस्खलन हो गया, भारी बारिश से मिट्टी कच्ची हो गई और पूरा पहाड़ ही नीचे गिर गया। अचानक से भारी बारिश के बाद आए फ्लैश फ्लड का पानी रेजिडेंशियल इलाकों में घुस गया है। इसी तरह से यह तबाही भी पुंछ में ही हुई है। यहाँ पुंछ नेशनल हाईवे 144 को बनाने का काम चल रहा है। ये कंपनी यहाँ पर 35 किलोमीटर की सड़क बना रही थी लेकिन अचानक से रात में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। यहाँ काम कर रहे मजदूरों की जान किसी तरह से बच गई लेकिन उनकी मशीनें, बाकी सामान सब कुछ बह गया। अंदर सीमेंट का गोदाम था जिसमें 5,000 से ज्यादा सीमेंट के बैग थे। इतना पानी आया कि सब कुछ खराब हो गया।
26: सर इसमें काफी करीब जो रात को पानी आए हैं
7: फ्लड आए हैं, उसके काफी हमारे मटेरियल नुकसान हुए हैं।
1: यहाँ SGI कंपनी पिछले 3 साल से पुंछ नेशनल हाईवे को बनाने का काम कर रही है। ये पुंछ का बफलियास इलाका है। यहाँ भी भयंकर बारिश के बाद बादल फटा और फ्लैश फ्लड आ गया। पूरा रास्ता, स्कूल, सब जगह मलबा भर गया है। किश्तवाड़ में भी रैटल पावर प्रोजेक्ट साइट पर अचानक से फ्लैश फ्लड आ गया। ये पावर प्रोजेक्ट नदी के किनारे था, बगल में नदी बह रही है और इधर ये पावर प्लांट। तस्वीरों में दिख रहा है कि ऊपर पूरा पहाड़ है और उसके अंदर से पानी आ रहा है। पूरे प्रोजेक्ट पर खतरा मंडरा रहा है। आगे फ्लैश फ्लड का यही पानी रेजिडेंशियल इलाकों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। डोडा में रागी नाला के पास भूस्खलन की वजह से ऊपर से एक बस के ऊपर पत्थर गिरे, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। यहाँ राजौरी में नदी में आई बाढ़ की वजह से एक पुल भी टूटा है और बहुत सा नुकसान हुआ है। नदी लगातार उफान पर है, आज भी बारिश हुई है।
8: तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से ये हिस्सा जो है पूरी तरह से इस ब्रिज का टूट चुका है।
9: उफान पर होने के बाद जब इस ब्रिज के नजदीक पानी पहुंचता है तो इसका आधा हिस्सा जो है वो इस तरफ वाला वो बहा के साथ में ले जाता है।
1: ये भी राजौरी की तस्वीरें हैं, जहां 2 भैंसें इन लहरों के बीच में फंस गई हैं। भैंसों को रस्सियों के सहारे निकालने की कोशिश हो रही है। एक शख्स भी अपनी जान जोखिम में डालकर इन भैंसों को निकाल रहा है। बताया जा रहा है कि ये गुर्जर समुदाय के जानवर हैं। ये गांदेरबल का सफापुर इलाका है, जहां फ्लैश फ्लड आया है। पानी की रफ्तार देखकर आप ये धोखा खा सकते हैं कि जैसे ये कोई नदी होगी, लेकिन ये मुख्य सड़क है जिस पर गाड़ियां भी चल रही हैं, लेकिन पूरी सड़क पर मटमैला पानी भरा हुआ है। श्रीनगर शहर में भी भारी बारिश हुई है, इतनी कि यहां के प्रसिद्ध लाल चौक एरिया में पानी जमा हो गया।
10: नदियां उफान पर हैं, यहां तक कि अमरनाथ यात्रा को आज दूसरे दिन भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि अमरनाथ गुफा के आसपास इलाकों में कल से ही तेज बारिशें हो रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले 2 दिन तक कश्मीर के अधिकतर इलाकों में इसी तरह तेज बारिशें होंगी।
1: भारी बारिश को देखते हुए माता वैष्णो देवी की यात्रा को भी स्थगित करना पड़ा है। अब जो श्रद्धालु यहां पहुंचे थे वो इस उम्मीद में हैं कि यात्रा फिर से शुरू होगी, लेकिन खराब मौसम को देखते हुए ये उम्मीद कम लगती है।
11: 2-3 दिन लगे खुलने में, अभी दर्शन करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है।
1: उधर खराब मौसम की वजह से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा भी रोक दी गई है। लगातार बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा भी प्रभावित हो रही है। केदारनाथ हाईवे और केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भी भूस्खलन हो रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल अग्रिम आदेशों तक केदारनाथ यात्रा को रोका गया है और यात्रियों से सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील की गई है।
12: मौसम विभाग ने वर्षा की भारी चेतावनी जारी की गई थी, जिससे कि जनपद में रात भर रुक रुक करके बारिश हो रही है और केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह लैंडस्लाइड होने की स्थिति बनी हुई है और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए और यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है।
1: रुद्रप्रयाग में बाबा केदार के रास्ते पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के अलावा अन्य सहायक नदियां भी उफान पर बह रही हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी विकराल रूप धारण करते हुए वार्निंग लेवल के पास बह रही है। नदी किनारे के सभी घाट डूब गए हैं। अलकनंदा नदी से 30 मीटर दूर भगवान शिव की विशाल मूर्ति भी जलमग्न हो चुकी है।
13: पैदल यात्रा मार्ग सहित केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन हो रहा है और यात्रियों को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए आज के लिए केदारनाथ यात्रा को फिलहाल अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया है।
1: भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड में 1 नेशनल हाईवे समेत 60 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का काम चल रहा है। सोमवार को बारिश की वजह से उत्तराखंड के सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित करनी पड़ी। बहुत से पहाड़ी जिलों के लिए मौसम विभाग की तरफ से बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज तक ब्यूरो।
0: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: बीजेपी प्रदर्शनकारियों ने जेपी नड्डा से किया मुलाकात। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ रखी 3 मांगे। कहा सरकार हमारी बातों पर करेगी विचार। केरल हाउस के करीब प्रदर्शन शिफ्ट। दिल्ली में हालात सामान्य। बच्ची से मारपीट और 50 लोगों के घायल होने की खबर का पुलिस ने खंडन किया। राहुल गांधी का सरकार पर हमला। पुलिस को भी चेताया। संसद का मॉनसून सत्र के पहले दिन ही मूसलाधार सियासत। दोनों ही सदनों में जोरदार हंगामा। संकट के बीच शाह धर्मेंद्र प्रधान के बीच मैराथन बातचीत। चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। सीजेआई ने दिया आदेश। एसआईटी का हो पुनर्गठन। सीनियर अधिकारी की अगुवाई में हो जांच। अब अगले हफ्ते हियरिंग। और उत्तर से पूर्व तक कुदरत का कहर। असम के जोरहाट शिवसागर में भीषण तबाही। पुंछ में लैंडस्लाइड से 7 की मौत। अमरनाथ यात्रा आज और कल के लिए भी स्थगित। कांग्रेस जनता पार्टी ने जंतर मंतर से संसद तक मार्च किया। देश की राजधानी दिल्ली में संसद से लेकर सड़क तक हंगामा नजर आया। कांग्रेस जनता पार्टी के संसद मार्च को रोकने के लिए संसद भवन के पास आंसू गैस के गोले दागे गए और संसद के सभी दरवाजों पर सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य कर दी गई, जिसकी वजह से अब स्थिति नियंत्रण में है।
1: जबरदस्त हंगामा बरपा है। कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थक संसद भवन का घेराव कर रहे हैं और पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। प्रदर्शनकारी बेकाबू हुए तो पुलिस को उन्हें रोकने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा, फिर लाठियां चली, आंसू गैस के गोले दागे गए। प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए राजीव चौक और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन तक में घुस गए, जबकि कई लोग बैरिकेडिंग तोड़कर सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने तक पहुंच गए। कर्तव्य पथ पर भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। देखिए, ये दोपहर में करीब 1:30 बजे की तस्वीरें हैं।
2: कर्तव्य पथ का चौराहा है जहां आपको सिर्फ पुलिस के साइरेंस सुनाई देंगे और ये तस्वीर है जहां प्रोटेस्टर्स कुछ इस तरीके से घूम रहे हैं और पुलिस ये प्रोटेस्टर अभी बाहर निकले। आप देखिए,
1: सोशल मीडिया पर बताया गया कि प्रदर्शनकारियों में बहुत सारे घायल हैं, जिस पर दिल्ली पुलिस ने सफाई दी। दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि सोशल मीडिया पर गीतांजलि नाम की 12 साल की लड़की के साथ मारपीट, बाल खींचने और सिर में चोट लगने और साथ ही लगभग 40 से 50 अन्य लोगों के सिर फूटने के दावों वाली पोस्ट में गलत जानकारी फैलाई जा रही है। ये जानकारी गलत है। पोस्ट में किए जा रहे दावे सच नहीं है। कृपया गलत या गुमराह करने वाली जानकारी न फैलाएं और न ही उसे आगे बढ़ाएं। बहरहाल, काफी देर तक यूं ही बवाल चलता रहा, लेकिन कुछ घंटों में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पा लिया।
2: कर्तव्य पथ पर हम लोग खड़े हुए हैं और अभी यहाँ पे स्थिति जो है, आप कह लीजिए कि यातायात जो है वो चालू हो गया है। स्थिति यहाँ पे ये है कि प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है, लेकिन 2 घंटे पहले यहाँ पे तस्वीर बेहद अलग थी। तमाम प्रदर्शनकारी इन लॉन्स में पीछे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे भरे हुए थे और उसके अलावा खाकी का जो आपको तैनाती दिख रही है, बिल्कुल एक्शन में दिल्ली पुलिस और अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे थे। एंटी राइड व्हीकल्स पीछे और तमाम दिल्ली पुलिस के बसें यहां पे तैनात थी, लेकिन अब वो खाली करा दिया गया है।
1: कुछ देर पहले तक रेल भवन के पास भी प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा था, लेकिन वहां भी थोड़ी देर में स्थिति नियंत्रण में आ गई।
3: मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं, जो कि रफी मार्ग है, जो कि रेल भवन से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। कुछ घंटे पहले यहां पर तमाम प्रदर्शनकारी मौजूद थे। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के द्वारा इस पूरे इलाके को अब खाली करा लिया गया है।
1: संसद भवन के आसपास भी सड़कें अब खाली हैं। संसद से विजय चौक तक का इलाका खाली और सामान्य दिख रहा है।
4: यहाँ पर एकदम नॉर्मल सी है, जिस तरीके के बैरिकेड्स लगाए गए थे ताकि जो प्रदर्शनकारी थे जब वो यहाँ आने की कोशिश कर रहे थे, वो सभी बैरिकेड्स को एक तरफ साइड में खड़ा कर दिया गया है और संसद परिसर के बाहर भी जो सामान्य तौर पर जो पुलिस कर्मी होते हैं वही लोग इस समय मौजूद हैं।
1: जंतर मंतर पर भी जहाँ सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा था उसे भी खाली करा लिया गया है। कुल मिलाकर अब स्थिति नियंत्रण में है। आज तक ब्यूरो।
0: सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि विपक्ष ने सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को मुद्दा बना लिया है और सरकार पर जोरदार हमला बोला है। विपक्ष मांग कर रहा है कि सीजेपी की मांगों को सरकार माने।
5: सीजेपी के प्रदर्शन ने विपक्ष को सरकार के खिलाफ निशाना साधने का मौका दे दिया। आम आदमी पार्टी के दो नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह सीजेपी के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे, जहां पुलिस अफसर से उनकी तीखी बहस हुई।
6: आपको वहां हमने कहा था कि उस वाला वो रास्ता खुला, आप प्लीज उधर जा देंगे,
7: तो इधर से मान लो।
6: नहीं सुनो, एक मिनट सुनो ना, वो रास्ता है जंतर मंतर के लिए,
7: ये है ना रास्ता,
6: यहाँ से रास्ता नहीं है सर,
7: ये रास्ता।
6: अरे जंतर मंतर बराबर आते हैं,
8: सारे लोग आ रहे हैं।
7: सुनिए मेरी बात।
5: समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव भी जंतर मंतर पहुंची, जहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।
9: आज पूरे लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इतिहास के लिए ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप मीडिया रिपोर्टर्स हैं, पुलिस वाले भी उनकी आंखों में शर्मिंदगी दिख रही थी, लेकिन अपनी ड्यूटी के कारण अपने बैचेस निकाल के आए थे, गुंडे बने हुए थे कुछ पुलिस वाले। कुछ पुलिस वाले तो सहयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले बिना वर्दी के आए थे और बच्चों को मारा है, बच्चों को करंट दिया है, और जहां रूल होता है कि आपको टांगों में मारा चाहिए, बच्चों की छातियों में मारा है।
5: इधर संसद के गलियारे में भी सीजेपी के प्रदर्शन की गूंज सुनाई दे रही थी।
10: इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार को? और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र, नौजवान, युवा जब यहाँ आए हैं, और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती है। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहें अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं।
11: बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है, और बच्चों पे आप टियर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हमारे।
5: कांग्रेस पूछ रही है कि अपना हक मांगने वाले युवाओं पर लाठीचार्ज क्यों?
12: क्या मांग कर रहे हैं? अपने भविष्य की मांग कर रहे हैं, अपने भविष्य सुरक्षित रहे उनकी मांग कर रहे हैं, तो ऐसे नौबत में लाठी चार्ज की क्या जरूरत?
5: विपक्ष सरकार पर हमलावर है, लेकिन सरकार से जुड़े नेता अलग सुर साध रहे हैं।
13: अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अच्छी तरह से डिस्कस करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ऐसे प्रोटेस्ट करने से तो कुछ काम नहीं होगा।
14: अब जो जंतर मंतर पे हो रहा है, वो विद्यार्थियों के नाम पे राजनीति हो रही है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रही है।
5: इन सब बयानों के बीच सीजेपी का प्रतिनिधि मंडल स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिला। ये तभी की तस्वीरें हैं। सीजेपी ने अपने ज्ञापन में तीन मांगे रखी हैं। नंबर एक, सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए। नंबर दो, धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए या उनका इस्तीफा हो। नंबर तीन, नीट पेपर लीक की वजह से आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले।
15: सोनम वांगचुक जी को तुरंत रिलीज किया जाए, धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन तो अब आना ही पड़ेगा। और तीसरा, जो नीट के फैमिलीज है, जो बच्चे मर गए हैं 20 से ज्यादा, उन फैमिलीज को 1 करोड़ का मुआवजा मिले।
5: इस ज्ञापन के बाद सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने भरोसा जताया है कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी। आज तक ब्यूरो।
0: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक वीडियो जारी करके मोदी सरकार पर हमला करते नजर आए। राहुल गांधी ने अपने संदेश में सरकार को युवा विरोधी बताया है।
16: दिस कंट्री हैज मेजॉरिटी ऑफ यंग पीपल। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द मोस्ट एंटी यूथ प्राइम मिनिस्टर इंडिया हैज एवर हैड। द बॉयज एंड गर्ल्स हु आर वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर नॉट क्रिमिनल्स, दे आर डिमांडिंग देयर राइट्स। देयर राइट्स आर टू हैव एन एजुकेशन सिस्टम दैट रिस्पेक्ट्स देम, टू हैव एन एजुकेशन सिस्टम दैट इज फेयर, to have an education system that is working. There's absolutely nothing wrong in what they are doing and it's disgusting what the government is doing.
0: संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया, मगर सत्र की शुरुआत ही हंगामेदार रही। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया, उसके बाद हंगामा शुरू हुआ। सदन की कार्यवाही को कई बार स्थगित करना पड़ा।
17: समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो।
5: मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई और सदन में विपक्षी सांसद जमकर बरसे।
17: सदन नहीं चलाना चाहते।
5: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। बार बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। मुख्य मुद्दा था पेपर लीक का।
18: नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्रेडिबिलिटी किसकी है, किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, दुनिया में आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे हैं।
5: लोकसभा के साथ राज्यसभा में नीट पेपर लीक का मुद्दा छाया रहा। राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया।
19: सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहाँ पर आए हैं।
5: नीट पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ संसद के भीतर ही नहीं संसद के बाहर भी गूंजा। समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ तख्ती लेकर डिंपल यादव ने मार्च किया।
20: वी वांट कि छात्रों की बात सुनी जाए, क्योंकि अब पानी जो है सर से ऊपर से निकल चुका है। देश के लिए जहाँ किसान, जहाँ हमारा एनवायरनमेंट हो, चाहे हमारा युवा हो, सभी परेशान हैं, और ये सरकार कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी रिफॉर्म्स लाने को तैयार नहीं है।
5: इन तमाम हंगामों के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक के पास होने के बाद देश की सर्वोच्च अदालत में जजों की संख्या बढ़ जाएगी। इस बिल का मकसद सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या एक्ट 1956 में और संशोधन करना है। प्रस्तावित कानून का मकसद केंद्र द्वारा जारी उस अध्यादेश की जगह लेना है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की गई थी। आज तक ब्यूरो।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के बाहर अपने संबोधन में कहा कि यह सत्र काफी ऐतिहासिक है। इस सत्र में सरकार कई बिल लाने वाली है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों के सकारात्मक रवैये अपनाने और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने की भी उनसे अपील की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 28 साल के नौजवानों ने अंतरिक्ष में देश का झंडा गाड़ दिया है, मैं 56 साल की युवा की बात नहीं कर रहा।
21: जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए, हर आवाज को अवसर मिले, हर विचार को सम्मान मिले। ये संसद की हमारी भूमिका है।

0: हाथों में तख्तियां और जुबान पर तेवर। बिहार में विधानसभा में मॉनसून सत्र की शुरुआत का पहला दिन हंगामा खेज था। विपक्ष के विधायक तख्तियां लेकर पहुंचे थे। नीट पेपर लीक का मुद्दा यहां भी उछाला गया। विपक्ष के विधायकों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा।
1: विधानमंडल का मुख्य गेट है और इसके ठीक बाहर ही आरजेडी माले तमाम विपक्षी दलों के जो नेता हैं, वो विधायक हैं, वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और हाथों में स्लोगन्स है, बैनर है, पोस्टर है। आरजेडी के विधायक हैं रणविजय साहू जी। रणविजय जी, आज पहले ही दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले आप लोग तो आक्रामक तेवर।
2: ये सड़क पर और सदन के अंदर भी सरकार के आंख खोलने का काम करेंगे। आज पूरे देश भर में छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, नीट छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, पेपर लीक हुआ है, लेकिन सरकार चुप है, मोदी सरकार खामोश है और केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। जब तक बर्खास्त नहीं करेंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
0: विपक्ष आक्रामक था। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री ने भी धर्मेंद्र प्रधान पर जोरदार निशाना साधा। जंतर मंतर वाली गूंज यहां भी सुनाई दी।
1: आप भी बिहार के शिक्षा मंत्री रहे चंद्रशेखर जी, केवल नीट का सवाल ही है या और भी मुद्दों पे घेरेंगे सवाल?
3: ये भाजपा नीति नफरती सरकार न सिर्फ बेरोजगारों के लिए कब्र खोद रही है, संपूर्ण देश की मिल्कियत को चंद विश्वसनीय विश्वस्त उद्योगपतियों के हाथ में बेच रही है। भारत के भविष्य के लिए खतरा है, इसीलिए ऐसे निकम्मी सरकार को हटाने का संकल्प लेकर के हम लोग आंदोलन के समर्थन में हैं। जंतर मंतर पर जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई है उसके खिलाफ हम लोग प्रतिकार स्वरूप यहां खड़े हैं। आंदोलन होगा, गली में होगी, सड़क पर होगा, सदन में होगा।
1: नेता प्रतिपक्ष क्या शामिल हो रहे हैं आज की कार्यवाही में या अभी भी बाहर?
3: नेता प्रतिपक्ष कहाँ है तो हम नहीं अभी बता सकते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष और इस पार्टी के हम लोग सिपाही हैं। हर कदम हमारी पार्टी और हमारे नेता अन्याय जुल्म के खिलाफ है।
1: चलिए, तेजस्वी यादव नहीं है और विधायकों को मालूम भी नहीं है कि कब से विधानसभा की कार्यवाही में वो शामिल होंगे और आईपी गुप्ता जो है वो भी पहुंच गए हैं, मतलब सदन के अंदर भी यही रुक रहेगा गुप्ता जी?
4: अब ये जो बेशरम सरकार है वो सारे दरवाजे बंद करके, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, शासन प्रशासन को, तो हमारे पास एक ही रास्ता है, सदन।
0: मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले एक और दिलचस्प तस्वीर सामने आई। देखिए, इस आदमी के कंधे पर आरजेडी का गमछा था, तभी यहाँ रामकृपाल यादव पहुँचे। इसके बाद तस्वीर बदल गई। इस आदमी ने ये हरा गमछा फेंक दिया और इसकी जगह बीजेपी का गमछा पहन लिया। कार्यकर्ताओं ने आवाज लगाई कि अब ये बीजेपी में शामिल हो गया। बहरहाल, बिहार विधानसभा से जोरदार हंगामे के साथ सत्र शुरू तो हो गया, लेकिन सत्र क्या सुचारू रूप से चल पाएगा, ये सवाल बना हुआ है। शशि भूषण सिंह, पटना आज तक।
5: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। रविवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के ड्राफ्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। सोमवार को इसे विधानसभा में पेश कर दिया गया। हालांकि इसके विरोध में कांग्रेस विधायक काले कपड़े पहनकर सदन में पहुंचे और आरोप लगाया कि सरकार ने चोरी से बिल पेश किया है।
6: इसके लिए संसद है, आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी संबंधी उल्लेख।
7: राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर ऐसी सियासत जोरी है कि एक तरफ जांच एजेंसियां चोरों का पूरा हिसाब पता नहीं लगा पाई हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में चढ़ावा चोरी पर सियासत जोरी जबरदस्त है।
8: ये सरकार नहीं, अहंकार है। बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ये कोशिश रहती है घोटाला करने।
9: राम मंदिर में चोरी क्यों हो रही है तो क्या ये प्रधानमंत्री का जवाब है? शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री।
10: लूट मची है, चंदा चोरी,
11: उन्होंने रखवाली नहीं, चोरी नहीं है, डकैती।
7: अयोध्या में हुई चढ़ावा चोरी पर इस सियासी शोर के बीच जांच एजेंसियां तमाम खुलासे कर रही हैं और ये खुलासे खुद आरोपियों से पूछताछ के बाद हुए हैं। एक दिन पहले करीब 40 घंटे तक पुलिस रिमांड में रहे टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव से हुई पूछताछ में पुलिस को बड़े राज की बातें पता चली हैं।
12: चढ़ावा चोरी के पैसे से टिन्नू ने सूत्रों के मुताबिक कुछ संपत्तियां भी अर्जित की थी जिसके दस्तावेज पुलिस को मिल गए हैं।
7: टिन्नू यादव से 39 घंटे की पूछताछ में ही पता चला है कि अप्रैल 2026 में टिन्नू यादव ने सफारी

0: कर अपने भतीजे मनीष यादव को नौकरी दिलवाई थी, जिसके बाद 15 अप्रैल 2026 से मनीष यादव को चढ़ावे की गिनती के काम में लगाया गया था। महीने भर के अंदर मई के दूसरे हफ्ते में मनीष यादव ने अविनाश शुक्ला के साथ मिलकर पहली बार चोरी की। उससे पहले मनीष यादव अनुकल्प, लवकुश और अविनाश को चोरी में मदद कर रहा था। ये भी पता चला है कि नाइट शिफ्ट के दौरान मनीष यादव को चोरी की रकम के साथ बाइक पर बैठाकर टिन्नू यादव ही बिना चेकिंग मंदिर से बाहर ले जाया करता था। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर बुलेट गाड़ी और एक कार पुलिस ने बरामद की है।
1: पुलिस ने टिन्नू यादव की पत्नी के नाम से पंजीकृत फर्म का रिकॉर्ड भी तलब किया है। इसके लिए पुलिस ने स्टेट GST ऑफिसर्स की सहायता ली है।
0: इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में आज SIT ने सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। इस मामले में अब अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और मनीष शुक्ला के साथ आज तक ब्यूरो।
2: अयोध्या का चढ़ावा चोरी मामला दिल्ली में संसद तक गूंज रहा है। दूसरी तरफ जांच एजेंसियां लगातार चोरी से अर्जित संपत्तियों को लेकर खुलासे कर रही हैं। SIT ने सुप्रीम कोर्ट में क्या स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है, उसका पूरा खुलासा भी हो नहीं पाया। लेकिन अब चोरी कांड में सूत्रों के हवाले से आरोपी टिन्नू यादव को लेकर तमाम खुलासे जरूर हो रहे हैं।
3: इसके लिए संसद है, आप तर्क से चर्चा करें।
0: राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर ऐसी सियासत जोरी है कि एक तरफ जांच एजेंसियां चोरों का पूरा हिसाब पता नहीं लगा पाई हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में चढ़ावा चोरी पर सियासत जोरी जबरदस्त है।
4: ये सरकार नहीं, अहंकार है। BJP के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ये कोशिश रहती है घोटाला करने।
5: राम मंदिर में चोरी क्यों हो रही है, तो क्या ये प्रधानमंत्री का जवाब है? शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री।
6: लूट मची है, चंदा चोरी,
7: उन्होंने रखवाली नहीं, चोरी नहीं है, डकैती।
0: अयोध्या में हुई चढ़ावा चोरी पर इस सियासी शोर के बीच जांच एजेंसियां तमाम खुलासे कर रही हैं, और ये खुलासे खुद आरोपियों से पूछताछ के बाद हुए हैं। एक दिन पहले करीब 40 घंटे तक पुलिस रिमांड में रहे टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव से हुई पूछताछ में पुलिस को बड़े राज की बातें पता चली है।
1: चढ़ावा चोरी के पैसे से टिन्नू ने सूत्रों के मुताबिक कुछ संपत्तियां भी अर्जित की थी, जिसके दस्तावेज पुलिस को मिल गए हैं।
0: टिन्नू यादव से 39 घंटे की पूछताछ में ही पता चला है कि अप्रैल 2026 में टिन्नू यादव ने सिफारिश कर अपने भतीजे मनीष यादव को नौकरी दिलवाई थी, जिसके बाद 15 अप्रैल 2026 से मनीष यादव को चढ़ावे की गिनती के काम में लगाया गया था। महीने भर के अंदर मई के दूसरे हफ्ते में मनीष यादव ने अविनाश शुक्ला के साथ मिलकर पहली बार चोरी की। उससे पहले मनीष यादव अनुकल्प, लवकुश और अविनाश को चोरी में मदद कर रहा था। ये भी पता चला है कि नाइट शिफ्ट के दौरान मनीष यादव को चोरी की रकम के साथ बाइक पर बैठाकर टिन्नू यादव ही बिना चेकिंग मंदिर से बाहर ले जाया करता था। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर बुलेट गाड़ी और एक कार पुलिस ने बरामद की है।
1: पुलिस ने टिन्नू यादव की पत्नी के नाम से पंजीकृत फर्म का रिकॉर्ड भी तलब किया है। इसके लिए पुलिस ने स्टेट GST ऑफिसर्स की सहायता ली है।
0: इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में आज SIT ने सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। इस मामले में अब अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और मनीष शुक्ला के साथ आज तक ब्यूरो।
2: पहाड़ों पर भयंकर बारिश हो रही है, नतीजा ये हुआ है कि पहाड़ टूट रहे हैं, लगातार भूस्खलन फ्लैश फ्लड हो रहा है, बादल फट रहे हैं, पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, लोगों की जानमाल का भारी नुकसान लोगों को हो रहा है, और सबसे ज्यादा बुरा हाल है जम्मू कश्मीर का।
8: बारिश कहर बरपा रही है, खास तौर पर जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में तो कोहराम मचा हुआ है। कहीं बादल फट रहा है, कहीं फ्लैश फ्लड आ रहा है, कहीं पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं, कहीं भारी भूस्खलन हो रहा है, कहीं पूरा पहाड़ ही भरभरा कर नीचे गिर जा रहा है।
9: देखो भाई, ये टंड रही है।
8: पूरे जम्मू कश्मीर में 12 लोगों की मौत हुई है, बहुत से लोग लापता हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल राजौरी, पुंछ, डोडा और किश्तवाड़ में है। एहतियातन वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। पुंछ में भारी बारिश के बाद आए फ्लैश फ्लड में भाटा दूरिया टनल उजड़ गई। राजौरी में खेवड़ा नाला ओवरफ्लो हो गया, जिसका पानी कई कॉलोनियों में घुस गया। फ्लैश फ्लड में कई गाड़ियां बह गई और कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। आर्मी, SDRF और पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं और चिंता की बात यह है कि अगले 24 से 36 घंटों तक अभी और ज्यादा बारिश का अनुमान है। ये पुंछ की तस्वीरें हैं जहां एक प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा का पूरा पहाड़ ही गिर गया। नीचे मशीनें दिख रही हैं, पूरा सुरंग प्रोजेक्ट है, लेकिन ऊपर से भूस्खलन हो गया। भारी बारिश से मिट्टी कच्ची हो गई और पूरा पहाड़ ही नीचे गिर गया। अचानक से भारी बारिश के बाद आए फ्लैश फ्लड का पानी रेजिडेंशियल इलाकों में घुस गया है। इसी तरह से ये तबाही भी पुंछ में ही हुई है। यहाँ पुंछ नेशनल हाईवे 144 को बनाने का काम चल रहा है। ये कंपनी यहाँ पर 35 किलोमीटर की सड़क बना रही थी, लेकिन अचानक से रात में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। यहाँ काम कर रहे मजदूरों की जान किसी तरह से बच गई, लेकिन उनकी मशीनें, बाकी सामान सब कुछ बह गया। अंदर सीमेंट का गोदाम था जिसमें 5,000 से ज्यादा सीमेंट के बैग थे। इतना पानी आया कि सब कुछ खराब हो गया।
4: सर, इसमें काफी करीब जो रात को पानी आए हैं, फ्लड आए हैं, उसके काफी हमारे मटेरियल नुकसान हुए हैं।
8: यहाँ SGI कंपनी पिछले 3 साल से पुंछ नेशनल हाईवे को बनाने का काम कर रही है। ये पुंछ का बफलियाज इलाका है। यहाँ भी भयंकर बारिश के बाद बादल फटा और फ्लैश फ्लड आ गया। पूरा रास्ता, स्कूल, सब जगह मलबा भर गया है। किश्तवाड़ में भी रैटल पावर प्रोजेक्ट साइट पर अचानक से फ्लैश फ्लड आ गया। ये पावर प्रोजेक्ट नदी के किनारे था, बगल में नदी बह रही है और इधर ये पावर प्लांट। तस्वीरों में दिख रहा है कि ऊपर पूरा पहाड़ है और उसके अंदर से पानी आ रहा है। पूरे प्रोजेक्ट पर खतरा मंडरा रहा है। आगे फ्लैश फ्लड का यही पानी रेजिडेंशियल इलाकों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। डोडा में रागी नाला के पास भूस्खलन की वजह से ऊपर से एक बस के ऊपर पत्थर गिरे, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। यहाँ राजौरी में नदी में आई बाढ़ की वजह से एक पुल भी टूटा है और बहुत सा नुकसान हुआ है। नदी लगातार उफान पर है, आज भी बारिश हुई है।
10: तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से ये हिस्सा जो है पूरी तरह से इस ब्रिज का टूट चुका है।
11: उफान पर होने के बाद जब इस ब्रिज के नजदीक पानी पहुंचता है तो इसका आधा हिस्सा जो है वो इस तरफ वाला वो बहा के साथ में ले जाता है।
8: ये भी राजौरी की तस्वीरें हैं जहां 2 भैंसें इन लहरों के बीच में फंस गई हैं। भैंसों को रस्सियों के सहारे निकालने की कोशिश हो रही है। एक शख्स भी अपनी जान जोखिम में डालकर इन भैंसों को निकाल रहा है। बताया जा रहा है कि ये गुर्जर समुदाय के जानवर हैं। ये गांदेरबल का सफापुर इलाका है जहां फ्लैश फ्लड आया है। पानी की रफ्तार देखकर आप ये धोखा खा सकते हैं कि जैसे ये कोई नदी होगी, लेकिन ये मुख्य सड़क है जिस पर गाड़ियां भी चल रही हैं, लेकिन पूरी सड़क पर मटमैला पानी भरा हुआ है। श्रीनगर शहर में भी भारी बारिश हुई है, इतनी कि यहां के प्रसिद्ध लाल चौक एरिया में पानी जमा हो गया।
12: नदियां उफान पर हैं, यहां तक कि अमरनाथ यात्रा को आज दूसरे दिन भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि अमरनाथ गुफा के आसपास इलाकों में कल से ही तेज बारिशें हो रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले 2 दिन तक कश्मीर के अधिकतर इलाकों में इसी तरह तेज बारिशें होंगी।
8: भारी बारिश को देखते हुए माता वैष्णो देवी की यात्रा को भी स्थगित करना पड़ा है। अब जो श्रद्धालु यहां पहुंचे थे वो इस उम्मीद में हैं कि यात्रा फिर से शुरू होगी, लेकिन खराब मौसम को देखते हुए ये उम्मीद कम लगती है।
13: 2-3 दिन लगेंगे खुलने में, अभी दर्शन करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है।
8: उधर खराब मौसम की वजह से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा भी रोक दी गई है। लगातार बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा भी प्रभावित हो रही है। केदारनाथ हाईवे और केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भी भूस्खलन हो रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल अग्रिम आदेशों तक केदारनाथ यात्रा को रोका गया है और यात्रियों से सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील की गई है।
14: मौसम विभाग ने वर्षा की भारी चेतावनी जारी की गई थी, जिससे कि जनपद में रात भर रुक रुक करके बारिश हो रही है और केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह लैंडस्लाइड होने की स्थिति बनी हुई है और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए और यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है।
8: रुद्रप्रयाग में बाबा केदार के रास्ते पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के अलावा अन्य सहायक नदियां भी उफान पर बह रही हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी विकराल रूप धारण करते हुए वार्निंग लेवल के पास बह रही है। नदी किनारे के सभी घाट डूब गए हैं। अलकनंदा नदी से 30 मीटर दूर भगवान शिव की विशाल मूर्ति भी जलमग्न हो चुकी है।
15: पैदल यात्रा मार्ग सहित केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन हो रहा है और यात्रियों को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए आज के लिए केदारनाथ यात्रा को फिलहाल अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया है।
8: भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड में एक नेशनल हाईवे समेत 60 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का काम चल रहा है। सोमवार को बारिश की वजह से उत्तराखंड के सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित करनी पड़ी। बहुत से पहाड़ी जिलों के लिए मौसम विभाग की तरफ से बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज तक ब्यूरो।
2: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: सीजेपी प्रदर्शनकारियों ने जेपी नड्डा से की मुलाकात। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ रखी 3 मांगे। कहा सरकार हमारी बातों पर करेगी विचार। केरल हाउस के करीब प्रदर्शन शिफ्ट। दिल्ली में हालात सामान्य। बच्ची से मारपीट और 50 लोगों के घायल होने की खबर का पुलिस ने खंडन किया। राहुल गांधी का सरकार पर हमला। पुलिस को भी चेताया। संसद का मानसून सत्र के पहले दिन ही मूसलाधार से आसर। दोनों ही सदनों में जोरदार हंगामा। संकट के बीच शाह धर्मेंद्र प्रधान के बीच मैराथन बातचीत। चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। सीजेआई ने दिया आदेश। एसआईटी का हो पुनर्गठन। सीनियर अधिकारी की अगुवाई में हो जांच। अब अगले हफ्ते हियरिंग। और उत्तर से पूर्व तक कुदरत का कहर। असम के जोरहाट शिवसागर में भीषण तबाही। पुंछ में लैंडस्लाइड से 7 की मौत। अमरनाथ यात्रा आज और कल के लिए भी स्थगित। कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर से संसद तक मार्च किया। देश की राजधानी दिल्ली में संसद से लेकर सड़क तक हंगामा नजर आया। कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च को रोकने के लिए संसद भवन के पास आंसू गैस के गोले दागे गए और संसद के सभी दरवाजों पर सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य कर दी गई, जिसकी वजह से अब स्थिति नियंत्रण में है।
1: जबरदस्त हंगामा बरपा है। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक संसद भवन का घेराव कर रहे हैं और पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। प्रदर्शनकारी बेकाबू हुए तो पुलिस को उन्हें रोकने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। फिर लाठियां चली, आंसू गैस के गोले दागे गए। प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए राजीव चौक और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन तक में घुस गए, जबकि कई लोग बैरिकेडिंग तोड़कर सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने तक पहुंच गए। कर्तव्य पथ पर भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। देखिए, ये दोपहर में करीब 1:30 बजे की तस्वीरें हैं।
2: कर्तव्य पथ का चौराहा है जहां आपको सिर्फ पुलिस के साइरेंस सुनाई देंगे और ये तस्वीर है जहां प्रोटेस्टर्स कुछ इस तरीके से
1: सोशल मीडिया पर बताया गया कि प्रदर्शनकारियों में बहुत सारे घायल हैं, जिस पर दिल्ली पुलिस ने सफाई दी। दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि सोशल मीडिया पर गीतांजलि नाम की 12 साल की लड़की के साथ मारपीट, बाल खींचने और सिर में चोट लगने और साथ ही लगभग 40 से 50 अन्य लोगों के सिर फूटने के दावों वाली पोस्ट में गलत जानकारी फैलाई जा रही है। ये जानकारी गलत है। पोस्ट में किए जा रहे दावे सच नहीं है। कृपया गलत या गुमराह करने वाली जानकारी न फैलाएं और न ही उसे आगे बढ़ाएं। बहरहाल काफी देर तक यूं ही बवाल चलता रहा, लेकिन कुछ घंटों में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पा लिया।
2: कर्तव्य पथ पर हम लोग खड़े हुए हैं और अभी यहाँ पे स्थिति जो है, आप कह लीजिए कि यातायात जो है वो चालू हो गया है। स्थिति यहाँ पे ये है कि प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है, लेकिन 2 घंटे पहले यहाँ पे तस्वीर बेहद अलग थी। तमाम प्रदर्शनकारी इन लॉन्स में पीछे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे भरे हुए थे और उसके अलावा खाकी का जो आपको तैनाती दिख रही है बिल्कुल एक्शन में दिल्ली पुलिस और अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे थे। एंटी राइड व्हीकल्स पीछे और तमाम दिल्ली पुलिस के बसें यहाँ पे तैनात थी, लेकिन अब वो खाली करा दिया गया है।
1: कुछ देर पहले तक रेल भवन के पास भी प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा था, लेकिन वहां भी थोड़ी देर में स्थिति नियंत्रण में आ गई।
3: मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं, जो कि रफी मार्ग है, जो कि रेल भवन से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। कुछ घंटे पहले यहां पर तमाम प्रदर्शनकारी मौजूद थे। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के द्वारा इस पूरे इलाके को अब खाली करा लिया गया है।
1: संसद भवन के आसपास भी सड़कें अब खाली हैं। संसद से विजय चौक तक का इलाका खाली और सामान्य दिख रहा है।
4: यहाँ पर एकदम नॉर्मल सी है, जिस तरीके के बैरिकेड्स लगाए गए थे ताकि जो प्रदर्शनकारी थे जब वो यहाँ आने की कोशिश कर रहे थे, वो सभी बैरिकेड्स को एक तरफ साइड में खड़ा कर दिया गया है और संसद परिसर के बाहर भी जो सामान्य तौर पर जो पुलिस कर्मी होते हैं वही लोग इस समय मौजूद है।
1: जंतर मंतर पर भी जहाँ सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा था उसे भी खाली करा लिया गया है। कुल मिलाकर अब स्थिति नियंत्रण में है। आज तक ब्यूरो।
0: सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि विपक्ष ने सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को मुद्दा बना लिया है और सरकार पर जोरदार हमला बोला है। विपक्ष मांग कर रहा है कि सीजेपी की मांगों को सरकार माने।
5: सीजेपी के प्रदर्शन ने विपक्ष को सरकार के खिलाफ निशाना साधने का मौका दे दिया। आम आदमी पार्टी के दो नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह सीजेपी के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे, जहां पुलिस अफसर से उनकी तीखी बहस हुई।
6: आपको वहां हमने कहा था कि उस वाला वो रास्ता खुला है, आप प्लीज उधर से आ जाइए।
7: तो इधर से मान लो,
6: नहीं सुनो, एक मिनट सुनो ना, वो रास्ता है जंतर मंतर के लिए,
7: ये है ना रास्ता, यहां से
6: रास्ता नहीं है सर,
7: ये रास्ता
6: नहीं है। अरे जंतर मंतर बराबर आते हैं,
8: सारे लोग आ रहे हैं।
6: नहीं नहीं,
7: सुनिए मेरी बात।
5: समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव भी जंतर मंतर पहुंची, जहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।
9: आज पूरे लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इतिहास के लिए ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप मीडिया रिपोर्टर्स हैं, पुलिस वाले भी, उनकी आंखों में शर्मिंदगी दिख रही थी, लेकिन अपनी ड्यूटी के कारण अपने बैचेस निकाल के आए थे, गुंडे बने हुए थे कुछ पुलिस वाले, कुछ पुलिस वाले तो सहयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले बिना वर्दी के आए थे और बच्चों को मारा है, बच्चों को करंट दिया है, और जहां रूल होता है कि आपको टांगों में मारना चाहिए, बच्चों की छातियों में मारा है।
5: इधर संसद के गलियारे में भी सीजेपी के प्रदर्शन की गूंज सुनाई दे रही थी।
10: इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार को? और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र नौजवान युवा जब यहाँ आए हैं, और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती है। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहे अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं।
11: बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है, और बच्चों पे आप टियर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हमारे।
5: कांग्रेस पूछ रही है कि अपना हक मांगने वाले युवाओं पर लाठीचार्ज क्यों?
12: क्या मांग कर रहे हैं? अपने भविष्य की मांग कर रहे हैं, अपने भविष्य सुरक्षित रहे उनकी मांग कर रहे हैं, तो ऐसे नौबत में लाठीचार्ज की क्या जरूरत है?
5: विपक्ष सरकार पर हमलावर है, लेकिन सरकार से जुड़े नेता अलग सुर साध रहे हैं।
13: अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अच्छी तरह से डिस्कस करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ऐसे प्रोटेस्ट करने से तो कुछ काम नहीं होगा।
14: अब जो जंतर मंतर पे हो रहा है, वो विद्यार्थियों के नाम पे राजनीति हो रही है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रही है।
5: इन सब बयानों के बीच सीजेपी का प्रतिनिधि मंडल स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिला। ये तभी की तस्वीरें हैं। सीजेपी ने अपने ज्ञापन में तीन मांगे रखी हैं। नंबर एक, सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए। नंबर दो, धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए या उनका इस्तीफा हो। नंबर तीन, नीट पेपर लीक की वजह से आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले।
15: सोनम वांगचुक जी को तुरंत रिलीज किया जाए, धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन तो अब आना ही पड़ेगा, और तीसरा, जो नीट के फैमिलीज है, जो बच्चे मर गए हैं 20 से ज्यादा, उन फैमिलीज को 1 करोड़ का मुआवजा मिले।
5: इस ज्ञापन के बाद सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने भरोसा जताया है कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी। आज तक ब्यूरो।
0: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक वीडियो जारी करके मोदी सरकार पर हमला करते नजर आए। राहुल गांधी ने अपने संदेश में सरकार को युवा विरोधी बताया है।
16: दिस कंट्री हैज मेजॉरिटी ऑफ यंग पीपल। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द मोस्ट एंटी यूथ प्राइम मिनिस्टर इंडिया हैज एवर हैड। द बॉयज एंड गर्ल्स हु आर वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर नॉट क्रिमिनल्स, दे आर डिमांडिंग देयर राइट्स। देयर राइट्स आर टू हैव एन एजुकेशन सिस्टम दैट रिस्पेक्ट्स देम, टू हैव एन एजुकेशन सिस्टम दैट इज फेयर, to have an education system that is working. There's absolutely nothing wrong in what they are doing and it's disgusting what the government is doing.
0: संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया, मगर सत्र की शुरुआत ही हंगामेदार रही। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया, उसके बाद हंगामा शुरू हुआ, सदन की कार्रवाई को कई बार स्थगित करना पड़ा।
17: समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो।
5: मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई और सदन में विपक्षी सांसद जमकर बरसे।
17: सदन नहीं चलाना चाहते।
5: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। बार बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। मुख्य मुद्दा था पेपर लीक का।
18: नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्रेडिबिलिटी किसकी है, किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, दुनिया में आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे।
5: लोकसभा के साथ राज्यसभा में नीट पेपर लीक का मुद्दा छाया रहा। राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया।
19: सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहाँ पर आए हैं।
5: नीट पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ संसद के भीतर ही नहीं संसद के बाहर भी गूंजा। समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ तख्ती लेकर डिंपल यादव ने मार्च किया।
20: वी वांट कि छात्रों की बात सुनी जाए, क्योंकि अब पानी जो है सर से ऊपर से निकल चुका है। देश के लिए जहाँ किसान, जहाँ हमारा एनवायरनमेंट हो, चाहे हमारा युवा हो, सभी परेशान हैं, और ये सरकार कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी रिफॉर्म्स लाने को तैयार नहीं है।
5: इन तमाम हंगामों के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक के पास होने के बाद देश की सर्वोच्च अदालत में जजों की संख्या बढ़ जाएगी। इस बिल का मकसद सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या एक्ट 1956 में और संशोधन करना है। प्रस्तावित कानून का मकसद केंद्र द्वारा जारी उस अध्यादेश की जगह लेना है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की गई थी। आज तक ब्यूरो।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के बाहर अपने संबोधन में कहा कि यह सत्र काफी ऐतिहासिक है। इस सत्र में सरकार कई बिल लाने वाली है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों के सकारात्मक रवैये अपनाने और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने की भी उनसे अपील की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 28 साल के नौजवानों ने अंतरिक्ष में देश का झंडा गाड़ दिया है, मैं 56 साल की युवा की बात नहीं कर रहा।
21: जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए, हर आवाज को अवसर मिले, हर विचार को सम्मान मिले, ये संसद की हमारी भूमिका है।
0: बिहार विधानसभा में भी मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है, मगर सदन शुरू होता है इससे पहले ही विपक्ष ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी विधायकों ने विधानमंडल के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष यहां शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
5: हाथों में तख्तियां और जुबान पर तेवर, बिहार में विधानसभा में मॉनसून सत्र की शुरुआत का पहला दिन हंगामा खेज था। विपक्ष के विधायक तख्तियां लेकर पहुंचे थे। नीट पेपर लीक का मुद्दा यहां भी उछाला गया। विपक्ष के विधायकों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा।
14: विधानमंडल का मुख्य गेट है और इसके ठीक बाहर ही आरजेडी, माले, तमाम विपक्षी दलों के जो नेता हैं, वो विधायक हैं, वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और हाथों में स्लोगन्स है, बैनर है, पोस्टर है। आरजेडी के विधायक हैं रणविजय साहू जी। रणविजय जी, आज पहले ही दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले आप लोग तो आक्रामक तेवर,
22: ये सड़क पर और सदन के अंदर भी सरकार के आंख खोलने का काम करेंगे। आज पूरे देश भर में छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, नीट छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, पेपर लीक हुआ है, लेकिन सरकार चुप है, मोदी सरकार खामोश है और केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। जब तक बर्खास्त नहीं करेंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
5: विपक्ष आक्रामक था। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री ने भी धर्मेंद्र प्रधान पर जोरदार निशाना साधा। जंतर मंतर वाली गूंज यहां भी सुनाई दी।
2: आप भी बिहार के शिक्षा मंत्री रहे चंद्रशेखर जी, केवल नीट का सवाल ही है या और भी मुद्दों पे घेरेंगे सवाल?
3: ये भाजपा नीति नफरती सरकार न सिर्फ बेरोजगारों के लिए कब्र खोद रही है, संपूर्ण देश की मिल्कियत को चंद विश्वसनीय विश्वस्त उद्योगपतियों के हाथ में बेच रही है। भारत के भविष्य के लिए खतरा है, इसीलिए ऐसे निकम्मी सरकार को हटाने का संकल्प लेकर के हम लोग आंदोलन के समर्थन में हैं। जंतर मंतर पर जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई है उसके खिलाफ हम लोग प्रतिकार स्वरूप यहां खड़े हैं। आंदोलन होगा, गली में होगी, सड़क पर होगा, सदन में होगा।
2: नेता प्रतिपक्ष क्या शामिल हो रहे हैं आज की कार्यवाही में या अभी भी बाहर?
3: नेता प्रतिपक्ष कहाँ है तो हम नहीं अभी बता सकते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष और इस पार्टी के हम लोग सिपाही हैं, इस पार्टी के हम लोग सिपाही हैं, हर कदम हमारी पार्टी और हमारे नेता अन्याय जुल्म के खिलाफ है।
2: चलिए, तेजस्वी यादव नहीं है और विधायकों को मालूम भी नहीं है कि कब से विधानसभा की कार्यवाही में वो शामिल होंगे, और आईपी गुप्ता जो है वो भी पहुंच गए हैं, मतलब सदन के अंदर भी यही रुक रहेगा गुप्ता जी?
4: अब ये जो बेशरम सरकार है वो सारे दरवाजे बंद करके, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, शासन प्रशासन को, तो हमारे पास एक ही रास्ता है, सदन।
23: मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले एक और दिलचस्प तस्वीर सामने आई। देखिए, इस आदमी के कंधे पर आरजेडी का गमछा था, तभी यहाँ रामकृपाल यादव पहुँचे, इसके बाद तस्वीर बदल गई। इस आदमी ने ये हरा गमछा फेंक दिया और इसकी जगह बीजेपी का गमछा पहन लिया। कार्यकर्ताओं ने आवाज लगाई कि अब ये बीजेपी में शामिल हो गया। बहरहाल बिहार विधानसभा से जोरदार हंगामे के साथ सत्र शुरू तो हो गया, लेकिन सत्र क्या सुचारू रूप से चल पाएगा ये सवाल बना हुआ है। शशि भूषण सिंह, पटना आज तक।
0: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। रविवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के ड्राफ्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। सोमवार को इसे विधानसभा में पेश कर दिया गया। हालांकि इसके विरोध में कांग्रेस विधायक काले कपड़े पहनकर सदन में पहुंचे और आरोप लगाया कि सरकार ने चोरी से बिल पेश किया है।
24: इसके लिए संसद है, आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी संबंधी उल्लेख।
25: राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर ऐसी सियासत जोरी है कि एक तरफ जांच एजेंसियां चोरों का पूरा हिसाब पता नहीं लगा पाई हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में चढ़ावा चोरी पर सियासत जोरी जबरदस्त है।
26: ये सरकार नहीं, अहंकार है। बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ये कोशिश रहती है घोटाला करने।
27: राम मंदिर में चोरी क्यों हो रही है, तो क्या ये प्रधानमंत्री का जवाब है? शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री।
28: लूट मची है, चंदा चोरी,
29: उन्होंने रखवाली नहीं, चोरी नहीं है, डकैती।
25: अयोध्या में हुई चढ़ावा चोरी पर इस सियासी शोर के बीच जांच एजेंसियां तमाम खुलासे कर रही हैं और ये खुलासे खुद आरोपियों से पूछताछ के बाद हुए हैं। एक दिन पहले करीब 40 घंटे तक पुलिस रिमांड में रहे टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव से हुई पूछताछ में पुलिस को बड़े राज की बातें पता चली हैं।
30: चढ़ावा चोरी के पैसे से टिन्नू ने सूत्रों के मुताबिक कुछ संपत्तियां भी अर्जित की थी जिसके दस्तावेज पुलिस को मिल गए हैं।
25: टिन्नू यादव से 39 घंटे की पूछताछ में ही पता चला है कि अप्रैल 2026 में टिन्नू यादव ने सिफारिश कर अपने भतीजे मनीष यादव को नौकरी दिलवाई थी, जिसके बाद 15 अप्रैल 2026 से मनीष यादव को चढ़ावे की गिनती के काम में लगाया गया था। महीने भर के अंदर मई के दूसरे हफ्ते में मनीष यादव ने अविनाश शुक्ला के साथ मिलकर पहली बार चोरी की। उससे पहले मनीष यादव अनुकल्प, लवकुश और अविनाश को चोरी में मदद कर रहा था। ये भी पता चला है कि नाइट शिफ्ट के दौरान मनीष यादव को चोरी की रकम के साथ बाइक पर बैठाकर टिन्नू यादव ही बिना चेकिंग मंदिर से बाहर ले जाया करता था। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर बुलेट गाड़ी और एक कार पुलिस ने बरामद की है।
30: पुलिस ने टिन्नू यादव की पत्नी के नाम से पंजीकृत फर्म का रिकॉर्ड भी तलब किया है। इसके लिए पुलिस ने स्टेट GST ऑफिसर्स की सहायता ली है।
25: इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में आज SIT ने सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। इस मामले में अब अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और मनीष शुक्ला के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अयोध्या का चढ़ावा चोरी मामला दिल्ली में संसद तक गूंज रहा है। दूसरी तरफ जांच एजेंसियां लगातार चोरी से अर्जित संपत्तियों को लेकर खुलासे कर रही हैं। SIT ने सुप्रीम कोर्ट में क्या स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है उसका पूरा खुलासा भी हो नहीं पाया, लेकिन अब चोरी कांड में सूत्रों के हवाले से आरोपी टिन्नू यादव को लेकर तमाम खुलासे जरूर हो रहे हैं।
24: इसके लिए संसद है, आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संबंधी उल्लेख।
25: राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर ऐसी सियासत जोरी है कि एक तरफ जांच एजेंसियां चोरों का पूरा हिसाब पता नहीं लगा पाई है, दूसरी तरफ दिल्ली में चढ़ावा चोरी पर सियासत जोरी जबरदस्त है।
26: ये सरकार नहीं अहंकार है, बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ही कोशिश रहती है घोटाला करने।
27: राम मंदिर में चोरी क्यों हो रही है तो क्या ये प्रधानमंत्री का जवाब है? शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री।
28: लूट मची है, चंदा चोरी,
29: उन्होंने रखवाली नहीं, चोरी नहीं है, डकैती।
25: अयोध्या में हुई चढ़ावा चोरी पर इस सियासी शोर के बीच जांच एजेंसियां तमाम खुलासे कर रही हैं और ये खुलासे खुद आरोपियों से पूछताछ के बाद हुए हैं। एक दिन पहले करीब 40 घंटे तक पुलिस रिमांड में रहे टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव से हुई पूछताछ में पुलिस को बड़े राज की बातें पता चली हैं।
30: चढ़ावा चोरी के पैसे से टिन्नू ने सूत्रों के मुताबिक कुछ संपत्तियां भी अर्जित की थी जिसके दस्तावेज पुलिस को मिल गए हैं।
25: टिन्नू यादव से 39 घंटे की पूछताछ में ही पता चला है कि अप्रैल 2026 में टिन्नू यादव ने सिफारिश कर अपने भतीजे मनीष यादव को नौकरी दिलवाई थी, जिसके बाद 15 अप्रैल 2026 से मनीष यादव को चढ़ावे की गिनती के काम में लगाया गया था। महीने भर के अंदर मई के दूसरे हफ्ते में मनीष यादव ने अविनाश शुक्ला के साथ मिलकर पहली बार चोरी की। उससे पहले मनीष यादव अनुकल्प, लवकुश और अविनाश को चोरी में मदद कर रहा था। ये भी पता चला है कि नाइट शिफ्ट के दौरान मनीष यादव को चोरी की रकम के साथ बाइक पर बैठाकर टिन्नू यादव ही बिना चेकिंग मंदिर से बाहर ले जाया करता था। दोनों
0: पहाड़ों पर भयंकर बारिश हो रही है, नतीजा ये हुआ है कि पहाड़ टूट रहे हैं, लगातार भूस्खलन फ्लैश फ्लड हो रहा है, बादल फट रहे हैं, पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, लोगों की जान माल का भारी नुकसान लोगों को हो रहा है और सबसे ज्यादा बुरा हाल है जम्मू कश्मीर का।
1: बारिश कहर बरपा रही है, खास तौर पर जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में तो कोहराम मचा हुआ है, कहीं बादल फट रहा है, कहीं फ्लैश फ्लड आ रहा है, कहीं पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं, कहीं भारी भूस्खलन हो रहा है, कहीं पूरा पहाड़ ही भरभरा कर नीचे गिर जा रहा है।
6: देखो भाई ये टन रही है।
1: पूरे जम्मू कश्मीर में 12 लोगों की मौत हुई है, बहुत से लोग लापता हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल राजौरी, पुंछ, डोडा और किश्तवाड़ में है। एहतियातन वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। पुंछ में भारी बारिश के बाद आए फ्लैश फ्लड में भाटा दूरिया टनल उजड़ गई। राजौरी में खेवड़ा नाला ओवरफ्लो हो गया जिसका पानी कई कॉलोनियों में घुस गया। फ्लैश फ्लड में कई गाड़ियां बह गई और कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। आर्मी, SDRF और पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं और चिंता की बात यह है कि अगले 24 से 36 घंटों तक अभी और ज्यादा बारिश का अनुमान है। ये पुंछ की तस्वीरें हैं जहां एक प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा का पूरा पहाड़ ही गिर गया। नीचे मशीनें दिख रही हैं, पूरा सुरंग प्रोजेक्ट है लेकिन ऊपर से भूस्खलन हो गया, भारी बारिश से मिट्टी कच्ची हो गई और पूरा पहाड़ ही नीचे गिर गया। अचानक से भारी बारिश के बाद आए फ्लैश फ्लड का पानी रेजिडेंशियल इलाकों में घुस गया है। इसी तरह से यह तबाही भी पुंछ में ही हुई है। यहाँ पुंछ नेशनल हाईवे 144 को बनाने का काम चल रहा है। ये कंपनी यहाँ पर 35 किलोमीटर की सड़क बना रही थी लेकिन अचानक से रात में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। यहाँ काम कर रहे मजदूरों की जान किसी तरह से बच गई लेकिन उनकी मशीनें, बाकी सामान सब कुछ बह गया। अंदर सीमेंट का गोदाम था जिसमें 5,000 से ज्यादा सीमेंट के बैग थे। इतना पानी आया कि सब कुछ खराब हो गया।
26: सर इसमें काफी करीब जो रात को पानी आए हैं, फ्लड आए हैं, उसके काफी हमारे मटेरियल नुकसान हुए हैं।
1: यहाँ SGI कंपनी पिछले 3 साल से पुंछ नेशनल हाईवे को बनाने का काम कर रही है। ये पुंछ का बफलियाज इलाका है। यहाँ भी भयंकर बारिश के बाद बादल फटा और फ्लैश फ्लड आ गया। पूरा रास्ता, स्कूल, सब जगह मलबा भर गया है। किश्तवाड़ में भी रैटल पावर प्रोजेक्ट साइट पर अचानक से फ्लैश फ्लड आ गया। ये पावर प्रोजेक्ट नदी के किनारे था, बगल में नदी बह रही है और इधर ये पावर प्लांट। तस्वीरों में दिख रहा है कि ऊपर पूरा पहाड़ है और उसके अंदर से पानी आ रहा है। पूरे प्रोजेक्ट पर खतरा मंडरा रहा है। आगे फ्लैश फ्लड का यही पानी रेजिडेंशियल इलाकों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। डोडा में रागी नाला के पास भूस्खलन की वजह से ऊपर से एक बस के ऊपर पत्थर गिरे जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। यहां रजौरी में नदी में आई बाढ़ की वजह से एक पुल भी टूटा है और बहुत सा नुकसान हुआ है। नदी लगातार उफान पर है, आज भी बारिश हुई है।
7: तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप यहां देख सकते हैं किस तरह से ये हिस्सा जो है पूरी तरह से इस ब्रिज का टूट चुका है। उफान पर होने के बाद जब इस ब्रिज के नजदीक पानी पहुंचता है तो इसका आधा हिस्सा जो है वो इस तरफ वाला वो बहा के साथ में ले जाता है।
1: ये भी रजौरी की तस्वीरें हैं जहां दो भैंसें इन लहरों के बीच में फंस गई हैं। भैंसों को रस्सियों के सहारे निकालने की कोशिश हो रही है। एक शख्स भी अपनी जान जोखिम में डालकर इन भैंसों को निकाल रहा है। बताया जा रहा है कि ये गुर्जर समुदाय के जानवर हैं। ये गांदेरबल का सफापुर इलाका है जहां फ्लैश फ्लड आया है। पानी की रफ्तार देखकर आप ये धोखा खा सकते हैं कि जैसे ये कोई नदी होगी, लेकिन ये मुख्य सड़क है जिस पर गाड़ियां भी चल रही हैं, लेकिन पूरी सड़क पर मटमैला पानी भरा हुआ है। श्रीनगर शहर में भी भारी बारिश हुई है, इतनी कि यहां के प्रसिद्ध लाल चौक एरिया में पानी जमा हो गया।
8: नदियां उफान पर हैं, यहां तक कि अमरनाथ यात्रा को आज दूसरे दिन भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि अमरनाथ गुफा के आसपास इलाकों में कल से ही तेज बारिशें हो रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले दो दिन तक कश्मीर के अधिकतर इलाकों में इसी तरह तेज बारिशें होंगी।
1: भारी बारिश को देखते हुए माता वैष्णो देवी की यात्रा को भी स्थगित करना पड़ा है। अब जो श्रद्धालु यहां पहुंचे थे वो इस उम्मीद में हैं कि यात्रा फिर से शुरू होगी, लेकिन खराब मौसम को देखते हुए ये उम्मीद कम लगती है।
9: दो तीन दिन लगे खुलने में, अभी दर्शन करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है।
1: उधर खराब मौसम की वजह से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा भी रोक दी गई है। लगातार बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा भी प्रभावित हो रही है। केदारनाथ हाईवे और केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भी भूस्खलन हो रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल अग्रिम आदेशों तक केदारनाथ यात्रा को रोका गया है और यात्रियों से सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील की गई है।
10: मौसम विभाग ने वर्षा की भारी चेतावनी जारी की गई थी, जिससे कि जनपद में रात भर रुक रुक करके बारिश हो रही है और केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह लैंडस्लाइड होने की स्थिति बनी हुई है और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए और यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर।
0: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: बीजेपी प्रदर्शनकारियों ने जेपी नड्डा से किया मुलाकात। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ रखी 3 मांगे। कहा सरकार हमारी बातों पर करेगी विचार। केरल हाउस के करीब प्रदर्शन शिफ्ट। दिल्ली में हालात सामान्य। बच्ची से मारपीट और 50 लोगों के घायल होने की खबर का पुलिस ने खंडन किया। राहुल गांधी का सरकार पर हमला। पुलिस को भी चेताया। संसद का मॉनसून सत्र के पहले दिन ही मूसलाधार सियासत। दोनों ही सदनों में जोरदार हंगामा। संकट के बीच शाह धर्मेंद्र प्रधान के बीच मैराथन बातचीत। चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। सीजेआई ने दिया आदेश। एसआईटी का हो पुनर्गठन। सीनियर अधिकारी की अगुवाई में हो जांच। अब अगले हफ्ते हियरिंग। और उत्तर से पूर्व तक कुदरत का कहर। असम के जोरहाट शिवसागर में भीषण तबाही। पुंछ में लैंडस्लाइड से 7 की मौत। अमरनाथ यात्रा आज और कल के लिए भी स्थगित। कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर से संसद तक मार्च किया। देश की राजधानी दिल्ली में संसद से लेकर सड़क तक हंगामा नजर आया। कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च को रोकने के लिए संसद भवन के पास आंसू गैस के गोले दागे गए और संसद के सभी दरवाजों पर सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य कर दी गई, जिसकी वजह से अब स्थिति नियंत्रण में है।
1: जबरदस्त हंगामा बरपा है। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक संसद भवन का घेराव कर रहे हैं और पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। प्रदर्शनकारी बेकाबू हुए तो पुलिस को उन्हें रोकने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। फिर लाठियां चली, आंसू गैस के गोले दागे गए। प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए राजीव चौक और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन तक में घुस गए, जबकि कई लोग बैरिकेडिंग तोड़कर सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने तक पहुंच गए। कर्तव्य पथ पर भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। देखिए, ये दोपहर में करीब 1:30 बजे की तस्वीरें हैं।
2: कर्तव्य पथ का चौराहा है जहां आपको सिर्फ पुलिस के साइरेंस सुनाई देंगे और ये तस्वीर है जहां प्रोटेस्टर्स कुछ इस तरीके से घूम रहे हैं और पुलिस ये प्रोटेस्टर अभी बाहर निकले। आप देखिए,
1: सोशल मीडिया पर बताया गया कि प्रदर्शनकारियों में बहुत सारे घायल हैं, जिस पर दिल्ली पुलिस ने सफाई दी। दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि सोशल मीडिया पर गीतांजलि नाम की 12 साल की लड़की के साथ मारपीट, बाल खींचने और सिर में चोट लगने और साथ ही लगभग 40 से 50 अन्य लोगों के सिर फूटने के दावों वाली पोस्ट में गलत जानकारी फैलाई जा रही है। ये जानकारी गलत है। पोस्ट में किए जा रहे दावे सच नहीं है। कृपया गलत या गुमराह करने वाली जानकारी न फैलाएं और न ही उसे आगे बढ़ाएं। बहरहाल, काफी देर तक यूं ही बवाल चलता रहा, लेकिन कुछ घंटों में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पा लिया।
2: कर्तव्य पथ पर हम लोग खड़े हुए हैं और अभी यहाँ पे स्थिति जो है, आप कह लीजिए कि यातायात जो है वो चालू हो गया है। स्थिति यहाँ पे ये है कि प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है, लेकिन 2 घंटे पहले यहाँ पे तस्वीर बेहद अलग थी। तमाम प्रदर्शनकारी इन लॉन्स में पीछे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे भरे हुए थे और उसके अलावा खाकी का जो आपको तैनाती दिख रही है, बिल्कुल एक्शन में दिल्ली पुलिस और अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे थे। एंटी राइड व्हीकल्स पीछे और तमाम दिल्ली पुलिस के बसें यहां पे तैनात थी, लेकिन अब वो खाली करा दिया गया है।
1: कुछ देर पहले तक रेल भवन के पास भी प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा था, लेकिन वहां भी थोड़ी देर में स्थिति नियंत्रण में आ गई।
3: मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं, जो कि रफी मार्ग है, जो कि रेल भवन से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। कुछ घंटे पहले यहां पर तमाम प्रदर्शनकारी मौजूद थे। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के द्वारा इस पूरे इलाके को अब खाली करा लिया गया है।
1: संसद भवन के आसपास भी सड़कें अब खाली हैं। संसद से विजय चौक तक का इलाका खाली और सामान्य दिख रहा है।
4: यहाँ पर एकदम नॉर्मल सी है, जिस तरीके के बैरिकेड्स लगाए गए थे ताकि जो प्रदर्शनकारी थे जब वो यहाँ आने की कोशिश कर रहे थे, वो सभी बैरिकेड्स को एक तरफ साइड में खड़ा कर दिया गया है और संसद परिसर के बाहर भी जो सामान्य तौर पर जो पुलिस कर्मी होते हैं वही लोग इस समय मौजूद हैं।
1: जंतर मंतर पर भी जहाँ सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा था उसे भी खाली करा लिया गया है। कुल मिलाकर अब स्थिति नियंत्रण में है। आज तक ब्यूरो।